0: सांसदों का समर्थन जरूरी होगा। सूत्रों के अनुसार एक दर्जन से अधिक सांसद अलग ग्रुप बनाने के पक्ष में है। सूत्र कहते हैं कि पार्टी के एक बड़े वरिष्ठ सांसद इस संभावित बगावत की अगुवाई कर रहे हैं। राज्यसभा में टीएमसी के 13 सांसद हैं और वहां अलग समूह को मान्यता के लिए कम से कम 9 सांसदों का समर्थन चाहिए। ममता बनर्जी के विधायकों की टूट के बाद उनके घर बैठक में 41 सांसदों में से सिर्फ 5 सांसदों का पहुंचना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या विधायकों के बाद सांसदों के टूटने की चर्चा है?
1: मानसिक तौर पे आप पार्टी के साथ नहीं है?
2: मानसिक तौर पे मैं पार्टी के साथ नहीं हूँ।
1: और ऐसे ही मानसिक तौर पे और कितने सांसद है तृणमूल में जो पार्टी के साथ नहीं है, आपको क्या पता है?
2: देखिए, मैं तो किसी का मानसिक स्थिति को रीड नहीं कर पाता।
1: नहीं, बातचीत तो होती होगी।
2: बातचीत होती है, मेरे सुनने में जो है, मैंने आपको बता दिया ना कि लोकसभा में ज्यादा मेंबर, मैंने मेजोरिटी मेंबर नहीं।
0: सूत्रों के मुताबिक टीएमसी के 23 लोकसभा सांसद बागी गुट के संपर्क में कहे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते की शुरुआत में टीएमसी के लोकसभा सांसदों में टूट हो सकती है, मतलब कुछ ही दिनों में। क्या खेला हो जाएगा?
3: दुनिया में सब कुछ हो सकता है ना, ऐसा कोई चीज नहीं है जो दुनिया में नहीं हो सकता है। लड़ाई जारी है।
0: विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की हार के बाद जिस तेजी से और बड़े पैमाने पर पार्टी के विधायकों का संतोष सामने आया, वह अभूतपूर्व है, जिसका असर संसद में भी दिख सकता है।
1: कितने सांसद होंगे ऐसे? लोकसभा में आपके 29 सांसद है, आपको क्या सुनाई दे रहा है? कितने सांसद होंगे फिर?
2: 29 नहीं, 28 है।
1: 28?
2: बसीरहाट आपका पेंडिंग है कलकत्ता हाई कोर्ट में,
1: क्या होने वाला है? आपको क्या सुनाई दे रहा है? आपको पार्टी के अंदर अभी भी है
2: मेजोरिटी चला जाए?
1: ये एक बड़ा बयान है आप दे रहे हैं कि मेजोरिटी ही चला जाएगा?
2: मेजोरिटी चला जाएगा।
0: टीएमसी में मची इस बगावत के लिए भले ही बागी अभिषेक बनर्जी को दोषी देते हों, लेकिन ममता बनर्जी को नेता मानने पर सब एकमत। इसीलिए जब ऋतुव्रत बनर्जी ने ममता को सलाहकार के रूप में सीमित करने की कोशिश की, तो पाला बदलने वाले कई विधायकों ने विरोध जताया। हालांकि ऋतुव्रत इसे कोई चुनौती नहीं मानते और उन्हें भरोसा है कि बगावत करने वाले विधायकों की संख्या बढ़ेगी।
4: जहां तक हमारे आंकड़ा का सवाल है, वो आंकड़ा बढ़ता जाएगा। जो आंकड़ा हम लोग प्रेजेंट किए थे 2/3 से ज्यादा, काफी सारे ज्यादा, वो जो आंकड़ा है, जब आप लोग से मिलेंगे, विधानसभा का अधिवेशन जो होगा, वो आंकड़ा ऊपर जाएगा और आगे जाएगा।
0: विधानसभा चुनाव में हार के महीने भर के अंदर जिस तरह से ममता की पार्टी में टूट हुई, उसे देखते हुए राजनीतिक हलकों में ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आने वाले समय में टीएमसी के सांसद भी पार्टी का साथ छोड़ देंगे।
5: और अब खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति की, जहां 2027 चुनाव का असर नेताओं के बयानों पर साफ दिखाई दे रहा है। योगी आदित्यनाथ लगातार अखिलेश यादव पर हमलावर हैं, तो अखिलेश यादव भी योगी की खामियों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं।
6: हम देखते हैं, हमने हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया, पता लगा कोई टोंटी चोरी कर रहा है।
7: योगी ने भले ही अपने इस बयान में किसी का नाम न लिया हो, लेकिन टोंटी चोरी शब्द के बाद योगी की मुस्कुराहट ने यूपी की सियासत के 10 साल पुराने चैप्टर को फिर से खोल दिया। जब अखिलेश के सीएम बंगला खाली होने के बाद इन आरोपों पर जमकर घमासान मचा था।
8: अगर हमारे पे ये इल्जाम लगे, हम टोंटी ले गए, हमारे घर को गंगा जल से धुलाओगे आप भूल सकते हो, मैं नहीं भूल सकता।
7: उधर योगी के बयान के जवाब में अखिलेश यादव ने भी बिना किसी का नाम लिए एक तंज भरा ट्वीट किया। वनस्पति विवेक छीन लेती है और निर्दोष लोगों की हत्याओं का खौफ रातों की नींद, नहीं तो पूरे होश में इतने ऊंचे पद पर बैठकर इतना निकृष्ट बयान कोई भी नहीं देता है। कुछ लोग अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं, ये हार की हताशा बोल रही है, क्योंकि कुदरत का बुलडोजर अब घूम गया है। इसके बाद योगी के हमलों की दूसरी किश्त जारी हुई, जहां निशाने पर एक बार फिर विपक्ष था।
9: अच्छे लोगों को चुनोगे, अच्छा परिणाम आएगा। माफिया को चुन करके भेजोगे तो खून भी चूस डालेगा। विकास का पैसा तो हजम करेगा ही करेगा, संपत्तियों पर भी माफिया कब्जा करता है।
7: यूपी में अब चुनाव की तैयारियों ने पूरा जोर पकड़ लिया है, जिसका अंदाजा नेताओं के बयानों से लगाया जा सकता है। आज तक ब्यूरो।
5: खबर कोचिंग वाले खान सर की, जहां कोचिंग वॉर में खान सर बुरी तरह से फंस गए हैं। पहले तो फैसल खान और खान सर ने अपने पड़ोसी वाली ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद को गिरफ्तार करवाया और अब कोचिंग गोलीकांड में खुद खान सर पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।

0: साहब बनाया।
1: कोचिंग की दुनिया में खान सर इतना बड़ा नाम बन चुके हैं कि अब छात्रों के बीच लेक्चर देने के लिए वो भारी सुरक्षा बलों और हथियार बंद बॉडीगार्ड्स के साथ रेड कार्पेट पर चलते हुए ग्रैंड एंट्री लेते हैं।
2: याद रखिएगा, 1.5 साल की लगन के साथ पढ़ाई आपको पूरी दुनिया से 5 साल आगे रख देती है। अब कोई पोत पात के आएगा, तुम कहते कितना बढ़िया लग रहे हो, तो वो पतेगा एकदम सियार लग रही हो, इसलिए एकदम अखंड सिंगल।
1: लेकिन अब खान सर का यही जलवा उनके लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। 2 जून को खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुए गोलीकांड में वो बुरी तरह से फंस चुके हैं।
2: आप सबके जीवन में कुछ न कुछ तकलीफ है, तो इससे घबराना क्या है? अगर रात अंधेरी है तभी तारों के चमकने का अहमियत भी है।
1: खान सर पर पटना के कदमकुआं थाने में हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। जी हां, खान सर के गार्ड्स ने पुलिस को बयान दिया है कि उन्होंने हमें कहा तुम गोली चलाओ, बाकी हम देख लेंगे। इसी आधार पर पुलिस ने खान सर के खिलाफ FIR दर्ज की है। BNS की धारा 109 के तहत ये केस दर्ज किया गया है। इसमें 10 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। इसमें अग्रिम जमानत भी नहीं मिल सकती है। पुलिस की FIR में 3 लोगों का नाम दर्ज है, फैजल खान उर्फ खान सर और उनके साथ उनके 2 गार्ड्स। फायरिंग करने वाले दोनों गार्ड्स के नाम प्रदीप कुमार और तलविंदर सिंह हैं। खान सर के ये दोनों निजी गार्ड्स उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। नोएडा की सिक्योरिटी एजेंसी से खान सर ने 17 गार्ड्स हायर किए हैं।
3: तो व्यक्ति जो वीडियो में दिख रहे हैं फायरिंग करते हुए, तो पहचान करके तो गिरफ्तार किया गया है और उनको भी भेजा जा रहा है। उनके हथियार जब्त करके फसल जांच कराया जा रहा है।
4: इनके घर पे
3: आगे जो जांच में आएगा और उसके सबूत जो मिलेंगे हम लोग को सताए
4: करते हैं। खान सर पे क्या आरोप सिद्ध हुआ है? गार्ड ने जो बताया आपके लोग के द्वारा जो FIR भेजा गया उसमें साफ तौर से कहा गया है कि उन्हीं ने आदेश दिया था, क्या खान सर की गिरफ्तारी होगी?
3: इस मैंने आप लोग को बताया कि जिस तरह का लोग एविडेंस आएगा उस सबसे कार्रवाई होगी और इसमें जिसके ऊपर भी एविडेंस आएगा विधि व्यवस्था या अपराध इसके ऊपर भी होगी उन सबसे सख्त कार्रवाई की जाएगी सबूतों के आधार पर।
2: ये क्या है इसका? ये एग्जैक्ट इसी साइज का होता है।
1: और अब जिसमें खान सर को महारत हासिल है उसी रास्ते से खान सर बचकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से कठिन और जटिल विषयों को खान सर बहुत ही सरल देसी और मजाकिया अंदाज में छात्रों को समझाते हैं, आज खान सर कोचिंग सेंटर में छात्रों के बीच अपना केस समझा रहे हैं। इस लेक्चर में खान सर गिरफ्तारी से बचने की सफाई पेश करते हैं। तो आइए आपको भी खान सर की सेल्फ डिफेंस वाली क्लास में लिए चलते हैं।
2: ये लोग कहा कि खान सर के ऊपर माला चढ़ जाए, फोटो पे क्या चढ़ जाए माला, यही तो चाहते हैं लोग। अरे पागलो मेरे भाई लोग, एक बात बताए यार, वो हमला किसके ऊपर करने आया है? हमारे ऊपर। दिन में आया कि रात में? रात। अकेले आए ग्रुप में? पथराव किया कि नहीं? गोली चलाए कि नहीं चलाए? गार्ड को अधमरा किया कि नहीं किया? क्या FIR भी नहीं करें? ले अब पूछिए जरा ये बात। सबसे जरूरी चीज जो आप लोग को गुमराह किया जा रहा है, सेल्फ डिफेंस की फायरिंग चूंकि पुलिस लेट से पहुंची थी, पुलिस को आने में टाइम लगता है, हमें भी पता है कि 5 मिनट में पुलिस उड़ के नहीं आ जाएगी, तो सेल्फ डिफेंस में वो नहीं भाग रहे थे, उसको मार डालते तो कोई क्या करता? एक गार्ड का कर्तव्य क्या होता है? सुरक्षा करना।
1: और तो और खान सर अपनी कोचिंग के स्मार्ट क्लासरूम में 2 जून की घटना की CCTV फुटेज का पूरा विश्लेषण कर रहे हैं।
5: इसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं की, जबकि सबके सामने ये लेके जा रहा है, मुद्दे से भटकाया जा रहा है, आप इसकी गिरफ्तारी करिए, ये आदमी कौन है और कैसे आता है 20-25 लोगों को उठा के लेके चला जाता है, 20-25 लोगों को एक साथ कैसे?
1: खान सर मार्कर से स्क्रीन पर आरोपियों को घेर घेर कर दिखा रहे हैं और छात्रों को बता रहे हैं कि देखिए इनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। खान सर उसका नाम विकास बताते हैं और उसकी पूरी पहचान भी बताते हैं।
5: इसका नाम विकास या विवेक करते हैं। विकास इसने बयान दिया है, देखो हम लोग तो पढ़ाने वाला, हम लोग तो इतना

0: काम क्या काम करता है, क्या हमने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया है? सर इसकी गिरफ्तारी पटना पुलिस से मांग करते हैं कि अभी तक बाहर हो रहा है।
1: फिर खान सर हाथ में किताब लेकर विद्या की कसम खाते हैं और कहते हैं कि कोचिंग पर लगातार गोलियां चली थी और पूरी सच्चाई सामने नहीं लाई जा रही है।
0: हमने दिखाया गोली चलते हुए, आप देख रहे हैं। अब आप बताइए, आप अपनी आवाज उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते?
1: स्मार्ट क्लासरूम में लेक्चर देने वाले खान सर वेरी स्मार्ट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कोचिंग में हुए गोलीकांड पर वो कैसे गच्चा खा गए और अपने ही बयानों से कैसे फंस गए वो आपको दिखाते हैं। खान सर ने पहले कहा उनके कोचिंग सेंटर पर रोशन आनंद के लोगों ने गोलियां चलाई, 10 राउंड फायरिंग हुई, फिर खान सर पलट गए और गोलियों की बात से मुकर गए। लेकिन जब गोलियां चलाते हुए खान सर के अपने ही गार्ड्स का वीडियो वायरल हो गया, फायरिंग करने वाले दो गार्ड्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और खान सर पर भी आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हो गया, तो अब खान सर फिर से कोचिंग में गोलियां चलाने की थ्योरी ले आए हैं।
2: अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है, पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में, ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं, यहाँ पे 8-10 राउंड हम देखे हैं, हमें क्या पता है। अभी PMCH में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है यहाँ पर। बगल की कोचिंग वाले
3: सर, आप खुद मौजूद थे यहाँ जब फायरिंग हो रही थी?
2: बिल्कुल, ये देखिए मेरा गार्ड है ये।
3: अच्छा,
2: इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहूलुहान कर दिया गया यहाँ पे।
3: तो गार्ड से क्या दुश्मनी थी?
2: बस कि तुम ही खान सर को सब गार्ड है हमारा, मार के रखा है। देखिए उस समय इतना घटना हुआ, अभी जो घायल है, जो मेन हम लोग तो अंदर से भी अपने चैम्बर में थे, टीचर लोग क्लास ले रहे थे, जो गार्ड है उससे पूछा गया तो उसका कहना है कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना मार के फोड़ दिया गया उसको।
0: अस्पष्ट गोलियां चल रही थी और अफरा तफरी इतना था कि किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाहर निकल के देख सके। यहाँ क्यों नहीं कोई आए लोग तक वगैरह, बहुत यही था कि तो उस समय आए रहते, बताए रहते क्या गोलियां चल रही है कि नहीं चल रही।
4: खान सर के बयानों ने ही खान सर को फंसा दिया और अब खान सर अपनी कोचिंग के द्वारा छात्रों से बचने का रास्ता खोज रहे हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार किसी भी समय खान सर को गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि खान सर कहाँ है इसका अभी फिलहाल किसी को पता नहीं।
1: लेकिन खान सर अब बुरी तरह से फंस चुके हैं कि अब पुलिस उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या खान सर स्टूडेंट्स के जरिए पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कहकर छात्रों को उकसा रहे हैं कि अगर उनका कोचिंग सेंटर बंद हो गया तो 6 महीने में कई कोचिंग संस्थानों की फीस 1-1.5 लाख रुपए तक हो जाएगी।
0: जिस दिन खान सर को आवाज दबाया गया उसके 6 महीने के अंदर आकर फिर से फीस 1.5 लाख नहीं चली गई, तो आप कहिए
2: जो आप लोग को गुमराह किया जा रहा है। सेल्फ डिफेंस की फायरिंग, चूंकि पुलिस लेट से पहुंची थी, पुलिस को आने में टाइम लगता है, हमें भी पता है कि 5 मिनट में पुलिस उड़ के नहीं आ जाएगी।
1: और खान सर किसी हद तक अपने स्मार्ट क्लास से छात्रों को अपने पक्ष में इकट्ठा करने में कामयाब भी हो जाते हैं। जी हाँ, खान सर की गिरफ्तारी को देखते हुए उनकी कोचिंग खान ग्लोबल स्टडीज के छात्र मुसल्लापुर कोचिंग सेंटर में पहुंचने लगते हैं। बिहार पुलिस भर्ती के रिजल्ट को लेकर शुरू हुई लड़ाई में खान सर ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर को तो गिरफ्तार करवा दिया, लेकिन अब गोलीकांड का सच बाहर आने के बाद गिरफ्तारी की तलवार खुद खान सर पर भी लटक गई है।
5: बिहार पुलिस में जो शानदार रिजल्ट हुआ है उसी का साजिश से हमको फंसाया जा रहा है। किसान कोल्ड स्टोर के मालिक और खान सर जो है दोनों मिल करके जो है ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने का पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत है।
1: लेकिन सवाल ये है कि कैसे पटना के दो कोचिंग संचालकों के बीच वर्चस्व की लड़ाई में एक तरह से कोचिंग वॉर छिड़ गई है और इस कोचिंग वॉर में अब गोलियां भी चल रही हैं। ऐसे में पुलिस सख्त एक्शन ले रही है। इस कोचिंग वॉर में खान सर बुरी तरह से फंस चुके हैं। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
4: खबर मोहाली से आई बेहद खौफनाक तस्वीर की, जहां एक सरफरे आशिक ने ब्रेकअप के बाद अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के ऑफिस के अंदर चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी।

0: मोहाली के ऑफिस से आई ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, जहां एक सिरफिरा आशिक हरजिंदर महिला सहकर्मी डिंपल पर अचानक से चाकुओं से हमला कर देता है। हमलावर ने एक के बाद एक करीब 30 बार लड़की पर चाकू चलाया। लड़की जान बचाकर चारों तरफ भागने की कोशिश करती है, लेकिन हमले जारी रहते हैं। बाकी सहकर्मी उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकाम साबित होते हैं। लड़की दम तोड़ देती है, लेकिन इसके बाद की तस्वीर और भयानक है, जहां वो लड़का सबके सामने खुद की गर्दन पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करने लगता है और सबके सामने आत्महत्या की कोशिश करता है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
1: बेसिकली 25 से 30 बार चाकू का उसने वार किया, गर्दन पे भी है और पीछे हार्ट पे भी है। सो यू कैन से सीरियस, उसने मतलब 25 से 30 वार किए थे उसने, और अपने भी उसने ऐसे ही अपने आप को भी स्टैब किया है। अपने गले में भी उसके हैं, हार्ट में भी उसने अपने स्टैब किया अपने आप को भी, और ये सारी जो हैं जो आप इनके वुंड्स बारे दैट डॉक्टर कैन टेल यू बेटर।
2: अभी पेरेंट्स के दोनों साइड के पेरेंट्स का क्या
1: कहना है? मतलब जो लड़के के पेरेंट्स हैं दे आर इन यूएस, दे विल बी कमिंग, पर अभी जो लड़की के पेरेंट्स हैं उनका हमने बयान लिखकर अभी पोस्टमार्टम करवाएंगे आज।
0: डिंपल पटियाला की रहने वाली थी, हरजिंदर भी पटियाला का है। दोनों में दोस्ती थी, प्यार था, अच्छे संबंध थे। करीब 3 साल से दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन कुछ दिनों से दोनों के रिश्तों में खटास आ गई थी। डिंपल ने ब्रेकअप कर लिया, हरजिंदर से मिलना जुलना छोड़ दिया, लेकिन हरजिंदर डिंपल को नहीं छोड़ना चाहता था। पुलिस की शुरुआती जाँच में पता चला है कि हरजिंदर दोबारा से डिंपल के साथ रिश्ते ठीक करना चाहता था। गुरुवार को जब वो दफ्तर आया तो डिंपल से बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी और झगड़ा हो गया। इसके बाद जो तस्वीरें आई वो हैरान करने वाली थी। मोहाली से कमलजीत संधु के साथ आज तक ब्यूरो।
3: दिल्ली के मालवीय नगर होटल अग्निकांड में नए नए खुलासे हो रहे हैं। होटल मालिक ने एक ऐसी बात मान ली जो कि सिस्टम पर सवाल खड़े करती है। दावा है कि होटल मालिक लवकेश बजाज ने बताया कि होटल उनका अकाउंटेंट ऑपरेट कर रहा था। वहीं दिल्ली सरकार ने बड़ी ड्राइव चलाकर नियम तोड़ने वाले होटल्स रेस्टोरेंट्स पर एक्शन लिया। नोएडा में लगी आग ने फिर से सवाल खड़े कर दिए।
4: ये तस्वीरें देखिए कि एक और होटल की तरफ जाती हुई एनसीबी की टीम, क्योंकि यहाँ पर पहले बिजली जो है वो काटी जाती है। आगे की तरफ मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो टीम है वो आगे की तरफ जाती हुई दूसरा होटल, क्योंकि अब तक 2 से 3 होटल्स को जो है वो यहाँ पर अब सील कर दिया गया।
5: दिल्ली के मालवीय नगर में होटल अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार एक्शन मोड में दिख रही है। दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में अवैध इमारतों की पहचान करके उन पर बुलडोजर चलाया गया। मालवीय नगर इलाके में हुए अग्निकांड ने देश को झकझोर दिया। इस इलाके में सुबह ही बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। अवैध निर्माण के खिलाफ दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रेखा गुप्ता सरकार फुल एक्शन में है, जिसके तहत साकेत, एमजी रोड, मालवीय नगर में सीलिंग और बुलडोजर कार्रवाई होती है।
4: देखिए मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से जो ज्वाइंट कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें डीएम, एसडीएम और एमसीडी दिल्ली पुलिस के साथ, अब इस वक्त दिल्ली के अलग अलग इलाके, चाहे वो मालवीय नगर हो, हौजरानी हो, साकेत हो, एमजी रोड हो, वहां पर बुलडोजर एक्शन के साथ साथ सीलिंग एक्शन भी जो है वो देखने को मिल रहा है। ये देखिए ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट के नाम पर जो इनलीगल तरीके से होटल चल रहे थे उस पर अब एमसीडी की तरफ से सीलिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। सीलिंग की टीम, एमसीडी की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची है और तमाम यहाँ पर हौजरानी इलाके में जब ये मालवीय नगर में हादसा हुआ था जिसमें 21 लोगों की जान गई थी, और आप देखिए किस तरीके से यह तमाम होटल जो है वो बने हुए हैं, इन सब पर इस वक्त जो है वो ज्वाइंट कमेटी की जो टीम जो दिल्ली सरकार की तरफ से गठित की गई थी उसका एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक 18 ऐसी यूनिट्स हैं जहां पर इस वक्त एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है।
5: दक्षिणी दिल्ली के हौज खास में बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल को एमसीडी की टीम ने सील किया। यहां भी नियमों की अनदेखी हो रही थी। दक्षिणी दिल्ली के गिटौरनी में भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी इमारत नियमों की अनदेखी करके बना दी गई। यहाँ पर कई दुकानों को सील किया गया। इसके साथ पूर्वी दिल्ली के करावल नगर, हौज खास गांव में भी अतिक्रमण और सीलिंग की कार्रवाई हुई। दिल्ली सरकार ने अवैध निर्माण रोकने और बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल को लेकर बड़ा फैसला लिया। भविष्य में मालवीय नगर अग्निकांड जैसा हादसा न हो, इसके लिए अब अफसरों की जिम्मेदारी भी तय की गई।
6: सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर 2 साल की सजा और मिलीभगत पाए जाने पर अधिकारियों पर भी कठोर कार्रवाई, जिसमें जेल तक और जुर्माने तक की कार्रवाई की जा सकती है उसको इन्वोक करने का फैसला सरकार ने लिया है।
5: दिल्ली के होटल अग्निकांड में 21 लोगों की मौत के सदमे से लोग उभरे भी नहीं थे कि सुबह सुबह नोएडा में दो जगह आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की पहली घटना नोएडा सेक्टर 74 में हुई, जहां 12वें फ्लोर के एक फ्लैट में आग लगती है। तेज हवा के चलते आग तेजी से फैलती है और फ्लैट की खिड़कियों से ऊंची लपटें निकलने लगी। आसमान में काले धुएं का गुबार फैल गया। इस हादसे ने दमकल विभाग की तैयारियों पर एक बार फिर सवाल उठा दिए। हालांकि बाद में इस आग पर काबू पाया गया। नोएडा के अपार्टमेंट में लगी आग की इस घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत बचाव और निगरानी करने के निर्देश दिए। नोएडा में आग लगने की एक और घटना सेक्टर 52 के एक पीजी में हुई। जिस पीजी में आग लगी उस बिल्डिंग में नीचे रेस्टोरेंट था। काफी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने यहां पर आग पर काबू पाया है।
3: दिल्ली की ही तरह मध्य प्रदेश के इंदौर में भी बड़ा हादसा हो सकता था। इंदौर में ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का शोरूम था जिसमें आग लग गई। आग लगने से ऊपर की मंजिल पर रहने वाले कई परिवारों की जान खतरे में पड़ गई। लोगों का आरोप है कि दमकल विभाग की टीम काफी देर से पहुंची।
5: खिड़की के छज्जे पर लटका ये उस आम आदमी का परिवार जिसे जिम्मेदार सरकारी विभाग अक्सर मुसीबत के आगे अकेला छोड़ देता है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर की हैं, जहां पति पत्नी और एक मासूम बेटी की चुनौती मौत के चंगुल से खुद को बचाने की है। जिंदा रहने के लिए खुद को बचाने की कोशिश कर रहा दमकल विभाग की टीम नदारद, इसीलिए पड़ोसी रस्सी फेंक रहे तो कोई सीढ़ी लगाने की कोशिश कर रहा। वजह बिल्डिंग में आग लगी है, घर के अंदर धुआं भरा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में इलेक्ट्रिक शोरूम में लगी आग एक बार फिर सुरक्षा के सिस्टम पर सवाल उठाती। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड की तस्वीरें अभी धुंधली भी नहीं हुई। इंदौर के इस अग्निकांड ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। हालांकि बस गनीमत की बात यह है कि यहां किसी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ।
7: पहली बार उठे जैसे हमने धुआं देखा और इसके अलावा हमने कुछ नहीं देखा, मतलब बच्ची और हमको सबको साथ में लेके बाउंड्री के बाहर इधर बालकनी के यहां पर पहुंच गए, खड़े रहे दीवार के साइड से जो पाइपलाइन इसको पकड़ के, मतलब फिर लोगों ने हमको देखा कि ये लोग भी ऊपर हैं, मतलब फंसे हुए हैं।
8: बहुत दूर धुआं हो रहा था, घबराहट हो रही थी, सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी, तो हम इधर से कूद के और दूसरी बिल्डिंग पे गए तो उधर से लोगों ने हमको निकाला, बच्ची को भी निकाला, हमको रस्सी बांध के कमर में सीढ़ी से निकाला।
5: ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के शोरूम में जब आग लगी तब उसकी ऊपर की मंजिल पर रहने वाले लोग सो रहे। बताया जा रहा है कि शोरूम के बाहर कुछ एक फोर व्हीलर गाड़ी को चार्जिंग पर लगाया गया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की संभावित वजह माना जा रहा है।
9: इस शोरूम के ऊपर जो फ्लैट है तकरीबन यहाँ पर 20 से 25 परिवार यहाँ रहते हैं इस बिल्डिंग के ऊपर, तो जब इसका धुआं ऊपर गया तो उन लोगों को निकलने में बड़ी परेशानी आ रही थी, तो जो पड़ोसी है इस पास की बिल्डिंग के जो लोग है उन्होंने सीढ़ियां लगा के रेस्टोरेंट को वहां से निकाला, लेकिन बहुत देर बाद जो है फायर ब्रिगेड आई यहाँ पर, क्योंकि जो रहवासी है क्षेत्रीय उन्होंने काफी मदद की और उन्होंने रेस्क्यू करके बाकी लोगों को निकाला।
5: गर्मियों में आग लगने की घटनाएं बढ़ती। दिल्ली में मंगलवार को एक होटल में आग लगने की घटना पूरे देश को दहला दी। दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर होटल टूरिस्ट स्टे में लगी आग में कुल 21 लोगों की जान गई, जिसमें 11 विदेशी थे। ऐसा नहीं कि दिल्ली या देश में इस तरह की पहली घटना। दिल्ली हो या फिर इंदौर, हर घटना सरकारी विभागों को बार बार खबरदार करती, लेकिन हर हादसे के बाद जैसे ही मामला शांत होता है संबंधित विभाग ढीले पड़ जाते हैं और आम आदमी सरकारी अफसरों की लापरवाही का शिकार होने लगता है।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक,
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
11: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
12: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, और वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

आज तक के साथ मंच पर पुतिन समेत दुनिया के बड़े दिग्गज, रूसी राष्ट्रपति ने की भारत की तारीफ, बताया प्रमुख साझेदार, आईटी सेक्टर के अग्रणी देशों में शामिल है इंडिया। सूरत में पीएम मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा अराजकता फैलाकर अवसर तलाश रही है कांग्रेस, देश को नीचे दिखाने में जुटे हैं निराशावादी। समुद्र मंथन मिशन में भारत को बड़ी कामयाबी, गहरे समुद्र में ऑयल इंडिया को मिली प्राकृतिक गैस, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने किया ऐलान। अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार का बड़ा एक्शन, अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर, कुछ इलाकों में सीलिंग, सीएम रेखा की बैठक में दोषी अफसरों पर सख्ती के आदेश। बागी नेता ऋतृत को नेता विपक्ष बनाए जाने के खिलाफ सोमवार को हाईकोर्ट का रुख करेंगी ममता, पूर्व सीएम की बैठक में पहुंचे सिर्फ 3 लोकसभा सांसद।

0: नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। पश्चिम बंगाल में बड़ा राजनीतिक बदलाव नजर आ रहा है, जहां ममता बनर्जी की पार्टी हर दिन के साथ कमजोर होती जा रही है। विधायकों की बगावत के बाद अब ममता बनर्जी के सांसदों को लेकर भी खबरें हैं कि वो भी विद्रोह कर सकते हैं। दावा तो यहां तक हो रहा है कि अगले हफ्ते की शुरुआत में तृणमूल कांग्रेस के सांसद बड़ा खेला कर सकते हैं।
1: जब विधायकों के बाद अब सांसद भी तृणमूल कांग्रेस से अलग हो जाएंगे, क्या अगले हफ्ते की शुरुआत में ममता बनर्जी के सांसद भी अलग गुट बना लेंगे? ममता बनर्जी की पार्टी पर संकट गहराता जा रहा है। इसका साफ साफ संकेत ममता बनर्जी के कालीघाट वाले घर पर बैठक के दौरान मिलता है। पार्टी के 60 विधायकों के अलग गुट बनाने के दावे के बाद बुलाई गई इस बैठक में अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी, माला रॉय शामिल हुई। इसके अलावा डेरेक ओब्रायन और डोला सेन भी ममता के घर पहुंचे। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं, 80 विधायकों वाली टीएमसी के सिर्फ 8 मौजूदा विधायकों और 2 पूर्व विधायकों ने बैठक में हिस्सा लिया। ममता बनर्जी के घर पर बुलाई गई इस बैठक में विधायकों की तरह सांसद भी गायब दिखे। 28 लोकसभा सांसदों वाली टीएमसी के चीफ के घर पर लोकसभा के 3 और 2 राज्यसभा सांसद पहुंचे, जिसके बाद खबरदार करता सवाल है कि क्या विधायकों के बाद अब सांसद भी ममता बनर्जी को टाटा बाय बाय करने वाले हैं? इस सवाल पर ममता बनर्जी के करीबी विधायक मदन मित्रा का जवाब सुनने लायक है।
2: बाकी विधायक बोल रहे हैं 23 सांसद उनके साथ हैं, बाकी विधायक बोल रहे हैं।
3: वो पूरा बात कर सकता है, पूरा कह सकता है जब पूरा पार्टी उनका साथ है।
1: तो मदन मित्रा ने पार्टी के सांसदों के विद्रोह के सवाल को खारिज नहीं किया, बल्कि बागियों को चुनौती देकर ये बता दिया कि दाल में कहीं कुछ काला जरूर है।
3: 2,30,00,000 जनता ममता बनर्जी का नाम से वोट दिया, जो लोग जा रहे हैं उसमें से कोई मां का लाल है, रेजिग्नेशन देके अपना क्षेत्रों में जाके बोलेंगे ममता को फोटो नहीं लेके मैं फिर से एक बार चुनाव लड़ने चाहता हूं, अगर उसका पास कोई चुनाव जीत के आए मैं उसको सलाम करूंगा।
1: ममता के करीबियों के इस बयान को टीएमसी के सूत्रों के हवाले से आ रही खबर से समझा जा सकता है, जिसके मुताबिक टीएमसी में विधायक दल के बाद अब संसदीय दल में जल्दी टूट हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के कई सांसद अभिषेक बनर्जी से नाराज बताए जा रहे हैं। नाराज सांसद एक अलग गुट बना सकते हैं। टीएमसी के लोकसभा में 28 सांसद अभी हैं। दल बदल कानून के तहत अलग समूह को मान्यता मिलने के लिए कम से कम 22 सांसदों का समर्थन जरूरी होगा। सूत्रों के अनुसार एक दर्जन से अधिक सांसद अलग ग्रुप बनाने के पक्ष में हैं। सूत्र कहते हैं कि पार्टी के एक बड़े वरिष्ठ सांसद इस संभावित बगावत की अगुवाई कर रहे हैं। राज्यसभा में टीएमसी के 13 सांसद हैं और वहां अलग समूह को मान्यता के लिए कम से कम 9 सांसदों का समर्थन चाहिए। ममता बनर्जी के विधायकों की टूट के बाद उनके घर बैठक में 41 सांसदों में से सिर्फ 5 सांसदों का पहुंचना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या विधायकों के बाद सांसदों के टूटने की चर्चा है?
4: मानसिक तौर पे आप पार्टी के साथ नहीं है?
5: मानसिक तौर पे मैं पार्टी के साथ नहीं हूँ।
4: और ऐसे ही मानसिक तौर पे और कितने सांसद है तृणमूल में जो पार्टी के साथ नहीं है, आपको क्या पता है?
5: देखिए, मैं तो किसी का मानसिक स्थिति को रीड नहीं कर पाता।
4: नहीं, बातचीत तो होती होगी।
5: बातचीत होती है, मेरे सुनने में जो है मैंने आपको बता दिया ना कि लोकसभा में ज्यादा मेंबर मैंने मेजोरिटी मेंबर नहीं।
1: सूत्रों के मुताबिक टीएमसी के 23 लोकसभा सांसद बागी गुट के संपर्क में कहे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते की शुरुआत में टीएमसी के लोकसभा सांसदों में टूट हो सकती है, मतलब कुछ ही दिनों में क्या खेला हो जाएगा?
3: दुनिया में सब कुछ हो सकता है ना, ऐसा कोई चीज नहीं है जो दुनिया में नहीं हो सकता है। लड़ाई जारी है।
1: विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की हार के बाद जिस तेजी से और बड़े पैमाने पर पार्टी के विधायकों का संतोष सामने आया वो अभूतपूर्व है, जिसका असर संसद में भी दिख सकता है।
4: कितने सांसद होंगे ऐसे? लोकसभा में आपके 29 सांसद है, आपको क्या सुनाई दे रहा है? कितने सांसद होंगे फिर?
5: 29 नहीं है, 28 है।
4: 28
5: बसीरहाट आपका पेंडिंग है कलकत्ता हाईकोर्ट में,
4: तो क्या होने वाला है? आपको क्या सुनाई दे रहा है? आपको पार्टी के अंदर अभी भी है
5: मेजोरिटी चला जाए?
4: ये एक बड़ा बयान है आप दे रहे हैं कि मेजॉरिटी ही चला जाएगा।
1: टीएमसी में मची इस बगावत के लिए भले ही बागी अभिषेक बनर्जी को दोषी देते हो, लेकिन ममता बनर्जी को नेता मानने पर सब एकमत। इसीलिए जब ऋतुव्रत बनर्जी ने ममता को सलाहकार के रूप में सीमित करने की कोशिश की तो पाला बदलने वाले कई विधायकों ने ही विरोध जताया। हालांकि ऋतुव्रत इसे कोई चुनौती नहीं मानते और उन्हें भरोसा है कि बगावत करने वाले विधायकों की संख्या बढ़ेगी।
6: जहां तक हमारे आंकड़ा का सवाल है, वो आंकड़ा बढ़ता जाएगा। जो आंकड़ा हम लोग प्रेजेंट किए थे 2/3 से ज्यादा, काफी सारे ज्यादा, वो जो आंकड़ा है जब आप लोग से मिलेंगे विधानसभा का अधिवेशन जो होगा वो आंकड़ा ऊपर जाएगा और आगे जाएगा।
1: विधानसभा चुनाव में हार के महीने भर के अंदर जिस तरह से ममता की पार्टी में टूट हुई, उसे देखते हुए राजनीतिक हलकों में ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आने वाले समय में टीएमसी के सांसद भी पार्टी का साथ छोड़ देंगे।
0: तो बंगाल में जो खेला हुआ उसका इफेक्ट अभी तक देखा जा रहा है और उत्तर प्रदेश, उस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। यूपी की सियासत की बात कर लेते हैं। 2027 चुनाव का असर नेताओं के बयानों पर साफ नजर आ रहा है। योगी आदित्यनाथ लगातार अखिलेश पर हमलावर हैं, तो वहीं अखिलेश यादव भी सरकार की खामियों की लिस्ट लेकर अब जनता के बीच जा रहे हैं।
7: हम देखते हैं, हमने हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया, पता लगा कोई टोंटी चोरी कर रहा है।
8: योगी ने भले ही अपने इस बयान में किसी का नाम न लिया हो, लेकिन टोंटी चोरी शब्द के बाद योगी की मुस्कुराहट ने यूपी की सियासत के 10 साल पुराने चैप्टर को फिर से खोल दिया। जब अखिलेश के सीएम बंगला खाली होने के बाद इन आरोपों पर जमकर घमासान मचा था।
9: अगर हमारे पे ये इल्जाम लगे हम टोंटी ले गए, हमारे घर को गंगा जल से धुलाओगे, आप भूल सकते हो, मैं नहीं भूल सकता।
8: उधर योगी के बयान के जवाब में अखिलेश यादव ने भी बिना किसी का नाम लिए एक तंज भरा ट्वीट किया। वनस्पति विवेक छीन लेती है और निर्दोष लोगों की हत्याओं का खौफ रातों की नींद, नहीं तो पूरे होश में इतने ऊंचे पद पर बैठकर इतना निकृष्ट बयान कोई भी नहीं देता है। कुछ लोग अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं, ये हार की हताशा बोल रही है क्योंकि कुदरत का बुलडोजर अब घूम गया है। इसके बाद योगी के हमलों की दूसरी किश्त जारी हुई, जहां निशाने पर एक बार फिर विपक्ष था।
10: अच्छे लोगों को चुनोगे अच्छा परिणाम आएगा, माफिया को चुन करके भेजोगे तो खून भी चूस डालेगा, विकास का पैसा तो हजम करेगा ही करेगा, संपत्तियों पर भी माफिया कब्जा करता है।
8: यूपी में अब चुनाव की तैयारियों ने पूरा जोर पकड़ लिया है, जिसका अंदाजा नेताओं के बयानों से लगाया जा सकता है। आज तक ब्यूरो।
0: बात कोचिंग वाले फैजल खान की करते हैं, जिन्हें कई लोग खान सर भी कहते हैं। कोचिंग वॉर में खान सर बुरे फंस गए हैं। पहले तो फैजल खान उर्फ खान सर ने अपने पड़ोस वाली ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद को गिरफ्तार करवाया और अब कोचिंग गोलीकांड में खुद फैसल खान पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।
11: इंसान घमंड अपने अच्छे समय में दिखाता है और उसका खामियाजा उसको अपने बुरे समय में भुगतना पड़ता है।
12: एयरबस A380 ये सबसे ऊंची जहाज,
13: ये एरिया कौन सा है? मंचूरिया।
14: हिटलर ने ग्रेनेड बनाना चालू किया,
13: वो टैंक पनडुब्बी पानी वाली जहाज सब।

0: कोचिंग की दुनिया में खान सर इतना बड़ा नाम बन चुके हैं कि अब छात्रों के बीच लेक्चर देने के लिए वो भारी सुरक्षा बलों और हथियारबंद बॉडीगार्ड के साथ रेड कार्पेट पर चलते हुए ग्रैंड एंट्री लेते हैं।
1: याद रखिएगा, 1.5 साल की लगन के साथ पढ़ाई आपको पूरी दुनिया से 5 साल आगे रख देती है। अब कोई पोत पात के आएगा, तुम कहते कितना बढ़िया लग रहे, तो वो पोतेगा एकदम सियार लग रही हो, इसलिए एकदम अखंड सिंगल।
0: लेकिन अब खान सर का यही जलवा उनके लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। 2 जून को खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुए गोलीकांड में वो बुरी तरह से फंस चुके हैं।
1: आप सबके जीवन में कुछ न कुछ तकलीफ है, तो इससे घबराना क्या है? अगर रात अंधेरी है तभी तारों के चमकने का अहमियत भी है।
0: खान सर पर पटना के कदम कुआं थाने में हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। जी हां, खान सर के गार्ड्स ने पुलिस को बयान दिया है कि उन्होंने हमें कहा तुम गोली चलाओ, बाकी हम देख लेंगे। इसी आधार पर पुलिस ने खान सर के खिलाफ FIR दर्ज की है। BNS की धारा 109 के तहत ये केस दर्ज किया गया है। इसमें 10 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। इसमें अग्रिम जमानत भी नहीं मिल सकती है। पुलिस की FIR में 3 लोगों का नाम दर्ज है, फैजल खान उर्फ खान सर और उनके साथ उनके 2 गार्ड्स। फायरिंग करने वाले दोनों गार्ड्स के नाम प्रदीप कुमार और तलविंदर सिंह हैं। खान सर के ये दोनों निजी गार्ड्स उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। नोएडा की सिक्योरिटी एजेंसी से खान सर ने 17 गार्ड्स हायर किए हैं।
2: तो व्यक्ति जो वीडियो में दिख रहे हैं फायरिंग करते हुए, उसको पहचान करके गिरफ्तार किया गया है और उनको भी भेजा जा रहा है। उनके हथियार जब्त करके फसल जांच कराया जा रहा है। आगे जो जांच में आएगा और उसके सबूत जो मिलेंगे हम लोग,
3: खान सर का क्या आरोप सिद्ध हुआ है? गार्ड ने जो बताया आखिर लोग के द्वारा जो FIR भेजा गया उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि उन्होंने आदेश दिया था, क्या खान सर की गिरफ्तारी होगी सर?
2: इसमें आप लोगों को बताया कि जिस तरह का लोग एविडेंस आएगा उस सबसे कार्रवाई होगी और इसमें जिसके ऊपर भी एविडेंस आएगा, विधि व्यवस्था या अपराध इसके ऊपर भी होगी, उन सब पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। सबूतों के आधार पर
1: ये क्या है इसका, ये एग्जैक्ट इसी साइज का होता है।
0: और अब जिसमें खान सर को महारत हासिल है उसी रास्ते से खान सर बचकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से कठिन और जटिल विषयों को खान सर बहुत ही सरल देसी और मजाकिया अंदाज में छात्रों को समझाते हैं, आज खान सर कोचिंग सेंटर में छात्रों के बीच अपना केस समझा रहे हैं। इस लेक्चर में खान सर गिरफ्तारी से बचने की सफाई पेश करते हैं। तो आइए आपको भी खान सर की सेल्फ डिफेंस वाली क्लास में लिए चलते हैं।
1: ये लोग कहा कि खान सर के ऊपर माला चढ़ जाए, फोटो पे क्या चढ़ जाए माला, यही तो चाहते हैं लोग। अरे पागलो मेरे भाई लोग, एक बात बता यार, वो हमला किसके ऊपर करने आया है? हमारे ऊपर। दिन में आएगी रात में? रात। अकेले आए ग्रुप में? पथराव किया कि नहीं? गोली चलाए कि नहीं चलाए? गार्ड को अधमरा किया कि नहीं किया? क्या FIR भी नहीं करें? ले अब पूछिए जरा ये बात। सबसे जरूरी चीज जो आप लोग को गुमराह किया जा रहा है, सेल्फ डिफेंस की फायरिंग, चूंकि पुलिस लेट से पहुंची थी, पुलिस को आने में टाइम लगता है, हमें भी पता है कि 5 मिनट में पुलिस उड़ के नहीं आ जाएगी, तो सेल्फ डिफेंस में वो नहीं भाग रहे थे, उसको मार डालते तो कोई क्या करता? एक गार्ड का कर्तव्य क्या होता है? सुरक्षा करना।
0: और तो और खान सर अपनी कोचिंग के स्मार्ट क्लासरूम में 2 जून की घटना की CCTV फुटेज का पूरा विश्लेषण कर रहे हैं।
4: इसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई जबकि सबके सामने ये लेके जा रहा है, मुद्दे से भटकाया जा रहा है, आप इसकी गिरफ्तारी करिए, ये आदमी कौन है और कैसे आता है 20-25 लोगों को उठा के लेके चला जा रहा है, 20-25 लोगों को एक साथ कैसे?
0: खान सर मार्कर से स्क्रीन पर आरोपियों को घेर घेर कर दिखा रहे हैं और छात्रों को बता रहे हैं कि देखिए इनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। खान सर उसका नाम विकास बताते हैं और उसकी पूरी पहचान भी बताते हैं।
4: इसका नाम विकास या विवेक करते हैं। विकास, इसने बयान दिया है, देखो हम लोग तो पढ़ाने वाले थे, हम लोग को इतना नहीं पता रहा था कि कौन कहां क्या काम कर रहा है, क्या हमने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया? सर इसकी गिरफ्तारी पटना पुलिस
0: फिर खान सर हाथ में किताब लेकर विद्या की कसम खाते हैं और कहते हैं कि कोचिंग पर लगातार गोलियां चली थी और पूरी सच्चाई सामने नहीं लाई जा रही है।
4: हमने दिखाया गोली चलते हुए, आप लोग देख रहे हैं। अब आप बताइए, आप अपनी आवाज उठा सकते हैं कि नहीं उठा।
0: स्मार्ट क्लासरूम में लेक्चर देने वाले खान सर वेरी स्मार्ट हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कोचिंग में हुए गोलीकांड पर वो कैसे गच्चा खा गए और अपने ही बयानों से कैसे फंस गए वो आपको दिखाते हैं। खान सर ने पहले कहा उनके कोचिंग सेंटर पर रोशन आनंद के लोगों ने गोलियां चलाई, 10 राउंड फायरिंग हुई, फिर खान सर पलट गए और गोलियों की बात से मुकर गए। लेकिन जब गोलियां चलाते हुए खान सर के अपने ही गार्ड्स का वीडियो वायरल हो गया, फायरिंग करने वाले दो गार्ड्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और खान सर पर भी आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हो गया, तो अब खान सर फिर से कोचिंग में गोलियां चलाने की थ्योरी ले आए हैं।
5: अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे। 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया यहाँ पर। 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे, 8-10 राउंड हम देखे हैं। हमें क्या पता है, अभी PMCH में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है यहाँ पर।
6: क्या लगता है कौन क्या होगा?
5: बगल की कोचिंग वाले
7: सर, आप खुद मौजूद थे यहाँ जब फायरिंग हो रही थी?
5: बिल्कुल, ये देखिए मेरा गार्ड है ये।
7: अच्छा,
5: इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहूलुहान कर दिया गया यहाँ पे।
7: तो गार्ड से क्या दुश्मनी थी?
5: बस की तुम ही खान सर को सब गार्ड है हमारा मार के रखता है। देखिए उस समय इतना घटना हुआ, अभी जो घायल है जो मेन, हम लोग तो अंदर से भी अपने चेंबर में थे, टीचर लोग क्लास ले रहे थे, जो गार्ड है उससे पूछा गया तो उसका कहना है कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना मार के फोड़ दिया गया उसको।
4: हम लोग का अस्पष्ट गोलियां चल रही थी और अफरा तफरी इतना था कि किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाहर निकल के देख सके। यहाँ क्यों नहीं कोई आए लोग तक वगैरह, बहुत यही था कि तो उस समय आए रहते तो क्या रहते, क्या गोलियां चली है कि नहीं चली।
8: फैसल खान उर्फ खान सर के इन्हीं बयानों ने उन्हें फंसा दिया और अब अपनी कोचिंग के छात्रों के जरिए अब वो बचने का रास्ता खोज रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक किसी भी समय गिरफ्तारी संभव है। यह बताया जा रहा है कि खान सर कहां है इसका पता किसी को नहीं।
0: लेकिन खान सर अब बुरी तरह से फंस चुके हैं कि अब पुलिस उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या खान सर स्टूडेंट्स के जरिए पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कहकर छात्रों को उकसा रहे हैं कि अगर उनका कोचिंग सेंटर बंद हो गया तो 6 महीने में कई कोचिंग संस्थानों की फीस 1-1.5 लाख रुपए तक हो जाएगी।
4: यकीन मानिए, जिस दिन के लिए बंद हुआ, जिस दिन खान सर का आवाज दबाया गया, उसके 6 महीने के अंदर
1: जो आप लोग को गुमराह किया जा रहा है, सेल्फ डिफेंस की फायरिंग, चूंकि पुलिस लेट से पहुंची थी, पुलिस को आने में टाइम लगता है, हमें भी पता है कि 5 मिनट में पुलिस उड़ के नहीं आ जाएगी।
0: और खान सर किसी हद तक अपने स्मार्ट क्लास से छात्रों को अपने पक्ष में इकट्ठा करने में कामयाब भी हो जाते हैं। जी हाँ, खान सर की गिरफ्तारी को देखते हुए उनकी कोचिंग खान ग्लोबल स्टडीज के छात्र मुसल्लापुर कोचिंग सेंटर में पहुँचने लगते हैं। बिहार पुलिस भर्ती के रिजल्ट को लेकर शुरू हुई लड़ाई में खान सर ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर को तो गिरफ्तार करवा दिया, लेकिन अब गोलीकांड का सच बाहर आने के बाद गिरफ्तारी की तलवार खुद खान सर पर भी लटक गई है।
9: बिहार पुलिस में जो शानदार रिजल्ट हुआ है उसी का साजिश है, हमको फंसाया जा रहा है। किसान कोल्ड स्टोर के मालिक और खान सर जो है दोनों मिल करके जो है ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने का पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत।
0: लेकिन सवाल ये है कि कैसे पटना के दो कोचिंग संचालकों के बीच वर्चस्व की लड़ाई में एक तरह से कोचिंग वॉर छिड़ गई है और इस कोचिंग वॉर में अब गोलियां भी चल रही हैं। ऐसे में पुलिस सख्त एक्शन ले रही है। इस कोचिंग वॉर में खान सर बुरी तरह से फंस चुके हैं। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
8: बिहार से पंजाब लिए चलते हैं। मोहाली से आई खौफनाक तस्वीर की बात करते हैं, जहां एक सिरफिरी आशिक ने ब्रेकअप के बाद अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की ऑफिस के अंदर चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी।

0: मोहाली के ऑफिस से आई ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, जहां एक सिरफिरा आशिक हरजिंदर महिला सहकर्मी डिंपल पर अचानक से चाकुओं से हमला कर देता है। हमलावर ने एक के बाद एक करीब 30 बार लड़की पर चाकू चलाया। लड़की जान बचाकर चारों तरफ भागने की कोशिश करती है, लेकिन हमले जारी रहते हैं। बाकी सहकर्मी उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकाम साबित होते हैं। लड़की दम तोड़ देती है, लेकिन इसके बाद की तस्वीर और भयानक है, जहां वो लड़का सबके सामने खुद की गर्दन पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करने लगता है और सबके सामने आत्महत्या की कोशिश करता है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
1: बेसिकली 25 से 30 बार चाकू का उसने वार किया, गर्दन पे भी है और पीछे हार्ट पे भी है। सो यू कैन से सीरियस, उसने मतलब 25 से 30 बार किए थे उसने, और अपने भी उसने ऐसे ही अपने आप को भी स्टैब किया है। अपने गले में भी उसके हैं, हार्ट में भी उसने अपने स्टैब किया अपने आप को भी, और ये सारी जो हैं, जो आप इनके वूंड्स बारे दैट डॉक्टर कैन टेल यू बेटर।
2: अभी पेरेंट्स के, दोनों साइड के पेरेंट्स का क्या
1: कहना है? मतलब जो लड़के के पेरेंट्स हैं, दे आर इन यूएस, दे विल बी कमिंग, पर अभी जो लड़की के पेरेंट्स हैं उनका हमने बयान लिखकर अभी पोस्टमार्टम करवाएंगे आज।
0: डिंपल पटियाला की रहने वाली थी, हरजिंदर भी पटियाला का है। दोनों में दोस्ती थी, प्यार था, अच्छे संबंध थे। करीब 3 साल से दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन कुछ दिनों से दोनों के रिश्तों में खटास आ गई थी। डिंपल ने ब्रेकअप कर लिया, हरजिंदर से मिलना जुलना छोड़ दिया, लेकिन हरजिंदर डिंपल को नहीं छोड़ना चाहता था। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि हरजिंदर दोबारा से डिंपल के साथ रिश्ते ठीक करना चाहता था। गुरुवार को जब वो दफ्तर आया तो डिंपल से बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी और झगड़ा हो गया। इसके बाद जो तस्वीरें आई वो हैरान करने वाली थी। मोहाली से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।
3: तो दिल्ली के मालवीय नगर होटल अग्निकांड में नए नए खुलासे हो रहे हैं। होटल मालिक ने एक ऐसी बात कबूली है जो सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही है। दावा है कि होटल मालिक लवकेश बजाज ने यह बताया कि होटल उनका अकाउंटेंट ऑपरेट कर रहा था। वहीं दिल्ली सरकार ने बड़ी ड्राइव चलाकर नियम तोड़ चलते होटल रेस्टोरेंट पर अब एक्शन लिया। नोएडा में लगी आग ने फिर से सवाल उठाए हैं।
4: आप ये तस्वीरें देखिए कि एक और होटल की तरफ जाती हुई एलसीडी की टीम, क्योंकि यहाँ पर पहले बिजली जो है वो काटी जाती है। आगे की तरफ मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो टीम है वो आगे की तरफ जाती हुई दूसरा होटल, क्योंकि अब तक 2 से 3 होटल्स को जो है वो यहाँ पर अब सील कर दिया गया।
5: दिल्ली के मालवीय नगर में होटल अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार एक्शन मोड में दिख रही है। दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में अवैध इमारतों की पहचान करके उन पर बुलडोजर चलाया गया। मालवीय नगर इलाके में हुए अग्निकांड ने देश को झकझोर दिया। इस इलाके में सुबह ही बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। अवैध निर्माण के खिलाफ दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रेखा गुप्ता सरकार फुल एक्शन में है, जिसके तहत साकेत, MG रोड, मालवीय नगर में सीलिंग और बुलडोजर कार्रवाई होती है।
4: देखिए मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से जो ज्वाइंट कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें DM, SDM और MCD दिल्ली पुलिस के साथ, अब इस वक्त दिल्ली के अलग अलग इलाके, चाहे वो मालवीय नगर हो, हौजरानी हो, साकेत हो, MG रोड हो, वहां पर बुलडोजर एक्शन के साथ साथ सीलिंग एक्शन भी जो है वो देखने को मिल रहा है। ये देखिए ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट के नाम पर जो इनलीगल तरीके से होटल चल रहे थे उस पर अब MCD की तरफ से सीलिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। सीलिंग की टीम, MCD की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची है और तमाम यहाँ पर हौजरानी इलाके में जब ये मालवीय नगर में हादसा हुआ था जिसमें 21 लोगों की जान गई थी, और आप देखिए किस तरीके से यह तमाम होटल जो है वो बने हुए हैं, इन सब पर इस वक्त जो है वो ज्वाइंट कमेटी की जो टीम जो दिल्ली सरकार की तरफ से गठित की गई थी उसका एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक 18 ऐसी यूनिट्स हैं जहां पर इस वक्त एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है।
5: दक्षिणी दिल्ली के हौज खास में बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल को MCD की टीम ने सील किया। यहां भी नियमों की अनदेखी हो रही थी। दक्षिणी दिल्ली के गिटौरनी में भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी इमारत नियमों की अनदेखी करके बना दी गई। यहाँ पर कई दुकानों को सील किया गया। इसके साथ पूर्वी दिल्ली के करावल नगर, हौज खास गांव में भी अतिक्रमण और सीलिंग की कार्रवाई हुई। दिल्ली सरकार ने अवैध निर्माण रोकने और बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल को लेकर बड़ा फैसला लिया। भविष्य में मालवीय नगर अग्निकांड जैसा हादसा न हो, इसके लिए अब अफसरों की जिम्मेदारी भी तय की गई।
6: सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर 2 साल की सजा और मिली भगत पाए जाने पर मिलीभगत पाए जाने पर अधिकारियों पर भी कठोर कार्रवाई, जिसमें जेल तक और जुर्माने तक की कार्रवाई की जा सकती है, उसको इन्वोक करने का फैसला सरकार ने लिया है।
5: दिल्ली के होटल अग्निकांड में 21 लोगों की मौत के सदमे से लोग उभरे भी नहीं थे कि सुबह सुबह नोएडा में दो जगह आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की पहली घटना नोएडा सेक्टर 74 में हुई, जहां 12वें फ्लोर के एक फ्लैट में आग लगती है। तेज हवा के चलते आग तेजी से फैलती है और फ्लैट की खिड़कियों से ऊंची लपटें निकलने लगी। आसमान में काले धुएं का गुबार फैल गया। इस हादसे ने दमकल विभाग की तैयारियों पर एक बार फिर सवाल उठा दिए। हालांकि बाद में इस आग पर काबू पाया गया। नोएडा के अपार्टमेंट में लगी आग की इस घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत बचाव और निगरानी करने के निर्देश दिए। नोएडा में आग लगने की एक और घटना सेक्टर 52 के एक पीजी में हुई। जिस पीजी में आग लगी उस बिल्डिंग में नीचे रेस्टोरेंट था। काफी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने यहां पर आग पर काबू पाया है।
3: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
8: नीलम पहनने में बड़ी सावधानी की जरूरत होती है। क्या नीलम पहनने के पहले इसकी जांच कर लेनी चाहिए? क्या नीलम के साथ मूंगा नहीं पहना जा सकता? क्या है नीलम रत्न की विशेषताएं और क्या है इसको धारण करने के नियम, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र।
9: This is the sound of Claire cooking dinner at home, and that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge, and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
10: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
11: और वो शेर हमारी तरफ आ रहा है, थोड़ा सा पीछे की तरफ हट रहे हैं इस समय। वाकई आप ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर बंदूकें तली हो और आपके सामने शेर आ जाए, दोनों में फर्क।
12: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
7: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

आज तक के साथ मंच पर पुतिन समेत दुनिया के बड़े दिग्गज, रूसी राष्ट्रपति ने की भारत की तारीफ, बताया प्रमुख साझेदार, आईटी सेक्टर के अग्रणी देशों में शामिल है इंडिया। सूरत में पीएम मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा अराजकता फैलाकर अवसर तलाश रही है कांग्रेस, देश को नीचे दिखाने में जुटे हैं निराशावादी। समुद्र मंथन मिशन में भारत को बड़ी कामयाबी, गहरे समुद्र में ऑयल इंडिया को मिली प्राकृतिक गैस, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने किया ऐलान। अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार का बड़ा एक्शन, अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर, कुछ इलाकों में सीलिंग, सीएम रेखा की बैठक में दोषी अफसरों पर सख्ती के आदेश। बागी नेता ऋतवृत्त को नेता विपक्ष बनाए जाने के खिलाफ सोमवार को हाईकोर्ट का रुख करेंगी ममता, पूर्व सीएम की बैठक में पहुंचे सिर्फ 3 लोकसभा सांसद।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। सबसे पहले बात करेंगे कोचिंग वाले फैसल खान की, जिनको खान सर भी कहते हैं। कोचिंग वॉर में खान सर पूरे फंस गए। पहले तो फैसल खान ने अपने पड़ोस वाली ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद को गिरफ्तार करवाया और अब कोचिंग गोलीकांड में खुद पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।
1: इंसान घमंड अपने अच्छे समय में दिखाता है और उसका खामियाजा उसको अपने बुरे समय में भुगतना पड़ता है। एयरबस A380 ये सबसे ऊंची जहाज।
2: ये एरिया कौन सा है? मंचूरिया।
3: हिटलर ने ग्रेनेड बनाना चालू किया, ओ टैंक, पनडुब्बी, पानी वाली जहाज सब बनाया।
4: कोचिंग की दुनिया में खान सर इतना बड़ा नाम बन चुके हैं कि अब छात्रों के बीच लेक्चर देने के लिए वो भारी सुरक्षा बलों और हथियारबंद बॉडीगार्ड्स के साथ रेड कार्पेट पर चलते हुए ग्रैंड एंट्री लेते हैं।
1: याद रखिएगा, 1.5 साल की लगन के साथ पढ़ाई आपको पूरी दुनिया से 5 साल आगे रख देती है। अब कोई पोत पात के आएगा, तुम कहते कितना बढ़िया लग रहे हो, तो वो पोतेगा एकदम सियार लग रही हो, इसलिए एकदम अखंड सिंगल।
4: लेकिन अब खान सर का यही जलवा उनके लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। 2 जून को खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुए गोलीकांड में वो बुरी तरह से फंस चुके हैं।
1: आप सबके जीवन में कुछ न कुछ तकलीफ है, तो इससे घबराना क्या है? अगर रात अंधेरी है तभी तारों के चमकने का अहमियत भी है।
4: खान सर पर पटना के कदम कुआं थाने में हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। जी हां, खान सर के गार्ड्स ने पुलिस को बयान दिया है कि उन्होंने हमें कहा तुम गोली चलाओ, बाकी हम देख लेंगे। इसी आधार पर पुलिस ने खान सर के खिलाफ FIR दर्ज की है। BNS की धारा 109 के तहत ये केस दर्ज किया गया है। इसमें 10 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। इसमें अग्रिम जमानत भी नहीं मिल सकती है। पुलिस की FIR में 3 लोगों का नाम दर्ज है, फैजल खान उर्फ खान सर और उनके साथ उनके 2 गार्ड्स। फायरिंग करने वाले दोनों गार्ड्स के नाम प्रदीप कुमार और तलविंदर सिंह हैं। खान सर के ये दोनों निजी गार्ड्स उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। नोएडा की सिक्योरिटी एजेंसी से खान सर ने 17 गार्ड्स हायर किए हैं।
5: तो व्यक्ति जो वीडियो में दिख रहे हैं फायरिंग करते हुए, उसको पहचान करके गिरफ्तार किया गया है और उनको भी भेजा जा रहा है। उनके हथियार जब्त करके फसल जांच कराया जा रहा है। आगे जो जांच में आएगा और उसके सबूत जो मिलेंगे हम लोग,
6: खान सर का क्या आरोप सिद्ध हुआ है? गार्ड ने जो बताया आपके लोग के द्वारा जो FIR भेजा गया, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि उन्होंने आदेश दिया था, क्या खान सर की गिरफ्तारी होगी?
5: इसमें आप लोगों को बताया कि जिस तरह का लोग एविडेंस आएगा उस सबसे कार्रवाई होगी और इसमें जिसके ऊपर भी एविडेंस आएगा, विधि व्यवस्था या अपराध इसके ऊपर भी होगी, उन सब पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। सबूतों के आधार पर आएगा।
1: ये क्या है इसका? ये एग्जैक्ट इसी साइज का होता है।
4: और अब जिसमें खान सर को महारत हासिल है, उसी रास्ते से खान सर बचकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से कठिन और जटिल विषयों को खान सर बहुत ही सरल, देसी और मजाकिया अंदाज में छात्रों को समझाते हैं, आज खान सर कोचिंग सेंटर में छात्रों के बीच अपना केस समझा रहे हैं। इस लेक्चर में खान सर गिरफ्तारी से बचने की सफाई पेश करते हैं। तो आइए आपको भी खान सर की सेल्फ डिफेंस वाली क्लास में लिए चलते हैं।
1: ये लोग कहा कि खान सर के ऊपर माला चढ़ जाए, फोटो पे क्या चढ़ जाए माला, यही तो चाहते हैं लोग। अरे पागलो मेरे भाई लोग, एक बात बता यार, वो हमला किसके ऊपर करने आया है? हमारे ऊपर। दिन में आएगी रात में? रात। अकेले आए ग्रुप में? पथराव किया कि नहीं? गोली चलाए कि नहीं चलाए? गार्ड को अधमरा किया कि नहीं किया? क्या FIR भी नहीं करें? ले अब पूछिए जरा ये बात। सबसे जरूरी चीज जो आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है, सेल्फ डिफेंस की फायरिंग, चूंकि पुलिस लेट से पहुंची थी, पुलिस को आने में टाइम लगता है, हमें भी पता है कि 5 मिनट में पुलिस उड़ के नहीं आ जाएगी, तो सेल्फ डिफेंस में वो नहीं भाग रहे थे, उसको मार डालते तो कोई क्या करता? एक गार्ड का कर्तव्य क्या होता है? सुरक्षा करना।
4: और तो और खान सर अपनी कोचिंग के स्मार्ट क्लासरूम में 2 जून की घटना की सीसीटीवी फुटेज का पूरा विश्लेषण कर रहे हैं।
7: इसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई, जबकि सबके सामने ये लेके जा रहा है, मुद्दे से भटकाया जा रहा है। आप इसकी गिरफ्तारी करिए, ये आदमी कौन है और कैसे आता है 20-25 लोगों को उठा के लेके चला जा रहा है, 20-25 लोगों को एक साथ कैसे।
4: खान सर मार्कर से स्क्रीन पर आरोपियों को घेर घेर कर दिखा रहे हैं और छात्रों को बता रहे हैं कि देखिए इनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। खान सर उसका नाम विकास बताते हैं और उसकी पूरी पहचान भी बताते हैं।
7: इसका नाम विकास या विवेक करते हैं, विकास इसने बयान दिया है। देखो हम लोग तो पढ़ाने वाले आपके, हम लोग को इतना नहीं पता रहता कि कौन कहां क्या काम कर रहा है। क्या हमने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया है इसकी।
4: फिर खान सर हाथ में किताब लेकर विद्या की कसम खाते हैं और कहते हैं कि कोचिंग पर लगातार गोलियां चली थी और पूरी सच्चाई सामने नहीं लाई जा रही है।
7: हमने दिखाया गोली चलते हुए, आपने देख रहे हैं। अब आप बताइए आप अपनी आवाज उठा सकते हैं कि नहीं उठा।
4: स्मार्ट क्लासरूम में लेक्चर देने वाले खान सर वेरी स्मार्ट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कोचिंग में हुए गोलीकांड पर वो कैसे गच्चा खा गए और अपने ही बयानों से कैसे फंस गए वो आपको दिखाते हैं। खान सर ने पहले कहा उनके कोचिंग सेंटर पर रोशन आनंद के लोगों ने गोलियां चलाई, 10 राउंड फायरिंग हुई, फिर खान सर पलट गए और गोलियों की बात से मुकर गए। लेकिन जब गोलियां चलाते हुए खान सर के अपने ही गार्ड्स का वीडियो वायरल हो गया, फायरिंग करने वाले 2 गार्ड्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और खान सर पर भी आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हो गया, तो अब खान सर फिर से कोचिंग में गोलियां चलाने की थ्योरी ले आए हैं।
8: अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में, ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं, यहाँ पे 8-10 राउंड हम देखे हैं, हमें क्या पता है। अभी पीएमसीएच में एडमिट है।

0: अच्छा,
1: इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहू लुहान कर दिया गया यहाँ पे।
0: तो गार्ड से क्या दुश्मनी थी?
1: बस की तुम ही खान सर को सब गार्ड है हमारा मार के रखा।
2: देखिए उस समय इतना घटना हुआ, अभी जो घायल है जो मेन, हम लोग तो अंदर से भी अपने चेंबर में थे, टीचर लोग क्लास ले रहे थे, जो गार्ड है उससे पूछा गया तो उसका कहना है कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना मार के फोड़ दिया गया उसे।
3: तो यही विद्या के मंदिरों में अस्पष्ट गोलियां चल रही थी और अफरा तफरी इतना था कि किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाहर निकल के देख सके यहाँ क्यों नहीं कोई आए लोग तक वगैरह, बहुत यही था कि तो उस समय आए रहते तो कह रहे थे क्या गोलियां चल रही है कि नहीं चल रही।
4: खान सर के इन बयानों ने उन्हें फंसा दिया और अब फैसल खान अपनी कोचिंग के छात्रों के जरिए बचने का रास्ता खोज रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक किसी भी समय गिरफ्तारी संभव है और यह भी बताया जा रहा है कि फैसल खान कहां है इसका पता किसी को नहीं।
5: लेकिन खान सर अब बुरी तरह से फंस चुके हैं कि अब पुलिस उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या खान सर स्टूडेंट्स के जरिए पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कहकर छात्रों को उकसा रहे हैं कि अगर उनका कोचिंग सेंटर बंद हो गया तो 6 महीने में कई कोचिंग संस्थानों की फीस 1 से 1.5 लाख रुपए तक हो जाएगी।
3: यकीन मानिए जिस दिन KGS बंद हुआ, जिस दिन खान सर का आवाज दबाया गया उसके 6 महीने के अंदर फिर से फीस 1.5 लाख नहीं चली गई। तो आपको
1: जो आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है, सेल्फ डिफेंस की फायरिंग चूंकि पुलिस लेट से पहुंची थी, पुलिस को आने में टाइम लगता है, हमें भी पता है कि 5 मिनट में पुलिस उड़ के नहीं आ जाएगी।
5: और खान सर किसी हद तक अपने स्मार्ट क्लास से छात्रों को अपने पक्ष में इकट्ठा करने में कामयाब भी हो जाते हैं। जी हाँ, खान सर की गिरफ्तारी को देखते हुए उनकी कोचिंग खान ग्लोबल स्टडीज के छात्र मुसल्लापुर कोचिंग सेंटर में पहुंचने लगते हैं। बिहार पुलिस भर्ती के रिजल्ट को लेकर शुरू हुई लड़ाई में खान सर ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर को तो गिरफ्तार करवा दिया, लेकिन अब गोलीकांड का सच बाहर आने के बाद गिरफ्तारी की तलवार खुद खान सर पर भी लटक गई है।
0: बिहार पुलिस में जो शानदार रिजल्ट हुआ है उसी का साजिश है, हमको फंसाया जा रहा है। किसान कोल्ड स्टोर के मालिक और खान सर जो है दोनों मिल करके जो है ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने का पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत है।
5: लेकिन सवाल ये है कि कैसे पटना के 2 कोचिंग संचालकों के बीच वर्चस्व की लड़ाई में एक तरह से कोचिंग वॉर छिड़ गई है और इस कोचिंग वॉर में अब गोलियां भी चल रही हैं। ऐसे में पुलिस सख्त एक्शन ले रही है। इस कोचिंग वॉर में खान सर बुरी तरह से फंस चुके हैं। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
4: दिल्ली के मालवीय नगर होटल अग्निकांड में नए खुलासे हो रहे हैं। होटल मालिक ने एक ऐसी बात कबूली है जो कि सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहा है। दावा है, होटल मालिक लवकेश बजाज ने बताया कि होटल उनका अकाउंटेंट ऑपरेट कर रहा था। वहीं दिल्ली सरकार ने बड़ी ड्राइव चलाकर नियम तोड़कर चलते होटल और रेस्टोरेंट पर एक्शन लिया। नोएडा में लगी आग ने एक बार फिर सवाल उठाए।
6: तस्वीरें देखिए कि एक और होटल की तरफ जाती हुई एनसीबी की टीम, क्योंकि यहाँ पर पहले बिजली जो है वो काटी जाती है। आगे की तरफ मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो टीम है वो आगे की तरफ जाती हुई दूसरा होटल, क्योंकि अब तक 2 से 3 होटल्स को जो है वो यहाँ पर अब सील कर दिया गया।
7: दिल्ली के मालवीय नगर में होटल अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार एक्शन मोड में दिख रही है। दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में अवैध इमारतों की पहचान करके उन पर बुलडोजर चलाया गया। मालवीय नगर इलाके में हुए अग्निकांड ने देश को झकझोर दिया। इस इलाके में सुबह ही बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। अवैध निर्माण के खिलाफ दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रेखा गुप्ता सरकार फुल एक्शन में है, जिसके तहत साकेत, MG रोड, मालवीय नगर में सीलिंग और बुलडोजर कार्रवाई होती है।
6: देखिए मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से जो ज्वाइंट कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें DM, SDM और MCD दिल्ली पुलिस के साथ, अब इस वक्त दिल्ली के अलग अलग इलाके, चाहे वो मालवीय नगर हो, हौजरानी हो, साकेत हो, MG रोड हो, वहां पर बुलडोजर एक्शन के साथ साथ सीलिंग एक्शन भी जो है वो देखने को मिल रहा है। देखिए ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट के नाम पर जो इनलीगल तरीके से होटल चल रहे थे उस पर अब MCD की तरफ से सीलिंग जो है वो यहां पर की जा रही है। सीलिंग की टीम, MCD की टीम जो है वो यहां पर पहुंची है और तमाम यहां पर हौजरानी इलाके में जब ये मालवीय नगर में हादसा हुआ था जिसमें 21 लोगों की जान गई थी, और आप देखिए किस तरीके से ये तमाम होटल जो है वो बने हुए हैं, इन सब पर इस वक्त जो है वो

0: ज्वाइंट कमेटी की जो टीम जो दिल्ली सरकार की तरफ से गठित की गई थी उसका एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक 18 ऐसी यूनिट्स हैं जहां पर इस वक्त एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है।
1: दक्षिणी दिल्ली के हौज खास में बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल को एमसीडी की टीम ने सील किया, यहां भी नियमों की अनदेखी हो रही थी। दक्षिणी दिल्ली के गिटौरनी में भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। यहां पर देखिए कितनी बड़ी इमारत नियमों की अनदेखी करके बना दी गई। यहां पर कई दुकानों को सील किया गया। इसके साथ पूर्वी दिल्ली के करावल नगर हौज खास गांव में भी अतिक्रमण और सीलिंग की कार्रवाई हुई। दिल्ली सरकार ने अवैध निर्माण रोकने और बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल को लेकर बड़ा फैसला लिया। भविष्य में मालवीय नगर अग्निकांड जैसा हादसा न हो इसके लिए अब अफसरों की जिम्मेदारी भी तय की गई।
2: सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर 2 साल की सजा और मिलीभगत पाए जाने पर अधिकारियों पर भी कठोर कार्रवाई, जिसमें जेल तक और जुर्माने तक की कार्रवाई की जा सकती है, उसको इन्वोक करने का फैसला सरकार ने लिया है।
1: दिल्ली के होटल अग्निकांड में 21 लोगों की मौत के सदमे से लोग उबरे भी नहीं थे कि सुबह सुबह नोएडा में 2 जगह आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की पहली घटना नोएडा सेक्टर 74 में हुई, जहां 12वें फ्लोर के एक फ्लैट में आग लगती है। तेज हवा के चलते आग तेजी से फैलती है और फ्लैट की खिड़कियों से ऊंची लपटें निकलने लगी। आसमान में काले धुएं का गुबार फैल गया। इस हादसे ने दमकल विभाग की तैयारियों पर एक बार फिर सवाल उठा दिए। हालांकि बाद में इस आग पर काबू पाया गया। नोएडा के अपार्टमेंट में लगी आग की इस घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत बचाव और निगरानी करने के निर्देश दिए। नोएडा में आग लगने की एक और घटना सेक्टर 52 के एक पीजी में हुई। जिस पीजी में आग लगी उस बिल्डिंग में नीचे रेस्टोरेंट था। काफी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने यहां पर आग पर काबू पाया है।
3: दिल्ली की तरह ही इंदौर में भी बड़ा हादसा हो सकता था। इंदौर में ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का शोरूम था जिसमें आग लगी। ऊपर की मंजिल पर रहने वाले कई परिवारों की जान खतरे में पड़ गई। अब लोगों का आरोप है कि दमकल विभाग की टीम देर से यहां पहुंची।
1: खिड़की के छज्जे पर लटका ये उस आम आदमी का परिवार है जिसे जिम्मेदार सरकारी विभाग अक्सर मुसीबत के आगे अकेला छोड़ देता है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर की हैं, जहां पति पत्नी और एक मासूम बेटी की चुनौती मौत के चंगुल से खुद को बचाने की है। जिंदा रहने के लिए खुद को बचाने की कोशिश कर रहा दमकल विभाग की टीम नदारद, इसीलिए पड़ोसी रस्सी फेंक रहे तो कोई सीढ़ी लगाने की कोशिश कर रहा। वजह बिल्डिंग में आग लगी है, घर के अंदर धुआं भरा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में इलेक्ट्रिक शोरूम में लगी आग एक बार फिर सुरक्षा के सिस्टम पर सवाल उठाती। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड की तस्वीरें अभी धुंधली भी नहीं हुई। इंदौर के इस अग्निकांड ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। हालांकि बस गनीमत की बात यह है कि यहां किसी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ।
4: पहली बार उठे जैसे हमने धुआं देखा और इसके अलावा हमने कुछ नहीं देखा। मतलब बच्ची और हमको सबको साथ में लेके बाउंड्री के बाहर इधर बालकनी के यहाँ पर पहुंच गए, खड़े रहे दीवार के साइड से जो पाइपलाइन इसको पकड़ के। मतलब फिर लोगों ने हमको देखा कि ये लोग भी ऊपर हैं, मतलब फंसे हुए हैं।
5: बहुत दूर धुआं हो रहा था, घबराहट हो रही थी, सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी, तो हम इधर से कूद के और दूसरी बिल्डिंग पे गए तो उधर से लोगों ने हमको निकाला, बच्ची को भी निकाला, हमको रस्सी बांध के कमर में सीढ़ी से निकाला।
1: ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के शोरूम में जब आग लगी तब उसकी ऊपर की मंजिल पर रहने वाले लोग सो रहे। बताया जा रहा है कि शोरूम के बाहर कुछ एक फोर व्हीलर गाड़ी को चार्जिंग पर लगाया गया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की संभावित वजह माना जा रहा है।
6: इस शोरूम के ऊपर जो फ्लैट है तकरीबन यहाँ पर 20 से 25 परिवार यहाँ रहते हैं इस बिल्डिंग के ऊपर, तो जब इसका धुआं ऊपर गया तो उन लोगों को निकलने में बड़ी परेशानी आ रही थी, तो जो पड़ोसी है इस पास की बिल्डिंग के जो लोग है उन्होंने सीढ़ियां लगा के रेस्टोरेंट को वहां से निकाला। लेकिन बहुत देर बाद जो है फायर ब्रिगेड आई यहाँ पर, क्योंकि जो रहवासी है क्षेत्रीय उन्होंने काफी मदद की और उन्होंने रेस्क्यू करके बाकी लोगों को निकाला।
1: गर्मियों में आग लगने की घटनाएं बढ़ती। दिल्ली में मंगलवार को एक होटल में आग लगने की घटना पूरे देश को दहला दी। दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर होटल टूरिस्ट स्टे में लगी आग में कुल 21 लोगों की जान गई, जिसमें 11 विदेशी थे। ऐसा नहीं कि दिल्ली या देश में इस तरह की पहली घटना। दिल्ली हो या फिर इंदौर, हर घटना सरकारी विभागों को बार बार खबरदार करती है, लेकिन हर हादसे के बाद जैसे ही मामला शांत होता है संबंधित विभाग ढीले पड़ जाते हैं और आम आदमी सरकारी अफसरों की लापरवाही का शिकार होने लगता है।
3: और अब आपको पटना के होटलों का हाल दिखाते हैं, जहां रेलवे स्टेशन के बाद बने कई होटल्स में सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी हैं।

0: सुरक्षा व्यवस्था की पड़ताल के लिए आज तक की टीम जब बिहार की राजधानी पटना के रेलवे स्टेशन के बेहद करीब फ्रेजर रोड इलाके में पहुंची, तो सबसे पहले यहां हैरान करने वाली तस्वीर दिखी। पूरी गली के दोनों ओर कतार से होटल बने हुए हैं और करीब करीब हर होटल के नीचे रेस्टोरेंट या भोजनालय चल रहे हैं। पूरी गली में बिजली की तारों का जाल बिछा हुआ है जो कभी भी हादसे की वजह बन सकता है।
1: इस वक्त हम पटना के फ्रेजर रोड इलाके में हैं और ये होटल गली है, स्टेशन का करीब का इलाका, और यहाँ पर तमाम छोटे छोटे होटल्स चलते हैं, नीचे रेस्टोरेंट चलते हैं। हर जगह फायर सेफ्टी को लेकर के क्या इंतजाम है ये जानने और समझने की हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। और देखिए, ये रेस्टोरेंट चल रहे हैं यहाँ पे, ऊपर में होटल्स हैं और ऊपर तक आपकी नज़र जहाँ जाती है तो यहाँ पर तमाम एसी और जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं वो यहाँ पे हैं।
0: पटना के फ्रेजर रोड के होटलों की पड़ताल के दौरान ये बात भी सामने आई कि यहाँ कई होटल काफी पुरानी बिल्डिंग में चल रहे हैं। इन होटलों में फायर सिलेंडर तो लगाया गया है लेकिन ये इंतजाम इतने पुख्ता नहीं कि किसी बड़े हादसे में लोगों की सुरक्षा की गारंटी बन सके। आज तक संवाददाता शशि भूषण ने पूरी पड़ताल के दौरान कई होटलों का मुआयना किया। कई होटलों में फायर सिलेंडर तो लगे मिले लेकिन वो पुराने हो चुके थे, यानी आग लगने पर किसी भी काम के नहीं रहे।
1: पर हम अपने सहयोगी नदीम से कहेंगे थोड़ा दिखाएं इसको। ये 2025 से 2026, 12 मई 2026 तक इसकी वैलिडिटी थी, जो वैलिडिटी भी अब खत्म हो गई है।
0: हालांकि कुछ होटलों में सुरक्षा के इंतजाम बेहद पुख्ता दिखे, फायर सेफ्टी के मानकों का पूरी तरह पालन किया गया था।
1: पटना के फ्रेजर रोड स्थित होटल गली में जहां कई होटल्स के अंदर फायर सेफ्टी के नाम पे खाना पूर्ति है, तो कई होटल्स ऐसे भी हैं जहां पर पूरा फायर फाइटिंग का सिस्टम, फायर सेफ्टी का इंतजाम जो है वो नजर आता है। इस वक्त हम पटना के जिस श्री विनायक होटल में हैं, यहां देखिए फायर फाइटिंग सिस्टम लगा हुआ। कुछ होटल्स में जहां खाना पूर्ति है वहां लक्ष्मण राय जैसे लोग भी हैं जो होटल संचालन में जुड़े हुए हैं और कई वर्षों से काम कर रहे हैं, और एक इन्होंने सीख ली है। पटना में भी घटना हुई थी होटल में आगलगी की, उसके बाद इन्होंने अपने पूरे होटल में फायर सेफ्टी सिस्टम को नए सिरे से इंस्टॉल करवाया है।
0: पड़ताल के दौरान ये बात भी सामने आई कि हाल में फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट ने इन होटलों में लगे सुरक्षा उपकरणों की पड़ताल भी की थी और जहां कमियां पाई गईं उन्हें दुरुस्त कराने का निर्देश भी दिया, लेकिन अब तक कई होटलों ने इसे अनदेखा कर रखा है जो कोई हादसा होने पर जानलेवा बन सकते हैं। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
2: नासिक TCS धर्मांतरण केस में लगातार खुलासे हो रहे और इस केस में चार्जशीट से बड़ा खुलासा हुआ। पीड़ित महिला को इस्लाम कबूलने के लिए पाकिस्तानी मौलाना तारिक जमील और जाकिर नाइक, जो भगोड़ा भी है, उसके वीडियो दिखाए जाते थे। साथ ही उनसे कहा जाता था कि वो भगवान के भजन ना सुने और ना ही मंदिर जाया करें। चार्जशीट में दावा किया गया है कि विवाहित आरोपी दानिश शेख ने शादी का वादा किया और पीड़ित का यौन शोषण बार बार किया।
3: नासिक TCS यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण की कोशिश के मामले में जो पहली चार्जशीट फाइल हुई, देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन का जो केस था उसमें चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पुलिस की SIT ने फाइल की थी। ये चार्जशीट निदा खान, दानिश शेख, तौसिफ अत्तर और AIMIM के छत्रपति संभाजी नगर के कॉरपोरेटर मतीन पटेल के खिलाफ फाइल हुई। आपको बता दें कि चार्जशीट के मुताबिक पीड़िता को इस्लामिक धर्म के रीति रिवाज पालन करने के लिए डराया धमकाया जाता था। उससे पाकिस्तानी उपदेशक तारिक जमील, इसरार अहमद और जाकिर नाइक के वीडियो भेजे जाते थे। ये वीडियो उसे बार बार भेजे गए। उसे ये कहा गया कि जो भी इस्लामिक रीति रिवाज हैं, अगर वो उनका पालन नहीं करती है तो उसके परिवार को नुकसान हो सकता है, उसका तनाव बढ़ेगा और उसका परिवार मुश्किल में आ जाएगा। इसके अलावा उसे ये भी कहा गया कि उसे तस्बीह पढ़नी होगी, उसे कलमा पढ़ना सिखाया गया। निदा खान अपने घर ले जाकर पीड़िता को नकाब पहनना सिखाती थी, हिजाब पहनना सिखाती थी, बुर्का कैसे पहनना वो सिखाती थी, नमाज कैसे अदा करनी है वो उसे सिखाती थी। और बार बार पीड़िता से यही कहा जाता था कि अगर वो इस्लामिक रीति रिवाज का पालन नहीं करेगी तो उसका परिवार मुश्किल में आ जाएगा, उसे जन्नत जहन्नुम कुर्बानी और जमजम पानी के बारे में अन्य धारणाओं के बारे में बताया जाता था। 106 गवाहों के बयानात लिए गए हैं और आपको बता दें कि मतीन पटेल जो हैं, जो एआईएमआईएम के कॉर्पोरेटर हैं, जिन्होंने निदा खान को शह दिया था जब वो फरार थी, उनके खिलाफ भी इस चार्जशीट में ये कहा गया है कि जब पुलिस ने उन्हें कॉन्टेक्ट किया कि आप निदा खान को शह दे रहे थे, उनसे पूछताछ की गई, तो उन्होंने अपने वरिष्ठ नेता इम्तियाज जलील का नाम लिया और कहा कि मुझे इम्तियाज जलील जी से पूछकर बताना पड़ेगा। कैमरा पर्सन अजय के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।
2: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
6: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
4: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

आज तक के साथ मंच पर पुतिन समेत दुनिया के बड़े दिग्गज, रूसी राष्ट्रपति ने की भारत की तारीफ, बताया प्रमुख साझेदार, आईटी सेक्टर के अग्रणी देशों में शामिल है इंडिया। सूरत में पीएम मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा अराजकता फैलाकर अवसर तलाश रही है कांग्रेस, देश को नीचे दिखाने में जुटे हैं निराशावादी। समुद्र मंथन मिशन में भारत को बड़ी कामयाबी, गहरे समुद्र में ऑयल इंडिया को मिली प्राकृतिक गैस, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने किया ऐलान। अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार का बड़ा एक्शन, अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर, कुछ इलाकों में सीलिंग, सीएम रेखा की बैठक में दोषी अफसरों पर सख्ती के आदेश। बागी नेता ऋतृत को नेता विपक्ष बनाए जाने के खिलाफ सोमवार को हाईकोर्ट का रुख करेंगी ममता, पूर्व सीएम की बैठक में पहुंचे सिर्फ 3 लोकसभा सांसद।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे ज्योतिष में प्रयोग किए जाने वाले सबसे भयंकर और सबसे ताकतवर रत्न के बारे में, जिसका नाम है नीलम। नीलम रत्न की क्या विशेषताएं हैं, नीलम रत्न का प्रभाव क्या है और नीलम धारण करने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 6 जून 2026 दिन शनिवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, प्रातः 6:03 तक चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, शाम के 7:03 तक राहु काल का समय, प्रातः 9 से 10:30 तक पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं नीलम रत्न के बारे में। नीलम रत्न को ज्योतिष में सबसे विशेष रत्न माना जाता है। तो नीलम रत्न क्या है, इसकी विशेषता क्या है? देखिए, नीलम शनि का मुख्य रत्न है और मूलतः वायु तत्व को नियंत्रित करता है। इसका रंग सामान्यतः नीला होता है। वैसे नीलम सफेद रंग के भी आपको मिलेंगे, लेकिन इसका रंग सामान्यतः नीला होने की वजह से इसको नीलम कहा जाता है। हालांकि अन्य रंगों के नीलम भी मिलते हैं। नीलम कुरुंदम समूह का रत्न है और माणिक्य के साथ आम तौर पर पाया जाता है। शनि से लाभ लेने के लिए और शनि को संतुलित करने के लिए नीलम धारण किया जाता है, लेकिन जैसे बाकी रत्नों को धारण करते हैं उसमें और नीलम में अंतर है। नीलम को धारण करने में बड़ी सावधानियां रखनी चाहिए। बिना ठीक ठीक जांच के और बिना ठीक ठीक सलाह के नीलम को धारण करना खतरनाक होता है। अगर आप बिना सोचे समझे या गलत सलाह से नीलम पहनते हैं तो आपका जीवन छिन्न भिन्न हो सकता है। जीवन में भयंकर मुश्किलें और आपदाएं आ सकती हैं। नीलम पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले,
और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, करियर की समस्या हल होगी, स्वास्थ्य में सुधार होता रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृषभ राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। मिथुन राशि, व्यर्थ के तनाव से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब जैसा आपको बताया कि नीलम एक खतरनाक और एक तेज रत्न है, तो नीलम धारण करने के नियम क्या हैं और नीलम धारण करने की सावधानियां क्या हैं? देखिए, बिना कुंडली के तत्वों को जाने हुए, बिना कुंडली के शनि को जाने हुए नीलम मत पहनिए। नीलम पहनने के पहले नीलम की जांच करिए कि वो कितना बेहतर है, इसके बाद स्वयं की जांच करिए। जब आप नीलम धारण करने जा रहे हैं तो प्रयास करिए कि इसको लोहे या चांदी में धारण करें तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत सारे लोग नीलम को सोने में भी पहनते हैं, लेकिन सोने में नीलम धारण करना बहुत अनुकूल नहीं होता। नीलम को गंगा जल से धोकर शुद्ध करना चाहिए और शनिवार की मध्य रात्रि में अगर नीलम पहने तो ज्यादा अच्छा होगा। नीलम का ज्यादा फायदा लेना है तो नीलम को बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में पहनिए और नीलम के साथ जल तत्व का रत्न जैसे ओपल या हीरा जरूर धारण करिए। चौकोर नीलम अगर मिले तो चौकोर नीलम पहनना ज्यादा अच्छा और शुभ होता है। नीलम को धारण करने के पहले इसको भगवान शिव को और शनिदेव को अर्पित करें, उसके बाद नीलम पहने तो कम से कम नीलम से आपको नुकसान नहीं होगा।
नीलम पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, कोई बड़ी समस्या हल होगी, धन का लाभ होगा, चोट चपेट से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, रुका हुआ काम बन जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न कोमल ने हमें लिखा है और कोमल हमें गुड़गांव से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 जुलाई सन 1998, रात में 9:45, जन्म स्थान है गुड़गांव। ये कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरे विवाह होने का क्या समय है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। कोमल, आपकी कुंडली के हिसाब से विवाह होने में अभी वक्त है। आपकी शादी 2028 में होगी। 2028 के शुरुआती समय में आपके विवाह का योग होने की संभावना बन रही है। जब भी विवाह करिए, कुंडली मिला करके सोच समझ के निर्णय लीजिएगा, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने, रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके विवाह का मामला और आपके परिवार का मामला बेहतर रहेगा। देखिए, बाकी रत्नों के साथ ये बात उतनी लागू नहीं होती, लेकिन नीलम के साथ एक बात जरूर है कि नीलम पहनने के पहले नीलम की जांच कर लेनी चाहिए। कैसे जांच करेंगे? नीलम को नीले कपड़े में रखकर ताबीज की तरह सिल लीजिए और इस तरह सिलिएगा
कि थोड़ा सा कपड़ा काट दीजिएगा, बीच में जरा सा छेद कर दीजिएगा कि नीलम वहां से आपके शरीर को स्पर्श कर सके। इसको शनिवार की शाम को अपनी दाहिनी बाजू में, दाहिनी भुजा में बांध लीजिएगा और सो जाइएगा। अगर नींद आने में कोई समस्या हो या नींद आने में कोई उलझन लगे तो समझिए कि ये नीलम आपके लिए अनुकूल नहीं है। नीलम चेंज करके दूसरा नीलम ले आइए। अगर सब कुछ सामान्य रहे, कोई दिक्कत महसूस ना हो, आप आराम से सोएं, आराम से जगें, तो ये नीलम आपके लिए अनुकूल होगा। तो जब आपने ये जांच कर ली कि कौन सा नीलम आपके लिए अनुकूल है, तो उसको अंगूठी बनवाकर या लॉकेट बनवाकर आप शनिवार की रात को धारण कर सकते हैं। नीलम पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, करियर में समस्या हो सकती है, धन की हानि से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। वृश्चिक राशि,

आज कोई निर्णय मत लीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ काम बन जाएगा, लाभकारी यात्रा इस समय हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब ये जानते हैं कि सामान्यतः कौन सा व्यक्ति नीलम पहन सकता है और किनके लिए नीलम पहनना अच्छा नहीं है, अशुभ है। वृषभ लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न और मकर लग्न वालों के लिए सामान्यतः नीलम बहुत ज्यादा शुभ होता है। मेष लग्न और मिथुन लग्न के लोग विशेष दशाओं में नीलम पहन सकते हैं। कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु और मीन लग्न में नीलम कदापि धारण नहीं करना चाहिए। बिना कुंडली दिखाए केवल शौक में आकर बिना जांच पड़ताल के नीलम मत पहनिए। लग्न के अलावा आपकी जरूरत के हिसाब से भी आपको नीलम पहनाया जा सकता है। जैसे अगर आपको न्यूरो प्रॉब्लम है, माइग्रेन की दिक्कत है, स्पाइनल कॉर्ड की या नसों की समस्या है तो वहां भी नीलम पहनने से फायदा हो जाता है। अगर आप लोहा, पेट्रोल या शराब इनका व्यापार करते हैं तो आप सोच विचार करके नीलम पहन सकते हैं। अगर खाद्य पदार्थ, सोना या धर्म से संबंध रखते हैं तो बहुत सोच समझ करके, बहुत विचार करके नीलम पहनिएगा। नीलम पहनने की मुख्य बात यह है कि अगर आपको स्वास्थ्य में जरूरत है या आपकी कुंडली में शनि अच्छा है लेकिन आपको अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, तब ऐसी स्थिति में आप सोच समझ करके नीलम पहन सकते हैं और शनि देव की कृपा पा सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। मकर राशि, सेहत की स्थिति बेहतर होगी, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, अनावश्यक तनाव मत पालिए, वाद विवाद से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके
दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के।

योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे, रिश्तों में समस्या हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। सामान्यतः नीलम धारण करने में ज्यादा सावधानी रखी जाती है, बाकी रत्नों के साथ ऐसी बात नहीं है। ऐसा क्यों? देखिए, शनि के रत्न नीलम का जो रंग है वो हमारे शरीर के चक्रों में नहीं मिलता। बाकी ग्रहों के रत्नों का जो रंग है वो आपको अपनी शरीर के मन के चक्रों में मिलेगा और उसी चक्रों के आधार पर रत्न काम करते हैं। अगर आप नीलम पहनते हैं तो उसको आपके शरीर के साथ एडजस्ट होने में टाइम लगता है, जल्दी एडजस्ट नहीं होता। इसीलिए नीलम पहनने में सावधानी रखी जाती है कि अगर नीलम एडजस्ट ना करे तो किसी तरह की मुश्किल या मुसीबत जीवन में ना आ जाए। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। नंबर 2, विवाह तय हो सकता है। नंबर 3, धन लाभ के योग हैं। नंबर 4, स्वास्थ्य की समस्याएं दूर होंगी। नंबर 5, संपत्ति का लाभ हो सकता है। नंबर 6, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 7, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 8, स्थान परिवर्तन हो सकता है। नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब जान लेते हैं क्या है आज भाग्य पहर का शुभ समय और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में शनि मंत्र का जप करिएगा। आपके करियर में जो बाधा चली आ रही है वो बाधा दूर हो जाएगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान

अगला प्रश्न बलराज जी ने हमें लिखा है और बलराज जी हमें अमृतसर से मेल लिखते हैं, अपनी बेटी के बारे में जानना चाहते हैं। इनकी बेटी की जन्म तारीख है 29 दिसंबर सन 2000, जन्म का समय सुबह के 6:09, जन्म स्थान है अमृतसर। बलराज जी कह रहे हैं कि मेरी बेटी आगे विदेश में पढ़ने जाना चाहती है, क्या उसे विदेश में पढ़ाई के लिए भेजना उचित होगा? बलराज जी, आपकी बेटी की कुंडली के हिसाब से साल 2027 के अगस्त तक अभी विदेश भेजने का उचित समय नहीं है। दुनिया भर में अशांति भी दिख रही है और आपके बेटी की दशा भी ताकतवर नहीं है, तो मैं यही कहूंगा कि इस समय के हिसाब से आप उनको इंडिया में रहने दें, अगले साल उनके विदेश का विचार कर सकते हैं। इनके जिद्दी स्वभाव के लिए, बेहतर वाणी के लिए इनको एक ओपल बनवा के पहनाइए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल इनको पहनाएं और आप इनके पिता हैं, इनके लिए रोज सुबह 108 बार ओम आदित्याय नमः का जप करें, इनको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई बड़ी मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो लौंग खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, घी खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, अपने साथ 2 लौंग रखकर ले जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए, इलाज के लिए, तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो नीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा।

शुभ होगा। मकर राशि वालों के लिए हर कार्य में सफल होंगे, चिंताएं समाप्त तो होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा सिंह राशि वालों के लिए, धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। आज सावधान रहना होगा कुंभ राशि वालों को, बेवजह के तनाव और बेवजह की चिंता की नौबत आ सकती है। आइए अब जान लेते हैं आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। इस समय अधिक मास चल रहा है तो किसी भी नए काम की शुरुआत मत करिएगा। आज किसी निर्धन व्यक्ति को जल और फल का दान करें तो काफी शुभ रहेगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

आज तक ने फिर रचा इतिहास। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक फोरम कार्यक्रम में इंडिया टुडे ग्रुप की फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन ने निभाई एंकर की भूमिका। राष्ट्रपति पुतिन भी मंच पर। कार्यक्रम में पुतिन ने भारत को बताया रूस का प्रमुख साझेदार। कहा सॉफ्टवेयर में भारत की बड़ी हिस्सेदारी। ब्रिक्स ने G7 को पीछे छोड़ा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप को दिया मैसेज का भारत ने कभी भी अपनी सीमाओं के बाहर से मिले आदेशों का पालन नहीं किया है। भारत को लेकर पुतिन ने कहा नई दिल्ली ने बाहर से मिले आदेशों को कभी तवज्जो नहीं दी। उनका इशारा भारत पर अमेरिकी दबाव की ओर था। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने SPY-26 में इस बात पर जोर दिया कि संप्रभुता और संप्रभु फैसले लेने के अधिकार पर कभी सवाल नहीं उठाया जा सकता। विपक्ष पर पीएम मोदी का ताबड़तोड़ प्रहार। सूरत के कार्यक्रम में कहा आत्मनिर्भर अभियान का मजाक उड़ाते हैं देश के कुछ निराशावादी लोग। पीएम मोदी ने वैश्विक संकट का किया जिक्र। कहा ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भरता जरूरी। पिछले 12 सालों से देश ने जो क्षमता बढ़ाई है वो बेहद अहम। कांग्रेस पर पढ़कर पीएम मोदी का बयान। कहा देश में अराजकता फैला रही है कांग्रेस। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रखा। दमन को पीएम मोदी की बड़ी सौगात। 2970 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। पीएम मोदी ने दमन में किया नमो एयरपोर्ट टर्मिनल और नमो अस्पताल का उद्घाटन। कहा विकास के नए दौर की हुई शुरुआत। बलरामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 294 करोड़ रुपए की 75 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। जनसभा को संबोधित किया। यूपी के बलरामपुर में सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा मिट्टी में मिल गए माफिया। बोले बेटी से छेड़छाड़ करने वाले बख्शेंगे नहीं। बलरामपुर में SP के गुंडे माफिया गरीबों का राशन खा जाते थे। आज यूपी दंगा मुक्त और विकास की राह पर है ऐसा सीएम ने कहा। श्रावस्ती के गुलरा स्थित कैन नाला को मिला नया दर्जा। मुख्यमंत्री योगी ने बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित की। मैनपुरी में आज शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के पैर छूटने की डिंपल यादव। शंकराचार्य ने सीएम योगी पर किया जमकर हमला। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा यूपी में सत्ता में आना अब अखिलेश यादव के बस की बात नहीं। अलवर में पुलिस कस्टडी के बीच धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार आरोपी को पूर्व विधायक ज्ञानदीप आहूजा ने थप्पड़ जड़ा। घटना का वीडियो वायरल। दिल्ली में फ्लोरिश इन गेस्ट हाउस को एमसीडी ने किया सील। 3 जून को इसी होटल में अग्निकांड में 21 लोगों की मौत हुई थी। CBSE ने दिल्ली पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। कहा 12वीं के रिजल्ट के बाद हमारे पोर्टल पर हुए हमले लेकिन नहीं लीक हुआ कोई डाटा। ये परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्रालय का बयान आया है। परीक्षा परिणाम और अंक पूरी तरह सुरक्षित है। डेटा में सेंध की खबरों को गलत बताया। बागी नेता रजब्रत बनर्जी को बंगाल विधानसभा का नेता विपक्ष बनाए जाने के खिलाफ सोमवार को हाईकोर्ट का रुख करेंगे ममता। स्पीकर के फैसले को चुनौती देंगे। बैठक में ममता ने TMC की सभी कमेटियों का पुनर्गठन किया। सांसद अभिषेक बनर्जी बने रहेंगे महासचिव। डेरेक ओब्रायन और डोला सेन संयुक्त सचिव। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की तस्वीरें साझा की। NIA ने पूर्व TMC विधायक शौकत को किया गिरफ्तार। कोलकाता के पास भागने की कोशिश के दौरान दबोचा। बंगाल के बैरकपुर शहर में युवा तृणमूल कांग्रेस कार्यालय पर बीजेपी ने किया कब्जा जमकर तोड़फोड़। तमिलनाडु में बीजेपी को झटके पर झटका। नमलाई के बाद प्रदेश पार्टी उपाध्यक्ष के नागराजन ने भी इस्तीफा दिया। बीजेपी राज्य सचिव सुमति वेंकटेश ने भी पार्टी छोड़ी। आज जून को इंडिया गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेगी TMC। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी होंगे शामिल। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत की विपक्षी दलों से अपील एकजुट हो सभी पार्टियां। कांग्रेस अलग हुए दल फिर आए साथ। मालवीय अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार का बड़ा एक्शन। हौजरानी और घिटौरनी इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर। दिल्ली के कई इलाकों में सीलिंग की कार्रवाई। वरिष्ठ अफसरों के साथ सीएम रेखा की बैठक में दोषी अफसरों पर सख्ती के आदेश। दुनिया में उथल पुथल के बीच भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर। वित्त वर्ष 2026 में GDP विकास दर अनुमान से ज्यादा 7.7% की वृद्धि। देश के GDP विकास दर में बढ़ोतरी पर पीएम मोदी का पोस्ट। लिखा भारत की विकास रफ्तार मजबूत है युवाओं के लिए अवसर बढ़ाने पर जोर। GDP विकास दर में इजाफे के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा। कहा ताजा आंकड़ा बता रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत। राहुल ने बोला था आ रही आर्थिक सुनामी। अमेरिका से वाणिज्य समझौते पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा अगले महीने तक लागू हो सकता है पहला चरण। भारत आ सकता है अमेरिकी डेलीगेशन। अंडमान निकोबार में INS बाज को लेकर राहुल गांधी का केंद्र पर हमला। कहा मोदी सरकार ने नौसेना की अनुसुनी की बात नहीं किया INS बाज का विस्तार।
महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार का मराठा समाज के लिए बड़ा फैसला, ओबीसी की तरह शिक्षण संस्थाओं में मिलेंगी सुविधाओं और छूट। फडणवीस ने मराठा समाज के लिए कुल 8 योजनाएं शुरू करने का फैसला किया, छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना शामिल। दिल्ली के दौरे पर पंजाब बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से की मुलाकात। लखनऊ में एक पेड़ मां के नाम अभियान के वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल, सीएम योगी कहा आज का दिन बेहद खास।

गैस मिली है, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने इसका ऐलान किया। राजस्थान में कोटा के बाद फिर उठे सरकारी अस्पताल के दावों के सवाल, अस्पताल में ड्रिप चढ़ते ही कांपे मरीज, दो मरीजों को हुआ रिएक्शन। रायपुर में राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, डॉक्टर चरणदास महंत का पुतला जलाया, महाराज राम भद्राचार्य पर टिप्पणी को लेकर नाराजगी। गढ़चिरौली में भूमि अधिग्रहण के विरोध में कांग्रेस का किसानों का अनिश्चितकालीन आंदोलन, औद्योगिक परियोजनाओं पर विवाद बढ़ गया। कांगड़ा में भूकंप चली धरती, घरों से बाहर निकले लोग, धर्मशाला रहा केंद्र बिंदु, 4.3 आकी गई भूकंप की तीव्रता। दिल्ली के संगठित कोबरा गैंग के ठिकाने पर देहरादून पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मास्टरमाइंड जॉन उर्फ जोसेफ उर्फ मॉरिस उर्फ एंडी ब्रदर गिरफ्तार। देहरादून एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के नेतृत्व में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का विशेष अभियान, ऑपरेशन प्रहार, शहर की बड़ी पार्टियों और शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्र थे कोबरा गैंग के टारगेट। गाजियाबाद में होटल से युवती का शव बरामद हुआ, कमरे में फंदे से लटका मिला शव, हिरासत में क्यूबा। ग्रेटर नोएडा में रैपिडो चालक निकला चोर गिरोह का मुखबिर, रेकी कर बंद मकानों को बनाते थे निशाना, पुलिस मुठभेड़ में 4 गिरफ्तार। पुणे में मेड इन पाकिस्तान लिखी चादर की बिक्री से हड़कंप, वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में पुलिस, 3 की गिरफ्तारी। बिजनौर में पति ने पत्नी की गर्दन पर चाकू से किया जानलेवा हमला, जंगल में घटना को अंजाम दिया। शिवपुरी में एक तरफा प्यार में सगी युवक ने नाबालिग को पहले कुल्हाड़ी मारी फिर गले में रस्सी बांध कर लटकाया। भावनगर में कार में अचानक भीषण आग लगी, बाल बाल बची कार वाले की जान। इंदौर में ईवी शोरूम में आग लगी, निवासियों को सीढ़ी और रस्सी से रेस्क्यू किया। लखनऊ एयरपोर्ट पर करीब 10 करोड़ की ड्रग्स बरामद, बैंकॉक से मस्कट होते हुए लखनऊ पहुंचे यात्री से 13 पैकेट ड्रग्स बरामद हुई। समस्तीपुर में मऊ बाजार में दुकान विवाद पर मोबाइल पथराव और हवाई फायरिंग से अफरा तफरी, दुकान खाली कराने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, पिस्टल लहराकर कई राउंड फायर। समस्तीपुर में पथराव और फायरिंग से दहला इलाका, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। बाराबंकी में बुलडोजर एक्शन, प्रशासन ने अवैध 36 मकान गिराए। फरीदकोट में एक प्लास्टिक के गोदाम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पंजाब के पटियाला से पावरकॉम हेड ऑफिस के सामने प्रदर्शन, आईटीआई पास बेरोजगार नौजवानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। डिग्रीधारी बेरोजगार युवा कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे, इनको उठाने के लिए प्रशासन की मदद से पहले बातचीत की कोशिश की लेकिन वो बेनतीजा रही। कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने युवाओं से मुलाकात की, कहा सरकार युवाओं की आवाज दबाने का काम कर रही है। दिल्ली के पुष्प विहार में पुलिस मुठभेड़, रंगदारी के आरोपियों पर कार्रवाई, 2 घायल, 3 बदमाश गिरफ्तार। आलमगढ़ में नाबालिग बच्चे के साथ बुरी तरह मारपीट, पुलिस ने 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। कानपुर में कोचिंग संचालक ने 18 साल पुराने दोस्त की हत्या की, पुलिस कमिश्नर ने सीसीटीवी में बुरका पहने शख्स का खुलासा किया। गोरखपुर में पिता ने 3 बच्चों को दही में जहर दिया, 2 की मौत, 1 की जान बच गई। फिरोजाबाद में सड़क पर कार का दरवाजा खोलना पड़ा जानलेवा, बाइक सवार ससुर की मौत, दामाद गंभीर रूप से घायल। मनाली में विदेशी महिला पर्यटक से अभद्रता का वीडियो वायरल, एसटीएम ने जांच के आदेश दिए। बक्सर के गाड़ी गुमटी रेलवे क्रॉसिंग पर 26.40 करोड़ रुपए की लागत से बना ओवरब्रिज का पिलर क्षतिग्रस्त हुआ, उद्घाटन के 96 घंटे तक भी नहीं टिक सका यह पुल। पटना में गिरफ्तार हो सकता है कोचिंग टीचर फैजल खान, पटना में बीएनएस की धारा 109 के साथ साथ आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज। फैजल खान के 2 गिरफ्तार गार्ड्स का पुलिस पूछताछ में खुलासा, उनके कहने पर ही चलाई थी गोली, फैजल खान ने कहा था भीड़ पर फायर करो, जो होगा मैं समझ लूंगा। दिल्ली में गुरुवार की भीषण आंधी के बाद से ही तापमान में गिरावट बरकरार, शुक्रवार को अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री दर्ज, 1-2 दिन तक राहत का अनुमान। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में बारिश और ऊंचे पहाड़ों और बर्फबारी से गिरा तापमान, कड़ाके की ठंड के बावजूद मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। केरलम के एर्नाकुलम में मानसून की भारी बारिश, शहर के लोगों को जगह जगह परेशानी। केदारनाथ में बारिश और ठंड से में भी भक्तों की आस्था भारी, बारिश में भी दर्शनों के लिए मंदिर में उमड़ रहे बाबा केदार के भक्त। केदारनाथ में पल पल बदल रहा मौसम, दर्शन करने वाले यात्रियों का आंकड़ा 11 लाख के पार हुआ।

0: में लगातार मौसम खराब, प्रशासन चौकस, रोज तकरीबन 20,000 से ज्यादा भक्त कर रहे बाबा केदार के दर्शन। बारिश और ठंडी के बीच यात्रियों की सुविधाओं को बरकरार रखने में लगे हैं सरकारी कर्मचारी, गर्मी की छुट्टियों की वजह से बढ़ रही है भीड़। जम्मू में क्षेत्रीय मौसम विभाग का उद्घाटन, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में सटीक मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन में मिलेगी मदद। काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े की फिल्म द इंडिया स्टोरी का नया टीजर रिलीज, खेती में जहरीले कीटनाशकों के दुरुपयोग जैसे गंभीर मुद्दों पर बनी फिल्म। एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौटी लोकप्रिय एनिमेटेड फ्रेंचाइजी आइस एज, नई फिल्म आइस एज बॉइलिंग पॉइंट का टीजर और पोस्टर जारी हुआ। फिल्म भारत बागी बजाता को प्रमोट करने में जुटी कंगना, देश में बड़े शहरों में जाकर अलग अलग क्षेत्रों में जुड़े अनसंग हीरोज को सम्मानित करने का अभियान शुरू कर। एक्टर जैकी श्रॉफ की वेडिंग एनिवर्सरी पर पत्नी आयशा श्रॉफ ने शेयर की अनसीन फोटोज, लिखा मेरी जिंदगी के सबसे बड़े सहारे। श्रद्धा कपूर और करण जौहर के बाद एकता कपूर ने ज्वेलरी बिजनेस पर रखा कदम, लैब ग्रोन डायमंड ब्रांड एकता ज्वेलर्स के साथ जुड़ी। दुनिया में उथल पुथल के बीच भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर, वित्त वर्ष 2026 में जीडीपी विकास दर अनुमान से ज्यादा 7.7% की वृद्धि। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सभी 6 सदस्यों ने रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखने पर मोहर लगाई, एमपीसी ने पॉलिसी स्टांस को भी न्यूट्रल रखने का फैसला किया। इंडिगो ने हांगकांग शंघाई समेत 6 इंटरनेशनल रूट्स पर फ्लाइट्स को अस्थायी तौर पर बंद किया, बढ़ती लागत और कम मांग के चलते फैसला लिया गया है। हर घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बिक्री पर कंपनियों की अंडर रिकवरी बढ़कर करीब 700 रुपए पहुंची, पिछले महीने कंपनियों को एक सिलेंडर की बिक्री पर 650 रुपए का घाटा हो रहा था। देश के कई राज्यों में एटीएम में नकदी कम होने पर बैंकर्स एसोसिएशन को अलर्ट किया गया, डीबीटी पाने वाले ग्रामीणों और छोटे शहरों के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान, कहा ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर यूक्रेन से समझौते को तैयार है लेकिन यूक्रेन को भी कुछ शर्त माननी होगी। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रूस और यूक्रेन के बीच सीधी बातचीत पर समर्थन की कही बात, राष्ट्रपति मैक्रों का मानना है कि यूक्रेन और रूस मिलकर युद्ध विराम और शांति योजना बना सकते हैं। आईएईए की मदद से रूस और यूक्रेन में हुआ स्थानीय युद्ध विराम, सीज फायर से जैपोरिजिया परमाणु प्लांट में सुधरेगी बिजली सप्लाई, परमाणु प्लांट के मुख्य लाइन की होगी मरम्मत। यूक्रेनी शहर जैपोरिजिया में रूस का बड़ा हमला, गुरुवार रात हुए हमले में एक शख्स की मौत, 16 घायल, ड्रोन हमले में कई वाहनों नागरिक बुनियादी ढांचों को नुकसान। रोमानिया के काला सागर बंदरगाह शहर कॉन्स्टांटा में एक समुद्री ड्रोन में विस्फोट हुआ, रक्षा मंत्रालय के मुताबिक घटना के बाद पूरे इलाके को सील किया। सीज फायर के बावजूद दक्षिणी लेबनान में इसराइल का ताबड़तोड़ हवाई हमला जारी है, लेबनान के गांव कफार तैबनित के ऊपर काले धुएं का गुबार छा गया। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने ओमान के साथ संयुक्त रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के प्रबंधन की बात कही, कहा ईरान और ओमान मिलकर हॉर्मुज को चलाएंगे, पहले इस पर खाड़ी क्षेत्र के अन्य देशों से सलाह लेंगे। मॉन्टेनेग्रो के चिवेट में चल रहे यूरोपियन यूनियन पश्चिमी बालकन शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ के शीर्ष नेताओं ने मुलाकात की, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर यूरोपीय संघ के विस्तार की दिशा में रखा अहम प्रस्ताव। अमेरिकी सीनेट में ट्रंप की बड़ी जीत, सीनेट में सीमा सुरक्षा और इमिग्रेशन के लिए $70 बिलियन का भारी भरकम बजट पास हुआ। स्पेन के चेनरिफ में विमान हादसा चला, रनवे की बजाय पब्लिक रोड पर करानी पड़ी लाइट एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी लैंडिंग, बाल बाल बचे विमान के दोनों पायलट।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
4: Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.
5: Yes. President of the Russian Federation, Honorable Vladimir Putin. President of the Republic of Uzbekistan, Honorable Shavkat Mirziyoyev. The President of the United Republic of Tanzania, Honorable Samia Suluhu Hassan. Honorable Vice President of the People's Republic of China, Honorable Hamza.
6: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included.
7: Oh yeah.
6: So get your household up to speed. Switch to Cox internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
8: Catch up on what's hot with TikTok Radio, curated by Stingray Music, your destination for trending hits and must-see videos. Stay in the loop one viral moment at a time. TikTok Radio, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
9: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
10: आगे आगे,
11: अरे उधर
10: उधर,
11: करेक्ट करेक्ट।
12: मिल गया, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
13: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
14: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
15: लायन डेट नट बाइट्स।
16: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
17: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
18: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बाय एकदम सॉलिड।
19: In association with
20: cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
21: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
22: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
23: हिंट, बड़े आराम से।
24: विमल, बोलो जुबा केसरी।
25: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?
26: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

सुबह की चाय से लेकर रात के डिनर तक हमारी जिंदगी के हर हिस्से पर महंगाई का दबाव बढ़ता चला जा रहा है। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर महंगाई का एक ऐसा चौतरफा हमला हुआ है जिसने हर घर के बजट को बिगाड़ कर रख दिया है। दरअसल थोक महंगाई दर के 8% के पार पहुंचने से हर सामान की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। वहीं जिस तरह से रुपए के 100 के पार जाने से रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने $5 अरब का दाव लगाया है, उस डॉलर स्वैप नीलामी से बाजार में नकदी बढ़ने और महंगाई भड़कने का खतरा है। आने वाले दिनों में ये बोझ हमारी जेब पर ज्यादा भारी पड़ने जा रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर चल रहा तनाव सीधा हमारी रसोई और मेडिकल स्टोर तक पहुंच गया है। इसकी वजह होर्मुज, जल डमरू मध्य और खाड़ी क्षेत्र में जहाजों के रास्ते बंद होने से दवाओं का कच्चा माल यानी API का भारत नहीं पहुंच पाना है। इस सप्लाई चेन में आई रुकावट की वजह से आने वाले दिनों में हर घर की जरूरी दवाएं बेहद महंगी होने की कगार पर खड़ी हुई है। दवाओं का कच्चा माल समय पर ना मिलने से पैरासिटामोल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। बीमारियों से लड़ने वाली जरूरी एंटीबायोटिक्स दवाएं भी बहुत ज्यादा महंगी हो सकती हैं। वहीं कच्चे तेल के ऊंचे दाम ने FMCG कंपनियों की लॉजिस्टिक्स और पैकेजिंग का खर्च बढ़ा दिया है, जिससे रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले साबुन, तेल और राशन के पैकेट महंगे होने की आशंका फिर से बढ़ गई है। रसोई और सेहत के संकट के पीछे एक बड़ी वजह इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दामों में लगी आग भी है। भारत इस समय अपनी जरूरत का तेल ऊंची कीमतों पर खरीदने को मजबूर है। ऐसे में अप्रैल में भारत में क्रूड इंपोर्ट 4.3% घटने के बावजूद इसका बिल 50% तक बढ़ गया। हालांकि LNG का इंपोर्ट 30% घटने से इसके बिल में 1/4 की कमी आई है। तेल की इन बढ़ती कीमतों का असर ट्रांसपोर्टेशन पर भी देखने लगा है। ट्रांसपोर्टर्स ने माल भाड़े में 4% बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। डीजल की कीमतों को एडजस्ट करने के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट फैक्टर का जरिया निकाला गया है, जो सीधे आपकी हर जरूरत को महंगा कर देगा। साफ है कि आने वाले दिनों में महंगाई से राहत मिलना बेहद मुश्किल है, यानी जब तक तनाव खत्म नहीं होगा महंगाई का प्रहार लगातार तेज होता चला जाएगा। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
1: Accoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: अगले महीने संसद का मानसून सत्र आने वाला है और उससे पहले सरकार और विपक्ष दोनों अपने अपने मोर्चे तैयार कर रहे हैं।
1: दो दिन बाद इंडिया गठबंधन की बैठक, दूसरी तरफ सरकार फिर से संसद में डी लिमिटेशन बिल लेकर आने के संकेत दे रही है। ठीक दो साल पहले 5 जून को भी इंडिया गठबंधन के 21 दलों की बैठक हुई थी, तब सबने मिलकर बीजेपी को पटकनी देने के फॉर्मूले गढ़े, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने हरियाणा में कांग्रेस को हराया, महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी, शिवसेना यूबीटी, समाजवादी पार्टी सबको हराया, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस से हारी मगर दिल्ली में केजरीवाल को हराया, बिहार में आरजेडी को हराया, बंगाल में ममता को हराया, असम में पूरे इंडिया गठबंधन को हराया। और अब इस अविजित बीजेपी की काट क्या है, इसी का मंथन करने इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई। कांग्रेस की ओर से 15 दलों को न्योता भेजा गया, लेकिन तमिलनाडु में दूध की जली डीएमके अब विपक्षी एकता की छाछ से भी परहेज कर रही है। कनिमोझी ने कांग्रेस से ऐसा नाता तोड़ा कि संसद में अलग बैठने की बेंच तक तय करवा चुकी, दो टूक कह दिया कि 8 जून की बैठक में डीएमके नहीं जाएगी। अब कांग्रेस समझाने मनाने की कोशिश करती है। हालांकि डीएमके के एक प्रवक्ता अन्नादुराई ने कहा कि दिल्ली में देश के मुद्दों पर डीएमके सरकार के खिलाफ ही रहेगी। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के अंदर विचार हो रहा है कि डीएमके की जगह पीवीके को ही गठबंधन में ले लिया जाए। डीएमके कहती है कि विजय ने तो सोनिया से मुलाकात तक नहीं की थी, इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में क्या जाएंगे। अब देखना है कि 8 जून को राहुल और खड़गे के बुलावे पर कितने दल दिल्ली में एकजुट होते हैं। खबर है कि इस मीटिंग में नीट सीबीएसई पेपर लीक घोटाले से लेकर युद्ध में तेल गैस संकट से लेकर आर्थिक मंदी, महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। सरकार ने परिसीमन बिल का जिक्र छेड़ दिया है तो उस पर भी रणनीति बनेगी और टीएमसी के अंदरूनी झगड़े के बाद पैदा हुए हालात को लेकर भी चर्चा हो सकती है। खबर है कि इंडिया गठबंधन की ये बैठक ममता बनर्जी के कहने पर बुलाई जा रही है, क्योंकि ममता बनर्जी नतीजों के ठीक बाद कह चुकी कि अब वो आजाद पंछी है और पूरी तरह मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी एकजुटता पर काम करेंगे।
2: I am grateful to all my India team's leaders. Sonia ji rang up me, Rahul Gandhi rang up me, Arvind Kejriwal, Uddhav Thackeray, Akhilesh Yadav, Tejasvi, Hemant Soren Yadav, Jharkhand Chief Minister, and all the United India leadership. They are also together. We will bounce back.
0: पहले इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की हसरत के साथ कांग्रेस की मीटिंग से दूरी रखने वाली ममता बनर्जी इस बार खुद दिल्ली की बैठक में शामिल होने वाली है, क्योंकि अब मसला सिर्फ विपक्षी एकता का नहीं उनकी पार्टी की फूट का भी है और इसी बदले हुए राजनीतिक समीकरण का फायदा बीजेपी संसद में उठाने की कोशिश कर रही है और इसीलिए खबर कि परिसीमन बिल फिर से संसद में लाया जा रहा है, जिसमें संसद की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने की योजना रही है। जो कि संसद में नंबरों की बात की जाए तो लोकसभा में अलग अलग बैठने की व्यवस्था करने के बाद डीएमके के 22 सांसद बिल का समर्थन करेंगे, विरोध करेंगे या एब्सटेन करेंगे अभी साफ नहीं। टीएमसी के 28 सांसद जिसमें 20 सांसद नाराजी बताए जाते हैं। पिछली बार सदन में मौजूद 528 में से परिसीमन बिल के समर्थन में 298 के बनाम 230 वोट पड़े थे, 54 वोटों से बिल गिर गया था। इंडिया गठबंधन के दलों के हालात और बैकचनक हो रही बातचीत में आंकड़े पक्ष में आ जाए तो सरकार के लिए बिल पास कराना आसान हो सकता है। आज तक ब्यूरो।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

आज तक के साथ मंच पर पुतिन समेत दुनिया के चार बड़े दिग्गज। रूसी राष्ट्रपति ने भारत और पीएम मोदी की तारीफ की, कहा भारत हमेशा राष्ट्रहित के लिए काम करता है। आईटी सेक्टर के अग्रणी देशों में शामिल है इंडिया। सूरत से पीएम मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा अराजकता फैलाकर अफसर तलाश रही है कांग्रेस, देश को नीचे दिखाने में जुटे हैं निराशावादी नेता। लालू यादव और राबड़ी देवी ने वापस की सरकारी सुरक्षा, जेट प्लस सुरक्षा हटाने से नाराजगी के चलते लिया फैसला। कटौती के बाद सुरक्षा में लगाए गए थे बिहार पुलिस के जवान। फैजल खान को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है पटना पुलिस, कोचिंग के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। रात भर डटे रहे कई स्टूडेंट्स, हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज हुआ है केस। समुद्र मंथन मिशन में भारत को बड़ी कामयाबी, गहरे समुद्र में ऑयल इंडिया को मिली प्राकृतिक गैस, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने किया ऐलान।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। सुबह के 8 बज गए और बुलेटिन में बात करते हैं उन 8 खबरों की जो आज दिन भर की सुर्खियां रहेंगी, जिन खबरों के हर अपडेट पर सबकी नजर रहेगी। बुलेटिन में हम आपको बताएंगे आज तक को दिए सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किन किन मोर्चे पर भारत की तारीफ की। हम आपको यह भी बताएंगे कि 8 जून को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले पीएम मोदी ने कैसे विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया। क्या तृणमूल कांग्रेस में बागी विधायकों के बाद अब सांसदों में भी फूट पड़ने वाली है। चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है, तो हम देख ही रहे हैं। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने क्या फैसला लिया है। बताएंगे हम आपको कि दिल्ली के अग्निकांड के बाद रेखा गुप्ता सरकार ने क्या बड़ा एक्शन लिया, और इसके साथ ही बात करेंगे सीबीएसई छात्रों को राहत की, लेकिन वो राहत क्या है, थोड़ा इंतजार कीजिए। बात करेंगे कि क्या वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में मौका मिलने वाला है। बहुत से लोग इसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर, बिहार से जेड प्लस सुरक्षा वापस लेने के बाद अब लालू यादव और राबड़ी देवी ने अपनी सुरक्षा पूरी तरह से वापस कर दी। एक दिन पहले ही लालू परिवार की सुरक्षा में बदलाव किया गया था, जिसके बाद अब लालू और राबड़ी ने अपनी सुरक्षा लौटा दी है। नाराजगी के चलते ये फैसला लिया गया है लालू यादव और राबड़ी की तरफ से। जेड प्लस सुरक्षा पहले मिली हुई थी, अब जेड प्लस सुरक्षा वापस लेने के बाद लालू यादव और राबड़ी देवी ने अपनी सुरक्षा पूरी तरह से वापस कर दी। मतलब पहले जब जेड प्लस सुरक्षा वापस ले ली गई थी, तो उसके बाद बिहार पुलिस के कॉन्स्टेबल सुरक्षा में थे, लेकिन लालू यादव और राबड़ी देवी ने कहा कि नहीं चाहिए।
1: पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी जो लिया है साहसिक फैसला है, वो दोनों जितने भी सुरक्षा आदरणीय लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी के लिए लगाई गई थी सबको वापस कर दिया, सबको बाहर निकाल दिया। क्योंकि कल ही राज्य की सरकार ने अपने आका के निर्देश पर आदरणीय लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी सहित पूरे लालू परिवार की सुरक्षा में व्यापक और घोर कटौती कर दी। शासन अपमानित करना चाहती है लालू प्रसाद जी और उनके परिवार को, उनके परिजनों को। किसी का अपमानित करने से कोई अपमानित तो नहीं हो जाता।
0: शशि भूषण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शशि, जरा बताइए हो क्या रहा है बिहार में।
2: हिमांशु, देखिए 4 जून को सरकार की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था, जिसमें समय समय पे जो गणमान्य होते हैं, वीआईपी और वीवीआईपी होते हैं, उनकी सुरक्षा की समीक्षा की जाती है। और उस समीक्षा के बाद 4 जून को सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि लालू प्रसाद यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं आरजेडी सुप्रीमो, और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, दोनों को जो पहले से जेड प्लस सुरक्षा मिलती आ रही है उसमें कटौती कर दी गई थी। और बीसैप जो बिहार पुलिस के जवान होते हैं और जो हाउस गार्ड्स होते हैं, हालांकि उनकी तैनाती की गई थी, लेकिन ये फैसला जो है वो कल पहुंचा राबड़ी आवास पे। और उसके बाद ये फैसला लिया है लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने कि जो भी सरकारी सुरक्षा कर्मी उनकी सुरक्षा में तैनात थे उसको वापस कर दिया उन्होंने। और आज देखिए सुबह की जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं हिमांशु, ये 10 सर्कुलर रोड आवास है, जिस आवास को लेकर भी सियासत जारी है, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि बाहर कोई हाउस गार्ड खड़ा ना हो, सुरक्षा कर्मी ना हो। यहाँ आम दिनों में जाइए, दूसरे दिनों में तो यहाँ बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात रहा करते थे, बजाते इनके बैरक्स बने हुए हैं यहाँ पे। हाँ। लेकिन आज सुबह एक भी सुरक्षा कर्मी यहाँ दिखा नहीं है, और ये फैसला अमल में ला दिया गया है। तो 3 शिफ्ट में ड्यूटी होती थी यहाँ सुरक्षा कर्मियों की, और जो हमारे पास खबर है और जो बयान भी जारी किया है आरजेडी ने अपने मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव के जरिए, उसके मुताबिक कल रात ही शिफ्ट जो चेंज होना था उसी समय राबड़ी देवी और ने निर्देश दे दिया कि सुरक्षा कर्मियों की उनको आवश्यकता नहीं है। तो जाहिर है कि सरकारी सुरक्षा वापस के बाद अब इस मामले पे सियासत देखने को मिलेगी हिमांशु, क्योंकि एक बंगले पे सियासत तो पहले से चल ही रही है। जी
0: शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शशि भूषण, जानकारी के लिए। भी बिहार से बंगाल लिए चलते हैं आपको। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में टीएमसी पार्षद रहे राजा पासवान के दफ्तर में देर रात तोड़फोड़ हो गई, यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब आरोप क्या है? आरोप है कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने टीएमसी से जुड़ रहे नेता के दफ्तर में तोड़फोड़ की। उधर बीजेपी की बैरकपुर 2 मंडल की अध्यक्ष अनामिका नाग ने आरोप लगाया कि ये दफ्तर जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था। तो बीजेपी नेता का दावा है कि जमीन कब्जा कर दफ्तर बनाया गया था। अब टीएमसी की तरफ से कह रहा है कि बीजेपी के गुंडे आए थे और उन्होंने तोड़फोड़ की और टीएमसी के दफ्तर को ये देखिए क्या हाल कर दिया। ये तस्वीरें देखिए, देर रात हुई है ये तोड़फोड़। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में टीएमसी पार्षद रहे राजा पासवान के दफ्तर में ये तोड़फोड़ की खबर। विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही टीएमसी की मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं। टीएमसी के भीतर चल रही राजनीतिक उथल पुथल अब पश्चिम बंगाल से बाहर निकलकर संसद तक फैलती दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक 23 सांसद बागी विधायकों के एक समूह के संपर्क में हैं और आने वाले दिनों में पार्टी में एक और फूट से इनकार नहीं किया जा सकता। कुल 29 हैं, 23 बागी हो रहे हैं, तो आगे क्या होगा।
3: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद टीएमसी का संकट थमता नहीं दिख रहा है। पहले विधायकों की नाराजगी और अब सांसदों में संभावित असंतोष की चर्चा ने पार्टी नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी है। सवाल उठ रहा है कि क्या विधायकों के बाद अब सांसद भी पार्टी से अलग राह पकड़ सकते हैं। ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर बुलाई गई अहम बैठक ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी में 60 विधायकों के अलग गुट बनाने के दावों के बीच हुई इस बैठक में कुछ चुनिंदा सांसद और नेता ही पहुंचे। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि टीएमसी के बड़ी संख्या में विधायक और सांसद बैठक से दूर रहे। इसी वजह से राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हैं कि क्या पार्टी के भीतर असंतोष अब संसदीय दल तक पहुंच चुका है। सूत्रों के मुताबिक कुछ सांसद संगठन में बढ़ते असंतोष को लेकर नाराज बताए जा रहे हैं। चर्चा है कि सांसदों का एक अलग गुट बनाने की कोशिशें भी हो सकती है। हालांकि पार्टी नेतृत्व की ओर से इस तरह के दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
4: बागी विधायक बोल रहे हैं, 23 सांसद उनके साथ हैं, 23 सांसद उनके साथ हैं, बागी विधायक बोल रहे हैं।
5: वो पूरा बात कर सकता है, पूरा कह सकता है जब पूरा पार्टी उनका साथ है।
3: मदन मित्रा ने सांसदों की संभावित बगावत के सवाल को सीधे तौर पर खारिज नहीं किया। हालांकि उन्होंने बागियों को चुनौती देते हुए कहा कि अगर किसी ने ममता बनर्जी के नाम और तस्वीर के बिना चुनाव जीत कर दिखाया तो वो उसे सलाम करेंगे। सूत्रों का दावा है कि कुछ सांसद बागी खेमे के संपर्क में हैं और आने वाले दिनों में तस्वीर और साफ हो सकती है। हालांकि पार्टी के भीतर एक बात पर अब भी सहमति दिखाई देती है, ममता बनर्जी के नेतृत्व को लेकर खुला विरोध नहीं है, लेकिन संगठन और नेतृत्व शैली को लेकर सवाल जरूर उठ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में हार के महज कुछ समय बाद जिस तरह पार्टी के भीतर असंतोष खुलकर सामने आया है, उसने टीएमसी के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। अब नजर इस बात पर है कि क्या ये नाराजगी विधायकों तक सीमित रहेगी या फिर सांसदों तक भी पहुंचेगी। आज तक ब्यूरो।
0: बिहार के समस्तीपुर में दुकान खाली कराने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, गुस्सा बढ़ गया। दो पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई, लेकिन कहासुनी पर बात रुकती कहां है। फिर बात आगे बढ़ी, जमकर पथराव हुआ और उसके बाद ये देखिए हाथों में तमंचा बंदूक लहराते हुए फायर, दनादन गोलियां चलाई गई। अब जैसे ही गोलियों की गूंज सुनाई दी, भगदड़ मच गई। उसके बाद देखिए ये पिस्टल से फायर किए जा रहे हैं, पहले पथराव, फिर पिस्टल, फिर पत्थर, जो मिला उसका सहारा लिया गया। दुकान खाली कराने से शुरू हुआ और फिर तस्वीरें आपके सामने हैं। समस्तीपुर में दो पक्षों में झड़प होती है, ये देखिए पहले बंदूक लहराई गई, पिस्टल लहराई गई, लाठियां चलाई गई और उसके बाद पत्थर भी मारे गए, लेकिन इतने से मन कहां भरता है। तो उसके बाद फिर निकाली गई पिस्टल और फिर फायर किए गए। बिहार के समस्तीपुर में ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो बवाल की है। दिल्ली की कर लेते हैं बात, देर रात हुए एनकाउंटर की बात करते हैं। राजधानी के पुष्प विहार इलाके में मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, 3 बदमाशों को। दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ होती है, 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया जाता है। दक्षिणी दिल्ली के पुष्प विहार इलाके में मुठभेड़ हो रही है। देखिए यही वो बाइक है जिसपे बदमाश भाग रहे थे, पुलिस ने घेराबंदी की, पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों की तरफ से पुलिस पर फायरिंग हुई और उसके बाद फिर जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से भी फायर किए गए और ये बताया गया। फिर उसके बाद 3 बदमाश गिरफ्तार हुए। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अवैध निर्माण और सुरक्षा नियमों की अनदेखी पर बहुत सख्त रुख अपनाया। सरकार ने साफ कर दिया कि अब सिर्फ बिल्डिंग मालिक ही नहीं बल्कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारी भी कार्रवाई के दायरे में आएंगे। सरकार के नए फैसले के तहत अवैध निर्माण या नियमों के उल्लंघन में दोषी पाए गए अधिकारियों से उनकी सैलरी, उनका पेंशन और यहां तक की संपत्ति से भी वसूली की जा सकती है।
6: दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली की सभी एजेंसीज के साथ दिल्ली में हो रहे अवैध निर्माण, दिल्ली में उस अवैध निर्माण और ग्रॉस वायलेशंस के कारण हाल ही में हुए कुछ दुखद डिजास्टर्स के मद्देनजर बड़े कठोर प्रशासनिक निर्णय लिए हैं। बहुत बड़े प्रशासनिक फैसले में ये निर्णय किया गया है कि दिल्ली में इन सब विभिन्न तरीके से काम कर रही इकाइयों को एक सूत्र में बांधते हुए डीएम की ताकतों को बढ़ाने के लिए।
0: दिल्ली के होटल में आग से 21 मौत के बाद प्रशासन के एक्शन जारी है। शुक्रवार को दक्षिण दिल्ली के कई इलाकों में अवैध निर्माण पर अब बुलडोजर भी चला।
6: एसीआर लिख
7: और उसी दिशा में आप देखेंगे यहाँ पर सील कर दिया गया है। दिल्ली के मालविया नगर में स्थित उस जगह पे मौजूद है जहाँ पर भीषण अग्निकांड देखने को मिला था जिसमें 21 लोगों की जान गई थी। अब आज वहाँ पर एमसीडी का बुलडोजर पहुँचा है और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ एमसीडी का बुलडोजर जो है वो यहाँ पर पहुँचा है और यहाँ पर जो यहाँ पर मलबा पड़ा है उसको एमसीडी की टीम के द्वारा हटाया जा रहा है बुलडोजर के जरिए। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर एमसीडी की टीम के साथ ही पुलिस की टीम भी मौजूद है और यहाँ पर जो मलबा है उसको जेसीबी की जो बुलडोजर है उसके जरिए हटाया जा रहा है और फिर गाड़ियों में भरकर देख सकते हैं इस तरीके के गाड़ियों में भरकर ये जो पूरे सामान है मलबा है जो होटल में जो सामान इस्तेमाल होने के लिए रखे गए थे उसका ये पूरा सामान है देख सकते हैं तस्वीरों में। वहीं आप तस्वीरों में देखेंगे बुलडोजर भी यहाँ पर चल रहा है और बुलडोजर के जरिए सारे सामान यहाँ से उठाए जा रहे हैं और इस तरीके से गाड़ियों में भरा जा रहा है और फिर यहाँ से हटाया जा रहा है। एमसीडी की टीम पूरा कार्य कर रही है। दरअसल बताया जा रहा है कि पहले ये सब मलबा हटाया जाएगा और फिर इस पर कार्रवाई होगी और फिर बिल्डिंग को यहाँ से हटाया जाएगा। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर बुलडोजर भी मौजूद है और एमसीडी की टीम मौजूद है और यहाँ पर पुलिस कर्मियों की भी तैनाती की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं लोगों की भीड़ भी एकत्रित है। यही वो बिल्डिंग है जिसमें पूरा हादसा हुआ था और इस हादसे में 21 लोगों की जान गई थी। अब यहीं पर आज जो एमसीडी का बुलडोजर है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है।
0: बहरीन में आसमान में मिसाइलों को इंटरसेप्ट किए जाने की खबर सामने आई है। सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से हवाई खतरे को निष्क्रिय करने के लिए कार्रवाई की गई। स्थानीय मीडिया और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आसमान में कई तेज धमाके और रोशनी दिखे जिन्हें मिसाइल इंटरसेप्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि अधिकारियों की ओर से अभी तक घटना के कारण संभावित लक्ष्य या नुकसान को लेकर विस्तृत जानकारी जारी नहीं की गई। इन हमलों को ईरानी हमला माना जा रहा है। क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और ज्यादा जानकारी का भी इंतजार किया जा रहा है। कुवैत में मिसाइल इंटरसेप्ट करने का ये दावा किया जा रहा है। ईरानी हमलों से कुवैत का आसमान गरजा है ऐसी खबर है। हालांकि अभी और भी कई जानकारी आना अभी बाकी है। नजर रखी जा रही है, सुरक्षा के इंतजाम है, लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। कुवैत की तरफ से बयान भी जारी किया गया है और वो कह रहे हैं कि ईरान का ये मिसाइल और ड्रोन हमला हुआ है जिसको हमने इंटरसेप्ट कर लिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आज तक ने वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया। मॉस्को में आज तक से खास बातचीत में पुतिन से कई मुद्दों पर बातचीत हुई। सुखोई 57 डील को लेकर भी पुतिन ने बड़ी बात कही थी।
8: ठीक है, अब मैं आपसे भारत को लेकर सवाल पूछना चाहती हूँ। कल आप कुछ एडिटर्स से मिल रहे थे और आपने Su-57 के बारे में बात की थी और सहयोग का प्रस्ताव भी रखा। क्या वह प्रस्ताव अभी भी मान्य है? इसे लेकर क्या जानकारी है और भारत के साथ आपकी क्या बातचीत चल रही है?
9: भारत और हमारे बीच सैन्य और तकनीकी सहयोग और आपसी तालमेल के मामले में बहुत अच्छे और लंबे समय से चले आ रहे संबंध हैं। भारत की सशस्त्र सेनाओं का एक बड़ा हिस्सा रूसी उपकरणों और सामग्री से लैस है। यह परंपरा सोवियत काल से चली आ रही है और आज भी कायम है। भारतीय मित्रों के साथ हमारे संबंध इस मायने में खास हैं कि ये हमारे आपसी विश्वास पर आधारित हैं। हम सिर्फ व्यापार या खरीद फरोख्त पर ही ध्यान नहीं देते, बल्कि साझा रिसर्च को आगे बढ़ाने पर भी खास ध्यान देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मध्यम दूरी की मिसाइल ब्रह्मोस है। इस मिसाइल के डिजाइन में भारतीय विशेषज्ञों के साथ साथ रूसी विशेषज्ञों ने भी शुरू से ही भाग लिया और परिणाम शानदार रहे। भारत पारंपरिक रूप से हमसे विमान और हेलीकॉप्टर खरीदता रहा है। Su-57 एक बहुत ही अच्छा विमान है, शायद दुनिया का सबसे आधुनिक और सबसे कुशल विमान है। हमने प्रस्ताव दिया है और मैंने कल अपने भारतीय मित्रों से यही कहा था कि हमें मिलकर यह काम करना चाहिए। खैर, योजना सफल नहीं हुई, लेकिन हमने इसे अपने दम पर किया।
0: ईरान युद्ध पर रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि मिडिल ईस्ट पर युद्ध थोपा गया। पुतिन ने कहा है सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक ईरान पर हमला हुआ जिससे वैश्विक स्थितियां बहुत तेजी से बदली हैं।
10: Now I'll go back to the war.
8: अब मैं युद्ध के प्रश्न पर वापस आती हूँ। ईरान अमेरिका युद्ध, हॉर्मुज जल अडमरु मध्य पर नाकाबंदी वाकई चिंता का विषय है। रूस इसे किस नजरिए से देख रहा है? वैश्विक स्तर पर इसके प्रभाव के बारे में आपका क्या आकलन है, इस तथ्य के अलावा कि हाँ, रूस को शायद थोड़ा फायदा हुआ है? ईरान पर नाकाबंदी और हमले का आपका क्या आकलन है? क्या आप इसे उकसाया हुआ मानेंगे या बिना उकसावे के?
11: Я не вижу никаких провокаций со стороны Ирана.
9: हाँ, मुझे ईरान की ओर से कोई उकसावा नजर नहीं आता।
11: Договорились, приняли соответствующее соглашение.
9: मेरा मानना है कि किसी बिंदु पर हम सहमत हुए थे, हमने सहमति जताई थी।
11: Под контролем МАГАТЭ. Но, к сожалению, ситуация развивалась потом по другому сценарию, по другим.
9: ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर IAEA में सब कुछ नियंत्रण में था, लेकिन फिर स्थिति पूरी तरह बदल गई।
11: Удар по Ирану, потери в том числе.
9: और इसी के चलते ये त्रासदी हुई जो हम आज देख रहे हैं।
0: वैश्विक मुद्दों पर बात हुई है, यानी हर एक पहलू पर बहुत बारीकी से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत हुई है। और हम आपको बता रहे हैं सुबह 10 बजे यानी अब से कुछ देर बाद देखिएगा ये पूरा इंटरव्यू, बातचीत व्लादिमीर पुतिन के साथ। वहीं अब आपको अगली खबर बताते हैं। CBSE ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणामों के बाद उत्तर पुस्तिकाओं की वेरिफिकेशन और प्रश्नों की री इवेल्यूएशन के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को बड़ी राहत दे दी है। छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने आवेदन की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाने का फैसला किया। पहले वेरिफिकेशन और री इवेल्यूएशन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि आज रात निर्धारित की गई थी, मध्यरात्रि। अब इसे बढ़ाकर कल तक यानी 7 जून 2026 की मध्यरात्रि तक कर दिया गया है। खेल जगत से जुड़ी खबरों की बात कर लेते हैं, जहां सबसे पहले आज आयरलैंड, इंग्लैंड और एशियन गेम्स के लिए होने वाले T20 टीम के ऐलान की बात हो रही है। इस बार T20 टीम में कुछ ऐसे बदलाव होंगे जो T20 में भारतीय क्रिकेट का भविष्य तय करेंगे, और इंतजार भी था लोगों को। ये देखिए, सबसे पहले आज जब सिलेक्टर्स इंग्लैंड दौरे और एशियाई खेलों के लिए टीम को अंतिम रूप देने के लिए बैठक करेंगे, तो श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव की जगह T20 टीम की कप्तानी मिलना लगभग तय है। सूर्य कुमार यादव की जगह श्रेयस अय्यर को। और इसके साथ ही ऐसी भी संभावना है कि मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज तिलक वर्मा को भारत के T20 टीम का नया उप कप्तान बनाया जा सके। और जिस फैसले पर सबकी नजर होगी वो होगी वैभव सूर्यवंशी को लेकर। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी
14: नीड बेटर इंटरनेट. Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh, yeah. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
15: Today's jazz brings the movement forward. Modern voices, contemporary sound, and players shaping what jazz sounds like now. From Herbie Hancock to Pat Metheny, Esperanza Spalding, and more. Feel the jazzy energy with Deep Roots. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's Jazz to start listening now.
16: Savaris.
17: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं.
18: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील टीएमटी से बना.
19: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ओह नो, बहुत बोर लग रहा है।
3: Take a date, not bites.
4: No added sugar, preservative के बिना dates, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया Lion Dates Nut Bites.
3: Lion Date Nut Bites.
5: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
6: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
7: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
5: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
8: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
6: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
5: जहां खबर वहां खबरदार।
9: इन एसोसिएशन विद E3HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
5: छात्रों के भविष्य पर उठे सवाल।
10: बच्चों के भविष्य से जब जब खिलवाड़ होगा हम आवाज उठाते रहेंगे। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या छात्रों की चिंताएं दूर होंगी।
5: तो हमने पूछे जिम्मेदारों से सवाल।
10: CBSE के कोई चेयरमैन होंगे ना, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? कोचिंग माफिया के खिलाफ मैं बोलती रहूंगी।
5: छात्रों को दिया मंच।
10: उज्मा हमारे साथ कोटा से, और अदिति मुंगेर से हैं, और तानिया कोटा से हैं, और अर्गम जैन भी जुड़ गए हैं। तो एक बार आप दिखाएं और बताएं अपनी समस्या।
11: मैम ये देखिए, इसमें सेकंड की मार्किंग है, ये तीनों ही अनचेक हैं।
12: IIT मद्रास के एक्सपर्ट लगा रहा है, क्या वो भी इतने सक्षम नहीं है कि उनसे एक सरकारी वेबसाइट नहीं चलाई जा रही?
5: छात्रों के मुद्दे, छात्रों की आवाज और खबर का असर।
10: आज तक की खबर का असर हुआ है, छात्रों की आवाज बना आज तक, और अब सरकार की तरफ से CBSE के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव दोनों का तबादला किया गया है।
5: छात्रों के हित में हल्ला बोल सिर्फ आज तक पर।
13: साथियों, आज देश में कुछ निराशावादी लोग हैं जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाते रहते हैं। देश के इस संकल्प को वो लगातार नीचा ही दिखाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रखा। वो लोग ये भूल जाते हैं कि दूसरों पर निर्भर देश विकास की वो ऊंचाई कभी प्राप्त नहीं कर सकता जिसका वो हकदार है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: टीएमसी में कहां तक बगावत, ममता के साथ सिर्फ 20 विधायक, विधायकों ने साथ छोड़ा मुंह मोड़ा, सांसद भी बगावत की राह पर जाएंगे।
3: मानसिक तौर पे आप पार्टी के साथ नहीं हैं?
4: मानसिक तौर पे मैं पार्टी के साथ नहीं हूं।
3: और ऐसे ही मानसिक तौर पे और कितने सांसद हैं तृणमूल में जो पार्टी के साथ नहीं हैं? आपको क्या पता है?
4: देखिए, मैं तो किसी का मानसिक स्थिति को रीड नहीं कर पाता।
3: नहीं, बातचीत तो होती होगी।
4: बातचीत होती है, मेरे सुनने में जो है मैंने आपको बता दिया ना कि लोकसभा में ज्यादा मेंबर मैंने मेजोरिटी मेंबर थे।
2: टीएमसी के सीनियर नेताओं में से एक सुखेंदु शेखर रॉय ने जो कुछ कहा वो ममता बनर्जी के लिए गहराते संकट के संकेत हैं। तृणमूल के सांसदों में असंतोष और बेचैनी साफ साफ देखी जा सकती है, और अगर ममता नाकाम रही तो ये संकट तृणमूल को तिनका तिनका कर सकता है।
3: लोकसभा में आपके 29 सांसद हैं, आपको क्या सुनाई दे रहा है? कितने सांसद होंगे फिर?
4: 29 नहीं, 28 है।
3: 28
4: बसीरहाट आपका पेंडिंग है कलकत्ता हाई कोर्ट में,
3: क्या होने वाला है? आपको क्या सुनाई दे रहा है? आपको पार्टी के अंदर अभी भी है
4: मेजोरिटी चला जाए?
3: ये एक बड़ा बयान है आप दे रहे हैं कि मेजोरिटी ही चला जाएगा,
4: मेजोरिटी चला जाएगा।
2: तृणमूल के सांसदों पर एनडीए की नजर है। संसद के मॉनसून सत्र में सरकार परिसीमन बिल लाने की तैयारी में है, और खबर है कि तृणमूल के सांसदों से संपर्क साधा गया है, यानी विधायकों के बाद ममता बनर्जी के सामने अपने सांसदों को टूटने से बचाने की बड़ी चुनौती है। क्या ममता बनर्जी इस सुनामी का सामना कर पाएंगी? उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि बागियों में से पहली आवाज उनके समर्थन में आई है।
5: ममता बनर्जी हम लोग का सर्वोच्च नेतृत्व है, एक बार बोला, एवं ममता बनर्जी का छवि घर में रहेगा, सबका घर में रहेगा। ममता बनर्जी के फोटो का लेके मीटिंग मीटिंग करेगा, ये सब बात हुआ, इसलिए हम साइन किया।
6: आने वाले दिनों में
7: कि ममता बनर्जी फिर चीफ एडवाइजर ही रहे, तो आप इसको मानते हैं?
5: नहीं, हम लोग से चीफ एडवाइजर मानते हैं।
2: ममता के लिए ऐसी कई आवाजों की जरूरत होगी, तभी वो इस संकट से उबर पाएंगे। इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता आज तक।
8: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.

सबसे बड़े मंच पर आज तक के साथ दुनिया के सबसे बड़े दिग्गज रूसी राष्ट्रपति पुतिन का वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का भारत हमेशा राष्ट्र हित के लिए समर्पित, पीएम मोदी की तारीफ की, सुबह 10 बजे देखिए पूरा शो। सूरत से पीएम मोदी का विपक्ष पर पड़ा हमला का अराजकता फैलाकर अवसर तलाश रही है कांग्रेस, देश को नीचे दिखाने में जुटे हैं निराशावादी नेता। जेट प्लस सुरक्षा हटाने से नाराज लालू, राबड़ी ने लौटाई सरकारी सुरक्षा, कटौती के बाद बंगले पर लगाए गए थे बिहार पुलिस के जवान, घर के बाहर पसरा सन्नाटा। फैसल खान को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है पटना पुलिस, रात भर कोचिंग के बाहर चलता रहा ड्रामा, डटे रहे छात्र और पुलिस के जवान, आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज हुआ केस। समुद्र मंथन मिशन में भारत को बड़ी कामयाबी, गहरे समुद्र में ऑयल, इंडिया को मिला प्राकृतिक गैस का भंडार, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने किया ऐलान।

आज तक ने फिर रचा इतिहास। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक फोरम कार्यक्रम में इंडिया टुडे ग्रुप की फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन ने निभाई एंकर की भूमिका। राष्ट्रपति पुतिन भी मंच पर। कार्यक्रम में पुतिन ने भारत को बताया रूस का प्रमुख साझेदार। कहा सॉफ्टवेयर में भारत की बड़ी हिस्सेदारी। ब्रिक्स ने G7 को छोड़ा पीछे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप को दिया मैसेज। कहा भारत ने कभी भी अपनी सीमाओं के बाहर से मिले आदेशों का पालन नहीं किया है। भारत को लेकर पुतिन ने कहा नई दिल्ली ने बाहर से मिले आदेशों को कभी तवज्जो नहीं दी। उनका इशारा भारत पर अमेरिकी दबाव की ओर था। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने Spy 26 में इस बात पर जोर दिया कि संप्रभुता और संप्रभु फैसले लेने के अधिकार पर कभी सवाल नहीं उठाया जा सकता। जेड प्लस सुरक्षा वापस लेने के बाद अब लालू यादव और राबड़ी देवी ने अपनी सुरक्षा पूरी तरह से वापस की। एक दिन पहले ही लालू परिवार की सुरक्षा में बदलाव किया गया था, जिसके बाद लालू और राबड़ी ने अपनी सुरक्षा लौटा दी। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत की विपक्षी दलों से अपील, एकजुट हो सभी पार्टियां। कांग्रेस से अलग हुए दल फिर आए साथ। मालवीय अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार का बड़ा एक्शन। हौज रानी और घटौरनी इलाके में अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर। दिल्ली के कई इलाकों में सीलिंग की कार्रवाई। वरिष्ठ अफसरों के साथ सीएम रेखा की बैठक में दोषी अफसरों पर सख्ती के आदेश जारी। विपक्ष पर पीएम मोदी का ताबड़तोड़ प्रहार। सूरत के एक कार्यक्रम में कहा आत्मनिर्भर अभियान का मजाक उड़ाते हैं देश के कुछ निराशावादी लोग। पीएम मोदी ने वैश्विक संकट का किया जिक्र। कहा ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भरता जरूरी। पिछले 12 सालों में देश ने जो क्षमता बढ़ाई वो बेहद अहम। कांग्रेस पर भड़के पीएम मोदी का बयान। कहा देश पर अराजकता फैला रही है कांग्रेस। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रखा। दमन को पीएम मोदी की बड़ी सौगात। 2970 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। पीएम मोदी ने दमन में किया नमो एयरपोर्ट टर्मिनल और नमो अस्पताल का उद्घाटन। कहा विकास के नए दौर की हुई शुरुआत। बलरामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 294 करोड़ रुपए की 75 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया। यूपी के बलरामपुर में सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा मिट्टी में मिल गए माफिया। बोले बेटी से छेड़छाड़ करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। बलरामपुर में समाजवादी पार्टी के गुंडे माफिया गरीबों का राशन खा जाते थे। आज यूपी दंगा मुक्त और विकास की राह पर। वहीं श्रावस्ती के गुलरा स्थित केन नाला को मिला नया दर्जा। मुख्यमंत्री योगी ने बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट की घोषित। मैनपुरी में आज शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्ति शरण के पैर छूते दिखे डिंपल यादव। डिप्टी सीएम किशन मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा यूपी में सत्ता में आना अब अखिलेश यादव की बस की बात नहीं। अलवर में पुलिस कस्टडी के बीच धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार आरोपी को पूर्व विधायक ज्ञानदीप आहूजा ने थप्पड़ जड़ दिया। दिल्ली में फ्लोरिशन गेस्ट हाउस को एमसीडी ने सील किया। 3 दिन को यहीं पर आग लगी थी। 21 लोगों की मौत हुई थी। सीबीएसई ने दिल्ली पुलिस पर दर्ज कराई शिकायत। कहा 12वीं के रिजल्ट के बाद हमारे पोर्टल पर हुए हमले लेकिन लीक नहीं हुआ डाटा। जेईई परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्रालय का बयान। परीक्षा परिणाम और अंक पूरी तरह सुरक्षित। डेटा में सेल की खबरों को गलत बताया। बागी नेता रितव्रत बनर्जी को बंगाल विधानसभा का नेता विपक्ष बनाए जाने के खिलाफ सोमवार को हाईकोर्ट जाएंगी ममता बनर्जी। बैठक में ममता ने टीएमसी की सभी कमेटियों का पुनर्गठन किया। सांसद अभिषेक बनर्जी बने रहेंगे महासचिव। डेरेक ओब्रायन और डोला सेन संयुक्त सचिव। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से भेंट की तस्वीर शेयर की। एनआईए ने पूर्व टीएमसी विधायक शौकत को किया गिरफ्तार। कोलकाता के पास भागने की कोशिश के दौरान दबोचा।

शिवपुरी में एक तरफा प्यार के संग युवक ने नाबालिग को पहले कुल्हाड़ी मारी फिर गले में रस्सी बांध के लटका दिया। भावनगर में कार में अचानक आग लगी, कार वाले की जान बच गई। इंदौर में ईवी शोरूम में लगी भीषण आग, निवासियों ने सीढ़ी और रस्सी से रेस्क्यू किया। लखनऊ एयरपोर्ट पर करीब 10 करोड़ की ड्रग्स बरामद, बैंकॉक से मस्कट होते हुए लखनऊ पहुंचे यात्री से 13 पैकेट ड्रग्स बरामद। समस्तीपुर के मऊ बाजार में दुकान विवाद पर बवाल, पथराव और हवाई फायरिंग से बची अफरा तफरी। दुकान खाली कराने को लेकर दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, पिस्टल लहराकर किए गए कई राउंड फायर। समस्तीपुर में पथराव और फायरिंग से देहरा इलाका, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। बाराबंकी में बुलडोजर एक्शन, प्रशासन ने अवैध 36 मकान गिराए। फरीदकोट में एक प्लास्टिक के गोदाम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पंजाब के पटियाला में पावर कॉम हेड ऑफिस के सामने प्रदर्शन, आईटीआई के पास बेरोजगार नौजवानों को पुलिस ने लाठी मार के भगाया। ये सभी बेरोजगार युवा कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे, इनको उठाने के लिए प्रशासन की मदद से पहले बातचीत की कोशिश की लेकिन बेनतीजा रही। कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने युवाओं से मुलाकात की, कहा सरकार युवाओं की आवाज दबाने का काम कर रही है। दिल्ली के पुष्प विहार में पुलिस मुठभेड़, रंगदारी के आरोपियों पर कार्रवाई, 2 घायल, 3 बदमाश गिरफ्तार। आजमगढ़ में नाबालिग बच्चे के साथ बुरी तरह मारपीट, पुलिस ने 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। कानपुर में कोचिंग संचालक ने 18 साल पुराने दोस्त की हत्या की, पुलिस कमिश्नर ने सीसीटीवी में बुर्का पहने शख्स का खुलासा किया। गोरखपुर में पिता ने 3 बच्चों को दही में जहर दिया, 2 की मौत, 1 बच गया। फिरोजाबाद में सड़क पर कार के दरवाजा खोलना जानलेवा हुआ, बाइक सवार ससुर की मौत, दामाद गंभीर। मनाली में विदेशी महिला पर्यटक से अभद्रता, वीडियो वायरल, एसडीएम ने जांच के आदेश दिए। बक्सर के इटाड़ी गुमटी रेलवे क्रॉसिंग पर 26 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बना ओवर ब्रिज का पिलर हुआ क्षतिग्रस्त, 96 घंटे भी नहीं टिक पाया। पटना में गिरफ्तार हो सकते कोचिंग टीचर फैजल खान, पटना में बीएनएस की धारा 109 के साथ साथ आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज। फैसल खान को 2 गिरफ्तार गार्ड्स का पुलिस पूछताछ में खुलासा, फैसल खान के कहने पर ही चलाई थी गोली। दिल्ली में गुरुवार की भीषण आंधी के बाद से ही तापमान में गिरावट बरकरार, शुक्रवार को अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री दर्ज, 1-2 दिन राहत मिलेगी। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में बारिश और ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी से गिरा तापमान, कड़ाके की ठंड के बावजूद मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। केरलम के एर्नाकुलम मानसून की भारी बारिश, शहर के लोगों को जगह जगह परेशानी भी हो रही है। केदारनाथ में बारिश और ठंड से भी भक्तों की आस्था रुक नहीं रही है, बारिश में भी दर्शनों के लिए मंदिर में उमड़ रहे हैं भक्त। केदारधाम में पल पल बदल रहा है मौसम, अब तक 11 लाख के पार पहुंचा यात्रियों का आंकड़ा। पहाड़ों में मौसम खराब है, प्रशासन चौकस है, रोज तकरीबन 20,000 से ज्यादा लोग कर रहे हैं बाबा केदार के दर्शन। बारिश और ठंड के बीच यात्रियों की सुविधाओं को बरकरार रखने के लिए लगे हैं सरकारी कर्मचारी, गर्मी की छुट्टियों की वजह से बढ़ रही है भीड़। जम्मू में क्षेत्रीय मौसम विभाग का उद्घाटन, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में सटीक मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन में मदद मिलेगी। काजल अग्रवाल श्रेयस तलपड़े की फिल्म द इंडिया स्टोरी का नया टीजर रिलीज, खेती में जहरीले कीटनाशकों के दुरुपयोग जैसे गंभीर मुद्दों पर बनी है फिल्म। एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौट रही है लोकप्रिय एनिमेटेड फ्रेंचाइजी आइस एज, नई आइस एज बॉइलिंग पॉइंट का टीजर पोस्टर जारी। फिल्म भारत भागीदारों को प्रमोट करने में जुटी कंगना, देश के बड़े बड़े शहरों में जाकर अलग अलग क्षेत्रों में अनसंग हीरोज को सम्मानित कर रही। एक्टर जैकी श्रॉफ की वेडिंग एनिवर्सरी पर पत्नी आयशा श्रॉफ ने अनसीन फोटोज शेयर की। श्रद्धा कपूर और करण जौहर के बाद एकता कपूर ने ज्वेलरी बिजनेस पर कदम रखा, ब्लैक ग्रोन डायमंड ब्रांड एक त्रा ज्वेलर्स के साथ जुड़ी। दुनिया में उथल पुथल के बीच भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर, वित्त वर्ष 2026 में जीडीपी विकास दर अनुमान से ज्यादा 7.7% की दर। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सभी 6 सदस्यों को रेपो रेट को 7.25% पर बरकरार रखने पर मोहर लगाई। इंडिगो ने हांगकांग, शंघाई समेत 6 इंटरनेशनल रूट्स पर फ्लाइट्स को अस्थायी तौर पर बंद किया।

हर घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बिक्री पर कंपनियों को अंडर रिकवरी बढ़कर करीब 700 रुपए पहुंची। पिछले महीने कंपनियों को एक सिलेंडर की बिक्री पर 650 रुपए का नुकसान हो रहा था। देश के कई राज्यों में एटीएम में नकदी कम होने पर बैंकर्स एसोसिएशन को अलर्ट किया गया। डीबीटी पाने वाले ग्रामीण और छोटे शहरों के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान, कहा ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर यूक्रेन से समझौते को तैयार हैं, लेकिन यूक्रेन को भी कुछ शर्तें माननी होंगी। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रूस और यूक्रेन के बीच सीधी बातचीत पर समर्थन की कही बात। राष्ट्रपति मैक्रों का मानना है कि यूक्रेन और रूस मिलकर युद्धविराम और शांति योजना बना सकते हैं। आईएईए की मदद से रूस और यूक्रेन में हुआ स्थानीय युद्धविराम, सीज फायर से जैपोरिजिया परमाणु प्लांट में सुधरेगी बिजली सप्लाई। यूक्रेनी शहर जैपोरिजिया में रूस का बड़ा हमला, गुरुवार रात हुए हमले में एक की मौत, 16 लोग घायल हुए, बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा। रोमानिया के काला सागर बंदरगाह शहर कॉन्स्टांटा में एक समुद्री ड्रोन में विस्फोट हुआ,

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे ज्योतिष में प्रयोग किए जाने वाले सबसे भयंकर और सबसे ताकतवर रत्न के बारे में, जिसका नाम है नीलम। नीलम रत्न की क्या विशेषताएं हैं, नीलम रत्न का प्रभाव क्या है और नीलम धारण करने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 6 जून 2026 दिन शनिवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, प्रातः 6:03 तक चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, शाम के 7:03 तक राहु काल का समय, प्रातः 9 से 10:30 तक पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं नीलम रत्न के बारे में। नीलम रत्न को ज्योतिष में सबसे विशेष रत्न माना जाता है। तो नीलम रत्न क्या है, इसकी विशेषता क्या है? देखिए, नीलम शनि का मुख्य रत्न है और मूलतः वायु तत्व को नियंत्रित करता है। इसका रंग सामान्यतः नीला होता है। वैसे नीलम सफेद रंग के भी आपको मिलेंगे, लेकिन इसका रंग सामान्यतः नीला होने की वजह से इसको नीलम कहा जाता है। हालांकि अन्य रंगों के नीलम भी मिलते हैं। नीलम कुरुंदम समूह का रत्न है और माणिक्य के साथ आम तौर पर पाया जाता है। शनि से लाभ लेने के लिए और शनि को संतुलित करने के लिए नीलम धारण किया जाता है, लेकिन जैसे बाकी रत्नों को धारण करते हैं उसमें और नीलम में अंतर है। नीलम को धारण करने में बड़ी सावधानियां रखनी चाहिए। बिना ठीक ठीक जांच के और बिना ठीक ठीक सलाह के नीलम को धारण करना खतरनाक होता है। अगर आप बिना सोचे समझे या गलत सलाह से नीलम पहनते हैं तो आपका जीवन छिन्न भिन्न हो सकता है। जीवन में भयंकर मुश्किलें और आपदाएं आ सकती हैं। नीलम पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले,
और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, करियर की समस्या हल होगी, स्वास्थ्य में सुधार होता रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृषभ राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। मिथुन राशि, व्यर्थ के तनाव से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब जैसा आपको बताया कि नीलम एक खतरनाक और एक तेज रत्न है, तो नीलम धारण करने के नियम क्या हैं और नीलम धारण करने की सावधानियां क्या हैं? देखिए, बिना कुंडली के तत्वों को जाने हुए, बिना कुंडली के शनि को जाने हुए नीलम मत पहनिए। नीलम पहनने के पहले नीलम की जांच करिए कि वो कितना बेहतर है, इसके बाद स्वयं की जांच करिए। जब आप नीलम धारण करने जा रहे हैं तो प्रयास करिए कि इसको लोहे या चांदी में धारण करें तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत सारे लोग नीलम को सोने में भी पहनते हैं, लेकिन सोने में नीलम धारण करना बहुत अनुकूल नहीं होता। नीलम को गंगा जल से धोकर शुद्ध करना चाहिए और शनिवार की मध्य रात्रि में अगर नीलम पहने तो ज्यादा अच्छा होगा। नीलम का ज्यादा फायदा लेना है तो नीलम को बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में पहनिए और नीलम के साथ जल तत्व का रत्न जैसे ओपल या हीरा जरूर धारण करिए। चौकोर नीलम अगर मिले तो चौकोर नीलम पहनना ज्यादा अच्छा और शुभ होता है। नीलम को धारण करने के पहले इसको भगवान शिव को और शनिदेव को अर्पित करें, उसके बाद नीलम पहने तो कम से कम नीलम से आपको नुकसान नहीं होगा।
नीलम पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, कोई बड़ी समस्या हल होगी, धन का लाभ होगा, चोट चपेट से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, रुका हुआ काम बन जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न कोमल ने हमें लिखा है और कोमल हमें गुड़गांव से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 जुलाई सन 1998, रात में 9:45, जन्म स्थान है गुड़गांव। ये कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है तो मेरे विवाह होने का क्या समय है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। कोमल, आपकी कुंडली के हिसाब से विवाह होने में अभी वक्त है। आपकी शादी 2028 में होगी। 2028 के शुरुआती समय में आपके विवाह का योग होने की संभावना बन रही है। जब भी विवाह करिए कुंडली मिला करके सोच समझ के निर्णय लीजिएगा, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने, रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके विवाह का मामला और आपके परिवार का मामला बेहतर रहेगा। देखिए, बाकी रत्नों के साथ ये बात उतनी लागू नहीं होती, लेकिन नीलम के साथ एक बात जरूर है कि नीलम पहनने के पहले नीलम की जांच कर लेनी चाहिए। कैसे जांच करेंगे? नीलम को नीले कपड़े में रखकर ताबीज की तरह सिल लीजिए और इस तरह सिलिएगा
कि थोड़ा सा कपड़ा काट दीजिएगा, बीच में जरा सा छेद कर दीजिएगा कि नीलम वहां से आपके शरीर को स्पर्श कर सके। इसको शनिवार की शाम को अपनी दाहिनी बाजू में, दाहिनी भुजा में बांध लीजिएगा और सो जाइएगा। अगर नींद आने में कोई समस्या हो या नींद आने में कोई उलझन लगे तो समझिए कि ये नीलम आपके लिए अनुकूल नहीं है। नीलम चेंज करके दूसरा नीलम ले आइए। अगर सब कुछ सामान्य रहे, कोई दिक्कत महसूस ना हो, आप आराम से सोएं, आराम से जगें, तो ये नीलम आपके लिए अनुकूल होगा। तो जब आपने ये जांच कर ली कि कौन सा नीलम आपके लिए अनुकूल है, तो उसको अंगूठी बनवाकर या लॉकेट बनवाकर आप शनिवार की रात को धारण कर सकते हैं। नीलम पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, करियर में समस्या हो सकती है, धन की हानि से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। वृश्चिक राशि, आर

आज कोई निर्णय मत लीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ काम बन जाएगा, लाभकारी यात्रा इस समय हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब ये जानते हैं कि सामान्यतः कौन सा व्यक्ति नीलम पहन सकता है और किनके लिए नीलम पहनना अच्छा नहीं है, अशुभ है। वृषभ लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न और मकर लग्न वालों के लिए सामान्यतः नीलम बहुत ज्यादा शुभ होता है। मेष लग्न और मिथुन लग्न के लोग विशेष दशाओं में नीलम पहन सकते हैं। कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु और मीन लग्न में नीलम कदापि धारण नहीं करना चाहिए। बिना कुंडली दिखाए केवल शौक में आकर बिना जांच पड़ताल के नीलम मत पहनिए। लग्न के अलावा आपकी जरूरत के हिसाब से भी आपको नीलम पहनाया जा सकता है। जैसे अगर आपको न्यूरो प्रॉब्लम है, माइग्रेन की दिक्कत है, स्पाइनल कॉर्ड की या नसों की समस्या है तो वहां भी नीलम पहनने से फायदा हो जाता है। अगर आप लोहा, पेट्रोल या शराब इनका व्यापार करते हैं तो आप सोच विचार करके नीलम पहन सकते हैं। अगर खाद्य पदार्थ, सोना या धर्म से संबंध रखते हैं तो बहुत सोच समझ करके, बहुत विचार करके नीलम पहनिएगा। नीलम पहनने की मुख्य बात यह है कि अगर आपको स्वास्थ्य में जरूरत है या आपकी कुंडली में शनि अच्छा है लेकिन आपको अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, तब ऐसी स्थिति में आप सोच समझ करके नीलम पहन सकते हैं और शनि देव की कृपा पा सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। मकर राशि, सेहत की स्थिति बेहतर होगी, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, अनावश्यक तनाव मत पालिए, वाद विवाद से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके
दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के

योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे, रिश्तों में समस्या हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। सामान्यतः नीलम धारण करने में ज्यादा सावधानी रखी जाती है, बाकी रत्नों के साथ ऐसी बात नहीं है। ऐसा क्यों? देखिए, शनि के रत्न नीलम का जो रंग है वो हमारे शरीर के चक्रों में नहीं मिलता। बाकी ग्रहों के रत्नों का जो रंग है वो आपको अपनी शरीर के मन के चक्रों में मिलेगा और उसी चक्रों के आधार पर रत्न काम करते हैं। अगर आप नीलम पहनते हैं तो उसको आपके शरीर के साथ एडजस्ट होने में टाइम लगता है, जल्दी एडजस्ट नहीं होता। इसीलिए नीलम पहनने में सावधानी रखी जाती है कि अगर नीलम एडजस्ट ना करे तो किसी तरह की मुश्किल या मुसीबत जीवन में ना आ जाए। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। नंबर 2, विवाद तय हो सकता है। नंबर 3, धन लाभ के योग हैं। नंबर 4, स्वास्थ्य की समस्याएं दूर होंगी। नंबर 5, संपत्ति का लाभ हो सकता है। नंबर 6, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 7, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 8, स्थान परिवर्तन हो सकता है। नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब जान लेते हैं क्या है आज भाग्य पहर का शुभ समय और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में शनि मंत्र का जप करिएगा। आपके करियर में जो बाधा चली आ रही है वो बाधा दूर हो जाएगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान

अगला प्रश्न बलराज जी ने हमें लिखा है और बलराज जी हमें अमृतसर से मेल लिखते हैं, अपनी बेटी के बारे में जानना चाहते हैं। इनकी बेटी की जन्म तारीख है 29 दिसंबर सन 2000, जन्म का समय सुबह के 6:09, जन्म स्थान है अमृतसर। बलराज जी कह रहे हैं कि मेरी बेटी आगे विदेश में पढ़ने जाना चाहती है, क्या उसे विदेश में पढ़ाई के लिए भेजना उचित होगा? बलराज जी, आपकी बेटी की कुंडली के हिसाब से साल 2027 के अगस्त तक अभी विदेश भेजने का उचित समय नहीं है। दुनिया भर में अशांति भी दिख रही है और आपके बेटी की दशा भी ताकतवर नहीं है, तो मैं यही कहूंगा कि इस समय के हिसाब से आप उनको इंडिया में रहने दें, अगले साल उनके विदेश का विचार कर सकते हैं। इनके जिद्दी स्वभाव के लिए, बेहतर वाणी के लिए इनको एक ओपल बनवा के पहनाइए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल इनको पहनाएं और आप इनके पिता हैं, इनके लिए रोज सुबह 108 बार ओम आदित्याय नमः का जप करें, इनको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई बड़ी मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो लौंग खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, घी खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, अपने साथ 2 लौंग रखकर ले जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए, इलाज के लिए, तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो नीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा।

शुभ होगा मकर राशि वालों के लिए, हर कार्य में सफल होंगे, चिंताएं समाप्त तो होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा सिंह राशि वालों के लिए, धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। आज सावधान रहना होगा कुंभ राशि वालों को, बेवजह के तनाव और बेवजह की चिंता की नौबत आ सकती है। आइए अब जान लेते हैं आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। इस समय अधिक मास चल रहा है तो किसी भी नए काम की शुरुआत मत करिएगा। आज किसी निर्धन व्यक्ति को जल और फल का दान करें तो काफी शुभ रहेगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आज तक ने वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है। मॉस्को में आज तक से खास बातचीत में पुतिन से कई मुद्दों पर बात हुई। सुखोई 57 डील को लेकर भी पुतिन ने बड़ी बात कह दी।
1: ठीक है, अब मैं आपसे भारत को लेकर सवाल पूछना चाहती हूँ। कल आप कुछ एडिटर्स से मिल रहे थे और आपने Su-57 के बारे में बात की थी और सहयोग का प्रस्ताव भी रखा। क्या वह प्रस्ताव अभी भी मान्य है? इसे लेकर क्या जानकारी है और भारत के साथ आपकी क्या बातचीत चल रही है?
2: भारत और हमारे बीच सैन्य और तकनीकी सहयोग और आपसी तालमेल के मामले में बहुत अच्छे और लंबे समय से चले आ रहे संबंध हैं। भारत की सशस्त्र सेनाओं का एक बड़ा हिस्सा रूसी उपकरणों और सामग्री से लैस है। यह परंपरा सोवियत काल से चली आ रही है और आज भी कायम है। भारतीय मित्रों के साथ हमारे संबंध इस मायने में खास हैं कि ये हमारे आपसी विश्वास पर आधारित हैं। हम सिर्फ व्यापार या खरीद फरोख्त पर ही ध्यान नहीं देते, बल्कि साझा रिसर्च को आगे बढ़ाने पर भी खास ध्यान देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मध्यम दूरी की मिसाइल ब्रह्मोस है। इस मिसाइल के डिजाइन में भारतीय विशेषज्ञों के साथ साथ रूसी विशेषज्ञों ने भी शुरू से ही भाग लिया और परिणाम शानदार रहे। भारत पारंपरिक रूप से हमसे विमान और हेलीकॉप्टर खरीदता रहा है। Su-57 एक बहुत ही अच्छा विमान है, शायद दुनिया का सबसे आधुनिक और सबसे कुशल विमान है। हमने प्रस्ताव दिया है और मैंने कल अपने भारतीय मित्रों से यही कहा था कि हमें मिलकर यह काम करना चाहिए। खैर, योजना सफल नहीं हुई, लेकिन हमने इसे अपने दम पर किया।
0: तो आज तक से खास बातचीत हुई और बातचीत में पुतिन ने भारत को अहम साझेदार बताया। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि भारत किसी के दबाव में नहीं आता, जो भारत के लिए सही है भारत वही करता है।
2: मैं कहूंगा कि भारत हमेशा एक संप्रभु देश के रूप में कार्य करता है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों का कोई भी संभावित खतरा तुरंत उल्टा पड़ जाएगा और मुझे यह निश्चित रूप से पता है। हम लंबे समय से प्रधानमंत्री मोदी के साथ गहन बातचीत कर रहे हैं और वे इसे अच्छी तरह जानते हैं। हम सभी को वह समय याद है जब प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा में जाने से प्रतिबंधित कर दिया गया था और मुझे पता है कि प्रधानमंत्री मोदी इसे कभी नहीं भूलेंगे। अब वे प्रधानमंत्री हैं, सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं और मेरी समझ से अमेरिका और भारत के संबंध सफलतापूर्वक विकसित हो रहे हैं। भारत एक संप्रभु देश है और उसे चुनने की स्वतंत्रता है। भारत उन उत्पादों को चुनता है जिन्हें वह सबसे आधुनिक और अपने लिए सबसे बेहतर मानता है और जो मुनासिब कीमत पर अच्छी क्वालिटी देते हैं। चाहे लोग कुछ भी कहें, भारत हमेशा से इसी तरह काम करता आया है। कैसे? दरअसल भारत हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों के मद्देनजर काम करता है। रक्षा एक बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, लेकिन एक बात खास तौर पर अहम है, ये बेहद जरूरी है, और वह ये है कि भारत के साथ हमारा सहयोग हमारे अन्य सभी साझेदारों की तरह राजनीतिक माहौल को देखकर बदलता नहीं है। हम किसी के दबाव में नहीं आ सकते। भारत को यह मत दीजिए, यह हमसे कोई नहीं कह सकता और न ही कोई ऐसा कहने की कोशिश करेगा। हम हमेशा वही करेंगे जो हमें सही लगता है और हम अपने साझेदारों, विशेष रूप से भारत जैसे साझेदारों को दिए गए वादों पर हमेशा खरे उतरेंगे।
0: ईरान युद्ध पर रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि मिडिल ईस्ट पर युद्ध थोपा गया। उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक ईरान पर हमला हुआ जिससे वैश्विक स्थितियां अब बहुत तेजी के साथ बदली हैं।
1: अब मैं युद्ध के प्रश्न पर वापस आती हूं। ईरान अमेरिका युद्ध हॉर्मुज जल अडमरु मध्य पर नाकाबंदी वाकई चिंता का विषय है। रूस इसे किस नजरिए से देख रहा है? वैश्विक स्तर पर इसके प्रभाव के बारे में आपका क्या आकलन है, इस तथ्य के अलावा कि हाँ, रूस को शायद थोड़ा फायदा हुआ है? ईरान पर नाकाबंदी और हमले का आपका क्या आकलन है? क्या आप इसे उकसाया हुआ मानेंगे या बिना उकसावे के?
2: हाँ, मुझे ईरान की ओर से कोई उकसावा नजर नहीं आता। मेरा मानना है कि किसी बिंदु पर हम सहमत हुए थे, हमने सहमति जताई थी। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर IAEA में सब कुछ नियंत्रण में था, लेकिन फिर स्थिति पूरी तरह बदल गई और इसी के चलते ये त्रासदी हुई जो हम आज देख रहे हैं।
0: और देखिए, फिर हम आपको बता रहे हैं आपसे कुछ देर बाद, यानी 10 बजे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से पूरी डिटेल बातचीत, किन किन मुद्दों पर पुतिन ने क्या कहा, भारत को लेकर आने वाले वक्त में क्या तैयारी है, कैसे रिश्ते और मजबूत होंगे, ये पूरा इंटरव्यू आपको दिखाएंगे। लेकिन अब आपको एक बड़ी खबर बताते हैं, और ये बड़ी खबर आ रही है गुजरात से। गुजरात के मोरबी में बड़ा सड़क हादसा हुआ, सड़क पर खड़े वाहन से तेज रफ्तार कार टकरा गई और इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हलवत के चराडवा के पास हुआ यह हादसा, वाहन बहुत तेज रफ्तार से आ रहा था, कार बहुत तेज रफ्तार से आ रही थी और एक वाहन से टकरा गया, 7 लोग सवार थे कार में। यह भी बताया जा रहा है कि हादसा बहुत भीषण था, काफी दूर तक आवाज आई, कार के परखच छोड़ गए, फिर क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया, गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो गई थी। गुजरात के मोरबी में यह बड़ा हादसा हुआ। और अब बात करेंगे बिहार की, और बिहार की जब बात आती है तो बिहार के पुलों का जिक्र बहुत होता है। पुल, बिहार के पुल का उद्घाटन कब होता है और कब वो खराब हो जाता है पता ही नहीं चलता। 2 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं मेरे दाएं बाएं। बक्सर में 4 दिन पहले पुल का उद्घाटन हुआ, पूजा के साथ फूल माला चढ़ाए गए, गाड़ियां वहां से निकलना शुरू हुई, और अब क्या हुआ, अब क्षतिग्रस्त हो गया। गोपालगंज में पुल के जोड़ों के बीच एक ईंट के बराबर दरार आ गई, जो आप इस तरफ देख रहे हैं ना, ये गोपालगंज बीच में गैप देखिए, यहां पर एक शख्स वीडियो बना रहा था, उसका मोबाइल जेब से निकला और गिर गया। अब ये देखिए इतना बड़ा गैप, ये गोपालगंज में, और यहां पर आप देख रहे हैं ये पुल तो अभी बना था, 10 दिन पहले उद्घाटन हुआ था, लेकिन ये भी गया। ये हालात यहां पर हो गए हैं, बिहार के पुल का हाल हम आपको बता रहे हैं। वहीं बक्सर का इटाड़ी गुमटी पुल, वो भी क्षतिग्रस्त हो गया, मात्र 4 दिन पहले इस पुल का उद्घाटन हुआ और अब पुल बंद कर दिया गया है। 26 करोड़ 40 लाख की लागत से बने रोड ओवरब्रिज की ऊपरी परत धस गई। 11 साल के इंतजार के बाद आम जनता के लिए कुछ ही दिन पहले उद्घाटन हुआ था, लोगों ने बहुत राहत की सांस ली थी कि अब आसानी से जाएंगे, लेकिन 4th दिन ही पुल के पिलर नंबर 5 के ऊपर की परत धस गई। देखिए आप, ये आपके सामने,
3: आप सोच सकते हैं कि जिस चीज को 11 साल से इंतजार कर रहे हैं और इंतजार के बाद अगर मिलता है तो 4 दिनों में ध्वस्त हो जाता है, तो सोचिए नहीं, ये देखिए कैसे, क्योंकि ये जो पुल है करीब 4 दिन पहले इसको खोला गया था चलने के लिए, लेकिन 4 दिनों में ये पुल टूट गया, यानी कि कहिए कि ध्वस्त हो गया और इसको बंद कर दिया गया है। ये दरअसल बक्सर के इटाढ़ी गुमटी पर बना 26 करोड़ 40 लाख का वो नया पुल है जिसको लेकर कई बार आंदोलन हुआ, कई बार लोग धरने पर बैठे, उसके बाद ये पुल मिला, तो ऐसे हालात में मिला कि 4 दिन बाद ये इस परिस्थिति में आ गया कि लोग अब घेर कर देख रहे हैं कि भाई ये क्या हुआ है। ये एक दर्दनाक घटना तो नहीं कही जा सकती है, शर्मनाक घटना कही जा सकती है, और शर्मनाक घटना के कौन कौन विलेन है ये तो तय जनता को करना है। ऐसे में ये जनता सामने खड़ी है, हम उससे भी जानने का प्रयास करेंगे कि भाई ये जो घटना घटी है आपको आश्चर्यचकित तो नहीं करती होगी ना?
4: ना ना, ये तो मतलब वही होना था जो हुआ है, इसे पहले भी हुआ है कई बार, ये तो देखने वाली चीज है, ये तो सामने है जो प्रत्यक्ष में आपको दिख रहा है,
5: बस वही है जो देख रहे हैं, टूट गया है पुल
3: 4 दिन पहले।
5: हाँ, 4 दिन पहले बना था, आज टूट गया, फिर ट्रक चढ़ी है, वो तो अच्छी बात है, किसी का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है।
3: सर, आपको लगता है कि मतलब ये पुल लगता था कि चलेगा नहीं, ये तो समझ में आ रहा होगा, तो इतना जल्दी फंसेगा ये तो विश्वास नहीं होगा?
6: ये विश्वास नहीं था इतना जल्दी फंस जाएगा।
3: देखिए, लोगों को लगातार सूचनाएं टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ये बहुत मिलती रहेगी है कि पुल भस रहा है और पुल भसेगा भी, लेकिन 4 दिनों में अगर पुल भसने लगे तो बिहार की उस सरकार को क्या कहेंगे जो कई परिवर्तन के बाद इस समय भी डबल इंजन की सरकार चल रही है, विकास के कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे विकास का क्या मतलब है जो 4 दिन तक टिके नहीं। बिहार तक के लिए बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे।
0: और हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र पांडे के इन सवालों का जवाब बिहार सरकार को जल्द देना ही चाहिए। खबरें लगातार जारी रहेंगी, लेकिन अभी आपको दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबर यानी हेडलाइंस।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

सबसे बड़े मंच पर आज तक के साथ दुनिया के सबसे बड़े दिग्गज रूसी राष्ट्रपति पुतिन का वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का भारत हमेशा राष्ट्रहित के लिए समर्पित पीएम मोदी की तारीफ की सुबह 10 बजे देखिए पूरा शो। सूरत से पीएम मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा अराजकता फैलाकर अवसर तलाश रही है कांग्रेस, देश को नीचे दिखाने में जुटे हैं निराशावादी नेता। जेड प्लस सुरक्षा हटाने से नाराज लालू, राबड़ी ने लौटाई सरकारी सुरक्षा कटौती के बाद बंगले पर लगाए गए थे बिहार पुलिस के जवान, घर के बाहर पसरा सन्नाटा। फैसल खान को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है पटना पुलिस, रात भर कोचिंग के बाहर चलता रहा ड्रामा, डटे रहे छात्र और पुलिस के जवान, आर्म्स एक्ट के तहत

0: केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने किया ऐलान।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
0: अमेरिका ईरान तनाव के बीच कुवैत पर ईरान का हवाई हमला, ईरान ने कुवैत पर मिसाइलें बरसाई। मिसाइल और ड्रोन हमलों की कुवैती एयर डिफेंस ने किया इंटरसेप्ट, हमलों के बाद गूंजा कुवैत। कुवैती सेना ने हमलों के बाद स्थानीय लोगों के लिए जारी किए निर्देश, नागरिकों से सतर्क रहने की अपील। ईरानी हमलों के बाद सेंटकॉम का दावा, ईरानी मिसाइल हमले नाकाम, अमेरिकी सेना की जवाबी कार्रवाई जारी। ईरानी हमलों को अमेरिकी एयर डिफेंस ने कुवैत के आसमान में रोका, कुवैत बहरीन की ओर मिसाइल इंटरसेप्ट। आज तक ने फिर से रच दिया इतिहास, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक फोरम कार्यक्रम में इंडिया टुडे ग्रुप की फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन ने निभाई एंकर की भूमिका, राष्ट्रपति पुतिन भी मंच पर। कार्यक्रम में पुतिन ने भारत को बताया रूस का प्रमुख साझेदार, का सॉफ्टवेयर में भारत की बड़ी हिस्सेदारी, ब्रिक्स ने G7 को पीछे छोड़ा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप को दिया मैसेज का, भारत ने कभी भी अपनी सीमाओं के बाहर से मिले आदेशों का पालन नहीं किया। भारत को लेकर पुतिन ने कहा नई दिल्ली ने बाहर से मिले आदेशों को कभी तवज्जो नहीं दी, उनका इशारा भारत पर अमेरिकी दबाव की ओर था। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने Spy 26 के इस बात पर जोर दिया कि संप्रभुता और संप्रभु फैसले लेने के अधिकार पर कभी सवाल नहीं उठाया जा सकता। विपक्ष पर पीएम मोदी का ताबड़तोड़ प्रहार, सूरत के कार्यक्रम में कहा आत्मनिर्भर अभियान का मजाक उड़ाते हैं देश में कुछ निराशावादी लोग। पीएम मोदी ने वैश्विक संकट का किया जिक्र, कहा ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भरता जरूरी, पिछले 12 सालों में देश ने जो क्षमता बढ़ाई वो बेहद अहम। कांग्रेस पर बढ़ के पीएम मोदी का बयान, कहा देश पर अराजकता फैला रही है, कांग्रेस ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रखा। दमन को पीएम मोदी की बड़ी सौगात, 2,970 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। पीएम मोदी ने दमन में किया नमो एयरपोर्ट टर्मिनल और नमो अस्पताल का उद्घाटन, कहा विकास के नए दौर की शुरुआत। बलरामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 294 करोड़ रुपए की 75 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। यूपी के बलरामपुर में सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा मिट्टी में मिल गए माफिया, बोले बेटी से छेड़छाड़ करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। बलरामपुर में एसपी के गुंडे माफिया वाले गरीबों का राशन खा जाते थे, आज यूपी दंगा मुक्त और विकास की राह पर है, ऐसा सीएम ने कहा। श्रावस्ती के गुलरा स्थित केन नाला को मिला नया दर्जा, मुख्यमंत्री योगी ने बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित की। मैनपुरी में आज शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्ति शरण के पैर छूती दिखी डिंपल यादव, शंकराचार्य ने सीएम योगी पर हमला बोला। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा, कहा यूपी में सत्ता में आना अब अखिलेश यादव की बस की बात नहीं है। अलवर में पुलिस कस्टडी के बीच धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार आरोपी को पूर्व विधायक ज्ञानदीप आहूजा ने थप्पड़ जड़ा, वीडियो वायरल हुआ। दिल्ली में फ्लोरेशन गेस्ट हाउस को एमसीडी ने किया सील, यहीं पर आग लगने से किसकी हुई थी मौत। सीबीएसई ने दिल्ली पुलिस में दर्ज कराई शिकायत, का है 12वीं रिजल्ट के बाद हमारे पोर्टल पर हुए हमले लेकिन नहीं हुआ डाटा लीक। जेईई परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्रालय का बयान, परीक्षा परिणाम और अंक पूरी तरह से सुरक्षित। बागी नेता रजब्रत बनर्जी को बंगाल विधानसभा का नेता विपक्ष बनाए जाने के खिलाफ सोमवार को हाईकोर्ट का रुख करेंगी ममता, स्पीकर के फैसले को चुनौती देगी। बैठक में ममता ने टीएमसी की सभी कमेटियों का किया पुनर्गठन, सांसद अभिषेक बनर्जी बने रहेंगे महासचिव, डेरेक ओब्रायन और रडोला सेन संयुक्त सचिव। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से की भेंट, तस्वीर की शेयर। एनआईए ने पूर्व टीएमसी विधायक शौकत को किया गिरफ्तार, कोलकाता के पास भागने की कोशिश के दौरान दबोचा। बंगाल के बैरकपुर शहर में युवा तृणमूल कांग्रेस कार्यालय पर बीजेपी ने किया कब्जा, जमकर की तोड़फोड़। लालू राबड़ी के 10 सर्कुलर आवास पर छाया सन्नाटा, सभी सुरक्षाकर्मी हटाए गए। जेड का सुरक्षा वापस लेने के बाद लालू राबड़ी का बड़ा फैसला, अपनी सुरक्षा पूरी तरह से कर दी वापस। एक दिन पहले ही लालू परिवार की सुरक्षा में बदलाव किया गया था जिसके बाद अब लालू और राबड़ी ने अपनी सुरक्षा लौटा दी। शिवसेना उद्धव के सांसद संजय राउत की विपक्षी दलों से अपील, एकजुट हो सभी पार्टियां, कांग्रेस से अलग हुए दल आए साथ। मालवीय अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार का बड़ा एक्शन, हौजरानी और गिटौरनी इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर। दुनिया में उथल पुथल के बीच भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर, वित्त वर्ष 2026 में जीडीपी विकास दर अनुमान से ज्यादा 7.7 रही। देश के जीडीपी विकास दर में बढ़ोतरी पर पीएम मोदी का पोस्ट, लिखा भारत की विकास रफ्तार मजबूत, युवाओं के लिए अवसर बढ़ाने पर जोर। विकास दर में इजाफे के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा, कहा ताजा आंकड़े बता रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत, राहुल ने बोला था आ रही है आर्थिक सुनामी। अमेरिका से वाणिज्य समझौते पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा अगले महीने तक लागू हो सकता है पहला चरण, भारत आ सकता है अमेरिकी डेलीगेशन। अंडमान निकोबार में INS बात को लेकर राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, कहा मोदी सरकार ने नौसेना की अनसुनी की बात, नहीं किया INS बात का विस्तार। समुद्र मंथन मिशन में भारत को बड़ी कामयाबी। गहरे समुद्र में ऑयल इंडिया को प्राकृतिक गैस मिली है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने इसका ऐलान किया। राजस्थान में कोटा की बात करूं, सरकारी अस्पताल के दावों की सवाल। अस्पताल में ड्रिप चढ़ते ही मरीज कांप गए, दो मरीजों को रिएक्शन हुआ। रायपुर में राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। डॉक्टर चरणदास महंत का पुतला जलाया। महाराज राम भद्राचार्य पर टिप्पणी को लेकर नाराज। गढ़चिरौली में भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसान का अनिश्चितकालीन आंदोलन। औद्योगिक परियोजनाओं पर बड़ा विवाद। कांगड़ा में भूकंप से ली धरती। घरों से बाहर निकले लोग, धर्मशाला रहा केंद्र बिंदु। बिजनौर में पति ने पत्नी की गर्दन पर चाकू से किया जानलेवा हमला। जंगल में घटना को अंजाम दिया। शिवपुरी में एक तरफा प्यार में संती युवक ने नाबालिग को पहले कुल्हाड़ी मारी, फिर गले में रस्सी बांधकर लटका दिया। पावनगर में कार में अचानक लगी आग, बाल बाल बची, कार सवार की जान। इंदौर में भी शोरूम में लगी भीषण आग, निवासियों ने सीढ़ी और रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया। लखनऊ एयरपोर्ट पर करीब 10 करोड़ की ड्रग्स बरामद। बैंकॉक से मस्कट होते हुए लखनऊ पहुंचे थे यात्री, 13 पैकेट बरामद। समस्तीपुर के मऊ बाजार में दुकान विवाद पर पथराव, पथराव और हवाई फायरिंग से अफरा तफरी। दुकान खाली कराने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, पिस्टल लहराकर कई राउंड फायर। समस्तीपुर में पथराव और फायरिंग से जला इलाका, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति नियंत्रित की। बाराबंकी में बुलडोजर एक्शन, प्रशासन ने अवैध 36 मकान गिराए। फरीदकोट में एक प्लास्टिक के गोदाम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पंजाब के पटियाले से पावरकॉम हेड ऑफिस के सामने प्रदर्शन। आईटीआई पास बेरोजगार नौजवानों को पुलिस ने लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया।

कानपुर में कोचिंग संचालक ने 18 साल पुराने दोस्त की हत्या की। पुलिस कमिश्नर ने सीसीटीवी में बुर्का पहने शख्स का खुलासा किया। गोरखपुर में पिता ने 3 बच्चों को दही में जहर दे दिया, 2 की मौत, 1 बच गया। फिरोजाबाद में सड़क पार कार का दरवाजा खोलना जानलेवा हुआ, बाइक सवार ससुर की मौत, दामाद गंभीर। मनाली में विदेशी महिला पर्यटक से अभद्रता का वीडियो वायरल, एसडीएम ने जांच के आदेश दिए, जल्द होगी गिरफ्तारी। बक्सर के टाड़ी कुंभी रेलवे क्रॉसिंग पर 26,40,00,000 रुपए की लागत से बना ओवरब्रिज का पिलर हुआ क्षतिग्रस्त, 96 घंटे भी नहीं टिक पाया। पटना में गिरफ्तार हो सकते कोचिंग टीचर फैजल खान, पटना में बीएनएस की धारा 109 के साथ साथ आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज। फैजल खान के 2 गार्ड्स गिरफ्तार को किया गया है, वो पुलिस की पूछताछ में खुलासा करते हैं कि फैजल खान के कहने पर गोली चलाई थी। दिल्ली में गुरुवार की भीषण आंधी के बाद से ही तापमान में गिरावट बरकरार, शुक्रवार को अधिकतम तापमान 35.8। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में बारिश और ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी, तापमान गिरा, श्रद्धालुओं की भीड़ बरकरार है। केरलम में एर्नाकुलम में मानसून की भारी बारिश, शहर में पानी की वजह से लोगों को परेशानी। केदारनाथ में बारिश और ठंड में भी भक्तों की आस्था भारी है। केदारधाम में पल पल बदल रहा है मौसम, फिर भी 11,00,000 के पार पहुंचा श्रद्धालुओं का आंकड़ा। पहाड़ों में लगातार मौसम खराब, प्रशासन चौकस, रोज 20,000 भक्त कर रहे हैं दर्शन। बारिश और ठंड के बीच यात्रियों की सुविधाओं को बरकरार रखने में सरकारी कर्मचारी जुटे हुए हैं, गर्मी की छुट्टी की वजह से भीड़ ज्यादा है। जम्मू में क्षेत्रीय मौसम विभाग का उद्घाटन, जम्मू कश्मीर लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में सटीक मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन में मदद मिलेगी। काजल अग्रवाल श्रेष्ठ स्थल पड़ेगी फिल्म द इंडिया स्टोरी का नया टीजर रिलीज, खेती में जहरीले कीटनाशकों के दुरुपयोग जैसे गंभीर मुद्दों पर फिल्म बनी है। एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौट रही है लोकप्रिय एनिमेटेड फ्रेंचाइजी आइस एज। फिल्म भारत भाग्य विधाता को प्रमोट करने में जुटी कंगना, देश के बड़े शहरों में जाकर अलग अलग क्षेत्रों में जुड़े अनसंग हीरोज को सम्मानित करने का अभियान शुरू करेंगी। जैकी श्रॉफ की वेडिंग एनिवर्सरी पर पत्नी आयशा श्रॉफ ने शेयर की अनसीन फोटो अच्छे कैप्शन के साथ। श्रद्धा कपूर और करण जौहर के बाद एकता कपूर ने ज्वेलरी बिजनेस पर कदम रखा, लैब ग्रोन डायमंड ब्रांड एक प्रा ज्वेलर्स के साथ जुड़ी। दुनिया में उदल बदल के बीच भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर, वित्त वर्ष 2026 में जीडीपी विकास दर अनुमान से ज्यादा।

0: का फैसला किया। इंडिगो ने हांगकांग शंघाई समेत 6 इंटरनेशनल रूट्स का फ्लाइट को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है। हर घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बिक्री पर कंपनियों की अंडर रिकवरी बढ़कर करीब 700 रुपए पहुंची। पिछले महीने कंपनियों को 650 रुपए प्रति सिलेंडर घाटा था। देश के कई राज्यों में एटीएम से नकदी कम होने पर बैंकर्स एसोसिएशन को अलर्ट किया गया। डीबीटी पैनल वाले पाने वाले ग्रामीण और छोटे शहरों के लोगों को परेशान होना पड़ सकता है। अब बात जम्मू कश्मीर में नशे के खिलाफ छिड़े युद्ध की। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने क्रॉस बॉर्डर ड्रग्स तस्करी रोकने के लिए अभियान शुरू किया। गांधरबल में उन्होंने एंटी ड्रग रैली निकाली। इस दौरान भारी संख्या में लोगों ने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर बनाने का संकल्प लिया।
1: हमारे साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैं। आज 14th पदयात्रा थी, कश्मीर का लेग कंप्लीट हुआ है और पिछले तकरीबन 50 दिन हुए हैं। वेव की तरह फैला है ये नशा मुक्त अभियान। सर, सबसे पहले जिस तरीके का जनसैलाब और जो रिस्पांस आपको मिल रहा है, एक्सपेक्टेड था क्योंकि अब लोग कनेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबको लग रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू था और अभी तक निगलेक्ट हो रहा था, और आपने जिस तरीके से इसको टैकल किया, हैंडल किया है, आज एक पूरी तरह एक जो है मुहिम बन गई है, कैसे देखते हैं आज की?
2: कॉमन मैन को शुरू से लग रहा था और हमको भी लग रहा था, कुछ लोगों को नहीं लग रहा था जी, उनको भी अब समझ में आ गया है। तो मुझे लगता है कि हर परिवार के लोग ये सोच रहे थे कि ये ऐसी समस्या है जो हमारे यहां भी दस्तक दे सकती है, इसलिए केवल प्रशासन का अभियान न रह करके लोगों का अभियान बन गया है। और जिस तरह से प्रशासन के हमारे सहयोगियों ने या पुलिस के लोगों ने जिस तरह शिद्दत से काम किया है इस पूरे 55 दिन में, उससे भी लोगों का एक कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, ये केवल बात नहीं हो रही है, सेंसिटिविटी के साथ और सीरियसली काम हो रहा है। 1100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी, 900 केजी से ज्यादा सीजर, करीब 9-10 किलो हीरोइन जब्त होना, ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त होना, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन निरस्त होना, प्रॉपर्टी सीज करना, बहुत ही मैं कहूं कि एक संगठित गिरोहों को कैसे खत्म किया जाता है, उस तरह से नशा तस्करों को खत्म करने का अभियान जम्मू कश्मीर पुलिस ने चलाया है। और प्रशासन के लोगों ने भी अपने अपने स्थानों पर बड़ी संवेदनशीलता के साथ जो नशे के दलदल में फंसे हुए थे उनका इलाज, उनकी काउंसलिंग, उनको रोजगार के अवसर कैसे दिए जा सकते हैं, और जागरूकता कार्यक्रम मैं समझता हूं कि 6 साल मुझे होने जा रहे हैं, किसी अभियान में इतने जागरूकता कार्यक्रम हुए मैंने नहीं देखा है। तो इसका यह व्यापक असर है और मैं कह सकता हूं कि आम नागरिक कश्मीर का या जम्मू का वो पूरी तरह इस अभियान से जुड़ गया है।
1: सर, इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए क्या सोच रहा है, क्योंकि 100 दिन तो है, लेकिन आपने पिछली बार खुद भी कहा था कि बहुत बड़ा चैलेंज है, मिशन है, आगे भी ले जाना पड़ेगा।
2: ये ऑलरेडी इंस्टीट्यूशन संस्थागत बनाया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज से 5 साल पहले नशा मुक्त भारत का अभियान शुरू किया था और पिछले 2.5-3 वर्षों में भारत के गृहमंत्री जी भी या 4 वर्षों से रीजन वाइज हर स्टेट की, हर यूटी की बैठक करके प्रभावी कार्रवाई हो इसकी व्यवस्था करते रहे हैं। जम्मू कश्मीर से संदर्भित भी बैठकें चंडीगढ़ में कई बार उन्होंने खुद ली हैं और यहां भी पुलिस ने पहले भी कार्रवाई की। जम्मू कश्मीर में मैं समझता हूं कि नशा तस्करी और आतंकवाद ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। सामान्य रूप से नशा तस्करी में कुछ लोग संपन्न होते रहे होंगे, लेकिन घूम फिर करके पैसा उन्हीं तंजीमों के पास जाता है जो बंदूक खरीद करके आतंकवादियों को देते हैं, युवाओं को गुमराह करते हैं, रेडिकलाइज करते हैं और आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं और निर्दोष कश्मीरियों का खून बहाते हैं। तो इसलिए ये सोचा गया कि नहीं, जनता को भी ये बात जाननी चाहिए। और समस्या थोड़ी व्यापक हो गई थी, लोग भी चाहते थे कि इस तरह का एक अभियान शुरू हो और मुझे लगता है कि लोगों की चाह के कारण ये अभियान ज्यादा सफल रहा है।
1: सर, पॉलिटिकल जो वन अप मैनशिप होती है होना चाहिए, आपको लगता है जो यहां की पार्टीज हैं एकदम शांत रही आपके अभियान को लेकर जिस तरीके से फैला?
2: मैं नहीं मानता हूं, ये अच्छा काम करना चाहिए और समाज उसके साथ जुड़ता है। बहुत सारे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी इस अभियान से जुड़े हैं, तो मैं कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करने वाला हूं जो करवाना चाहते हैं आप।
1: नहीं, बिल्कुल नहीं सर। आखिरी सवाल ये कि पाकिस्तान वाला एंगल इसमें भी लोगों तक पहुंचाना है कि कैसे वहीं से ये जहर आ रहा है, क्योंकि यहां तो हेरोइन नहीं मिल सकती, वहीं से आ रहा
2: है, लोगों तक पहुंचा है, आप तक पहुंच जाए ये बड़ी बात है। लोगों तक ये पहुंचा हुआ है कि ये सारा जो ड्रग है वो

0: पाकिस्तान से ही आता है और जो जो एंट्री प्वाइंट है वहां पुलिस ने भी व्यापक ढंग का इंतजाम किया है, सेना ने भी व्यापक ढंग का इंतजाम किया है, चाहे वो तंगधार हो, केरन हो, गुरेज हो या उरी हो या जम्मू रीजन में कठुआ, सांबा, रजौरी, पुंछ, जम्मू, हर जगह छांट करके पुलिस अफसर लगाए गए हैं। ड्रोन से जो ड्रॉपिंग होती थी तो हिंटरलैंड में न पहुंचे, इसके लिए भी पुलिस ने काफी प्रभावी कार्रवाई की है। तो मैंने पहले ही कहा कि तीन फ्रंट पर काम कर रहे हैं हम सब, एक सप्लाई चेन को पूरी तरह से डिसरप्ट करना, और मैं कह सकता हूं कि अब आपस में ये स्मगलर बात कर रहे हैं कि अभी जम्मू कश्मीर से बाहर रहना है, अगले साल देखा जाएगा, 26 में गुंजाइश नहीं है। तो उसमें सफलता मिली है, अवेयरनेस तो व्यापक रूप से अवेयरनेस हुई है। उसका परिणाम आपने अगर जब वहां वीडियो देखा होगा गंदरबल में, तो एक डॉक्टर कह रही थी कि पहले पेशेंट नहीं आते थे, अब संख्या काफी बढ़ गई है। तो जो हमारे यहाँ वो टेलीमानस पोर्टल है, नॉर्मली 2-3 कॉल जाती थी, अब 100 से ज्यादा कॉल जा रही है। लोग पुलिस को भी सूचना दे रहे हैं कि ये स्थान है जहां ड्रग पेडलर मिलते हैं, तो पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, तो अवेयरनेस भी हो गया। तीसरा जो रिहेबिलिटेशन वाला फ्रंट है, हम जानते हैं कि वो बहुत चुनौतीपूर्ण है, उसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सभी स्टेक होल्डर से चर्चा करके, देश के विशेषज्ञों से राय करके एक रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी बनाई गई है, संवेदनशीलता के साथ शिद्दत से उसे भी इम्प्लीमेंट किया करने की पूरी कोशिश की जाएगी।
1: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: द रशियन फेडरेशन ऑनरेबल व्लादिमीर पुतिन, प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान ऑनरेबल शाफकत मिर्ज़ियोयेव, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया ऑनरेबल सामिया सुलूहु हसन, ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ऑनरेबल हमसा।
5: Ugh, I have had no luck lately. Wait, Lady Luck?
6: Britsky, I got you. I've had so much luck on SpinQuest.com. They have all of my favorite games, slot games, live blackjack craps, and bubble craps. You can even get a $30 coin pack for just $10.
5: $10 for 30? I'm headed over to SpinQuest.com right now.
7: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
8: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
9: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
10: मिल गया।
11: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
12: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
13: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
14: लायन डेट नट बाइट्स।
15: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: In association with
3: cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
4: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
5: समर कूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल कूलर लाइफ बनाए वंडरफुल।
2: हिंट बड़े आराम से। विमल बोलो जुबां केसरी।
6: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?
7: मैं इस वक्त उसी बिल्डिंग के बाहर हूँ जहाँ पर ये आग लगी।
8: मैं आपको टॉप एंगल से एक तस्वीर दिखाता हूँ और ये तस्वीर जो पूरा मंजर है उसको बयान करने के लिए काफी है।
9: यहाँ पर दूसरा एग्जिट गेट नहीं है तो किस तरीके से सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया गया था?
10: ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से लापरवाही जो है वो पूरे इस इलाके में जो है वो चल रही है।
8: 20 लोगों की जान चली गई। और देखिए जब तस्वीर दिखाई जाती है एक एक करके तो इस तरह से दिल्ली पुलिस की टीम आती है और कहती है कि आप यहां से नहीं दिखाएंगे।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
5: Acoje, the number one Korean skincare brand, now in India.
6: ...of the Russian Federation, Honorable Vladimir Putin. President of the Republic of Uzbekistan, Honorable Shavkat Mirziyoyev. The President of the United Republic of Tanzania, Honorable Samia Suluhu Hassan. Honorable Vice President of the People's Republic of China, Honorable Hamza.
7: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
8: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.

0: अगले महीने संसद का मानसून सत्र आने वाला है और उससे पहले सरकार और विपक्ष दोनों अपने अपने मोर्चे तैयार कर रहे हैं।
1: दो दिन बाद इंडिया गठबंधन की बैठक, दूसरी तरफ सरकार फिर से संसद में डी लिमिटेशन बिल लेकर आने के संकेत दे रही है। ठीक दो साल पहले 5 जून को भी इंडिया गठबंधन के 21 दलों की बैठक हुई थी, तब सबने मिलकर बीजेपी को पटकनी देने के फॉर्मूले गढ़े, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने हरियाणा में कांग्रेस को हराया, महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी, शिवसेना यूबीटी, समाजवादी पार्टी सबको हराया, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस से हारी मगर दिल्ली में केजरीवाल को हराया, बिहार में आरजेडी को हराया, बंगाल में ममता को हराया, असम में पूरे इंडिया गठबंधन को हराया। और अब इस अविजित बीजेपी की काट क्या है, इसी का मंथन करने इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई। कांग्रेस की ओर से 15 दलों को न्योता भेजा गया, लेकिन तमिलनाडु में दूध की जली डीएमके अब विपक्षी एकता की छाछ से भी परहेज कर रही है। कनिमोझी ने कांग्रेस से ऐसा नाता तोड़ा कि संसद में अलग बैठने की बेंच तक तय करवा चुकी, दो टूक कह दिया कि 8 जून की बैठक में डीएमके नहीं जाएगी। अब कांग्रेस समझाने मनाने की कोशिश करती है। हालांकि डीएमके के एक प्रवक्ता अन्नादुराई ने कहा कि दिल्ली में देश के मुद्दों पर डीएमके सरकार के खिलाफ ही रहेगी। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के अंदर विचार हो रहा कि डीएमके की जगह टीवीके को ही गठबंधन में ले लिया जाए। डीएमके कहते हैं कि विजय ने तो सोनिया से मुलाकात तक नहीं की थी, इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में क्या जाएंगे। अब देखना है कि 8 जून को राहुल और खड़गे के बुलावे पर कितने दल दिल्ली में एकजुट होते हैं। खबर है कि इस मीटिंग में नीट सीबीएसई पेपर लीक घोटाले से लेकर युद्ध में तेल गैस संकट से लेकर आर्थिक मंदी, महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। सरकार ने परिसीमन बिल का जिक्र छेड़ दिया है तो उस पर भी रणनीति बनेगी और टीएमसी के अंदरूनी झगड़े के बाद पैदा हुए हालात को लेकर भी चर्चा हो सकती है। खबर है कि इंडिया गठबंधन की ये बैठक ममता बनर्जी के कहने पर बुलाई जा रही है, क्योंकि ममता बनर्जी नतीजों के ठीक बाद कह चुकी है कि अब वो आजाद पंछी है और पूरी तरह मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी एकजुटता पर काम करेंगी।
2: I am grateful to all my India team's leader. Sonia ji rang up me. Rahul Gandhi rang up me. Arvind Kejriwal, Uddhav Thackeray, Akhilesh Yadav, Tejaswi, Hemant Soren Yadav, Jharkhand Chief Minister and all the United India leadership. They are also together. We will bounce back. We will fight this battle.
0: पहले इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की हसरत के साथ कांग्रेस की मीटिंग से दूरी रखने वाली ममता बनर्जी इस बार खुद दिल्ली की बैठक में शामिल होने वाली है, क्योंकि अब मसला सिर्फ विपक्षी एकता का नहीं उनकी पार्टी की फूट का भी है और इसी बदले हुए राजनीतिक समीकरण का फायदा बीजेपी संसद में उठाने की कोशिश कर रही है। और इसीलिए खबर कि परिसीमन बिल फिर से संसद में लाया जा रहा है, जिसमें संसद की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने की योजना रही है। जो कि संसद में नंबरों की बात की जाए तो लोकसभा में अलग अलग बैठने की व्यवस्था करने के बाद डीएमके के 22 सांसद बिल का समर्थन करेंगे, विरोध करेंगे या एब्सटेन करेंगे अभी साफ नहीं। टीएमसी के 28 सांसद जिसमें 20 सांसद नाराजी बताए जाते हैं। पिछली बार सदन में मौजूद 528 में से परिसीमन बिल के समर्थन में 298 के बनाम 230 वोट पड़े थे, 54 वोटों से बिल गिर गया था। इंडिया गठबंधन के दलों के हालात और बैकचैनल हो रही बातचीत में आंकड़े पक्ष में आ जाए तो सरकार के लिए बिल पास कराना आसान हो सकता है। आज तक ब्यूरो।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

सबसे बड़े मंच पर आज तक के साथ दुनिया के सबसे बड़े दिग्गज रूसी राष्ट्रपति पुतिन का वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, का भारत हमेशा राष्ट्रहित के लिए समर्पित, पीएम मोदी की तारीफ की, आगे देखिए पूरा शो। सूरत से पीएम मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा अराजकता फैलाकर अवसर तलाश रही है कांग्रेस, देश को नीचे दिखाने में जुटे हैं निराशावादी नेता। जेड प्लस सुरक्षा हटाने से नाराज लालू, राबड़ी ने लौटाई सरकारी सुरक्षा, कटौती के बाद बंगले पर लगाए गए थे बिहार पुलिस के जवान, घर के बाहर पसरा सन्नाटा। फैजल खान को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है पटना पुलिस, रात भर कोचिंग के बाहर चलता रहा ड्रामा, डटे रहे छात्र और पुलिस के जवान, आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज हुआ है केस। समुद्र मंथन मिशन में भारत को बड़ी कामयाबी, गहरे समुद्र में ऑयल इंडिया को मिली प्राकृतिक गैस का भंडार, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने किया ऐलान।

0: नमस्कार, नमस्ते, द्रास्त विथिया, हेलो। ऑनरेबल प्रेसिडेंट पुतिन,
1: माननीय राष्ट्रपति पुतिन, मेरा आपसे प्रश्न है कि इस कक्ष में 130 देशों के प्रतिनिधि मौजूद हैं और जब विश्व रूस के आर्थिक रूप से अलग थलग होने की बात करता है तो क्या यह वास्तव में उस तरह का प्रतीत होता है? और क्षमा करें, मैं आपसे सीधे पूछ रही हूँ कि क्या रूस अलग थलग है या आज यूरोप आंशिक रूप से अलग थलग है?
2: आपने मुझे संकेत दिया है कि मुझे अपने उत्तर में क्या शामिल करना चाहिए, इसके लिए धन्यवाद। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि रूस कभी अलग थलग हुआ ही नहीं। इस अलगाव की शुरुआत अमेरिका के पूर्व प्रशासन ने की थी, ये बात सभी जानते हैं, और फिर यूरोपीय देशों ने, और वर्तमान में वो अमेरिकी प्रशासन से भी अधिक सफल हैं। लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था और अमेरिका सहित कुछ साझेदारों के सहयोग से हम यहाँ अलग थलग नहीं पड़े।
3: И за счет продолжения сотрудничества с некоторыми партнерами в Соединенных Штатах.
2: हमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है और जैसा कि आपने बताया, हमें अमेरिका के आधिकारिक प्रतिनिधि दिखाई दे रहे हैं। मुझे पता है कि वे यूरोप के प्रतिनिधि हैं और यह एक ऐसी बात है जिसका हम स्वागत करते हैं। हमने कभी भी खुद को किसी से अलग नहीं किया है और अगर स्थिति इस तरह बदली है कि हमें इन देशों के लोग मिले हैं तो हम जरूर इसका स्वागत करेंगे।
1: मैं आर्थिक प्रश्नों पर ही रहना चाहती हूं, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते मुझे आपसे ये पूछना होगा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने एक खुला पत्र लिखा है और उन्होंने न सिर्फ आपसे सीधी बातचीत का प्रस्ताव रखा है बल्कि आपको सीधी धमकी भी दी है और इसे आपका युद्ध बताया है। आपकी अनुमति से मैं उनके शब्द दोहराना चाहूंगी। उनका कहना है कि हमारे लंबी दूरी के ड्रोन ने सेंट पीटर्सबर्ग में आपके मंच का दौरा किया जिसने 1000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की। उनका कहना है कि यह युद्ध आपकी निजी पसंद है, एक ऐसा युद्ध जिसका कोई वास्तविक कारण नहीं है। जेलेंस्की कहते हैं कि आप युद्ध से सहज हैं। उनका कहना है कि आपके लिए आपका अपना जीवन मूल्यवान है। साथ ही उन्होंने आपके और उनके बीच एक बैठक के लिए एक निश्चित तारीख तय करने का प्रस्ताव रखा है। इस पर आप क्या कहेंगे?
2: पहली बात, ये पत्र लिखने वाले ने मेरी उम्र का जिक्र किया है। मैं क्या कहूँ? खैर, हर किसी को अपनी उम्र के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि मेरी उम्र में भी कई अन्य राजनीतिक हस्तियां अपना काम बखूबी निभा रही हैं। उनमें से कुछ मुझसे उम्र में बड़े हैं। खैर, उम्र महत्वपूर्ण है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नहीं। सबसे खास बात यह है कि क्या आप ठीक से काम करने में सक्षम हैं, अपना काम ठीक से कर रहे हैं। तो मेरे कुछ सहकर्मी हैं जो उम्र में बड़े हैं और अभी भी बहुत ऊर्जावान हैं, चाहे वे सही फैसले ले रहे हों या नहीं। खैर, ये कहना मेरा काम नहीं है, ये एक राजनीतिक आकलन है। लेकिन फिर भी उन्होंने निर्वाचित पद पर बने रहने के बारे में कहा कि यह अहम है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आपको चुनाव में भाग लेना होगा, चुनाव लड़ना होगा, साहसी बनना होगा और हमेशा संविधान का पालन करना होगा। क्योंकि यदि आप संवैधानिक दायरे से बाहर सत्ता पर काबिज रहते हैं तो यह सत्ता का अतिक्रमण माना जाता है और यह एक अपराध है। इसलिए किसी को डरना नहीं चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए और यह मैं सभी को सुझाऊंगा। खासकर इसलिए क्योंकि यूक्रेन ने कहा था कि वे चुनाव कराएंगे और फिर अचानक वे चुप हो गए। पत्र लिखने वाले ने कहा है कि एंकरेज में हुए समझौतों का पालन नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यूक्रेन और रूस के बीच हुए समझौतों के सच्चे गारंटर की तलाश यूरोप में की जानी चाहिए। विश्वसनीय गारंटर हमेशा स्वागत योग्य होते हैं। लेकिन वे अमेरिकी प्रशासन और विशेष रूप से राष्ट्रपति ट्रंप के इस आदेश से इनकार क्यों कर रहे हैं, ये मेरी समझ से परे है। वे अमेरिका से हथियार तो चाहते हैं, लेकिन वे अमेरिकी प्रशासन या राष्ट्रपति ट्रंप को गारंटर के रूप में नहीं देखना चाहते, और ये बात सवाल खड़े करती है। हमने राष्ट्रपति ट्रंप को देखा कि वो ओवल ऑफिस में जेलेंस्की को निर्देश दे रहे थे, उन्हें समझा रहे थे, उन्होंने उनके पहनावे तक के बारे में बता रहे थे, ये भी कि कभी कभी खून खराबा करना शायद ठीक है, लेकिन हर वक्त नहीं।
3: मनियर
2: अब शिष्टाचार की बात करें तो कुल मिलाकर मैं इस काम के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद कहना चाहूंगा। ये उपयोगी रहा, लेकिन उन्हें इस पर अभी और काम करना होगा, इसे जारी रखना होगा। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात पर आते हैं। यूक्रेनी पक्ष ने हमारे संबंधों को सार्वजनिक रूप से उजागर किया है, उन्होंने इसे सार्वजनिक क्षेत्र में लाना सही समझा, जो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता। मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से अनुचित है, लेकिन फिर भी इससे मुझे कुछ ऐसी बातें कहने का अधिकार मिल जाता है जिनके बारे में कुछ ही लोग जानते हैं या शायद कोई भी नहीं जानता।
3: तो это даёт мне возможность и даёт право сказать о некоторых вещах, о которых мало кто знает или вообще пока никто не знает. О чем идет речь? И вот это уже серьезно. Это уже без всякой иронии, без всякой шутки.
2: Я гамбир мамла хэ. मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। तीन हफ्ते पहले हमारे व्यापारिक हलकों के एक प्रतिनिधि ने मुझे फोन किया और उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, श्रीमान राष्ट्रपति, मैं इस व्यक्ति को काफी समय से जानता हूँ, हम करीबी नहीं हैं, लेकिन मुझे उन पर भरोसा है, वे एक ईमानदार व्यक्ति हैं। उन्होंने आगे कहा, श्रीमान राष्ट्रपति, मुझे कीव आमंत्रित किया गया है। मैंने कहा, ठीक है, आगे बढ़िए, मुझे इससे क्या लेना देना है। वो आगे बोले, लेकिन मैं आपको सूचित करना चाहता था, क्योंकि मुझे लगता है कि वे हमारे दोनों देशों के बीच संबंधों से संबंधित विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। मैंने कहा, मैं आपको आधिकारिक तौर पर दूत के रूप में नहीं भेज सकता, क्योंकि विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और विशेष सेवाओं के प्रशिक्षित लोग ही ऐसा कर सकते हैं, जैसा कि इस्तांबुल में हमारी बातचीत के दौरान हुआ था। उन्होंने कहा, दुर्भाग्यवश मैं आपको आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दे सकता, मैं बस आपको सूचित करना चाहता था, मैं वहां जाऊंगा, सुनूंगा और फिर आपको बता सकता हूं कि वे किस बारे में बात करने वाले हैं। इसके बाद वे कीव चले गए और वहां उन्होंने जेलेंस्की से उनके आवास पर मुलाकात की। फिर वो वापस आ गए, मैं उनसे मिला। आप जानते हैं कई बातें हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि श्री जेलेंस्की ने बैठक का अनुरोध किया है। मैंने कहा कि मैंने कभी भी मिलने से इनकार नहीं किया, लेकिन मैं जानता हूं कि सिर्फ मिलने के लिए मिलना ठीक नहीं है। खैर, मैंने देखा है कि मिन्स्क समझौतों का जिक्र हो रहा है, लेकिन हम पूरी रात उन मिन्स्क समझौतों पर काम कर रहे थे, उन्हें अंतिम रूप दे रहे थे, और फिर फ्रांस और जर्मनी के पूर्व नेताओं ने बाद में कहा कि ये समझौता खोखला है। सभी मिन्स्क समझौते एक ही बात पर केंद्रित थे, वो ये कि यूक्रेन के पुनर्शस्त्रीकरण के लिए और समय मिल जाए। हमें फिर से ऐसी किसी चीज की क्या जरूरत है? मैंने कहा कि मुझे बैठक में कोई मतलब नहीं दिखता, ये सिर्फ यूक्रेन के लिए जरूरी है, क्योंकि वे रूस की सेनाओं के आक्रमण को रोकना चाहते हैं। हमें समझौतों, व्यवस्थाओं की जरूरत है, छह महीने या एक साल के लिए नहीं, बल्कि लंबे समय के लिए। पहले विशेषज्ञों को काम करने दें, कोई हल निकालने दें, और फिर हम हस्ताक्षर करने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन पहले हमें एक समाधान पर पहुंचना होगा, और यही मुख्य मुद्दा है। मुझे लगता है कि दर्शक मेरी बात समझ जाएंगे, खासकर रूस के लोग।
3: И аудитория меня поймет, особенно российская. Это было, по-моему, 20...
2: मुझे लगता है कि यह 21 मई की बात है। वहीं 22 मई को यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक के कॉलेज छात्रावास पर एक जघन्य आतंकवादी हमला किया, जिसमें किशोरों की हत्या कर दी गई। ये एक जघन्य अपराध है। ये पत्र किस बारे में है? क्या यह व्यक्तिगत मुलाकात के लिए माहौल बनाने का एक साधन है, या फिर इस पत्र का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्तिगत मुलाकात न हो पाए? मुझे लगता है कि उनकी दिलचस्पी बातचीत में नहीं है, लिहाजा हमें इस पत्र और उसके लिखने वाले को संबोधित नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं हमारे लड़ाकों और सीमा पर तैनात हमारे सैनिकों को संबोधित कर रहा हूं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, साथियों सैनिकों और नाविकों, एडमिरलों, जनरलों, अधिकारियों, देश की निगाहें आप पर टिकी हैं, देश को आप पर गर्व है और आप ही पर सबकी आशाएं टिकी हैं। भाइयों, अपने काम में पूरी मुस्तैदी से लगे रहिए।
0: So I'll take that as a no.
1: तो मैं इसे मान लेती हूँ कि आप पत्र लिखने वाले से नहीं मिलने वाले हैं।
3: पक्का नहीं देखो смысла.
2: अभी तक मुझे इसमें कोई फायदा नहीं दिख रहा है।
0: Because you mentioned
1: क्योंकि आपने अमेरिकी राष्ट्रपति का जिक्र किया है, क्या ट्रंप ही रूस यूक्रेन मुद्दे को हमेशा के लिए सुलझाने का जरिया है? मैं आपसे ये इसलिए पूछ रही हूँ राष्ट्रपति पुतिन, क्योंकि शायद ट्रंप ही एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो यूक्रेन से बातचीत कर रहे हैं, ताकि उन्हें बातचीत की मेज पर लाया जा सके और कोई समझौता हो सके। उन्होंने राष्ट्रपति जेलेंस्की को चेतावनी दी है, अगर बाइडेन या ओबामा होते तो ये प्रस्ताव बिल्कुल नहीं दिया जाता। क्या वही जरिया है?
2: खैर, मैंने ये बात एंकरेज में कही थी और मैं सच कह रहा था। मैंने तब भी कहा था कि अगर ट्रंप राष्ट्रपति होते, अगर उनके साथ चुनाव में धांधली न हुई होती, क्योंकि आप जानती हैं डाक द्वारा मतदान निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के किसी भी मानक के अनुरूप नहीं था, लेकिन उन्हें जीतने से रोका गया अगर वो राष्ट्रपति होते। हालांकि ऐसा नहीं होता, शायद उन्होंने शांतिपूर्ण समाधान खोजने पर ज्यादा ध्यान दिया होता। राष्ट्रपति बाइडेन के कार्यकाल के आखिरी दिनों में मैंने उनसे फोन पर बात की थी। मैंने उनसे बात की और उन्हें ये बात बताई। लेकिन तत्कालीन प्रशासन ने दिसंबर 2021 में दिए गए हमारे प्रस्तावों को नजरअंदाज कर दिया। खैर, मैं क्या कहूँ, शायद अगर राष्ट्रपति ट्रंप सत्ता में होते तो स्थिति अलग होती, लेकिन मैं उन्हें एक सहकर्मी मानता हूँ। मैं उनका सम्मान करता हूँ और जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, प्रशासन का वर्तमान रवैया भी काफी हद तक वैसा ही है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध भी है जो इसी सम्मान पर आधारित है, लेकिन निश्चित रूप से प्रमुख मुद्दों को रूस और यूक्रेन को द्विपक्षीय रूप से हल करना होगा, जबकि अमेरिका और दुनिया के अन्य क्षेत्रों में हमारे सहयोगी एक ऐसा माहौल बना सकते हैं और गारंटर के रूप में कार्य कर सकते हैं, और यही हमारी मान्यता है।
1: राष्ट्रपति पुतिन, हम SPIEF 2026 में बैठकर इस पर चर्चा कर रहे हैं। जब यूक्रेन द्वारा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को सक्रिय रूप से निशाना बनाया जा रहा है, तो आप वास्तव में एक स्थिर आर्थिक भविष्य कैसे प्रदान कर सकते हैं और निवेशकों को रूस में कैसे आमंत्रित कर सकते हैं?
2: आप जानती हैं कि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर ये हमले स्पष्ट रूप से कोई लाभ नहीं पहुंचाते, बल्कि वे निश्चित रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। हालांकि जब निवेशक अपने निवेश के निर्णय लेते हैं, तो वे हमेशा जोखिमों और उनकी जटिलता के पूरे संचय को ध्यान में रखते हैं। कल मेरी प्रमुख मीडिया संस्थाओं के साथ बैठक हुई और हम सभी इस बात पर सहमत थे कि हमें अपनी सुरक्षा और संरक्षण को मजबूत करने में योगदान देना होगा। हमें अपने हवाई रक्षा तंत्र को मजबूत करना होगा और हम ऐसा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। हालांकि बड़े व्यवसाय हमेशा दीर्घकालिक रणनीति अपनाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यवसाय सबसे पहले उस अर्थव्यवस्था के बारे में अपनी धारणा से निर्देशित होते हैं जिसमें वे निवेश करना चुनते हैं। हम रूसी अर्थव्यवस्था में हो रही घटनाओं पर चर्चा कर रहे हैं और हम इसे देख रहे हैं। GDP वृद्धि में कमी, हालांकि ये सब बहुत ही सुनियोजित तरीके से हो रहा है। ये रूसी अर्थव्यवस्था की नींव और स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए हमारे द्वारा उठाए गए सुनियोजित कदम हैं। हम जानबूझकर रूसी अर्थव्यवस्था को ठंडा करने के लिए प्रमुख मैक्रो इकोनॉमिक संकेतकों पर नजर रख रहे हैं और मैं आज आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि न तो कल और न ही निकट भविष्य में हमें कोई खतरा दिखाई देता है। इसके विपरीत हम देखते हैं कि हमारे कामों से कुछ परिणाम मिल रहे हैं और मुझे पता है कि इस हॉल में अर्थव्यवस्था के वास्तविक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले कई सहकर्मी बैठे हैं। हम उनके साथ नियमित बैठकें करते हैं। हम सभी सवालों और मुद्दों पर चर्चा करते हैं और मैं रूसी श्रोताओं से जो अपील करना चाहता हूं, जिसे विदेशियों के लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, वो ये है कि प्रमुख नीतिगत ब्याज दरों की हालत इतनी खराब है कि निवेश प्रक्रियाएं मुश्किल हो रही हैं। हाँ, हम कह सकते हैं कि आंशिक रूप से ये सच है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रूसी अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधारभूत तत्व मजबूत बने हुए हैं, जिससे हमें ये विश्वास करने की वजह मिलती है कि रूस निवेश के लिए आकर्षक बना हुआ है, न केवल रूसी निवेश के लिए बल्कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए भी। और हम मानते हैं कि इसमें रुचि है, हम इसे देखते हैं और निश्चित रूप से हम अपने साझेदारों का स्वागत करेंगे।
1: ठीक है, आप ये कह रहे हैं, लेकिन अपने भाषण में आपने एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, एक नए निवेश चक्र की शुरुआत करना, लेकिन आपने खुद कहा कि पिछले साल 2.3% की गिरावट आई है, फिर आप युद्धों, प्रतिबंधों, जमे हुए संपत्तियों के माहौल में विकास कैसे करेंगे, और जब आप संप्रभुता की बात करते हैं तो आप रूस में विदेशियों को आमंत्रित करने के साथ इसे कैसे संतुलित करेंगे?
2: ओह, ये थोड़ा पेचीदा है। देखिए, आप युद्धों, प्रतिबंधों की बात कर रही थीं, लेकिन अर्थव्यवस्था अभी भी विकासशील है, सब कुछ स्थिर है। रूस में घरेलू बाजार भी बढ़ रहा है, रूसी जनता का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है। जैसा कि मैंने कल कहा था, हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया था, 2030 तक हम गरीबी स्तर को घटाकर 7% करना चाहते हैं। वास्तव में हमने 2026 में ही 6.7% का स्तर हासिल कर लिया है। जैसा कि मैंने पहले बताया, हमने इसे उम्मीद से भी पहले हासिल कर लिया है। रूसी अर्थव्यवस्था के प्रमुख वृहद आर्थिक आधार स्थिर हैं। यही वजह है कि तमाम बाधाओं के बावजूद, और यह सच है कि बाधाएं हमेशा आती रहती हैं, रूसी अर्थव्यवस्था की खुशहाली के आधार स्थिर बने हुए हैं और आगे के विकास की अच्छी संभावनाएं हैं। कोई भी व्यवसाय, कोई भी कंपनी हमेशा आज के और कुछ मध्यम अवधि और उससे आगे के भविष्य के सभी जोखिमों का सावधानी पूर्वक विश्लेषण करती है।
3: внимательно смотрит за всеми повторяющимися рисками и сегодняшнего дня и на ближайшую, на более отдаленную перспективу.
2: लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो जोखिमों की सभी जटिलताओं का विश्लेषण करने के बाद काम करने और व्यवसाय करने के इच्छुक हैं, लेकिन निश्चित रूप से देर सवेर हम उन जोखिमों को खत्म होते देखेंगे। जहां तक सैन्य कार्रवाई की बात है, हम इस धारणा के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि किसी न किसी बिंदु पर वे पूरी होंगी, और वे तभी पूरी होंगी जब हमने अपने लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए होंगे। जहां तक प्रतिबंधों की बात है, तो मैं कहूंगा कि प्रतिबंध लगाने वालों के लिए ये कहीं अधिक हानिकारक होते हैं। क्या प्रतिबंधों से कोई नुकसान हुआ है? हाँ, $300 अरब फ्रीज किए गए थे, लेकिन अब हमारे पास $500 अरब से अधिक अमेरिकी डॉलर के बराबर राशि है। 300 अरब अमेरिकी डॉलर फ्रीज किए गए थे, अब हमारे पास $500 अरब से अधिक हैं। ये प्रतिबंधों का परिणाम है। क्या नुकसान पहुंचाया जा रहा है? हाँ, लेकिन क्या प्रतिबंध लगाने वाले देशों को भी कोई नुकसान हो रहा है? बिल्कुल, विभिन्न आकलन के अनुसार यूरोपीय क्षेत्र को 1.5 से 2.5 ट्रिलियन यूरो तक का नुकसान हुआ है। ये रूस के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों से हुआ नुकसान है, और अभी एक तरह का पुनर्मूल्यांकन, एक तरह का संशोधन हो रहा है, और परिणाम स्वरूप कई लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि शायद रूस के साथ साझेदारी के रास्ते पर वापस लौटना बेहतर होगा। हम स्थिति पर बहुत बारीकी से नजर रखेंगे और देखेंगे कि क्या वे साझेदार जिन्होंने 2 या 3 साल पहले रूसी बाजार छोड़ दिया था, हमें इस घटना से कोई खास बुरा अनुभव नहीं हुआ है, हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं, और कुछ इच्छुक पक्ष हैं जो वापस आने को तैयार हैं, लेकिन निश्चित रूप से हम सबसे पहले रूसी व्यवसायों के हित में ही आगे बढ़ेंगे और कार्रवाई करेंगे।
3: Интересанты, да, есть, они хотят, но будем исходить, конечно, из интересов отечественного бизнеса при этом.
0: The fact that there was a recent...
1: हाल ही में रूस और चीन के 2 राष्ट्राध्यक्षों के बीच हुई बैठक ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी ध्यान आकर्षित किया। कृपया इस रिश्ते के सार और इसके भविष्य की दिशा पर कुछ प्रकाश डालिए।
4: आपके प्रश्न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, जैसा कि राष्ट्रपति पुतिन ने बताया, रूस और चीन के बीच व्यापार के क्षेत्र में सहयोग आगे बढ़ रहा है और ये दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। पिछले कुछ वर्षों में ये स्थिर रूप से विकसित हुआ है और हम इस ठोस वृद्धि और स्वस्थ गतिशीलता को देख रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, 2 सप्ताह पहले राष्ट्रपति पुतिन ने चीन की एक बेहद सफल यात्रा पूरी की। बीजिंग में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन के बीच वार्ता हुई। ये वार्ता विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों के विकास और व्यापार एवं आर्थिक विकास के संदर्भ में थी। कई समझौते हुए। इन सभी परिणामों ने निश्चित रूप से पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया और सभी मीडिया ने इसे कवर किया। मैं 3 प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा। जैसा कि मैंने अपनी प्रस्तुति में कहा, चीन और रूस बड़े राष्ट्र हैं, हम पड़ोसी देश हैं और दोनों देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। रूस और चीन के बीच संबंधों का विकास और इन संबंधों की मजबूती तथा सभी क्षेत्रों में पारस्परिक लाभकारी सहयोग ये दर्शाता है कि ये दोनों देशों के विकास और प्रगति को बढ़ावा दे रहा है और साथ ही दोनों देशों की समृद्धि और खुशहाली में भी बढ़ोतरी कर रहा है। इसके अलावा ये आधुनिक विश्व में स्थिरता और लचीलेपन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। दूसरे, मुझे पता है कि आप हमारे व्यावहारिक सहयोग पर विशेष ध्यान देते हैं और ये किसी तीसरे पक्ष के विरुद्ध नहीं है और न ही ये किसी बाहरी प्रभाव से प्रभावित है। मॉडरेटर ने पहले ही एक प्रश्न पूछा था और आपने उल्लेख किया था कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन के नेतृत्व में हमारा भविष्य का विकास एक रणनीतिक सहयोग और साझेदारी है। ये 30 सालों से विकसित हो रहा है और इस वर्ष हम पड़ोसी देशों के बीच संबंधों और मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। हम इस नए ठोस अर्थ के साथ अपने संबंधों को समृद्ध कर रहे हैं और ये न केवल जनसंख्या की खुशहाली में सुधार करता है बल्कि ये क्षेत्र और पूरे विश्व में स्थिरता और शांति का भी समर्थन करता है।
1: अब मैं युद्ध के प्रश्न पर वापस आती हूँ। ईरान अमेरिका युद्ध, हॉर्मुज जल अडमरु मध्य पर नाकाबंदी वाकई चिंता का विषय है। रूस इसे किस नजरिए से देख रहा है? वैश्विक स्तर पर इसके प्रभाव के बारे में आपका क्या आकलन है, इस तथ्य के अलावा कि हाँ, रूस को शायद थोड़ा फायदा हुआ है? ईरान पर नाकाबंदी और हमले का आपका क्या आकलन है? क्या आप इसे उकसाया हुआ मानेंगे या बिना उकसावे के?
3: Я не вижу никаких провокаций со стороны Ирана.
2: हाँ, मुझे ईरान की ओर से कोई उकसावा नजर नहीं आता.
3: Договорились, приняли соответствующее соглашение.
2: मेरा मानना है कि किसी बिंदु पर हम सहमत हुए थे, हमने सहमति जताई थी.
3: Под контролем МАГАТЭ. Но, к сожалению, ситуация развивалась потом по-другому, сценарий по-другим.
2: ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर IAEA में सब कुछ नियंत्रण में था, लेकिन फिर स्थिति पूरी तरह बदल गई.
3: Удар по Ирану, потери в том числе.
2: और इसी के चलते ये त्रासदी हुई जो हम आज देख रहे हैं.
3: Ухудшились взаимоотношения между странами-соседями, что у нас, безусловно, очень...
2: ये ईरान पर हमला था और इसमें आम नागरिकों की जान गई, ये हम अच्छी तरह जानते हैं. पड़ोसी देशों के साथ संबंध बिगड़ गए हैं, ये हम अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि खाड़ी देशों के साथ हमारे बहुत अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं.
3: Нужно воздержаться от ударов по территории.
2: मैंने कल भी यही कहा था और ईरान के सहयोगियों के साथ हमारी बातचीत में भी हम यही कहते रहे कि उन्हें पड़ोसी देशों पर हमले करने से बचना चाहिए, लेकिन उनका जवाब बहुत सीधा होता है. वो कहते हैं कि हम पर हमला हुआ है, हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं और राज्य के सभी नेता मारे गए हैं. हम क्या कर सकते हैं? हमें इस तरह से जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा है. इसलिए इस नजरिए से हाँ, स्थिति बहुत सरल नहीं है. अरब देशों के साथ, ईरान के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं और हम काफी मुश्किल स्थिति में हैं. लेकिन हमारा मानना है कि राष्ट्रपति ट्रंप का युद्ध गतिविधियों को रोकने का निर्णय सही है. युद्ध विराम से दीर्घकालिक शांति स्थापित होगी. और मैंने कई बार कहा है कि 2015 में रूस ने उस समय के संकट को सुलझाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं. अगर नहीं तो हम यही उम्मीद करेंगे कि सभी संबंधित पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान निकाल लेंगे.
1: रूस द्वारा शांति स्थापित करने में मध्यस्थता करने के लिए क्या आप केवल राष्ट्रपति पेजेश्कियन के संपर्क में हैं, या आपको नए सर्वोच्च नेता से भी बात करने का अवसर मिला है?
2: खैर, ये उनके द्वारा हमसे संपर्क करने की बात नहीं है. मुझे लगता है कि ये एक साल पहले या शायद कुछ समय बाद की बात है, लेकिन हमने उन्हें 2015 में किए गए अपने सहयोग की याद दिलाई, जब हमने समृद्ध यूरेनियम को रूसी क्षेत्र में वापस ले लिया था. उस समय इससे तनाव कम हुआ था. हमने कहा था कि ये एक बार फिर संभव है, और अगर सभी संबंधित पक्ष इस समय रूस द्वारा इसी तरह की भूमिका निभाने में रुचि रखते हैं, तो हम भी ऐसा करने के लिए तैयार हैं. हमारे पास आवश्यक तकनीक उपलब्ध है. मैं कहना चाहूंगा कि संघर्ष में शामिल लगभग सभी पक्षों, ईरान, इजराइल और अमेरिका ने सहमति जताई थी. उन्होंने कहा था कि इस पर विचार करना दिलचस्प है, लेकिन फिर उन्होंने शर्तें सख्त कर दी और इसी वजह से मौजूदा स्थिति उत्पन्न हुई है. हमारा प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है. हम किसी बात पर जोर नहीं दे रहे हैं. अगर संघर्ष में शामिल पक्ष इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये एक अच्छा प्रस्ताव है, तो हमें मदद करने में खुशी होगी. अगर ऐसा नहीं होता है तो हम स्थिति पर नजर रखेंगे और जहां तक संभव होगा हम मदद करने की कोशिश करेंगे. स्थिति को लेकर तनाव को कुछ हद तक कम करने का प्रयास करेंगे.
1: क्या यूरेनियम संवर्धन को रूस ले जाने का प्रस्ताव अभी भी कायम है? क्या आप इस संबंध में वॉशिंगटन डीसी के साथ बातचीत कर रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि डीसी का रुख स्पष्ट है कि वो यूरेनियम चाहते हैं और ईरान इस बात पर अड़ा है कि ये ईरान में ही रहे।
2: हम वॉशिंगटन, तेहरान और तेल अवीव के साथ भी संपर्क में हैं।
0: Because you mentioned Tel Aviv. Do you think,
1: आपने तेल अवीव का जिक्र किया तो क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू की मौजूदा योजनाएं अमेरिका की इस स्थिति का एक मुख्य कारण है जहां उसे इस संकट से निकलने के तरीके खोजने पड़ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप को गुमराह किया गया था?
2: मेरे पास ये मानने का कोई आधार नहीं है कि राष्ट्रपति ट्रंप को गुमराह किया गया था, क्योंकि वो एक बहुत ही परिपक्व व्यक्ति और अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं। मुझे नहीं लगता कि बाहर का कोई भी व्यक्ति उन पर कोई खास प्रभाव डाल सकता है। हम इजराइल की चिंताओं को भलीभांति जानते हैं। ये चिंताएं इस धारणा से जुड़ी हैं कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करना चाहता है, जबकि ईरान ने पहले भी कई बार कहा है और कहता आ रहा है कि उसकी ऐसी कोई योजना नहीं है। हमारे पास इसके विपरीत मानने का कोई आधार नहीं है, क्योंकि हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करना चाहता है। लेकिन फिर भी इसराइल को ये चिंताएं हैं और इस स्थिति की मुख्य समस्या दोनों पक्षों के बीच आपसी विश्वास की कमी है, और इस विशेष मामले में इन सामग्रियों को आईएईए के अधीन रखना महत्वपूर्ण है। नियंत्रण एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और आईएईए के प्रमुख यहाँ हमारे संपर्क में थे, क्योंकि उज्बेकिस्तान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। इसलिए अगर इसे नियंत्रण में रखा जाता है तो मुझे इसमें कोई समस्या नहीं दिखती। जहां तक ईरान में संवर्धन के स्तर पर सहमति का सवाल है, ये पूरी तरह से एक अलग मामला है। मुझे लगता है कि ये उतना गंभीर नहीं है। मेरा मानना है कि ईरान को एक शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम का अधिकार है और हम शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा में ईरान के साथ सहयोग करते हैं। हमने ईरान के बुशहर में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र की ऊर्जा इकाई का निर्माण किया है। ये चालू है और हम दो अन्य ऊर्जा इकाइयों का निर्माण जारी रखे हुए हैं और हमारे विशेषज्ञ वहां मौजूद हैं। अधिकांश कर्मियों को निकाल लिया गया है, क्योंकि बुशहर लगभग हॉर्मुज जलडमरु मध्य के तट पर स्थित है। इसलिए मूल रूप से शत्रुतापूर्ण क्षेत्र में कर्मियों के एक हिस्से, महिलाओं, बच्चों को हमें निकालना पड़ा है, लेकिन कुछ कर्मी अभी भी वहां मौजूद हैं। और इस मामले में मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि हम इस मामले पर इजरायलियों और अमेरिकियों दोनों के संपर्क में हैं। उन्होंने हमें बताया, हाँ, कुछ मिसाइलें गिरी, ये एक संयोग था, जानबूझकर नहीं। ऐसा दोबारा होने का कोई आधार नहीं है और हमारे पास उन पर अविश्वास करने का भी कोई कारण नहीं है। हम इजराइल की चिंताओं को समझते हैं और ये भी देखते हैं कि बुशहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने की उनकी इच्छा है, लेकिन जापोरिजिया में स्थिति बिल्कुल अलग है। वहाँ यूक्रेनी सशस्त्र बल लगातार स्टेशन के पास हमले कर रहे हैं और हाल ही में एक हमला हुआ था। मुझे लगता है कि उन्होंने अपना आपा खो दिया। उन्होंने ऊर्जा इकाई पर हमला किया, लेकिन सौभाग्य से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इसे बंद कर दिया गया है, लेकिन इसे कोई क्षति नहीं हुई है। फिर भी स्थिति बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि वहां इस्तेमाल किया हुआ परमाणु ईंधन है और अगर इसे ले जाने वाले जहाजों को नुकसान पहुंचता है तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि हवा किस तरफ बहेगी, और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये रूस की तरफ ही बहेगी। संभवतः ये मामला यूक्रेन और यूरोप की ओर बढ़ेगा, इसीलिए कीव सरकार की कार्रवाइयों का समर्थन करने वाले यूरोपीय देशों को अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। संयोगवश आईएईए के प्रमुख श्री ग्रोसी ने स्पष्ट रूप से यही बात कही थी। उन्होंने यही कहा था। अब आपके प्रश्न पर आते हैं सामान्य तौर पर स्थिति सामान्य होने पर हम अपने ईरानी मित्रों के साथ मिलकर इन परमाणु संयंत्रों का निर्माण जारी रखने का इरादा रखते हैं, लेकिन निश्चित रूप से हम इसमें एक भूमिका निभा सकते हैं। हम ईरान की चिंताओं को दूर कर सकते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि उनकी शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, लेकिन चूंकि हम उनके साथ काम कर रहे हैं इसलिए हम उन्हें उनकी परमाणु ऊर्जा के लिए आवश्यक समृद्ध यूरेनियम सहित हर चीज उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं।
1: बियॉन्ड इकोनॉमिक प्रेसिडेंट आर्थिक मैत्रीपूर्ण या आर्थिक साझेदारी के संदर्भ में पश्चिमी मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि रूस ने ईरान का समर्थन किया है, न केवल प्रतीकात्मक रूप और बयानों से बल्कि उपग्रह चित्रों, डेटा और सूचना साझा करने के माध्यम से भी। इन खबरों पर आपकी क्या राय है?
2: सूचना हमेशा चर्चा का विषय होती है, साथ ही आधुनिक नियंत्रण भी, मतलब दोहरा उपयोग। मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि ईरानियों को न केवल हमारे उपग्रहों से बल्कि वाणिज्यिक उपग्रहों से भी जानकारी मिल रही होगी। दरअसल वाणिज्यिक उपग्रह इस जानकारी को व्यावसायिक आधार पर बेचते हैं। हालांकि हथियारों के मामले में मैं साफ तौर पर कह सकता हूं कि ईरान ने हमसे कभी कुछ नहीं मांगा है और न ही हमने उन्हें कोई हथियार मुहैया कराए हैं।
0: But these wars today have shown a different...
1: लेकिन आज के इन युद्धों ने आधुनिक युद्ध का एक अलग ही पहलू दिखाया है। ड्रोन तकनीक, चाहे वह यूक्रेन हो या ईरान, ड्रोन तकनीक और एआई के उपयोग में बहुत आगे हैं। रूस की स्थिति कैसी है और यूक्रेन और ईरान की ड्रोन तकनीक के बारे में आपका आकलन क्या है और आप क्या कहना चाहेंगे?
3: Что касается украинских беспилотников, их нужно сбивать и делать это еще более эффективно.
2: देखिए, जहां तक यूक्रेनी ड्रोन्स का सवाल है, उन्हें मार गिराना होगा और हमें इस मामले में और अधिक कुशल होना होगा। एआई की बात करें तो वास्तव में अमेरिका और यूरोप इस तकनीक को सक्रिय रूप से विकसित कर रहे हैं और हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। हालांकि यूक्रेन के अधिकांश स्पेयर पार्ट्स यूरोप से आते हैं, कुछ स्पेयर पार्ट्स अमेरिका से आते हैं, जबकि हमारे स्पेयर पार्ट्स पूरी तरह से रूस में ही बनाए जाते हैं।
1: एआई को आप एक सहायक मानते हैं या फिर रुकावट पैदा करने वाली टेक्नोलॉजी?
2: देखिए, यह युद्ध का एक नया साधन है। इसमें कुछ भी अजीब नहीं है या कुछ भी नया नहीं है। बदलाव के लिए हर कोई तैयार रहता है, खासतौर पर तब जब यह वास्तविक जीवन और युद्ध का हिस्सा बन जाता है। लेकिन यह युद्ध करने के एकमात्र साधन नहीं है, परिणाम बलों, उपकरणों और औजारों के संयोजन से सुनिश्चित होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सशस्त्र बलों की प्रेरणा और मनोबल के कारण यह आंतरिक एकजुटता समाज के माध्यम से भी सुनिश्चित होता है। यूक्रेन ने एक कोयला बंदरगाह पर हमला किया, फिर कुछ शोर मचाया, कोयले के कारण आग लग गई। क्या उन्होंने कुछ हासिल किया? हाँ, उन्होंने किया, पर क्या यह उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मददगार साबित होगा? तो जवाब है नहीं, क्योंकि समाज में आंतरिक एकता और एकजुटता जरूरी है। रक्षा उद्योग के लिए आपका अपना औद्योगिक आधार होना चाहिए, आपका अपना वैज्ञानिक आधार और अपने संसाधन भी होने चाहिए। रूस के पास यह सब है और हम भी ऐसा करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसलिए जो लोग हमसे लड़ रहे हैं वो जितनी जल्दी ये बात समझ लें उनके लिए उतना ही बेहतर होगा।
3: Чем быстрее те, кто с нами борется, это осознают, тем будет лучше для них самих.
1: हम अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं, लेकिन मेरे कुछ सवाल अभी भी बाकी हैं।
2: जी, माफ कीजिए, आपने ईरान के बारे में बात की और हमें उनकी सराहना करनी होगी। ईरान अपने समाज में आंतरिक स्थिरता बनाए रखने में कामयाब रहा है, इसमें कोई शक नहीं। जब युद्ध शुरू हुआ तो पश्चिम के कुछ लोगों ने सोचा कि देश अंदर से बिखर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये विश्लेषण गलत साबित हुआ। इसके विपरीत, जैसा कि हम देख सकते हैं, ईरानी समाज लगातार मजबूत होता जा रहा है। आपने इसे देखा होगा, आपने लगभग एक महीने पहले सुना भी होगा जब संघर्ष शुरू हुआ और पहले हमले किए गए। ईरान के शासन और नेतृत्व ने अपील की, ईरान के लिए अपनी जान कुर्बान करो। 50 लाख लोगों ने अपनी मर्जी से आगे आकर अपनी जान कुर्बान करने

0: लेकिन हमने इसे अपने दम पर किया और हम शायद जल्द ही Su-57 बेचने के लिए तैयार होंगे। आप जानते हैं कि इसमें दो पायलट कॉन्फ़िगरेशन हैं और ये एक कमांड सेंटर के तौर पर भी काम कर सकता है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं और हम न केवल एविएशन में बल्कि मैरिटाइम इक्विपमेंट, पनडुब्बियों और समुद्री जहाजों में भी खासे कुशल हैं।
1: Is there a waiver or carve out? क्या भारत को Su-57 और AS-500 वायु रक्षा प्रणालियों की खरीद की छूट दी जाएगी संयुक्त राज्य अमेरिका से, और क्या वह मान्य रहेगी? आपके विचार से भारत को अमेरिका और प्रतिबंधों से कैसे निपटना चाहिए?
0: मैं कहूंगा कि भारत हमेशा एक संप्रभु देश के रूप में कार्य करता है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों का कोई भी संभावित खतरा तुरंत उल्टा पड़ जाएगा, और मुझे यह निश्चित रूप से पता है। हम लंबे समय से प्रधानमंत्री मोदी के साथ गहन बातचीत कर रहे हैं और वे इसे अच्छी तरह जानते हैं। हम सभी को वह समय याद है जब प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा में जाने से प्रतिबंधित कर दिया गया था, और मुझे पता है कि प्रधानमंत्री मोदी इसे कभी नहीं भूलेंगे। अब वे प्रधानमंत्री हैं, सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं और मेरी समझ से अमेरिका और भारत के संबंध सफलतापूर्वक विकसित हो रहे हैं। भारत एक संप्रभु देश है और उसे चुनने की स्वतंत्रता है। भारत उन उत्पादों को चुनता है जिन्हें वह सबसे आधुनिक और अपने लिए सबसे बेहतर मानता है और जो मुनासिब कीमत पर अच्छी क्वालिटी देते हैं। चाहे लोग कुछ भी कहें, भारत हमेशा से इसी तरह काम करता आया है। कैसे? दरअसल भारत हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों के मद्देनजर काम करता है। रक्षा एक बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, लेकिन एक बात खास तौर पर अहम है, ये बेहद जरूरी है, और वह ये है कि भारत के साथ हमारा सहयोग हमारे अन्य सभी साझेदारों की तरह राजनीतिक माहौल को देखकर बदलता नहीं है। हम किसी के दबाव में नहीं आ सकते। भारत को यह मत दीजिए, यह हमसे कोई नहीं कह सकता और न ही कोई ऐसा कहने की कोशिश करेगा। हम हमेशा वही करेंगे जो हमें सही लगता है, और हम अपने साझेदारों, विशेष रूप से भारत जैसे साझेदारों को दिए गए वादों पर हमेशा खरे उतरेंगे। इसी भावना से, इन्हीं नियमों के मुताबिक हम अपना काम करते हैं, और इसी तरह हम आगे भी काम करते रहने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।
1: मैंने सत्र की शुरुआत ये कहकर की कि हम किसी के दबाव में नहीं आ सकते, और मेरे को मॉडरेटर राष्ट्रपति पुतिन ने भी यही कहा है। इसी के साथ ये सेशन समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अगर इजाजत हो तो इस हॉल में मौजूद सभी लोगों की ओर से, पैनल में मौजूद सभी लोगों की ओर से, हम इस संयुक्त कार्य और संवाद के लिए हमारी शानदार मॉडरेटर को धन्यवाद देना चाहते हैं। सेशन मॉडरेट करने में आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: Extra Casino with over 1,000 games like Live Dealer Blackjack and Craps. They're offering new users a $30 coin package for just $10. Go to SpinQuest.com and sign up today.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: Jazz fans, rejoice. Stingray Jazz offers riveting concert films and documentaries from the world's most prestigious stages. Whether you're a lifelong connoisseur or just getting up to tempo, Stingray Jazz, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
3: Honey, is ghar mein kuch hai jo tootta nahi?
4: Ye filler kabhi nahi tootega. Rungta Steel TMT se bana.
5: ग्यारह मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
6: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
7: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
5: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
8: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
6: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
5: जहां खबर वहां खबरदार।
9: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
10: Monte Carlo, it's the way you make me feel.
11: गिरिबाला सिंह की जो बीच में बैठी हुई है और इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए, वो सीबीआई ने 5 घंटे तक पूछताछ की और अब गिरिबाला सिंह को लेके सीबीआई रवाना हो गई है। यहाँ से कहाँ ले जाएंगे ये साफ नहीं है, लेकिन हमने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई, कहाँ गई है ये भी साफ नहीं हो पाएगा। थोड़ी देर में तस्वीरें साफ हो जाएंगी, लेकिन तकरीबन 5 घंटे तक चली पूछताछ के बाद पूर्व जज त्रिशा की सास समर्थ की माँ गिरिबाला सिंह को फिलहाल सीबीआई अपने साथ लेकर के अब फरार हो चुकी है। रविश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
12: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब के फिरोजपुर से बड़ी खबर, जहां फाजिलका रोड पर एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई, करीब 13 लोग घायल हो गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फिरोजपुर फाजिलका रोड पर जंगा मोड़ के पास महिंद्रा पिकअप और ट्रॉली की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई, घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है, फरीदकोट रेफर किया गया इलाज के लिए कईयों को। और ये देखिए, ये कितना भीषण सड़क हादसा, 13 लोगों की मौत हुई है, 9 लोग की मौत हुई है और 13 लोग घायल हैं। असीम बसी हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। असीम, क्या जानकारी है?
4: जी हाँ, ये सुबह लोग जलालाबाद से आ रहे थे, एक महिंद्रा पिकअप ट्रक के अंदर जलालाबाद से आ रहे थे जिसमें काफी लोग थे और कहा जा रहा है ये डेरा ब्यास के लिए जा रहे थे। इनके घर में किसी की डेथ हुई थी तो उनके जो वहां पे फूल जो है वो बहाने के लिए वो जा रहे थे। उसके जब वो आ रहे थे तो जब फिरोजपुर फाजिलका रोड के ऊपर आए तो वहां पर एक जो ट्रॉला, जो बड़ा ट्रक होता है, ट्रक ट्रॉला, उसके साथ इसकी टक्कर हुई और इसमें 9 लोगों की डेथ हुई और अभी तक 13 लोग इंजर्ड हैं। मौके पे कहा जा रहा था 4 लोगों की डेथ हुई लेकिन बाद में हॉस्पिटलाइज होकर उसके बाद और जो डेथ टोल जो है वो 9 हो गया है। लेकिन ये बड़ा ट्रैजिक इंसिडेंट है जो सुबह सुबह हुआ है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस अथॉरिटीज जो है वो एक्शन में स्विंग किए और उन्होंने इनको राहत कार्य शुरू किया, लेकिन अभी तक ये जो डेथ टोल है वो 9 है और ये एक भीषण हादसा हुआ है जिसने पूरे फिरोजपुर को जो है लाके रखा है।
3: शुक्रिया सीमा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बेहद दुखद खबर ये फाजिलका से, और रुकेंगे यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए आज तक,
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: इफ यू आर सीरियस अबाउट स्पोर्ट्स, NBC स्पोर्ट्स रेडियो इज द प्लेस फॉर यू। Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Lebatard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.

0: बहुत चुल मच रहा है कसम से, आज घर जाकर दहिया पूरा कपड़ा उतार के खुजाएंगे।
1: क्योंकि मैं आपकी खुजली को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, आपका जो दर्द है वो सही है, तकलीफ सही है, जो आप इतने दिनों से अपने छोटे से दिल में लेके इतना बड़ा पहाड़ घूम रहे हो,
0: अधूरा प्यार ही
1: तुम्हें दुनिया की सिम यार ठीक है मत दुराओ
2: बिजुरी आई गए।
1: हाँ हाँ थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा राइट, ओ थोड़ा राइट, हाँ हाँ
2: हाँ हाँ, यह अब एक नसिया पाया भैया।
3: यही अरे थोड़ा सा और ऊपर,
2: अरे लेफ्ट बोल रहा हूँ तुमको,
3: हाँ यही यही यही यही खुजा जोर से।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया
2: Order for Jennifer C.
3: Is this my double shot, double cream, double froth, double pump, double whip, double sleeve?
2: Yeah. Can you handle that much caffeine?
3: Did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
2: Oh, really? That's great.
3: Seriously, did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
2: Yeah, you just said that.
3: Did you say I just said that?
2: Yeah, I'm cutting you off.
3: I can't have any more? Why not?
4: You earn, we match. Discover cashback match. See terms at discover.com/creditcard.
5: और वो शेर हमारी तरफ आ रहा है थोड़ा सा पीछे की तरफ हट रहे हैं इस समय वाकई आप ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर बंदूकें तभी हो और आपके सामने शेर आ जाए दोनों में फर्क
6: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
7: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. Tune In has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
8: Mummy, Papa, आपका मुझ पर भरोसा था. कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएगी पर दोबारा नीट देने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर पहले नीट के पेपर में मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे पर दोबारा पेपर अच्छा जाए इसकी क्या गारंटी है सॉरी मम्मी पापा मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का
9: सोचिए ये शब्द किसका कलेजा नहीं चीर देंगे
10: हम कर्ज ले लेके पढ़ा रहे थे हम किसी से मांग मांग के उसकी फीस भर रहे थे
11: कितने सारे सपने दिखा के चली गई उसके नाम की आगे का कर
9: मध्य प्रदेश की आकांक्षा की मौत सिस्टम पर वो करारा तमाचा है जिसकी गूंज सुनाई तो पड़ रही है लेकिन सवाल वही है कि क्या कुछ दिनों के हंगामे के बाद पेपर लीक माफिया और शिक्षा तंत्र में बैठे धंधेबाजों पर फिर तो चुप्पी नहीं ओढ़ ली जाएगी आज जो विपक्ष में है वे नीट पेपर लीक और सीबीएसई ओएसएम की गड़बड़ी पर सरकार से तीखे सवाल पूछ रहे हैं
12: दुख है हमें लेकिन कार्रवाई में कभी कमी नहीं रखा
13: How many questions normally will someone apply for?
14: I guess अभी जो problem आ रही है, they can apply for all the questions.
13: So how many total questions?
14: 30-35 around right. questions होते हैं.
13: So huge amount of money.
14: Huge amount of money is involved.
9: विपक्ष को सवाल पूछने भी चाहिए, जवाबदेही तय होनी ही चाहिए. लेकिन शिक्षा तंत्र को फेल करने वालों का जाल बहुत गहरा है और बहुत पुराना है. 2002 से 2025 के बीच 100,000 से अधिक उम्मीदवारों वाली 45 लीक परीक्षाओं ने 3,86,00,000 छात्रों को प्रभावित किया लीक के इन मामलों में 1,658 लोगों की गिरफ्तारी हुई 925 पर चार्जशीट दाखिल की गई दो मामलों में 18 लोग दोषी करार दिए गए 43 आरोपी जेल में बंद हैं। आरोपों के मुताबिक पेपर लीक माफिया का कोचिंग माफिया के साथ सांठगांठ होता है इस बार की नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में भी आरोपियों के तार कोचिंग सेंटर से जुड़े हैं इसलिए शिक्षा तंत्र के ओवरहॉल की जरूरत है छात्र तो अपना भविष्य बनाने की परीक्षा देते हैं अब की बार सरकार को परीक्षा में पास होकर दिखाना है आज तक ब्यूरो

0: बहुत चुल मच रहा है कसम से, आज घर जाकर दहिया पूरा कपड़ा उतार के खुजाएंगे।
1: क्योंकि मैं आपकी खुजली को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, आपका जो दर्द है वो सही है, तकलीफ सही है जो आप इतने दिनों से अपने छोटे से दिल में लेके इतना बड़ा पहाड़ घूम रहे हो।
0: अधूरा प्यार ही
1: तुम्हें दुनिया के यार ठीक है मत दोहराओ।
2: बिजुरी आई गए।
1: हाँ हाँ, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा राइट, ओ थोड़ा राइट, हाँ
2: हाँ हाँ, यह अब एक नसिया पाया भैया।
3: अरे थोड़ा सा और ऊपर,
2: अरे लेफ्ट बोल रहा हूँ।
3: हाँ यही यही यही खुजा जोर से।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

सबसे बड़े दिग्गज रूसी राष्ट्रपति पुतिन का वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, कहा भारत हमेशा राष्ट्रहित के लिए समर्पित, पीएम मोदी की तारीफ की। सूरत से पीएम मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा अराजकता फैलाकर अवसर तलाश रही है कांग्रेस, देश को नीचे दिखाने में जुटे हैं निराशावादी नेता। जेड प्लस सुरक्षा हटाने से नाराज लालू, राबड़ी ने लौटाई सरकारी सुरक्षा, कटौती के बाद बंगले पर लगाए गए थे बिहार पुलिस के जवान, घर के बाहर पसरा सन्नाटा। फैजल खान को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है पटना पुलिस, रात भर कोचिंग के बाहर चलता रहा ड्रामा, डटे रहे छात्र और पुलिस के जवान, आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज हुआ है केस। पंजाब के फिरोजपुर में पिकअप वैन से टकराया ट्रक, 9 लोगों की मौत, 13 घायल, मोरबी में डंपर से टकराई कार, 5 की मौत, 2 घायल।

0: आज तक ने फिर से रचा इतिहास। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक फोरम कार्यक्रम में इंडिया टुडे ग्रुप की फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन ने निभाई एंकर की भूमिका। राष्ट्रपति पुतिन भी मंच पर। कार्यक्रम में पुतिन ने भारत को बताया रूस का प्रमुख साझेदार। कहा सॉफ्टवेयर में भारत की बड़ी हिस्सेदारी। ब्रिक्स ने G7 को पीछे छोड़ा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप को दिया मैसेज। कहा भारत ने किसी भी अपनी सीमाओं के बाहर से मिले आदेशों का पालन नहीं किया। भारत को लेकर पुतिन ने कहा नई दिल्ली ने बाहर से मिले आदेशों को तवज्जो नहीं दी। उनका इशारा भारत पर अमेरिकी दबाव की ओर था। पुतिन ने S526 में इस बात पर जोर दिया कि संप्रभुता और संप्रभु फैसले लेने के अधिकार पर कभी सवाल नहीं उठाया जा सकता। अमेरिका ईरान तनाव के बीच कुवैत पर ईरान का हवाई हमला। ईरान ने कुवैत पर बरसाई मिसाइलें। मिसाइल और ड्रोन हमलों को कुवैती एयर डिफेंस सिस्टम ने किया इंटरसेप्ट। हमलों के बाद गूंजा कुवैत। कुवैती सेना ने हमलों के बाद स्थानीय लोगों के लिए जारी किए निर्देश। नागरिकों से सतर्क रहने की अपील। ईरानी हमलों के बाद संचकॉम का दावा ईरानी मिसाइल हमले नाकाम। अमेरिकी सेना की जवाबी कार्रवाई जारी। ईरानी हमलों को अमेरिकी एयर डिफेंस ने कुवैत के आसमान में रोका। कुवैत बहरीन की ओर मिसाइल इंटरसेप्ट। लालू परिवार की सुरक्षा पर सियासी हलचल। लालू राबड़ी समेत पूरे परिवार को मिला सुरक्षा में बड़ा फेरबदल। जट पर सुरक्षा हटने के बाद लालू राबड़ी ने वापस की अपनी सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों को हटाया। बीते दिन गुरुवार को बिहार सरकार ने सुरक्षा हटाने का आदेश जारी किया। लालू राबड़ी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को प्रदान की गई वाई श्रेणी की सुरक्षा हटाई। लालू राबड़ी के बाद तेजस्वी यादव का बड़ा कदम। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मिल रही वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा को लौटाने का फैसला। सुरक्षा कटौती पर लालू राबड़ी की बेटी रोहिणी ने ट्वीट कर बिहार सरकार पर बोला हमला का दिखावे की सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं। विपक्ष पर पीएम मोदी का ताबड़तोड़ प्रहार। सूरत के एक कार्यक्रम में कहा आत्मनिर्भर अभियान का मजाक उड़ाते हैं देश में कुछ निराशावादी नेता। पीएम मोदी ने वैश्विक संकट का किया जिक्र। कहा ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भरता जरूरी। पिछले 12 सालों में देश ने जो क्षमता बढ़ाई वो बेहद अहम। कांग्रेस पर बढ़के पीएम का बयान देते हुए कि देश में अराजकता फैला रही है कांग्रेस ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रखा। दमन को पीएम मोदी की बड़ी सौगात। 2970 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। पीएम मोदी ने दमन में किया नमो एयरपोर्ट टर्मिनल और नमो अस्पताल का उद्घाटन। का विकास के नए दौर की शुरुआत। बलरामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 294 करोड़ रुपए की 75 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया जनसभा को संबोधित किया। यूपी के बलरामपुर में सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा मिट्टी में मिल गए माफिया। बोले बेटी से छेड़छाड़ करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। बलरामपुर में एसपी के गुंडे माफिया गरीबों का राशन खा जाते थे। आज यूपी दंगा मुक्त और विकास की राह पर। श्रावस्ती के गुलरा स्थित केन नाला को मिला नया दर्जा। मुख्यमंत्री योगी ने बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित की। मैनपुरी में आज शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के पैर छूते दिखे डिंपल यादव। शंकराचार्य ने सीएम योगी पर किया जमकर हमला। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा यूपी में सत्ता में आना अब अखिलेश यादव के बस की बात नहीं है। अलवर में पुलिस कस्टडी के बीच धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार आरोपी को पूर्व विधायक ज्ञानदीप आहूजा ने जड़ा थप्पड़। वीडियो वायरल। दिल्ली में फ्लोरिश इन गेस्ट हाउस को एमसीडी ने सील किया। 21 लोगों की मौत हुई थी यहां। सीबीएसई ने दिल्ली पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। कहा 12वीं के रिजल्ट के बाद हमारे पोर्टल पर हुए हमले लेकिन डाटा लीक नहीं हुआ। जेईई परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्रालय का बयान। परीक्षा परिणाम का अंक पूरी तरह सुरक्षित है। डेटा में सेंध की खबरों गलत है। बागी नेता रजत बनर्जी को बंगाल विधानसभा का नेता विपक्ष बनाए जाने के खिलाफ सोमवार को हाईकोर्ट का रुख करेंगी ममता बनर्जी। बैठक में ममता ने टीएमसी की सभी कमेटियों का पुनर्गठन किया। सांसद अभिषेक बनर्जी बने रहेंगे महासचिव। डेरेक ओब्रायन और डोला सेन संयुक्त सचिव। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। तस्वीरें सामने। एनआईए ने पूर्व टीएमसी विधायक शौकत को गिरफ्तार किया। कोलकाता के पास भागने की कोशिश कर रहा था तभी दबोच लिया। बेंगलुरु बंगाल के बैरकपुर शहर में युवा तृणमूल कांग्रेस कार्यालय पर बीजेपी ने किया कब्जा। जमकर की तोड़फोड़। जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन। समर्थकों ने राजनीतिक व्यंग आंदोलन के तहत किया प्रदर्शन। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके पहुंचे दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली में प्रदर्शन की करेंगे अगुवाई। जीडीपी विकास दर में इजाफे के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा, कहा ताजा आंकड़ा बता रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत, राहुल ने बोला था आ रही आर्थिक सुनामी। अमेरिका से वाणिज्य समझौते पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा अगले महीने तक लागू हो सकता है पहला चरण, भारत आ सकता है अमेरिकी डेलीगेशन। अंडमान निकोबार में INS बात को लेकर राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, कहा मोदी सरकार ने नौसेना की अनसुनी की बात, नहीं किया INS बात का विस्तार। समुद्र मंथन मिशन को भारत को बड़ी कामयाबी, गहरे समुद्र में ऑयल इंडिया को प्राकृतिक गैस मिली है, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने जानकारी दी। राजस्थान में कोटा के बाद फिर उठे सरकारी अस्पताल की दावों पर सवाल, अस्पताल में ड्रिप चढ़ते ही कांपे मरीज, दो मरीजों को रिएक्शन हो गया। इंदौर में कैंसर मरीजों के सस्ते इलाज के लिए जुपिटर कैंसर इंस्टीट्यूट का शुभारंभ, डॉक्टर अंकित ठक्कर ने आधुनिक सेवाओं को दी प्राथमिकता। गढ़चिरौली में भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसानों का अनिश्चितकालीन आंदोलन, औद्योगिक परियोजनाओं पर बड़ा विवाद। कांगड़ा में भूकंप से हिली धरती, घरों से बाहर निकले लोग, धर्मशाला रहा केंद्र बिंदु। बिजनौर में पति ने पत्नी की गर्दन पर चाकू से किया जानलेवा हमला, जंगल में घटना को अंजाम दिया। शिवपुरी में एक तरफा प्यार में सबकी युवक ने नाबालिग को पहले कुल्हाड़ी मारी फिर गले में रस्सी बांधकर लटका दिया। भावनगर में कार में अचानक लगी भीषण आग, कार सवार की जान बच गई। इंदौर में ईवी शोरूम में लगी भीषण आग, निवासियों को सीढ़ी और रस्सी से रेस्क्यू किया। लखनऊ एयरपोर्ट पर करीब 10 करोड़ की ड्रग्स बरामद, बैंकॉक से मस्कट होते हुए लखनऊ पहुंचे यात्री से 13 पैकेट बरामद हुए। समस्तीपुर के मऊ बाजार में दुकान विवाद पर बवाल हो गया, पथराव और हवाई फायरिंग, दुकान खाली कराने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, पिस्टल लहरा कर कई राउंड फायर हुए। समस्तीपुर में पथराव और फायरिंग से दहला इलाका, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति काबू में की। बाराबंकी में बुलडोजर एक्शन, प्रशासन ने अवैध 36 मकान गिराए। फरीदकोट में एक प्लास्टिक के गोदाम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। पंजाब के पटियाले से पावरकॉम हेड ऑफिस के सामने प्रदर्शन, ITI पास बेरोजगार नौजवानों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। डिग्रीधारी बेरोजगार युवा कई दिन से प्रदर्शन कर रहे थे, इनको उठाने के लिए प्रशासन की मदद से पहले बातचीत की कोशिश की जा रही थी लेकिन वो बेनतीजा रही। कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने युवाओं से मुलाकात की, कहा यह सरकार युवाओं की आवाज दबाने का काम करती है। दिल्ली के पुष्प विहार में पुलिस मुठभेड़, रंगदारी के आरोपियों पर कार्रवाई, 2 घायल 3 गिरफ्तार। आजमगढ़ में नाबालिग बच्चे के साथ बुरी तरह मारपीट, पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। कानपुर में कोचिंग संचालक ने 18 साल पुराने दोस्त की हत्या की, पुलिस कमिश्नर ने CCTV में बुर्का पहने शख्स का खुलासा किया। गोरखपुर में पिता ने 3 बच्चों को दही में जहर दिया, 2 की मौत 1 बच गया। फिरोजाबाद में सड़क पर कार का दरवाजा खोलना पड़ा जानलेवा, बाइक सवार ससुर की मौत, दामाद घायल। मनाली में विदेशी महिला पर्यटक से अभद्रता का वीडियो वायरल, STM ने जांच के आदेश दिए, जल्द होगी गिरफ्तारी। बक्सर के टाड़ी गुमटी रेलवे क्रॉसिंग पर 26 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बना ओवरब्रिज का पिलर हुआ क्षतिग्रस्त, 96 घंटे नहीं टिक पाया। पटना में गिरफ्तार हो सकते हैं कोचिंग टीचर फैजल खान, पटना में BNS की धारा 109 के तहत आर्म्स एक्ट के तहत FIR दर्ज। फैजल खान के 2 गिरफ्तार, गार्ड्स का पुलिस की पूछताछ में खुलासा, उनके कहने पर चलाई थी गोली, फैजल खान ने कहा था भीड़ पर फायर करो, जो होगा मैं समझ लूंगा। दिल्ली में गुरुवार की भीषण आंधी के बाद से ही तापमान में गिरावट बरकरार, शुक्रवार को अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री दर्ज, 1-2 दिन तक राहत का अनुमान। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में बारिश और ऊंचे पहाड़ों और पर बर्फबारी से तापमान गिर गया, कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। केरलम के एर्नाकुलम में मानसून की भारी बारिश, लोगों को कुछ हद तक परेशान हुई। केदारनाथ में बारिश और ठंड में भी भक्तों की आस्था भारी, भक्तों की भीड़। केदार धाम में पल पल बदल रहा है मौसम, फिर भी 11 लाख यात्री दर्शन कर चुके हैं। पहाड़ों में लगातार मौसम खराब, प्रशासन चौकस, रोज तकरीबन 20,000 से ज्यादा भक्त बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। बारिश और ठंड के बीच यात्रियों की सुविधाओं को बरकरार रखने में लगे हैं सरकारी कर्मचारी, गर्मी की छुट्टियों की वजह से बढ़ रही है भीड़। जम्मू में क्षेत्रीय मौसम विभाग का उद्घाटन, जम्मू कश्मीर लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में सटीक मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन में मिलेगी मदद। काजल अग्रवाल और श्रेयस थल पड़े की फिल्म द इंडिया स्टोरी का नया टीजर रिलीज हो गया, एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौट रही लोकप्रिय एनिमेटेड फ्रेंचाइजी आइस एज। फिल्म भारत भागीदारता को प्रमोट करने में जुटी कंगना देश के बड़े शहरों में जाकर अलग अलग क्षेत्रों में जुड़े अनसंग हीरोज को सम्मानित करेंगी। एक्टर जैकी श्रॉफ की वेडिंग एनिवर्सरी पर पत्नी आयशा श्रॉफ ने कैप्शन के साथ शेयर की अनसीन फोटोज। श्रद्धा कपूर और करण जौहर के बाद एकता कपूर ने ज्वेलरी बिजनेस पर कदम रखा। लैब डोंट डायमंड ब्रांड एकत्रा ज्वेलर्स के साथ जुड़ी। दुनिया में उथल पुथल के बीच भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर। वित्त वर्ष 2026 में जीडीपी विकास दर अनुमान से ज्यादा 7.7 रही। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सभी 6 सदस्यों ने रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखने पर मोहर लगा दी है। इंडिगो ने हांगकांग शंघाई समेत 6 इंटरनेशनल रूट्स पर फ्लाइट को अस्थायी तौर पर बंद किया है। यात्रियों को अब खरीदने पड़ सकते महंगे टिकट। हर घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बिक्री पर कंपनियों को अंडर रिकवरी बढ़कर करीब 700 रुपए पहुंची। पिछले महीने कंपनियों को एक सिलेंडर की बिक्री पर 650 रुपए का घाटा हो रहा था। देश के कई राज्यों में एटीएम में नकदी कम होने पर बैंकर्स एसोसिएशन का अलर्ट किया गया। डीबीटी पाने वाले ग्रामीण और छोटे शहरों के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बात मिडल ईस्ट तनाव की कर लेते हैं। ईरान के सर्विलांस रडार सेंटर पर अमेरिका ने हमला किया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान के रडार सेंटर पर हमले का वीडियो भी अमेरिका की तरफ से जारी किया गया है। अमेरिका का कहना है कि पहले ईरान ने हमला किया था तो उसके बाद तो जवाब तो देना ही था और जवाब में हमने उसके रडार सर्विलांस टावर को उड़ा दिया है। तो एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में मिसाइलें चलने लगी। अब ये देखिए, ये वो जगह है, ये आप देख रहे हैं ना, जो टावर वो रडार सर्विलांस टावर था ईरान का, जिसे अमेरिका ने हमला करके ध्वस्त कर दिया। अमेरिका ये कह रहा है कि पहले ईरान की तरफ से हमला किया गया था। ये सेंटकॉम की तरफ से कहा गया कि पहले ईरान ने हमला किया और उसके जवाब में हमने रडार सर्विलांस टावर को उड़ा दिया। ईरान ने कुवैत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया है। कुवैत में धमाके की आवाजें सुनाई दी हैं। कुवैत का यह डिफेंस सिस्टम ईरान से आ रहे ड्रोन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर रहा है। कुवैत आर्मी का यह कहना है कि कम ड्रोन और मिसाइल हमलों से निपट रहे हैं, एयर डिफेंस अपना काम कर रहा है और अगर कोई ड्रोन कोई मिसाइल हमारी तरफ आ रही है तो उसे इंटरसेप्ट भी किया जा रहा है। कुवैत का एयर डिफेंस हमलों को रोक रहा है। वहीं बहरीन से बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने बहरीन पर मिसाइल दागी। बहरीन में एयर ब्रेक सायरन बज रहे हैं ईरानी मिसाइल और ड्रोन को रोकने के लिए बहरीन का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। बहरीन में अमेरिकी सेंट्रल कमांड का मुख्यालय भी है। अमेरिका की ओर बयान आया है कि बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान ने बहरीन और कुवैत पर हमला किया। अमेरिका ने दावा किया कि 6 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया, साथ ही मिसाइल टारगेट तक पहुंची ही नहीं। तो ईरान बहरीन पर भी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं और इस समय एयर रेड सायरन बज रहे हैं, हालांकि इंटरसेप्ट किए जा रही है मिसाइलों को। तो एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पंजाब के फिरोजपुर से फाजिलका रोड पर बड़ा हादसा हुआ है। 9 लोगों की मौत हो गई है, करीब 13 लोग घायल हो गए हैं। फरीदकोट के मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है इनको, घायलों को। फिरोजपुर फाजिलका रोड पर जंगा मोड़ के पास महिंद्रा पिकअप और ट्रॉले की टक्कर हुई और ये इतनी भीषण थी, मौके पर ही 9 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल हुए हैं जिनको फरीदकोट रेफर किया गया है। अब दुख और मातम।
1: उस पर फाजिलका रोड के ऊपर गांव जंगावाला के पास एक बड़ा हादसा होता है जिसमें 9 लोगों की जो है वो मौत हो जाती है। इस वक्त हम फिरोजपुर के सिविल हॉस्पिटल में मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीरों में कि जिनके परिजन थे वो यहां पर मौजूद हैं। 9 लोग जो है जिनकी मृत्यु हो गई इस एक्सीडेंट में और 14 से 15 लोग इसमें गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ये लोग जलालाबाद से डेरा ब्यास की तरफ जा रहे थे। इनके घर में किसी की मौत हुई थी और उनके जो फूल थे वो परवाने के लिए ये लोग फिर अपने जलालाबाद से ब्यास के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में जब फिरोजपुर के पास गांव जंगावाला के पास जब पहुंचते हैं तो वहां पर बड़ा जो ट्राला होता है उसके साथ इनकी टक्कर हो जाती है और बड़ी दुर्घटना घटती है जिसमें 9 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें महिलाएं थी, बच्चे थे, उनकी भी मौत जो है इसमें हो गई है। और गंभीर रूप से जो लोग जख्मी हुए हैं उनको फिरोजपुर के सिविल अस्पताल से फरीदकोट मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया हुआ है। बड़ी ये घटना बताई जा रही है और यहाँ पर जो परिवार वाले हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि इसमें एक ही परिवार के ये सब लोग थे, आपस में रिश्तेदार थे, जो अपने जलालाबाद से डेरा ब्यास की ओर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ऐसी दुर्घटना घटती है।
0: और अब खबर गुजरात से है। गुजरात के मोरबी में बड़ा सड़क हादसा हो गया। सड़क पर खड़े वाहन से तेज रफ्तार कार टकराई और सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल हुए हैं। सड़क हादसा हलवट के चराडवा के पास हुआ। तेज रफ्तार कार एक वाहन से जा टकराई, 7 लोग मौजूद थे कार में। और इतना भीषण ये हादसा था कि टक्कर की आवाज बहुत दूर तक सुनाई थी। कार के तो परखच्चे उड़ गए और जो लोग अभी अस्पताल में उनकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। और अब बात यूपी के देवरिया की, जहां बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। कई क्षेत्रों में बिजली कटी तो आधी रात को बीजेपी विधायक शरदमणि त्रिपाठी पावर हाउस पहुंच गए और बिजली विभाग के अफसरों को हड़का दिया। विधायक ने कहा कि हमारे क्षेत्र की जनता अगर बिजली कटौती की वजह से नहीं सो पाती है तो फिर बिजली अफसर को हम चैन से नहीं सोने देंगे, बिजली अफसरों के घरों की भी लाइट काटेंगे। और इस दौरान बिजली कटौती की शिकायत के लिए पावर हाउस के सरकारी नंबर पर लोग लगातार फोन कर रहे थे। कई फोन कॉल खुद विधायक ने उठाए।
2: कहां से बोल रहे
3: हैं आप?
2: श्री अठाला से ना?
3: लाइट
2: कब से लाइट नहीं है? कितने बजे से? ठीक है, मैं शलभमणि त्रिपाठी बोल रहा हूँ, विधायक देवरिया। ठीक है, बिजली घर पे ही बैठे हैं, इन लोगों की लाइट काटने आए हैं। आप लोगों की लाइट नहीं है तो आज हमने तय किया कि बिजली के अधिकारियों की सबकी लाइट काट देंगे। ठीक है ना? देखिए सर, 10-11 बजे से लाइट नहीं है। आप लोगों पर रिपोर्टिंग ही नहीं भाई, कहाँ कहाँ लाइट नहीं है। आप लोग इतने नॉन सीरियस हो चुके हैं कि आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। 10 बजे से लाइट नहीं है इनके मोहल्ले में, गोरखपुर और के पास।
0: उत्तर प्रदेश को स्थायी डीजीपी मिल गया है, राजीव कृष्ण। पूरे साल बाद प्रदेश के परमानेंट डीजीपी की नियुक्ति हुई है। यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण से आज तक संवाददाता ने बात की है।
4: हमारे साथ एक्सक्लूसिव उत्तर प्रदेश के चीफ पुलिस के डीजीपी राजीव कृष्ण जी। सर बहुत बहुत मुबारक हो पहले तो आपको। सर क्या आप प्राथमिकता अब आपकी क्या रहेंगी, चूंकि आप पहले से तो आप देख ही रहे हैं, आप कर रहे हैं, अब आगे की कैसे आपने सोचा है?
5: माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में पिछले 8-10 सालों से उत्तर प्रदेश की प्राथमिकता, उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकता क्राइम और क्रिमिनल्स के प्रति जीरो टॉलरेंस ये रही है और ये आगे भी चलेगी। महिलाओं विशेष तौर पर, नागरिकों विशेष तौर पर, महिलाओं, हमारे व्यापारी वर्ग जो हैं उनमें एक सुरक्षा का भाव हो, जो अपराधी हैं उनके मन में भय हो, इसके लिए जो विभिन्न रणनीतियां हम लोग समय समय पर अपनाते हैं वो आगे जारी रहेंगी।
0: बक्सर का इटाड़ी गुमटी पुल क्षतिग्रस्त हो गया, वो भी महज 4 दिन में। 4 दिन पहले इस पुल का उद्घाटन हुआ और अब पुल बंद कर दिया गया है। 26,40,00,000 की लागत से बने रोड ओवर ब्रिज की ऊपरी परत धस गई। करीब 11 साल के इंतजार के बाद आम जनता के लिए कुछ ही दिन पहले उद्घाटन किया गया तो लोगों को राहत मिली, लेकिन चौथे ही दिन पुल का पिलर नंबर 5 के ऊपर की परत धस गई। आपके सामने
6: आप सोच सकते हैं कि जिस चीज को 11 साल से इंतजार कर रहे हैं और इंतजार के बाद अगर मिलता है तो 4 दिनों में ध्वस्त हो जाता है, तो सोचिए नहीं, ये देखिए कैसे, क्योंकि ये जो पुल है करीब 4 दिन पहले इसको खोला गया था चलने के लिए, लेकिन 4 दिनों में ये पुल टूट गया, यानी कि कहिए कि ध्वस्त हो गया और इसको बंद कर दिया गया है। ये दरअसल बक्सर के इटाढ़ी गुमटी पर बना 26,40,00,000 का वो नया पुल है जिसको लेकर कई बार आंदोलन हुआ, कई बार लोग धरने पर बैठे, उसके बाद ये पुल मिला तो ऐसे हालात में मिला कि चार दिन बाद ये इस परिस्थिति में आ गया कि लोग अब घेर कर देख रहे हैं कि भाई ये क्या हुआ है। ये एक दर्दनाक घटना तो नहीं कही जा सकती है, शर्मनाक घटना कही जा सकती है। और शर्मनाक घटना के कौन कौन विलेन है ये तो तय जनता को करना है। ऐसे में ये जनता सामने खड़ी है, हम उससे भी जानने का प्रयास करेंगे कि भाई ये जो घटना घटी है आपको आश्चर्यचकित तो नहीं करती होगी ना?
7: ना ना, ये तो मतलब वही होना था जो हुआ है, इसे पहले भी हुआ है कई बार। ये तो देखने वाली चीज है, ये तो सामने है जो प्रत्यक्ष में आपको दिख रहा है।
8: बस वही है जो देख रहे हैं, टूट गया है पुल
6: चार दिन पहले।
8: हाँ, चार दिन पहले बना था, आज टूट गया, फिर ट्रक चढ़ी है। वो तो अच्छी बात है कि किसी का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है।
6: सर, आपको लगता है कि मतलब ये पुल लगता था कि चलेगा नहीं, ये तो समझ में आ रहा होगा, तो इतना जल्दी फंसेगा ये तो विश्वास नहीं होगा?
9: ये विश्वास नहीं था इतना जल्दी फंस जाएगा।
6: देखिए, लोगों को लगातार सूचनाएं टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ये बहुत मिलती रहेगी है कि पुल भस रहा है और पुल भसेगा भी। लेकिन चार दिनों में अगर पुल भसने लगे तो बिहार की उस सरकार को क्या कहेंगे जो कई परिवर्तन के बाद इस समय भी डबल इंजन की सरकार चल रही है, विकास के कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे विकास का क्या मतलब है जो चार दिन तक टिके नहीं? बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे।
0: ऐसे विकास का क्या मतलब है जो चार दिन टिके नहीं, और यही हो रहा है। चलिए अब आपको दिखाते हैं बक्सर की डीएम क्या कह रही हैं। डीएम साहिबा कह रही हैं कि पुल ठीक है, कुछ दिक्कत है लेकिन वो स्ट्रक्चर की समस्या नहीं है।
10: कि जो पुल था उसको 15 दिन का क्यूरिंग टाइम होता है, 15 दिनों का क्यूरिंग टाइम दिया जाता है, जिसके दौरान सारा स्ट्रक्चर और जो कॉन्क्रीट वगैरह होता है वो अपने निर्धारित स्थिति में आता है। उसी 15 दिन के दौरान ही ये बीच में एक्सपेंशन जॉइंट जो है उसमें क्षतिग्रस्त हुआ है, और जो पुल का स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से सेफ है, उसमें किसी प्रकार का कोई निर्माण में, कोई स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का कोई भी हानि नहीं हुई है। और सिर्फ एक्सपेंशन जॉइंट जो है उसके कॉन्क्रीट का एक स्लैब जो है वो धंसा है, जिसको कि तुरंत रिपेयर करवाया जा रहा है। पुल इस टाइम पे बंद कर दिया गया है, रिपेयर होने तक 10 दिन का टाइम दिया गया है, उसके बाद पुल को प्रॉपर तैयार करने के बाद ही चालू किया जाएगा।
0: अगली खबर बंगाल से। बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया और वीडियो में पुलिस हथियारों का बड़ा खेप तालाब से बरामद करती दिखाई दे रही है। अब बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विपक्ष पर आतंक फैलाने का आरोप लगाया। ये वो वीडियो, देखिए एक तालाब है, तालाब से हथियारों का जखीरा निकला। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में टीएमसी पार्षद रहे राजा पासवान के दफ्तर में देर रात तोड़फोड़ हुई और आरोप यह है कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने टीएमसी से जुड़ रहे नेता के दफ्तर में तोड़फोड़ की है। तो उधर बीजेपी की बैरकपुर की मंडल की अध्यक्ष अनामिका नाग ने आरोप लगाया कि दफ्तर जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था। तो बीजेपी नेताओं पर दफ्तर में तोड़फोड़ का आरोप लगाया है, लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये दफ्तर कब्जा करके बनाया गया था जमीन पर। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
13: यूर लिसनिंग अनइंटरप्टेड विथ ट्यून इन प्रीमियम, एंजॉय कमर्शियल फ्री न्यूज एंड म्यूजिक प्लस एड फ्री ESPN रेडियो and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
3: आगे आगे
4: अरे उधर
3: उधर करेक्ट
5: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: पत्रकारिता के गुर यहाँ नहीं सीखे तो क्या सीखे, नाम ही काफी है। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
7: और वो शेर हमारी तरफ आ रहा है, थोड़ा सा पीछे की तरफ हट रहे हैं इस समय।
8: वाकई आप ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर बंदूकें तली हो और आपके सामने शेर आ जाए, दोनों में फर्क।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस। इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.
11: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
12: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
13: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
12: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
14: You're listening to MSNBC.
12: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love. Anytime you want. Try it now and thank us later.
15: सिर्फ आज तक पर।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा। इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड, नाउ इन इंडिया।

ग्लोबल मंच से आज तक पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। कहा भारत कभी दबाव में नहीं आता, राष्ट्रहित में लेता है फैसले। पीएम मोदी की तारीफ की। जेड प्लस हटने से नाराज लालू राबड़ी समेत तेजस्वी यादव ने वापस की सरकारी सुरक्षा। बंगले के बाहर बैठे समर्थक, बीजेपी बोली सुरक्षा पर राजनीति ना करे लालू परिवार। फैजल खान को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है पटना पुलिस। कोचिंग के बाहर रात से जारी है ड्रामा, पुलिस और छात्रों का भारी जमावड़ा। कल एफआईआर के बाद से नहीं दिखे फैजल खान।

राम का नाम लेने पर चलती थी गोलियां। अखिलेश का पलटवार, यूपी में महाजंगल राज। पंजाब के फिरोजपुर में पिकअप वैन से टकराया ट्रक, 9 लोगों की मौत, 13 घायल। मोरबी में डंपर से टकराई कार, 5 की मौत, 2 घायल।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और बुलेटिन में बात बिहार की दो बड़ी खबरों की करेंगे। पहली खबर लालू राबड़ी और तेजस्वी की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। एक दिन पहले लालू यादव और राबड़ी की सुरक्षा घटा दी गई, तो अब लालू और राबड़ी और तेजस्वी तीनों ने ही अपनी सुरक्षा वापस कर दी है। कहा कि हमें जरूरत नहीं है, अब इस पर सियासत गर्मा गई है। तो वहीं कोचिंग फायरिंग विवाद में फैजल खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई और यह माना जा रहा है कि पटना पुलिस कभी भी फैजल खान को गिरफ्तार कर सकती है। इन दोनों खबरों पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात लालू राबड़ी की सुरक्षा को लेकर। बिहार में जो सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है उसकी कर लेते हैं। अब एक दिन पहले लालू राबड़ी की सुरक्षा जेड प्लस से घटाई गई, तो आज लालू और राबड़ी ने अपनी पूरी सुरक्षा ही लौटा दी। वहीं कुछ ही देर में तेजस्वी यादव ने भी अपनी सुरक्षा वापस कर दी। आरजेडी आरोप लगा रही है कि जानबूझकर लालू राबड़ी की सुरक्षा को ताक पर रखा जा रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि सब कुछ नियमों के मुताबिक हुआ है।

0: तो यहां पर देखिए हुआ ये कि सिक्योरिटी इस वक्त बहुत ज्यादा हाई थी। अब हुआ क्या, सरकार की तरफ से नियमों के मुताबिक सुरक्षा वापस ले ली जाती है और उसके बाद बिहार पुलिस के कांस्टेबल होते हैं, लेकिन तब तक लालू और राबड़ी को बुरा लग चुका था, वो तुरंत उनको भी वापस कर देते हैं। वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा मिली थी तेजस्वी यादव को, लेकिन उन्होंने भी वापस कर दी है और अब आरजेडी वर्सेस बीजेपी ये तकरार बढ़ गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
1: आवास के बाहर पसरा सन्नाटा और कोई सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं। एक बार तो यकीन करना भी मुश्किल है कि ये पटना में पूर्व सीएम राबड़ी देवी का आवास है। इसी आवास में लालू यादव और राबड़ी देवी रहते हैं और अब यहाँ कोई सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं है, क्योंकि एक दिन पहले वाई प्लस सिक्योरिटी हटाए जाने के बाद अब लालू राबड़ी ने नाराजगी जताते हुए पूरी सुरक्षा वापस कर दी है।
2: तो बंगले को लेकर विवाद चल ही रहा था, लेकिन अब नया विवाद जो पैदा हो गया है वो राबड़ी देवी और लालू परिवार को जो सुरक्षा दी जाती है उसको लेकर जो है ये ताजा विवाद जो है वो शुरू हो गया है। और कल से हम देख रहे हैं जब सरकार का एक नया फरमान आया और लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को जो जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई थी उस सुरक्षा को सरकार ने वापस लिया और केवल बिहार पुलिस की सुरक्षा जो स्पेशल पुलिस होती है उसकी सुरक्षा प्रदान की। उसके बाद से ही लालू परिवार राबड़ी देवी जो है वो इसको लेकर काफी बिफर गए और उसके बाद कल देर रात से हम देख रहे हैं कि 10 सर्कुलर रोड आवास जो कि राबड़ी देवी और उनका परिवार यहाँ पिछले 20 सालों से रह रहा है, यहाँ कल रात से ही एक भी सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं है, क्योंकि परिवार ने अपनी सभी सुरक्षा जो है वो वापस लौटा दी है। जाहिर सी बात है जिस तरीके से सरकार ने सुरक्षा में कटौती की है उसको लेकर राबड़ी देवी लालू का परिवार जो है वो काफी नाराज है।
1: अब लालू और राबड़ी के सुरक्षा वापस करने पर सियासत शुरू हो गई है। इस बीच तेजस्वी यादव ने भी बड़ा फैसला लिया, उन्होंने अपनी सुरक्षा लौटा दी।
3: पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी ने लिया है साहसिक फैसला है, उन्होंने जितने भी सुरक्षा आदरणीय लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी के लिए लगाई गई थी सबको वापस कर दिया, सबको बाहर निकाल दिया। क्योंकि कल ही राज्य की सरकार ने अपने आका के निर्देश पर आदरणीय लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी सहित पूरे लालू परिवार की सुरक्षा में व्यापक और घोर कटौती कर दी। शासन अपमानित करना चाहती है लालू प्रसाद जी और उनके परिवार को, उनके परिजनों को। किसी का अपमानित करने से कोई अपमानित तो नहीं हो जाता।
1: दरअसल तेजस्वी यादव को वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। समीक्षा में तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं किया गया था, लेकिन लालू और राबड़ी की सुरक्षा घटाए जाने के विरोध में अब तेजस्वी यादव ने ये बड़ा फैसला लिया है।
2: पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा में भारी कटौती की गई बिहार सरकार के द्वारा, तो इसके विरोध में राबड़ी देवी और लालू प्रसाद ने जो नई सुरक्षा उनको दी गई थी उसको भी लेने से इनकार कर दिया है और जो भी मौजूदा सुरक्षा उनके पास कल तक थी सभी प्रकार की सुरक्षा को वापस कर दिया है। अब इसी को लेकर राबड़ी देवी लालू प्रसाद के बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी जो उनको वाई प्लस श्रेणी की जो सुरक्षा मिली हुई थी उसको भी वापस कर दिया है। हालांकि बिहार सरकार ने तेजस्वी यादव के सुरक्षा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया था, पहले से ही नेता प्रतिपक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव को वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिल रही थी और जो नई व्यवस्था थी उसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया था। बदलाव केवल राबड़ी देवी और लालू प्रसाद के सुरक्षा में किया गया था जहां उनके जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा जो है वो वापस ले ली गई थी, लेकिन इस फैसले से नाराज होकर तेजस्वी यादव ने जो उनको भी जो तमाम सुरक्षा दी गई थी वाई प्लस श्रेणी की उसको भी वापस कर दिया है। और
1: बड़ी बात यह है कि भले ही लालू राबड़ी की जेड प्लस सिक्योरिटी वापस ली गई थी, लेकिन नई सुरक्षा व्यवस्था के तहत दोनों नेताओं के लिए बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की सुरक्षा का इंतजाम किया गया था, जिसके तहत 2 से 8 जवान सुरक्षा में तैनात रहने का निर्देश था। इसके साथ बुलेट प्रूफ कार, जिला बल से एस्कॉर्ट की नियुक्ति का निर्देश था। लेकिन अब लालू राबड़ी और तेजस्वी के पूरी तरह सुरक्षा वापस करने के बाद सियासत गर्मा गई है।
4: ये सुरक्षा उनको क्यों दिया गया था? कभी मुख्यमंत्री रहे, कभी केंद्रीय मंत्री रहे, जब ये संवैधानिक व्यवस्था ये नहीं है कि हथुआ मामा का बेटा है तो सब दिन वही रहेगा। जनता जिसको चुन करके देती है सत्ता में और जो कानून कहता है वो सुरक्षा मिलता।
1: सुरक्षा कटौती का ये विवाद ऐसे समय शुरू हुआ है जब लालू परिवार और राज्य सरकार के बीच सरकारी आवास को लेकर विवाद अपने चरम पर है और अब सुरक्षा का मुद्दा भी जुड़ गया है जिससे सियासी संग्राम बढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: तो जिस रावड़ी आवास पर गजब की चहल पहल रहती थी, सिक्योरिटी रहती थी, आज वहां के क्या हाल है? सीधे बात कर लेते हैं, हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं उसी जगह से। रोहित जरा बताइए, तस्वीरों के जरिए अभी इस वक्त क्या चल रहा है बिहार में और सुरक्षा को लेकर जो सियासत हो रही है वो कहां तक पहुंची?
2: हिमांशु देखिए, बंगला विवाद तो चल ही रहा है, इसी बंगले को लेकर विवाद चल रहा है। 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी का आवास, 20 साल से ज्यादा समय से लालू परिवार यहां रहता है, तो बंगला नहीं खाली करेंगे राबड़ी देवी ने कहा हुआ है, सरकार ने कहा है खाली तो करना ही पड़ेगा। और अब सुरक्षा को लेकर नया विवाद, पूरी सुरक्षा समाप्त कर दी गई है, मतलब समाप्त कर दी गई यानी कि जो कटौती जो बिहार सरकार ने तो की थी, जेड प्लस को हटा दिया था, तो उसके बाद विरोध में राबड़ी देवी ने भी जो है यहाँ पर तमाम जो सुरक्षा कर्मी मौजूद थे सबको वापस किया। तो अब नई तस्वीर देखिए यहाँ क्या हो गई है कि कुछ दर्जन भर आरजेडी के नेता कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर 10 सर्कुलर रोड आवास पर जो है वो आकर बैठ गए हैं धरने पर और वो कह रहे हैं कि हम ही लोग जो है अब इस घर की जो है वो सुरक्षा करेंगे। आप देख सकते हैं दर्जन भर यहाँ पर आरजेडी के नेता कार्यकर्ता जो है वो गेट के सामने इसी तरीके से जो है वो पिछले एक घंटे से खड़े हैं और इनका कहना है कि भाई सरकार भले ही सुरक्षा वापस ले ले लेकिन अब ये कार्यकर्ता जो है इस घर की हिफाजत करने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। और एक दूसरी तस्वीर आपको हम अब ये दिखाना चाहेंगे, आपको बड़ी दिलचस्प तस्वीर है क्योंकि जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा तो समाप्त कर दी गई, उसके बाद बिहार पुलिस की विशेष सुरक्षा जो है उनको दी गई जिसमें आपको 8 से 16 बिहार पुलिस के गार्ड जो है वो उनको मुहैया कराया गया है। और वो गार्ड जब आज सुबह में राबड़ी आवास पर पहुंचे थे सुरक्षा देने के लिए तो उनको भी हटा दिया गया। राबड़ी देवी ने कहा भाई हमें किसी प्रकार की सुरक्षा की जरूरत नहीं है, आप भी यहाँ बेकार आए हैं, आप भी चले जाइए। तो अब बिहार पुलिस के जो वो 8 से 16 सुरक्षा कर्मी मौजूद थे उनको जब हटाया गया था अब वो देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ कंफ्यूजन की स्थिति में यहाँ घर के बाहर कोना पकड़ के यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है करे तो क्या करे, ऊपर से सरकारी आदेश तो है कि भाई राबड़ी देवी के घर का यहाँ पर हम लोग को सुरक्षा देनी है लेकिन राबड़ी देवी ने इन्हें भी भगा दिया है यहाँ से, हमें जरूरत नहीं है। तो अब ये बेचारे बिहार पुलिस की जो सुरक्षा कर्मी जो नई व्यवस्था में मिले हैं वो यहाँ पर कंफ्यूजन की स्थिति में राबड़ी आवास के बाहर कोने में यहाँ पर पिछले 4-5 घंटे से यूं ही खड़े हैं। तो जाहिर सी बात है सुरक्षा को लेकर जो है एक नया विवाद जो है बिहार में देखने को मिल रहा है। तेजस्वी यादव ने भी विरोध में अपनी सुरक्षा भी वापस कर दी है कि हाँ मुझे भी सुरक्षा नहीं चाहिए। तो अब देखना है कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश तो हो ही रही है सरकार पर और कहीं ना कहीं एक तरीके से सिंपथी भी जो है वो बटोरने की यहाँ पर कोशिश जो है वो लालू परिवार की तरफ से हो रही है सुरक्षा के नाम पर।
0: रोहित, बीजेपी की तरफ से भी रिएक्शन आया है इस पर?

0: में भी एक्टिव नहीं है। हाँ। इसी कारण से जो है उनकी सुरक्षा जो है उसको कम किया गया है। हाँ। राबड़ी देवी की जहां तक बात है, वो नेता प्रतिपक्ष हैं विधान परिषद में, तो उस हिसाब से उनको जितनी सुरक्षा मिलनी चाहिए उतनी उनको जो है मुहैया करा। हाँ। दी गई है। और थ्रेट परसेप्शन में देखिए सारा कुछ होता है, जब समय समय पर थ्रेट परसेप्शन का रिव्यू किया जाता है, समीक्षा की जाती है, उसके बाद ही जो है सुरक्षा को कम किया गया है। नया बंगला भी दिया गया है, कहा गया कि ये बंगला अभी आप नहीं रहेंगे। 39
1: बीजेपी कह रही है कि हम तो नियम कायदे कानूनों के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन सुरक्षा को लेकर सियासत यहां पर हो रही है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखिए, इसी बीच लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने लालू यादव की सुरक्षा घटाए जाने पर सरकार पर हमला बोला। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि सुरक्षा कवर में कटौती के बाद दिखावे की सुरक्षा रखने का कोई औचित्य नहीं है। ये देखिए, इतना लंबा मैसेज सोशल मीडिया पर रोहिणी आचार्य की तरफ से, जिसमें वो कह रही है कि सुरक्षा कवर में कटौती के बाद दिखावे की सुरक्षा रखने का कोई औचित्य नहीं है। तो अब बिहार में सियासत हो रही है सुरक्षा को लेकर। तो बिहार में लालू राबड़ी देवी की सुरक्षा और सरकारी बंगले पर सियासत जारी है, अभी आप देख ही चुके होंगे। और इसी बीच आरजेडी प्रमुख लालू यादव खुद सिंगापुर में, वहां वो बेटी रोहिणी आचार्य के साथ वॉक करते नजर आए। आइए देखिए वो तस्वीरें, रोहिणी आचार्य के साथ वॉक कर रहे हैं, ठंडा ठंडा मौसम और ऐसे में सुबह की सैर करते हुए ये वीडियो दिखाई दिया। हालांकि बिहार में तो सुरक्षा को लेकर काफी सियासत चल रही है, वो आप देख चुके होंगे कि बिहार पुलिस के जवान सोच रहे हैं कि कहां जाएं कहां नहीं जाएं। सरकार ने कहा सुरक्षा करो, राबड़ी देवी ने कह दिया है कि नहीं चाहिए। लेकिन यहां सिंगापुर से कुछ अलग तस्वीरें, लालू यादव की तबीयत को लेकर कई बार चर्चा भी रही है और ऐसे में अब ये तस्वीरें भी सामने आई। अब आगे बढ़ते हैं, खान सर की कोचिंग के बाहर हुए गोलीकांड पर अब फैजल खान की मुश्किल बढ़ती जा रही है, जहां कोचिंग के गार्ड से पूछताछ के बाद बिहार पुलिस अब फैजल खान को तैयारी कर रही है गिरफ्तार करने की, और माना जा रहा है कि इस केस में कभी भी फैजल खान पर पुलिस का शिकंजा कर सकता है।

0: क्या जल्द ही यूट्यूब वाले खान सर यानी फैजल खान की गिरफ्तारी हो सकती है? क्या आर्म्स एक्ट में एफआईआर दर्ज होने के बाद जल्द ही पुलिस फैजल खान पर शिकंजा कर सकती है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एक दिन पहले पटना के कदमकुआ थाने में फैजल खान पर केस दर्ज हुआ। अटकलें तेज हुई कि कभी भी पुलिस फैजल खान तक पहुंच सकती है, जिसे लेकर देर रात तक कोचिंग सेंटर के पास भारी गहमागहमी दिखी। इन तस्वीरों को देखिए, पूरी रात फैजल खान के समर्थक छात्र कोचिंग सेंटर के बाहर डटे रहे। तनाव को देखते हुए पुलिस का गश्त जारी रही। पीसीआर वैन में तैनात पुलिस छात्रों को समझाती दिखी। एक दिन पहले भी पटना पुलिस की ओर से एडवाइजरी जारी की गई थी कि छात्र किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दे। तो क्या छात्रों के विरोध प्रदर्शन के डर से पुलिस फैजल खान पर एक्शन से पहले एहतियात बरत रही है? क्या किसी तरह के बवाल की आशंका को देखते हुए पुलिस फैजल खान की गिरफ्तारी से पहले पूरी सतर्कता बरत रही है? एक दिन पहले फैजल खान के कोचिंग के अंदर का वीडियो सामने आया था, जिसमें फैजल खान फायरिंग का वीडियो दिखाते हुए छात्रों को उकसाता नजर आ रहा था।
1: मुद्दे से भटकाया जा रहा है, आप इसकी गिरफ्तारी करिए। ये आदमी कौन है और कैसे आता है 20-25 लोगों को उठा के लेके चला जाता है, 20-25 लोगों को एक साथ कैसे?
0: फैजल खान पर केस दर्ज होने के बाद पटना में गहमागहमी बढ़ी हुई है। शुक्रवार शाम ही KSG कोचिंग सेंटर के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई।
2: वो अब भी यहाँ पर खड़े हैं। खान सर का ये कोचिंग है, सामने कोचिंग रखी, खान सर का ये कोचिंग है और कोचिंग के गेट पर जो है भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए किस तरीके से जो छात्र हैं, देखिए किस तरह से सड़क पर मौजूद हैं और सड़क के दूसरे

0: किनारे एक लाइन से हजारों छात्र जो हैं वो यहाँ पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं खान सर के, ये कह सकते हैं कि समर्थन में ये जो छात्र हैं वो यहाँ पे खड़े हैं।
1: इस बीच वो तस्वीर भी सामने आई थी जब वकील फैजल खान की कोचिंग पहुंचे थे, उसके बाद फैजल खान कार से अपनी कोचिंग से निकल गए थे। पटना में खान सर और ज्ञान बिंदु के शिक्षक रोशन आनंद के बीच बड़ा विवाद अब बड़ा मुद्दा बन गया। कानूनी लड़ाई शुरू हो गई, अब फैजल खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पटना से शशिभूषण और अनिकेत के साथ आज तक ब्यूरो।
2: अब दिल्ली से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन जारी, हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए हैं प्रदर्शनकारी। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीप के भी प्रदर्शन में शामिल। अंबेडकर की किताब हाथ में लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का यह पहला प्रदर्शन, और ये विरोध नीट, यूजी पेपर लीक, सीबीएसई, सीयूईटी, एसएससी, जीडी जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ है। सुशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए। सुशांत बताइए क्या हो रहा है वहां?
3: हाँ देखिए हिमांशु, मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें भी दिखा दूं, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी का ये पहला प्रदर्शन है। दिल्ली पुलिस की तरफ से परमिशन जो है वो 5 बजे तक की जंतर मंतर पर दी गई है। मैं आपको पीछे की तस्वीरें दिखा दूं कि जिस तरीके से अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पर पहुंचे हैं, और इसके अलावा अगर बात की जाए तो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा प्रदर्शन इस वक्त जो है वो जंतर मंतर पर चल रहा है। कांग्रेस जनता पार्टी के जो संस्थापक हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे, संविधान की किताब लेकर के अभिजीत भी यहाँ पर पहुंचे हैं, और उनके जो समर्थक हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं। मांग वही है जो नीट परीक्षा है उसको लेकर के, जो गड़बड़ियां हैं उसको लेकर के। लेकिन आपको तस्वीरें और दिखा दें, क्योंकि जब ये प्रोटेस्ट हुआ था पुलिस की तरफ से परमिशन जो है वो फिलहाल दी गई और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है नजर आई, हमारी बंदोबस्त नजर आएगा, क्योंकि शाम 5 बजे तक की परमिशन दी गई है। दिल्ली पुलिस की कई बैरिकेडिंग आपको यहाँ पर नजर आएगी, इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस भी जो है वो यहाँ पर आपको तैनात नजर आएगी, क्योंकि ये स्टूडेंट से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें सुरक्षा का पूरा ख्याल जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से रखा गया है। और छात्र पहुंचे हैं प्रदर्शन करने के लिए पर जो नीट की परीक्षा सीबीएसई लेकर के यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो फिलहाल चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो तमाम जो सीजेपी पार्टी के जो वर्कर्स हैं, समर्थक हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और हाथों में कई अंगा आपको तिरंगा भी जो है वो नजर आएगा। लेकिन फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन जो है वो चल रहा है, और जो है वो कभी बजा रहे अपनी मांग जो है वो रख रहे हैं। सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो ये पहला प्रदर्शन है, और इस प्रदर्शन को लेकर के जो उम्मीद थी इतनी लोग जुटने की वो दिख भी रहा है कि फिलहाल ये पहला प्रदर्शन है। 5 बजे तक की परमिशन, उसके बाद ये प्रदर्शन जो है वो खत्म होगा।
2: शुक्रिया सुशांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, In association with
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
6: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
7: Every game, every moment, TuneIn keeps you close to the action. Follow your favorite teams all season long with live games, nonstop sports talk, and expert sports analysis, so you can jump into the action. Hear it all on ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go, so you never miss a second of sports action. Search sports to start listening now.
8: Sokudo.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: बहुत चुल मच रहा है कसम से, आज घर जाकर देखिए पूरा कपड़ा उतार के खुजाएंगे हम।
1: क्योंकि मैं आपकी खुजली को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, आपका जो दर्द है सही है, तकलीफ सही है, जो आप इतने दिनों से अपने छोटे से दिल में लेके इतना बड़ा पहाड़ घूम रहे हो,
0: अधूरा प्यार ही
1: तो मैं दुनिया की सिम यार ठीक है मत दोहराओ
2: बिजुरी आई गए।
1: हाँ हाँ थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा राइट, ओ थोड़ा राइट, हाँ हाँ हाँ
2: यह अब ही नसिया पाया भैया।
3: अरे थोड़ा सा और ऊपर,
2: अरे लेफ्ट बोल रहा हूँ तुमको,
3: हाँ यही यही यही यही खुजा जोर से।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का आशीर्वाद इस बार किसे मिलेगा? इसकी जुगत बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी तक के अंदर चल रही है। योगी राज में ब्राह्मणों की कथित नाराजगी की अफवाह पिछले बरस खूब उड़ी, लेकिन अब योगी की कैबिनेट में मौजूद धम्मर चेहरों ने सीएम योगी को अगले कार्यकाल के लिए अभी से आशीर्वाद देने की घोषणा कर दी। पिछले दिनों इंडिया टुडे ग्रुप के कार्यक्रम के मंच पर योगी कैबिनेट के ब्राह्मण चेहरों ने कबूल किया कि आने वाले चुनाव में भी सीएम योगी ही उनका चेहरा होंगे।
1: नेतृत्व मुख्यमंत्री जी का योगी जी का ही होगा, उनके नेतृत्व में जा रहे हैं।
2: मुख्यमंत्री जी हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको भी बताया है, आप तो सब जानते हैं, अखबार में छप चुका है,
1: तो उनके नेतृत्व में ही चुनाव में
2: आप जानते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो सर्वोच्च पद पर हमारी पार्टी के नेता है, वो जो निर्देश देते हैं उसको हम लोग मानते हैं कि हम सब उसको कार्यकर्ता के रूप में सहर्ष स्वीकार करते हैं।
1: 2027 का जो चुनाव होगा, योगी जी के नेतृत्व में चुनाव मैदान में जा रहे हैं आप लोग?
3: जाहिर है, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया है। आज हमें खुशी है, इस बात की प्रसन्नता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा खींची गई लकीर का अनुसरण आज देश के तमाम अन्य राज्य कर रहे हैं। इससे ज्यादा हमारे लिए गर्व का कोई विषय नहीं हो सकता। हमारी तमाम योजनाओं को आज अन्य सरकारें उसका अनुसरण कर रही।
0: हालांकि मंत्रियों की ओर से सीएम योगी के नेतृत्व को दिए जा रहे समर्थन का असर जमीन पर उस तरह दिखाई नहीं देता। कानपुर में आम ब्राह्मणों की नाराजगी यूजीसी बिल जैसे मुद्दों को लेकर दिखाई देती है।
4: ये तो साफ स्वाभाविक है कि हमें एक परमानेंट वोटर माना गया, ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये हमने अपनी जो भूमिका बना ली कि हम कहीं जाएंगे नहीं, ये हमारे लिए पक्षाघात रहा। अब ब्राह्मण समाज इस बात पे सोचेगा कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा।
5: हमारे समाज के तो मुद्दे को ही है नहीं, क्योंकि समाज तो हमारा हमेशा दिशा देता था समाज को। आज हमारा समाज खुद ही दिशाविहीन हो चुका। उसका कारण है कि आज इस सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, इसने हमको ये एहसास करा दिया कि हम लोग ब्राह्मण हैं।
0: यूपी में ब्राह्मण वोट को बीजेपी से अलग करने के लिए तमाम खबरें चलती रही हैं। कभी ब्राह्मण विधायकों के नाराज होने की खबर, तो कभी अलग से पिकनिक मीटिंग खबर, और ऐसी खबरों से समाजवादी पार्टी के अंदर ब्राह्मण वोटों को लेकर उम्मीद जगी। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने भी अपनी रणनीति बदल दी। अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को नेता विपक्ष बना रखा है, जो स्थानीय चुनावों में ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व बढ़ा रहे हैं। अखिलेश गोसाईगंज से भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने से लेकर परशुराम जयंती पर सरकारी छुट्टी तक की मांग कर चुके हैं। और इतना ही नहीं, इन दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहे अखिलेश भी जरूरी काम पंडित जी के मुहूर्त वाली सलाह पर करने की बातें करते हैं। समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर ब्राह्मणों के समर्थन वाले पोस्टर लगते हैं, तो राजकुमार भाटी जैसे नेता के ब्राह्मण विरोधी बयान के बाद जोरदार फटकार भी लगाते हैं। ब्राह्मणों को रिझाने की ये सारी कवायद कितनी कामयाब होती है, ये 27 के चुनाव में पता चलेगा, क्योंकि 2012 में जिस बीजेपी को 40% भी ब्राह्मण वोट नहीं मिले थे, उसे पिछली बार 89% ब्राह्मण वोट मिले थे। कानपुर से समर चावला के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: सबसे बड़े ग्लोबल मंच से आज तक रूसी राष्ट्रपति पुतिन का वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का भारत कभी दबाव में नहीं आता, राष्ट्रहित में लेता है फैसले, पीएम मोदी की तारीफ की। जेड प्लस हटने से नाराज लालू राबड़ी समेत तेजस्वी यादव ने वापस की सरकारी सुरक्षा, बंगले के बाहर बैठे समर्थक, बीजेपी बोली सुरक्षा पर राजनीति ना करे लालू परिवार। फैसल खान को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है पटना पुलिस, कोचिंग के बाहर रात से जारी है ड्रामा, पुलिस और छात्रों का भारी जमावड़ा, कल FIR के बाद से नहीं दिखे फैसल खान। समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी का बड़ा हमला, कहा 2017 से पहले गुंडों के आगे नतमस्तक थी सरकार, राम का नाम लेने पर चलती थी गोलियां, अखिलेश का पलटवार, यूपी में महाजंगल राज। पंजाब के फिरोजपुर में पिकअप वैन से टकराया ट्रक, 9 लोगों की मौत, 13 घायल, मोरबी में डंपर से टकराई कार, 5 की मौत, 2 घायल।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akaje, the number one Korean skincare brand.
3: चुनाव भले अभी दूर है लेकिन जातीय समीकरणों पर दाव अभी से चले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए बीजेपी का ब्राह्मण कार्ड सामने आया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और मंत्री मनोज पांडे जैसे बीजेपी के बड़े ब्राह्मण चेहरों ने साफ कह दिया है कि योगी आदित्यनाथ ही बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। योगी आदित्यनाथ पर बीजेपी के ब्राह्मण नेताओं का इतना साफ संदेश इसलिए बेहद अहम है क्योंकि जहां विपक्ष लंबे समय से योगी सरकार के खिलाफ ब्राह्मण दाव चलने की कोशिश करता रहा है, वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव भी अब बड़े मंगलवार पर भंडारे का प्रसाद बांटने जैसे संदेश देने में पीछे नहीं है। सवाल है कि क्या योगी पर बीजेपी के ब्राह्मण नेताओं के संदेश से ही बीजेपी का काम बनेगा? क्या यूपी के ब्राह्मणों में नाराजगी का समाजवादी पार्टी का दावा फुस हो जाएगा? क्या इस दाव से हाल ही में ब्राह्मण समाज पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी की कथित अपमानजनक टिप्पणी का भी बीजेपी को फायदा मिलेगा? हल्ला बोल में हम बहस शुरू करें, उससे पहले आइए आपको सुना देते हैं ब्रजेश पाठक ने क्या कहा है। मतलब अभी तक बीजेपी आरोप लगाती थी कि जाति का कार्ड हम नहीं खेलते, ब्रजेश पाठक क्या कह रहे हैं सुनिए।
4: अब 2027 का चुनाव है, नेतृत्व मुख्यमंत्री जी का योगी जी का ही होगा, उनके नेतृत्व में जा रहे हैं।
5: मुख्यमंत्री जी हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको भी बताया है, आप तो सब जानते हैं, अखबार में छप चुका है,
4: तो उनके नेतृत्व में ही चुनाव में
5: आप जानते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष तो सर्वोच्च पद पर हमारी पार्टी के नेता है, वो जो निर्देश देते हैं उसको हम लोग मानते हैं कि हम सब उसको कार्यकर्ता के रूप में सहर्ष स्वीकार करते हैं।
3: तो आज के ही यूपी तक के कार्यक्रम में आपने देखा कि किस तरह से ब्रजेश पाठक ये कह रहे हैं कि भाई वही हमारे चेहरे होंगे योगी आदित्यनाथ और ब्राह्मण उनको सीएम बनाने वाले हैं। तो क्या ब्राह्मणों की नाराजगी का एहसास था? क्या ये तमाम मुद्दे एक साथ आगे आ रहे हैं? और सुधांशु जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विपक्ष को निराशावादी कहा है, इस पर भी आपका जवाब कि आखिर किस आधार पर पीएम ये आरोप लगा रहे हैं? और वहीं दूसरी तरफ ये आप कहते थे जाति हम लोग नहीं मानते हैं, हम तो सबका विकास सबका साथ कहते हैं, तो फिर ब्राह्मण कार्ड क्यों खेलना पड़ रहा है ब्रजेश पाठक जी को? ब्राह्मणों की नाराजगी का डर है क्या?
6: देखिए, इसमें दोनों बातों का जवाब देता हूं। अभी आपके जो इस पे दिखाया जा रहा था स्क्रीन पे, इस पे तो आपका संवाददाता उनसे पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उप मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि योगी जी होंगे, इसमें कार्ड कहां से आ गया? ये तो बिल्कुल जिसे कहते हैं संगठनित व्यवस्था की बात है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी कह रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने जो कहा है वही पार्टी का अंतिम निर्णय है, तो उसके अनुसार योगी जी सीएम हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव होगा। अब मुझे लगता है इसमें जो लोग जरूरत से ज्यादा कार्ड का एंगल, कास्ट का एंगल देखना चाहते हैं, उसका कारण जानते क्या है? विपक्ष की सीएम बनने की चाहत जानते किसमें रुकी है? CNM, कास्ट एंड मुस्लिम, मतलब हिंदू समाज को कास्ट में डिवाइड करो और मुस्लिम तो अपना पक्का है, इसलिए CM मींस कास्ट एंड मुस्लिम। मगर मुझे लगता है उनके जो मंसूबे हैं ये भली भांति देश की जनता को पता है, तो वो इतनी आसानी से साकार होने वाले नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सभी को साथ में लेकर और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, धर्म की बात करके, और मैं कहना चाहता हूं यदि कोई उसमें ब्राह्मण एंगल
3: की बात करके,
6: हाँ बिल्कुल धर्म, क्योंकि यह राष्ट्र धर्मनिष्ठ राष्ट्र है, यह राष्ट्र धर्म निरपेक्ष नहीं है, यह धर्म प्राण राष्ट्र है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के एम्बलम पर भी लिखा हुआ या तो धर्मस्तत्व जया, तो इसलिए हम धर्म के साथ हैं, और जो लोग धर्म विरोधी हैं वो जब जात का कार्ड खेलते हैं तो बहुत अजीब सा लगता है। उदाहरण के लिए एक तरफ जिनके समर्थक इतिहासकारों ने लिखा कि वेद क्या थे, देवर द ब्लबर ऑफ द एनिमस, यानी जानवरों के बीच में घूमने वाले लोगों के मुंह से निकले हुए अनाप शनाप वाक्यों के अलावा कुछ नहीं थे, और फिर वो कहते हैं कि साहब हम तो हिंदू धर्म और ब्राह्मणों के बड़े भारी पैरोकार हैं। मुझे लगता है इन सारी बातों को लोग समझते हैं। अब मैं प्रधानमंत्री जी की बात पे कहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने कहा वो तथ्यात्मक है। राहुल गांधी जी आज से थोड़ी निराशावादी है। राहुल गांधी जी के मैं सत्ता में आने से पहले का स्टेटमेंट कोट करता हूं, 14 जुलाई 2011, वो कहते हैं आतंकवाद पर नियंत्रण संभव ही नहीं है। देखिए निराशावाद का एक बयान, फिर याद करिए गरीबी तो एक मानसिकता है, अन्यथा आदमी उसमें से बाहर निकल सकता है। फिर आइए जब 2014 के बाद इनके एक नहीं अनेक बयान, इन्होंने जाके 2022 में ये कहा इंग्लैंड में, पहले मार्च 2023 में इन्होंने कहा कि भाई वाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूरोप आर साइलेंट, वो भारत के अंदर हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। 2022 मई में जाके इंग्लैंड में ये कहा कि साहब भारत जो है वो तो इंडिया इज नॉट ए नेशन, इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स लाइक यूरोपियन यूनियन। अब आइए इन्होंने 2022 में कहा बिल्कुल वो साहब वो तो बारूद सुलगा हुआ है, केरोसिन डाल दिया गया है, अब किसी भी समय तीली निकल सकती है, और वो जैसे कहते हैं सीली हुई तीली के थ्रू 4 साल उन्होंने गुजार दिए हैं। तो मुझे लगता है फिर उसके बाद अगर आप इनके एक के बाद एक बयान देखें, इन्होंने कहा है भारत की इकोनॉमी डेड है, इन्होंने और तो सुनिए निराशावाद की पराकाष्ठा तो ये है कि ये गुजरात में जाकर अपनी पार्टी के सम्मेलन में बोलते हैं कि गुजरात में दो प्रकार की कांग्रेस है, एक कांग्रेस के साथ है एक बीजेपी के साथ है। अब बताइए इससे ज्यादा निराशावादी प्रतिक्रिया क्या होगी, चुनाव के दौरान निराशावाद की पराकाष्ठा क्या है। अमित शाह जी 25 दिन रहे बंगाल में, राहुल गांधी जी कितने दिन रहे, चलो बंगाल में आप कहते मेरा कुछ था ही नहीं, तो आप असम में तो मुख्य विपक्षी दल थे, कितने दिन रहे वहां पर। अब बताइए केरल में तो बाय डिफॉल्ट आपकी सरकार आ गई मुस्लिम लीग की कृपा से, वहां पे आप कितने दिन रहे,
3: उस समय आप डिफॉल्ट से जीते,
6: मुस्लिम लीग की वजह से जीते, और भारत के इतिहास में पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में मुस्लिम लीग के 5 मंत्री बने हैं, उस जिन्ना की मुस्लिम लीग के जिसने देश का विभाजन कराया था। और अगर कोई ये झूठ कहना चाहे कि ये वो मुस्लिम लीग नहीं है, तो मार्च 1949 में मोहम्मद इस्माइल और पीके पोकर साहब बहादुर जिन्होंने ये मुस्लिम लीग बनाई, वही जिन्ना की मुस्लिम लीग के मद्रास प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष थे, और जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता था, तो मोहम्मद इस्माइल को कायदे मिल्लत। तो मुझे लगता है इसलिए मैं पूछना चाहता हूं भाई साहब आप थे कहां, आप तो वियतनाम में थे, वो निकोबार में थे, और बाहर जाकर वो पता नहीं कहां ओमान ओमान में घूम रहे थे। तो मुझे लगता है एक संस्कृत का श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, अर्थात उद्यमन से कार्य सिद्ध होते हैं केवल मन में सोच लेने से नहीं, जैसे बैठे हुए ख्वाब देख रहे सिंह के मुख में अपने आप आकर मृग प्रवेश नहीं कर जाते हैं, राहुल गांधी जी वही ख्वाबों ख्यालों में रहते हैं, बाहर घूमते रहो 2-4 बयान दे दो फिर कास्ट और ये कर दो डिवाइड कर दो और अपने आप सब कुछ हो जाएगा। न मंडल स्तर के सम्मेलन हमने आज तक देखे, न हम इनके बूथ स्तर के सम्मेलन देखे, न शक्ति केंद्र स्तर के सम्मेलन देखे,
3: कितनी बार देखे, सिली हुई तिली से सब कुछ कर रही है आपकी पार्टी।
7: एक भी चीज बताई कि निराश क्यों ना हो, उसका कोई जवाब नहीं मिला। कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, राहुल गांधी राहुल गांधी। हम तो कह रहे हैं कि भाई आपने हिंदुत्व की भी बात की, अभी संस्कृति की बात की, गाय के काटने की परमिशन देने वाली पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, शंकराचार्य की पालकी को उठा के फेंक दे जो पार्टी लाठियों से बटकों को पिटवाए चोटी से खिंचवाए वो हिंदुत्व की बात करती है, बीफ कंपनियों से पैसा लेने वाली पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, मुस्लिम लीग में अगर कोई मेंबर पुरानी पार्टी में था, खैर वो तो आप ही ने जवाब दे दिया कि वो मुस्लिम लीग नहीं। अरे भाई आज निराशावाद का, आप नीट और CBSE के एग्जाम के बाद आप बच्चों की निराशा तो देख लीजिए जाकर क्या हालत है। मोदी जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, उन्होंने नहीं होने दिया। अरे भाई 12 साल का आप अर्थव्यवस्था का इतिहास तो उठा लीजिए, और मोदी जी इतना ही आपने आत्मनिर्भर भारत बना दिया है तो हम आपको चैलेंज करते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए आत्मनिर्भर भारत पे। जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 17% से लगभग 12.5% पे आ गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट लगातार बढ़ता चला जा रहा है, 9 गुना इंपोर्ट बढ़ गया, जिस तरह से मेक इन इंडिया स्टार्टअप इंडिया बैटअप इंडिया लेटअप इंडिया सारे फेल हो गए, जिस तरह से स्किल इंडिया का हालत है, स्किल इंडिया में 6 महीने में 0.6% अभी तक रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हुआ है, जिस तरह से आज 30 लाख के करीब पासपोर्ट सरेंडर हो गए, मोदी जी ये तो बहुत अच्छे सिग्नेचर होंगे आप जिस तरह से साइन होंगे, जिस तरह से देश के ऊपर 5 गुना कर्जा हो गया, आज जो हालत है आप ट्रंप के सामने सरेंडर किए बैठे हैं, किसानों की आप सुध नहीं ले रहे हैं, आप हिंदुत्व की बात इसकी बात उसकी बात, अरे भाई 97% बच्चे जो नीट में एग्जाम दे के आए हैं वो हिंदू हैं, छह बच्चे जिन्होंने सुसाइड किया, छह के छह हिंदू हैं, उस पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। एक आप व्यक्ति जो चार साल से वहां पर एजुकेशन मिनिस्टर बन के बैठा है, उसको हटाते क्यों नहीं मोदी जी? क्या बच्चों की निराशा आपको दिखती नहीं? क्या वो बच्ची कल जिसने सुसाइड किया है उसकी निराशा आपको नहीं दिखती है? केवल राहुल गांधी के ऊपर बयान देना, कांग्रेस के ऊपर बयान देना, अब तो 12 साल हो गए मोदी जी आपकी सरकार को, क्या आपकी कोई जवाबदेही नहीं? क्या आप कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे? रुपए की तुलना में डॉलर कहां जा रहा है मोदी जी? पहले तो आप कहते थे सरकार की छवि गिरती है, सरकार का ये गिरता है, सरकार का वो गिरता है, कौन आगे बढ़ेगा? आज पेट्रोल डीजल और रुपए में जिस तरह से होड़ लगी हुई है कि कौन जल्दी सेंचुरी मारेगा, पेट्रोल तो मार ही गया। मोदी साहब आज अर्थव्यवस्था का बैंड बजा हुआ है, उसको संभालिए। निराशावाद ही आप देखिए कि कल ही आप ही का कोई मित्र बताया राजेश करके 15,000 करोड़ का गबन करके भाग गया LIC का सारा पैसा लेकर।
3: 15 लाख करोड़
7: क्या आप एक शब्द बोलेंगे मोदी जी उसके ऊपर? फिर आप कहते हैं कि निराशावादी विपक्ष है। आपने पूरे देश को भ्रष्टाचार के ज्वालामुखी पर बैठा दिया है। केवल स्टूडियो में बैठकर भाषण देने से और उद्यमेन ही सिद्धंती करने से काम नहीं होगा।
3: सुधांशु जी जवाब दीजिए, सबसे बड़ी समस्या है ये जो एग्जाम को लेकर है, वो डेडलॉक अभी तक CBSE के इस बैच के लिए सुधांशु जी खत्म नहीं हुआ है।
6: देखिए, जो नीट और CBSE के बीच में जो घटनाएं हुई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार इस विषय पर न सिर्फ सतर्क है बल्कि संवेदनशील भी है, और सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा कि प्रधानमंत्री जी स्वयं इस चीज को देख रहे हैं।
7: दोनों पढ़े लिखे लोग हैं। अब मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं आपसे। नहीं, आपने कहा, एक मिनट, केवल 10 सेकंड लूंगा। आप केवल कह रहे हैं मोदी साहब संवेदनशील हैं। अरे भाई, वो वेबसाइट अभी तक नहीं चली, खाक संवेदनशील है? उत्तर दीजिए।
6: आप उत्तर देता हूं। जब नीट नहीं होता था तब कैसे एडमिशन हो रहे थे
7: CBSE से?
6: जी नहीं, नीट से, नीट जब नहीं था तो प्राइवेट कॉलेजों का भी कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता था। सब एक एक लिस्ट लगाते थे और सीटें बिकती थी 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख में।
3: ये एक फैक्ट था,
6: सिर्फ डोनेशन से होते थे। आज मोदी जी ने ये स्थिति की है। अब अपने टन पे बोलिए, आज मोदी जी ने कम से कम ये स्थिति की कि अब वो कोई जो पहले सीधे सीटें नीलाम होती थी, यानी एक प्रकार के करप्शन का ही एक स्वरूप था, उस संस्थागत स्वरूप को चेंज करके एक व्यवस्था की कि गरीब और सामान्य व्यक्ति का वर्ग का जो परीक्षार्थी है वो भी आगे आकर वहां पर जा सकता है। ठीक है, आज जो स्थिति हुई है इसमें चुनौतीपूर्ण और एक बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न हुई है कि पेपर लीक तब होता है जहां पेपर छपे और छपने के बाद जहां सेंटर में जाए उस बीच में लीक हो जाए, मगर पहली बार ऐसा हुआ है कि पेपर सेटिंग करने वाले लोग उसको पेपर आउट करने में हो गए। ये तो ऐसी स्थिति हो गई कि जैसे जज जो जजमेंट लिख रहा हो और जजमेंट प्रनाउंस होने से पहले वो गोपनीय रहता हो वही लीक कर दे। खैर, उसकी व्यवस्था की जा रही है कि अब किस प्रकार से आगे होगा। मगर जो इन्होंने कहा कि हम लोग निराशावाद की बात करें, इकोनॉमी का बैंड बजाए, तो मैं चुनौती के साथ कहता हूं आलोक जी से, इस समय दुनिया का एक देश बताइए जहां पर महंगाई की दर भारत से कम हो। नंबर दो, दुनिया का एक देश बताइए जहां पेट्रोल के दाम भारत से कम बढ़े हों। अमेरिका में 10-40% बढ़े हुए हैं, यूरोप में 20-40%, एशिया में तो 20-60%। अभी मैं आपके लाखों दर्शकों से कहता हूं, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में खोल के देखिए आज कितना डीजल का पेट्रोल का रेट है और भारत में कितना है। सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हकीकत यह है कि दुनिया में सुनामी आई हुई है आर्थिक। आर्थिक सुनामी आने वाली नहीं, आज
3: समाजवादी पार्टी से और अनुपम मिश्रा RLD से जुड़ गए। मैं आ रही हूं अमित भाई, एक सेकंड जल्दी से आलोक जी, छोटा सा जवाब।
7: ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत
6: बता के जाइएगा,
7: मैं बता रहा हूं 150 करोड़ के लोगों का आप तुलना छोटे छोटे देशों से करें, सैन फ्रांसिस्को से करने लग जाएं, ये देश को
6: अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है।
7: सुन तो लीजिए, वहां का पर कैपिटा इनकम और हमारे का क्या डिफरेंस है आप बता सकते हैं? वो
6: बताइए,
7: लगभग 40 गुना।
6: तो आज वहां पेट्रोल कितना है? 160 रुपए, 170 रुपए लीटर।
7: अरे भाई सुनिए ना, एक जब 40 गुना पर कैपिटा इनकम है। अरे सुनिए ना भाई,
6: अब पर कैपिटा में तो डॉलर का कन्वर्जन चाहिए मगर रेट में डॉलर का कन्वर्जन नहीं चाहिए, ये होती है।
7: मैं फिर कहूंगा, आप मान के चलिए महंगाई भी नहीं है, बेरोजगारी भी नहीं है, नीट पेपर
6: नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ
7: नीट पेपर भी आउट नहीं हुआ। रोज बैठ के आप लोग गुमराह कर रहे हैं देश को। कर्नाटका वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जो मेडिकल एग्जाम्स होते थे जिस समय पर कांग्रेस की वहां पर सरकार थी, उस समय पर ये फैसला हुआ था कि CBSE से होगा, और उसी समय पर आपके 2017 में NTA बनी, 18 में पहला एग्जाम लिया जो आउट हुआ, उससे पहले CBSE एग्जाम कंडक्ट करती थी। और आज भी जो एग्जाम NTA करती, एक मिनट भाई, NTA जो एग्जाम
6: की बात कर रहे हैं,
7: मैं 2018 की बात कर रहा हूं कि NTA बनी ही 2018 में,
6: तो उससे
7: एक मिनट सुन तो लो, मैं बताता रहा हूं, उससे पहले CBSE एग्जाम लेती थी, और आज भी CBSE लेती थी 2006 या 2007 से।
6: तो 2008 में तो हमारी सरकार 6 साल में भी हमारी सरकार थी, 8 में भी हमारी सरकार
8: कहूंगा वो फैसला भी कर्नाटक में, कर्नाटक का
6: 2006 में जेडीएस के साथ थी, 2008 में अपने दम पे थी।
8: अरे प्रभु
6: बोलिए, एक्चुअली रॉन्ग है आप।
8: मैं फिर कहूंगा कि जिस समय पर जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर थे उनके समय पर, जब वो उस समय पर एआरसी के चेयरमैन भी रहे, उसके बाद से सीबीएसई को गया, और आज भी एनटीए एक एनजीओ है जिसको 2017 में आपने काम दिया। एक एनजीओ को आपने पूरे देश के बच्चों का भविष्य दे दिया, उसका नाम एनटीए है। पिछले 2 साल से वो पेपर लीक होता चला जा रहा, 3 साल से एक चिड़िया का बच्चा आपको पकड़ में नहीं आता। बुलडोजर चलते हैं आपके जगह जगह, बुलडोजर राज और ट्रिपल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, क्या एक एनटीए के ऊपर बुलडोजर चल सकता है? क्यों? क्योंकि आपके लोग, आरएसएस के लोग उसमें भर्ती हैं और वो जानबूझकर व्यापम कांड रोज करवा रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि आप सच्चाई से भागना चाहते हैं। क्या आज भी सीबीएसई की वेबसाइट प्रॉपरली चलती है? डिजिटल इंडिया, विश्व गुरु, 56 इंच का सीना, और फिर मेलोडी मेलोडी खेलने लग जाते हैं आप लोग। देश को कहां पहुंचा दिया आपने?
6: चलिए इनको बधाई हो, ये एक भी देश का जवाब नहीं दे पाए। हाँ। यानी ये कौन सच बोलता है, कौन झूठ, सबके सामने।
8: अरे मैंने दूसरी बात,
6: किसी देश, एक देश का नाम बताइए ना, अरे यहाँ भारत से कम बढ़ाओ, बताइए।
8: मैं फिर
6: नहीं बता पाए,
8: मैं फिर कहूंगा हमारी करेंसी,
6: अरे किसी,
8: सुनो ना भाई,
6: परसेंटेज में बताइए, बांग्लादेश यहाँ कम बढ़ाओ।
8: अरे छोड़ दो ना यार, ये
6: रोज नहीं पता है,
8: आंकड़ों को, आंकड़ों को बाजीगरी रोज करते हैं, आंकड़ों की रोज बाजीगरी करते हैं। आज भी जो जीडीपी ग्रोथ रेट का जो आंकड़ा आया वो झूठा है, फर्जी। इसीलिए आईएमएफ हमारे आंकड़ों को सी कैटेगरी में रखता है।
6: आईएमएफ ने तो अभी कहा है, कोट करिए, सोर्स कोट करिए।
8: मैं आईएमएफ की बात कह रहा हूं।
6: अरे आईएमएफ को मैं कोट कर रहा हूं।
8: आप अप्रैल का आईएमएफ का पूरा स्टेटमेंट सुन लीजिए कि हमारे आंकड़ों पर किसी पर भी चीज पर वो विश्वास नहीं करते, सी कैटेगरी में रखते हैं हमारे आंकड़ों को। आंकड़े भी आपके, सरकार भी आपकी है। मैं तो कह रहा हूं ना, महंगाई है, ना बेरोजगारी है, ना नीट का पेपर आउट हुआ है। आप केवल और केवल जिस तरह से हरा हरा सब है वो दिखाते रहिए, कांग्रेस को कोसते रहिए। अरे भाई 12 साल हो गए आपकी सरकार को, क्या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो मेक इन इंडिया शुरू हुआ था उसका क्या हाल है? क्या उसका परसेंटेज गिरा है कि नहीं गिरा? मैं फिर कहूंगा, क्या वो फैक्ट गलत है? आप मुझे केवल ये बता दीजिए कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की करेंसी भी हमसे ज्यादा मजबूत नजर आ रही है।
3: जल्दी से
6: सरासर झूठ बोल के फर्जीफिकेशन करते हैं। मैं स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं। लुक एट इंडिया टुडे, इंडियाज ग्रोथ रेट इज मोर देन 2 times हायर देन द एवरेज ग्लोबल ग्रोथ। दिस इज हैपनिंग बिकॉज द कंट्री हैज अ स्ट्रांग फंडामेंटल, सेड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिवा
8: 16th April 2026। आप लोगों के बीच में नहीं बोलता,
6: आप फैक्ट नहीं
8: बोल रहा
3: हूँ। फिर यूपी पर आना है,
8: क्या रुपए, क्या रुपया, क्या आपका रुपया मजबूत है? देखिए आप इस तरह से झूठ बोलकर नहीं जा सकते।
6: झूठ क्या,
8: मैं बता रहा हूँ ना भाई, आप सुनिए ना भाई, आप मुझे बताइए। एक मिनट सुनिए,
6: सोर्स कोट करिए।
8: कोई मुझे माइक्रो मैक्रो एक इंडिकेटर इकोनॉमिक्स का बताइए जो पॉजिटिव हो, एक बता दीजिए। आपका रुपया मजबूत हो रहा, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट कम हो रहा, आपका एक्सपोर्ट बढ़ रहा हो, सब कुछ तो नेगेटिव जा रहा है, आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है, आपकी महंगाई बढ़ रही है, तो कौन सा इंडिकेटर ऐसा है? मोदी साहब केवल ये बता दीजिए कि सुसाइड रेट देश में क्यों बढ़ रहा है? आप निराशा की बात कर रहे हैं ना,
3: बार बार
8: 1100 टोल थे, आज 7000 टोल हो गए हिंदुस्तान में।
3: अमित जमाई जी को भी थोड़ा बोलने का मौका दीजिए। अमित जमाई जी, ये हम दिखा रहे हैं एक बार जो नंबर्स हैं, क्योंकि अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कौन निराशावादी है उस पर ये बहस चली गई। प्रधानमंत्री ने आज बड़ा हमला विपक्ष पर किया है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी पर। लेकिन वही जब हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि सब थोड़े थोड़े ब्राह्मणवादी हुए चले जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से ब्रजेश पाठक जी ने कहा है, लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप देखिए विधायक जो 258 है बीजेपी के, उनमें हम आपको दिखा रहे हैं हर वर्ग के कितने हैं। और अब तो अखिलेश जी भी पूजा पाठ की फोटो डालने लगे हैं, सब कह रहे हैं कि सब अब हिंदू कार्ड खेल रहे हैं।
9: देखिए अंजना जी, सीधी सी बात यह है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना हुई कि ब्रजेश पाठक जी को आगे आना पड़ा, उन्हें कहना पड़ा कि मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ जी होंगे। पहली बात तो ये बहुत अनडेमोक्रेटिक है, चुनाव होते हैं, आपके पास विधायक होंगे तभी तो आप मुख्यमंत्री बनेंगे। दूसरी बात ये है कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने एक पीडीए का कैंपेन शुरू किया है, पिछड़ा दलित को फोकस करके, कि भारतीय जनता पार्टी यूपी में पिछड़ा दलित पॉलिटिक्स करेगी। अभी जब मुख्यमंत्री जी का होम डिपार्टमेंट जाना था, दो एक महकमे कम होने थे, तो दो मुख्यमंत्री के दावेदार लखनऊ में टहल रहे थे, एक गुजरात से थे, एक प्रयागराज वाले थे। अब सवाल यह है कि वोट देगा पिछड़ा और दलित, मुख्यमंत्री अभी से कोई और होगा, तो पंकज चौधरी जी को काहे बनाया है प्रदेश का अध्यक्ष, कुर्मी समाज के साथ काहे आप घात कर रहे हो जब आपने पहले से तय कर लिया है। फिर अगर आप सनातनी सरकार हैं तो यह बताइए कि पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों के फेक एनकाउंटर, बुलडोजर की कार्रवाइयां पूरे सूबे में, मैं क्रिमिनल्स के ऊपर नहीं कह रहा हूं, उनसे जुड़े हुए सैकड़ों परिवार हैं जिनके ऊपर इस मुख्यमंत्री ने, जो सूबे में अराजकता का काम कर रहे हैं, अव्यवस्था का काम कर रहे हैं ये मुख्यमंत्री, और जिनके होम सेक्रेटरी को हाई कोर्ट ने धमकाया है, मामला डीओपीटी को गया है। देखिए होम सेक्रेटरी बहुत ही सीजेंट एफिशिएंट आईएएस ऑफिसर रहे संजय प्रसाद, लेकिन उनको बिगाड़ने वाला कौन शख्स है? उनको बिगाड़ने वाला मुख्यमंत्री है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर से कंप्लेंट आई है कि ये बेलगाम होम सेक्रेटरी है जो पार्टी को भी परेशान करता है, जो पूरे सूबे में अव्यवस्था की वजह बना हुआ है। तो आप जरा सुधांशु जी से पूछिए, कानपुर में शुक्ला जो इनकी मंत्री हैं, उनका पूरा ब्राह्मण परिवार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन क्यों कर रहा है? गाजीपुर में एनकाउंटर किया, एक दिन तो आपने मार दिया, दूसरा जो सामान्य वर्ग के थे वो कहां पे हैं? उनको आपने जेल क्यों भेज दिया?
10: ठीक है,
9: एक तो ये पूरी जो मामले हैं, मुख्यमंत्री का जाना तय है, आप छोड़ दीजिए अंजना जी, सीटें नहीं आएंगी भारतीय जनता पार्टी की, जनता ने माननीय अखिलेश यादव जी के लिए पीडीए के लिए मन बना लिया है। मैं आज आपको बहुत, अंजना जी मैं जौनपुर में बहुत जमीन में बैठा हूं, समाजवादी सरकार थंपिंग मेजोरिटी में आदरणीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने वाली है, जनता लखनऊ की तरफ आगे बढ़ रही है।
10: ठीक है, एक बार डेटा भी दिखा दीजिए, क्योंकि खास तौर पर अगर हमने कास्ट इक्वेशन भी निकाला है कि किस तरह से कौन किसकी तरफ वोट डालता है, सुधांशु जी उनकी बातों का जवाब दीजिए।
6: देखिए जो इन्होंने
10: पिछली बार भी ठीक से नहीं दिया, ऐसा माना जा रहा है कि लोग ब्राह्मण नाराज है क्या बीच में?
6: अब बताना चाहता हूं,
10: इसलिए पाठक जी को आगे किया जा रहा है।
6: अब ये भी बता देता हूं,
10: ये देखिए 2024 लोकसभा में इंडिया गठबंधन को सवर्ण 16 और एनडीए को 79 यादव वोट 82% इंडिया गठबंधन की तरफ, तो 15% एनडीए की तरफ गया था। ये लोकसभा चुनाव का डेटा हम दे रहे हैं, और आपने देखा था यूपी में समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस की थी, बीजेपी को परेशान कर दिया था। इंडिया गठबंधन 34, कुर्मी कोयरी 61, एनडीए, अन्य ओबीसी में भी एनडीए की बाजी मारी थी और उन्होंने 59 लिए थे लेकिन 34 इधर। वहीं इंडिया गठबंधन को जाटव वोट 25 और 56 गैर जाटव वोट, ये सबसे बड़ा फैक्टर रहा, क्योंकि मायावती की जमीन पूरी तरह से खिसक गई और वो आप देखिए कि सब उस तरफ जाते हुए दिखाई दिए। जल्दी से बताएं,
6: देखिए नॉन डेमोक्रेटिक बोलते बोलते क्या पहले वाक्य में कहा कि ब्रजेश पाठक जी ने पहले ही कह दिया कि योगी जी सीएम होंगे तो ये तो इलेक्ट होने के बाद होगा, और अंत में क्या कहा, अखिलेश जी सीएम होंगे ये पहले तय है, ना कोई पिछड़ा बनेगा, ना दलित, ना कोई यादव बनेगा, बनेगा तो परिवार वाला ही बनेगा। अद्भुत है साहब, आप लोगों की डेमोक्रेसी अद्भुत है। और मैं बताता हूं, पिछड़ों के अलंबरदार और आप जातियों की बात करने वाले, आपके तो लोग ब्राह्मणों के लिए कैसी कैसी गाली और अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो एक अलग बात है, मगर मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी से भी पूछना चाहता हूं, हमने 1984 में बीजेपी ने कल्याण सिंह जी को यूपी का अध्यक्ष बनाया था, बताइए 80 के दशक में किसी ने ओबीसी को अध्यक्ष बनाया हो, और ऐसा नहीं अकेला था। 1986 में हमारे विनय कटियार जी बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, 1988 में उमा भारती जी सांसद हो गई थी। अगर देखा जाए नैसर्गिक रूप से हम लोगों ने समाज के सभी वर्गों को आगे बढ़ाया, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपने समाज के वर्ग को छोड़िए, पिछड़ा तो छोड़िए, अपनी जात में भी एक व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाया। यादव समाज का एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष सीएम, इसे छोड़िए, वो आपके लिए कास्ट प्लस मुस्लिम है, और मुस्लिम तो इतना भारी है कि अगर वो कमेंट भी कर देगा, अखिलेश जी की पत्नी पर भी कमेंट कर देगा तो चुप्पी साध लेनी है। इतना ही नहीं, अगर रमाकांत यादव, याद करिए आजमगढ़ का दंगा 2008, यादव समाज के साथ अभद्रता हुई थी, उनके साथ मारपीट हुई थी, मुलायम सिंह जी ने कहा था माफी मांगो, और रमाकांत यादव विद्रोह करके बाहर आए थे और फिर बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़के जीते थे। इसलिए आप ध्यान रखिए, कोई इसमें कोई किसी जात को बख्शने वाला नहीं है। ठीक है, चंद दिन की आप हंसी ख्वाब देखकर
10: छोटा सा जवाब अमित जी, फिर मैं जाऊंगी हर्ष जी और उनके पास।
9: देखिए सुधांशु जी से मैंने पूछा कि अगर आप पिछड़ा दलित पॉलिटिक्स करते हो तो आपने अभी से मुख्यमंत्री कैसे तय कर लिया, वोट चाहिए पिछड़ों का, वोट चाहिए दलितों का, इसका जवाब आएं बाएं शाय करके निकल लिए सुधांशु भाई, ये इनकी आदत है, ये इनकी आदत है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, 2024 में पूरा उत्तर प्रदेश बीजेपी नरेंद्र मोदी जी,
6: अच्छा मुस्लिम हो सकता है कि नहीं? आप मुस्लिम हो सकता है कि नहीं, एम भाईजान ने बताइए।
9: अरे मुसलमानों ने उत्तर प्रदेश की, मैं आपसे दोबारा कह रहा हूं, मुसलमानों ने, दलितों ने, लोधी समाज ने, कोयरी ने, कुर्मी ने, निषाद ने, मल्ला ने, बिंद ने, राजभर ने, सब ने मिलकर यह तय किया है कि हमारे 27 में जो मुख्यमंत्री होंगे वो अखिलेश जी होंगे। आपको समस्या क्या है? आप ओम प्रकाश राजभर जी को मुख्यमंत्री अभी से डिक्लेयर कर दीजिए।
6: आप ही ने कहा कि अखिलेश यादव होंगे, खुद ही डिक्लेयर कर रहे हैं। हमारे तो एग्जिस्टिंग है, आपके तो है नहीं तब आप डिक्लेयर कर रहे हैं, हमारे तो है।
9: भाई ये बताइए, अगर आपके हैं तो आप
6: जो है वही रहेंगे।
9: उमा भारती जी मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ क्यों है? कल्याण सिंह जी अपनी जिंदगी में भारतीय जनता पार्टी छोड़ गए, अपनी जिंदगी में कहा ये कलंक है, ये पिछड़ा विरोधी है भारतीय जनता पार्टी। आप तो एक जाति की पार्टी थे,
6: आप तो
9: आज भी उत्तर प्रदेश में
6: अखिलेश जी कल्याण सिंह जी के अंतिम संस्कार में नहीं गए, उन्हीं दिनों मुख्तार अंसारी के नमाज जनाजा में चले गए।
9: मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश में एक जाति की सरकार चल रही है, दूसरी कोई जाति नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी भाई कभी तो ब्राह्मण समाज के बारे में सोचो,
10: ब्राह्मण सीएम चाहिए आपको? आप चाहते हैं कि बीजेपी ब्राह्मण सीएम बनाए?
9: हम तो कह रहे हैं ये अभी आप कैसे तय कर लिया आपने? अभी आप कह रहे हैं हम पीडीए का
10: हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जल्दी से
6: कैसे कैसे ये जलवे बनाए राम जी, आंखें तकती हैं
10: त्रिपाठी जी
11: बड़ा रोचक है।
10: लेकिन बीजेपी को क्यों बताना पड़ रहा है ये सब?
11: मुझे लगता है ये तो ये सच्चाई है कि पिछले कुछ समय में ब्राह्मणों के एक वर्ग में निराशा, उनके मन में एक असंतोष, उनको ये लगता है कि हमारा जो हिस्सा है वो हमको नहीं मिला। लेकिन यह भी सच है कि ब्राह्मण योगी आदित्यनाथ के साथ या कहें कि किसी जाति के साथ नहीं जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी का सिंबल देखकर लंबे समय से वोट करता रहा। और जो सुधांशु जी का वो बड़ी तथ्यात्मक बात है, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि कल्याण सिंह और उमा भारती, बाबूलाल गौर को नेता माना, शिवराज सिंह चौहान को नेता माना, मोहन यादव को नेता माना, और देश भर में वो लगातार इस तरह, और सबको छोड़िए ना नरेंद्र मोदी तो घांची तेली समाज से आते हैं ना, लेकिन उनको देश के ब्राह्मणों ने नेता माना, उनको कौन सा ऐसा है जो नहीं? मुझे लगता है कि ये डिबेट समाजवादी पार्टी भाजपा के ट्रैप में फंस रही, भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में फंस रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बातें,
6: एक मिनट
11: नहीं नहीं सर्टिफिकेट
6: मुझे बताइए,
11: अपना वाला खारिज कर दीजिए, आप अपना दत्तात्रेय वाला खारिज कर दीजिए, सर दत्तात्रेय वाला खारिज कर दीजिए, मैं अपना वाला बता। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब समाजवादी पार्टी ये कहती है कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी बनाए, तो ये बड़ा रोचक हो जाता है कि ये तो स्थिति ये हो गई है कि जो यादव मतदाता है वो सोचने लगा है कि हमको हिंदू रहना है कि नहीं, हमको मुसलमान के साथ क्लब कर दिया है, हमको निकलने नहीं दे रहा। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सुखद स्थिति है जहां अखिलेश यादव राम मंदिर नहीं जाएंगे, जहां अखिलेश यादव को छोड़िए अमित जमेई एनकाउंटर में मुसलमान का वो किसकी बहन थी अमित भाई जरा बताइए ना, किसकी बहन थी वो जो
10: आलोक जी
11: एनकाउंटर हो गया था असद का, तो किसकी बहन थी और किसकी गर्लफ्रेंड जरा बताइए?
10: आप ही लिखा था, त्रिपाठी जी बन के तो नहीं बोल रहे ना?
7: देखिए
10: त्रिपाठी जी बन के तो नहीं
11: सबके लिए बोल रहा हूँ मैं, जाहिर है
7: नहीं आप सबके लिए नहीं बोल सकते। आपने कहा ब्राह्मणों के नेता मोदी जी, मेरे नहीं है भाई,
11: नहीं आपके नहीं,
7: मैं नहीं मानता हूँ, तमाम एक कुछ सुनिए ना भाई,
6: आप कितने
7: सुनिए ना भाई,
6: छोड़ देना
7: छोड़ दीजिए भाई, बहुत से ब्राह्मण नहीं मानते, उसमें क्या प्रॉब्लम है? यूजीसी बिल आने के बाद और जिस तरह से शंकराचार्य जी की पालकी फेंकी गई, उसके बाद भी इन्हीं मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री महोदय ने बटकों को घर पे बुला के भोजन वोजन कराया था। ये इनकी मजबूरी है कि ब्राह्मणों को कैसे वापस साधा जाए। और हम तो कह रहे हैं कि ब्रजेश पाठक जी ने अपनी खुन्नस निकाली है, उन्होंने पूरी तरह से कह दिया है कि हम फिर ठाकुर बना रहे हैं, तो ब्राह्मण अपने आप में समझ जाइए, ब्राह्मण समझ रहे हैं कि बीजेपी ने ठाकुर को डिक्लेयर कर दिया, इनकी भाषा बोल रहा हूं मैं, तो उनके उप मुख्यमंत्री महोदय की भाषा बोल रहा हूं। दुर्भाग्य ये है कि जो गाय की परमिशन काटने की देते हो वो ब्राह्मणों के वोट की उम्मीद करते हैं। ब्राह्मणों भी सोचिए भाई कि आपके किस तरह से गाय को, जिसको हम माता और पूजनीय मानते हैं, ऑफिशियली डिक्लेयर कर रहे हैं 14 साल की हो जाए तो काट लेना भाई, घर के अंदर बैठ के खा लेना। ब्राह्मण वोट देगा आपको? बिल्कुल नहीं देगा। ब्राह्मण इस बार इंडिया गठबंधन के साथ आएगा। उमा भारती ने मोदी जी के लिए क्या क्या कहा और कल्याण सिंह ने क्या क्या बोला, आज का विषय वो नहीं है। और उत्तर प्रदेश का चुनाव जाति से आगे बढ़ चुका है, आपकी परफॉर्मेंस पे जाएगा। वो पूछना चाहते हैं कि भाई वो हाथरस की बेटी, उसके जो चार लोग थे उनमें से तीन तो छूट के आ गए, एक अंदर है, वो किस जाति की थी, क्या वो हिंदू नहीं थी?
8: नीट के एग्जाम क्या हिंदू बच्चे 97% बच्चे हिंदू नहीं थे, सीबीएसई के जो सड़कों पे बच्चे घूम रहे हैं क्या वो हिंदू नहीं है, क्या जो 6 बच्चों ने सुसाइड किया 6 के 6 हिंदू नहीं है, आपका हिंदुत्व का कार्ड चलेगा ना इस बार ब्राह्मण का कार्ड चलेगा।
6: कोई भी फैक्ट ना बता के बार बार वही बात रिपीट की, तो अब यहां तक मैं कहना चाहता हूं आपके तो भारत
8: क्या आपने गायक को काटने की परमिशन दी या नहीं, ये फैक्ट गलत है हाँ या ना?
6: बिल्कुल बीफ एक्सपोर्ट पूरी तरह बैन है भारत में,
8: अरे भाई
6: हो ही नहीं सकता। अब सुनिए, अब
8: एक्सपोर्ट की बात नहीं की, क्या 14 साल से ऊपर की गाय को बंगाल में काटने की परमिशन दी या नहीं दी, हाँ या ना दे दीजिए उत्तर भाई।
6: अरे गाय खाई किसने? नेहरू ने।
8: अब फिर वो कहेंगे मिथुन
6: 19 नहीं मिथुन नहीं, मिथुन तो गाय ही नहीं है भाई, जरा पढ़ो मिथुन इज नाइदर ए काउ नॉर ए बफेलो, इसे कहते हैं अकल बड़ी भैंस, अकल बड़ी। अभी अभी जाके नेट पे चेक करिए, मिथुन इज नाइदर ए काउ नॉर ए बफेलो, ना गाय की प्रजाति ना। अब सर अभी
8: तो बोलिए गाय नहीं है, मिथुन मिलता है बता दीजिए जरा,
6: बीच में नहीं, बीच में नहीं। अब मैं बताता हूं, नेहरू जी पंडित जवाहरलाल नेहरू 1956 में गए
8: यार, मैं गोलवर आइजनहावर के उसका कोई सेंस नहीं है। 1952 में पहला राज्य अगर कोई था तो उत्तर प्रदेश था, जिसमें गौवध पर प्रतिबंध लगाया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगाया।
6: उस समय गोविंद बल्लभ पंत थे पीसीएम,
8: पीएम तो थे मोदी, तो आप पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे के नहीं थे?
6: अब देखिए लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं।
8: मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा, आपसे पूछ रहा हूं क्या बंगाल में आपने परमिशन दी या नहीं, कहां है ना जवाब देने के अलावा? मुझे बताइए भाई, 14 साल कि बुजुर्ग गाय को काटने की परमिशन दी के नहीं वेस्ट बंगाल में, हां या ना बता दीजिए।
6: सुनिए मैं बताना चाहता हूं, और जो डीक्लासिफाइड किया गया 20 साल के बाद अमेरिका के द्वारा 16 से 18 सितंबर
8: की बात कर रहे हैं, अमेरिका पूरी भागेंगे, 1950 में भागेंगे,
6: क्योंकि अभी आप
8: यार वेस्ट बंगाल का जवाब दीजिए नहीं है, मुझे केवल वेस्ट बंगाल का जवाब देना।
6: अरे सुना वेस्ट बंगाल की बात,
8: क्या वेस्ट बंगाल में 14 साल की गाय कट सकती है
6: भाई? आप ना बता दीजिए भाई, मुझे हड्डी उड़ा दीजिएगा। अभी देखिए
10: सारी बताएंगे तो रोक देंगे।
6: अब सुनिए, उसमें लिखा हुआ है कि नेहरू से उनकी ईटिंग प्रेफरेंस पूछा गया, तो उन्होंने कहा फिलिट मैगिन ए बीफ एंड ए स्कॉच,
8: क्या क्या
6: उसमें लिखा आगे लिखा हुआ है सुनिए। अब देखिए बीफ, मुझे पता है परेशानी है,
8: किसी आपके आरएसएस के चीफ ने कहा कि गाय को मैं माता नहीं मानता, गाय तो जो है वो गोबर में रहती है, किसने कहा था बता दो?
10: अरे दस अगर जवाब नहीं मिलेगा तो आप
6: फैक्ट नहीं हो रहा है, आम इंसान कौन बोल रहा है
8: ना, वेस्ट बंगाल में परमिशन दी के नहीं दी
6: कुछ, और बीच में चिल्लाना
8: मुझे केवल ये बताइए वेस्ट बंगाल में परमिशन दी के नहीं
10: दी, उसके बाद आपको तुरंत मौका मिलेगा उनको बोलने का, अगर वो जवाब नहीं देते।
8: विश्व शर्मा ने जो कहा वो सच है कि नहीं?
6: सुनो सुनो सुनो,
8: कि घर के अंदर मीट खा लिया करो गाय का,
6: सुनिए
8: कहा कि नहीं कहा है ना, मैं जवाब दे दो भाई,
6: हां या ना मैं बता रहे हैं आपको। तो पहली बात तो उसमें लिखा हुआ बड़े आश्चर्य की बात थी कि बिगेस्ट हिंदू नेशन का प्राइम मिनिस्टर अपने
8: बीफ और
6: अब आई आज की बात, अब आज की बात कर रहा
8: हूं हेमंत विश्व शर्मा की पूछ रहा हूं, चिल्ला रहा हूं पता नहीं कहां पहुंच जाते हो भाई।
6: अब आज
8: इसको कहते हैं आए बाएं दाएं साएं,
6: देखिए फैक्ट
8: सही जवाब नहीं,
6: बिल्कुल साफ साफ
8: वेस्ट बंगाल में आपने परमिशन दी कि नहीं दी,
6: वेस्ट बंगाल में कहां पे है भाई?
8: अरे भाई 14 साल के ऊपर आपके मंत्री का बयान आया,
6: कौन सा भाई ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात करिए। आप सुनिए मंत्री का बयान, तो इनके तमिलनाडु के मंत्री ने कहा जब ये गठबंधन में थे कि सड़क पे दिखे तो ब्राह्मण को मार दो, बोलो बोला था कि नहीं डीएमके के मंत्री ने, और आप साथ में बैठे रहे, बोलो हाँ या ना?
8: मैं
6: बोलो सनातन धर्म जो है वो डेंगू है, वायरस है, ये है, एचआईवी है, और ये कहा ब्राह्मण को देखते ही मार दो, और आप सरकार में शामिल रहे, और अब जब विजय आ गया छोड़ के, बोलो बोला था कि नहीं डीएमके वाले ने? छोड़िए
8: आप गाय को काटने से रोकेंगे,
6: निंदा किए
8: क्या बंगाल में आप गाय को काटने से रोकेंगे हाँ या ना?
6: हम लोग तो रोक ही रहे हैं, वरना आपके जमाने में तो खड़ा
8: कहां रोक रहे हैं? आपने तो परमिशन दे दी, ऑफिशियल परमिशन,
6: ऑफिशियल परमिशन
8: आपके केंद्र के मंत्री ने कहा कि गौ हत्या नहीं रुक सकती।
10: अनुपम मिश्रा जी को दिखा दीजिए भाई, वो बेचारे शो खत्म हो जाएगा, बोल ही नहीं पाएंगे बस। अनुपम मिश्रा जी, अनुपम मिश्रा जी,
6: दर्शक देख रहे हैं मैं इनके लिए चिल्लाता हूँ, लगातार चिल्लाते हैं।
10: आपकी पार्टी या पश्चिमी
6: उत्तर प्रदेश, गाय की आपके पार्टी सड़क पे किसने की? कांग्रेस ने केरल में,
8: उसको जेल में डाला।
6: कौन सा जेल में डाला? उस समय तो आपकी आपकी पार्टी से बाहर किया था, जिसने जाके वो
8: किया, हमने पार्टी से बाहर किया,
6: पार्टी का पदाधिकारी
8: था और हमने पार्टी से बाहर किया,
6: कहां पार्टी से बाहर किया?
8: उसको जेल में
6: दिखाइए कहां पार्टी से बाहर किया?
8: वो यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष था, उसको पार्टी से
6: देखिए, और ये कबूलनामा यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सड़क के ऊपर भी पार्टी
8: कह रहा हूं।
10: अनुपम मिश्र जी जल्दी से बताइए, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में अब आपकी पार्टी का अस्तित्व है, लेकिन इन सब के बीच एक तरफ पीडीए की बात अखिलेश यादव करते हैं और दूसरी तरफ ब्राह्मण आपके साथ है ये, और हमारे साथ है, और हम फिर से योगी आदित्यनाथ को ही सीएम बनाएंगे, इसको कैसे देख रही है आपकी पार्टी?
12: अंजना जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रही बात ब्राह्मणों की, चूंकि ये डिबेट बहुत तरफ गई इस इधर और उधर, तो मैं पहले शुरुआत वहीं से करता हूँ। ये सब पॉलिटिकल नैरेटिव्स हैं जो बनाने का प्रयास किया जाता है विपक्षी दलों के द्वारा, अपोजिशन का काम है इस तरीके करना, लेकिन ब्राह्मणों में ऐसी कोई नाराजगी फिलहाल नहीं है। ये जरूर है कि कुछ बातें ऐसी शुरुआती दौर में आई जिससे ऐसा एक संदेश जा रहा था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वो दिखाई देने लगा है कि ये गलत नैरेटिव था। मैं बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दोनों लोगों ने विभिन्न बातें की। वो कह रहे हैं कि आपके यहाँ पे शुक्ला जी ये कानपुर की विधायिका हैं, वो सरकार के खिलाफ हैं, वो आपकी पार्टी से इधर गई। मैं आपको ये जवाब देना चाहता हूँ कि जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरे के घरों में पत्थर नहीं उछाला करते हैं। मैं आपसे पूछ लूं, अगर आपके पवन पांडे जी आपकी पार्टी के थे और विधायक थे और वो बहुत ही हताश हो के आपकी पार्टी से निकले, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे और उन्होंने कहा था कि ब्राह्मणों की उत्तर प्रदेश में कोई मदद ना करे, इस तरीके के सारे सेंटेंस आपके यहाँ से आए और आपके यहाँ कितना सफोकेशन रहा है। आपके यहाँ एक कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे जिनको की काम करने में चूंकि वो बढ़ चढ़ के ब्राह्मण थे हिस्सा लेते थे और उन्होंने बहुत सारा काम किया, उनको आप लोगों ने साइडलाइन कर दिया क्योंकि उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी, वो लगातार काम कर रहे थे। तो आप ब्राह्मणों की बात ना करें तो बेहतर है। दूसरा, ब्रजेश पाठक जी ने जो कहा, आप कह रहे हैं कि आप पहले ही आप मुख्यमंत्री का चेहरा बता रहे हैं। अरे आप अभी ना कहें तो कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के पास एनडीए के पास मुख्यमंत्री का कोई फेस नहीं है, और अगर हम कह रहे हैं हमारा सिटिंग डिप्टी सीएम भी उस बात को कह रहा है तो आपको उसमें भी एतराज है। और मैं दूसरी बात
10: टिकट पता नहीं कितने थे, आप सब बैठे ब्राह्मण है आज बहस में।
13: नहीं नहीं, मैं मिश्रा साहब से पूछ रहा हूँ, ब्राह्मण तो टिकट नहीं देते आप लोग।
12: अरे शर्मा जी, आप सुनिए,
11: शर्मा जी फॉरवर्ड हो गए, सुनिए, ओबीसी जात गिनाने वाले हिमाचल तेलंगाना और कर्नाटक तीनों फॉरवर्ड हो गए, बैकवर्ड को हटा दिया। बोलो भाई, जात
13: बोलो, कहूंगा
12: जंपिंग जैक मत बनिए।
13: प्रदेश अध्यक्ष कर्नाटक का आइए, सुन तो लो ना भाई, पांचों के पांचों का ओबीसी आया कर्नाटक, हाँ या ना हो तो बता दीजिए।
12: और उसके बाद भी आप
10: सुना था कि कांग्रेस पार्टी में प्रवक्ताओं की भी लिस्ट निकाली जा रही है देखने के लिए कि पिछड़ों को मौका मिले नहीं मिले।
13: नहीं, ऐसा नहीं, मेरी नॉलेज में इस तरह की कोई लिस्ट नहीं है। तो ज्यादातर
10: अमित जी आज खुश है कि हम समाजवादी पार्टी से आए हैं तो हम अपनी पार्टी को
13: बैलेंस, कांग्रेस पार्टी में चाहे प्रवक्ता हो चाहे बाकी कोई लिस्ट आती हो सब में बैलेंस रखने का प्रयास किया जाता है। अभी पांच राज्यसभा के कल अनाउंस हुए हैं, पांच में से दो ब्राह्मण है।
11: नहीं वैसे
13: हम बैलेंस करके चलते हैं, लेकिन दो दलित।
0: इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, पटना के सिविल कोर्ट पहुंचे हैं फैजल खान, गिरफ्तारी की तलवार उनके ऊपर लटकी हुई थी, अब कोर्ट में सरेंडर करने के लिए इस वक्त फैजल खान पहुंचे हैं। फायरिंग मामले में सरेंडर करने पहुंचे फैजल खान, इससे पहले उनके दो गार्ड को गिरफ्तार किया था, जब उनसे पूछताछ की गई थी तो पता चला था कि फैजल खान के कहने पर उन्होंने कोचिंग के बाहर गोली चलाई थी, जिसके बाद आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था, एफआईआर दर्ज हुई थी फैजल खान के खिलाफ, पुलिस उनकी कोचिंग के बाहर लगातार मौजूद थी। और अब यह खबर आ रही है कि पटना में पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद कोर्ट पहुंचे हैं फैजल खान। फैजल के गार्ड्स पर फायरिंग का आरोप लगा था और गार्ड्स ने कहा था कि फैजल खान के कहने पर फायरिंग की थी, लेकिन यह बड़ी खबर आपको बता दें, फायरिंग मामले में सरेंडर करने फैजल खान इस वक्त कोर्ट पहुंचे हैं। रोहित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रोहित क्या जानकारी है?
14: देखिए इस वक्त पटना के सिविल कोर्ट में हलचल काफी तेज हो गई है क्योंकि खबर आ रही है कि खान सर जो है किसी भी वक्त यहां पर पहुंच सकते हैं, हो सकता है सरेंडर करने के लिए भी पहुंचे, लेकिन अभी जो अंदर से भी खबर ये आ रही है कि संभवतः सरेंडर करने से पहले खान सर जो है वो अग्रिम जमानत की याचिका कोर्ट में डालकर एक बार कोशिश करना चाहते हैं कि अगर उन्हें अग्रिम जमानत मिल जाती है कोर्ट से तो फिर उनके लिए थोड़ी बहुत राहत होगी। तो इसी को लेकर जो है यहाँ पर हलचल काफी तेज हो गई है, पुलिस भी देख सकते हैं यहाँ पर काफी संख्या में पहुंच गई है क्योंकि पुलिस लगातार खान सर को गिरफ्तार करने के लिए जो है छापेमारी कर रही है, और अगर खान सर यहाँ पर सरेंडर करने के लिए पहुंचते हैं तो उससे पहले पुलिस उनको गिरफ्तार कर ले, इसकी यहाँ पर पूरी यहाँ कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं खान सर की मुश्किलें जो है पिछले 24-48 घंटों में और ज्यादा बढ़ गई है, प्राथमिकी दर्ज कर ली गई उनके खिलाफ और जिन धाराओं में उनके खिलाफ जो केस दर्ज किया गया है, एक है आर्म्स एक्ट में और दूसरा है हत्या की कोशिश, अब ये दोनों जो है गैर जमानती धाराएं हैं और इसीलिए अब खान सर की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। खान सर पिछले 24 घंटे से फरार है, अंडरग्राउंड हो गए हैं और ऐसे में खबर है कि अभी वो सरेंडर करने के लिए कोर्ट पहुंच सकते हैं और अग्रिम जमानत की याचिका भी उनके द्वारा, उनके वकीलों के द्वारा जो है कोर्ट में डाली जा सकती है ताकि उन्हें राहत कुछ मिल सके। लेकिन पुलिस पहले से ही यहां पर अब सिविल कोर्ट में मौजूद है ताकि अगर खान सर यहां आते हैं तो तुरंत सरेंडर से पहले उन्हें गिरफ्तार किया कर लिया जा सके। जी
0: मतलब ये भी है, देखिए मीडिया को तो बाहर करने की कोशिश यहां की जा रही है, पुलिस इतनी यहां पर मौजूद है। लेकिन एक बात बताइए, जैसे कहा है कि एंटीसिपेटरी बेल के लिए यहां पर आएंगे खान, फैजल खान की जब बात की जा रही है, खान सर जिन्हें कहा जाता है, तो क्या पुलिस जो यहां पर मौजूद है उनकी गिरफ्तारी के लिए है कि उनको आत्मसमर्पण करने से पहले या फिर बेल लेने, एंटीसिपेटरी बेल लेने से पहले गिरफ्तार किया जा सके?
14: बिल्कुल, देखिए कोशिश यही होती है कि अगर कोई, अगर एक्यूज है, आरोपी है, वो अगर सरेंडर कर देता है कोर्ट के सामने तो कुछ कम जो है उसकी सजा जो है होती है, धाराएं कुछ जो है वो हल्की हो जाती हैं। लेकिन पुलिस की कोशिश यहां पर यह है क्योंकि पिछले 24 घंटे से जो फैजल खान है वो फरार चल रहे हैं, अपने ठिकाने पर जहां वो पढ़ाते हैं वहां भी मौजूद नहीं है, घर पर भी वो मौजूद नहीं है। तो फैजल खान को पिछले 24 घंटे से पटना की पुलिस जो है वो तलाश रही है, छापेमारी कर रही है। कल देर रात तक भी जो है फैजल खान के कोचिंग इंस्टीट्यूट पर जो है वो पुलिस दबिश बनाती रही, लेकिन वो वहां भी मौजूद नहीं थे। उनके समर्थन में हालांकि सैकड़ों की संख्या में छात्र रात भर वहां पर जो है वो रद्द

0: गर्मी से तलाश कर रही है, दबिश बना रही है, लेकिन अभी तक वो पुलिस के सामने ऐसे चकमा देते हुए वो जो है अंडरग्राउंड है, लेकिन अब खबर है कि शायद वो सरेंडर करने की कोशिश करेंगे या अग्रिम जमानत की याचिका भी डाल सकते हैं। और ऐसे कोई भी प्रयास हो उससे पहले जो है यहाँ पर पुलिस सिविल कोर्ट पहुंच चुकी है, ताकि अगर वो सरेंडर करने के लिए पहुंचते हैं तो उससे पहले उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। हिमांशु,
1: अच्छा अब एक बात और बताइए, क्योंकि कल से ये सावधानी बढ़ती जा रही है, एडवाइजरी भी जारी की गई है, छात्रों को लेकर भी बात कही गई है, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि कई छात्र ऑलरेडी कई जगह पर प्रदर्शन कर चुके हैं, मार्च निकाल चुके हैं, और फैजल खान के भी कई छात्र हैं जो हो सकता है कि गिरफ्तारी के बाद सड़कों पर आए, तो उसको लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं?
0: देखिए मानसू, एक बात तो तय है, पटना में जो ये दो संस्थान हैं, ज्ञान बिंदु और ये जीएस खान सर वाला जो है ग्लोबल स्टडीज, इसके बीच में जबरदस्त विवाद चल रहा है पिछले एक सप्ताह से, और वर्चस्व की लड़ाई चल रही है कि भाई कौन ज्यादा संख्या में बच्चों को पास करा रहा है परीक्षा में, कौन कम फीस ले रहा है, इसको लेकर किस तरीके से दो दिन तीन दिन पहले घटना घटी थी, रात में फायरिंग की घटना घटी है, मारपीट हुआ है, उसको लेकर जो दूसरी तरफ ज्ञान बिंदु के जो संचालक हैं रोशन आनंद और उनके कुछ लोगों को पहले ही गिरफ्तार करके पुलिस जो है वो जेल में भेज चुकी है। हाँ। लेकिन जिस तरीके से कल फायरिंग की घटना वाला वीडियो भी सामने आया कि खान फैजल खान के जो सुरक्षाकर्मी फायरिंग कर रहे थे, उसके बाद से खान सर के ऊपर, फैजल खान के ऊपर दबिश बनी हुई है। और देखिए छात्रों से क्योंकि जुड़ा हुआ मामला है, तो पिछले दो दिनों से रोशन आनंद के भी जो छात्र जो पढ़ते हैं वो हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे थे, उन्होंने प्रदर्शन किया, मांग कर रहे थे कि रोशन आनंद को छोड़ा जाए और फैसल खान को गिरफ्तार किया जाए। वहीं फैसल खान के जो छात्र हैं वो भी कल रात भर रत जगा करते रहे उनके इंस्टीट्यूट के बाहर और मांग कर रहे थे कि उनको भाई उनको छोड़ दिया जाए, उन्होंने कोई गलती नहीं की है। तो छात्रों का भी इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, समझिए दोनों पक्ष जो है अपनी अपनी वर्चस्व की लड़ाई में हजारों की संख्या में जो छात्र हैं उनका भविष्य जो है वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर वो सड़कों पर आए हुए हैं इन दोनों अपने अपने शिक्षकों के समर्थन में, और कितना नुकसान हो रहा है और छात्रों का किस तरीके से बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है इन दोनों कोचिंग संचालकों के द्वारा, ये सबके सामने है। और पुलिस को पता है कि अगर गिरफ्तार किया जाएगा तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकता है, हजारों की संख्या में सड़कों पर छात्र उतर सकते हैं फैसल खान के समर्थन में, इसीलिए तमाम चीजों को देखते हुए जो है,
1: और ये अभिभावकों को सोचना चाहिए, ये अभिभावकों को सोचना चाहिए कि अपने बच्चों को जिनको पढ़ने के लिए भेजा है वो वहां पर क्या पढ़ रहे हैं और टीचर उन्हें क्या पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहां पर वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और वर्चस्व की लड़ाई में, दो शिक्षकों की वर्चस्व की लड़ाई में पिस कौन रहा है, छात्र हजारों की तादाद में। आप शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, लेकिन यहां पर रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
6: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंट।

0: 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
1: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
2: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
3: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
0: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
2: जहां खबर वहां खबरदार।
4: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
5: मैं इस वक्त उसी बिल्डिंग के बाहर हूँ जहाँ पर ये आग लगी।
6: मैं आपको टॉप एंगल से एक तस्वीर दिखाता हूँ और ये तस्वीर जो पूरा मंजर है उसको बयान करने के लिए काफी है।
7: यहाँ पर दूसरा एग्जिट गेट नहीं है तो किस तरीके से सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया गया था।
8: ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से लापरवाही जो है वो पूरे इस इलाके में जो है वो चल रही है।
6: 20 लोगों की जान चली गई। और देखिए, जब तस्वीर दिखाई जाती है एक एक करके, तो इस तरह से दिल्ली पुलिस की टीम आती है और कहती है कि आप यहाँ से नहीं दिखाएंगे।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। Acoje, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड, नाउ इन इंडिया।
2: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
3: Whatever you're in the mood for, tune in has the music to match, from today's hits,
4: somebody save me,
3: to timeless favorites. And new discoveries.
5: So much more than a history. Wake up.
3: It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn. You and

0: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
1: Presented by...
2: मम्मी पापा, आपका मुझ पर भरोसा था कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएगी, पर दोबारा नीट देने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। पहले नीट के पेपर में मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे, पर दोबारा पेपर अच्छा जाए इसकी क्या गारंटी है। सॉरी मम्मी पापा, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का।
3: सोचिए ये शब्द किसका कलेजा नहीं चीर देंगे।
4: हम कर्ज ले लेके पढ़ा रहे थे, हम किसी से मांग मांग के उसकी फीस भर रहे थे।
5: कितने सारे सपने दिखा के चली गई उसके नाम की आगे का कर्ज।
3: मध्य प्रदेश की आकांक्षा की मौत सिस्टम पर वो करारा तमाचा है जिसकी गूंज सुनाई तो पड़ रही है, लेकिन सवाल वही है कि क्या कुछ दिनों के हंगामे के बाद पेपर लीक माफिया और शिक्षा तंत्र में बैठे धंधेबाजों पर फिर तो चुप्पी नहीं ओढ़ ली जाएगी। आज जो विपक्ष में है वे नीट पेपर लीक और सीबीएसई ओएसएम की गड़बड़ी पर सरकार से तीखे सवाल पूछ रहे हैं।
6: दुख है हमें, लेकिन कार्रवाई में कभी कमी नहीं रखा।
7: How many questions normally will someone apply for?
8: I guess अभी जो problem आ रही है, they can apply for all the questions.
7: So how many total questions?
8: 30-35 around questions होते हैं.
7: So huge amount of money.
8: Huge amount of money is involved.
3: विपक्ष को सवाल पूछने भी चाहिए, जवाबदेही तय होनी ही चाहिए, लेकिन शिक्षा तंत्र को फेल करने वालों का जाल बहुत गहरा है और बहुत पुराना है। 2002 से 2025 के बीच 100,000 से अधिक उम्मीदवारों वाली 45 लीक परीक्षाओं ने 3,86,00,000 छात्रों को प्रभावित किया। लीक के इन मामलों में 1,658 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 925 पर चार्जशीट दाखिल की गई, 2 मामलों में 18 लोग दोषी करार दिए गए, 43 आरोपी जेल में बंद हैं। आरोपों के मुताबिक पेपर लीक माफिया का कोचिंग माफिया के साथ सांठगांठ होता है। इस बार की नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में भी आरोपियों के तार कोचिंग सेंटर से जुड़े हैं, इसलिए शिक्षा तंत्र के ओवरहॉल की जरूरत है। छात्र तो अपना भविष्य बनाने की परीक्षा देते हैं, अब की बार सरकार को परीक्षा में पास होकर दिखाना है। आज तक ब्यूरो,

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

सबसे बड़े ग्लोबल मंच से आज तक पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, कहा भारत कभी दबाव में नहीं आता, राष्ट्रहित में लेता है फैसले, पीएम मोदी की तारीफ की। गिरफ्तारी से बचने के लिए फैसल खान पटना सिविल कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं अग्रिम जमानत अर्जी, अदालत के बाहर अरेस्ट करने के लिए तैनात है पुलिस, आर्म्स एक्ट में दर्ज है एफआईआर। जेड प्लस हटने से नाराज लालू राबड़ी समेत तेजस्वी यादव ने वापस की सरकारी सुरक्षा, बंगले के बाहर बैठे समर्थक, बीजेपी बोली सुरक्षा पर राजनीति ना करे लालू परिवार। समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी का बड़ा हमला, कहा 2017 से पहले गुंडों के आगे नतमस्तक थी सरकार, राम का नाम लेने पर चलती थी गोलियां, अखिलेश का पलटवार, यूपी में महाजंगल राज। पंजाब के फिरोजपुर में पिकअप वैन से टकराया ट्रक, 9 लोगों की मौत, 13 घायल, मोरबी में डंपर से टकराई कार, 5 की मौत, 2 घायल।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और शुरुआत एक बड़ी खबर से। कोचिंग वाले फैजल खान को लेकर बड़ी खबर है। पटना के सिविल कोर्ट फैजल खान पहुंचे हैं और पटना के सिविल कोर्ट में किसी भी वक्त सरेंडर कर सकते हैं। अनुराग वर्मा की अदालत में फैजल अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल कर सकते हैं। फैजल खान को लेकर कोर्ट के बाहर भारी पुलिस बल भी तैनात है। फैजल खान के खिलाफ आर्म्स एक्ट में केस दर्ज है। 2 जून की रात पटना में खान ग्लोबल स्टडीज पर हमला हुआ था, वो वीडियो वायरल भी हुआ था। घटना के बाद उनके बॉडीगार्ड्स के फायरिंग किए जाने का वीडियो सामने आया था। पुलिस पूछताछ जब हुई तो बॉडीगार्ड्स ने कहा कि फैजल खान के कहने पर उन्होंने फायरिंग की थी, क्योंकि तब फैजल खान ने बॉडीगार्ड से कहा था कि फायरिंग करो, जो होगा मैं समझ लूंगा। और फिर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज होता है, पुलिस तलाश करती है, लेकिन अभी तक फैजल खान की गिरफ्तारी नहीं। रोहित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त सिविल कोर्ट से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या तस्वीर है, क्या हो रहा है वहां?
1: देखिए हिमांशु, इस वक्त सिविल कोर्ट में हलचल काफी तेज है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ये खबर आई थी कि खान सर जो है, फैजल खान, उनका असली नाम फैजल खान है, वो यहाँ पर सरेंडर करने के लिए जो है वो पहुंचने वाले हैं। हालांकि अभी तक वो पहुंचे नहीं हैं, लेकिन इसी खबर को लेकर जो है तमाम यहाँ पर पुलिसकर्मी भी जो है वो यहाँ पर ज्यादा संख्या में जो है मौजूद हैं। और अमूमन इतनी सुरक्षा यहाँ नहीं देखी जाती है, लेकिन जिस तरीके से फैजल खान 24 घंटे से जो है वो लापता है, अंडरग्राउंड है, वो सामने नहीं आए हैं, तो उसके बाद क्योंकि गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है, तो ऐसे में अभी ये संभावना जताई जा रही है, कुछ अपुष्ट खबरें आ रही है कि खान सर और फैजल खान जो है वो सरेंडर करने के लिए पहुंच सकते हैं। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि सरेंडर से पहले फैजल खान जो है एक बार कोर्ट पहुंचकर अग्रिम जमानत की याचिका भी डालना चाहते हैं। वो चाह रहे हैं कि कोई वकील के जरिए अग्रिम जमानत की याचिका डाली जाए और उस पर एक बार बहस हो, और अगर अग्रिम जमानत उन्हें मिल जाए तो कुछ उनको राहत मिलेगी। लेकिन फिलहाल मुश्किलें फैजल खान की जो है वो कम नहीं हो रही है, और इस वक्त सिविल कोर्ट में भी जो है काफी हलचल तेज है। और अगर फैजल खान अगर यहाँ आते हैं सरेंडर करने के लिए, जिस तरीके की संभावना जताई जा रही है, तो उसको लेकर यहाँ पुलिस भी मौजूद है, ताकि अगर वो सरेंडर करने के लिए पहुंचते हैं तो उससे पहले उनको गिरफ्तार किया जा सके, क्योंकि पटना पुलिस की कई टीमें जो हैं वो फैजल खान को गिरफ्तार करने के लिए जो है वो लगातार छापेमारी कर रही है। टीमों का गठन भी हो चुका है। कल देर रात तक फैजल खान के संस्थान पर पुलिस मौजूद रही, उनकी खोजबीन करती रही, लेकिन वो कहीं भी जो है वो मौजूद नहीं थे, कहीं भी नहीं पाए गए। और ऐसे में लगातार जो धाराएं खासकर जो लगाई गई हैं वो है आर्म्स एक्ट जैसी गंभीर मामला है, और साथ ही साथ हत्या की कोशिश, जो समझिए तो हत्या की कोशिश का मामला भी जो है उनके खिलाफ उस मामले में भी दर्ज किया गया है। तो बड़ी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं और इसमें हो सकता है कि 10 साल तक की सजा का प्रावधान भी है। तो इसीलिए फैजल खान के लिए मुश्किलें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है।
0: अच्छा रोहित, एक बात बताइए, क्योंकि आप तस्वीरों के जरिए वहां पर समझा तो रहे हैं कि वहां पर बहुत सारे पुलिसकर्मी मौजूद हैं जो कि गिरफ्तारी की प्रयास करेंगे, और जब एंटिसिपेटरी बेल के लिए फैजल खान यहां पर आए तो उनको गिरफ्तार करें, लेकिन आप जिस गेट पर मौजूद हैं सिविल कोर्ट के, क्या एक यही एंट्री एग्जिट पॉइंट है या फिर और भी कई रास्ते हैं, वहां पर भी पुलिस तैनात है, हो सकता है कि वहां से फैजल खान आए कोर्ट में एंट्री करने?
1: नहीं, देखिए सिविल कोर्ट पे जो है एंट्री के जो है वो 2 जगह है, हालांकि ये मुख्य गेट है जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं। तो यहां से अमूमन जो वकीलों का आना जाना होता है, जो लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर सरेंडर करना चाहता है या कोई इस तरह का मामला होता है, जाहिर सी बात है वो मीडिया के सामने जो है आकर वो नहीं करना चाहेगा, तो वो एक और गेट जो है वो पीछे की तरफ जो है वो भी है। अमूमन हम लोगों ने कई बार देखा है बड़े बड़े मामलों में, जैसे कई बार अनंत सिंह जैसे मामलों में भी जब आता था तो उनको भी जो है पीछे वाले गेट से जो है पुलिस लेकर अंदर पहुंचती थी, क्योंकि यहाँ पर मीडिया का काफी जमावड़ा मेन गेट पर ही रहता है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि कहीं अगर इस गेट से तो मुझे लगता संभवतः शायद न लाया जाए, तो फिर कहीं बैक गेट से अगर कहीं खान सर जो है लुका चोरी चुपके से पहुंचते हैं या उनके वकील अग्रिम जमानत के लिए पहुंचते हैं, तो ये थोड़ा देखना होगा। खबर लेकिन हम तक जरूर पहुंच जाएगी, लेकिन फिलहाल पटना की राजनीति जो है, पटना की राजनीति दो कोचिंग संचालकों की लड़ाई के बीच में जो है वो जबरदस्त विवाद जो है वो देखने को मिल रहा है। और इसमें हजारों हजार बच्चे जो हैं दोनों संस्थानों में पढ़ने वाले, फैसल खान के संस्थान में पढ़ने वाले हजारों बच्चे और दूसरी तरफ ज्ञान बिंदु में पढ़ने वाले हजारों छात्र जो है वो जो है सड़कों पर जो है वो उतर रहे हैं लगातार पिछले दो दिनों से, और उनकी पढ़ाई का जो है नुकसान हो रहा है, उनकी पढ़ाई जो है वो चौपट हो रहा है और इनको जो है इस्तेमाल कहीं ना कहीं जरूर किया जा रहा है इन दोनों कोचिंग संचालकों के द्वारा अपनी अपनी वर्चस्व की लड़ाई में। हिमांशु,
0: रोहित एक बात और बता दीजिए, क्योंकि जो छात्र होते हैं, बच्चे होते हैं, वो बहुत इमोशनली अटैच होते हैं अपने टीचर से, शिक्षक से। अब चाहे वो रोशन सर हो या फिर यहाँ फैजल खान जिनको खान सर कहा जाता है, और बहुत भारी संख्या में छात्र दोनों ही तरफ हैं, सड़कों पर भी आ चुके हैं, वो भी हमने देखा था। तो क्या इन छात्रों की समझाइश पुलिस अधिकारियों की तरफ से की गई है, छात्रों से बात पुलिस की तरफ से की गई है कि आप लोग बहकावे में ना आए, संयम बरतें, अपना भविष्य देखें?
1: देखिए, कल ही पटना पुलिस की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई थी, पूरे जब फैसल खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था उसके बाद पटना पुलिस ने बकायदा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके जो है सारी जानकारी दी थी कि क्या मामला है। फायरिंग की घटना घटी थी, दो सुरक्षाकर्मी जो है फैसल खान के गिरफ्तार हुए, विभिन्न धाराओं में जो है वो केस भी दर्ज किया गया। उसके बाद छात्रों से अपील की गई थी उस एडवाइजरी में कि भाई वो किसी भी बहकावे में न आए, इस तरीके से अगर उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है, कहीं भी इकट्ठा होने के लिए कहा जा रहा है कि किसी के समर्थन में वहां जाके इकट्ठा होइए, इन सब से बचने के लिए पटना पुलिस ने इन छात्रों को जो है पहले ही एडवाइजरी जारी कर दिया है। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, इमोशनल एंगल है, फैसल खान भी बड़े पॉपुलर यूट्यूबर है और एजुकेटर है, दूसरी तरफ ज्ञान बिंदु के जो संचालक है रोशन आनंद वो भी यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, वो भी काफी पॉपुलर है। तो अब ये छात्र जो है वो पटना पुलिस की सुने या अपने शिक्षक की सुने जहां पर वो पढ़ते आ रहे हैं, और इसीलिए उस इमोशनल एंगल को देखते हुए हम देख रहे हैं कि परसों तो हजारों की संख्या में ज्ञान बिंदु के संचालक रोशन आनंद के समर्थन में पटना में हजारों की संख्या में छात्र जो उनके यहाँ पढ़ते हैं वो सड़कों पर उतर गए थे प्रदर्शन कर रहे थे। कल देखा खान सर के कोचिंग के बाहर सैकड़ों की संख्या में दिन भर जो है छात्र वहां पर डटे रहे। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट है छात्रों का इस्तेमाल हो रहा है। ये छात्र को, इन छात्रों को समझना चाहिए कि भाई इन दो कोचिंग संचालकों और वर्चस्व की लड़ाई में हमें नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है और इन बेचारे छात्रों को जो है वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहे हैं इन दोनों कोचिंग संचालकों के बीच जो आपसी रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई चल रही है उसमें।
0: अब एक बात और बता दीजिए, क्योंकि अब लगभग सवा एक का टाइम यहाँ पर हो चुका है और इसके बाद लंच का भी वक्त होता है, तो क्या उम्मीद जताई जा रही है, जो आपके सूत्रों से अभी तक खबर मिल पा रही है कि कब तक यहाँ पर फैजल खान आ सकते हैं?
1: देखिए, अभी जो संभावना नजर आ रही है ज्यादा प्रबल, क्योंकि 2 बजे तक ही जो है बताया जा रहा है, कोर्ट है, आज शनिवार का दिन है, तो क्योंकि कोर्ट की कार्रवाई बहुत सारे जो है वो समाप्त भी हो रहा है, बहुत सारे वकील निकल भी रहे हैं, तो इस बात की संभावना जताई जा रही है कि शायद सरेंडर से पहले कहीं वो अग्रिम जमानत डालकर जो है जमानत लेने की कोशिश भी कर सकते हैं, क्योंकि वो एक पहला रास्ता है, जो विकल्प जो वो अपना एक तरीके से कहे तो उसका इस्तेमाल करना चाहेंगे कि अगर अग्रिम जमानत उन्हें मिल जाए वो सबसे बेहतर हो सकता है। लेकिन अब देखना यह है कि सरेंडर करना उनके लिए अच्छा विकल्प है या फिर वो अग्रिम जमानत की याचिका अपने वकील के जरिए डालेंगे और जमानत पाने की कोशिश करेंगे, इस पर जो है नजर हमारी बनी हुई है। लेकिन फिलहाल खान सर और फैसल खान जो कि एजुकेटर हैं, यूट्यूबर हैं, उनके लिए मुश्किल की घड़ी जो है लगातार पिछले 3-4 दिनों से जो है बढ़ती जा रही है, और जिस तरीके से उन्होंने पुलिस को बरगलाने की कोशिश की थी, पहले फायरिंग हुई बोला, फिर बोला फायरिंग नहीं हुई, फिर फायरिंग का वीडियो आया, तो पुलिस को कई तरीके से उन्होंने जो है वो दिग्भ्रमित करने की कोशिश भी की थी, बयान कई बार बदले।
0: अब ये तो देखा गया है, देखिये ये ऐसा नहीं है, ये बयान सभी के सामने है, फैजल खान के अलग अलग तारीखों के, 2 तारीख के 3 तारीख के 4 तारीख के हर बार बयान बदला हुआ है, और फिर एक वीडियो भी आया कि कैसे कोचिंग के अंदर वो वीडियो के जरिए छात्रों को मोबिलाइज करने की कोशिश एक तरह से की जा रही थी। तो ऐसे में पुलिस सख्त है, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, अब दोबारा हम आपसे जुड़ेंगे। लेकिन खान सर की कोचिंग के बाहर हुए गोलीकांड पर अब फैजल खान की मुश्किल बढ़ती जा रही है, जहां कोचिंग के गार्ड से पूछताछ के बाद बिहार पुलिस अब फैजल खान को तैयारी कर रही है गिरफ्तारी की। अब यह माना जा रहा है इस केस में कभी भी फैजल खान पर पुलिस का शिकंजा कर सकता है, कभी भी वो कोर्ट पहुंच सकते हैं, सिविल कोर्ट, सरेंडर कर सकते हैं, एंटीसिपेटरी बेल के लिए दाखिल कर सकते हैं आवेदन।

0: क्या जल्द ही यूट्यूब वाले खान सर यानी फैजल खान की गिरफ्तारी हो सकती है? क्या आर्म्स एक्ट में एफआईआर दर्ज होने के बाद जल्द ही पुलिस फैजल खान पर शिकंजा कर सकती है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एक दिन पहले पटना के कदमकुआ थाने में फैजल खान पर केस दर्ज हुआ। अटकलें तेज हुई कि कभी भी पुलिस फैजल खान तक पहुंच सकती है, जिसे लेकर देर रात तक कोचिंग सेंटर के पास भारी गहमागहमी दिखी। इन तस्वीरों को देखिए, पूरी रात फैजल खान के समर्थक छात्र कोचिंग सेंटर के बाहर डटे रहे। तनाव को देखते हुए पुलिस का गश्त जारी रही। पीसीआर वैन में तैनात पुलिस छात्रों को समझाती दिखी। एक दिन पहले भी पटना पुलिस की ओर से एडवाइजरी जारी की गई थी कि छात्र किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दे। तो क्या छात्रों के विरोध प्रदर्शन के डर से पुलिस फैजल खान पर एक्शन से पहले एहतियात बरत रही है? क्या किसी तरह के बवाल की आशंका को देखते हुए पुलिस फैजल खान की गिरफ्तारी से पहले पूरी सतर्कता बरत रही है? एक दिन पहले फैजल खान के कोचिंग के अंदर का वीडियो सामने आया था, जिसमें फैजल खान फायरिंग का वीडियो दिखाते हुए छात्रों को उकसाता नजर आ रहा था।
1: मुद्दे से भटकाया जा रहा है, आप इसकी गिरफ्तारी करिए। ये आदमी कौन है और कैसे आता है 20-25 लोगों को उठा के लेके चला जाता है, 20-25 लोगों को एक साथ कैसे?
0: फैजल खान पर केस दर्ज होने के बाद पटना में गहमागहमी बढ़ी हुई है। शुक्रवार शाम ही KSG कोचिंग सेंटर के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई।
2: वो अब भी यहाँ पर खड़े हैं। खान सर का ये कोचिंग है, सामने ये कोचिंग रखी, खान सर का ये कोचिंग है और कोचिंग के गेट पर जो है भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए किस तरीके से जो छात्र हैं, देखिए किस तरह से सड़क पर मौजूद हैं और सड़क के दूसरे किनारे एक लाइन से हजारों छात्र जो हैं वो यहाँ पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं खान सर के, ये कह सकते हैं कि समर्थन में ये जो छात्र हैं वो यहाँ पे खड़े हैं।
0: इस बीच वो तस्वीर भी सामने आई थी जब वकील फैजल खान की कोचिंग पहुंचे थे। उसके बाद फैजल खान कार से अपनी कोचिंग से निकल गए थे। पटना में खान सर और ज्ञान बिंदु के शिक्षक रोशन आनंद के बीच बड़ा विवाद अब बड़ा मुद्दा बन गया। कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। अब फैजल खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पटना से शशिभूषण और अनिकेत के साथ आज तक ब्यूरो।
3: तो देखिए एक बार फिर से आपको ये बड़ी खबर बता दें कि किसी भी वक्त सिविल कोर्ट पटना पहुंच सकते हैं फैजल खान। एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत के लिए अर्जुन की तरफ से लगाई जा सकती है, सरेंडर कर सकते हैं कभी भी, लेकिन पटना पुलिस भी तैयार है। ये देखिए ये जो गेट आप देख रहे हैं सिविल कोर्ट का पटना का, यहां पर पुलिस बल तैनात है। मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और पुलिस की तरफ से प्रयास यही होगा कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। गिरफ्तारी के लिए कोर्ट के बाहर पुलिस तैनात है। आर्म्स एक्ट के तहत यह केस दर्ज किया गया है। रोहित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रोहित, इंतजार किया जा रहा है वहां पर पुलिस की तरफ से गिरफ्तारी का, लेकिन ये जो मामला है, एक तरफ रोशन आनंद, दूसरी तरफ फैजल खान, दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई, रोशन आनंद की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो पुलिस के ऊपर भी ये दबाव होगा इक्वल जस्टिस का कि बराबरी से न्याय किया जाए और जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए।

0: चलिए ठीक है, इस बड़ी खबर पर लगातार बने रहेंगे, लेकिन टीम इंडिया का ऐलान हो रहा है, आपको सीधे लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में।
1: ऑल्सो इंडिया ए टीम फॉर द मल्टी डेज इन श्रीलंका, देयर विल बी टू मैचेस। सो एट द बिगिनिंग आई वुड लाइक टू अनाउंस द इंडियन स्क्वाड फॉर द आयरलैंड टूर T20 मैचेस टू बी हेल्ड ऑन 26th एंड 28th ऑफ जून इन डबलिन। सो वी हैव ए न्यू कैप्टन फॉर द T20 सीरीज। So Shreyas Iyer will be the new captain of the Indian T20 team for all these three series. Shreyas Iyer captain, Abhishek Sharma, Sanju Samson and Ishan Kishan, both are wicket keepers. Shivam Dubey, Tilak Varma, vice captain, Nitish Kumar Reddy, Akshar Patel, Washington Sundar, Varun Chakraborty, रवि बिश्नोई, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव एंड द न्यू किड वैभव सूर्यवंशी। सो ही विल बी पार्ट ऑफ द इंडियन स्क्वाड फॉर द आयरलैंड सीरीज व्हिच विल हैव 16 मेंबर्स। आइडेंटिकली फॉर द इंग्लैंड मैचेस आल्सो, 5 T20 मैचेस टू बी प्लेड इन इंग्लैंड। श्रेयस अय्यर विल बी द कैप्टन, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा वाइस कैप्टन, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव एंड वैभव सूर्यवंशी। So his Vaibhav is in both the squads for Ireland and the England T20 series. I would like to announce the Indian team or Indian squad for the upcoming Asian Games, which will be 15 members. So Shreyas Iyer will be captain, Abhishek Sharma, Samju Samson, Ishan Kishan, Shivam Dubey, Tilak Varma vice captain, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी एंड बुमराह। ही विल बी द इंक्लूजन फॉर द एशियन गेम्स। बुमराह विल नॉट बी देयर इन द इंग्लैंड एज वेल एज फॉर द आयरलैंड सीरीज। So for the Asian Games, we have to have 15 members according to the protocol. So we are sending a 15-member squad, and that is the best team which we can send. And for the multi-days, for Sri Lanka, 2 matches will be there. India A team, Dhruv Jurel will be the captain and the wicketkeeper. Sai Sudarshan, Ayush Pandey, Devdutt Padikkal, he will be the vice captain. Rituraj Gaikwad, Harsh Dubey, Sarans Jain, Gurnoor Brar, Akib Navi, Yash Thakur, Ansul Kamboj, and Jagdishan, wicketkeeper, the second wicketkeeper of the squad, Aman Mukade, Sheikh Rashid, and Jishan Ansari. So this will be This squad will be touring Sri Lanka for the 2 multi-days, and total team members will be 15. So these are the 4 teams we are announcing for today. 3 teams, I stand corrected. And if you have any questions regarding the composition or selection of any players, I have the chairperson of the Indian Senior Men's Selection Committee, Ajit. He will be happy to take your questions.
2: What made the selection committee choose a year and thought behind it, and not to pick Surya Yadav? And word on Vaibhav Suryavanshi, what made you convince, or is it the IPL performance which has been the, what we have seen last 2 months that he can be at least ready for the higher cricket?
3: Question properly.
2: Removing Surya Kumar Yadav from T20 captaincy and making Iyer the captain.
3: regards to Shreyas, obviously we've seen what he's done over the last few years, leading different franchises, obviously won once, finals once, and probably had a tougher season this year after a great start. So we've seen everything that a captain possibly can. His own performances have been really good. He was quite close to getting in that World Cup squad as well. Obviously, with Surya still there, there was no room for him. So he is, in my opinion, a standout candidate with enough experience now, having led in the T20 format. This will obviously be a different challenge. With regards to Surya, obviously it's a tough one, having just won the World Cup. But as it happens after most World Cups, you try and reassess what your best way forward is. Partly his own form, but also looking at the next two-year cycle, or a little bit more than 2 years now till the next World Cup. We thought this was the best way forward. And like I said, I mean, Shreyas is a well-deserving captain. Oh, and Vaibhav, I mean, what do you say, yaar? I mean, we've seen what he can do. You saw, even towards those playoffs, almost single-handedly carried Rajasthan Royals for a young kid. I mean, I don't need to talk about how well he's batting or how well he's playing. And it's not just this season. He's obviously had a great start last season, and to back it up for a young kid in a competition that's as competitive and as high-pressure environment, and how explosive he can be, and a game-changer that he can be. So we've, like everyone else that's watched cricket, or at least watched T20 cricket in India, we've got high hopes of him, and I think he just has picked himself really.
4: The logic behind resting Jasprit Bumrah, is that to sort of preserve him in the long term, because you got a lot of test matches also later this year, I mean, from the England Islands.
3: So one day World Cup, you know, it's, I mean, that obviously, like T20 was till the last World Cup, you're looking at trying to, we know how important he is, plus the WTC cycle, we've still got a chance to, if we play well enough over these next, 9 tests. This one is not part of WTC, the Afghanistan one, but if we can have Jasprit play majority of those games and still keep him fit and healthy, it's always the thing. I mean, there's a lot of T20 cricket, you can always bring him back. Asian Games, he will, you know, he will be there. So, yeah, the main aim is to try and keep him fit for the test and the one days.
4: Is it a worry that you're 6th in the test rankings right now?
3: I don't know whether worry is the right word, but we obviously need to improve our performances. I think England was good, and the South African series probably, you know, didn't go to plan, but we still have a chance if we play well enough, and we know we've got the players, but we've got to play better.
1: I just want to interrupt here. We have 3 ODI matches also in England. That team we have not announced. That will be announced towards the later part of the Afghanistan series is over.
0: तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दे, और ये कहा जा सकता है कि क्रिकेट वर्ल्ड के बहुत से रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। हमारे साथ में इस वक्त विक्रांत गुप्ता जुड़े हुए हैं हमारे साथ। 3 टीमों का ऐलान हुआ है, और तीनों टीमों में ये कहा जा सकता है कि वैभवशाली ऐलान।
5: बिल्कुल, और दो बड़ी बातें हैं। एक तो यह है कि आपके पास T20 के नए कप्तान आ गए हैं, श्रेयस अय्यर। कुछ दिन पहले हमने बताया था कि श्रेयस अय्यर ही बनेंगे, और उसमें उप कप्तान है तिलक वर्मा, क्योंकि आप अगले 2-3 साइकिल देख रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर जो इस वक्त जो पूरी दुनिया जिसकी नजर है जिस पर, वो है वैभव सूर्यवंशी का चयन होना हिमांशु। और मतलब वो दुनिया के यंगेस्ट प्लेयर तो नहीं बनेंगे, क्योंकि वो रिकॉर्ड तो कई बार आपको पता है पाकिस्तानी प्लेयर अपनी उम्र कम कर करके हसन रजा वगैरह के नाम था, लेकिन वो इंडिया के यंगेस्ट इंटरनेशनल प्लेयर बन जाएंगे, क्योंकि
0: वैभव सूर्यवंशी के पिता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए।
5: जी, बहुत मुबारक उनको।
6: हेलो।
5: जी
6: हेलो, संजीव जी हमारे साथ हैं।
5: संजीव जी, बहुत मुबारक आपको, उनको हमारी आवाज आ रही है?
6: जी जा रही है।
5: संजीव जी, मैं विक्रांत गुप्ता बोल रहा हूँ स्टूडियो से, मेरे साथ हिमांशु भी हैं। पहले तो भाई आपको बहुत बहुत बहुत मुबारक, मतलब वैभव इंडिया खेलेंगे ये सबको पता था, इतनी जल्दी खेलेंगे ये नहीं पता था।
6: हाँ सर, बहुत खुश है सर, और आपको भी प्रणाम करते हैं सर। वैभव के लिए आप जो बोलते हैं, क्या स्पोर्ट्स क्या है आपका, स्पोर्ट्स तक की क्या पर्स, हम पूरा सर आपका देखते रहते हैं, तो आपका भी सर आशीर्वाद वैभव को लगा, और हम लोग बहुत खुश हैं सर। इसी के लिए इतना मेहनत बच्चा किया था सर, और उसका फल उस बच्चा को मिला सर।
5: और इस वक्त मतलब ऐसा नहीं है कि ये अचानक हुआ, मतलब आई थिंक पूरी दुनिया जानती थी कि वैभव इस वक्त इंडिया खेलने वाले हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर जिनके नाम रिकॉर्ड था, 16.5 साल की उम्र में वो पहला मैच इंडिया के लिए खेले थे। वैभव तो अभी 15 साल 2 महीने 2.5 महीने उनकी उम्र है और ये उम्मीद करते हैं कि जो 7 T20 मैचेस हैं, 2 आयरलैंड में 5 इंग्लैंड में, हमारा बच्चा कम से कम 2-3 मैच तो जरूर खेले।
6: जी एकदम एकदम, आप आशीर्वाद दीजिए ना, आपका आशीर्वाद लगेगा। कल आपका चैनल हम पूरा देखे हैं, आपका जो कर रहे थे वैभव के बारे में आप बात कर रहे थे, सब मेहनत किया बच्चा, अब पूरे बिहार का पूरे देश के लोगों का आशीर्वाद उसके साथ है, उसके खुद का मेहनत है और साथ ही साथ समझिए ना भगवान का भी आशीर्वाद उसके साथ।
0: अच्छा संजीव, संजीव जी एक बात बताइए, क्योंकि पूरा देश तो ये इंतजार कर ही रहा था कि वैभव सूर्यवंशी का सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, अब वो तो खुशखबरी आ ही गई है, लेकिन क्या ये भी जानना चाहते हैं कि कौन कौन से रिकॉर्ड्स पर अब नजर है? कुछ आपसे बात की वैभव ने कि अब जब टीम में आ ही गए हैं तो ये रिकॉर्ड भी तोड़ देते हैं, क्योंकि अब तो बहुत से रिकॉर्ड टूटने वाले हैं।
6: जी जी जी जी सर, खेलेगा जिस ढंग से खेलता है सर, सब कुछ अच्छा रहा तो रिकॉर्ड का क्या बात है, देश के लिए बहुत जीत दिलाएगा सर। अब मेन वही चीज है, रिकॉर्ड को हम अलग रखते हैं, देश को अगर जीत दिलाता है ना सर, वही मेरे लिए सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, वही हम चाहते हैं, जब तक खेले देश के लिए खेले, देश के लिए अच्छा खेले और उस कारण देश के काम आए बस।
5: मैंने एक चीज और देखी संजीव जी, वो ये थी कि आपने आईपीएल के दौरान बहुत ज्यादा ट्रैवल नहीं किया, आपने वैभव को छोड़ा हुआ था, अभी वो 2 दिन के लिए आए थे घर, तो मतलब वो किस किस माइंडसेट में, क्योंकि 2 महीने में न सिर्फ आपकी मैं कहता हूं वैभव की बल्कि इंडियन क्रिकेट की दशा और दिशा भी उस 15 साल के बच्चे ने बदली है, तो उनका माइंडसेट क्या है, वो क्या अंदाजा था आपको कि वो सिलेक्ट होंगे?
6: हाँ सर, आज खेल तो अच्छा रहा था सर, और फिर आप लोग जिस हिसाब से जिस ढंग से उसके लिए बोल रहे थे तो हमको लग रहा था कि कुछ अच्छा होगा, हम लोग आशा में थे कि उसका सिलेक्शन हो सकता है और हो गया सर, इसमें आप सबका सर आशीर्वाद है, सबका प्यार है सर और उसका मेहनत है सर।
5: आप जरा अपनी मेहनत के बारे में बताएं, क्योंकि संजीव जी ये सिर्फ हमने पढ़ा है, मैं आज आपके मुंह से सुनना चाहता हूं कि क्या क्या कुर्बानियां थी, किस वक्त आपको लगा कि यार वैभव को मैं सिर्फ क्रिकेट खिला नहीं रहा हूं, इस लड़के में तो अलग ही तरह का पोटेंशियल है।
6: जी सर जी, उसको सर 5 साल से हम खिलाना शुरू किए, 9 का जब हुआ ना तो मैच वगैरह लोकल में खिलाना शुरू किए थे उसको, तो हमको उस समय ही लग गया उसके खेल से। अब जैसे हम सोच रहे थे कि वो 50 रन मारेगा, इसमें जो 100 मार देता था सर, उतना छोटा बच्चा, तो हमको बहुत उम्मीद जग गया कि लड़का आगे चल के अच्छा करेगा, हम सब कुछ छोड़ के सर उसी के पीछे लग गए सर उसके बाद।
0: अच्छा संजीव जी एक बात और बताइए, क्योंकि बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं, बल्लेबाज बनना चाहते हैं, और वो जब देखते हैं कि वैभव सूर्यवंशी बड़े बड़े गेंदबाजों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनका नाम गूंजता है उनको पहली बॉल पर चौका छक्का लगाते हैं तो वो उनके जैसा बनना चाहते हैं, जब ये आप देखते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है?
6: नहीं सर, मेरे कहने का मतलब है ना, अभी जो बच्चा खेल रहा है सबका अपना अपना खेलने का तरीका होता है, वैभव शुरू से ही, अब जैसे अभी आया हूँ हम कहे कि कैसे कमिंस को, स्टार्क को, ये सब को, तुम बुमराह वगैरह को तुम खेला, पापा मेरे लिए कुछ मैंने सब आसान ही था, कुछ कठिन नहीं था, आराम से सब पापा खेल रहे, तो कहने का मतलब ये सबका अपना अपना तरीका होता है खेलने का, हर बच्चा का अपना खेलने का, कोई ग्राउंड शॉट अच्छा खेलता है, कोई उठा के अच्छा खेलता है, तो सबको अपने अपने हिसाब से तरीका से खेलना चाहिए और नकल नहीं करना चाहिए, जिसका स्वाभाविक खेल जो है ना वही खेलना चाहिए। हम यही कहेंगे बच्चा को भी और उसके गार्जियन को भी कि जबरदस्ती वैभव सूर्यवंशी नहीं बनाइए। बहुत सारा हमारे यहाँ
0: संजीव जी
6: बाग है, युवराज है, एक से एक है, लक्ष्मण सर है, सब है, एक से बढ़ के सबके तरह बनाइए, ही नहीं कि बस आए और मारना शुरू कर दिए, कोई कोई खिलाड़ी में होता है, मेरा एक छोटा बेटा भी उसको भी हम खिलाते हैं, उसके वैभव की तरह नहीं खेल पाता है वो। हाँ तो यही बात है, सबका अपना तरीका है, तो बच्चा को अपने हिसाब से खेलने दीजिए,
0: लेकिन जबरदस्ती नहीं कीजिए।
6: अभी बहुत क्या हो रहा है ना सर की, हाँ जी जी जी
0: संजीव जी एक बात बताइए, आईपीएल में खास चीज देखने को मिली, वैभव सूर्यवंशी जो हर बॉल पर चौका छक्का लगाते हैं, इस बार जब टीम संकट में भी होती है तो उस वक्त डट के भी खेलते हैं, उस वक्त आराम से भी खेलते हैं, बहुत समझदारी के साथ खेलते हैं, पेशेंस उनमें देखा गया है, ये बदलाव कैसे आया, इसके लिए कुछ खास आपसे बातचीत हुई या फिर उन्होंने कभी आपसे जिक्र किया इस बारे में?
6: नहीं सर, वो बचपन से रेड बॉल से ही खेलता था और बड़ा बड़ा स्कोर आपको 50 ओवर के मैच में 332 ही के डोमेस्टिक मैच में मार दिया था
5: जी।
6: और एक सीजन में 50, 60, 70, 80 शतक मारता था, तो स्थिति परिस्थिति के हिसाब खेलना जानता है। और चूंकि वहां बच्चा था तो वो दिखाना चाह रहा था कि हम थोड़ा सबसे अलग, उसका खेलने का तरीका वही है, वही है।
5: संजीव जी,
6: जी, जी।
5: आपकी धर्मपत्नी और वैभव की माता जी इस वक्त क्या वो पूजा कर रही हैं या लोगों को मिठाई खिला रही हैं या फिर आंखें उनकी नम है, मैं ये जानना चाहता हूं।
7: हेलो, आवाज मिल रही है?
5: जी जी, मैं ये कह रहा था कि आपकी आपकी धर्मपत्नी वैभव की माता जी वो इस वक्त कहां पे हैं, मतलब इस वक्त उनकी दुनिया कैसे बदली है?
6: वो अभी देवी देवता वाला एक छोटा सा रूम है मेरा, उसी में बैठ के भगवान को अति कर रही है,
8: पूजा पाठ कर रही
6: है। हाँ,
5: क्या
8: मुझे
5: क्या?
8: याद है विक्रांत जी,
5: जी जी,
8: ये 2016 का वाक्य है जब संजीव सूर्यवंशी जी और हम लोग क्रिकेट मैच खेलने गए थे।
5: अच्छा,
8: तो वहाँ पे खेलता था वो ग्राउंड एकदम छोटा था,
6: मीडिया 11 होगा हम लोग का,
8: उनको याद आ गया होगा। उसी समय ये प्रण लिए थे कि जो वैभव को जो है क्रिकेटर बनाएंगे, क्योंकि इनको मलाल था कि ये क्रिकेटर नहीं बन पाए थे। तो हमको कहा कि जहांगीर भाई, मैं वैभव को जरूर क्रिकेटर बनाऊंगा, क्योंकि ये जो खेलने का जो स्टाइल है इससे लग रहा है कि ये क्रिकेटर बनेगा। और आपकी जो पारखी नजर थी वो आज एकदम धरातल से उतर के दिख रहा है, देश दुनिया में जो है नाम कमा रहे।
6: जी जी जी, जहांगीर भाई
8: कहा, बताइए आपको, आपको याद आया?
6: हाँ हाँ हाँ, एकदम सब याद है, एक एक आपको आपसे जो बात की सब याद है, सब याद है।
5: आयरलैंड इंग्लैंड वीजा लगवा लिया आपने? क्योंकि इतिहास, अगर आपका बच्चा, हमारा बच्चा अगर इतिहास रचने जा रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता संजीव जी कि आप वहां पर ना जाएं। आपको मैदान से वो मैच तो देखना होगा।
6: जी सर, जी जाएंगे सर, जाएंगे सर, जाएंगे सर। बस आप आशीर्वाद दीजिए, आपका जो पैनल, आप जो बैठते हैं सभी लोग, सब वैभव के बारे में अच्छा बोलते हैं सर, बस वही प्यार और आशीर्वाद बनाए रखे सर, वो आगे और अच्छा करेगा, बहुत अच्छा करेगा।
5: तो और सबसे बड़ी बात सर, संजीव जी एक काम कीजिए, और सर बुलाइए, आपके घर आएंगे, लिट्टी चोखा खाएंगे।
6: जरूर जरूर जरूर, ये तो मेरे लिए तो भगवान का आना हो जाएगा। आप आएंगे तो आप आएंगे भगवान का, जब जब चाहिए आप आ सकते हैं सर।
5: चलिए, बहुत शुक्रिया
6: आपका, धन्यवाद,
5: बहुत शुक्रिया आपका।
0: और देखिए कितनी खुशी होती है, ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है, और खुलकर कह भी रहे हैं संजीव, कितना कितनी संजीदगी के साथ ये बात कही जा रही है कि वो ये नहीं देखता कि सामने कौन सा बॉलर है, बस वो शुरुआत से वो खेलता आ रहा। और जैसा आप बताया कि 50 ओवर के मैच में 300 रन बना दिए थे, तो अब ये उम्मीद उनसे बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि इस बार कुछ।
5: देखिए अब क्या होता है, तकरीबन 50 साल से मेरी भी याददाश्त जो है क्रिकेट की वो ये है कि एक और खिलाड़ी का नाम इस तरह गूंजा था, वो थे सचिन तेंदुलकर, सबको पता।
0: हाँ।
5: और ये बात है 1987-88 की, सचिन का नाम होना शुरू हो गया था, सबको मालूम था कि सचिन खेलेंगे।
0: हाँ।
5: सबको मालूम था कि सचिन खेलेंगे, सचिन क्या करेंगे ये नहीं पता था। और उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, न्यूज टेलीविजन नहीं था, अखबारों के जरिए, मैगजीन्स के जरिए, और चूंकि वो मुंबई से खेलते थे, बॉम्बे से खेलते थे, तो वो वर्ड ऑफ माउथ के जरिए सचिन का नाम था। इस तरह किसी बच्चे का नाम आज तक आया ही नहीं। विराट का भी 19-20 साल की उम्र के बाद आया, धोनी का भी लोगों को 20-21 साल की उम्र के बाद पता चला, इवन युवराज सिंह। तो वैभव सूर्यवंशी आज 2025 से 26 में उन्होंने वो मुकाम हासिल किया है जो शायद 1988 के करीब करीब सचिन तेंदुलकर ने किया था। तो आज अगर वो सचिन का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, आप समझिए, हमें लगता था कि 15 साल 16.5 साल की उम्र में सचिन इंडिया खेले, हम कहते थे यार हम 16.5 साल की उम्र में क्या कर रहे हैं।
0: बिल्कुल,
5: आज वैभव सूर्यवंशी 15 साल 3 महीने में इंडिया के लिए मैच खेल जाएंगे। हाँ। अभी तो खैर उनकी सिलेक्शन हुई है, लेकिन ये तय है कि इस वक्त अगर आप इंडिया की T20 की बात करें, आपके जो पहले दो ओपनर्स हैं वो अब भी संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ही हैं। ये सिलेक्टर्स भी जानते हैं।
0: हाँ।
5: वैभव को तीसरे ओपनर के तौर पर चुना गया है, लेकिन जब दो मैच आयरलैंड में होंगे, 5 मैच इंग्लैंड में होंगे, तो हिमांशु ये तय मानिए कि कम से कम 2 या 3 मैच उनको खिलाए जाएंगे। और अगर आपने 2-3 मैच उनको खिला दिए, उसके बाद आपको मालूम है कि वैभव ने अगर पिटाई शुरू कर दी तो फिर उसके बाद उनको रोकने वाला कोई नहीं।
0: और ये उनके पिताजी भी कह चुके हैं कि वैभव अपने आप को प्रूव करना चाहता था कि मैं सबसे अलग हूं, और वैसा उन्होंने कर भी दिया है। तो टीम इंडिया का तो वैभवशाली ऐलान हो गया, और ये भी अब मान के चल रहे हैं कि आगे बहुत सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। वैभव सूर्यवंशी अब जिस तरह से प्रदर्शन उनका रहा है आईपीएल सीजन में, उसके बाद उनको मौका मिला है, लेकिन अब क्या चुनौतियां वैभव के सामने रहेंगी और वैभव इस मौके को कैसे बनाएंगे, एक रिपोर्ट यहां पर देख लेते हैं।
7: नाम वैभव सूर्यवंशी, काम छक्के बरसाना, पहचान तूफान लाना, अरमान अब देश को जिताना। आईपीएल की इन तस्वीरों को जिसने देखा देखता ही रह गया, खुद वैभव के साथियों ने देखा, दुनिया भर के दिग्गजों ने देखा और विरोधी गेंदबाजों के पास तो देखते रहने की मजबूरी के अलावा कोई चारा ही नहीं था। ना उम्र की सीमा, ना दुनिया के किसी गेंदबाज का खौफ। वैभव का बल्ला जब बरसता है तो फिर उसके कोई मायने नहीं होते कि सामने पैट कमिंस जैसा गेंदबाज है, जसप्रीत बुमराह है या फिर कोई और। और ये तूफान आईपीएल के सीजन में जब आया तो मैच दर मैच उनका बल्ला रिकॉर्ड्स की वारत लिखता चला गया। इस सीजन में तो हाल ये था कि जब उनकी पारी खत्म होती तो कईयों के सपने टूट चुके होते थे और कई गेंदबाजों के तो आईपीएल करियर के आंकड़े बिगड़ चुके होते थे। उनके बल्ले ने इतना हल्ला मचाया कि आखिरकार सिलेक्टर्स को उन्हें सीनियर टीम इंडिया का हिस्सा बनाना ही पड़ा। वैभव 15 साल की उम्र में टीम इंडिया का हिस्सा बनने वाले सबसे युवा भारतीय हैं। उन्होंने आईपीएल में सबसे तेज 1000 रन बनाए। आईपीएल में उन्होंने एक सीजन में क्रिस गेल के 59 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़कर 72 छक्के जमाए हैं। 14 साल की उम्र में आईपीएल में शतक जमाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज हैं। वो अंडर 19 वर्ल्ड कप चैंपियन हैं। आईपीएल के 23 मैचों में वो 96 छक्के जमा चुके हैं। वैभव का असली इम्तिहान अब होगा, लेकिन उनके लिए आपदा नहीं अवसर है, क्योंकि खौफ का भूत वो बचपन में ही भगा चुके हैं। दुनिया भर के गेंदबाजों को वो आईपीएल में निपटा चुके हैं। इतना ही नहीं, दुनिया के कई पिचों पर खेलने का उनका अनुभव धीरे धीरे उनकी बल्लेबाजी को और मैच्योर बना रहा है। नए हिंदुस्तान के नए तेवरों वाली टीम को ऐसा ही तो हीरो चाहिए है। आज तक भीरो
5: सुनील गावस्कर से हिमांशु कुछ दिन पहले बात हुई थी और उन्होंने प्रिडिक्ट किया था। सुनील गावस्कर ने यह प्रिडिक्शन की थी कि वैभव सूर्यवंशी आयरलैंड जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, और उन्होंने ये भी कहा था कि जिस दिन 15 साल के इस बच्चे को मौका मिल गया इंडिया के लिए खेलने के लिए, ये दोबारा कभी वापस मुड़कर नहीं देखेगा। और ये वो गावस्कर थे जिन्होंने सचिन तेंदुलकर को भी 15 साल की उम्र में देखा था।
9: तो देखिए, जब आप किसी के छक्के मारने की काबिलियत के बारे में बातें करते हैं तो एक जो मन में एक मतलब और आंखों के सामने एक जो पिक्चर आता है वो एक स्लॉगर का। ये स्लॉगर नहीं है, ये जो बच्चा है वो सीधे बल्ले से सीधे लॉन्ग ऑफ ओवर द बॉलर हेड लॉन्ग ऑन की तरफ इतने टेक्निकली परफेक्ट सिक्सर्स मारता है। और जब आप आधी पिच पर गेंद करेंगे तो जिस तरह से इनसाइड द लाइन होके वो जिस तरह से वो हुक और पुल शॉट खेलता है तो सिक्सर की जो क्लीनलीनेस बनती है ना, क्लीन शॉट्स और इतनी परफेक्शन बहुत बहुत कम देखने मिलती है।
0: तो देखिए यहां पर तो सुनील गावस्कर जी ने बता दिया कि क्या खासियत है वैभव सूर्यवंशी में कि इतने लंबे लंबे छक्के मारते हैं। लेकिन जैसा भी विक्रांत आप बता रहे थे कि सचिन तेंदुलकर को भी उन्होंने देखा 15 साल की उम्र से, वैभव को भी देखा, तो उस कंपैरिजन पर क्या कहते हैं वो जरा सुन लेते हैं।
9: देखिए क्रिकेट में काफी फर्क आ चुका है। जब सचिन तेंदुलकर 1988 में खेलने आए थे तब जो वनडे क्रिकेट भी बनती थी तो वनडे क्रिकेट में उन दिनों में आपके अगर 225-250 अगर भी रन बन जाते टीम के तो आप समझते थे कि ये अच्छा टोटल है आप डिफेंड करने के लिए। और उस वक्त भी छक्के मारने से चौके पर ज्यादा ध्यान हुआ करता था। जो छक्के मारते थे वो नंबर 6-7 या नंबर 5-6 के खिलाड़ी थे। तो सचिन तेंदुलकर में जो खासियत थी वो कि उनके पास मतलब एक ऐसी एबिलिटी थी कि मतलब कुछ भी खेल सकते थे, कोई भी खेल, अटैकिंग खेल, उनके पास डिफेंस जबरदस्त था, सारे शॉट्स थे और उनका जो संतुलन बनता था बैटिंग करते वक्त वो तो बिल्कुल अलग था। तो इसीलिए उन्हीं को जब उन पर जब आंखें पहली बार पड़ी तो उसी वक्त पता चला कि ये भी एक भगवान की देन है जी। और उसके बाद में अभी हम 225-26 की बात करते हैं तो अब ज्यादा छक्के भी आने लगे। बल्ले में फर्क होने लगा है। बल्ले उन दिनों में जब सचिन खेलते थे तो बल्ले इतने मजबूत नहीं थे, अब बल्ले भी मजबूत है, तो बल्लों का भी तो काम बनता है क्योंकि बल्ले की जो ताकत होती है वहां से छक्के भी होते हैं। पर वो मारने के लिए आपके पास एक जो अच्छी बैकलिफ्ट होनी चाहिए, आपका फिनिश होना चाहिए, फॉलो थ्रू होना चाहिए, आपका कनेक्शन होना चाहिए, ये सबको दिया नहीं जाता। भगवान कुछ ही लोगों को देता है और उनमें से वैभव सूर्यवंशी को उन्होंने वो दे दिए, वो काबिलियत दे दिए कि वो जब कनेक्ट करते हैं तो गेंद स्टैंड में पहुंच जाती है। और
5: मजे की बात यह है कि अभी उनके पिताजी हिमांशु संजीव जी, उन्होंने कहा कि वो स्पोर्ट्स तक और आज तक देखते हैं और उस चीज का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। लेकिन आपको यह बता दूं कि आज तक पर इससे पहले वैभव सूर्यवंशी जब कहते हैं ना कि उम्र के हर पड़ाव पर इंटरव्यूज उन्होंने हमारे यहां पे भी किए हैं, और वैभव से वक्त वक्त आज तक ने जो जो सवाल पूछे उनकी क्रिकेट को देखिए, उस संघर्ष को और क्या सोच है उस पर उन्होंने क्या जवाब दिए थे।
10: आप काफी तेज तरार खेलते हैं, मतलब वनडे में आप T20 स्टाइल में खेलते हैं, आपका दो पारियों को मैंने देखा था जिसमें आपने एक 70-75 रन की पारी खेली थी और एक 67 रनों की पारी खेली थी। तो आप ओपनिंग करते हैं, आपका अप्रोच क्या होता है जब आप बल्लेबाजी करने जाते हैं, भूल जाते हैं कि वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं या T20 क्रिकेट?
11: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अप्रोच कुछ नहीं रहता, अकॉर्डिंग टू बॉल खेलने का ट्राई रहता है बस। अगर बॉल मारने का है तो मारता हूं, नहीं तो मतलब बॉल के हिसाब से ही खेलने का ट्राई करता है बस। ऐसा कुछ नहीं है कि तेज या स्लो, अगर बॉल आ रहा है मारने का तो
10: मारता। सिक्स भी मारते हैं आप, स्टेडियम पार एक सिक्स मारा था आपने
11: जी,
10: श्रीलंका के खिलाफ मारा था।
11: हाँ,
10: क्या कहेंगे, बिहार का नया सिक्सर किंग युवराज सिंह, ईशान किशन, कौन कि, मतलब किसके कदम पे चल रहे हैं आप बिहार से?
11: ऐसा कुछ नहीं है किसी एक कदम पे, बस अपना मेहनत कर रहे हैं, अब आगे देखना है कि सीनियर इंडिया किस तरीके से खेले, उसी तरीके से मेहनत करना है।
0: देखिए, हमेशा बड़ी मासूमियत के साथ कहते हैं कि हम तो बस मार देते हैं, बॉल चली जाती है बिल्कुल स्टेडियम के पार, लेकिन हर कोई सचिन से कंपेयर उनको कर रहा है कि सचिन ने भी इतनी शुरुआत में किया था डेब्यू और उसके बाद आज पूरी दुनिया देख रही है क्या कमाल उन्होंने किया है। वैभव से भी ये पूछा

0: आप पे एडेड प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर, ज्यादा प्रेशर आप पे लाता है या फिर आपको मोटिवेशन देता है कि मैंने अभी आगे जाके काफी कुछ और भी करना है?
1: मोटिवेशन ही है एक तरीके से कि सचिन तेंदुलकर सर के साथ मेरा नाम जुड़ा जा रहा था तो, बट थोड़ा बहुत अच्छा लगा कि उनके साथ मेरा कंपेयर किया जा रहा है। बट मुझे वहाँ बस ये नहीं था कि डेब्यू कर लिया बस ये हो गया, मेरा मोटिव ये है कि वहाँ रन्स करके और ऊपर कैसे खेलना है।
0: आपने जब अंडर 19 इंडिया खेला तब आपने काफी सीनियर प्लेयर्स के साथ भी आपकी बातचीत हुई, जैसे आपने बताया वसीम जाफर, उस एक्सपीरियंस के बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूंगा।
1: नहीं, वसीम सर ने बस एक ही बात समझाई कि मेंटली मजबूत रहना पड़ेगा, बाकी स्किल से तो सारे प्लेयर्स अच्छे होते हैं, मेंटली आपको मजबूत रहना पड़ेगा, उसके बाद आपको खुश, आपको अपना मेहनत करते रहना पड़ेगा। क्रिकेट बहुत लंबा प्रोसेस है, आपको ये नहीं किसी को 2 साल 4 साल 5 साल में मिल जाता है क्रिकेट, किसी को 10-10 साल लग जाते हैं, तो बस आपको अपना मेहनत करते रहना है, बाकी तो रिजल्ट तो मिलेगा ही।
2: तो देखिए यहां पर वैभव सूर्यवंशी ने बता दिया, जब उनको कंपेयर किया जाता है सचिन के साथ तो उनको कैसा लगता है, बहुत सावगोई के साथ अपनी बात वो रखते हैं। लेकिन यहां पर श्रेयस अय्यर बन गए हैं कप्तान और सूर्य कुमार यादव टीम में उनको जगह नहीं मिली है, तो ये कंपैरिजन है, जरा ये यहां पर बता देते हैं और आप बेहतर तरीके से बताएंगे तो और भी ज्यादा अच्छा है कि सूर्य कुमार यादव श्रेयस, क्यों श्रेयस को आखिर चुना गया है?
3: दिक्कत सूर्य के साथ ये है कि सूर्य के रन आने बंद हो गए। अब इस आईपीएल को देखें, इस आईपीएल से पहले क्या था, आईपीएल से कुछ दिन पहले तो आप वर्ल्ड कप के कप्तान थे और मैं तो बहुत बुरा फील करता हूं सूर्य कुमार यादव के लिए, उन्होंने सोचा नहीं होगा मांचू कि मेरी कप्तानी चली जाएगी, मुझे टीम से निकाल दिया जाएगा। मतलब आप 3 महीने पहले जश्न मना रहे थे, हर जगह जा रहे थे वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेके, लेकिन उनकी फॉर्म ना पिछली आईपीएल के बाद गिर गई
2: दिख रहा है वो।
3: और इस आईपीएल में, अगर इस आईपीएल में मेरा ये मानना है कि सिलेक्टर इस आईपीएल से पहले शायद 50-50 रहे होंगे, शायद 50-50, लेकिन चूंकि सूर्य के रन नहीं आए तो फिर वो 50-50 जो था वो 100% में तब्दील हो गया। बात शेयर्स के सिर्फ रनों की नहीं है, हालांकि अगर आप देखें इस आईपीएल का जो सेकेंड हाफ था, पंजाब पहले 6-7 मैच जीत गया, उसके बाद एक मैच उनको नहीं मिला जीतने वाला, तो कहीं ना आपको श्रेयस अय्यर की जो पुरानी कप्तानी है वो देखनी थी। और जो सिलेक्टर्स की सोच है, सोच सिर्फ ये नहीं है कि आज आपको कप्तान बनाना है, सोच ये भी थी कि आपको अगले 28 वाले वर्ल्ड कप के लिए ध्यान रखना है, आपको एलए ओलंपिक्स 28, और इनकी कोशिश है कि 30 में जो T20 होगा, यानी कि जो कप्तान अब बने वो 4 साल का साइकिल चला पाए, तो इसलिए मेरे ख्याल से उन्होंने तिलक वर्मा को वाइस कैप्टन बनाया और श्रेयस को बनाया है।
2: और श्रेयस के कप्तानी रिकॉर्ड भी आईपीएल में बताया गया, रजत पाटीदार, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, संजू सैमसंग, तो श्रेयस अय्यर का अच्छा है, पंजाब को बहुत आगे तक ले गए थे, लेकिन उसके बाद
3: उन्होंने इससे पहले देखिए केकेआर को चैंपियन बनाया,
2: बिल्कुल
3: एक यंग कप्तान थे तो दिल्ली को फाइनल लेकर गए। ईशान किशन भी रेकनिंग में थे, वो भी रनिंग में थे, हालांकि उन्होंने तो सिर्फ 7 मैचों में कप्तानी की है। जो मेन चॉइस थी वो थी ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के दरमियान, मतलब दो सोच है, एक सोच ये है कि क्या यार हम एक यंग कप्तान को दे दें, सीधा यंग हो अगले 4-5 साल निकाल दे,
2: लंबी
3: वो
2: सोच।
3: तिलक वर्मा थे, लेकिन तिलक वर्मा के पास कोई कप्तानी का तजुर्बा नहीं था, फिर आपके पास आया कि दरमियानी उम्र वाला कोई कप्तान हो, तो वो श्रेयस अय्यर और ईशान किशन थे। वहां श्रेयस,
2: अब मैं ये चाहता हूं कि ये देखिए ये पूरी तैयार है श्रेयस अय्यर कप्तान और ये खिलाड़ी आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए, अब ये बताइए इस टीम को आप कैसे देखते हैं, ये सारे खिलाड़ी
3: टीम है, बस एक चीज जो है वो ये है कि आयरलैंड और इंग्लैंड की टीम में आपने जसप्रीत बुमराह को नहीं चुना, क्यों? क्योंकि आप उस वक्त उनको वनडे क्रिकेट खिला रहे होंगे। भाई इंडिया की जो इस वक्त प्रायोरिटी है वो हिमांशु अगले 1.5 साल वनडे क्रिकेट रहेगी, क्योंकि वर्ल्ड कप की तैयारी है,
2: एशियन गेम्स में चुना गया उन्हें,
3: हाँ एशियन गेम्स में इसलिए चुना गया क्योंकि आपको गोल्ड मेडल चाहिए, तो वहां पर वो उनको रख लेंगे। इंग्लैंड में वो 3 वनडे खेलेंगे, अब आप देखेंगे बुमराह को आप कॉटन वूल में रखेंगे। हार्दिक पांड्या किसी भी T20 टीम में नहीं है, ये मेरे लिए एक बड़ी खबर है कि हार्दिक पांड्या किसी भी T20 टीम में नहीं है, ऑब्वियसली इसलिए क्योंकि आप उनको वनडे क्रिकेट खिलाना चाहते हैं, हालांकि आपने कहा है कि वनडे क्रिकेट में हार्दिक अगर आप 10 ओवर डालोगे तो ही खेलोगे भी, तो उन दोनों की फिटनेस, बुमराह और हार्दिक पांड्या की फिटनेस को देखते हुए आप उन दोनों को अब T20 में थोड़ा कम देखेंगे, आप ज्यादा उनको वनडे क्रिकेट में देखेंगे।
2: तो अभी हम ये कह सकते हैं कि करोड़ों देशवासियों की उम्मीद को लिए इस वक्त श्रेयस अय्यर लीड करते हुए दिखाई देंगे और सबकी दुआएं तो हैं, वैभव सूर्यवंशी भी जल्दी आने ही वाले हैं। यहां रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, in association with
5: Bharat ki apni electric sawari.
6: Catch up on what's hot with TikTok Radio, curated by Stingray Music, your destination for trending hits and must-see videos. Stay in the loop one

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आगे आगे
3: उधर
2: उधर
3: करेक्ट करेक्ट करेक।
4: मिल गया।
5: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
7: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
8: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
9: In association with
10: cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
11: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
12: Summer cool cooler, hawa aisi chhode puri family ko thandak se jode. Summer cool cooler, life banaye wonderful.
9: Hint, bade aaram se. Vimal, bolo zubaan kesri.
13: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
14: हम सिखाएंगे आपको मास कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट बनने का हुनर। ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट।
15: रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
16: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
4: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस,
5: एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
6: Hear what the world is listening to. Global Hits brings together music in motion. From pop to K-pop, Latin dance and Afro beats. Chart-topping tracks to hidden gems. Whatever the globe is listening to, it's all right here. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's Global Hits to start listening now.
7: शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ।
8: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
9: आगे आगे,
10: अरे उधर उधर,
9: करेक्ट करेक्ट।
11: मिल गया, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: In association with
12: cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
13: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
14: Summer cool cooler, hawa aisi chhode puri family ko thandak se jode. Summer cool cooler, life banaye wonderful.
2: Hint, bade aaram se. Vimal, bolo zubaan kesri.
15: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
16: और वो शेर हमारी तरफ आ रहा है, थोड़ा सा पीछे की तरफ हट रहे हैं इस समय। वाकई आप ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर बंदूकें तली हो और आपके सामने शेर आ जाए, दोनों में फर्क।
17: Big color, bigger savings. Sherwin-Williams Super Sale is here. Get 40% off paints and stains June 5th through the 11th with prices starting at $38.89. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
4: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

0: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes, and dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
1: शादी का किचन महके जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां
2: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
3: हम देखते हैं हमने हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया, पता लगा कोई टोंटी चोरी कर रहा है।
4: योगी ने भले ही अपने इस बयान में किसी का नाम न लिया हो, लेकिन टोंटी चोरी शब्द के बाद योगी की मुस्कुराहट ने यूपी की सियासत के 10 साल पुराने चैप्टर को फिर से खोल दिया, जब अखिलेश के सीएम बंगला खाली होने के बाद इन आरोपों पर जमकर घमासान मचा था।
5: अगर हमारे पे ये इल्जाम नहीं, हम टोंटी ले गए हैं, हमारे घर को गंगा जल से धुला हो गया। आप भूल सकते हो, मैं भूल नहीं सकता, मैं नहीं भूल सकता।
4: उधर योगी के बयान के जवाब में अखिलेश यादव ने भी बिना किसी का नाम लिए एक तंज भरा ट्वीट किया। वनस्पति विवेक छीन लेती है और निर्दोष लोगों की हत्याओं का खौफ रातों की नींद, नहीं तो पूरे होश में इतने ऊंचे पद पर बैठकर इतना निकृष्ट बयान कोई भी नहीं देता है। कुछ लोग अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं, ये हार की हताशा बोल रही है, क्योंकि कुदरत का बुलडोजर अब घूम गया है। इसके बाद योगी के हमलों की दूसरी किश्त जारी हुई, जहां निशाने पर एक बार फिर विपक्ष था।
6: अच्छे लोगों को चुनोगे, अच्छा परिणाम आएगा। माफिया को चुन करके भेजोगे तो खून भी चूस डालेगा। विकास का पैसा तो हजम करेगा ही करेगा, संपत्तियों पर भी माफिया कब्जा करता है।
4: यूपी में अब चुनाव की तैयारियों ने पूरा जोर पकड़ लिया है, जिसका अंदाजा नेताओं के बयानों से लगाया जा सकता है। आज तक ब्यूरो।
0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

आयरलैंड इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान। T20 फॉर्मेट में नए कप्तान बनाए गए श्रेयस अय्यर। वैभव सूर्यवंशी को भी टीम में मौका, सूर्यकुमार यादव को टीम में जगह नहीं। सबसे बड़े ग्लोबल मंच से आज तक पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। कहा, भारत कभी दबाव में नहीं आता, राष्ट्रहित में लेता है फैसले। पीएम मोदी की तारीफ की। गिरफ्तारी से बचने के लिए फैजल खान पटना सिविल कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं अग्रिम जमानत अर्जी। अदालत के बाहर अरेस्ट करने के लिए तैनात है पुलिस। आर्म्स एक्ट में दर्ज है FIR। जेड प्लस हटने से नाराज लालू राबड़ी समेत तेजस्वी यादव ने वापस की सरकारी सुरक्षा। बंगले के बाहर बैठे समर्थक। बीजेपी बोली, सुरक्षा पर राजनीति ना करे लालू परिवार। समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी का बड़ा हमला। का 2017 से पहले गुंडों के आगे नतमस्तक थी सरकार। राम का नाम लेने पर चलती थी गोलियां। अखिलेश का पलटवार, यूपी में महाजंगल राज।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना वाले खान सर सरेंडर नहीं करेंगे, और ये बात सामने आई है। फैजल खान के वकील की ओर से कहा गया है कि सरेंडर नहीं करेंगे, कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी देंगे। फैजल खान के वकील का दावा है कि खान सर के गार्ड्स में आत्मसुरक्षा में गोली चलाई थी। उनके गार्ड्स ने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी, किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से या दहशत के लिए फायरिंग नहीं की गई। वकील ने यह भी कहा कि खान सर को फंसाने की साजिश हो रही है, गलत काम कुछ नहीं किया है। फंसाने की साजिश हो रही है,
1: खबर है ऐसा कोई विचार ही नहीं है सर।
2: जिस तरीके के आरोप लगाए गए हैं, नॉन बिलेबल सेक्शन लगा है कि उनके कहने पर गार्ड्स ने फायरिंग की थी, तो क्या लगता है कि खान सर को इस मामले में बेल लेने की जरूरत पड़ सकती है?
1: बेल लेने की जरूरत पड़ सकती है, उनका नाम इंसर्ट कर दिया गया है FIR में। बाकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या पाती है वो पुलिस डायरी से ही पता लगेगा।
2: आप लोग को क्या लगता है, आप उनके वकील हैं, तो इस परिस्थिति में पुलिस उनका अरेस्ट भी कर सकती है?
1: पुलिस तो किसी को अरेस्ट कर सकती है, नॉन अवेलेबल सेक्शन है तो किसी को अरेस्ट कर सकती है ना।
0: तो देखिए, बड़ी खबर यह है कि अभी सरेंडर नहीं करेंगे फैजल खान, और एंटीसिपेटरी बेल के लिए अर्जी जरूर डालेंगे, ये उनके अधिवक्ता कह रहे थे। रोहित सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, इंतजार किया जा रहा था सिविल कोर्ट के गेट के बाहर, लेकिन अभी क्या जानकारी आ रही है आपके पास?
3: देखिए हिमांशु, अब जो बात सामने आ रही है फैजल खान के वकील के जरिए कि भाई इतनी आसानी से सरेंडर नहीं करेंगे, सारे जो कानूनी विकल्प हैं उसका इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बाद ही कुछ होगा, और उसी विकल्प के अंतर्गत अब ये फैसला लिया है खान सर ने, फैजल खान ने, कि भाई पहले हम अग्रिम जमानत की याचिका दायर करेंगे, और ये उनका कानूनी हक भी है। तो इसीलिए वकील ने कहा कि भाई अभी सरेंडर करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, पहले वो अग्रिम जमानत डालेंगे। अब ये आज ये याचिका डाली जाएगी या फिर सोमवार को ये याचिका डाली जाएगी, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन उस याचिका पर जब डालने के बाद जब उस पर सुनवाई होगी, अब उसमें उनको राहत मिलती है नहीं मिलती है, उसके बाद ही ये फिर तय होगा कि खान सर की गिरफ्तारी होगी या वो सरेंडर करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर उन्हें कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल जाती है। लेकिन जो बात सामने आ रही है कि वायरल वीडियो में गोलीबारी करते हुए फायरिंग करते हुए देखा गया है, और FIR में जो दो उनके सुरक्षाकर्मी जो फायरिंग कर रहे थे उन्होंने भी बयान दिया है कि खान सर ने ही कहा था कि भाई फायरिंग करो, बाकी मैं निपट लूंगा, जो होगा देखा जाएगा, मैं देख लूंगा। तो उसी बयान के आधार पर खान सर उर्फ फैजल खान के खिलाफ जो है FIR तो दर्ज की गई है, और पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए लगातार प्रयासरत है, दबिश बनाए हुए है। लेकिन जो फैजल खान है वो पुलिस को लगातार चकमा दे रहे हैं।
0: देखिए, पिछले कुछ दिनों से बहुत नाटकीय मोड़ आ रहे हैं घटनाक्रम में, तो आगे भी बहुत कुछ नाटकीय मोड़ जरूर आएंगे ऐसा लग ही रहा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं दिल्ली में आज कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन जारी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में जेन जी इकट्ठा हुए हैं, और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। नीट पेपर लीक, CBSE मार्किंग सिस्टम और भी शिक्षा से जुड़े कई मुद्दे हैं जिनको लेकर जेन जी आंदोलन शुरू हुआ है, और अब ग्राउंड पर भी कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले लोग इकट्ठा होने लगे हैं।
4: सोशल मीडिया पर व्यंग और मीम्स के तौर पर शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी अब दिल्ली के जंतर मंतर आ पहुंचा है। सुबह सुबह अभिजीत दीप के अमेरिका से सीधे IGI एयरपोर्ट पे लैंड किया, और उसके बाद जंतर मंतर पहुंचा। पहले भीड़ कम थी, ना मंच था, ना बैनर था, ना कोई ऑडियो सिस्टम, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया भीड़ की संख्या बढ़ती गई, स्टेज भी लगा, मंच भी लगा, और हाथ में तिरंगा लिए युवा यहां पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल युवा केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, अभिजीत दीप के भाषण का इंतजार कर रहे हैं। वीडियो सहयोगी अंकित सिंह के साथ मैं भारद्वाज, दिल्ली आज तक।
0: दिल्ली से आपके लिए चलते उत्तर प्रदेश। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। CM योगी गोंडा पहुंचे, और यहां जनसभा के दौरान समाजवादी पार्टी पर उन्होंने बड़ा हमला बोला। योगी ने कहा कि 2017 से पहले राम का नाम लेना मुश्किल था।
5: अब वहां नहीं होने देंगे जो 2017 के पहले होता था। 17 के पहले मुझे याद है मुझे 2015-16 में इस गोंडा में भी दुर्गा पूजा के समय दंगा करने का प्रयास हुआ था, यहां भी दंगे हुए थे। मां दुर्गा की मूर्ति को विसर्जन नहीं करने दिया जाता था, रामलीलाओं के आयोजन में अड़चने डाली जाती थी। पर्व और त्यौहार प्रारंभ होने के पहले, उत्सव प्रारंभ होने के पहले उपद्रव शुरू हो जाते थे। बेटी सुरक्षित नहीं, व्यापारी सुरक्षित नहीं, और सत्ता में बैठे हुए लोग 2017 के पहले इन दंगाइयों को, इन पेशेवर गुंडों को प्रश्रय देते थे, इनके सामने नतमस्तक होते थे। प्रदेश में कर्फ्यू रहता था, महीनों महीनों कर्फ्यू, असुरक्षा के वातावरण में न निवेश होता है न विकास होता है।
0: इसी बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी पर पलटवार किया। मुख्यमंत्री योगी पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है, असफल मुख्यमंत्री काल में महाजंगल राज, अवैध खनन, कब्जा, हत्या, डकैती, बलात्कार, राइम करने की कोशिश की जैसा आमतौर पर करते भी है। अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बैठक से जुड़ी हुई वैश्विक उथल पुथल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की। भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की गई। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। मारिया शकील इस वक्त हमारी सहयोगी हमारे साथ में जुड़ी हुई है। मारिया, आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक, क्या रणनीति आगे के लिए रखी गई?
6: जी, इसकी तस्वीर तो कुछ दिनों में साफ हो जाएगी, लेकिन ये इंडिकेशन जरूर है कि जो जो मेजर्स लेने की जरूरत है वो सरकार ले रही है। और कल ही जीडीपी नंबर सामने आए हैं जो बहुत ही पॉजिटिव हैं, और ये इंडिकेशन है कि उस समय पर जब दुनिया में पूरा उथल पुथल है, हर जगह की इकोनॉमी नोज डाइव कर रही है, भारत की इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर्स पर है, और इसीलिए ये जो बैठक है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की उन्होंने बैठक की है, वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। और रिफॉर्म, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इस पर खास करके फोकस किया गया है, क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस तरह से बढ़े उस पर कोशिश की जा रही है कि अगर FDI बढ़ जाएगा तो सरकार जॉब क्रिएट करने में और भी बहुत सारे फ्रंट पर हैंडल कर पाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस इकोनॉमी को सुधारने के लिए और इकोनॉमी को मजबूत रखने के लिए,
0: चाहिए उम्मीद करें कि इस बैठक के बाद कुछ एक दो दिन में कुछ बड़े फैसले भी आप देख सकते हैं,
6: मुमकिन है, और शायद एक डिटेल प्रेस रिलीज आज भी सामने आ जाएगा, क्योंकि कल ये बैठक जीडीपी नंबर्स आने के बाद हो रही है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर में डबल डिजिट ग्रोथ दिखा है, जिसमें जो एग्रीकल्चर सेक्टर, फिशरी सेक्टर में 3.6% का ग्रोथ है। तो ये सब बहुत पॉजिटिव के बीच में पीएम की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की बैठक अहम रखती है।
0: शुक्रिया जुड़ने के लिए आपका हमारे साथ। और इसी बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से, यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने गाजीपुर एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। संजय निषाद ने पुलिस पर मनमानी का आरोप लगाया, कहा कमलेश निषाद कोई दुर्दांत अपराधी नहीं था, घर से उठाकर मारा है। संजय निषाद ने कहा कि हमारा वोट खराब करने की साजिश हो रही है, जो मारा गया वो मुख्य आरोपित नहीं था, पुलिस ने उसे मार डाला। और ये सवाल कौन उठा रहा है? ये संजय निषाद सवाल उठा रहे हैं। संजय निषाद जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं।
7: जब उसके खिलाफ आज तक का कोई आपराधिक मुकदमा न्यायालय ने कभी सजा नहीं दी, न तो कभी चोरी में, न तो डकैती में, न तो इस तरीके के, फिर एक 302 का 307 का मुकदमा उसके ऊपर है और किसी ने अपहरण का मुकदमा लिखा रखा है, जैसे SP ने कहा। तो इतना तो बड़ा तो दुर्दांत अपराधी नहीं है कि जिससे आप इनकाउंटर, अब मुख्य आरोपी उसको बनाया भी नहीं गया, मुख्य आरोपी कोई और है, मुख्य आरोपी को तो पकड़ने दूर हैं, वो छुएंगे नहीं। आज जो साधारण है, जो वोट अभी गाजीपुर हारे हैं, अब गाजीपुर में बिंदुओं की संख्या बहुत अधिक है, जौनपुर में बिंदुओं की संख्या अधिक है, प्रधानमंत्री के चारों तरफ के हम सारी सीटें हार गए हैं। ये अधिकारी क्या कर रहे हैं, ये फिर इसके मतलब इनका एलआईयू क्या कर रहा था, कैसे समाज के लोगों ने आंदोलन किया बताए, क्यों नहीं फोर्स लगाया इन लोगों ने, खाली जब आंदोलन हो गया तो कहेंगे आप रासुका लगा देंगे, ये तो डिटेक्टरशिप हो गई।
0: लालू राबड़ी की सुरक्षा को लेकर बिहार में जो सियासी संग्राम छिड़ा उसकी भी बात कर लेते हैं। एक दिन पहले ही लालू राबड़ी की सुरक्षा जेड प्लस से घटाई गई, तो आज लालू राबड़ी ने अपनी पूरी सुरक्षा लौटा दी, कह दी नहीं चाहिए हमें, जाइए। और कुछ ही देर में तेजस्वी यादव ने भी अपनी सुरक्षा को वापस कर दिया, उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली थी, नहीं चाहिए, उन्होंने भी बोल दिया। RJD आरोप लगा रही है कि जानबूझकर लालू राबड़ी की सुरक्षा को ताक पर रखा जा रहा है, वहीं सरकार का कहना है कि सब कुछ नियमों के मुताबिक हुआ है। इस बीच बीजेपी और RJD आमने सामने है और सियासत गर्माना ही थी।
8: आवास के बाहर पसरा सन्नाटा और कोई सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं, एक बार तो यकीन करना भी मुश्किल है कि ये पटना में पूर्व CM राबड़ी देवी का आवास है। इसी आवास में लालू यादव और राबड़ी देवी रहते हैं और अब यहाँ कोई सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं है, क्योंकि एक दिन पहले वाई प्लस सिक्योरिटी हटाए जाने के बाद अब लालू राबड़ी ने नाराजगी जताते हुए पूरी सुरक्षा वापस कर दी है।
3: तो बंगले को लेकर विवाद चल ही रहा था, लेकिन अब नया विवाद जो पैदा हो गया है वो राबड़ी देवी और लालू परिवार को जो सुरक्षा दी जाती है उसको लेकर जो है ये ताज़ा विवाद जो है वो शुरू हो गया है। और कल से हम देख रहे हैं जब सरकार का एक नया फरमान आया और लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को जो जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई थी उस सुरक्षा को सरकार ने वापस लिया और केवल बिहार पुलिस की सुरक्षा, जो स्पेशल पुलिस होती है, उसकी सुरक्षा प्रदान की। उसके बाद से ही लालू परिवार, राबड़ी देवी जो है वो इसको लेकर काफ़ी बिफर गए। और उसके बाद कल देर रात से हम देख रहे हैं कि 10 सर्कुलर रोड आवास, जो कि राबड़ी देवी और उनका परिवार यहाँ पिछले 20 सालों से रह रहा है, यहाँ कल रात से ही एक भी सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं है, क्योंकि परिवार ने अपनी सभी सुरक्षा जो है वो वापस लौटा दी है। जाहिर सी बात है जिस तरीके से सरकार ने सुरक्षा में कटौती की है उसको लेकर राबड़ी देवी, लालू का परिवार जो है वो काफी नाराज है।
8: अब लालू और राबड़ी के सुरक्षा वापस करने पर सियासत शुरू हो गई है। इस बीच तेजस्वी यादव ने भी बड़ा फैसला लिया, उन्होंने अपनी सुरक्षा लौटा दी।
9: पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी ने लिया है, साहसिक फैसला है। उन्होंने जितने भी सुरक्षा आदरणीय लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी के लिए लगाई गई थी सबको वापस कर दिया, सबको बाहर निकाल दिया, क्योंकि कल ही राज्य की सरकार ने अपने आका के निर्देश पर आदरणीय लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी सहित पूरे लालू परिवार की सुरक्षा में व्यापक और घोर कटौती कर दी। शासन अपमानित करना चाहती है लालू प्रसाद जी और उनके परिवार को, उनके परिजनों को। किसी का अपमानित करने से कोई अपमानित तो नहीं हो जाता।
8: दरअसल तेजस्वी यादव को वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। समीक्षा में तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं किया गया था, लेकिन लालू और राबड़ी की सुरक्षा घटाए जाने के विरोध में अब तेजस्वी यादव ने ये बड़ा फैसला लिया है।
3: पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा में भारी कटौती की गई बिहार सरकार के द्वारा, तो इसके विरोध में राबड़ी देवी और लालू प्रसाद ने जो नई सुरक्षा उनको दी गई थी उसको भी लेने से इनकार कर दिया है और जो भी मौजूदा सुरक्षा उनके पास कल तक थी सभी प्रकार की सुरक्षा को वापस कर दिया है। अब इसी को लेकर राबड़ी देवी, लालू प्रसाद के बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी जो उनको वाई प्लस श्रेणी की जो सुरक्षा मिली हुई थी उसको भी वापस कर दिया है। हालांकि बिहार सरकार ने तेजस्वी यादव के सुरक्षा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया था। पहले से ही नेता प्रतिपक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव को वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिल रही थी और जो नई व्यवस्था थी उसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया था। बदलाव केवल राबड़ी देवी और लालू प्रसाद के सुरक्षा में किया गया था, जहां उनके जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा जो है वो वापस ले ली गई थी। लेकिन इस फैसले से नाराज होकर तेजस्वी यादव ने जो उनको भी जो तमाम सुरक्षा दी गई थी वाई प्लस श्रेणी की, उसको भी वापस कर दिया है। और
10: बड़ी बात यह है कि भले ही लालू राबड़ी की जेड प्लस सिक्योरिटी वापस ली गई थी, लेकिन नई सुरक्षा व्यवस्था के तहत दोनों नेताओं के लिए बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की सुरक्षा का इंतजाम किया गया था, जिसके तहत 2 से 8 जवान सुरक्षा में तैनात रहने का निर्देश था। इसके साथ बुलेट प्रूफ कार, जिला बल से एस्कॉर्ट की नियुक्ति का निर्देश था। लेकिन अब लालू राबड़ी और तेजस्वी के पूरी तरह सुरक्षा वापस करने के बाद सियासत गर्मा गई है।
11: ये सुरक्षा उनको क्यों दिया गया था? कभी मुख्यमंत्री रहे, कभी केंद्रीय मंत्री रहे, जब ये संवैधानिक व्यवस्था, ये नहीं है कि हथुआ मामा का बेटा है तो सब दिन वही रहेगा। जनता जिसको चुन करके देती है सत्ता में, और जो कानून कहता है वो सुरक्षा मिलता।
10: सुरक्षा कटौती का ये विवाद ऐसे समय शुरू हुआ है जब लालू परिवार और राज्य सरकार के बीच सरकारी आवास को लेकर विवाद अपने चरम पर है, और अब सुरक्षा का मुद्दा भी जुड़ गया है जिससे सियासी संग्राम बढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: अब बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल के बसीरहाट से। एक तालाब से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। अब आप कहेंगे कि तालाब में ये जखीरा क्या कर रहा था? बंगाल पुलिस एसटीएफ ने छापा मारा और ये हथियारों का जखीरा बरामद किया है। छुपाकर रखे गए थे यहां पर। अब बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अब इस वीडियो को खुद शेयर किया और कहा कि बंगाल में अब अराजकता का दौर खत्म हुआ। इन हथियारों के जरिए जनता में खौफ फैलाने का काम होता था, लेकिन अब बंगाल पुलिस ने इन्हें जब्त कर लिया। ये देखिए, ये तालाब के अंदर और अंदर से तालाब के अंदर से हथियारों के जखीरे निकालते हुए। वहीं लुधियाना रेलवे स्टेशन से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली से वैष्णो देवी जा रही कटरा स्पेशल ट्रेन बड़े हादसे का शिकार होने से बाल बाल बची है। ट्रेन जैसे ही स्टेशन से रवाना हुई, 2 डिब्बों को जोड़ने वाली कपलिंग अचानक टूट गई। जोरदार आवाज के साथ स्लीपर कोच का टॉयलेट हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और दोनों डिब्बे अलग हो गए। तेज धमाके की गूंज जैसे ही सुनाई दी, यात्रियों में डर का माहौल हो गया, हड़कंप मच गया, अफरा तफरी फैली। हालांकि अच्छी बात यह रही कि ट्रेन की रफ्तार धीमी थी, जिससे कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ। रेलवे सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे की जांच अभी जारी है। यही वो ट्रेन नई दिल्ली कटरा श्री माता वैष्णो देवी एक्सप्रेस। दिल्ली से वैष्णो देवी जा रही थी ट्रेन, कपलिंग टूट गई और उसके बाद की वो तस्वीरें आपके सामने हैं। ये देखिए, ये हालात, जोरदार धमाका, जोरदार आवाज आती है और आवाज आने के बाद जो यात्री हैं वो सहम जाते हैं आमतौर पर। और ये देखिए, और एक दुखद खबर, पंजाब फिरोजपुर से फाजिलका रोड पर एक बड़ा हादसा हुआ। 9 लोगों की मौत हो गई, 13 घायल बताए जा रहे हैं। फरीदकोट के मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है घायलों को। फिरोजपुर फाजिलका रोड पर जंगा मोड़ के पास महिंद्रा पिकअप और ट्रॉले की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, कईयों का इलाज के लिए फरीदकोट रेफर किया गया है।
12: फिरोजपुर फाजिलका रोड के ऊपर गांव जंगावाला के पास एक बड़ा हादसा होता है, जिसमें 9 लोगों की जो है वो मौत हो जाती है। इस वक्त हम फिरोजपुर के सिविल हॉस्पिटल में मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीरों में कि जिनके परिजन थे वो यहां पर मौजूद हैं। 9 लोग जो है जिनकी मृत्यु हो गई इस एक्सीडेंट में, और 14 से 15 लोग इसमें गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ये लोग जलालाबाद से डेरा ब्यास की तरफ जा रहे थे। इनके घर में किसी की मौत हुई थी और उनके जो फूल थे वो परवाने के लिए ये लोग फिर अपने जलालाबाद से ब्यास के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में जब फिरोजपुर के पास गांव जंगावाला के पास जब पहुंचते हैं तो वहां पर बड़ा जो ट्राला होता है उसके साथ इनकी टक्कर हो जाती है और बड़ी दुर्घटना घटती है जिसमें 9 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें महिलाएं थी, बच्चे थे, उनकी भी मौत जो है इसमें हो गई है और गंभीर रूप से जो लोग जख्मी हुए हैं उनको फिरोजपुर के सिविल अस्पताल से फरीदकोट मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया हुआ है। बड़ी ये घटना बताई जा रही है और यहाँ पर जो परिवार वाले हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है क्योंकि इसमें एक ही परिवार के ये सब लोग थे, आपस में रिश्तेदार थे जो अपने जलालाबाद से डेरा ब्यास की ओर जा रहे थे लेकिन रास्ते में ऐसी दुर्घटना घटती है।
0: खबर अब गुजरात से है। गुजरात के मोरबी में भी एक बड़ा सड़क हादसा हुआ और यहां पर एक खड़े वाहन से तेज रफ्तार कार टकरा गई। पांच लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल हुए हैं, 7 लोग कार में सवार थे। हलवत के चरावड़ा के पास यह हादसा हुआ। 7 लोग कार में सवार थे और जोरदार टक्कर हुई, दूर तक आवाज सुनाई दी। दिल्ली के मालवीय नगर के होटल में लगी आग के मामले में पुलिस ने एक और आरोपित को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपित होटल में कुक था। अब जांच में यह बात सामने आई है कि कुक की लापरवाही इतने बड़े हादसे की वजह बनी। इस मामले में पुलिस ने कुछ और लोगों को हिरासत में लिया है। शुरुआत में जानकारी आई है कुक को गिरफ्तार करते हुए कि कुक की लापरवाही से यह आग लगी है। हिरासत में लिया गया है, पूछताछ हो रही है, कुछ और लोग उनको हिरासत में लिया गया है। 21 लोगों की जान गई थी जिसमें से 12 विदेशी थे। कुछ लोगों ने कैसे कूद की जान बचाई ये देखिए। वहीं अब दिल्ली में आयोजित किए गए यूथ विकसित भारत कार्यक्रम की बात करते हैं। त्यागराज स्टेडियम में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की तरफ से माय भारत युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर, फिल्म स्टार विक्रांत मैसी, बोर्ड फाउंडर अमन गुप्ता, गुरिंदर वीर सिंह मंच पर दिखे। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, देश का युवा जो क्रिएटिव है, जो साहसी है, वो देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करे, अपने भविष्य का निर्माण करे, देश का निर्माण करे। विक्रांत मैसी ने कहा कि पिछले 22 साल से सिनेमा में काम कर रहा हूं, 10-12 साल से जो बदलाव मैंने देखा है वो पहले नहीं था और ये सब पीएम मोदी की नजरिए की वजह से है।
13: भारत यंगेस्ट कंट्री जहां यंग पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है और इसीलिए आज देश को आप सब पे भरोसा है कि आपका एक एक कदम देश को रोजाना आगे लेके जाए। ये 140 करोड़ भारतीयों का देश, यदि आप आगे बढ़ते हैं तो रोजाना 140 करोड़ कदम आगे बढ़ेगा और बढ़ता ही जाएगा।
0: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
15: इन एसोसिएशन विद
16: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
17: Summer hits, blends old school jams with fresh favorites, so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack, made for sunshine, vibes, and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now. So good.
18: Honey, is ghar mein kuch hai jo tootta nahi?
19: Ye pillar kabhi nahi tootega. Rungta Steel TMT se bana.
20: Rungta nahi, to ghar strong nahi. Rungta Steel TMT bar, ekdam solid.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
5: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
6: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
7: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, NTO को पता नहीं।
5: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
8: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
6: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
5: जहां खबर वहां खबरदार।
9: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
10: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuje, the number one Korean skincare brand, now in India.
3: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
4: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
6: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
7: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
8: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
9: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है, 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
10: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
8: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
11: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
9: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
8: जहाँ खबर वहाँ खबरदार।
1: In association with
0: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
12: Monte Carlo, it's the way you make me feel।
8: छात्रों के भविष्य पर उठे सवाल।
13: बच्चों के भविष्य से जब जब खिलवाड़ होगा हम आवाज उठाते रहेंगे। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या छात्रों की चिंताएं दूर होंगी?
8: तो हमने पूछे जिम्मेदारों से सवाल।
13: CBSE के कोई चेयरमैन होंगे ना, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? कोचिंग माफिया के खिलाफ मैं बोलती रहूंगी।
8: छात्रों को दिया मंच।
13: उज्मा हमारे साथ कोटा से, और अदिति मुंगेर से हैं, और तानिया कोटा से हैं, और अर्गम जैन भी जुड़ गए हैं। तो एक बार आप दिखाएं और बताएं अपनी समस्या।
14: मैम ये देखिए, इसमें सेकंड की मार्किंग है, ये तीनों ही अनचेक हैं।
15: IIT मद्रास के एक्सपर्ट लगा रहा है, क्या वो भी इतने सक्षम नहीं है कि उनसे एक सरकारी वेबसाइट नहीं चलाई जा रही?
8: छात्रों के मुद्दे, छात्रों की आवाज और खबर का असर।
13: आज तक की खबर का असर हुआ है, छात्रों की आवाज बना आज तक, और अब सरकार की तरफ से CBSE के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव दोनों का तबादला किया गया है।
8: छात्रों के हित में हल्ला बोल सिर्फ आज तक पर।
16: साथियों, आज देश में कुछ निराशावादी लोग हैं जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाते रहते हैं। देश के इस संकल्प को वो लगातार नीचा ही दिखाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रखा। वो लोग ये भूल जाते हैं कि दूसरों पर निर्भर देश विकास की वो ऊंचाई कभी प्राप्त नहीं कर सकता जिसका वो हकदार है।
17: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
0: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
18: यूपी के गोंडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 516 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया, विभिन्न जन कल्याण परियोजनाओं को जनता को समर्पित किया। गोंडा में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, पिछली सरकारों पर बोला हमला, कहा 2017 से पहले प्रदेश में दंगों, कर्फ्यू और अराजकता का माहौल था। बलरामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 294 करोड़ की 75 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जनसभा में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब दंगा मुक्त और गुंडा मुक्त प्रदेश बन चुका है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मथुरा मामले को लेकर यूपी सरकार पर हमला बोला, उन्होंने राज्य में महाजंगल राज और अपराध बढ़ने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री को असफल बताया। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने गाजीपुर एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि जब आरोपित को पकड़ा जा सकता था तो एनकाउंटर क्यों किया गया, उन्होंने इसे कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न बताया। मुजफ्फरनगर के पास दिल्ली देहरादून हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, हरिद्वार जा रहे परिवार पर मौत बनकर दौड़ा ट्रक, बाइक सवार समेत मासूम की मौके पर मौत, वाहन चालक फरार। अमेठी में दर्दनाक हादसे में कच्चे मकान की दीवार गिरने से मां और बेटी की मौत हो गई, बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद गांव में शोक की लहर, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिरोजाबाद में प्रेमी जोड़े ने कथित रूप से केरोसिन छिड़क कर खुद को आग के हवाले कर दिया, पुलिस ने दरवाजा तोड़कर दोनों को बाहर निकाला, हादसे में युवती की मौत हो गई, युवक का उपचार जारी। मुजफ्फरनगर में एक युवक की लाठी डंडों से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने कार्रवाई कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान किया। झांसी में मंदिर के माहौल को खराब करने से रोकने पर चाचा भतीजे पर तलवार से हमला कर दिया, इस हमले में युवक की मौत, पुलिस ने मामला दर्ज किया, कुछ को हिरासत में लिया। फिरोजपुर में महिंद्रा पिकअप और ट्रॉली की जोरदार टक्कर में बड़ा हादसा, दर्दनाक दुर्घटना में 9 लोगों की मौत, कई घायल। गाजियाबाद में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार किया, जिसमें आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी, पुलिस के अनुसार आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। बलिया में पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश घायल हो गया, जिससे जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगी, घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में तीन आरोपी घायल, जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर उनके पास से अवैध हथियार, कारतूस, एटीएम कार्ड और नकदी बरामद की। कानपुर में कोचिंग संचालक की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, सीसीटीवी फुटेज और जांच के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान की, जो बुर्का पहनकर वारदात को अंजाम देने आया था। आजमगढ़ में नाबालिग के साथ कथित मारपीट और क्रूरता का गंभीर मामला सामने आया, पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। बिजनौर में पति पर पत्नी की गर्दन पर चाकू से जानलेवा हमला करने का आरोप, गंभीर रूप में घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जांच जारी है, आरोपित की तलाश जारी। बाराबंकी में सरकारी तालाब की जमीन पर बने अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 36 मकान ध्वस्त कर दिए, एसटीएफ के नेतृत्व में पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने कार्रवाई की। गाजियाबाद के लोनी में ओंकार त्यागी हत्याकांड में पुलिस ने 50,000 का इनामी आरोपित को गिरफ्तार किया, पूछताछ में सामने आया कि पंचायत में हुई बेइज्जती का बदला लेने के लिए हत्या की साजिश रची गई थी और शव को नहर में फेंक दिया था। शाहजहांपुर से उठी गैंग वॉर की चिंगारी, बरेली तक बरसी गोलियां, खूनी संघर्ष में ड्राइवर कंडक्टर को बंधक बनाकर पीटा।

0: आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने वाले वैभव सूर्यवंशी की टीम इंडिया में एंट्री हो गई। धुआंधार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड, इंग्लैंड और एशियन गेम्स की टी20 इंटरनेशनल टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने आईपीएल के हालिया सीजन में आतिशी बल्लेबाजी करते हुए हर किसी को प्रभावित किया था। उन्होंने अपनी टीम राजस्थान रॉयल्स की तरफ से आईपीएल में कुल 776 रन बनाए थे। प्लेऑफ्स में एक तरफा मैच खेला था जिसके बदौलत वो ऑरेंज कैप पर कब्जा जमाने में कामयाब रहे। सबसे ज्यादा छक्के उन्होंने मारे। वैभव के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए अब उन्हें बहुत बड़ा मौका मिला है और अब टीम इंडिया में उनकी शानदार एंट्री हो गई है।
1: नाम वैभव सूर्यवंशी, काम छक्के बरसाना, पहचान तूफान लाना, अरमान अब देश को जिताना। आईपीएल की इन तस्वीरों को जिसने देखा देखता ही रह गया। खुद वैभव के साथियों ने, दुनिया भर के दिग्गजों ने और विरोधी गेंदबाजों के पास तो देखते रहने की मजबूरी के अलावा कोई चारा ही नहीं था। ना उम्र की सीमा, ना दुनिया के किसी गेंदबाज का खौफ। वैभव का बल्ला जब बरसता है तो फिर इसके कोई मायने नहीं होते कि सामने पैट कमिंस जैसा गेंदबाज है, जसप्रीत बुमराह है या फिर कोई और। और ये तूफान आईपीएल के इस सीजन में जब आया तो मैच दर मैच उनका बल्ला रिकॉर्ड्स की इबारत लिखता चला गया। इस सीजन में तो हाल ये था कि जब उनकी पारी खत्म होती थी तो कईयों के सपने टूट चुके होते थे और कई गेंदबाजों के तो आईपीएल करियर के आंकड़े बिगड़ चुके होते थे। उनके बल्ले ने इतना हल्ला मचाया कि आखिरकार सेलेक्टर्स को उन्हें सीनियर टीम इंडिया का हिस्सा बनाना ही पड़ा। वैभव 15 साल की उम्र में टीम इंडिया का हिस्सा बनने वाले सबसे युवा भारतीय हैं। उन्होंने आईपीएल में सबसे तेज 1000 रन बनाए हैं। आईपीएल में उन्होंने एक सीजन में क्रिस गेल के 59 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़कर 72 छक्के जमाए हैं। 14 साल की उम्र में आईपीएल में शतक जमाने वाले वो सबसे युवा बल्लेबाज हैं। वो अंडर 19 वर्ल्ड कप चैंपियन है। आईपीएल के 23 मैच में वो 96 छक्के जमा चुके हैं। वैभव का असली इम्तिहान अब होने वाला है, लेकिन उनके लिए आपदा नहीं, ये अवसर है, क्योंकि खौफ का भूत वो बचपन में ही भगा चुके हैं। दुनिया भर के गेंदबाजों को वो आईपीएल में निपटा चुके हैं। इतना ही नहीं, दुनिया की कई पिचों पर खेलने का उनका अनुभव धीरे धीरे उनकी बल्लेबाजी को और मैच्योर बना रहा है। नए हिंदुस्तान के नए तेवरों वाली इस टीम को अपने खजाने में ऐसा ही हीरा चाहिए। आज तक ब्यूरो।
0: टीम इंडिया में वैभव के चयन के बाद उनके पिता संजीव ने आज तक से खास बातचीत की। उन्होंने भरोसा जताया है कि टीम इंडिया में भी वैभव सूर्यवंशी शानदार प्रदर्शन कर देश का गौरव बढ़ाएगा और देश को जीत दिलाएगा।
2: पहले तो भाई आपको बहुत बहुत बहुत मुबारक। मतलब वैभव इंडिया खेलेंगे ये सबको पता था, इतनी जल्दी खेलेंगे ये नहीं पता था।
3: हाँ सर, बहुत खुशी, बहुत खुश है सर, और आपको भी प्रणाम करते हैं सर। वैभव के लिए आप जो बोलते हैं, क्या स्पोर्ट्स, क्या है आपका स्पोर्ट्स तक की क्या पर्स, हम पूरा सर आपका देखते रहते हैं, तो आपका भी सर आशीर्वाद वैभव को लगा और हम लोग बहुत खुश है सर। इसी के लिए इतना मेहनत बच्चा किया था सर, और उसका फल उस बच्चा को मिला सर।
2: और इस वक्त मतलब ऐसा नहीं है कि ये अचानक हुआ, मतलब आई थिंक पूरी दुनिया जानती थी कि वैभव इस वक्त इंडिया खेलने वाले हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, जिनके नाम रिकॉर्ड था, 16.5 साल की उम्र में वो पहला मैच इंडिया के लिए खेले थे। वैभव तो अभी 15 साल 2 महीने 2.5 महीने उनकी उम्र है, और ये उम्मीद करते हैं कि जो 7 T20 मैचेस हैं, 2 आयरलैंड में, 5 इंग्लैंड में, हमारा बच्चा कम से कम 2-3 मैच तो जरूर खेले।
3: जी एकदम, आप आशीर्वाद दीजिए ना, आपका आशीर्वाद लगेगा। कल आपका चैनल हम पूरा देखे हैं, आपका जो कर रहे थे वैभव के बारे में आप बात कर रहे थे, सब मेहनत किया बच्चा, अब पूरे बिहार का, पूरे देश के लोगों का आशीर्वाद उसके साथ है, उससे खुद का मेहनत है
4: और साथ ही साथ समझिए ना भगवान का भी आशीर्वाद उसके साथ।
0: अच्छा संजीव, संजीव जी एक बात बताइए, क्योंकि पूरा देश तो ये इंतजार कर ही रहा था कि वैभव सूर्यवंशी का सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, अब वो तो खुशखबरी आ ही गई है, लेकिन क्या ये भी जानना चाहते कि कौन कौन से रिकॉर्ड्स पर अब नजर है? कुछ आपसे बात की वैभव ने कि अब जब टीम में आ ही गए हैं तो ये रिकॉर्ड भी तोड़ देते हैं, क्योंकि अब तो बहुत से रिकॉर्ड टूटने वाले हैं।
3: जी जी जी जी सर, खेलेगा जिस ढंग से खेलता है सर, सब कुछ अच्छा रहा तो रिकॉर्ड का क्या बात है, देश के लिए बहुत जीत दिलाएगा सर। अब मेन वही चीज है, रिकॉर्ड को हम अलग रखते हैं, देश को अगर जीत दिलाता है ना सर, वही मेरे लिए सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, वही हम चाहते हैं, जब तक खेले देश के लिए खेले, देश के लिए अच्छा खेले और उस कारण देश के काम आए बस।
2: मैंने एक चीज और देखी संजीव जी, वो ये थी कि आपने आईपीएल के दौरान बहुत ज्यादा ट्रैवल नहीं किया, आपने वैभव को छोड़ा हुआ था, अभी वो दो दिन के लिए आए थे घर, तो मतलब वो किस किस माइंडसेट में, क्योंकि दो महीने में न सिर्फ आपकी, मैं कहता हूं वैभव की, बल्कि इंडियन क्रिकेट की दशा और दिशा भी उस 15 साल के बच्चे ने बदली है, तो उनका माइंडसेट क्या है, वो क्या अंदाजा था आपको कि वो सिलेक्ट होंगे?
3: हाँ सर, आज खेल तो अच्छा रहा था सर, और फिर आप लोग जिस हिसाब से जिस ढंग से उसके लिए बोल रहे थे तो हमको लग रहा था कि कुछ अच्छा होगा।

0: क्या हो रहा है ना सर कि हाँ जी जी बोलिए
1: संजीव जी, एक बात बताइए, इस बार आईपीएल में एक खास चीज देखने को मिली, वैभव सूर्यवंशी जो हर बॉल पर चौका छक्का लगाते हैं, इस बार जब टीम संकट में भी होती है तो उस वक्त डट के भी खेलते हैं, उस वक्त आराम से भी खेलते हैं, बहुत समझदारी के साथ खेलते हैं, पेशेंस उनमें देखा गया है। ये बदलाव कैसे आया, इसके लिए कुछ खास आपसे बातचीत हुई या फिर उन्होंने कभी आपसे जिक्र किया इस बारे में?
0: नहीं सर, वो बचपन से रेड बॉल से ही खेलता था और बड़ा बड़ा स्कोर आपको मतलब 50 ओवर के मैच में 332 से ही के डोमेस्टिक मैच में मार दिया था
2: जी।
0: और एक सीजन में 50 60 70 80 शतक मारता था, तो स्थिति परिस्थिति के हिसाब वो खेलना जानता है और चूंकि वहां बच्चा था तो वो दिखाना चाह रहा था कि हम थोड़ा सबसे अलग, उसका खेलने का तरीका वही है वही है।
3: मैं ये कह रहा था कि आपकी आपकी धर्मपत्नी वैभव की माता जी वो इस वक्त कहां पे हैं, मतलब इस वक्त उनकी दुनिया कैसे बदली है?
0: वो अभी देवी देवता वाला एक छोटा सा रूम है मेरा, उसी में बैठ के भगवान को अधिक कर रही है,
4: पूजा पाठ कर रही
0: है।
3: क्या
4: मुझे
3: क्या?
4: याद है विक्रांत जी
3: जी जी,
4: ये 2016 का वाक्य है जब संजीव सूर्यवंशी जी और हम लोग क्रिकेट मैच खेलने गए थे।
3: अच्छा,
4: तो वहाँ पे खेलता था वो ग्राउंड एकदम छोटा था,
0: मीडिया 11 में हम लोग का मैच,
4: उनको याद आ गया होगा। उसी समय ये प्रण लिए थे कि जो वैभव को जो है क्रिकेटर बनाएंगे, क्योंकि इनको मलाल था कि ये क्रिकेटर नहीं बन पाए थे, तो हमको कहा कि जहांगीर भाई मैं वैभव को जरूर क्रिकेटर बनाऊंगा क्योंकि ये जो खेलने का जो स्टाइल है इससे लग रहा है कि ये क्रिकेटर बनेगा, और आपकी जो पारखी नजर थी वो आज एकदम धरातल से उतर के देश दुनिया में जो है नाम कमा रहे।
0: जी जी जी जहांगीर भाई,
4: कहा बताइए, आपको आपको याद आया?
0: हाँ, एकदम सब याद है, एक एक आपको आपसे जो बात की सब याद है, सब याद है।
3: आयरलैंड इंग्लैंड वीजा लगवा लिया आपने? क्योंकि इतिहास, अगर आपका बच्चा, हमारा बच्चा अगर इतिहास रचने जा रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता संजीव जी कि आप वहां पर ना जाएं, आपको मैदान से वो मैच तो देखना होगा।
0: जी सर जी, जाएंगे सर, जाएंगे सर, जाएंगे सर, बस आप आप आप आप आशीर्वाद दीजिए, आपका जो पैनल, आप जो बैठते हैं सभी लोग, सब वैभव के बारे में अच्छा बोलते हैं सर, बस वही प्यार और आशीर्वाद बनाए रखे सर, वो आगे और अच्छा करेगा, बहुत अच्छा करेगा।
3: तो मेरे सबसे बड़ी बात सर, संजीव जी एक काम कीजिए, हमें बुलाइए आपके घर, आएंगे लिट्टी चोखा खाएंगे।
0: जरूर जरूर जरूर, ये तो मेरे लिए तो भगवान का आना हो जाएगा, आप आएंगे तो आप आएंगे भगवान का, जब जब चाहिए आप आ सकते हैं सर।
3: चलिए, बहुत शुक्रिया
0: आपका, धन्यवाद,
3: बहुत शुक्रिया आपका।
1: कुछ देर पहले जब जिक्र हुआ था वैभव सूर्यवंशी का सिलेक्शन हो गया है, एक पिता के चेहरे की खुशी साफ यहां पर दिखाई देती है। आईपीएल के दौरान ही हमने वर्ल्ड चैंपियन सुनील गावस्कर से वैभव सूर्यवंशी की तकनीक के बारे में पूछा था कि आखिर कैसे कैसे इतनी कम छोटी सी उम्र में इतने लंबे लंबे छक्के मार देते हैं, बड़ी आसानी से कामयाब हो जाते हैं, तो क्या कहा उन्होंने, सुनते हैं।
5: तो देखिए, जब आप किसी के छक्के मारने की काबिलियत के बारे में बातें करते हैं तो एक जो मन में एक मतलब और आंखों के सामने एक जो पिक्चर आता है वो एक स्लॉगर का, ये स्लॉगर नहीं है, ये जो बच्चा है वो सीधे बल्ले से सीधे लॉन्ग ऑफ ओवर द बॉलर हेड लॉन्ग ऑन की तरफ इतने टेक्निकली परफेक्ट सिक्सर्स मारता है, और जब आप आधी पिच पर गेंद करेंगे तो जिस तरह से इनसाइड द लाइन होके वो जिस तरह से वो हुक और पुल शॉट खेलता है, तो सिक्सर की जो क्लीनलीनेस बनती है ना, क्लीन शॉट्स और इतनी परफेक्शन बहुत बहुत कम देखने मिलती है। देखिए, क्रिकेट में काफी फर्क आ चुका है, जब सचिन तेंदुलकर 1988 में खेलने आए थे तब जो वनडे क्रिकेट भी बनती थी, तो वनडे क्रिकेट में उन दिनों में आपके अगर 225-250 अगर भी रन बन जाते टीम के तो आप समझते थे कि ये अच्छा टोटल है आप डिफेंड करने के लिए, और उस वक्त भी छक्के मारने से चौके पर ज्यादा ध्यान हुआ करता था, जो छक्के मारते थे वो नंबर 6-7 या नंबर 5-6 के खिलाड़ी थे। तो सचिन तेंदुलकर में जो खासियत थी वो कि उनके पास मतलब एक ऐसी एबिलिटी थी कि मतलब कुछ भी खेल सकते थे, कोई भी खेल, अटैकिंग खेल, उनके पास डिफेंस जबरदस्त था, सारे शॉट्स थे, और उनका जो संतुलन बनता था बैटिंग करते वक्त वो तो बिल्कुल अलग था। तो इसीलिए उन्हीं को जब उन पर जब आंखें पहली बार पड़ी तो उसी उसी वक्त पता चला कि

0: ये भी एक भगवान की देन है
1: जी।
0: और उसके बाद में अभी हम 225-26 की बात करते हैं तो अब ज्यादा छक्के भी आने लगे, बल्ले में फर्क होने लगा है। बल्ले उन दिनों में जब सचिन खेलते थे तो बल्ले इतने मजबूत नहीं थे, अब बल्ले भी मजबूत है तो बल्लों का भी तो काम बनता है क्योंकि बल्ले की जो ताकत होती है वहां से छक्के भी होते हैं, पर वो मारने के लिए आपके पास एक जो अच्छी बैकलिफ्ट होनी चाहिए, आपका फिनिश होना चाहिए, फॉलो थ्रू होना चाहिए, आपका कनेक्शन होना चाहिए, ये सबको दिया नहीं जाता, भगवान कुछ ही लोगों को देता है और उनमें से वैभव सूर्यवंशी को उन्होंने वो दे दिए, वो काबिलियत दे दिए कि वो जब कनेक्ट करते हैं तो गेंद स्टैंड में पहुंच जाती है। और
2: देखिए आज तक ने वैभव सूर्यवंशी से कई बार बात की, जब वो संघर्ष कर रहे थे, कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, आंखों में सपना था बड़ी पारियां खेलने का, तब उन्होंने क्या कहा जब उनसे पूछा गया कि बड़े शॉट्स के लिए उनकी तैयारी किस तरह की रहती है, तो सुनिए जरा।
3: आप काफी तेज तरार खेलते हैं, मतलब वनडे में आप T20 स्टाइल में खेलते हैं, आपका दो पारियों को मैंने देखा था जिसमें आपने एक 70-75 रन की पारी खेली थी और एक 67 रनों की पारी खेली थी, तो आप ओपनिंग करते हैं, आपका अप्रोच क्या होता है जब आप बल्लेबाजी करने जाते हैं, भूल जाते हैं कि वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं या T20 क्रिकेट?
4: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अप्रोच कुछ नहीं रहता, अकॉर्डिंग टू बॉल खेलने का ट्राई रहता है बस, अगर बॉल मारने का है तो मारता हूं, नहीं तो मतलब बॉल के हिसाब से ही खेलने का ट्राई करते हैं बस, ऐसा कुछ नहीं है कि तेज या स्लो, अगर बॉल आ रहा है मारने का तो
3: सिक्स भी मारते हैं, स्टेडियम पर एक सिक्स मारा था आपने
4: जी,
3: श्रीलंका के खिलाफ मारा था।
4: हाँ,
3: क्या कहेंगे बिहार का नया सिक्सर किंग युवराज सिंह, ईशान किशन कौन, मतलब किसके कदम पे चल रहे हैं आप बिहार से?
4: ऐसा कुछ नहीं है किसी एक कदम पे, बस अपना मेहनत कर रहे हैं, अब आगे देखना है कि सीनियर इंडिया किस तरीके से खेले उसी तरीके से मेहनत करना है।
2: सीनियर इंडिया किस तरह से खेले उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत सफल भी हो गई। उनसे ये भी पूछा गया था कि इतनी छोटी सी उम्र में उनकी जो तुलना है वो महान सचिन तेंदुलकर से की जाती है, तो उन्हें कैसा लगता है, जवाब क्या था उन्हीं से सुनिए।
5: One of the greatest players cricket has ever seen, in fact, उनका नाम जोड़ा जा रहा था सचिन तेंदुलकर। जब आपका नाम एक सचिन तेंदुलकर जैसे जने के साथ लिया जाता है तो क्या एक वो एक आप पे एडिड प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर, ज्यादा प्रेशर आप पे लाता है या फिर आपको मोटिवेशन देता है कि मैंने अभी आगे जाके काफी कुछ और भी करना है?
4: मोटिवेशन ही है एक तरीके से कि सचिन तेंदुलकर सर के साथ मेरा नाम जुड़ा जा रहा था तो, बट थोड़ा बहुत अच्छा लगा कि उनके साथ मेरा कंपेयर किया जा रहा है, बट मुझे वहाँ बस ये नहीं था कि डेब्यू कर लिया बस ये हो गया, मेरा मोटिव ये है कि वहाँ रन्स करके और ऊपर कैसे खेलना है।
5: आपने जब U19 इंडिया खेला तब आपने काफी सीनियर प्लेयर्स के साथ भी आपकी बातचीत हुई, जैसे आपने बताया वसीम जाफर, उस एक्सपीरियंस के बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूंगा।
4: नहीं, वसीम सर ने बस एक ही बात समझाई कि मेंटली मजबूत रहना पड़ेगा, बाकी स्किल से तो सारे प्लेयर्स अच्छे होते हैं, मेंटली आपको मजबूत रहना पड़ेगा, उसके बाद आपको खुश, आपको अपना मेहनत करते रहना पड़ेगा। क्रिकेट बहुत लंबा प्रोसेस है, आपको ये नहीं किसी को 2 साल 4 साल 5 साल में मिल जाता है क्रिकेट, किसी को 10-10 साल लग जाते हैं, तो बस आपको अपना मेहनत करते रहना है, बाकी तो रिजल्ट तो मिलेगा ही।
2: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
6: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
7: Bharat ki apni electric savari, Sokudo.
8: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
9: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
10: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?

बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने 5 राज्यों में राज्यसभा चुनावों के लिए कुल 11 उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं। पार्टी ने सीनियर नेता तरुण चुग और सतीश पूनिया को मध्य प्रदेश और राजस्थान से उम्मीदवार बनाया है। राजू भाई शुक्ला, मुकेश भाई राठवा, मान सिंह परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया को गुजरात से राज्यसभा का टिकट मिला है। रजनीश अग्रवाल मध्य प्रदेश से चुनावी मैदान में उतरेंगे। बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव और दिल्ली की सह प्रभारी अलका गुर्जर राजस्थान कोटे से चुनाव लड़ेंगी। अरुणाचल प्रदेश से ताई तगाक और मणिपुर के ए शोरदा देवी को उम्मीदवार बनाया है। उड़ीसा से देवाशीष सामंतराय को उम्मीदवार बनाया गया है। सामंतराय हाल ही में बीजेडी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। पार्टी छोड़ने और उच्च सदन से इस्तीफा देने से पहले वे उड़ीसा से राज्यसभा सांसद थे। 11 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और जॉर्ज कुरियन के नाम शामिल नहीं है। सदन में इन दोनों मंत्रियों का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का राज्यसभा कार्यकाल भी नवंबर में समाप्त हो रहा है। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का बीजेपी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद से ही कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें तेज हो गई थी, जिन्हें राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट ने और हवा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया
2: और वो शेर हमारी तरफ आ रहा है थोड़ा सा पीछे की तरफ हट रहे हैं इस समय
3: वाकई आप ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर बंदूकें तली हो और आपके सामने शेर आ जाए दोनों में फर्क
4: दिस इज द साउंड ऑफ जैक बज कटिंग हिज वे टू अ स्मॉल फॉर्च्यून To Jack, every time he cuts his own hair, that's 50 bucks right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
5: Oh, ouch.
4: However you make money work, we can work with that.
6: Mobile carrier's message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
7: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices. So you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here on TuneIn.

0: नाम वैभव सूर्यवंशी, काम छक्के बरसाना, पहचान तूफान लाना, अरमान अब देश को जिताना। आईपीएल की इन तस्वीरों को जिसने देखा देखता ही रह गया, खुद वैभव के साथियों ने देखा, दुनिया भर के दिग्गजों ने देखा और विरोधी गेंदबाजों के पास तो देखते रहने की मजबूरी के अलावा कोई चारा ही नहीं था। न उम्र की सीमा, न दुनिया के किसी गेंदबाज का खौफ। वैभव का बल्ला जब बरसता है तो फिर उसके कोई मायने नहीं होते कि सामने पैट कमिंस जैसा गेंदबाज है, जसप्रीत बुमराह है या फिर कोई और। और ये तूफान आईपीएल के सीजन में जब आया तो मैच कर मैच उनका बल्ला रिकॉर्ड की इबारत लिखता चला गया। इस सीजन में तो हाल ये था कि जब उनकी पारी खत्म होती तो कईयों के सपने टूट चुके होते थे और कई गेंदबाजों के तो आईपीएल करियर के आंकड़े बिगड़ चुके होते थे। उनके बल्ले ने इतना हल्ला मचाया कि आखिरकार सिलेक्टर्स को उन्हें सीनियर टीम इंडिया का हिस्सा बनाना ही पड़ा। वैभव 15 साल की उम्र में टीम इंडिया का हिस्सा बनने वाले सबसे युवा भारतीय हैं। उन्होंने आईपीएल में सबसे तेज 1000 रन बनाए। आईपीएल में उन्होंने एक सीजन में क्रिस गेल के 59 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़कर 72 छक्के जमाए हैं। 14 साल की उम्र में आईपीएल में शतक जमाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज हैं। वो अंडर 19 वर्ल्ड कप चैंपियन हैं। आईपीएल के 23 मैचों में वो 96 छक्के जमा चुके हैं। वैभव का असली इम्तिहान अब होगा, लेकिन उनके लिए आपदा नहीं अवसर है, क्योंकि खौफ का भूत वो बचपन में ही भगा चुके हैं। दुनिया भर के गेंदबाजों को वो आईपीएल में निपटा चुके हैं। इतना ही नहीं, दुनिया की कई पिचों पर खेलने का उनका अनुभव धीरे धीरे उनकी बल्लेबाजी को और मैच्योर बना रहा है। नए हिंदुस्तान के नए तेवरों वाली टीम को ऐसा ही तो हीरो चाहिए है। आज तक हीरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: किंग सूर्यवंशी के धमाकेदार एंट्री आयरलैंड इंग्लैंड दौरे में मिली जगह T20 फॉर्मेट में नए कप्तान बना के श्रेयस अय्यर सूर्य कुमार यादव को जगह नहीं मिली। सबसे बड़े ग्लोबल मंच से आज तक पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, कहा भारत कभी दबाव में नहीं आता, राष्ट्रहित में लेता है फैसले, पीएम मोदी की जमकर की तारीफ। पश्चिम एशिया संकट के बीच में पीएम मोदी की बड़ी बैठक, आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ मंथन, देशवासियों का जीवन आसान बनाने और आर्थिक दर को बढ़ाने पर चर्चा। गिरफ्तारी के डर से सामने नहीं आ रहे पटना में कोचिंग चलाने वाले फैसल खान, वकील ने कहा अदालत में देंगे अग्रिम जमानत की अर्जी, सिविल कोर्ट के बाहर इंतजार करते रहे पुलिस। समाजवादी पार्टी पर मुख्यमंत्री योगी का बड़ा हमला, कहा 2017 से पहले गुंडों के आगे नतमस्तक थी सरकार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन
0: इंग्लैंड आयरलैंड दौरे के लिए टीम इंडिया के ऐलान शेयरकर्ताओं ने युवाओं पर खेला है दांव। श्रेयस अय्यर के हाथों में T20 टीम की कमान, तिलक वर्मा को मिली है उपकप्तानी। संजू सैमसन, ईशान किशन और अभिषेक की वापसी, हर्ष राणा और प्रिंस और नीतीश रेड्डी को भी मौका, भविष्य की टीम तैयार करने पर जोर। पहले आयरलैंड में खेले जाएंगे दो T20 मुकाबले और आयरलैंड के बाद टीम इंडिया का इंग्लैंद का दौरा, 5 T20 मैचों की सीरीज में दिखेगा। जापान में होने वाले एशियन गेम्स 2026 के लिए भी टीम इंडिया तैयार, श्रेयस अय्यर की कप्तानी में गोल्ड मेडल बचाने उतरेगी युवा ब्रिगेड। 15 साल 71 दिन के वैभव सूर्यवंशी का ऐतिहासिक चयन, इंग्लैंड आयरलैंड दौरे पर बने टीम इंडिया के सबसे युवा खिलाड़ी। 16 साल 205 दिन के चयन को लेकर सचिन तेंदुलकर ने एक रिकॉर्ड बनाया था और कम उम्र में वैभव के चयन के बाद अब रिकॉर्ड टूट गया है। आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी का जलवा था, बेस्ट स्ट्राइकर, सबसे ज्यादा रन, सबसे अधिक छक्कों के साथ इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता। अगर डेब्यू किया तो सबसे बड़ा इतिहास रचेंगे वैभव, सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर बनने का मौका है। समस्तीपुर में वैभव के चयन पर जश्न, परिवार और पड़ोसियों में खुशी की लहर, आज तक से बात करते हुए वैभव के पिता ने खुशी का किया इजहार। कोचिंग संस्थान में तोड़फोड़ मामले में फैसल खान पर केस दर्ज, पटना सिविल कोर्ट पहुंचे वकील। पुलिस कार्रवाई से पहले सिविल कोर्ट खान के वकील ने जो है रुख किया और आगे की कार्रवाई के लिए कोर्ट का रास्ता अख्तियार करने का फैसला लिया। अग्रिम जमानत की अर्जी लगाने की संभावना भी कानूनी प्रक्रिया पर सबके नजर। सिविल कोर्ट में फैसल खान के वकील की मौजूदगी से हलचल बढ़ी, प्रतिद्वंदी संस्थानों पर फैसल खान का गंभीर आरोप था। अब फैसल खान ने प्रतिद्वंदी संस्थान पर हमले का आरोप लगाया था, प्रतिद्वंदी कोचिंग संस्थान ने पब्लिसिटी का आरोप लगाया था। बिहार में एमएलसी चुनाव पर गरमाई सियासत, 10 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होगा। बिहार एमएलसी चुनावों के लिए एलपीजी रामविलास ने घोषित किया अपना उम्मीदवार, अशरफ अंसारी को एमएलसी का प्रत्याशी बनाकर चुनावी समीकरण साधने की कोशिश। एनडीए ने 8 उम्मीदवारों की सूची जारी की, बीजेपी और जेडीयू के नाम शामिल है। अब तक एनडीए के 9 उम्मीदवार घोषित, टिकट बंटवारे पर सियासी हलचल। बिहार एमएलसी चुनाव को लेकर सियासी समीकरण तेज, पार्टियों में रणनीति का दौर जारी। लालू परिवार की सुरक्षा पर सियासी हलचल, लालू राबड़ी समेत पूरे परिवार को मिल रही सुरक्षा में बड़ा फेरबदल। जेड प्लस सुरक्षा हटने के बाद लालू राबड़ी ने वापस की अपनी सुरक्षा, सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों को हटाया गया। बीते दिन गुरुवार को बिहार सरकार ने सुरक्षा हटाने का आदेश जारी किया, लालू राबड़ी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को प्रदान की गई वाई श्रेणी की सुरक्षा हटाई गई। लालू राबड़ी के बाद तेजस्वी यादव का बड़ा कदम, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मिल रही वाई कैटेगरी सिक्योरिटी वापस लौटाने का फैसला। सुरक्षा कटौती पर लालू राबड़ी की बेटी रोहिणी ने ट्वीट करके बिहार सरकार पर बोला हमला, कहा कि दिखावे की सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन, समर्थकों ने राजनीतिक व्यंग आंदोलन के तहत किया प्रोटेस्ट। सीजीपी संस्थापक अभिजीत हाथ में अंबेडकर की किताब लेकर दिल्ली में नीट और पेपर लीक के खिलाफ प्रेस करते दिखे। जीडीपी विकास दर में इजाफे के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा, कहा कि ताजा आंकड़ा बता रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत। राहुल ने बोला था आर्थिक सुनामी आने वाली है। अमेरिका से वाणिज्य समझौते पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले महीने तक लागू हो सकता है पहला चरण, भारत आ सकता है अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल। अंडमान निकोबार में आईएनएस बांज को लेकर राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, कहा कि मोदी सरकार ने नौसेना की अनसुनी की है और नहीं किया आईएनएस बांज का विस्तार। अमेरिका ईरान तनाव के बीच में कुवैत पर ईरान का हवाई हमला, ईरान ने कुवैत पर बरसाई जमकर मिसाइलें। मिसाइल और ड्रोन हमलों को कुवैती एयर डिफेंस ने इंटरसेप्ट किया और हमलों के बाद से कुवैत गूंजता हुआ सुनाई दिया। कुवैती सेना ने हमलों के बाद से स्थानीय लोगों के लिए आदेश किए जारी, नागरिकों से सतर्क रहने की है अपील। ईरानी हमलों के बाद से सेंटकॉम का दावा है ईरानी मिसाइल हमले नाकाम हुए, अमेरिकी सेना की जवाबी कार्रवाई जारी। ईरानी हमलों का अमेरिकी एयर डिफेंस ने कुवैत के आसमान में रोका, कुवैत बहरीन की ओर से मिसाइलें इंटरसेप्ट हुई हैं। विपक्ष पर पीएम मोदी का ताबड़तोड़ प्रहार, सूरत के एक कार्यक्रम में कहा कि आत्मनिर्भर अभियान का मजाक उड़ाते हैं देश के कुछ निराशावादी लोग। पीएम मोदी ने वैश्विक संकट का किया जिक्र, कहा कि ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भरता जरूरी, पिछले 12 सालों में देश ने जो क्षमता बढ़ाई वो बेहद अहम। कांग्रेस पर भड़के पीएम मोदी का बयान, कहा कि देश में अराजकता फैला रही है, कांग्रेस ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रखा। दमन को पीएम मोदी की बड़ी सौगात, 2970 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। दमन में किया नमो एयरपोर्ट टर्मिनल और नमो अस्पताल का उद्घाटन, कहा कि विकास के नए दौर की शुरुआत। बागी नेता ऋतुपर्ण बैनर्जी को बंगाल विधानसभा का नेता विपक्ष बनाए जाने के खिलाफ सोमवार को हाईकोर्ट का रुख करेंगे ममता बैनर्जी, स्पीकर के फैसले को दी जाएगी चुनौती। बैठक में ममता ने टीएमसी की सभी कमिटीज का पुनर्गठन किया, सांसद अभिषेक बैनर्जी बने रहेंगे महासचिव, डेरेक ओब्रायन और डोला सेन संयुक्त सचिव। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात, तस्वीर आई सामने। एनआईए ने पूर्व टीएमसी विधायक शौकत को किया गिरफ्तार, कोलकाता के पास भागने की कोशिश के दौरान दबोचा गया। बंगाल के बैरकपुर शहर में युवा तृणमूल कांग्रेस कार्यालय पर बीजेपी ने किया कब्जा, जमकर की तोड़फोड़। दुनिया में उथल पुथल के बीच में भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी खबर, वित्त वर्ष 2026 में जीडीपी विकास दर अनुमान 7.7% की वृद्धि। देश की जीडीपी विकास दर में बढ़ोतरी पर पीएम मोदी का पोस्ट, लिखा कि भारत के विकास रफ्तार मजबूत, युवाओं के लिए आगे बढ़ने के अवसर। जीडीपी विकास दर में इजाफे के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा, कहा कि ताजा आंकड़ा बता रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत। राहुल ने कहा था कि आ रही है सुनामी। अमेरिका से वाणिज्य समझौते पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले महीने तक लागू हो सकता है पहला चरण, भारत अब आ सकता है अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल। अंडमान निकोबार में आईएनएस बांज को लेकर राहुल गांधी का हमला, कहा कि मोदी सरकार ने नौसेना की अनसुनी की और आईएनएस बांज का विस्तार नहीं किया। बिजनौर में पत्नी ने पत्नी की गर्दन पर चाकू से किया हमला, जंगल में घटना को दिया गया अंजाम। शिवपुरी में एक तरफा प्यार में संगी युवक ने नाबालिग को पहले कुल्हाड़ी मारी फिर गले में रस्सी बांधकर लटका दिया। भावनगर में कार में अचानक भीषण आग, बाल बाल बच्चे कार मालिक की जान। इंदौर में ईवी शोरूम में लगी भीषण आग, निवासियों को सीढ़ी और रस्सियों से किया गया रेस्क्यू। लखनऊ एयरपोर्ट पर लगभग 10 करोड़ की ड्रग्स बरामद, बैंकॉक से मस्कट होते हुए लखनऊ पहुंचे यात्री से 13 पैकेट ड्रग्स बरामद। समस्तीपुर के मऊ बाजार में दुकान विवाद में बवाल, पथराव और हवाई फायरिंग से मची अफरा तफरी। दुकान खाली कराने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, पिस्टल लहराकर किए गए कई राउंड फायर। समस्तीपुर में पथराव और फायरिंग से दहला इलाका, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को किया नियंत्रित। बाराबंकी में बुलडोजर एक्शन, प्रशासन ने 36 अवैध मकान गिराए। फरीदकोट में एक प्लास्टिक के गोदाम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। पंजाब के पटियाला में पावरकॉम हेड ऑफिस के सामने प्रदर्शन और यहां पर आरडीआई पास बेरोजगार नौजवानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आईटीआई पास स्टूडेंट्स और ये डिग्रीधारी बेरोजगार युवा कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे और इनको उठाने के लिए प्रशासन की मदद से पहले बातचीत की कोशिश की लेकिन वो बेनतीजा रही। कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने युवाओं से की मुलाकात, कहा कि सरकार तो युवाओं की आवाज दबाने का कर रही है काम। दिल्ली के पुष्प विहार में पुलिस मुठभेड़, रंगदारी के आरोपियों पर कार्रवाई, 2 इसमें घायल हैं जबकि 3 बदमाश गिरफ्तार। आजमगढ़ में नाबालिग बच्चे के साथ बुरी तरह मारपीट, पुलिस ने 3 लोगों पर केस किया दर्ज। कानपुर में कोचिंग संचालक ने 18 साल पुराने दोस्त की हत्या कर दी, पुलिस कमिश्नर ने सीसीटीवी में बुर्का पहने शख्स का खुलासा किया। गोरखपुर में पिता ने 3 बच्चों को दही में जहर दे दिया, इसमें 2 की मौत, 1 की जान बच गई। फिरोजाबाद में सड़क पर कार का दरवाजा खोलना पड़ा जानलेवा, बाइक सवार ससुर की मौत, दामाद गंभीर रूप से घायल। मनाली में विदेशी महिला पर्यटक से अभद्रता का वीडियो वायरल, एसडीएम ने जांच के दिया आदेश। बक्सर के इटाढ़ी गुमटी रेलवे क्रॉसिंग पर 26 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बना हुआ ओवर ब्रिज का पिलर क्षतिग्रस्त, उद्घाटन के 96 घंटे भी टिक नहीं सका पुल। केदारनाथ धाम में बारिश और ठंड से दिक्कतें भी, लेकिन भक्तों की आस्था भारी है और मंदिर में भक्तों का लंबी कतार और तांता दिख रहा है। केदारनाथ धाम में पल पल बदल रहे मौसम, दर्शन करने वाले यात्रियों का आंकड़ा 11 लाख के पार। पहाड़ों पर लगातार मौसम खराब, प्रशासन चौकस है, रोज तकरीबन 20,000 से ज्यादा भक्त केदारनाथ पहुंच रहे हैं। बारिश और ठंड के बीच में यात्रियों की सुविधाओं को बरकरार रखने के लिए सरकारी कर्मचारी लगे, गर्मियों की छुट्टियों की वजह से भीड़ बढ़ रही है। जम्मू में क्षेत्रीय मौसम विभाग का उद्घाटन, जम्मू कश्मीर लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के सटीक मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन में मिलेगी मदद। दिल्ली में गुरुवार की भीषण आंधी के बाद से तापमान में गिरावट बरकरार, शुक्रवार को अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री दर्ज और 1-2 दिन में राहत का अनुमान है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी से तापमान में गिरावट, कड़ाके की ठंड के बावजूद मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। केरल के एर्नाकुलम में मानसून की भारी बारिश है, शहर में लोगों को जगह जगह बड़ी परेशानी हुई है। काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े की फिल्म दी इंडिया स्टोरी का नया टीजर हुआ रिलीज, खेती में जहरीले कीटनाशकों के दुरुपयोग जैसे गंभीर मुद्दे पर बनी फिल्म। एक बार फिर से बड़े पर्दे पर लौट रहे हैं लोकप्रिय एनिमेटेड फ्रेंचाइजी आइस एज और नई फिल्म आइस एज बॉइलिंग पॉइंट का टीजर और पोस्टर भी जारी। फिल्म भारत भाग्य विधाता का प्रमोट करने में जुटी हुई दिखी कंगना, देश के अलग अलग शहरों में जाकर प्रमोट कर रहे हैं। एक्टर जैकी श्रॉफ की वेडिंग एनिवर्सरी पर पत्नी आयशा श्रॉफ ने शेयर की अनसीन फोटोज, लिखा कि मेरी जिंदगी के सबसे बड़े सहारे। श्रद्धा कपूर और करण जौहर के बाद से एकता कपूर ने ज्वेलरी बिजनेस में रखा कदम, लैब ग्रोन डायमंड ब्रांड एकत्रा ज्वेल्स के साथ जुड़ी हैं। दुनिया में उथल पुथल के बीच में भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी खबर, वित्त वर्ष 2026 में जीडीपी विकास दर अनुमान से ज्यादा 7.7%। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने सभी 6 सदस्यों ने रेपो रेट को 5.25% पर रखा बरकरार और एमपीसी ने पॉलिसी स्टांस को भी न्यूट्रल रखने का फैसला किया। इंडिगो ने हांगकांग शंघाई समेत 6 इंटरनेशनल रूट्स पर फ्लाइट्स को अस्थायी तौर पर बंद किया, बढ़ती लागत और कम मांग के लिए इस फैसले को लिया गया, यात्रियों को अब महंगे टिकट खरीदने पड़ सकते हैं। हर घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बिक्री पर कंपनीज के अंडर रिकवरी बढ़कर अब लगभग 700 रुपए पहुंची है और पिछले महीने कंपनीज को एक सिलेंडर की बिक्री पर 650 रुपए का घाटा था। देश के कई राज्यों में एटीएम से नकदी कम होने पर अब बैंकर्स एसोसिएशन का अलर्ट किया गया और डीबीटी पाने वाले ग्रामीण और छोटे शहरों के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और अब बात करते हैं लालू राबड़ी की सुरक्षा को लेकर मचे हुए बवाल की, बिहार में संग्राम से छिड़ा हुआ है। एक दिन पहले लालू राबड़ी की जेड प्लस की सिक्योरिटी घटाई गई तो फिर आज लालू राबड़ी ने अपनी पूरी सुरक्षा ही लौटा दी है। वहीं कुछ देर बाद तेजस्वी यादव ने भी अपनी सुरक्षा उसके बाद वापस कर दी। आरजेडी दरअसल आरोप लगा रही है कि ये जानबूझकर लालू राबड़ी फैमिली को, परिवार की सुरक्षा को ताक पर रखा जा रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि सब कुछ तो नियमों के मुताबिक हो रहा है। इस बीच में बीजेपी आरजेडी आमने सामने है और इस पर सियासत गर्मा गई है।
2: आवास के बाहर पसरा सन्नाटा और कोई सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं। एक बार तो यकीन करना भी मुश्किल है कि ये पटना में पूर्व सीएम राबड़ी देवी का आवास है। इसी आवास में लालू यादव और राबड़ी देवी रहते हैं और अब यहाँ कोई सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं है, क्योंकि एक दिन पहले वाई प्लस सिक्योरिटी हटाए जाने के बाद अब लालू राबड़ी ने नाराजगी जताते हुए पूरी सुरक्षा वापस कर दी है।
3: तो बंगले को लेकर विवाद चल ही रहा था, लेकिन अब नया विवाद जो पैदा हो गया है वो राबड़ी देवी और लालू परिवार को जो सुरक्षा दी जाती है उसको लेकर जो है ये ताजा विवाद जो है वो शुरू हो गया है। और कल से हम देख रहे हैं जब सरकार का एक नया फरमान आया और लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को जो जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई थी उस सुरक्षा को सरकार ने वापस लिया और केवल बिहार पुलिस की सुरक्षा जो स्पेशल पुलिस होती है उसकी सुरक्षा प्रदान की। उसके बाद से ही लालू परिवार राबड़ी देवी जो है वो इसको लेकर काफी बिफर गए और उसके बाद कल देर रात से हम देख रहे हैं कि 10 सर्कुलर रोड आवास जो कि राबड़ी देवी और उनका परिवार यहाँ पिछले 20 सालों से रह रहा है यहाँ कल रात से ही एक भी सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं है क्योंकि परिवार ने अपनी सभी सुरक्षा जो है वो वापस लौटा दी है। जाहिर सी बात है जिस तरीके से सरकार ने सुरक्षा में कटौती की है उसको लेकर राबड़ी देवी लालू का परिवार जो है वो काफी नाराज है।
2: अब लालू और राबड़ी के सुरक्षा वापस करने पर सियासत शुरू हो गई है। इस बीच तेजस्वी यादव ने भी बड़ा फैसला लिया, उन्होंने अपनी सुरक्षा लौटा दी।
4: पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी ने लिया है साहसिक फैसला है। दोनों जितने भी सुरक्षा आदरणीय लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी के लिए लगाई गई थी सबको वापस कर दिया, सबको बाहर निकाल दिया। क्योंकि कल ही राज्य की सरकार ने अपने आका के निर्देश पर आदरणीय लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी सहित पूरे लालू परिवार की सुरक्षा में व्यापक और घोर कटौती कर दी। शासन अपमानित करना चाहती है लालू प्रसाद जी और उनके परिवार को, उनके परिजनों को। किसी का अपमानित करने से कोई अपमानित तो नहीं हो जाता।
2: दरअसल तेजस्वी यादव को वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। समीक्षा में तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं किया गया था, लेकिन लालू और राबड़ी की सुरक्षा घटाए जाने के विरोध में अब तेजस्वी यादव ने ये बड़ा फैसला लिया है।
3: पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा में भारी कटौती की गई बिहार सरकार के द्वारा, तो इसके विरोध में राबड़ी देवी और लालू प्रसाद ने जो नई सुरक्षा उनको दी गई थी उसको भी लेने से इनकार कर दिया है और जो भी मौजूदा सुरक्षा उनके पास कल तक थी सभी प्रकार की सुरक्षा को वापस कर दिया है। अब इसी को लेकर राबड़ी देवी लालू प्रसाद के बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी जो उनको वाई प्लस श्रेणी की जो सुरक्षा मिली हुई थी उसको भी वापस कर दिया है। हालांकि बिहार सरकार ने तेजस्वी यादव के सुरक्षा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया था, पहले से ही नेता प्रतिपक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव को वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिल रही थी और जो नई व्यवस्था थी उसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया था। बदलाव केवल राबड़ी देवी और लालू प्रसाद के सुरक्षा में किया गया था जहां उनके जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा जो है वो वापस ले ली गई थी। लेकिन इस फैसले से नाराज होकर तेजस्वी यादव ने जो उनको भी जो तमाम सुरक्षा दी गई थी वाई प्लस श्रेणी की उसको भी वापस कर दिया है। और
2: बड़ी बात यह है कि भले ही लालू राबड़ी की जेड प्लस सिक्योरिटी वापस ली गई थी लेकिन नई सुरक्षा व्यवस्था के तहत दोनों नेताओं के लिए बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की सुरक्षा का इंतजाम किया गया था जिसके तहत 2 से 8 जवान सुरक्षा में तैनात रहने का निर्देश था। इसके साथ बुलेट प्रूफ कार, जिला बल से एस्कॉर्ट की नियुक्ति का निर्देश था। लेकिन अब लालू राबड़ी और तेजस्वी के पूरी तरह सुरक्षा वापस करने के बाद सियासत गर्मा गई है।
5: ये सुरक्षा उनको क्यों दिया गया था? कभी मुख्यमंत्री रहे, कभी केंद्रीय मंत्री रहे, जब ये संवैधानिक व्यवस्था, ये नहीं है कि हथुआ मामा का बेटा है तो सब दिन वही रहेगा। जनता जिसको चुन करके देती है सत्ता में और जो कानून कहता है वो सुरक्षा मिलता।
2: सुरक्षा कटौती का ये विवाद ऐसे समय शुरू हुआ है जब लालू परिवार और राज्य सरकार के बीच सरकारी आवास को लेकर विवाद अपने चरम पर है और अब सुरक्षा का मुद्दा भी जुड़ गया है जिससे सियासी संग्राम बढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: और इस बीच में बड़ी खबर लखनऊ से आपको देते हैं। यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने गाजीपुर एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं। संजय निषाद ने पुलिस पर ही मनमानी का आरोप लगाया, कहा कि कमलेश निषाद कोई दुर्दांत अपराधी नहीं था, घर से उठाकर उसे मारा। संजय निषाद ने कहा कि हमारा वोट खराब करने की साजिश हो रही है, जो मारा गया वो मुख्य आरोपी नहीं था, पुलिस ने उसे मार डाला। ये संजय निषाद ही सरकार पर आरोप लगा रहे हैं और अंग्रेजों की तरह काम कर रही है पुलिस। संजय निषाद ने बेहद गंभीर आरोप लगाए। और इस पूरे एनकाउंटर पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए और कहा कि हमारा वोट खराब करने की कोशिश है।
6: जब उसके खिलाफ आज तक का कोई आपराधिक मुकदमा न्यायालय ने कभी सजा नहीं दी, न तो कभी चोरी में, न तो डकैती में, न तो इस तरीके के, फिर एक 302 का 307 का मुकदमा उसके ऊपर है और किसी ने कहा अपहरण का मुकदमा लिखा रखा है, जैसे एसपी ने कहा। तो इतना बड़ा तो दुर्दांत अपराधी नहीं है कि जिससे आप इनकाउंटर, अब मुख्य आरोपी उसको बनाया भी नहीं गया, मुख्य आरोपी कोई और है, मुख्य आरोपी को तो पकड़ने दूर है, वो कुछ छुएंगे नहीं। आज जो साधारण है, जो वोट अभी गाजीपुर हारे हैं, अब गाजीपुर में बिंदुओं की संख्या बहुत अधिक है, जौनपुर में बिंदुओं की संख्या अधिक है, प्रधानमंत्री के चारों तरफ के हम सारी सीटें हार गए हैं, ये अधिकारी क्या कर रहे हैं? ये फिर इसका मतलब इनका एलआई क्या कर रहा था? कैसे समाज के लोगों ने आंदोलन किया बताए क्यों नहीं, क्यों नहीं फोर्स लगाया इन लोगों ने? खाली जब आंदोलन हो गया तो कहेंगे आप रासुका लगा देंगे, ये तो डिटेक्टरशिप हो गई।
0: तो डिक्टेटरशिप के जैसे बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं और योगी सरकार में मंत्री हैं, एनडीए के सहयोगी हैं। दिल्ली में आज कांग्रेस जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला है। दिल्ली के जंतर मंतर पर ये बड़ी संख्या में जेन जी एकत्रित हुए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की उन्होंने इस्तीफे की मांग की है। नीट पेपर लीक, सीबीआई मार्किंग सिस्टम समेत तमाम शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर यह आंदोलन करते हुए दिखाई दिए हैं और अब ग्राउंड पर भी कांग्रेस जनता पार्टी के बैनर तले लोग इकट्ठा होते हुए दिखाई दिए।
7: सोशल मीडिया पर व्यंग और मीम्स के तौर पर शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी अब दिल्ली के जंतर मंतर आ पहुंचा है। सुबह सुबह अभिजीत दीप के अमेरिका से सीधे आईजीआई एयरपोर्ट पे लैंड किया और उसके बाद जंतर मंतर पहुंचा। पहले भीड़ कम थी, ना मंच था, ना बैनर था, ना कोई ऑडियो सिस्टम, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया भीड़ की संख्या बढ़ती गई, स्टेज भी लगा, मंच भी लगा और हाथ में तिरंगा लिए युवा यहां पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल युवा केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, अभिजीत दीप के भाषण का इंतजार कर रहे हैं। वीडियो सहयोगी अंकित सिंह के साथ ममित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।
0: और हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
9: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम एंड दैट्स द साउंड ऑफ अ फ्रॉड अलर्ट फ्रॉम वेल्स फार्गो फ्लैगिंग अ चार्ज फॉर अ प्राइसी रेस्टोरेंट इन पेरिस। कंसीडरिंग क्लेयर इजंट इन पेरिस राइट नाउ, दैट सीम्ड ऑड टू द बैंक एंड टू क्लेयर। Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
10: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
11: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
12: So good.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आगे आगे
2: उधर
1: उधर गया। करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
5: In association with
6: cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
7: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
8: Samakool Cooler, hawa aisi chhode, puri family ko thandak se jode. Samakool Cooler, life banaye wonderful.
5: Hint, bade aaram se. Vimal, bolo zuba kesri.
9: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
10: मैं इस वक्त उसी बिल्डिंग के बाहर हूँ जहाँ पर ये आग लगी।
11: मैं आपको टॉप एंगल से एक तस्वीर दिखाता हूँ और ये तस्वीर जो पूरा मंजर है उसको बयान करने के लिए काफी है।
12: यहाँ पर दूसरा एग्जिट गेट नहीं है तो किस तरीके से सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया गया था।
13: ये तस्वीरें बताती है कि किस तरीके से लापरवाही जो है वो पूरे इस इलाके में जो है वो चल रही है।
11: 20 लोगों की जान चली गई। और देखिए जब तस्वीर दिखाई जाती है एक एक करके तो इस तरह से दिल्ली पुलिस की टीम आती है और कहती है कि आप यहाँ से नहीं दिखाएंगे।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akaje, the number one Korean skincare brand, now in India.
3: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
0: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akaje, the number one Korean skincare brand, now in India.

15 साल के सिक्सर किंग सूर्यवंशी की धमाकेदार एंट्री, आयरलैंड इंग्लैंड दौरे में मिली जगह T20 फॉर्मेट में। नए कैप्टन बने श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव को जगह नहीं मिली। सबसे बड़े ग्लोबल मंच से आज तक रूसी राष्ट्रपति पुतिन का वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। कहा भारत कभी दबाव में नहीं आता, राष्ट्रहित में लेता है फैसले, पीएम मोदी की तारीफ की। पश्चिम एशिया संकट के बीच पीएम मोदी की बड़ी बैठक, आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ मंथन, देशवासियों का जीवन आसान बनाने और आर्थिक दर को ले बढ़ाने का चर्चा। गिरफ्तारी के डर से सामने नहीं आ रहे पटना में कोचिंग चलाने वाले फैसल खान, वकील ने कहा अदालत में देंगे अग्रिम जमानत की अर्जी, सिविल कोर्ट के बाहर इंतजार ही करती रही पुलिस। समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी का बड़ा हमला, कहा 2017 से पहले गुंडों के आगे नतमस्तक थी सरकार, राम का नाम लेने पर चलती थी गोलियां, अखिलेश का पलटवार, यूपी में महाजंगल राज।

0: बड़ी खबर संभल से आपको देते हैं, जहां सरकारी भूमि पर बनी हुई मुस्तफा खातरी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। ये संभल से एक और बड़ी खबर, एक और संभल से बुलडोजर एक्शन की तस्वीर, जहां मुस्तफा कादरी मस्जिद पर ये बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ है। 4 बुलडोजर इस मस्जिद को ध्वस्त करने की कार्रवाई में लगे हुए हैं और ये जो मस्जिद बनी वो सरकारी जमीन पर बनी, यानी कि अवैध तरीके से बनाई गई। और आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका निर्माण देखेंगे, उसको अब एक एक करके तोड़ा जा रहा है। JCB पहुंचे हैं संभल में, ये मुस्तफा कादरी मस्जिद है, उस पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है, लेकिन सरकारी भूमि पर इसको बना दिया गया। प्रशासन की तरफ से नोटिसेस भी दिए गए और उसके बाद अब अंततः प्रशासन के बुलडोजर इसको तोड़ने के लिए पहुंचा है।
1: संभल के नखासा थाना इलाके के कसेरुआ गांव में स्थित मुस्तफा कादरी मस्जिद को ध्वस्त करने की कार्रवाई इस वक्त शुरू हो चुकी है और आप मेरे पीछे की तस्वीरों में आप जो देख सकते हैं कि किस तरीके से बुलडोजर एक्शन के जरिए जो कि सरकारी जमीन पर बनी हुई मस्जिद है उसको यहां पर ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई की जा रही है। 2-2 बुलडोजर इस पूरी मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए फिलहाल यहाँ पर जो लगाए गए हैं, पूरा पुलिस फोर्स गाँव में तैनात किया गया है। और ये देखा जाए तो ये 120 वर्ग मीटर जगह में बनी हुई ये पूरी मस्जिद थी, जिसको हटाने के लिए जनवरी महीने में जो है लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर ये पूरी कार्रवाई शुरू की गई थी और उसके बाद इस मस्जिद के वक्फ बोर्ड में भी रजिस्टर्ड होने का मामला सामने आया था, जिसके बाद इस मस्जिद कमेटी से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ FIR कराई गई। लेकिन आज अब इस पूरे मस्जिद पर धारा 67 के तहत जो कार्रवाई यहां पर जो की जा रही है और आप यहां जो देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से जो पूरा बुलडोजर है वो इस पूरे मस्जिद के स्ट्रक्चर को ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई कर रहा है। और एहतियातन अगर जो देखा जाए तो देखिए छतों पर आपको जो पुलिसकर्मी आपको जो तैनात नजर आएंगे, यहां अगर आपको जो देखा जाए तो देखिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो फिलहाल आपको जो है ये वो पुलिसकर्मियों की आपको जो है लगातार छतों पर जो तैनाती दिखाई देगी, जो है जहां लगातार सब इंस्पेक्टर के साथ ही जो पुलिसकर्मी है जो सिपाही है उनको फिलहाल छतों पर तैनात किया गया है। और इसी के साथ आप जो नीचे देखेंगे तो देखिए आपको यहाँ विशेष तौर पर CO कुलदीप सिंह, नायब तहसीलदार दीपक जुड़ैल के साथ ही जो तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह है वो पूरे गाँव में जो है इस वक्त मौके पर मौजूद है, DM और SP की भी मौजूदगी। और देखिए आप सामने देखिए तस्वीरों में देखेंगे तो देखिए तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह आपको यहाँ इस पूरे इलाके में लगातार इस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए दिखाई देंगे। और इसी तरह से देखिए आसपास का जो पूरा इलाका है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया। सामने आप देखेंगे तो देखिए बुलडोजर के ठीक बराबर में देखिए भारी संख्या में आपको पुलिस फोर्स जो है यहाँ पर जो तैनात जो नजर आएगा, जो कि आपको तस्वीरों में नजर आएगा। और इसी तरह से जो पूरे गांव का अलग अलग इलाके हैं वहां पर इस तरीके से पूरे पुलिस फोर्स को तैनात करके पूरे गाँव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर विशेष तौर पर निगरानी की जा रही है जिससे कि कोई भड़काऊ पोस्ट जो है वो ना डाली जाए सोशल मीडिया पर। वहीं इसी के साथ जो आसपास के इलाके हैं, आसपास के जो गांव हैं वहां से भी इस पूरे गांव की तरफ आने वाले रास्तों पर पुलिस को फोर्स को जो तैनात किया गया है। और इसी के साथ विशेष तौर पर जो निगरानी है वो पूरे आसपास के इलाके में पुलिस फोर्स की जा रही है। लेकिन लगातार आप यहाँ जो देख सकते हैं देखिए जो पूरा पुलिस फोर्स की मौजूदगी में जो पूरे ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई है वो 2-2 बुलडोजर के जरिए इस पूरी मुस्तफा कादरी मस्जिद पर की जा रही है, जबकि धारा 67 के तहत अब इस पूरी मस्जिद को यहां पर ध्वस्त किया जा रहा है। अभिनव माथुर, संभल आज तक।
0: और अब बात करेंगे पटना वाले फैसल खान उर्फ खान सर के, जो कि सरेंडर नहीं करेंगे। अब फैसल खान के वकील की ओर से कहा गया है कि भाई फैसल खान सरेंडर नहीं करेंगे, वो कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी देंगे। फैसल खान के वकीलों का दावा है कि फैसल खान के गार्ड्स ने आत्म सुरक्षा में गोलियां चलाई थी, किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से या दहशत फैलाने के इरादे से फायरिंग नहीं की गई थी, जबकि यही आरोप वो ज्ञानबिंदु पर लगा रहे थे कि उन्होंने फायरिंग की। ये फायरिंग सबसे पहले फैसल खान ने सुनी और उन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा। बाद में तो चीजें पलटती रहीं, खुद अपने बयानों से पलटते रहे और जब वीडियो सामने आ गया तो सारी चीजें खुलकर सामने आ गई। फैसल खान पर जब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है तो सरेंडर नहीं कर रहे हैं, फरार इस समय है, एक शिक्षा होने नाते उनको सबसे पहले पुलिस के सामने जाना चाहिए था। मैं तो जांच में आपका सहयोग करूंगा, लेकिन फैसल खान जांच में भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। अब फैसल खान के वकील कह रहे हैं कि खान सर को फंसाने की साजिश है, लेकिन ज्ञानबिंदु तो क्लियर कह रहे हैं, उनके स्टूडेंट्स क्लियर कह रहे हैं कि फंसाने का तो प्रयास सीधा ज्ञानबिंदु को था।
2: पटना की कोचिंग के बाहर फायरिंग हुई, वीडियो पर विवाद बढ़ा, ये विवाद YouTube वाले खान सर के लिए सबसे बड़ा संकट बन गया। एक दिन पहले जब आर्म्स एक्ट में फैजल खान के खिलाफ केस दर्ज हुआ, तब से ही अटकलें लग रही थी कि कभी भी पुलिस फैजल खान को गिरफ्तार कर सकती है, जल्द ही फैजल खान पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। लिहाजा गिरफ्तारी से बचने के लिए फैजल खान के वकील कोर्ट पहुंचे।
3: फैजल खान जो है एक बार कोर्ट पहुंचकर अग्रिम जमानत की याचिका भी डालना चाहते हैं। वो चाह रहे हैं कि कोई वकील के जरिए अग्रिम जमानत की याचिका डाली जाए और उस पर एक बार बहस हो, और अगर अग्रिम जमानत उन्हें मिल जाए तो कुछ उनको राहत मिलेगी। लेकिन फिलहाल मुश्किलें फैजल खान की जो है वो कम नहीं हो रही है, और इस वक्त सिविल कोर्ट में भी जो है काफी हलचल तेज है। और अगर फैजल खान अगर यहां आते हैं सरेंडर करने के लिए, जिस तरीके की संभावना जताई जा रही है, तो उसको लेकर यहां पुलिस भी मौजूद है, ताकि अगर वो सरेंडर करने के लिए पहुंचते हैं तो उससे पहले उनको गिरफ्तार किया जा सके।
2: पटना में फैजल खान के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद पटना में हलचल बढ़ी हुई थी। इस तस्वीरों को देखिए, पूरी रात फैजल खान के समर्थक छात्र कोचिंग सेंटर के बाहर डटे रहे। तनाव को देखते हुए पुलिस की गश्त जारी रही। पीसीआर वैन में तैनात पुलिस छात्रों को समझाती दिखी। एक दिन पहले भी पटना पुलिस की ओर से एडवाइजरी जारी की गई थी कि छात्र किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। फैजल खान पर केस दर्ज होने के बाद पटना में गहमा गहमी बढ़ी हुई है। शुक्रवार शाम ही केएसजी कोचिंग सेंटर के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी। इस बीच वो तस्वीर भी सामने आई थी।
4: वो अब भी यहाँ पर खड़े हैं। खान सर का ये कोचिंग है, सामने ये कोचिंग देखिए, खान सर का ये कोचिंग है, और कोचिंग के गेट पर जो है भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए किस तरीके से जो छात्र हैं, देखिए किस तरह से सड़क पर मौजूद हैं, और सड़क के दूसरे किनारे एक लाइन से हजारों छात्र जो हैं वो यहाँ पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं खान सर के, ये कह सकते हैं कि समर्थन में ये जो छात्र हैं वो यहाँ पे खड़े हैं।
2: इस बीच वो तस्वीर भी सामने आई थी जब वकील फैजल खान के कोचिंग सेंटर पहुंचे थे। उसके बाद फैजल खान अपनी कार से कोचिंग से निकल गए। पटना में खान सर और ज्ञान बिंदु के शिक्षक रोशन आनंद के बीच विवाद अब बड़ा मुद्दा बन गया है। कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है। फैजल खान की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। पटना से शशिभूषण और अनिकेत के साथ आज तक ब्यूरो।
0: सवाल तो बिहार पुलिस पर भी खड़े हो रहे हैं कि बिहार पुलिस क्यों नहीं अब तक उनको पकड़ पा रहे हैं। लेकिन अब आपको आखिर बताते हैं कि कैसे कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग के बाद फैजल खान की मुश्किलें बढ़ती चली गईं।

0: कोचिंग की दुनिया में खान सर इतना बड़ा नाम बन चुके हैं कि अब छात्रों के बीच लेक्चर देने के लिए वो भारी सुरक्षा बलों और हथियारबंद बॉडीगार्ड्स के साथ रेड कारपेट पर चलते हुए ग्रैंड एंट्री लेते हैं। लेकिन अब खान सर का यही जलवा उनके लिए मुसीबत का सबब बन गया है। 2 जून को खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुए गोलीकांड में वो बुरी तरह से फंस चुके हैं। खान सर पर पटना के कदमकुआं थाने में हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। जी हां, खान सर के गार्ड्स ने पुलिस को बयान दिया है कि उन्होंने हमें कहा तुम गोली चलाओ, बाकी हम देख लेंगे। इसी आधार पर पुलिस ने खान सर के खिलाफ FIR दर्ज की है। BNS की धारा 109 के तहत ये केस दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई जारी है, हर पहलू की पड़ताल हो रही है। इस बीच आपको दिखाते हैं कैसे वीडियो दर वीडियो फैजल खान की मुश्किलें बढ़ती गई। सबसे पहले बात उस वीडियो की जिसे लेकर पूरा बवाल मचा। पहले खान सर की कोचिंग पर फायरिंग की बात सामने आई, लेकिन जब इस वीडियो में गार्ड्स फायरिंग करते दिखे तो पूरी की पूरी कहानी ही बदल गई। फैजल खान ने बयान दिया, सफाई भी दी, लेकिन मुश्किल कम नहीं हुई। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस का एक्शन शुरू हो गया, फैजल खान पर केस दर्ज हुआ। इस बीच एक दिन पहले फैजल खान के कोचिंग के अंदर का वीडियो सामने आया था, जिसमें फैजल खान फायरिंग का वीडियो दिखाते हुए छात्रों को उकसाते नजर आ रहे थे। खान सर मार्कर से स्क्रीन पर आरोपियों को घेर घेर कर दिखा रहे हैं और छात्रों को बता रहे हैं कि देखिए, इसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। खान सर उसका नाम विकास बताते हैं और उसकी पूरी पहचान भी बताते हैं। फिर खान सर हाथ में किताब लेकर विद्या की कसम खाते हैं और कहते हैं कि कोचिंग पर लगातार गोलियां चली थी और पूरी सच्चाई सामने नहीं लाई जा रही। तमाम वीडियो पर फैजल खान और घिर गए। पटना में गहमागहमी बढ़ी। तनाव को देखते हुए शुक्रवार शाम ही KSG कोचिंग सेंटर के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी। इस बीच वो तस्वीर भी सामने आई थी जब वकील फैजल खान की कोचिंग पहुंचे थे। उसके बाद फैजल खान कार से अपनी कोचिंग से निकल गए थे। माना जा रहा है कि केस दर्ज होने के बाद फैजल खान को गिरफ्तारी का डर सताने लगा था, जिसके बाद ही बचाव की कोशिश शुरू हो गई। फैजल खान और ज्ञान बिंदु के शिक्षक रोशन आनंद के बीच विवाद अब बड़ा मुद्दा बन गया है। कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। फैजल खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिख रही। पटना से शशिभूषण के साथ रोहित कुमार सिंह आज तक।
1: अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर यूपी में सियासी हलचल तेज हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोंडा पहुंचे और यहां पर जनसभा के दौरान समाजवादी पार्टी पर उन्होंने जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले राम का नाम लेना मुश्किल था।
2: अब वहां नहीं होने देंगे जो 2017 के पहले होता था। 17 के पहले मुझे याद है मुझे 2015-16 में इस गोंडा में भी दुर्गा पूजा के समय दंगा करने का प्रयास हुआ था। यहां भी दंगे हुए थे। मां दुर्गा की मूर्ति को विसर्जन नहीं करने दिया जाता था। रामलीलाओं के आयोजन में अड़चने डाली जाती थी। पर्व और त्योहार प्रारंभ होने के पहले, उत्सव प्रारंभ होने के पहले उपद्रव शुरू हो जाते थे। बेटी सुरक्षित नहीं, व्यापार

0: देश में कर्फ्यू रहता था, महीनों महीनों कर्फ्यू, असुरक्षा के वातावरण में न निवेश होता है न विकास होता है।
1: और इसी बीच में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी योगी पर पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, असफल मुख्यमंत्री काल में महाजंगल राज, अवैध खनन, कब्जा, हत्या, डकैती, बलात्कार। यह अखिलेश यादव का पलटवार रहा। इसी बीच में लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने गाजीपुर एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं। संजय निषाद ने पुलिस पर मनमानी का आरोप लगाया। संजय निषाद ने गंभीर सवाल खड़े किए, कहा कि कमलेश निषाद कोई दुर्दांत अपराधी नहीं था, उसे घर से उठाकर मारा गया। ये ध्यान देने वाली बात है, वो कह रहे हैं कि घर से उठाकर मारा है। संजय निषाद ने कहा कि हमारा वोट खराब करने की साजिश हो रही है, जो मारा गया वो मुख्य आरोपी नहीं था, पुलिस ने उसे मार डाला। पुलिस ने
2: जब उसके खिलाफ आज तक का कोई आपराधिक मुकदमा न्यायालय ने कभी सजा नहीं दी, न तो कभी चोरी में, न तो डकैती में, न तो इस तरीके के। फिर 1302 का 307 का मुकदमा उसके ऊपर है और किसी ने कहा अपहरण का मुकदमा लिखा रखा है, जैसे एसपी ने कहा। तो इतना बड़ा तो दुर्दांत अपराधी नहीं है कि जिससे आप इनकाउंटर, अब मुख्य आरोपी उसको बनाया भी नहीं गया, मुख्य आरोपी कोई और है, मुख्य आरोपी को तो पकड़ने दूर है, वो छुएंगे नहीं। आज जो साधारण है, जो वोट अभी गाजीपुर हारे हैं, अब गाजीपुर में बिंदुओं की संख्या बहुत अधिक है, जौनपुर में बिंदुओं की संख्या अधिक है, प्रधानमंत्री के चारों तरफ के हम सारी सीटें हार गए हैं। ये अधिकारी क्या कर रहे हैं, ये फिर इसके मतलब इनका एलआईयू क्या कर रहा था, कैसे समाज के लोगों ने आंदोलन किया, बताया क्यों नहीं फोर्स लगाया इन लोगों ने, खाली जब आंदोलन हो गया तो कहेंगे आप रासुका लगा देंगे, ये तो डिटेक्टरशिप हो गई।
1: तो ये बहुत गंभीर आरोप संजय निषाद की तरफ से लगाए गए हैं। और इसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी बड़ी खबर आपको देते हैं कि उन्होंने एक बैठक की है। वैश्विक उथल पुथल के बीच में पीएम मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की है। भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों की चर्चा की गई है। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए भी अलग अलग सुधारों पर विचार विमर्श किया गया है। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष में भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया गया है। तो पश्चिम एशिया संकट पर पीएम मोदी ने यह आर्थिक सलाहकार समिति के साथ चिंतन मंथन किया है। अब बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के बसीरहाट से आपको देते, जहां पर एक तालाब से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। बंगाल पुलिस एसटीएफ ने छापे मारकर इन हथियारों के जखीरों को बरामद किया है। आप बता दें कि तालाब के अंदर छुपाकर रखा गया था। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने खुद ये वीडियो शेयर किया है। उन्होंने कहा कि बंगाल में जब अब जो है अराजकता का दौर खत्म हुआ है, इन हथियारों के जरिए जनता में खौफ फैलाने का काम होता था, लेकिन अब बंगाल पुलिस ने इन्हें जब्त कर लिया है। हथियारों को निकालते हुए वीडियो उन्होंने खुद शेयर किया।
3: जमाटा खोल इम्तियाज, जमाटा खुले पहल ना, पूरा जमाटा खुले पहल।
1: लुधियाना रेलवे स्टेशन से इस वक्त की एक बड़ी खबर, दिल्ली से वैष्णो देवी जा रही कटरा स्पेशल ट्रेन बड़े हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गई है। ट्रेन जैसे ही स्टेशन से रवाना हुई, दो डिब्बों को जोड़ने वाली कपलिंग अचानक टूट ही गई और जोरदार आवाज के साथ स्लीपर कोच का टॉयलेट वाला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और दोनों ही डिब्बे अलग हो गए। तेज धमाके की आवाज सुनते ही यात्रियों में हड़कंप मचा, अफरा तफरी का माहौल रहा। गनीमत यह रही कि ट्रेन की रफ्तार उस समय कम थी, धीमी थी, जिससे कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ। रेलवे सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच चुके हैं, हादसे की जांच चल रही है। लेकिन यह हादसा फिर सवाल खड़े करता कि अगर ट्रेन स्पीड में रहती तो क्या होता, तब कितने लोगों की जान जाती। लेकिन यह बड़ा हादसा होते होते टल गया। पंजाब के फिरोजपुर से एक बड़ी खबर, जहां पर फाजिलका रोड पर बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 9 लोगों की जान चले गए, 13 लोग घायल भी है। फरीदकोट के मेडिकल कॉलेज में घायलों को रेफर किया गया है। फिरोजपुर फाजिलका रोड पर जंगा मोड़ के पास में महिंद्रा पिकअप और ट्राले में टक्कर हुई थी, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई। घायलों को फिलहाल अस्पताल ले जाया गया और कई लोगों को इलाज के लिए अब फरीदकोट रेफर किया गया है।
4: फिरोजपुर फाजिलका रोड के ऊपर गांव जंगावाला के पास एक बड़ा हादसा होता है जिसमें 9 लोगों की जो है वो मौत हो जाती है। इस वक्त हम फिरोजपुर के सिविल हॉस्पिटल में मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीरों में कि जिनके परिजन थे वो यहां पर मौजूद हैं। 9 लोग जो हैं जिनकी मृत्यु हो गई इस एक्सीडेंट में।

0: और 14 से 15 लोग इसमें गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ये लोग जलालाबाद से डेरा ब्यास की तरफ जा रहे थे, इनके घर में किसी की मौत हुई थी और उनके जो फूल थे वो परवाने के लिए ये लोग फिर अपने जलालाबाद से ब्यास के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में जब फिरोजपुर के पास गांव जंगावाला के पास जब पहुंचते हैं तो वहां पर बड़ा जो ट्राला होता है उसके साथ इनकी टक्कर हो जाती है और बड़ी दुर्घटना घटती है जिसमें 9 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें महिलाएं थी, बच्चे थे, उनकी भी मौत जो है इसमें हो गई है। और गंभीर रूप से जो लोग जख्मी हुए हैं उनको फिरोजपुर के सिविल अस्पताल से फरीदकोट मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया हुआ है। बड़ी ये घटना बताई जा रही है और यहाँ पर जो परिवार वाले हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि इसमें एक ही परिवार के ये सब लोग थे, आपस में रिश्तेदार थे, जो अपने जलालाबाद से डेरा ब्यास की ओर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ऐसी दुर्घटना घटती है।
1: और अब खबर गुजरात से। गुजरात के मोरबी में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। सड़क पर खड़े वाहन से एक तेज रफ्तार कार जान टकराई और इस सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, 2 लोग इसमें घायल भी हैं। सड़क हादसा हलवत के चराडबा के पास में हुआ है, जहां पर एक वाहन तेज रफ्तार से आया और ये जो गाड़ी थी वो टकरा गई। इस हादसे में जब हादसा हुआ उस समय उस गाड़ी में 7 लोग सवार थे। हादसा इतना भीषण था कि काफी दूर तक आवाज आई और कार के भी परखच्चे उड़ गए। दिल्ली के मालवीय नगर के होटल में लगी आग के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है और यह गिरफ्तार आरोपी उस होटल में कुक था। यह बड़ी खबर। जांच में यह बात सामने आई है कि कुक की लापरवाही इतने बड़े हादसे की वजह बनी, कारण बनी। इस मामले में पुलिस ने कुछ और लोगों को हिरासत में भी लिया है, लेकिन इस मामले में अब होटल के कुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली के ही नरेला से एक खबर है। इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। नरेला में बताया जा रहा है कि यह फैक्ट्री है और आप तस्वीरें देखेंगे, धुएं का गुबार और घना गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तक फैक्ट्री के अंदर किसी के फंसे होने की तो सूचना नहीं है, लेकिन आग की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की 4 गाड़ियां पहुंची। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। और बात यूपी के देवरिया की, जहां पर बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। कई क्षेत्रों में बिजली कटी तो आधी रात को बीजेपी विधायक शलभमणि त्रिपाठी पावर हाउस ही पहुंच गए, बिजली विभाग के अधिकारियों को हड़काया। विधायक ने कहा कि हमारे क्षेत्र की जनता अगर बिजली कटौती की वजह से सो नहीं पा रहे है तो फिर बिजली अधिकारी को हम चैन से कैसे सोने देंगे, नहीं सोने देंगे। और बिजली अफसरों के घरों के भी लाइट काटेंगे। और इस दौरान बिजली कटौती की शिकायत के लिए पावर हाउस के सरकारी नंबर पर लोग लगातार फोन कर रहे थे। कई फोन कॉल खुद विधायक ने उठाए।
2: कब से लाइट नहीं है, कितने बजे से? ठीक है, मैं शलभमणि त्रिपाठी बोल रहा हूँ, विधायक देवरिया। ठीक है, बिजली घर पे ही बैठे हैं, इन लोगों की लाइट काटने आए हैं। आप लोगों की लाइट नहीं है तो आज हमने तय किया कि बिजली के अधिकारियों की सबकी लाइट काट देंगे। ठीक है ना, देखिए सर, 10-11 बजे से लाइट नहीं है। आप लोगों पर रिपोर्टिंग ही नहीं भाई, कहाँ कहाँ लाइट नहीं है। आप लोग इतने नॉन सीरियस हो चुके हैं कि आप लोगों को कोई मतलब नहीं है।
1: और अब छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: और वो शेर हमारी तरफ आ रहा है, थोड़ा सा पीछे की तरफ हट रहे हैं इस समय। वाकई आप ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर बंदूकें तली हो और आपके सामने शेर आ जाए, दोनों में फर्क।
6: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
7: St- Step into timeless classical music. Works from the masters. Brought to life by world-class orchestras, conductors, and soloists. From past to present. Every performance played with depth, precision, and care. Music that has lasted for generations and still feels just as powerful today. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Classical Hits and start listening now.
3: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health Ka Sach.
4: In association with
8: Bharat Ki Apni Electric Sawari Sokudo.
9: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
10: Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.
11: Take it easy with Soft Hits. Soft Hits brings together relaxing pop favorites from the 70s, 80s and 90s. Familiar songs, easy melodies, and a sound that lets you slow down. Perfect for stepping back and catching your breath. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Soft Hits to start listening now.

0: नाम वैभव सूर्यवंशी, काम छक्के बरसाना, पहचान तूफान लाना, अरमान अब देश को जिताना। आईपीएल की इन तस्वीरों को जिसने देखा देखता ही रह गया, खुद वैभव के साथियों ने देखा, दुनिया भर के दिग्गजों ने देखा और विरोधी गेंदबाजों के पास तो देखते रहने की मजबूरी के अलावा कोई चारा ही नहीं था। न उम्र की सीमा, न दुनिया के किसी गेंदबाज का खौफ। वैभव का बल्ला जब बरसता है तो फिर उसके कोई मायने नहीं होते कि सामने पैट कमिंस जैसा गेंदबाज है, जसप्रीत बुमराह है या फिर कोई और। और ये तूफान आईपीएल के सीजन में जब आया तो मैच दर मैच उनका बल्ला रिकॉर्ड की इबारत लिखता चला गया। इस सीजन में तो हाल ये था कि जब उनकी पारी खत्म होती तो कईयों के सपने टूट चुके होते थे और कई गेंदबाजों के तो आईपीएल करियर के आंकड़े बिगड़ चुके होते थे। उनके बल्ले ने इतना हल्ला मचाया कि आखिरकार सिलेक्टर्स को उन्हें सीनियर टीम इंडिया का हिस्सा बनाना ही पड़ा। वैभव 15 साल की उम्र में टीम इंडिया का हिस्सा बनने वाले सबसे युवा भारतीय हैं। उन्होंने आईपीएल में सबसे तेज 1000 रन बनाए। आईपीएल में उन्होंने एक सीजन में क्रिस गेल के 59 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़कर 72 छक्के जमाए हैं। 14 साल की उम्र में आईपीएल में शतक जमाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज हैं। वो अंडर 19 वर्ल्ड कप चैंपियन है। आईपीएल के 23 मैचों में वो 96 छक्के जमा चुके हैं। वैभव का असली इम्तिहान अब होगा, लेकिन उनके लिए आपदा नहीं अवसर है, क्योंकि खौफ का भूत वो बचपन में ही भगा चुके हैं। दुनिया भर के गेंदबाजों को वो आईपीएल में निपटा चुके हैं। इतना ही नहीं, दुनिया की कई पिचों पर खेलने का उनका अनुभव धीरे धीरे उनकी बल्लेबाजी को और मैच्योर बना रहा है। नए हिंदुस्तान के नए तेवरों वाली टीम को ऐसा ही तो हीरो चाहिए है, आज तक भी हो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: पश्चिम एशिया संकट के बीच पीएम मोदी की बड़ी बैठक, आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ हुआ मंथन, देशवासियों का जीवन आसान बनाने और आर्थिक दर को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी का बड़ा हमला, कहा 2017 में पहले गुंडों के आगे नतमस्तक थी सरकार, राम का नाम लेने पर चलती थी गोलियां, अखिलेश यादव का पलटवार, यूपी में है महाजंगल राज। गिरफ्तारी के डर से सामने नहीं आ रहे हैं पटना के कोचिंग चलाने वाले फैजल खान, वकीलों ने कहा अदालत में देंगे अग्रिम जमानत की अर्जी, सिविल कोर्ट के बाहर इंतजार करती रही पुलिस। संभल में मुस्तफा कादरी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन, सरकारी जमीन पर निर्माण के बाद कार्रवाई, मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती। टीम इंडिया में 15 साल के सिक्सर किंग सूर्यवंशी की धमाकेदार एंट्री, आयरलैंड इंग्लैंड दौरे पर मिली जगह, T20 फॉर्मेट में नए कप्तान बनाए गए श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव को जगह नहीं।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
0: नमस्कार, रणभूमि में आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। ईरान अमेरिकी संघर्ष को करीब करीब 100 दिन पूरे हो गए, लेकिन अब भी दोनों देशों के बीच तमाम संघर्ष विराम के दावों के बावजूद एक दूसरे पर हमले जारी किए हुए हैं। आलम तो यह है कि सुबह डोनाल्ड ट्रंप बातचीत की बात कहते हैं और रात में ईरान पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले का आदेश दे देते हैं। लगता तो यही है कि दुनिया में शांति का एक नया पैमाना दोनों देशों ने नया तय कर दिया है, जिसमें मिसाइल और ड्रोन अटैक अब न्यू नॉर्मल है। आज रणभूमि में बात करेंगे इसी न्यू नॉर्मल पर मिल रहे अपडेट के बारे में, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि 4 बजे आपके लिए क्या कुछ खास है। रणभूमि स्पेशल में आज दुनिया के तमाम बड़ी खबरों पर हम आपको रूबरू कराएंगे जो युद्ध के मोर्चों से लगातार सामने आ रही है। रणभूमि स्पेशल में पहले बात करेंगे उस वार पलटवार की जो ईरान और अमेरिका के बीच पिछले 24 घंटे में हुआ है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया है। कुवैत पर हमले की लाइव तस्वीरें भी हमारे पास है जहां एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए। रणभूमि स्पेशल में दूसरी खबर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे जवाब में अमेरिका ने भी ईरान के कई रडार सिस्टम पर बड़ी बमबारी की है। सवाल यह है कि क्या महायुद्ध 2.0 का आगाज हो गया है? आगे इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन रणभूमि स्पेशल में तीसरी खबर हम आपको बताएंगे कि हॉर्मुज को लेकर अमेरिकी नाकेबंदी के खिलाफ ईरान ने चेतावनी देते हुए कहा कि अब जंग छिड़ी तो इसका दायरा खाड़ी देशों के बाहर भी जा सकता है। रणभूमि स्पेशल में चौथी खबर हम आपको बताएंगे यूरोप में युद्ध के दूसरे मोर्चे से, जहां पर रूस और यूक्रेन में युद्ध और भीषण हो गया। यूक्रेन ने रूस के कई इलाकों पर बड़े ड्रोन से अटैक किए हैं। रणभूमि स्पेशल में आखिर में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सबसे बड़े मंच पे ले जाएंगे, जहां पर आज तक के सवालों का जवाब दिया खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने, जिन्होंने भारत और प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की है। रणभूमि स्पेशल में आज हमारे साथ दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े होंगे, मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवास सर हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ रियर एडमिरल रिटायर्ड गिरीश कुमार गर्ग भी हमारे साथ जुड़े होंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे उस महायुद्ध के मोर्चे की जहां पर कभी भी नए युद्ध का आगाज हो सकता है, यानी ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर से महायुद्ध की चिंगारी सुलग रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीती रात ईरान ने पहले खाड़ी के दो देशों पर हमले किए और बदले में अमेरिका ने भी ईरान के दो द्वीपों पर धावा बोल दिया। आशंका जताई जा रही है कि अगर ड्रोन और मिसाइल हमलों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो फिर किसी भी वक्त पूरे मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से भीषण युद्ध की लपटें घेरी जा सकती हैं।

0: पश्चिम एशिया से आई इन तस्वीरों ने फिर से दुनिया को पसोपेश में डाल दिया है। इस मंजर ने डरा दिया है कि खाड़ी में फिर से महायुद्ध 2.0 की लपटें सुलगने लगी हैं। इस माहौल ने बता दिया है कि किसी भी वक्त अमेरिका और ईरान में फिर से भीषण जंग छिड़ने वाली है। दहशत इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि ईरान ने कुवैत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया है। कुवैत में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। कुवैत का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान से आ रहे ड्रोन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहा है। ईरान ने बहरीन पर भी मिसाइल दागी है। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को रोकने के लिए बहरीन का भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। हम आपको बता दें कि बहरीन में अमेरिकी सेंट्रल कमांड का मुख्यालय भी है। अपने सहयोगी देशों पर ईरान के हमले से अमेरिका बौखला चुका है। पलटवार में अमेरिका ने भी ईरान के कई ठिकानों पर धावा बोल दिया। ईरान के सर्विलांस रडार सेंटर पर अमेरिका ने हमला किया है। ईरान के रडार सेंटर पर हमले का वीडियो भी अमेरिका ने जारी कर दिया। अमेरिका का कहना है कि पहले ईरान ने हमला किया था, जिसके जवाब में उसके रडार सर्विलांस टावर को उड़ा दिया गया। अमेरिकी सेना ने समुद्री हमलों से बचाव के लिए गोरुक और केशम द्वीप पर स्थित ईरानी तटीय निगरानी रडार को ध्वस्त किया। अमेरिका ने दावा किया कि 6 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया, जबकि 7वीं मिसाइल टारगेट तक पहुंची ही नहीं। मतलब साफ है कि जो सीज फायर फिलहाल अस्थाई है, वो किसी भी वक्त धराशायी हो सकता है, क्योंकि ईरान और अमेरिका में झड़प शुरू हो चुकी है। यह चिंगारी किसी भी वक्त भीषण युद्ध का शक्ल ले सकती है। आज तक ब्यूरो।
1: तो अभी आपने हमारी एक खास रिपोर्ट देखी, और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि ईरान की ओर से जिसने जानकारी दी है, उसने अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े में भी हवाई अड्डे और महत्वपूर्ण सुविधाओं को निशाना बनाया। ईरान ने चेतावनी दी है कि अमेरिका के आक्रमण के जवाब में उसका हमला जारी रहेगा। इसी क्रम में कुवैत के अली अल सलेम नामक 2 अमेरिकी हवाई अड्डों पर बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े पर IRGC के एरोस्पेस द्वारा बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ईरान ने धमकी दी है कि ये प्रतिक्रियाएं सीमित नहीं होंगी और आगे भी लगातार अगर अमेरिका ऐसे ही करता रहा तो फिर आगे इससे बड़े अटैक किए जाएंगे। और देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी, जहां पर ईरान ने आज रात कुवैत और बहरीन के अमेरिकी अड्डों पर हमले का वीडियो भी जारी किया है। ईरान ने मिसाइल लॉन्च की तस्वीरें जारी किया और कहा है कि देखिए, इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करके IRGC ने अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया। खास बात यह थी कि इन मिसाइलों पर जो पिक्चर चिपकाई हुई थी, जो तस्वीरें चिपकाई हुई थी, वो दरअसल अमेरिका का मखौल या उसका मजाक उड़ाते हुए दिखाई दे रही थी, जिसमें कहा जा रहा था कि देखिए, अमेरिका ने अपने लिए नई कब्रगाह तैयार कर ली है। और हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जो IRGC की तरफ से जारी की गई हैं, जिन तस्वीरों के अंदर ये भी दिखाया गया अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का मजाक भी उड़ाया गया। देखिए, ईरान ने जहां पर अमेरिकी और इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने सक्रिय रूप से अपने भूमिगत मिसाइल ढांचों को फिर से मजबूत कर लिया है, और ये इसीलिए IRGC ने जो तस्वीरें जारी की, ये इसकी तस्दीक है कि ईरान की अभी भी मिसाइल और उसके जो ड्रोन साइलोज हैं वो अब भी मजबूत है। हम आपको कुछ सेटेलाइट तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो हम आपको थोड़ी देर में बड़ी स्क्रीन पर भी दिखाएंगे, और आपको बताएंगे कि आखिरकार कौन कौन से साइलोज के अंदर ईरान ने अपनी मुस्तैदी कर दी है। आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि आखिरकार कहां कहां पर लगातार जो अपने साइलोज हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार ईरान ने तैयार कर लिया है। और चलिए, अब आपको बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार इस समय के ताजा हालात कैसे हैं, जहां पर यह माना जा रहा है कि देखिए, कई मिसाइलों को या फिर कई लॉन्चर्स को, साइलोस को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर लिया गया है। इससे पहले भी कई सेटेलाइट तस्वीरें अमेरिका ने ही जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि 70% से ज्यादा जो उनको नुकसान पहुंचा था उनके एनरिचमेंट यूरेनियम साइट्स पर, उसके एंट्री और एग्जिट पॉइंट को भी ईरान ने दोबारा से तैयार कर लिया। अब यहां देखिए, निर्माण कार्य कहां चल रहा है। देखिए, यहां पर इन साइलोस के आसपास अगर आप जो देखें सर्कल देख रहे हैं, ये हैं वो साइलोस के आप कह सकते हैं गेट्स या फिर उनके एंट्री पॉइंट, जहां पर ये काम चल रहा है। और इसके अलावा खुदाई, यानी अगर ये पॉइंट बंद हो गया है तो फिर उसके आसपास के इलाकों में यहां से खुदाई करकर यहां से टनल बनाए जा रहे हैं ताकि इन साइलोस तक पहुंचा जा सके। और ईरान ने ये स्ट्रेटजिकली पहले भी किया, ईरान ने क्या किया था, जब भी अपने साइलोस बनाता है तो उसकी मैपिंग करता है और उसके कई ऐसे टनल्स के पॉइंट को छोड़ दिया जाता है ताकि जब भी दुश्मन की तरफ से अटैक हो तो फिर इन साइलोस के पास के अंडरग्राउंड दरवाजों को खोल दिया जाए। और ये तस्वीरें एक बार फिर से उन्हीं बातों की तस्दीक कर रही हैं जो दिखा रही हैं कि देखिए कैसे लगातार अमेरिका इस बात से ज्यादा चिंतित है कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट्स के साथ साथ अपने साइलोस के अंदर भी दोबारा से निर्माण कार्य शुरू किए और इनको दोबारा से मुस्तैद या इनको तैयार कर लिया गया है। अब आज सुबह बहरीन और कुवैत में हमारे ठिकानों की ओर बैलिस्टिक मिसाइलों के लॉन्च होने की कुछ ही और तस्वीरें भी जारी की गई, जिसमें हम आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाने की एक बार फिर से कोशिश करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिरकार देखिए ये वो मिसाइल है। हम आपको क्यों बता रहे हैं कि आखिरकार देखिए ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा। ईरान कह रहा है कि आप अगर हमारे इलाकों में अटैक करेंगे, अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अटैक करेंगे तो फिर हम आपके कुवैत में, मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों में आपके जो बेसिस है उन पर अटैक करेंगे। ये देखिए कई मिसाइलों के वीडियो हमने इससे पहले आपको दिखाया कि ईरान ने कहा कि देखिए हमने ये मिसाइल्स लॉन्च किया, और एक बार फिर से इन मिसाइल्स के लॉन्च करने की तस्वीरें भी ईरान की तरफ से जारी की गई। ईरान ने देखिए साफ तौर पर कह दिया है कि हम लगातार और भी बड़ा और खड़ा जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि पर्शियन गल्फ के अलावा यानी मिडिल ईस्ट के अलावा अगर अमेरिका नहीं माना तो फिर ये जंग हम आगे और लेकर जाएंगे, यानी उनका इशारा अमेरिकी बेसिस पे सीधे तौर पर अमेरिका के इलाकों पर भी था। आईआरजीसी के मेजर जनरल मोहसिन रजाई ने इसको लेकर धमकी भी दी है। उन्होंने कहा कि यदि युद्ध जारी रहा तो नौसेना की नाकेबंदी नहीं हटाई गई तो फिर हम युद्ध को हिंद महासागर, बाब अल मंडेर स्टेट, लाल सागर, भूमध्य सागर तक फैला देंगे। इन अमेरिकी ठिकानों पर पहले हमला करेंगे, हम युद्ध को और नया आयाम देंगे, अमेरिका को निश्चित रूप से कहीं अधिक नुकसान पहुंचाया जाएगा।
2: If the war continues and the naval blockade is not lifted, we will drag the war to the Indian Ocean, the Bab el Mandeb Strait, the Red Sea, and the Mediterranean, and we will give another dimension to the war by attacking these other American bases that we have been attacking so far. America will definitely suffer much more losses. America's losses will be very heavy.
1: और हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान इस बड़ी खबरों के पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जनरल सिवाज, मैं आपका रुख करता हूं। जनरल सिवाज, अभी के मौजूदा हालात में हम जिस न्यू नॉर्मल की बात कर रहे थे कि देखिए संघर्ष विराम तो है लेकिन अटैक भी किए जा रहे हैं, आखिरकार ये दोनों का न्यू नॉर्मल है क्या? क्या दोनों मानेंगे भी या इसी तरीके से छुटपुट अटैक हम देखते रहेंगे?
3: हाँ बिल्कुल सुमित, मुझे लगता है एक पोस्चरिंग है, दोनों एक दूसरे को प्रेशर डाल रहे हैं और सभी पूरे वर्ल्ड ने सोचा था कि शायद कहीं ना कहीं पीस ट्रीटी हो जाएगी, मगर ऐसा हो नहीं रहा और दोनों तरफ से हमले जो हैं वो सटीक हैं। जैसे आपने बहुत अच्छा बताया कि कहीं ना कहीं ईरान की तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी होगी, जो भी मिसाइल रॉकेट और ड्रोन का भंडार उनका कम हुआ था उन्होंने अभी पूरा कर लिया है। जो मिसाइल सिटीज हैं जो कि अंडरग्राउंड है उस पर 24/7 वेपन बन रहे हैं, जो साइलोस हैं उनको रिपेयर कर दिया है, इफसान फोर्दो नामताज जहां पर उसके न्यूक्लियर साइट थे वो भी अभी फंक्शनल नजर आ रही हैं। तो ऐसे में लगता ऐसे है कि अगर ये लड़ाई अब दोबारा शुरू होगी तो ये बहुत भयानक होगी। और ये बिल्कुल ठीक बताया, बाब अल मंदेब को अभी जहां पर 10-12% ऑयल जाता वो भी बंद हो जाएगा, जिससे रेड सी से मेडिटेरियन जो सी में जाता है, जहां से एशिया से यूरोप की तरफ जो भी सामान जाता वो जा नहीं पाएगा। तो आप देखें फूड फ्यूल फर्टिलाइजर पहले ही बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड में और उससे भी ज्यादा पड़ेगी। अब ये देखते हैं कि क्या ये लड़ाई रुकेगी, क्या इसके अंदर कौन सी ऐसी रेड लाइन है जो नहीं अभी तक पूरी। एक तो सच्चाई है इसराइल, जहां इसराइल जो हमले कर रहा है लबनान पे वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, जब तक वो शामिल नहीं होगा मुझे नहीं लगता कोई पीस एग्रीमेंट होगी। दूसरा कहीं ना कहीं ईरान को भी नुकसान बहुत हो रहा है, जब से नेवल ब्लॉकेड लगाई अमेरिका ने तो ईरान अपना ऑयल नहीं भेज पा रहा है। खर्क आइलैंड में 90% ऑयल बनता है, अब वो ऑयल जो इनकी स्टोरेज कैपेसिटी थी वो खत्म हो चुकी है, अब वो ऑयल जो इनकी ड्रिलिंग मशीन है उनको बंद करना पड़ेगा। तो ईरान को भी काफी नुकसान है, ऐसा नहीं है कि एक तरफ ही नुकसान है, मगर मुझे अभी भी लगता है दोनों देश लड़ाई नहीं चाहते, कहीं ना कहीं पोस्चरिंग कर रहे हैं।
1: देखिए सर पोस्चरिंग तो की जा रही है लेकिन इस पोस्चरिंग के अंदर जो अटैक्स इनिशिएट किए जा रहे हैं वो भी एक चिंता का विषय, कहीं ऐसा ना हो कि छुटपुट घटनाओं के बाद एक बड़े से महायुद्ध की शुरुआत भी हो जाए। गिरीश कुमार गर्ग सर, गिरीश सर अगर देखा जाए क्योंकि देखिए हमने आईआरजीसी के कमांडर की मेजर जनरल रजई की बात सुनाई, उन्होंने कहा कि देखिए अब जो दायरा बढ़ेगा वो मिडिल ईस्ट के आगे बढ़ेगा। क्या ईरान की काबिलियत या उसके पास ऐसी क्षमताएं हैं कि अमेरिका को अमेरिका के अंदर ही उसके बेसिस पर अटैक कर सके या यूरोप के बेसिस पर उसको अटैक कर सके?
4: हाँ समीर बिल्कुल, ईरान के पास जो बैलिस्टिक मिसाइल की कैपेसिटी है वो लॉन्ग रेंज है, 2000 किलोमीटर तक की दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं इनके पास जो यूरोप तक पहुंच सकते हैं। और जहां तक उसके दायरा बढ़ाने की बात है, अभी तक जो दायरा है मिडिल ईस्ट में और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रहा है, लेकिन हुतीस के सहयोग से, हुतीस के कोऑपरेशन से ईरान के पास क्षमता है कि वो बबल मंडब और रेड सी और जो स्वेज कनाल का जो रूट है उसको भी पूरी तरह से ब्लॉक कर दे। और ये कोई धमकी नहीं है, हमने 2024 में देखा था कि हुतीस ने बबल मंडप पे काफी उदम बचाया था और काफी नाक में दम वहां की शिपिंग के लिए किया था और एक ग्लोबल मैरीटाइम फोर्स उधर डिप्लॉय करनी पड़ी थी हुतीस को कंट्रोल करने के लिए। तो ईरान के पास क्षमता है दोनों तरफ से कि वो बबल मंडप में और रेड सी स्वेज कनाल वाला जो जो जो चैनल है, रूट है, उसको ब्लॉक कर पाए और अपनी लंबी रेंज की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उससे मिडिल ईस्ट के बाहर जाकर भी अटैक करें अमेरिकन बेसिस के ऊपर और उन ठिकानों के ऊपर जो इस ईरान के खिलाफ युद्ध में सहयोग दे रहे हैं।
1: बिल्कुल, और सर देखिए ऐसा माना जा रहा है लड़ तो ये दोनों देश रहे हैं लेकिन परेशानियां पूरी दुनिया की बढ़ रही हैं और इन्हीं परेशानियों को लेकर एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। दरअसल माना वजह से वैश्विक तेल भंडार खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है जिससे दुनिया में तेल की सप्लाई और आपूर्ति पर प्रतिकूल असर पड़ने वाला है। देखिए अब रॉयटर्स या फिर कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया समूह ये कह रहे हैं कि जिस हिसाब से ये जो लंबा खिंचता जा रहा है 100 दिन के करीब हो चुके हैं, ऐसे में दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई एक खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। यानी अब जो गिरावट दर्ज की जा रही है वो ऐसी है कि उससे रिवाइव होने में, उसको ठीक करने में काफी लंबा समय लग जाएगा। जनरल सिवाज, हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि देखिए ऑयल के गैस के जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसकी जो आप कह सकते हैं कि जो उसकी रिफाइनरीज है बंद करने से जो प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन अब भी ये देश नहीं माने, अब भी अगर ईरान नहीं माना, अब भी अगर अमेरिका नहीं माना तो फिर कहीं ऐसे दौर में हम ना पहुंच जाए जहां से कोई यू टर्न का कह सकते हैं कि कोई नजारा ही ना हो, यू टर्न के लिए कोई मौका हमें ना मिले।
3: हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता, बिल्कुल सुमित, यू हिट द नेल ऑन द हेड, क्योंकि अगर ये चिंगारी लग गई और ये लड़ाई का दायरा बढ़ गया तो फिर ये लंबी हो सकती है। इसमें चीन और रूस भी आ सकते हैं और पूरे वर्ल्ड के अंदर मुझे लगता है हाहाकार मच जाएगी। जो आपने एक और बड़ा अच्छा इशारा किया था कि अगर कल को भी सीज फायर हो जाता है तो ये सोचना कि ऑयल का जो रूट्स हैं वो खुल जाएंगे, वो उसको 3 से 4 महीने लगेंगे कि जितने भी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, जो गल्फ कंट्री हैं, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, उनको बहुत नुकसान हुआ है, उनकी जो ऑयल कि जो ड्रिलिंग कैपेबिलिटी उस पर भी इफेक्ट हुआ है। अगर अभी भी बब अल मंडेब तो बंद नहीं हुआ है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाता है उसके बाद भी प्राइस जो ऑयल के स्टेबलाइज होने में 3 से 4 महीने लग जाएंगे। और अगर जिस प्रकार से सिचुएशन जा रही है, दोनों तरफ से रुकने का नाम नहीं ले रही, और अगर ये लड़ाई दोबारा स्टार्ट हो जाती है तो वाकई इसका दायरा भी बढ़ेगा, इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, चीन और रूस के भी आने के चांसेस हैं। और जो बब अल मंडेब जो अभी तक इस इलाके से जो शिप जा रहे हैं 12% के करीब वो बंद हो जाएगा, स्वेज कैनाल बंद हो जाएगी, तो आप देखें कि 40-50% जो ऑयल जहां से जाता है वो बंद हो जाएगा तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी, फूड फ्यूल फर्टिलाइजर फार्मास्यूटिकल इन पे सब पे असर पड़ेगा। और इससे क्या होगा, जो डेवलपिंग कंट्री है, ग्लोबल साउथ है, जो गरीब देश है, उस पे बहुत बड़ी मार लगेगी। तो वाकई पूरी वर्ल्ड के लिए चिंता का विषय है कि कहीं ना कहीं बातचीत हो, अगर बातचीत नहीं होती तो पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो डिगमगा जाएगी।
1: बिल्कुल गिरीश सर, एक बात बताइए, डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार इस युद्ध में कूदे थे इस बात को लेकर थे कि हम जो एनरिच यूरेनियम है वो अपने कैप्चर में ले लेंगे, रिजिम चेंज कर देंगे, अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि उन्होंने एनरिच यूरेनियम को लेकर कह दिया कि हमको नहीं चाहिए, वो डील के बाद में बात हो जाएगी, रिजिम के लिए कह दिया कि मुश्तबा खमनेई बहुत अच्छे लीडर हैं, उनसे मेरी बातचीत हो सकती है, मेरी मुलाकात हो सकती है। आखिर जो सुर बदल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, ये एक तरीके का यूएस का सरेंडर नहीं दिखा रहे हैं कि देखिए यूएस गया तो था लड़ने के लिए लेकिन जब वहां का माहौल देखा तो वियतनाम अफगानिस्तान वाली गलतियां एक बार फिर से अमेरिका ने दोहरा दी?
4: हाँ बिल्कुल सुमित, ये तो दुनिया आज हर कोई दुनिया में बोल रहा है कि ट्रंप साहब इस युद्ध में फंस गए हैं और बुरी तरह से फंस गए हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब इससे निकले कैसे, ऑनरेबली इज्जत के साथ कैसे निकले। बेइज्जत होके तो निकलना कल निकलेंगे, बेइज्जत होके निकलेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्रम्प साहब की ये है कि वो खुद भी समझ गए हैं कि मैं बुरी तरह से फंस गया हूँ, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि अपनी इज्जत बचाते हुए कैसे ऑनरेबली इस युद्ध से निकले। ईरान इस बात को समझ गया है कि हमने हमने अमेरिका को घेर लिया है, तो इसीलिए आप देखेंगे कि आज ईरान किसी भी प्रकार से इतनी मार खाने के बाद, इतनी मिसाइल्स की हिट लेने के बाद भी अपने आप को बहुत मजबूत स्थिति में पा रहा है। और वो इसीलिए वो ट्रम्प साहब को टेस्ट कर रहा है कि मैं देखता हूँ कब तक ट्रम्प साहब जो है इस युद्ध को समाप्त नहीं करते। और ट्रम्प साहब की प्रॉब्लम ये है कि वो ईरान झुकने को तैयार नहीं है। तो ये एक खेल है जिसमें आपका जो विश्लेषण है एकदम सही है कि ये ट्रम्प साहब जो है इसमें अपना वियतनाम का रुख देख रहे हैं, इसमें अपना चेहरा वियतनाम के अंदर देख रहे हैं और उन्हें लग नहीं रहा है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इसमें से कैसे निकले। उसका एक ही तरीका है कि ईरान के ऊपर दबाव डालें और होप करें कि भाई ईरान कहीं ना कहीं झुक जाए। आप ये जो अटैक देख रहे हैं जो अभी आज आपने जिक्र करा, ये सब उसी का नतीजा है कि ट्रम्प साहब भागते भूत की लंगोटी पकड़ लें कि किसी तरीके से कुछ करके शायद ईरान के ऊपर दबाव डालें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ट्रम्प साहब के लिए ईरान इस चीज को समझ गया है।
1: इस पूरी प्रक्रिया ने, इस पूरे संघर्ष ने ईरान को यह मौका भी दे दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो, एनरिच यूरेनियम हो या फिर अपने प्रॉक्सीज को रिवाइव करना हो, तीनों चीजों के ऊपर लगातार ईरान भी अब काम कर रहा है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है, वो ये कह रही है कि देखिए विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने संदेश दिया है कि लेबनन को उसके असली दुश्मन से बचाना जाए। अराक्ची ने लेबनन के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन को संबोधित करते हुए संदेश में लेबनन को उसके असली दुश्मन से बचाने की अपील की। अराक्ची ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि उन्होंने कहा कि ऐसे लगता है कि ईरान ने ही लेबनन के एक पांचवें हिस्से पर कब्जा कर लिया है। ईरान के विदेश मंत्री ने आगे कहा कि अगर लेबनन ईरान के लिए सौदेबाजी का जरिया होता तो हम बहुत पहले ही समझौता कर चुके होते। उन्होंने कहा कि देखिए इसराइल लगातार एक बड़ा चिंता या फिर आप कह सकते हैं चुनौती है लेबनन के, आप कह सकते हैं कि उसकी आजादी के लिए। और इसी बात को लेकर उन्होंने लेबनन के राष्ट्रपति को भी सोशल मीडिया पर चेताया कि देखिए असली दुश्मन इसराइल है। और देखिए यही बात जो हम कह रहे हैं कि अब इसराइल ये चाह अब ईरान ये चाहता है कि देखिए सारी चीजों को सेटल कर लिया जाए। जनरल सिवाज, लेबनन को लेकर इसराइल की रणनीति तो ऐसा लगता था कि लितानी रिवर के आगे तक के इलाके में वो अपने आप को सिक्योर करना चाहता है, अपने नॉर्दर्न एरियाज को सिक्योर करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए वो चाहता है कि लितानी रिवर के आसपास भी उसकी सेनाएं आकर बैठ जाए ताकि वो ग्रे जोन जो है वो भी इसराइल के कैप्चर में ही आ जाए।
3: हाँ बिल्कुल, देखो सुमित सच्चाई है कि इसराइल को जो हिजबुल्ला है जो कि सदन लबनान में है वो एक प्रकार उसके लिए भी प्रॉब्लम है। अगर आप देखें 1.5 से 2 लाख के करीब लोग पलायन कर गए नदन इसराइल से क्योंकि ऊपर हमले सटीक हो रहे थे लबनान के सदन पोर्शन से हिजबुल्ला के, और इसीलिए इसराइल चाहता है कि लटानी नदी है उससे आगे जाए ग्रे जोन उसको कहते हैं बफर जोन बढ़ाया जाए और जब तक नहीं रुके। और ये भी सच्चाई है कि जो हिजबुल्ला है वो भी इसी तरीके से जैसे ईरान को अंडर एस्टिमेट किया था अमेरिका और इजराइल ने, इसी प्रकार से कहीं ना कहीं हिजबुल्ला को भी अंडर एस्टिमेट किया इजराइल ने क्योंकि उसके पास हथियार काफी है, उसके पास रॉकेट बजाए ड्रोन्स का जमावड़ा है, वो गुरिल्ला वारफेयर में बहुत काबिल है। तो बहुत लंबे हमले हिजबुल्ला भी इजराइल पे करा। और अब ये सच्चाई है कि ईरान ने ये कंडीशन डाल दी है कि पीस टॉक्स हो ही नहीं सकते जब तक इसराइल हमले बंद नहीं करता लबनान में। तो अब ये सच्चाई है कि अब रुकेंगे तो रुकेंगे क्या? इसराइल लड़ाई को बंद करना चाहता? बिल्कुल नहीं, इसराइल चाहता है कि ये लड़ाई लंबी चले। और क्योंकि नेतन्याहू की खुद की कंडीशन घर में कमजोर है और वो चाहते हैं कि हिजबुल्ला को खत्म किया जाए, कहीं ना कहीं ईरान जो कमजोर था उसको दोबारा हमला करके कमजोर किया जाए। तो सच्ची बात है कि इसराइल इस लड़ाई को बंद नहीं करना चाहता और अमेरिका के लिए प्रॉब्लम, जैसे आपने बोला था कि उसके पास डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई ऑनरेबल एग्जिट नहीं मिला, उनकी जो पॉपुलैरिटी है देश के अंदर गिरती जा रही है, मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर में और अभी भी जो कांग्रेस के अंदर उनकी स्थिति कोई खास अच्छी नजर नहीं आ रही।
1: और बिल्कुल सर, माना यही जा रहा है कि देखिए सब मान जाएंगे लेकिन इसराइल को कैसे मनाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि लगातार नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप की भी अब सुन नहीं रहे। रणभूमि स्पेशल में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लेकिन बात करेंगे कि कैसे रूस यूक्रेन में भीषण युद्ध जारी और आपको ले कर चलेंगे दुनिया के सबसे बड़े मंच जहां पर आज तक के सवालों का जवाब दिया रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। आप देखते रहिए रणभूमि स्पेशल।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस
6: इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
8: और वो शेर हमारी तरफ आ रहा है, थोड़ा सा पीछे की तरफ हट रहे हैं इस समय। वाकई आप ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर बंदूकें तली हो और आपके सामने शेर आ जाए, दोनों में फर्क।
9: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay locked in to the NBA playoffs with ESPN Radio. Get around-the-clock sports talk covering every matchup, every storyline, and every big moment as games unfold. And throughout the playoffs, catch select live games bringing you courtside for some of the biggest showdowns. From nonstop analysis to can't-miss action, ESPN Radio is your home to follow the NBA playoffs. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
6: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
7: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
5: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
8: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
6: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
5: जहां खबर वहां खबरदार।
9: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR ये रिश्ता लंबा चलेगा। मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
10: The action never stops and neither do we. From breaking updates to match analysis, from big moments to bigger conversation. This is where sports comes alive. Fast, sharp, unfiltered. For the fans who want every update, every story, every headline first. Welcome to Sports Today, your destination for everything sports. Press that bell icon and subscribe now.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akaje, the number one Korean skincare brand, now in India.
3: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
4: To right field, and it will leave.
3: From the first pitch of the season to the stretch run.
4: And that's the ball game.
3: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
5: बीच में बैठी हुई है और इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए, वो सीबीआई ने 5 घंटे तक पूछताछ की और अब गिरिबाला सिंह को लेके सीबीआई रवाना हो गई है। यहाँ से कहाँ ले जाएंगे ये साफ नहीं है, लेकिन हमने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई, कहाँ गई है ये भी साफ नहीं हो पाएगा, थोड़ी देर में तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन तकरीबन 5 घंटे तक चली पूछताछ के बाद पूर्व जज त्विशा की सास समर्थ की माँ गिरिबाला सिंह को फिलहाल सीबीआई अपने साथ लेकर के अब फरार हो चुकी है। रविश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
6: साथियों, आज देश में कुछ निराशावादी लोग हैं जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाते रहते हैं। देश के इस संकल्प को वो लगातार नीचा ही दिखाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रखा। वो लोग ये भूल जाते हैं कि दूसरों पर निर्भर देश विकास की वो ऊंचाई कभी प्राप्त नहीं कर सकता जिसका वो हकदार है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

पश्चिम एशिया संकट के बीच पीएम मोदी की बड़ी बैठक, आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ मंथन, देशवासियों का जीवन आसान बनाने और आर्थिक दर को बढ़ाने पर हुई चर्चा।

0: मस्तक थी सरकार, राम का नाम लेने पर चलती थी गोलियां, अखिलेश यादव का पलटवार, यूपी में है महाजंगल राज। गिरफ्तारी के डर से सामने नहीं आ रहे पटना में कोचिंग चलाने वाले फैजल खान, वकीलों ने कहा अदालत में देंगे अग्रिम जमानत की अर्जी, सिविल कोर्ट के बाहर इंतजार करती रही पुलिस। संभल में मुस्तफा कादरी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन, सरकारी जमीन पर निर्माण के बाद हुई कार्रवाई, मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती। टीम इंडिया में 15 साल के सिक्सर किंग सूर्यवंशी की धमाकेदार एंट्री, आयरलैंड इंग्लैंड के दौरे पर मिली जगह, T20 फॉर्मेट में नए कप्तान बनाए गए श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव की जो को नहीं मिली जगह।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी।
0: ब्रेक के बाद रणभूमि स्पेशल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अब आपको लिए चलते हैं युद्ध के एक और मोर्चे पर, जहां पिछले 4.5 साल से रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी हुई है। बड़ी खबर यह आ रही है कि रूसी राष्ट्रपति ने साफ कह दिया है कि शांति वार्ता के लिए युद्ध रोकने की जरूरत नहीं है। पुतिन ने यह भी बयान सामने आया जब उन्होंने जेलेंस्की के खुले पत्र पर रूसी राष्ट्रपति ने साफ मिलने की इच्छा जताई थी, जिसे उन्होंने इनकार कर दिया। हालांकि इससे पहले यूक्रेनी शहर ज़ापोरिज़्या पर बड़े हमले भी किए गए।

0: रूस ने यूक्रेनी शहर जैपोरेजिया पर भीषण अटैक किया, वो भी तब जब शांति वार्ता की कोशिशें चल रही हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है कि शांति वार्ता के लिए सीज फायर की कोई जरूरत नहीं है, मतलब बातचीत करने के लिए जंग रोकने की जरूरत नहीं। रूस के ताजा हमलों में जैपोरेजिया के रिहायशी इलाकों को बड़ा नुकसान हुआ, जिसमें एक शख्स की मौत हुई है, 16 घायल हैं, वाहनों और नागरिक बुनियादी ढांचों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इस बीच पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में पत्रकारों को संबोधित करते हुए साफ कर दिया कि बातचीत के लिए सीज फायर की जरूरत ही नहीं है।
1: Новые населенные пункты ставятся под контроль российских вооруженных сил. Но за последнее время, повторяю, почти 2500 квадратных километров.
0: इससे पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति को खुला पत्र लिखा है और सीधे वार्ता का प्रस्ताव रखा है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी और रूसी नेताओं के बीच बैठक की पहल को सराहा है और इसे अच्छी पहल बताया।
2: I don't know. I'm glad that they're maybe talking about meeting. I think we had a lot to do with it. I know exactly what you're doing. But I think it would be great if they met. They should get it done.
0: आर पार की जंग और शांति वार्ता की कोशिशों के बीच दोनों देशों की तरफ से अच्छी पहल हुई है। रूस यूक्रेन ने एक दूसरे के 185 कैदियों की अदला बदली की है, जिसे शांति की शुरुआत के लिए पहला बड़ा कदम बताया जा सकता है। हालांकि कैदियों की अदला बदली पहले भी हो चुकी है, लेकिन 4 साल से भी ज्यादा समय से जारी जंग अभी तक थमी नहीं। आज तक ब्यूरो।
3: तो अभी आपने हमारी खास रिपोर्ट देखी। दरअसल रूस के राष्ट्रपति के मना करने से कुछ ही देर पहले जेलेंस्की ने भी रूस के कई शहरों पर बड़े अटैक किए थे, जिससे जुड़ा एक बड़ा अपडेट मिल रहा है कि पिछले 24 घंटे में लेनिनाद क्षेत्र के ऊपर यूक्रेन ने 141 आत्मघाती ड्रोन मार गिराने का दावा किया जा रहा है। रूस का यह बड़ा दावा है। रूस ने कहा है कि देखिए, यूक्रेन ने रूस को पर अपने हमले तेज कर दिए हैं, और यह भी कहा जा रहा है कि देखिए, रूस लगातार ये मानता है कि कई इलाकों के अंदर यूक्रेन की तरफ से बड़े अटैक किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 141 आत्मघाती ड्रोन से हमले किए गए। और देखिए, लगातार हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान भी जुड़े हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। संजय सिवा सर, अगर अभी के मौजूदा हालात में देखा जाए, रूस के राष्ट्रपति तो देखिए बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हो रहे। पूरी दुनिया का फोकस इस समय ईरान पर है। ऐसे में रूस ने जितने एरिया कैप्चर करने का नेगोशिएशन पे बातचीत की थी, ऐसा लग रहा है कि उससे ज्यादा ही एरिया रूस इस युद्ध से लेकर निकलना चाहता है।
4: हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक बोला सुमित। देखो, पहले ही उन्होंने 20% से ज्यादा इलाका जीत लिए हैं। पूरा डोनबस का इलाका, जो कि डोनस्तक लुहानस्क 70-80% जीते हैं। जापोरजिया और खारासोन का भी कुछ इलाका जीत लिया है। और अब बातचीत यही हो रही थी, जो पहले सोल्यूशन था कि ये जो इलाका जीत लिया, जो रशियन स्पीकिंग है, रशिया उसको अपने पास रखना चाहता था, मगर वो यूक्रेन इस चीज के लिए मानने को तैयार नहीं था। अगर आप अभी स्थिति देखें तो दोनों तरफ से एक सही नई चीज क्या आई है कि ड्रोन के हमले हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं सटीक हमले यूक्रेन की तरफ से भी रूस के एक प्रकार 300 से 400 किलोमीटर बॉर्डर से दूर हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं रूस की इकोनॉमी को भी कुछ इफेक्ट हो रहा है। मगर ये सच्चाई है, जो यूक्रेन है वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। 70-80% उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया। जो अब हमले कर रहे हैं, जो एक प्रकार रूस, वो सटीक हैं, वो एक प्रकार इनके कम्युनिकेशन चैनल पे, उनकी सप्लाई चेन पे, और मेन टाउन जैसे कीव, खारकीव, ओडिशा, जापोरिजिया, खारासोन, इन पे हमले किए जा रहे हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहा है रूस अभी, और यही पुतिन का एम है कि यूक्रेन हाथ खड़े कर दे, क्योंकि अब जो फोकस है यूरोप का भी और अमेरिका का, वो कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका की जो लड़ाई ईरान के साथ हो रही है, वहां हो रही है। इसका फायदा पुतिन उठाना चाहते हैं और वो एक प्रेशर डाल देते हैं। मगर एक बात तो माननी पड़ेगी, कहीं जो यूक्रेन जो हमले कर रहा है वो भी कहीं सटीक है।
3: बिल्कुल, और यूक्रेन के ये हमले लगातार जारी। हमारे साथ गिरीश सर भी। गिरीश सर, मैं आपका रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले रोमानिया से जुड़ी एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को बता दे, उसके बाद गिरीश सर का रुख करेंगे। दरअसल रोमानिया पर कल ड्रोन से अटैक किए गए थे, उनके बंदरगाह पर अटैक करने को लेकर रोमानिया की सेना ने पुष्टि कर दिया। उनकी तरफ से कहा गया है कि देखिये, कॉन्स्टांटा बंदरगाह के ऊपर जहां विस्फोट हुआ था वहां पर मानव रहित नौका यूक्रेनी थी। रोमानिया रक्षा मंत्रालय ने घोषणा किया है कि यूक्रेन द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन के समान एक समुद्री ड्रोन कॉन्स्टांटा बंदरगाह में ब्लास्ट का कारण बने। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल कल यहां पर भीषण हमले हुए थे। करीबन 3 से 4 ऐसे ड्रोन थे जिनके हिसाब से जिनकी वजह से अटैक किए गए। हालांकि उनको निष्क्रिय कर दिया गया, लेकिन ये मानव रहित जो नाव थी इनके ऊपर अटैक करने के बाद अब कई देशों में इसको लेकर हड़कंप भी मच गया है और कई जगहों से ये भी बयान आ रहे हैं कि अब रूस का अगला टारगेट नाटो के देश ही कहीं ना हो जाएं। और देखिए इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक बड़ा अपडेट मिल रहा है जहां पर 400 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन रूस की ओर जाते हुए दिखाई गए हैं। लगातार सेंट पीटर्सबर्ग के पास कॉन्स्टेंट शहर पर स्थित कथित तौर पर यह हमले से पहले कई ग्राफिक्स उसमें दिखाए गए और रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी ये जानकारी दी गई है कि देखिए यूक्रेन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि सेंट पीटर्सबर्ग हो, मॉस्को हो, बड़े शहरों के ऊपर यूक्रेन बड़े हमले करने की कोशिश कर रहा है। और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट गिरीश सर भी जुड़ गए हैं। गिरीश सर, देखिए अभी हम ये देख रहे थे जिस तरीके से शिवा सर भी बता रहे थे कि ये यूक्रेन कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी के मौजूदा हालात में जिस तरीके का एडवांसमेंट लगातार रूस की सेना कर रही है, ऐसे मौके पर कहीं ऐसा ना हो कि बाजी इतनी ज्यादा पलट जाए कि रूस बहुत ज्यादा बड़े एरियाज के ऊपर यूक्रेन के कैप्चर कर ले, क्योंकि रूस यूक्रेन के पास तो मदद भी नहीं पहुंच पा रही जो पहले नाटो देश और अमेरिकी देश उसको पहुंचा रहे थे।
5: बिल्कुल ठीक बोला आपने सुमित। यूक्रेन की समस्या ये है कि पूरी दुनिया का ध्यान, अमेरिका का ध्यान, यूरोप, नेटो का ध्यान इस समय ईरान की तरफ है और वो यूक्रेन को पूरी तरह से भूल गए हैं और ना केवल याददाश्त पे भूल गए हैं बल्कि साधु सामान से भी भूल गए हैं, क्योंकि उनके पास अभी अमेरिका के पास ईरान से लड़ने के लिए साधु सामान नहीं बचा, मिलिट्री हार्डवेयर नहीं बचा, वो यूक्रेन को क्या देंगे, बल्कि जो यूक्रेन को दे रहे थे वो भी कैंसिल करके ईरान की तरफ मिडिल ईस्ट में लगा दिया। तो यूक्रेन जो अभी तक जो लड़ रहा था वो अपनी क्षमता पे नहीं लड़ रहा था, वो लड़ रहा था यूएस के सपोर्ट से, नेटो के सपोर्ट से, यूरोपियन नेशन के सपोर्ट से, जो बिल्कुल बंद हो गया। अब उनकी मुसीबत ये है कि वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, आप देखिए ज़ेलेंस्की साहब चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं मेरी मदद करो मेरी मदद करो, लेकिन किसी के पास समय नहीं है अभी इस समय। और रशिया इस बात को अच्छी तरह समझता है और इस बात का पूरा पूरा पूरा एडवांटेज वो ले रहा है। इसीलिए आप देखिए कि ज़ेलेंस्की साहब ने एक ओपन लेटर लिखा जिसको पुतिन साहब ने कचरे के डब्बे में डाल दिया, क्योंकि वो देख रहे हैं कि अभी वो बेचारा बच्चा छटपटा रहा है यूक्रेन और वो तड़प रहा है और यूक्रेन और रशिया नहीं चाहता कि वो उसको किसी भी तरह की कोई उसको याद दे या कोई उसको उसके ऊपर कोई रिलैक्सेशन दे। तो ये तो रशिया के लिए बहुत अच्छा समय है और आपका जो अनुमान है जो भी रशिया ने सोचा होगा इस वॉर को स्टार्ट करने के पहले कि इतना एरिया यूक्रेन का अगर मुझे मिल जाता है तो मैं ये युद्ध को समाप्त करने के लिए राजी हो जाऊंगा। आई थिंक अभी उसकी मंशाएं उसके जो मंसूबे हैं रशिया के और बढ़ गए होंगे कि इतने पे ही क्यों अपने आप को लगाम लगाएं, थोड़ा और अंदर चलते हैं यूक्रेन के, थोड़ा और एरिया लेते हैं और उसको इसकी संभावना काफी स्ट्रांग दिख रही है। और मेरे हिसाब से भी यूक्रेन इस समय काफी मजबूत स्थिति में है यूक्रेन के खिलाफ। तो रशिया इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। यूक्रेन को रुकेल की भलाई इसी में है मेरे हिसाब से कि जल्दी से जल्दी जो एरिया रशिया के पास है उसको समझी करके उनको दे दे, नहीं तो और एरिया जाते रहेगा और फाइनली उनको जब घुटने देखने पड़ेंगे तो जब पीछे देखेंगे तो लगेगा यार अगर 2 साल पहले यहाँ बोल देते तो शायद थोड़ा एरिया और बच जाता, थोड़ा फायदे का सौदा होता।
3: बिल्कुल। और सर देखिए इन तमाम जंगों के बीच ऐसा भी माना जा रहा है कि इन जंगों ने नए जंगों को कुछ चिंगारी भी दे दी है। देखिए अब आपको लिए चलते हैं दुनिया के एक पूर्वी छोर की ओर जहां पर परमाणु हथियारों के जखीरे पर बैठे उत्तर कोरिया नेता किम जोंग उन लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में जुटे हुए हैं। शनिवार को किम जोंग उन अपनी बेटी के साथ नौसैनिक विध्वंस पोत कांगकोंग पर दौरा किया और इस दौरे में किम जोंग ने इस नेविगेशन परीक्षण का निरीक्षण भी किया। परमाणु युद्ध को रोकने के लिए नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ावा की जरूरत दिखाई दी और सरकारी मीडिया की ओर से एक तस्वीरें भी जारी की गई जिसमें किम जोंग उन अपनी बेटी के साथ युद्धपोत पर नजर आए, साथ ही वो हथियारों को देखते हुए और उनकी ताकत की जानकारी लेते हुए भी दिखाई दिए। उत्तर कोरिया अपनी सैन्य शक्ति ऐसे समय पर बढ़ा रहा है जब उसका दक्षिण कोरिया और अमेरिका से तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और माना यह जा रहा है कि देखिए कहीं ऐसा ना हो कि रूस यूक्रेन के बाद ईरान मिडिल ईस्ट के अंदर जंग फैली और उसके बाद अब ऐसा ना हो कि उत्तर कोरिया भी लगातार कोई बड़े एक्शन ले ले, ना सिर्फ साउथ कोरिया के खिलाफ, जापान के खिलाफ बल्कि अमेरिका के खिलाफ भी, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास जितना जखीरा, जितने बैलिस्टिक मिसाइल हैं, वो भी पूरी दुनिया के लिए एक मेजर कंसर्न है। और एक बार फिर से इन्हीं तैयारियों को लेकर किम जोंग उन ने अपने एक शिप के ऊपर अपनी बेटी के साथ वहां पर जाकर उसका मुआयना किया और उनकी जानकारी भी हासिल की। शिवा सर, हम तो एक जंग की बात करते हैं, एक जंग की बात करते हैं, दूसरी जंग शुरू हो जाती है, दूसरी जंग के बाद अब नॉर्थ कोरिया, क्योंकि नॉर्थ कोरिया तो ऐसा देश है जो ना तो अमेरिका की मानता है ना किसी देश की मानता है, तो ऐसे में उसको कंट्रोल कर पाना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि देखिए किम जोंग उन तो लगातार अपनी न्यूक्लियर पावर बढ़ाने में लगे हुए हैं।
4: हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला सुमित कि नॉर्थ कोरिया एक न्यूक्लियर देश भी है और उसके पर जो जमावड़ा है, स्पेशली आप देखें मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन और उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल भी सुनने में आया उसके पास है। अगर ऐसे में उसने हमला करता है साउथ कोरिया और जापान पे तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है इन देशों पे, और जो अमेरिका की वहां पर बेसिस हैं उस पे भी हमला हो सकता है, जो साउथ कोरिया में भी जापान में। तो मुझे लगता है कि नॉर्थ कोरिया एक बहुत बड़ी सिरदर्द बन सकता है अमेरिका के लिए आने वाले समय में। और ज्यादातर इसकी खबरें पता नहीं कि नॉर्थ कोरिया की कितनी काबिलियत और क्षमता है, क्योंकि इसने धीरे धीरे अपनी जो इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है उसको बहुत ज्यादा एक आप कह सकते हैं ताकतवर बना लिया है। उसको बहुत ज्यादा मदद मिली है मिलिट्री चीन से भी और रूस से भी। आज वो चुपचाप अपना काम कर रहा है और कल को

0: कोरिया को या जापान को अटैक करके, लेकिन मेरे को अभी ऐसा नहीं लगता कि नॉर्थ कोरिया ऐसा करेगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का कोई ऐसा टेरिटोरियल एम्बिशन नहीं है कि मैं जो है जैसे जैसे रशिया का है कि मैं यूक्रेन से थोड़ी थोड़ा सा एरिया अपने पास ले लूं, ऐसा कोई मंसूबा नॉर्थ कोरिया का नहीं है। नॉर्थ कोरिया का मंसूबा यह है कि मैं अपनी डिफेंस सेल्फ डिफेंस रखूं, क्योंकि कल को मेरे ऊपर कोई आक्रमण ना कर पाए, चाहे वो साउथ कोरिया है, चाहे जापान है, चाहे यूएस है, चाहे नेटो है, वो अब तो उसने अपनी क्षमता को इतना बढ़ा लिया है कि उसने ये इंश्योर कराया है कि किसी की भी ये जरूरत ना हो कि वो कल को जैसे ईरान के ऊपर सोचा ईरान पर अटैक करे, कोई नॉर्थ कोरिया पे नहीं सोचेगा क्योंकि वो न्यूक्लियर पावर है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से साउथ नॉर्थ कोरिया का ये अभी उद्देश्य नहीं है कि वो किसी और पर अटैक करके उसकी टेरिटरी को ले या उसे उसे तंग करे, उसका एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि मेरे को कोई परेशान ना करे, मेरे पर कोई अटैक ना करे, और उसी के लिए वो अपनी घेराबंदी अपनी जो भी तैयारी कर रहा है उसके लिए कर रहा है। तो मेरे को नहीं लगता कि इस समय नॉर्थ कोरिया ऐसा कुछ हरकत करेगा।
1: बिल्कुल अरसो, देखिए यही तमाम आकलन इस बात का अंदेशा दे रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हर देश अपनी जंगी तैयारियों में जुट गया, और ऐसा ना हो कि हर कोई अगर अपने ऐसे ही ऑब्जेक्टिव पूरे करने लगे तो पूरी दुनिया में कहीं एक बड़ा महायुद्ध ना छिड़ जाए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, और हमारे एक्सपर्ट देखिए लगातार बता रहे थे कैसे दोनों देशों के बीच में, चाहे वो रूस यूक्रेन की बात हो, ईरान अमेरिका की बात हो, तमाम देशों में वार्ता को लेकर बातचीत तो आगे बढ़ती है, लेकिन एक कदम आगे बढ़ने के बाद लगातार एक दूसरे पर फिर से अटैक शुरू कर दिए जाते हैं। अब आपको अगली खबर का रुख करते हैं, अब आपको ले चलते हैं सबसे बड़े ग्लोबल मंच से, जहां पर आज तक पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपको दिखाते हैं। बातचीत में व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि भारत कभी भी दबाव में नहीं आता और राष्ट्रहित में फैसला लेता है। पुतिन ने पीएम मोदी की भी तारीफ की। आपको बता दें कि इस दौरान आज तक के साथ मंच पर पुतिन समेत दुनिया के बड़े दिग्गज भी मौजूद थे, और मंच का संचालन आज तक की फॉरेन अफेयर्स की एडिटर गीता मोहन ने किया।
2: अब मैं आपसे भारत को लेकर सवाल पूछना चाहती हूं। कल आप कुछ एडिटर्स से मिल रहे थे और आपने Su-57 के बारे में बात की थी और सहयोग का प्रस्ताव भी रखा। क्या वह प्रस्ताव अभी भी मान्य है? इसे लेकर क्या जानकारी है और भारत के साथ आपकी क्या बातचीत चल रही है?
3: भारत और हमारे बीच सैन्य और तकनीकी सहयोग और आपसी तालमेल के मामले में बहुत अच्छे और लंबे समय से चले आ रहे संबंध हैं। भारत की सशस्त्र सेनाओं का एक बड़ा हिस्सा रूसी उपकरणों और सामग्री से लैस है। यह परंपरा सोवियत काल से चली आ रही है और आज भी कायम है। भारतीय मित्रों के साथ हमारे संबंध इस मायने में खास हैं कि ये हमारे आपसी विश्वास पर आधारित हैं। हम सिर्फ व्यापार या खरीद फरोख्त पर ही ध्यान नहीं देते, बल्कि साझा रिसर्च को आगे बढ़ाने पर भी खास ध्यान देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मध्यम दूरी की मिसाइल ब्रह्मोस है। इस मिसाइल के डिजाइन में भारतीय विशेषज्ञों के साथ साथ रूसी विशेषज्ञों ने भी शुरू से ही भाग लिया और परिणाम शानदार रहे। भारत पारंपरिक रूप से हमसे विमान और हेलीकॉप्टर खरीदता रहा है। Su-57 एक बहुत ही अच्छा विमान है, शायद दुनिया का सबसे आधुनिक और सबसे कुशल विमान है। हमने प्रस्ताव दिया है और मैंने कल अपने भारतीय मित्रों से यही कहा था कि हमें मिलकर यह काम करना चाहिए। खैर, योजना सफल नहीं हुई, लेकिन हमने इसे अपने दम पर किया और हम शायद जल्द ही Su-57 बेचने के लिए तैयार होंगे। आप जानते हैं कि इसमें दो पायलट कॉन्फ़िगरेशन हैं और यह एक कमांड सेंटर के तौर पर भी काम कर सकता है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं और हम न केवल एविएशन में बल्कि मैरिटाइम इक्विपमेंट, पनडुब्बियों और समुद्री जहाजों में भी खासे कुशल हैं। два пилота и эта машина может использоваться в
2: качестве командного пункта уже. Is there a waiver or carve out? क्या भारत को Su-57 और AS-500 वायु रक्षा प्रणालियों की खरीद की छूट दी जाएगी संयुक्त राज्य अमेरिका से, और क्या वह मान्य रहेगी? आपके विचार से भारत को अमेरिका और प्रतिबंधों से कैसे निपटना चाहिए?
3: मैं कहूंगा कि भारत हमेशा एक संप्रभु देश के रूप में कार्य करता है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों का कोई भी संभावित खतरा तुरंत उल्टा पड़ जाएगा और मुझे यह निश्चित रूप से पता है। हम लंबे समय से प्रधानमंत्री मोदी के साथ गहन बातचीत कर रहे हैं और वे इसे अच्छी तरह जानते हैं। हम सभी को वह समय याद है जब प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त

0: राज्य अमेरिका की सीमा में जाने से प्रतिबंधित कर दिया गया था और मुझे पता है कि प्रधानमंत्री मोदी इसे कभी नहीं भूलेंगे। अब वे प्रधानमंत्री हैं, सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं और मेरी समझ से अमेरिका और भारत के संबंध सफलतापूर्वक विकसित हो रहे हैं। भारत एक संप्रभु देश है और उसे चुनने की स्वतंत्रता है। भारत उन उत्पादों को चुनता है जिन्हें वह सबसे आधुनिक और अपने लिए सबसे बेहतर मानता है और जो मुनासिब कीमत पर अच्छी क्वालिटी देते हैं। चाहे लोग कुछ भी कहें, भारत हमेशा से इसी तरह काम करता आया है। कैसे? दरअसल भारत हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों के मद्देनजर काम करता है। रक्षा एक बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, लेकिन एक बात खास तौर पर अहम है, ये बेहद जरूरी है, और वह ये है कि भारत के साथ हमारा सहयोग हमारे अन्य सभी साझेदारों की तरह राजनीतिक माहौल को देखकर बदलता नहीं है। हम किसी के दबाव में नहीं आ सकते। भारत को यह मत दीजिए, यह हमसे कोई नहीं कह सकता और न ही कोई ऐसा कहने की कोशिश करेगा। हम हमेशा वही करेंगे जो हमें सही लगता है और हम अपने साझेदारों, विशेष रूप से भारत जैसे साझेदारों को दिए गए वादों पर हमेशा खरे उतरेंगे। इसी भावना से, इन्हीं नियमों के मुताबिक हम अपना काम करते हैं और इसी तरह हम आगे भी काम करते रहने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।
1: मैंने सत्र की शुरुआत यह कहकर की कि हम किसी के दबाव में नहीं आ सकते और मेरे को मॉडरेटर राष्ट्रपति पुतिन ने भी यही कहा है। इसी के साथ ये सेशन समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: दुनिया का वो पावरफुल शख्स जिसकी नजर, जिसके बोलने की हर दुनिया के अंदर हर किसी की नजर रहती है, ऐसा शख्स एक बार फिर से आज तक पे आपने उनको सुना और उनसे कि व्लादिमीर पुतिन ने कई महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर खुलकर बात की। और ये बातचीत पूरी आप इंडिया टुडे ग्रुप और आज तक की वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: Now I'll go back to the war.
1: अब मैं युद्ध के प्रश्न पर वापस आती हूँ. ईरान अमेरिका युद्ध, हॉर्मुज जल अडमरू मध्य पर नाकाबंदी वाकई चिंता का विषय है. रूस इसे किस नजरिए से देख रहा है? वैश्विक स्तर पर इसके प्रभाव के बारे में आपका क्या आकलन है, इस तथ्य के अलावा कि हाँ, रूस को शायद थोड़ा फायदा हुआ है? ईरान पर नाकाबंदी और हमले का आपका क्या आकलन है? क्या आप इसे उकसाया हुआ मानेंगे या बिना उकसावे के?
2: Я не вижу никаких провокаций со стороны Ирана.
3: हाँ, मुझे ईरान की ओर से कोई उकसावा नजर नहीं आता.
2: Договорились, приняли соответствующее соглашение.
3: मेरा मानना है कि किसी बिंदु पर हम सहमत हुए थे, हमने सहमति जताई थी.
2: Под контролем МАГАТЭ. Но, к сожалению, ситуация развивалась потом по другому сценарию, по другим.
3: ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर IAEA में सब कुछ नियंत्रण में था, लेकिन फिर स्थिति पूरी तरह बदल गई.
2: Удар по Ирану, потери в том числе.
3: और इसी के चलते ये त्रासदी हुई जो हम आज देख रहे हैं.
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर. पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक. एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com.
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच.
6: In association with
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
5: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
8: Akaje, the number one Korean skincare brand, now in India.
9: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
10: Summer Hits blends old school jams with fresh favorites so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack made for sunshine, vibes, and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.
5: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health Ka Sach.
6: In association with
7: Bharat Ki Apni Electric Sawari Sokudo.

0: नतमस्तक थी सरकार, राम का नाम लेने पर चलती थी गोलियां, अखिलेश का पलटवार, यूपी में महाजंगल राज। गिरफ्तारी के डर से सामने नहीं आ रहे पटना में कोचिंग चलाने वाले फैसल खान, वकील ने कहा अदालत में देंगे अग्रिम जमानत की अर्जी, सिविल कोर्ट के बाहर इंतजार करती रही पुलिस। संभल में मुस्तफा कादरी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन, सरकारी जमीन पर निर्माण के बाद कार्रवाई, मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती। टीम इंडिया में 15 साल के सिक्स किंग सूर्यवंशी की धमाकेदार एंट्री, आयरलैंड इंग्लैंड दौरे में मिली जगह, T20 फॉर्मेट में नए कप्तान बनाए गए श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव को जगह नहीं।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हूं राजीव ढौंडियाल और आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे प्रामाणिक और लोकतांत्रिक नंबर वन शो दंगल। उत्तर प्रदेश में फिर प्रतीकों की राजनीति पर प्रहार है, फिर परंपरा और तुष्टिकरण के बीच टकराव है और फिर सत्ता की सीढ़ियों पर संघर्ष है। यूपी की सियासत में टोटी अब नल का पुर्जा नहीं, नैरेटिव का नश्तर बन चुकी है और राम मंदिर सिर्फ श्रद्धा का केंद्र नहीं, सियासी शक्ति का शिखर बन चुका है। कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार के आरोप जैसे मुद्दे भी सिर चढ़कर बोल रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पर मुख्यमंत्री योगी और अखिलेश यादव में कलेश बढ़ गया है। 2027 के लिए 2017 के मुद्दे तलाशे जा रहे हैं। जैसे जैसे 2027 करीब आ रहा है, वैसे वैसे शब्दों के शस्त्र तेज हो रहे हैं, प्रतीकों के प्रहार तीखे हो रहे हैं और राजनीति का पारा परवान चढ़ रहा है। सवाल सीधा है, क्या चुनाव विकास पर होगा या विमर्श पर? क्या यूपी में अगले साल होने वाले चुनाव में वोट रोजगार पर पड़ेगा या राम या टोटी के बीच खिंची राजनीतिक रेखा पर? फिलहाल तो योगी अखिलेश के बीच में शब्दों के जरिए आक्रमण जारी है। आज यूपी के इन्हीं सियासी सवालों पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट।
1: सत्ता में बैठे हुए लोग 2017 के पहले इन दंगाइयों को, इन पेशेवर गुंडों को प्रश्रय देते थे, इनके सामने नतमस्तक होते थे। प्रदेश में कर्फ्यू रहता था, महीनों महीनों कर्फ्यू।
2: सियासी तलवारें बयान से निकल चुकी हैं, तंज तेज हो गया है। 2027 की तरफ बढ़ती यूपी की राजनीति में शब्द अब शस्त्र बन चुके हैं। सीएम योगी 2017 की याद दिला रहे हैं।
3: 16 में इस गोंडा में भी दुर्गा पूजा के समय दंगा करने का प्रयास हुआ था, यहां भी दंगे हुए थे। मां दुर्गा की मूर्ति को विसर्जन नहीं करने दिया जाता था।
2: वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव योगी सरकार को महाजंगल राज का चेहरा बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर अखिलेश ने लिखा, असफल मुख्यमंत्री काल में महाजंगल राज, अवैध खनन, कब्जा, हत्या, डकैती, बलात्कार। ये दो विचारों की भिड़ंत है, दो विमर्शों का युद्ध है, दो वोट बैंकों की व्यूह रचना है। योगी कहते हैं कि पहले माफिया प्रदेश को तबाह कर रहे थे। चुनावी इतिहास गवाह है कि उत्तर प्रदेश में मुद्दों के साथ माहौल जीतता है, तथ्य के साथ धारणा भी जीतती है। उसी को पुख्ता करने के लिए सीएम योगी लगातार अखिलेश राज की याद दिला रहे हैं। सीएम योगी ने एक बार फिर टोटी वाले तंज को तराशा है, अखिलेश की दुखती सियासी रग पर हाथ रख दिया है।
4: हमने हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया, पता लगा कोई टोंटी चोरी कर रहा है, कोई अन्य प्रकार से उसको नुकसान कर रहा है, खुला है तो खुला हुआ है।
2: टोंटी सुनने में छोटा शब्द है, लेकिन ये यूपी की सियासत में समाजवादी पार्टी को कांटे की तरह चुभता है। दरअसल 9 साल पहले टोटी का विवाद यूपी में उठा था। हुआ कुछ यूं कि साल 2017 में अखिलेश यादव की सरकार गई और योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की शपथ ली। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री का बंगला छोड़कर गए तो नए सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए उस बंगले में कुछ सुधार कराने का काम शुरू हुआ। सियासी शोर हुआ कि लखनऊ में अखिलेश बंगला छोड़कर गए तो सीएम आवास में लगी टोटी भी अपने साथ लेकर चले गए, जो आज तक सियासत के ब्लैक होल में घूम रही है। अखिलेश भी इस पर कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, सीएम यानी करप्ट माउथ, विज्ञान कहता है कि किशोरावस्था में किया गया वनस्पति का अत्यधिक सेवन व्यक्ति के बोलने और समझने की क्षमता को प्रभावित करता है।
5: नमः पार्वती पतिये हर हर।
2: यूपी की राजनीति कमाल की है, यहाँ राम का चुनावी विमर्श है, टोटी तंज का औजार।
4: हमने हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया, पता लगा कोई टोटी चोरी कर रहा है।
2: फिलहाल तो सीएम योगी धुआंधार अंदाज में अखिलेश यादव सरकार के सारे पन्ने एक एक करके खोल रहे हैं।
1: सपा के गुंडे खा जाते थे, उनके दलाल खा जाते थे, गरीब कहाँ, गरीब तो देखता रह जाता था। आज आपको हम लोगों ने कार्ड भी उपलब्ध करवाया है, हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी प्रदान। अच्छे लोगों को चुनोगे अच्छा परिणाम आएगा, माफिया को चुन करके भेजोगे तो खून भी चूस डालेगा, विकास का पैसा तो हजम करेगा ही करेगा, संपत्तियों पर भी माफिया कब्जा करता है।
2: बीजेपी राज में महाभ्रष्ट शासन प्रशासन ने जनता का विश्वास खो दिया है। हत्याओं और एनकाउंटर ने उत्तर प्रदेश की छवि को पूरी तरह नकारात्मक बना दिया है। बीजेपी खुद अपराधी है। सीएम योगी चुनावी चौसर पर ऐसी बिसात बिछा रहे हैं जिसका असर 2027 चुनाव पर हो सकता है।
1: जिस बोली और भाषा को समझेंगे उसी में उनको समझाने का काम करेंगे और नौजवानों की रोजगार पर किसी को डकैती नहीं डालने देंगे। इंसेफ्लाइटिस की बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। हमने गाय को माता माना है तो गाय तो हमारे लिए माता है, वो पशु नहीं, पशु तुम्हारी बुद्धि है जो तुम हमारी गौ माता को पशु बोलते हो। सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी।
2: क्योंकि यूपी में चुनाव सिर्फ लड़ा नहीं जाता, यहां नैरेटिव भी जमकर बोलता है। उसी के जरिए 2027 विधानसभा के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी अपने अपने हिसाब से माहौल बनाने में जुट गई है। आज तक ब्यूरो।
0: और अब उन सवालों पर डालते हैं नजर जिनके इर्द गिर्द आज की हमारी बहस रहेगी केंद्रित। सवाल नंबर एक, क्या यूपी में 2027 चुनावों की लड़ाई अभी से शुरू हो गई है? बयान इस ओर संकेतों करे रहे। सवाल नंबर दो, क्या योगी कानून व्यवस्था को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाएंगे? अलग अलग मंच से जो बयान आ रहे हैं ये भी संकेत कर रहे हैं। सवाल नंबर तीन, क्या एनकाउंटर पर अखिलेश यादव का सवाल उठाना उनकी पार्टी के लिए फायदेमंद होगा? और चर्चा के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शलभमणि त्रिपाठी जुड़े हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका जुड़े हैं, हमारे साथ अनिल दुबे जुड़े हैं जो कि आरएलडी के स्पोक्स पर्सन है, साथ ही साथ हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर सतीश प्रकाश हैं और राजनीतिक विश्लेषक शांतनु गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन शलभमणि त्रिपाठी जी, चर्चा की शुरुआत आज आपसे। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को असफल मुख्यमंत्री कह रहे हैं, साथ साथ में कह रहे हैं कि अवैध खनन हो रहा है, हत्या हो रही है, डकैती हो रही है, बलात्कार हो रहा है, महा जंगल राज है।
6: अब देखिए, समाजवादी पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी की या भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ करने लगेगी तो आप जरा बताइए कि राजनीति का क्या ही होगा। ये तो समाजवादी पार्टी कहेगी, समाजवादी पार्टी ने 2017 में भी यही कहा, 2022 में भी यही कहा और 2027 के चुनाव से पहले भी यही कह रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता सबसे बड़ी न्यायाधीश है, उत्तर प्रदेश की जनता सबसे बड़ी मालिक है और उत्तर प्रदेश की जनता ने वो कालखंड देखा है कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में क्या होता था। अब ये खनन की बात करेंगे, जितने समाजवादी पार्टी के नेता थे उन्होंने इतनी इलीगल माइनिंग की कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट तक को टिप्पणी करनी पड़ी और बड़े पैमाने पर बाद में कार्रवाइयां हुई। अपराध की बात करेंगे तो हत्या जैसे अपराध में 40% की गिरावट आई है, ये हम नहीं कह रहे, एनसीआर भी कह रहे हैं।
0: शलभमणि त्रिपाठी जी, बलात्कार जैसी बीजेपी के लिए कहा जाता है कि क्या बीजेपी आगे की तरफ नहीं देखती, बीजेपी बार बार पीछे की तरफ क्यों झांकती है? जो हुआ था सो हुआ था, 2017 में हुआ था, आप 27 की तरफ देखिए ना, अब वर्तमान में आइए, इतिहास में क्यों झांकते हैं बार बार?
6: अब ये बीजेपी आज तक से तो पूछ कर या राजीव ढोंडियाल से पूछ करके तो राजनीति करेगी नहीं, ये बीजेपी की राजनीति। हम आपसे नहीं बोलते कि आप अपनी बुलेटिन कैसे चलाइए, तो बीजेपी को कैसे राजनीति करनी है, किन मुद्दों पर राजनीति करनी है, ये हमें तय करने दीजिए। क्यों? क्योंकि मुख्तार अंसारी लोगों को याद है, जो मुख्तार अंसारी खुली जिप्सी में बैठ के दंगे कराता था और समाजवादी पार्टी की सरकार और कांग्रेस की सरकार पाल पोस कर उसको मजबूत करती थी। आज मुख्तार अंसारी गैंग नेस्तनाबूद हो चुका है, मिट्टी में मिल चुका है। अतीक अहमद, जिसको समाजवादी पार्टी ने गली के गुंडे को उठाकर ले जाकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया, समाजवादी पार्टी का नेता था, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिट्टी में मिल चुका है, मिट्टी में बिल्कुल तब्दील हो चुका है पूरा का पूरा गैंग। तो आज उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि योगी उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करते हैं, जिनका अपना कोई परिवार नहीं
0: और
6: है,
0: जिस
6: अपना
0: तरीके से आपने मिट्टी में मिलाया है उस तौर तरीके पर भी तो शलभमणि त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। मतलब उस पर तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक सवाल खड़े कर चुका है, जो आपका तौर तरीका है एनकाउंटर पॉलिसी है उस पर तो सवाल उठ रहे हैं।
6: उसी तौर तरीके से मिलाएंगे, फिर आपसे कह रहे हैं राजीव जी, उसी तौर तरीके से मिलाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने इसी बात का जनादेश दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि 2017 के पहले एक एसएसपी स्तर का अधिकारी जाकर अतीक अहमद के यहाँ वारंट इशू नहीं करा पाता था, आज हमारा एक होमगार्ड जाता है और अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे गुंडों के यहाँ संबंध चिपकाकर चलाता है, किसी की औकात नहीं एक शब्द बोल दे, क्योंकि मिट्टी में मिलाने का जनादेश जनता ने दिया है। और एनकाउंटर पे या जो भी सवाल उठे हैं, आप भी कोर्ट चले जाइए, समाजवादी पार्टी के लोगों को भी कोर्ट जाना चाहिए, जाकर फांसी लगवा दे हमारे लोगों को। इतनी सारी
0: यानी ये जो एनकाउंटर करवाए जानबूझकर करवाए गए,
6: आप
0: मिट्टी में मिला
6: नहीं,
0: मैं तो आप कह रहे हैं कि आप तो श्रेय ले रहे हैं, आप अगर एनकाउंटर का श्रेय ले रहे हैं तो फिर सवाल पूछा जाएगा कि आपने करवाए
6: क्यों नहीं लेंगे। एनकाउंटर अगर आप समझते हैं तो एनकाउंटर को थोड़ा पढ़िए, पुलिस वाला भी किसी का बेटा होता है, पुलिस वाला भी किसी का बाप होता है, किसी का पति होता है, और पुलिस पर गोली चले कोई चलाएगा तो गोली खाएगा, एनकाउंटर इसको कहते हैं। राजीव ढौंडियाल या सभा या कांग्रेस के लोग जो एनकाउंटर की परिभाषा बताते वो एनकाउंटर नहीं है। पुलिस पर अगर कोई अपराधी गोली चलाएगा तो मोदी जी और योगी जी की सरकार में मिट्टी में मिलाया जाएगा और डंके।
0: तो ये जवाब आपने सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं दिया, ये जवाब जो आज आप मीडिया के सामने दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में भी दे देते कि मिट्टी में मिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वहां तो नहीं दिया आपने जवाब।
6: तो दिया तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। आप मुझे एक एनकाउंटर बता दी जिसमें सजा हुई हो, एक एनकाउंटर बता दीजिए जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फर्जी है, एक बता दीजिए ना। हम तो आपके बुलेटिन के खिलाफ भी अगर कोर्ट में कंप्लेन कर देंगे।
0: संजय निषाद जी
6: मंत्री है, न्यायालय नहीं है ना, आप न्यायालय में चले जाएंगे क्यों नहीं जाते? इतने सारे एनकाउंटर हुए हैं, आप जाके न्यायालय में करा दीजिए इंक्वायरी, सारी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी हुई, सारी कोर्ट की जुडिशियल इंक्वायरी हुई, सब में क्लीन चिट मिला, सब में प्रशंसा हुई, सब में ये कहा गया नोटोरियस क्रिमिनल है। 40-40 मुकदमों के जो अपराधी हैं उनके लिए भाग के सपा कोर्ट में जाती है, 50-50 मुकदमों के जो माफिया डॉन है उनके लिए
0: मनोज काका वो कह रहे हैं कि उनकी तो प्रशंसा हुई है, सवाल ही नहीं पूछा है, एनकाउंटर जो हुए हैं मिट्टी में मिला देने का अधिकार जनता ने दे दिया है।
7: राजीव जी हमसे सवाल
0: जी,
7: है
0: जी मनोज काका जी,
7: देखिए वो जो बात है ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो सरकार भी तुम्हारा है, तो ये किस तरह की बात हो रही है? इस विद्वान प्रवक्ता से मैं ये पूछना चाहूंगा, सारे माफिया मिट्टी में मिल गए और देश के प्रधानमंत्री भी सुने आपके मंच को, पूरी देश की जनता सुने, उसी उसी उत्तर प्रदेश में बनारस से कौन सांसद है, देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार है, बनारस का एमएलसी कौन है, कौन साधु है जिस माफिया के खिलाफ लगातार लोग कह रहे हैं कि हमारी जमीन माफिया से बचाओ, हमारी जमीन माफिया से बचाओ। मुख्यमंत्री जी का सारा जो माफियाओं पे जो बंदूक चलती है, अगर स्वजाति माफिया आ जाएगा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, उनके पुलिस की, उनका ना बुलडोजर काम कर पाता है और ना ही उनकी बंदूकें चल पाती हैं। इनकी बंदूकें सिर्फ दलितों पिछड़ों पर चलेंगी, कोई मुसलमान पर चलेगी, तो इस तरह से जिस सरकार को अभी कल ही विनोद दिवाकर की बेंच ने, अभी साथी कह रहे थे कि कोर्ट कहती है, कोर्ट ने कहा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा, विनोद दिवाकर ने कहा, जस्टिस विनोद दिवाकर ने, कि उत्तर प्रदेश की पुलिस अपने राजनैतिक आकाओं को खुश करती है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, वो संविधान के किसी भी मूल्य को, संविधान के संवैधानिक सिद्धांतों को नहीं मानती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसीलिए जाने जाते हैं कि रात में 2 बजे बेटी जलवा देते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसीलिए जाने जाते हैं कि स्वजाति माफियों को संरक्षण करते हैं, उनको हेलीकॉप्टर में बैठा के चलते हैं। नहीं तो मैं यह जानना चाहूंगा कि उसी बनारस में हेमंत पटेल की हत्या हुई, स्कूल में घुस करके उसको गोली मारी गई, क्या उसके जिस पर आरोप है उसका इनकाउंटर कर पाए? यूपी कॉलेज में जो युवा की हत्या हुई उसका इनकाउंटर कर पाए? तो ये जो लोग हैं जो निरा अपराध को अभी हम आप जब बात कर रहे हैं, बहुत
0: मनोज काका
7: अभी स्वयं विचार
0: अगर इशू पर रहते तो वहां तक तो ठीक है, तो आप मसलों पर बोल सकते हैं, ठीक है, एक राजनीतिक दायरे में सारी चीजें कही जा सकती है, लेकिन जो अखिलेश यादव पोस्ट कर रहे हैं कि वनस्पति का अत्यधिक सेवन करने से बोलने और समझने की क्षमता प्रभावित हो जाती है, या आप किस तरफ जा रहे हैं, मतलब आप क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं?
7: नहीं देखिए देखिए भाषा की जो बात है, भाषाई मर्यादा तो सबसे ज्यादा उनको सीखने की जरूरत है, जो अपने ही सांसद को किस तरह के शब्दों से वो अब वो कौन सा शब्द पहले जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था, वो तो मैं आपके चैनल पर कह रहा हूं, माफी चाहता हूं, इस तरह के शब्द तो हम लोग भी नहीं बोल सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, एएनआई को क्या बोला उन्होंने, जो जिन लोगों की पूरी ट्रेनिंग ही गालीबाजी में हुई हो, जिनका आदर्श हेमंत बिश्व शर्मा से लेकर के रमेश भिदूड़ी हो, अनुराग ठाकुर हो, जिन लोगों की गाली देने की पूरी ट्रेनिंग की गई हो, तो उन लोगों से किस तरह की भाषा के उपयोग। और सच है कि वनस्पति के प्रयोग से, यह सही बात है कि वनस्पति के प्रयोग से उत्तर प्रदेश में अभी आज ही उत्तर प्रदेश के एयरपोर्ट 12 करोड़ का वनस्पति पकड़ा गया, तो जब प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के जो शीर्षस्थ लोग हैं वो जब वनस्पति का ज्यादा सेवन करेंगे, जब डग्गा मार गाड़ियों का कभी संचालन कराए रहे होंगे, तो उनसे अच्छी भाषा की उम्मीद कैसे कर सकते हैं आप? भाषा पर तो कबीर ने कहा कि ऐसी भाषा बोलिए मन का आशा खोए, औरन को शीतल करें आप शीतल हो, लेकिन जो लोगों की पूरी ट्रेनिंग ही गालीबाजी की हुई हो, जिन लोगों के आदर्श ही नाथूराम गोंडसे रहे हो, उनसे आप शुचिता और नैतिकता की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? हमारा सवाल है कि अगर उत्तर प्रदेश में सुरक्षित कानून व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश में बहुत बिजली मिल रही है, तो जो विधायक साथी बैठे हैं ये बेचारे अभी 2-3 दिन पहले फीटर पर खड़े थे, तो इनसे पूछिए अगर सुरक्षित कानून व्यवस्था है तो बनारस से लेके गाजीपुर से लेके गाजियाबाद उसी गाजीपुर में क्यों हत्याएं हो रही हैं? आए दिन हत्याएं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश हत्या के मामले में और बेटियों के खिलाफ अपराध के मामले में एनसीआरबी के आंकड़े हैं, पूरे देश में नंबर 1 पर
0: है। शलभमणि जी हैं, उनके पास तो डेटा होता ही है, काफी जानकार व्यक्ति हैं। शलभमणि जी, जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उन पर जवाब तो देते हुए आप ही बता दीजिए, महिला अपराधों में उत्तर प्रदेश इस समय कहां है? हत्या के मामले दूसरे प्रदेशों, चलो कांग्रेस शासित प्रदेशों से कंपैरिजन कर लीजिए, बता दीजिए कहां है
7: दलितों के खिलाफ होने वाले अपराध में पहले नंबर पर।
6: अगर आप सुन लेंगे मेरी बात सुन लीजिए, हत्या के मामलों में 40% से ज्यादा की गिरावट आई, महिला अपराध के मामलों में 43% से ज्यादा की गिरावट आई, जो प्रोसिक्यूशन है यानी सजा मिलाप दिलवाने में उसमें 30% की बढ़ोतरी हुई है, लूट डकैती 80% नीचे हुआ है। लेकिन ये नहीं मानेंगे, मैं सीधे सीधे विषयों पे आता हूं जिनके जरिए आप समझेंगे। अब आप जरा समझिए, इनके लिए राजू पाल क्या है? एक गड़ेरिया समाज से, पाल समाज से आने वाले व्यक्ति है, विधायक है, राजू पाल की दीनदाड़े हत्या कर दी जाती है, वो पीडीए में आते हैं कि नहीं आते हैं? और राजू पाल की पत्नी, उन्होंने समाजवादी पार्टी ये कह के लात मार दी जो विधायक है कि जिन्होंने पति की हत्या करा दी और उसके बाद देवर की हत्या करा दी, यानी राजू पाल विधायक की हत्या का इंसाफ लड़ते लड़ते उमेश पाल की हत्या करने वाले लोग कौन थे?
7: किस पार्टी से विधायक
6: का पूरा गेम?
0: बीच में बोलने दूंगा, किसी को टोकने मत दूंगा, जिसका नाम है वो बोलेगा अगले 30 सेकंड
6: में। राजू जी मेरा टाइम दीजिए,
0: मनोज जी प्लीज उनको सुनिए, लेकिन अगले 30 सेकंड खत्म करें,
6: मुझे भी टोकना आता है। देखो मुझे पता है कि ये जिस प्रकार के अतिक्रमणकारी उनसे कैसे निपटा जाता है, मैं निपट सकता हूँ, लेकिन इनको रोकिए पहले। दूसरी बात, राजू पाल उमेश पाल
7: का प्रयोग मत करिए,
6: आपकी आराधकता जानते हैं लोग, मुझे समाजवादी पार्टी का चरित्र बताने की आवश्यकता नहीं है। आपने बहन मायावती जी को पीटा, बहन मायावती जी दलित थी कि नहीं थी? 2012 में आपकी सरकार आई तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर जितने संस्थान थे उसके जब तक कहीं खुलेगी बोलेंगे। राजीव आप इनको रोकिए,
0: मनोज जी महाराज जी रुकिए, प्लीज डाउन करिए 30 सेकंड में, आप टॉपिक पर अपने मुद्दे पर रहते हुए बात कंप्लीट करिए।
6: आप मुझे समय दीजिए, आप इस प्रकार सारे आरोप लगवा के काशी राम जी के नाम पर जितने स्मारक थे, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, रातों रात काली पोत दिए, उनको तोड़ दिया गेटों को, बहन मायावती जी की मूर्ति तोड़ दी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति तोड़ दी, ये दलितों के शुभचिंतक बनते हैं। जितने दलितों की जमीनों पर कब्जा समाजवादी पार्टी के गुंडों ने किया, और ये मनोज जी क्या बोलेंगे, ये जातिवाद की बात करते हैं। सबसे ज्यादा एक जाति के एसडीएम भरे गए, सबसे ज्यादा एक जाति के लेखपाल भरे गए, सबसे ज्यादा एक जाति के लोग पुलिस में भर्ती किए गए, ये जाति की बात करेंगे।
0: ठीक है, बात आ गया आपकी, सतीश प्रकाश जी, ठीक है शलमर जी आपके पास लौटूंगा। सतीश प्रकाश जी, ये एनकाउंटर वाली जो नीति है, ये कानून का राज है या कानून से ऊपर की नीति है?
8: नहीं, कोई भी सभ्य समाज में एनकाउंटर कोई व्यवस्था नहीं हो सकती, ये कहीं ना कहीं असभ्य समाज का एक इंडिकेटर है। दूसरी बात, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि 17,500 एनकाउंटर करने के बावजूद भी अगर उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त नहीं हो रहा है तो यह सरकार की व्यवस्था और सरकार की पुलिस और कहीं ना कहीं सरकार इसके प्रति जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। आखिर इतने एनकाउंटर होने के बाद उत्तर प्रदेश इसलिए अपराध मुक्त नहीं हो पाया कि आपने एनकाउंटर करते वक्त आपकी नीति ठीक नहीं थी। अगर कोई गुंडा किसी विशेष जाति का है, अगर कोई माफिया विशेष जाति का है, स्पेशल मुख्य रूप से योगी जी की जात का है, तो इस बात की कोई संभावना नहीं कि ऐसे माफिया, ऐसे गुंडे, ऐसे अपराधी के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस कहीं ना कहीं कुंठित अपने आप को महसूस करती है। उसको लगता है कि अगर उसने जो योगी जी के सजातीय बदमाश गुंडे टाइप के लोग हैं वो कहीं ना कहीं, देखिए अभी मैं आप बताइए कोई भी सरकार कैसे अपराध मुक्त हो सकती है। आज की डेट में 28% जो बीजेपी के विधायक हैं उनके ऊपर हीनियस क्राइम के मुकदमे हैं, ये बात सच है। यही योगी सरकार ने बाकायदा हाईकोर्ट के अंदर लगभग 2,500 मुकदमे लिखवाने वापस करने की बात करी। तो ऐसे समय में लोगों को याद आ रहा है, देखिए अपराध कैसे खत्म होता है। 2007 से लेकर के 2012 के बीच में आदरणीय बहन जी की सरकार थी, बहन जी के एक एमपी के ऊपर एक महिला ने आरोप लगाया और बहन जी ने उस अपनी पार्टी के एमपी को अपने आवास पर बुला करके बाकायदा गिरफ्तार कराया, जेल भिजवाया। ये एक सबक है। अगर आप लोगों के सामने एक नैरेटिव क्रिएट करेंगे तो लोग डरेंगे। अगर योगी जी वाकई सच्चे मन से, और आप मुझे ये बताइए इन 17,500 एनकाउंटर में 50 तोप बदमाशों के एनकाउंटर नहीं है, आपने कहीं से जरा जरा से लोगों को उठाकर का एनकाउंटर भी आप कैसे कर रहे हैं भाई? किसी के पैर में गोली मारते हैं। अब तो उत्तर प्रदेश में यह भी जुमला है कि अगर गोली लगने के भी रेट तय है, अगर आपको 1,00,000 रुपए में गोली लगवानी है, 50 में लगवानी है, 20 में लगवानी है, तो अगर अगर आप 1,00,000 देंगे तो कम इंजरी होगी। तो ये हालात अगर उत्तर प्रदेश के, देखिए राजीव जी
0: ये एक एक ये बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ठीक है सतीश जी, मैं लौटता हूँ आपके पास, इसका जवाब मैं शलभ मणि त्रिपाठी से लूंगा, लेकिन उससे पहले
8: एक छोटी सी बात, एक छोटी,
0: चलिए ऐड करें जल्दी।
8: उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। उत्तर प्रदेश के अंदर 8.5 लाख पद खाली पड़े हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हर व्यक्ति, हर घर के अंदर एक बेरोजगार व्यक्ति बैठा है। आज कहीं ना कहीं जो बेरोजगार व्यक्ति है वो अपने आप को ठगवा महसूस कर रहा है, और योगी जी की सरकार पेपर कराने में, पेपर आउट कराने में, कहीं ना कहीं जो पेपर माफिया है उनके खिलाफ कार्रवाई करने में कहीं ना कहीं नाकाम है।
0: बहुत गंभीर आरोप है। चले शलभमणि त्रिपाठी, मैं चाहता हूँ इस पर आप जवाब दें। वो तो ये भी आरोप लगाने लगे हैं कि रेट भी तय है एनकाउंटर का।
6: अब देखिए सतीश प्रकाश जी के लिए वो लोग महापुरुष हैं, मैं चुनौती देता हूँ 17,500 एनकाउंटर हुए हैं, उनके जाके फूल माला उनको पहनाइए आप सतीश प्रकाश जी, क्योंकि हम तो चुनौती देते हैं कि उसमें से एक भी ऐसा व्यक्ति हो जिसको समाज सम्मान की नजर से देखता हो तो आप मुझे बता दीजिए। 17,500 एनकाउंटर हुए, उसी का परिणाम यह है कि आज उत्तर प्रदेश में माताएं बहने रात में 2 बजे भी निकल जाती हैं, उनके चेन पर कोई हाथ नहीं डालता, और अगर कोई डालने का प्रयास करता है तो उसके विरुद्ध किस प्रकार की कार्रवाई होती है ये भी आपको पता है। आपने बेरोजगारी की बात की, आप जरा समाजवादी पार्टी की सरकार में और अपनी सरकार में देख लीजिए, आपकी बसपा की सरकार में 1.5 लाख भर्तियां होती, समाजवादी पार्टी की सरकार में 2.5 लाख भर्तियां होती।
8: 6.5 लाख, सुनिए सुनिए
6: सर, बोलने दीजिए बोलने, अरे सर सबको पता है सर, बोलने दीजिए, अरे सर बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए सर। नोटों की माला, नोटों की माला सर, नोटों की माला पूरी दुनिया ने देखी सर, हमने नहीं देखी, पूरी दुनिया ने देखी नोटों की माला। अरे सर
0: आपको नहीं टोका था सतीश जी, किसी ने बीच में शलभमणि जी, चूंकि काफी समय हो गया, 20 सेकंड में आप बोले, फिर राजीव भाई के पास
6: आप चुप तो करें, पहले कैसे बोलूँ
0: सतीश जी, प्लीज
6: चुप तो करें, पहले कैसे बोलूंगा, नहीं ऐसे छोड़ोगा आप, अपनी बारी बोलिए, अपनी बारी बोलिए। अरे सतीश जी आपको समय मिलेगा, राजीव जी देखिए ये बात ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है।
0: मैं अगर टोक ना रहा हूं तो आप बोल सकते हैं, मैं अगर टोक ना रहा हूं तो आप बोल सकते हैं, मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं चुप रहने के लिए।
6: आप मुझे बता दीजिए फिर मैं चुप रहता हूं। तो बसपा सरकार का एनआरएचएम स्कैम हो, चाहे बसपा सरकार के जो हाथियों के घोटाले हुए थे वो सबको पता है, लेकिन मैं थोड़ा सा कह रहा हूं कि आज जरा जो लोग बात कर रहे हैं,
0: 8.5 लाख पद खाली है,
6: सूर्य चौहान नहीं, 10 लाख भर्तियां हुई उत्तर प्रदेश में, 10 लाख ईमानदारी से भर्ती हो रही है।
0: उनको जवाब देने दीजिए, उनके पास क्या तर्क है, इसका सिर्फ तर्क दे रहे हैं, बताइए 8.5 लाख पद खाली,
6: 10 लाख भर्तियां उत्तर प्रदेश, 10 लाख भर्तियां ईमानदारी से हुई है, ये सबको पता है, पूरे उत्तर प्रदेश में पता है 10 लाख भर्तियां। कोई नहीं कह सकता कि समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकार का इश्तेहार भरे जाए। सतीश जी मैं भी आपको बोलने नहीं दूंगा, फिर मैं भी आपको बोलने नहीं दूंगा, आप कभी बोल नहीं पाओगे। और फिर राजीव जी मेरा आप आवाज डाउन मत करना, क्योंकि अगर आप एजेंडी चलवाना चाहते हो तो आप चलवा लो। मैं कहता हूँ सूर्या चौहान गरीब परिवार का बेटा है, वो इंसान है कि नहीं है? उसकी हत्या करने वाला, कुर्बानी करने वाला मोहम्मद असद है, तो दही जमा कर बैठे हैं बसपा वाले भी, सपा वाले भी और कांग्रेस वाले भी।
0: प्रियंका,
6: आप बलरामपुर में देखिए, मौर्य परिवार का बेटा है,
0: बीजेपी कह रहे हैं कि आज के समय में पहले तो इतना सेफ माहौल है, महिला आराम से घर से निकल सकती है, जिस समय चाहे उस समय निकल सकते हैं।
9: देखिए राजीव जी, सबसे पहले तो कहिए कि बीजेपी के नेता सुधर जाए तो महिला ऑटोमेटिक अपने घर से निकलने लगी, पर वास्तविकता ये है कि बीजेपी का जो टिकटार्थी है वो एक महिला को स्कॉर्पियो गाड़ी में ले जाता है और उसका मर्डर करता है और उसके साथ में उसको नग्न अवस्था में छोड़ के 300 किलोमीटर चला जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाल है। अब आगे आप क्या पूछेंगे और मैं क्या बताऊंगी। जिस तरीके से ये सूर्या की चिंता कर रहे, त्यागी की चिंता क्यों नहीं कर पा रहे? त्यागी की चिंता तो आप, सवाल ये है कि वास्तविकता ये है कि उत्तर प्रदेश में न महिलाएं सुरक्षित हैं और ना ही व्यापारी सुरक्षित है। जिस तरीके से व्यापारी की हत्या हो गई और उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने इनकाउंटर किया, उसके बाद गांव वालों का विरोध देखिए, इनकाउंटर पर लगातार सवाल उठते चले आ रहे हैं। और अगर इनकाउंटर करने से ही अगर जो है कानून का राज स्थापित होता है तो इनसे पूछिए कि इतने हत्याएं क्यों हो रही है। लगभग रोज 9 हत्याएं हो रही है और 10 के करीब रेप हो रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के हालात
0: वो है। तो कह रहे हैं 40% की गिरावट आ गई है।
9: 40% गिरावट किसमें आ गई है? कंप्लेन लिखने में आ गई। गाजीपुर की बेटी की कंप्लेन नहीं लिखी जा रही थी, हाथरस की बेटी की कंप्लेन नहीं लिखी जा रही थी। अगर आपको कोई छेड़ रहा है तो आपकी कंप्लेन नहीं लिखी जाएगी जब तक आपको सोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, जब तक आपको किसी नेता मंत्री का सोर्स नहीं चाहिए लगेगा, तब तक आपकी कोई कंप्लेन दर्ज नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के हाल है। और ये साहब बैठे बीजेपी के प्रवक्ता, इनसे पूछिए कल किसकी लाइट काटते फिर रहे थे ये? उत्तर प्रदेश में लाइट की समस्या ऐसे जूझ रहे हैं लोग और ये खुद जाकर वहां पर जो है लोगों की लाइट काट रहे हैं। ये हालत हो गई है उत्तर प्रदेश में लाइट की समस्या की। ये मणि बड़ी त्रिपाठी जी से पूछिएगा। केजीएमयू का हॉस्पिटल जो लखनऊ का हॉस्पिटल है जो उत्तर प्रदेश की राजधानी में, उसमें क्या हो रहा है? उसमें धांधली चल रही, कमीशन खोरी चल रही, भ्रष्टाचार चल रहा
0: है।
9: इसके तहत गंभीर बीमारियों में जो दवाएं यूज होती है वो कमीशन खोरी के नाम पर भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाती
0: है। ठीक है, ठीक है, मैं लौटता हूँ प्रियंका आपके पास। और दूसरे मेहमान भी है, वो काफी देर से इंतजार करें।
9: अनिल, ये गलत बात है राजीव जी,
0: मैं तो इतना समय दिया तो है आपको बोलने के लिए।
9: इतनी देर बाद कितना समय दिया आपने? कितना समय दिया?
0: नहीं तो कम से कम पिछले 1.5 मिनट से तो आप बोल रहे हैं प्रियंका।
9: अगर आप इस तरीके से डिबेट कराते तो कांग्रेस को मत बिठाएं।
0: प्रियंका, मैंने आपको पूरा समय दिया बोलने, आप ये नहीं कह सकते मैंने आपको समय नहीं दिया। अगर आपको मतलब पूरी लंबी स्पीच देनी है तो फिर आप ऐसे करिए, डिबेट में ऐसा थोड़ी होता है। मतलब 1.5 से 2 मिनट बोली है आप चाहे तो देख सकते हैं बाद में। चलिए कम्प्लीट करिए, चलिए अतिरिक्त 20 सेकंड और देता हूँ, बोलिए।
9: मैं पूछ रही हूँ की आखिर भ्रष्टाचार की भेंट क्यों चढ़ती जानी जा रही है? आपकी टंकियाँ जो फूटती चली जा रही है और भ्रष्टाचार की वजह से सड़कें धसती चली जा रही है, 12-12 फीट गड्ढे होते चले जा रहे हैं आपके आगरा में अस्पतालों में जो है। आप सोचिए, डॉक्टर नहीं है, दवाएं नहीं है, मरीज जो है पूरी तरीके से स्ट्रेचर नहीं मिल पा रहा। और बन क्या रहा है? 6 मंजिला इमारत बन रही है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की। पूछे इनसे कहां से इतना पैसा आ रहा है? आधे दामों में जमीनें खरीद खरीद के जो है भारतीय जनता पार्टी के 2 मंजिला इमारत जो है कार्यालय बन रहे हैं। और लोगों के लिए हॉस्पिटल नहीं है, लोगों के लिए सड़क नहीं है, लोगों के लिए रोजगार नहीं
0: हो गया, ठीक है।
9: अगर अगर अगर अगर बच्चे खड़े होंगे पेपर लीक के लिए तो लाठियां मिलेंगी। 69,000 शिक्षक भर्ती कहाँ है? क्यों नहीं जवाब देते ये लोग 69,000 शिक्षक भर्ती पर?
6: जवाब
9: ये है कि
0: मैं लौटूंगा आपके, क्योंकि सारे सवाल आपकी तरफ है। तो मैं पहले 2 रिएक्शन और ले लूं। पहले मैं अनिल दुबे जी, अपने शांत रहूं, आपके पास भी आ रहा हूं, ठीक है। प्रियंका, अब तो बात आ गई आपकी। अनिल दुबे जी, आपने तो दोनों मॉडल को देखा है, आपने सपा के मॉडल को भी देखा है और योगी मॉडल को भी देखा है, दोनों मॉडल में अंतर क्या दिखता है आपको?
10: देखिए राजीव जी, हम लोग अभी एनडीए में शामिल हुए और एनडीए में जब शामिल हुए तो एनडीए में शामिल होने से पहले देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्वर्गीय चौधरी साहब के सपनों को भारत बनाना चाहते हैं। स्वर्गीय चौधरी साहब के मिशन को पूरा करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग आए और उन्होंने पूरा भी किया। जो पिछले चार दशक तक कांग्रेस की सरकार रही उसने कभी चौधरी साहब को सम्मान नहीं किया, इस देश के खेत खलिहान का सम्मान करने का काम नहीं किया, लेकिन मोदी जी की सरकार ने और मोदी जी ने चौधरी साहब को भारत रत्न से नवाजा और आज किसानों के लिए वो काम कर रहे हैं। अभी अभी जो है गन्ना नियंत्रण आदेश एक केंद्र सरकार लाई थी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने उसको केंद्र सरकार से वार्ता करके उस अध्यादेश को वापस कराने का काम किया। तो हमारा तो एजेंडा, हमने ये देखा कि मोदी जी की सरकार, एनडीए की सरकार किसानों के लिए काम कर रही है, रोजी रोजगार के लिए काम कर रही है, विकास के लिए काम कर रही है और सरकार की योजनाएं, जो सरकार ने योजनाएं लागू की वो सभी जातियों को सभी धर्मों को मिल रही है। लेकिन अब विपक्ष को तो विरोध करना है, विरोध के लिए अगर विरोध करना है तो वो करें, लेकिन योगी जी की सरकार या एनडीए की जो केंद्र की सरकार है वो उसके आने के बाद इस देश में परिवर्तन हुआ है, देश में विकास की तरफ लोग चले हैं, लेकिन ये अलग बात है कि विपक्ष को उससे कुछ दिखाई नहीं पड़ता।
11: आप कह रहे हैं कि विपक्ष सिर्फ विरोध करने के लिए कह रहे हैं, ये जो भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन शांतनु मेरा सवाल ये है कि जो ये बुलडोजर की जो ये एनकाउंटर की राजनीति है, क्या इससे वाकई लॉ एंड ऑर्डर का कानून व्यवस्था का मूल्यांकन हो सकता है?
12: देखिए मूल्यांकन तो आप एनसीआरबी की रिपोर्ट से कर सकते हैं, और एनसीआरबी की जो 2024 की रिपोर्ट आती है उसका जो सबसे टॉप लाइन है वो कहती है कि उत्तर प्रदेश में जो क्राइम रेट, क्राइम मतलब एक लाख में कितना क्राइम होता है, उसमें 30% की गिरावट आई और नेशनल एवरेज से 30% कम, मतलब नेशनल एवरेज 250 का है, उत्तर प्रदेश 180 का। ऐसे नहीं उत्तर प्रदेश में क्राइम नहीं होता, लेकिन उत्तर प्रदेश में पहले राजीव भाई क्राइम होता तो थीम होती थी लड़के हैं गलती हो जाती है, आज उत्तर प्रदेश में क्राइम होता है तो माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। ये जो डिफरेंस है मेरे ख्याल से यही आज का उत्तर प्रदेश, और उसमें 34,000 गिरफ्तारियां भी हुई हैं, और जब 17,000 केसों में दबिश हुई और सामने से काउंटर फायरिंग हुई उसमें 280 लोग मारे भी गए, वो भी, और उन सब 280 केसों की मजिस्ट्रेट जांच हुई, उसमें एक भी केस में, कह रहा हूं एक भी केस में मजिस्ट्रेट इंक्वायरी में पुलिस गलत नहीं साबित हुई। तो मेरे ख्याल से तथ्य को सामने रखें, राजनीतिक लोग कुछ भी बयानबाजी कर सकते हैं, जो 34,000 गिरफ्तारियां हुई वो भी गिरफ्तारियां हैं, और आपको पता है उत्तर प्रदेश का कन्विक्शन रेट केवल अरेस्ट करने से कुछ नहीं होता राजीव भाई, आपको उनको कन्विक्ट करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश का कन्विक्शन रेट देश में सबसे अग्रणी है, 70%, तमिलनाडु में 10%, केरला में 18%, वेस्ट बंगाल में 2%, अभी सरकार बनी है तो शायद सुधर जाए नया। तो जो जो जो अपराधी पकड़ा जाता है, 34,000 लोग पकड़े गए उनमें 70% कन्विक्ट भी हुए हैं कोर्ट के द्वारा, ऐसी उनपे FIR चार्जशीट हुई, तो बेटा से इस परिस्थिति में, और इसी वजह से इन्वेस्टमेंट यूपी में आ रहा है क्योंकि उनका पैसा सेफ है, उनके एम्प्लॉय सेफ है, और हमें दिख भी रहा है उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता इतनी अकलमंद है, बड़े से बड़े नेता को 5 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री नहीं रहने दिया, और उत्तर प्रदेश की वही जनता 10 साल हो गई योगी जी को जाने नहीं दे रही है।
11: चलिए मनोज काका मतलब वो ये कह रहे हैं कि ये जो एनकाउंटर की जो पॉलिसी, जो एनकाउंटर हो रहे हैं, ये एक्चुअली लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हो रहा है और बकायदा डेटा के साथ कन्विक्शन रेट हाईएस्ट है, ये भी दावा हो रहा है।
7: देखिए डेटा पर तो ये कह सकते हैं कि जो डलहौजी ना कर पाया वो हुक्काम कर देंगे, और कमीशन दे दोगे तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे, और सुबह उठ के ये बंदे मातरम की गीत गाते हैं मगर बाजारों में चीजों का दोगुना दाम कर देंगे। तो डेटा कहाँ दिखा जाए, मैं साधी से पूछना चाहूंगा
11: मनोज जी, ये भी तो कह रहे हैं ना कि मजिस्ट्रियल जांच हुई है, कहीं भी फर्जी एनकाउंटर नहीं मिला है।
7: मैं आप मजिस्ट्रेट PUCL बनाम महाराष्ट्र का जो मामला है उसको आपको भी सबको और इनको पढ़ना चाहिए, जिस दिन सरकार जाएगी और जिस दिन उसकी जुडिशियल किसी जज के उसमें देखरेख में, अगर जिस दिन भी किसी न्यायाधीश के देखरेख में जांच होगी, उत्तर प्रदेश में 90% जो इनकाउंटर है वो फेक है, देश के ह्यूमन राइट कमीशन 10% ज्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश को,
12: तो
7: क्या क्या क्या क्या शांतनु जी मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, साथी आप तो गंभीर व्यक्ति हैं, लेखक हैं, कम से कम आपने तो सुनने की क्षमता।
12: अगर मजिस्ट्रेट इंक्वायरी पे भी अगर भरोसा नहीं है तो फिर हम डिबेट कैसे करेंगे?
7: क्या देश के नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को, क्या आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वो गलत है और उत्तर प्रदेश की सरकार सही है? कल जस्टिस विनोद दिवाकर की जो कमेंट आई कि उत्तर प्रदेश की पुलिस सिर्फ राजनीतिक लोगों की रोटियां सेक रही है और उनको आका समझ रही, संविधान का काम नहीं कर रही, तो इट मीन्स अगर संविधान का काम नहीं कर रही है तो योगी आदित्यनाथ का जो उन्मादी जो बयान है, ठोंक दो वाली राजनीति चल रही है, दलित है, पिछड़ा है, मुसलमान है, ठोंक दो, मुख्यमंत्री जी के सो जाते हैं, अरे नहीं नहीं नहीं इनको भेज दो। मैं यही तो पूछ रहा हूं कि हेमंत पटेल की हत्या करने वाले का इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ, मैं तो पूछ रहा हूं, आप बताइए। हाथरस के बेटी के साथ बलात्कार करने वाले का इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? उन्नाव की बेटी का बलात्कार करने वाले का इनकाउंटर, अगर इनकाउंटर इतना आदर्श है तो मेरठ में एक बेटी को दिन दहाड़े, कह रहे थे साथी की रात के 2 बजे बेटियां सुरक्षित हैं, मेरठ में तो एक बेटी को दिन दहाड़े उसके माँ की हत्या करके अपहरण हो गया, आपके चैनल ने भी चलाया, उसका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? अगर आपका पूरा आदर्श, अगर आपके न्यायिक व्यवस्था का आपका पूरा आदर्श अगर बुलडोजर है और आपकी आदर्श भाषा गाली है, एएनआई को गाली दे दो, एबीवीपी को दे दो, आज तक को दे दो, गाली दे दो, गाली देते रहो, हड़का दो कि जेल भेज देंगे, यही संविधान है, इसी से हम स्वतंत्र हुए। असल में जो लोग संविधान के लड़ाई में, लोकतंत्र के लड़ाई में थे ही नहीं, उनको बहुत भय है
11: कि आपका एनकाउंटर, आपकी जो बुलडोजर पॉलिसी है वो भी धर्मी देखती है और जाति भी देखती है।
6: राजीव भाई, मैंने बहुत धैर्य से सुना सबकी बातों को, मैं सिर्फ आपको फर्क बताना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी की सरकार में जवाहर बाग कांड हुआ, अधूरा के भीतर हमारे 2 जांबाज पुलिस अधिकारी मार दिए गए, राजीव द्विवेदी, संतोष यादव, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने अधिकार नहीं दिया कि पुलिस वाले गोली चला पाए, पुलिस वाले कार्रवाई करें। उसी प्रकार की घटना बरेली में हुई, मनोज मिश्रा एक गौ तस्करों की गाड़ी रोकते हैं, सब इंस्पेक्टर हैं और गौ तस्कर उनके ऊपर फायरिंग झोंकते हैं, लेकिन मनोज मिश्रा को अधिकार नहीं था कि अपने बचाव में गोली चला पाए। ये होता है, ये पॉलिसी होती है। आज योगी जी ने अधिकार दिया कि अगर पुलिस पर कोई गोली चलाएगा तो गोली खाएगा। आज अपराधियों और माफियाओं के परिवारों से ज्यादा तकलीफ सपा और कांग्रेस को क्यों हो रही है भाई? अतीक अहमद के परिवार से ज्यादा तकलीफ सपा को होती है, क्योंकि अतीक अहमद ने जो सभी जमीनें कब्जा की थी गरीबों की, मजलूमों की, दलितों की, पिछड़ों की, उनपे आज गरीबों के फ्लैट बना दिए गए, उनपे आज वकीलों के फ्लैट बना दिए गए। और एनकाउंटर होता नहीं है, एनकाउंटर परिस्थिति जन्य होता है। आपकी पॉलिसी खराब थी, आपने पुलिस को कहा था नहीं गोली नहीं चलेगी, चाहे लाख पुलिस वाले मर जाए। यहाँ योगी जी ने कहा है कि अगर कोई गोली चलाएगा व्यापारियों पे, किसी गरीब पर, किसी महिला पर, किसी कमजोर पर, किसी पुलिस वाले पर, तो गोली खाएगा। और उसी का परिणाम आज ये है कि सारे माफिया, मैं आपको चुनौती देता हूं कि किसी बड़े गैंग माफिया का नाम बता दीजिए जो आज गैंग ऑपरेट कर रहा हो और जिनका आप नाम लेते हैं। अगर आपको बड़ा मुद्दा लगता है तो आप जाइए ना कोर्ट में, आप जाकर कहिए ना इनके खिलाफ कार्रवाई करिए, सर कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है। लेकिन अपराधियों से ज्यादा आपकी तकलीफ दिखती है कि आप अपराधियों को कितने बड़े बदल
11: कर चुनौती दे रहे हैं सीधा कि बताइए अगर कोई गैंग ऑपरेट कर रहा हो यूपी में।
6: 5 मिनट राजीव भाई, 5 सेकंड
11: कंप्लीट करें, 5 सेकंड
6: कांग्रेस कांग्रेस को प्रियंका जी को बुरा नहीं मानना चाहिए, हमारी बहन जैसी है। आपकी पूरे देश और उत्तर प्रदेश में सीट ही नहीं, तो आपको राजीव जी ने बहुत समय दे दिया, आपकी तो एक सीट है, आपकी एक विधायक दिखती है, यही करतूत आपकी है। आप यही करतूत है कि राहुल गांधी 80 चुनाव हार चुके हैं, 80 चुनाव हार चुके हैं राहुल गांधी। तो राहुल गांधी पार्टी के लोग इस प्रकार आपका सारा जो क्योंकि लाइट आ रही थी और लाइट की फॉल्ट आप अपना नेता बनाते रहिए, ऐसे मुद्दों को लेकर लड़ते रहिए, लेकिन आपको हारने की गारंटी है। और भगवान करे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके प्राइम मिनिस्टर के अंदर चुनाव गांधी रहे, राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ते रहिए,
11: मुद्दों को आगे बढ़ाते रहिए, चुनाव हारते रहिए। प्रियंका प्रियंका, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, ठीक है। शलभ मणि जी, आपको 5 सेकंड दे दिए थे, उससे थोड़ा ज्यादा ही हो गया है, लेकिन लेकिन पहले मनोज काका, वो चुनौती दे रहे हैं आपको, कोई गैंग ऑपरेट नहीं कर रहा है यूपी में,
7: उत्तर प्रदेश में गैंग कौन ऑपरेट करने की सूचना, ऑपरेट करने की सूचना हम तो कर रहे हैं कि जो मुखिया है वही गैंग ऑपरेट कर रहे हैं। जो अगर मुखिया जी अगर पारदर्शी और निष्पक्ष होते तो सबसे बड़े अपराधी अभी देश के सर्व अभी देश के उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च उच्च न्यायालय ने बताया लिस्ट भेजी है कि किन अपराधियों के पास सबसे ज्यादा असल है और इतनी सुरक्षा में क्यों चलते हैं। सरकार ने अभी जवाब नहीं दिया तो कौन उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े गैंग माफिया थे जिसपे 1919 मुकदमे थे, ये सवाल है। मैंने तो पूछा, जो सवाल पूछा, क्या मेरठ के बेटी को न्याय मिल गया, हाथरस के बेटी को न्याय मिल गया, उन्नाव के बेटी को न्याय मिल गया, गाजीपुर के बेटी को न्याय मिल गया, ये तो सवाल है, इन सवालों का जवाब देना चाहिए। और टॉप 10 माफिया कौन है इसकी सूची देनी चाहिए। और सबसे बड़े गैंग जब सरकारी गैंग चलाने लगे, जब सरकारी स्वयं सरकार को जब उत्तर प्रदेश की कोर्ट ने कह दिया कि आप संविधान नहीं मांग रहे हैं, तो अब हमें आपको किसको क्या कहना है। ये तो जस्टिस विनोद दिवाकर की कल की रिपोर्ट है, कहिए तो व्हाट्सएप आपको कर दूं।
11: ठीक है, ठीक है। प्रियंका, आप भी कुछ ऐड करना चाह रही हैं कि मैं लौट रहा हूं, सबसे एक रिएक्शन ले लेता हूं। प्रियंका आप ऐड करेंगे इसमें कुछ?
9: सवाल ये है कि जब उनसे इनसे 19 बाहुबलियों का डिटेल मांगी गई तो ये चुप बैठ गए, क्योंकि वो इनके सजाती हैं कि इसलिए नहीं डिटेल दे पाए। उनसे जब पूछा गया लाइसेंस, उनकी हिस्ट्री और उसके साथ
6: में देखो कांग्रेस पार्टी देश से गद्दारी करती है, देश के खिलाफ बोलती है, देश के खिलाफ मुद्दे उठाती है, बार बार देश के दुश्मनों को मौका देते हैं कांग्रेस के लोग, ये कांग्रेस देश के खिलाफ
9: कांग्रेस का कार्य क्यों करती है बता दीजिए,
6: कांग्रेस का कार्य क्यों करती है, देश के खिलाफ का कार्य क्यों करती है, कांग्रेस का कार्य क्यों करती है आप मुझे बता दीजिए, देश के खिलाफ काम क्यों करती है कांग्रेस, राहुल गांधी के भीतर क्या कोई ऐसा है कि उनके भीतर जो देश के खिलाफ काम करने का जज्बा है, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी
11: जब आप बोल रहे थे मैंने बाकियों को भी नहीं बोलने दिया था, प्रयास तो किया था, प्लीज अभी उनको सुन लेना, उनके सवाल आपको ऑपोजिशन के सवाल सुनने चाहिए,
6: टोका था रावत बाड्रा सबसे बड़ा भूमाफिया, प्रियंका बाड्रा जमानत पर, सोनिया गांधी जमानत पर, राहुल गांधी जमानत पर, देश के खिलाफ काम करना,
11: आतंकवादी
6: मैंने
11: उनको टोका ना कि बीच में ना टोका,
6: हर व्यक्ति अपनी बात कह रहा है, लेकिन ये देश के खिलाफ काम करने वाली कांग्रेस पार्टी गद्दारी क्यों करती है, जवाब दे दीजिए, आप गद्दारी क्यों करते हो, कांग्रेस पार्टी के लोग क्यों चाइना के साथ खड़े होते हैं, क्यों पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, क्यों
11: आप शर्मा त्रिपाठी जी आप देखिए अब ये सही तरीका नहीं है, मतलब मुझे अगर मुझे मुझे मतलब जैसे मैंने दोस्तों के साथ किया था मुझे मजबूरन फेडर डाउन करना पड़ेगा आपसे, प्रियंका प्रियंका क्या बात है,
6: अगर आप करेंगे तो गलत करेंगे, क्योंकि भाजपा फेडर डाउन नहीं किया, कल ये बोल रहे हैं तो मैं इनको टोकूंगा क्योंकि इनकी कलाई खोलती है तो ऐसे करते हैं
9: ये लोग, ये गलत बात है,
11: मेरे फिर मेरा सवाल शर्मणि त्रिपाठी आपसे है कि क्या आप विपक्ष के सवालों से डर रहे हैं, क्या आप उनके सवाल भी नहीं सुनना चाहते हैं, क्यों आप बीच में टोक रहे हैं, उनको सुनने दीजिए, उनको उनके सवाल,
6: मुझे अच्छा राजीव भाई आप तो पत्रकार हैं, सोनिया गांधी क्यों रोई बाटला एनकाउंटर पर, मुझे बताइए,
9: शर्मा जिंदगी और मौत से पूछते हुए शहीद हो गए,
6: लेकिन कांग्रेस पार्टी देश के खिलाफ से खड़ी हुई बाटला एनकाउंटर के आतंकवादियों के लिए क्यों रोई है बता दीजिए, जब हमारे सैनिक चाइना के साथ जंग करते हैं फिर चाइना के पक्ष में क्यों बोलते हैं, धारा 370 के पक्ष में क्यों बोलते हैं, देश का गद्दार है जो 370 के पक्ष में बोले, राजीव भाई आप बताइए,
11: प्लीज ऐसा मत करिए, नहीं चाइना के साथ व्यापार तो आपने भी नहीं रोका ना, व्यापार तो हमारा उनके साथ चल ही रहा और चलना चाहिए सभी देशों के साथ, अभी से प्रियंका प्रियंका 30 सेकंड में अपनी बात कंक्लूड करिए फिर मैं दूसरे मेहमान के पास जाऊंगा, समय बड़ा कम है, प्लीज
9: देखिए सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जी की जो भाषा है बेहद आपत्तिजनक है, मंच से वो जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो शोभा नहीं देती, सबसे पहले तो इन्हें अपनी भाषा सुधारनी चाहिए, और लगातार सुशासन की ये बात कर रहे हैं उस भारतीय जनता पार्टी के गुंडे लॉकअप से,
6: भारतीय जनता पार्टी के
11: नहीं, आपकी आवाज आ रही है शलभमणि जी, ठीक है सतीश प्रकाश जी,
9: और ये सतीश प्रकाश जी उत्तर प्रदेश डंका पीटते हैं
11: सतीश प्रकाश
8: देखे राजीव राजीव जी ये बड़ा गंभीर विषय, जी जी सुनिए जी जी देखे देखे राजीव जी, उत्तर प्रदेश में इतने एनकाउंटर होने के बावजूद भी अगर उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त नहीं हो पा रहा है तो उसके कारण है, अगर दादरी में कुछ लोग जो योगी जी के सजातीय थे बाकायदा याकूब की हत्या इसलिए कर देते कि उन्होंने गोमांस रखा हुआ था, बाद में यह मुकदमा कहीं ना कहीं झूठा सिद्ध हुआ, लेकिन यही यही जब अपराधी उस गांव में आते हैं तो बीजेपी के तमाम लोग तमाम लीडर्स बाकायदा उनके गले में माला डालते हैं और उनको कहीं ना कहीं लड्डू बांटते हैं, शाना के अंदर सुबोध सिंह एक इंस्पेक्टर है उत्तर प्रदेश पुलिस के रहे, बाकायदा गोरक्षक उनको घेर के मारते हैं, और यही बीजेपी है कि उन्हीं अपराधियों को बाकायदा जिला पंचायत बनाती है, जहां ऐसे माहौल हो जहां अपराधियों को ये लग रहा है कि अपराध आप कर लेंगे तो सरकार आपको इनाम देगी, पार्टी में आपको बड़े बड़े पद मिल जाएंगे, ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त नहीं हो सकता, और एक छोटी सी बात राजीव जी कहता हूं सुनिए, हम आदिम युग में आंख के बदले आंख कान के बदले कान, ये कौन सा युग है, ये जंगल राज था, ये आदिम युग था, हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या सीखा, हर अपराध की एक सजा तय है, या तो कोर्ट में भी ताले लगा दो, आप बुलडोजर की भर्ती करो ना, ये जज की भर्ती भी बंद कर दो,
11: ठीक है क्योंकि समय सर कम है, मैं तो सबसे छोटे छोटे से रिएक्शन ले लेता हूँ शांतनु, मतलब लोकतंत्र डेमोक्रेसी है और आप तो मतलब इतने जानकार व्यक्ति हैं, तो डेमोक्रेसी में तो एक तरीका अपनाया जाना, एक न्याय की व्यवस्था है, उसका क्या पालन नहीं हो रहा है,
12: ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं है, मैंने आपको पिछली बार भी बताया, आप एक बार डेटा को ध्यान से सुनेंगे, 34,000 अरेस्ट और 280 एनकाउंटर में लोग मारे गए, राइट, वहां पे जहां पे सामने से काउंटर फायरिंग हुई, और इस सब में 20 पुलिस वाले मरे और करीब 2,000 पुलिस वाले घायल हो गए, भाई उसने पुलिस का एग्जाम इसने नहीं लिखा था वो माफिया की गोली से मारा जाएगा, तो और इसी वजह से उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा है, इसी वजह से योगी आदित्यनाथ दूसरी बार, पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में कोई मुख्यमंत्री दूसरी बार कंसेक्यूटिव टाइम आए, उसका कोई तो मतलब होगा। उत्तर प्रदेश की जनता पे हमें कुछ तो विश्वास रखना चाहिए।
11: अनिल दुबे, क्या 27 इसी मुद्दे पर रहेगा लॉ एंड ऑर्डर पर?
10: देखिए राजीव जी, 27 में लैंड ऑर्डर का मुद्दा होगा, किसानों के विकास का मुद्दा होगा, किसानों को उनकी उपज का मूल्य मिल रहा है ये मुद्दा होगा, जनहित के मुद्दे होंगे। और वो योगी सरकार या एनडीए की सरकार, आप देखिए देश में कहीं भी चुनाव हो रहे हैं, एनडीए की सरकार वहां पर लौट हर जगह पे आ रही है, इसका मतलब जनता एनडीए से संतुष्ट है। और उत्तर प्प्रदेश में हम लोग, हमारी पार्टी भी
11: हर मुद्दे हर क्षेत्र में योगी सरकार अच्छा काम कर रही है, वो कह रहे हैं।
7: नहीं, बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं, उनके अच्छे कामों की प्रशंसा क्यों नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने पूरा पेपर लीक करा दिया, ये अच्छा काम कर रहे हैं। अभी नीति आयोग की रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश में 4 लाख शिक्षकों की भर्ती पद खाली है, लेकिन सरकार कोई आवेदन नहीं ले रही है, ये अच्छा काम करा रहे हैं। अपराध के क्षेत्र में इनका यह है कि KGMU जैसे जगह पे 5-5 करोड़ की फर्जी दवाइयां बांट दी जा रही है, ये अच्छा काम करा रहे हैं। एक्सप्रेस वे शाम को बनवाते हैं, सुबह गिर जाता, अभी अच्छा काम कितना करा है। हमीरपुर में पुल गिरी, 6-6 लोग मर गए, अब किसी नेता के, किसी विधायक किसी मिनिस्टर के घर के तो मरे नहीं, मजदूर मर रहे हैं, मरने दीजिए। और इस पर अट्टहास करेंगे, अच्छा चंदौली में शाम को पुल बना और सुबह गिर गया। चंदौली में एक महिला बिचारी जो पिछड़े तबके से आती थी, उनको उनको बीजेपी के नेताओं ने उनके घर में घुस करके पीटा। तो ये सब अच्छे काम है, इनकी
11: शलभ त्रिपाठी
7: की जानी चाहिए।
6: सतीश प्रकाश जी को मैं सुन रहा था, सतीश प्रकाश जी, जब बहन मायावती जी पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने जानलेवा हमला किया था, तब भारतीय जनता पार्टी के हमारे महापुरुष ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने अपनी जान पर खेलकर बहन जी की रक्षा की थी। ये वो पार्टी है जिसको लेकर आप सवाल खड़े करते हैं। आप जरा देखिए एनकाउंटर की जब बात कर रहे हैं, खुद बहन जी ने कितने अपराधियों का मुकाबला किया, खुद बहन जी ने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए। और कई बार तो मायावती जी ने मुख्यमंत्री जी के कामों की प्रशंसा की है, जो उन्होंने दलितों के खिलाफ अपराधों को लेकर कार्रवाइयां की है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आगे आगे
2: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
4: In association with
5: cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
6: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
7: Summer cool cooler, hawa aisi chhode puri family ko thandak se jode. Summer cool cooler, life banaye wonderful.
4: Hint, bade aaram se. Vimal, bolo zubaan kesri.
8: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
9: 20 साल से इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट देश को दे रहा है बेहतरीन पत्रकार। अगर आपका लक्ष्य भी है पत्रकारिता तो फिर सोचना क्या। रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
4: छात्रों के भविष्य पर उठे सवाल।
10: बच्चों के भविष्य से जब जब खिलवाड़ होगा हम आवाज उठाते रहेंगे। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या छात्रों की चिंताएं दूर होंगी।
4: तो हमने पूछे जिम्मेदारों से सवाल।
10: CBSE के कोई चेयरमैन होंगे ना, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। कोचिंग माफिया के खिलाफ मैं बोलती रहूंगी।
4: छात्रों को दिया मंच।
10: उज्मा हमारे साथ कोटा से और अदिति मुंगेर से हैं और तानिया कोटा से हैं और अर्गम जैन भी जुड़ गए हैं। तो एक बार आप दिखाएं और बताएं अपनी समस्या।
11: मैम ये देखिए, इसमें सेकंड की मार्किंग है, ये तीनों ही अनचेक हैं।
12: IIT मद्रास के एक्सपर्ट लगा रहा है, क्या वो भी इतने सक्षम नहीं है कि उनसे एक सरकारी वेबसाइट नहीं चलाई जा रही।
4: छात्रों के मुद्दे, छात्रों की आवाज और खबर का असर।
10: आज तक की खबर का असर हुआ है, छात्रों की आवाज बना आज तक, और अब सरकार की तरफ से CBSE के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव दोनों का तबादला किया गया है।
4: छात्रों के हित में हल्ला बोल सिर्फ आज तक पर।

0: बहुत चुल मच रहा है कसम से, आज घर जाकर दहिया पूरा कपड़ा उतार के खुजाएंगे।
1: क्योंकि मैं आपकी खुजली को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, आपका जो दर्द है वो सही है, तकलीफ सही है, जो आप इतने दिनों से अपने छोटे से दिल में लेके इतना बड़ा पहाड़ घूम रहे हो,
0: अधूरा प्यार ही
1: तुम्हें दुनिया की यार ठीक है मत दुराओ
2: बिजुरी आई गए।
1: हाँ हाँ थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा राइट, ओ थोड़ा राइट, हाँ
2: हाँ हाँ, यह अब ही नसिया पाया भैया।
3: अरे थोड़ा सा और ऊपर,
2: अरे लेफ्ट बोल रहा हूँ तुमको,
3: हाँ यही यही यही यही खुजा जोर से।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव

0: टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
4: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस,
5: एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: सभा में बैठे हुए लोग 2017 के पहले इन दंगाइयों को, इन पेशेवर गुंडों को प्रश्रय देते थे, इनके सामने नतमस्तक होते थे। प्रदेश में कर्फ्यू रहता था, महीनों महीनों कर्फ्यू।
1: सियासी तलवारें बयान से निकल चुकी हैं, तंज तेज हो गया है। 2027 की तरफ बढ़ती यूपी की राजनीति में शब्द अब शस्त्र बन चुके हैं। सीएम योगी 2017 की याद दिला रहे हैं।
0: 16 में इस गोंडा में भी दुर्गा पूजा के समय दंगा करने का प्रयास हुआ था, यहां भी दंगे हुए थे। मां दुर्गा की मूर्ति को विसर्जन नहीं करने दिया जाता था।
1: वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव योगी सरकार को महाजंगल राज का चेहरा बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर अखिलेश ने लिखा, सरकार को महाजंगल राज का चेहरा बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर अखिलेश ने लिखा, असफल मुख्यमंत्री काल में महाजंगल राज, अवैध खनन, कब्जा, हत्या, डकैती, बलात्कार। ये दो विचारों की भिड़ंत है, दो विमर्शों का युद्ध है, दो वोट बैंकों की व्यूह रचना है। योगी कहते हैं कि पहले माफिया प्रदेश को तबाह कर रहे थे। चुनावी इतिहास गवाह है कि उत्तर प्रदेश में मुद्दों के साथ माहौल जीतता है, तथ्य के साथ धारणा भी जीतती है। उसी को पुख्ता करने के लिए सीएम योगी लगातार अखिलेश राज की याद दिला रहे हैं। सीएम योगी ने एक बार फिर टोटी वाले तंज को तराशा है, अखिलेश की दुखती सियासी रग पर हाथ रख दिया है।
2: हमने हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया, पता लगा कोई टोटी चोरी कर रहा है, कोई अन्य प्रकार से उसको नुकसान कर रहा है, खुला है तो खुला हुआ है।
1: टोटी सुनने में छोटा शब्द है, लेकिन ये यूपी की सियासत में समाजवादी पार्टी को कांटे की तरह चुभता है। दरअसल 9 साल पहले टोटी का विवाद यूपी में उठा था। हुआ कुछ यूं कि साल 2017 में अखिलेश यादव की सरकार गई और योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की शपथ ली। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री का बंगला छोड़कर गए तो नए सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए उस बंगले में कुछ सुधार कराने का काम शुरू हुआ। सियासी शोर हुआ कि लखनऊ में अखिलेश बंगला छोड़कर गए तो सीएम आवास में लगी टोटी भी अपने साथ लेकर चले गए, जो आज तक सियासत के ब्लैक होल में घूम रही है। अखिलेश भी इस पर कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, सीएम यानी करप्ट माउथ। विज्ञान कहता है कि किशोरावस्था में किया गया वनस्पति का अत्यधिक सेवन व्यक्ति के बोलने और समझने की क्षमता को प्रभावित करता है।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: तो उत्तर प्रदेश की राजनीति जहां बुलडोजर पर लगातार उठ रहा है सवाल, इस पर आपने देखा, लेकिन अब आगे देखिए हल्ला बोल अंजना ओम कश्यप के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: समर्थन, देशवासियों का जीवन आसान बनाने और आर्थिक दर को बढ़ाने पर चर्चा। समाजवादी पार्टी पर मुख्यमंत्री योगी का बड़ा हमला, कहा 2017 से पहले गुंडों के आगे नतमस्तक थी सरकार, राम का नाम लेने पर चलती थी गोलियां, अखिलेश का पलटवार, यूपी का महाजंगल राज। गिरफ्तारी के डर से सामने नहीं आ रहे पटना में कोचिंग चलाने वाले फैसल खान, वकील ने कहा अदालत में देंगे अग्रिम जमानत अर्जी, सिविल कोर्ट के बाहर इंतजार करती रही पुलिस। संभल में मुस्तफा कादरी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन, सरकारी जमीन पर निर्माण के बाद कार्रवाई, मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती। टीम इंडिया में 15 साल के सिक्सर किंग वैभव सूर्यवंशी की धमाकेदार एंट्री, आयरलैंड इंग्लैंड दौरे में मिली जगह, T20 फॉर्मेट के नए कप्तान बनाए गए श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव को जगह नहीं।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: Akajay, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: हल्ला बोल में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। छात्र और युवा किसी भी देश का भविष्य होते हैं, लेकिन इस साल पहले नीट पेपर लीक, फिर सीबीएसई के ऑनलाइन जो मार्किंग सिस्टम है उसका लूप होल, ये सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या छात्रों के भविष्य के साथ सिस्टम खिलवाड़ कर रहा है। हद तो ये है कि कहीं आकांक्षा नाम की नीट अभ्यर्थी दोबारा पेपर देने के मानसिक दबाव में दम तोड़ देती है, तो कहीं वेदांत, सिद्धार्थ और निसर्ग जैसे छात्र और युवा सिस्टम की पोल खोलते हैं, तब जाकर सिस्टम की खामी का पता लगता है। ये पहली बार नहीं है कि पेपर लीक पर हंगामा खड़ा हुआ हो, लेकिन साल दर साल ना तो पेपर लीक की ओर ना किसी पेपर लीक माफिया पर कोई ठोस कार्रवाई की गई है। 2002 से 2025 के बीच 24 सालों में 1,00,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स वाली 45 नौकरी और शिक्षा की परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। अब तक सिर्फ 2 मामलों में कन्विक्शन हुआ है। ये पूरे देश को जानना चाहिए कि इतने पेपर लीक हुए लेकिन अब तक दोषी सिर्फ 2 मामलों में ठहराए गए हैं, और इसीलिए आज मैं हल्ला बोल की बहस खड़ी कर रही हूं कि क्या परीक्षा में पास होगी सरकार। लेकिन बहस से पहले ये रिपोर्ट देखें, और उससे भी पहले आपका परिचय खास मेहमानों से करा देते हैं। प्रदीप भंडारी जी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। आलोक शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ आपका बहुत स्वागत है। हमने दोनों, चूंकि छात्रों का मामला है तो हमने एबीवीपी और एनएसयूआई से भी एक एक प्रतिनिधि को बुलाया है ताकि वो भी अपनी बात को स्टूडेंट्स की तरफ से रख सके। तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए अभय प्रताप सिंह, नेशनल सेक्रेटरी हैं एबीवीपी के, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरुण चौधरी, फॉर्मर नेशनल प्रेसिडेंट है ये एनएसयूआई के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, और एक बार ताली आप सभी छात्रों के लिए बजा दीजिए, क्योंकि आज ये तमाम छात्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो सवाल पूछेंगे और इस मुद्दे पर एक रास्ता निकालने की कोशिश होगी। अभी तो सबसे बड़ा क्राइसिस है कि सीबीएसई के मौजूदा बैच का क्या होगा, क्या उनका रीवैल्यूएशन ठीक से हो पाएगा। पहले ये रिपोर्ट देखिए।
1: मम्मी पापा, आपका मुझ पर भरोसा था कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएगी, पर दोबारा नीट देने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। पहले नीट के पेपर में मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे, पर दोबारा पेपर अच्छा जाए इसकी क्या गारंटी है। सॉरी मम्मी पापा, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का।
0: सोचिए ये शब्द किसका कलेजा नहीं चीर देंगे।
2: हम कर्ज ले लेके पढ़ा रहे थे, हम किसी से मांग मांग के उसकी फीस भर रहे थे।
3: कितने सारे सपने दिखा के चली गई उसके नाम की आगे का कर्ज।
0: मध्य प्रदेश की आकांक्षा की मौत सिस्टम पर वो करारा तमाचा है जिसकी गूंज सुनाई तो पड़ रही है, लेकिन सवाल वही है कि क्या कुछ दिनों के हंगामे के बाद पेपर लीक माफिया और शिक्षा तंत्र में बैठे धंधेबाजों पर फिर तो चुप्पी नहीं ओढ़ ली जाएगी। आज जो विपक्ष में है वे नीट पेपर लीक और सीबीएसई एसएम की गड़बड़ी पर सरकार से तीखे सवाल पूछ रहे हैं।
4: दुख है हमें, लेकिन कार्रवाई में कभी कमी नहीं रखा।
5: How many questions normally will someone apply for?
6: I guess अभी जो problem आ रही है, they can apply for all the questions.
5: So how many total questions?
6: 30-35 around questions होते हैं.
5: So huge amount of money.
6: Huge amount of money is involved.
0: विपक्ष को सवाल पूछने भी चाहिए, जवाबदेही तय होनी ही चाहिए, लेकिन शिक्षा तंत्र को फेल करने वालों का जाल बहुत गहरा है और बहुत पुराना है। 2002 से 2025 के बीच 1,00,000 से अधिक उम्मीदवारों वाली 45 लीक परीक्षाओं ने 3,86,00,000 छात्रों को प्रभावित किया। लीक के इन मामलों में 1,658 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 925 पर चार्जशीट दाखिल की गई, 2 मामलों में 18 लोग दोषी करार दिए गए, 43 आरोपी जेल में बंद हैं। आरोपों के मुताबिक पेपर लीक माफिया का कोचिंग माफिया के साथ सांठगांठ होता है। इस बार की नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में भी आरोपियों के तार कोचिंग सेंटर से जुड़े हैं, इसलिए शिक्षा तंत्र के ओवरहॉल की जरूरत है। छात्र तो अपना भविष्य बनाने की परीक्षा देते हैं, अब की बार सरकार को परीक्षा में पास होकर दिखाना है। आज तक ब्यूरो। आइए सवालों की शुरुआत करते हैं। प्रदीप भंडारी जी, पहला सवाल आप ही से है कि क्या अब इस देश में परीक्षा कराना रॉकेट साइंस हो चुका है?
7: अंजना जी, आज ही एक खबर मीडिया के अंदर आई है, नीट एमडीएस के एग्जामिनेशन में डॉक्टर नमीरा सिद्दीकी की ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, और उन्होंने पूरे सिस्टम और साथ में अपने पेरेंट्स का धन्यवाद किया है। ये पूरा एग्जामिनेशन हुआ है जिसमें लाखों स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, कोई लीक नहीं हुआ। मैं मानता हूं कि जो लीक हुआ या जिस तरीके की अव्यवस्था हुई उसके लिए हमने जिम्मेदारी उठाई है और हमने कोर्स करेक्टिव एक्शन लिया है, पर यह कहना कि पूरा का पूरा सिस्टम चौपट है, सरकार नहीं सुन रही है, राजनीति होगा और मैं बताऊंगा क्यों। हमारी सिर्फ प्रायोरिटी 21 जून को हो रहे एग्जामिनेशन जिसमें 23 लाख से ज्यादा बच्चे बैठने वाले हैं, उसमें कोई भी लीक ना हो, कोई भी बड़ा माफिया कामयाब ना हो, उसके लिए हम स्टेप्स ले रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारा इसमें समर्थन किया है। मैं पहले अपने ओपनिंग वक्तव्य में कोई राजनीति नहीं करूंगा, जब राजनीति होगी तभी राजनीति करूंगा। आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहता हूं कि कैसे आपको 21 जून के लिए 100% प्रॉपर जो एग्जामिनेशन होगा उसके लिए 5 लाख से ज्यादा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस और बाकी फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। हर सेंटर पे एक डीएम रहने वाला है, एआई मॉनिटर्ड सिस्टम होने वाला है, इसके साथ में आधार वेरिफिकेशन के साथ में एंट्री होगी, 2 लाख से ज्यादा इनविजिलेटर्स और तमाम जो ऑफिशियल्स हैं उनको डिप्लॉय किया गया है। ये अभी तक की सबसे बड़ी व्यवस्था है। आईआईटी हो गया, आईआईटी रुड़की हो गई, आईआईटी मद्रास हो गया, आईआईटी बॉम्बे हो गए, इन सबके प्रोफेसर एक्सपर्ट साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को इसमें रूप इन किया गया है और जितने स्टूडेंट्स की तरफ से फीडबैक आ रहा है, भले मान लीजिए कोई डेटा सिक्योरिटी एक्सपर्ट हो गया, भले वो एथिकल हैकर्स हो गया या मीडिया के माध्यम से भी जो हमको अंजना जी पता चल रहा है, हम उन सबको इनकॉर्पोरेट करके ट्रांसपेरेंट रूप से ये जो माफिया जिसपे कभी भी आजादी के बाद में एक्शन नहीं लिया गया था उस पर एक्शन ले रहे हैं और फुल प्रूफ सिस्टम होगा, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से काम करेंगे। आप सबसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, हमारा राजनीतिक दल हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, किसी की राजनीतिक बात में मत आइए, आप अपने भविष्य की बात करिए और आपका भविष्य 21 जून को एग्जाम देने में है, पढ़ाई लिखाई करने में। अगर आपको कोई करेक्टिव एक्शन है, मैं आप में बैठा हूं आपके हर सवाल का जवाब देने।
0: ठीक है आलोक जी, अब आप मोर्चा संभालिए विपक्ष की तरफ से, क्या भूमिका आप लोग निभा सकते हैं ताकि इन बच्चों के साथ जो बीच मझधार में लटके हुए हैं इंसाफ हो?
8: देखिए मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा राजनीति तो मेलोडी पे होनी चाहिए, इस मुद्दे पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिम्मेदार कोई नहीं है, पंडित नेहरू जी चले गए, मैं तो धन्यवाद करूंगा सर झुका के पंडित नेहरू जी का, इनको नाम नहीं लिया कि वो जिम्मेदार थे। सबका साथ और सबका विनाश, ना पढ़ूंगा ना किसी को पढ़ने दूंगा, ये मोदी जी के नारे हो गए आज। 2024 का जब नीट का एग्जाम हुआ, अंजना जी के साथ तमाम शो किए, मैं पेटिशनर था सुप्रीम कोर्ट में, सरेआम पेपर आउट हुआ, सरेआम एग्जाम सेंटर जो बीजेपी वालों के थे वो हाईजैक हुए, वही एपी सेंटर उस समय पे थे, बहादुरगढ़ हो, सीकर हो, तमाम जगह, झज्जर हो, 4 दिन का विंडो दिया कि आप एग्जाम सेंटर चेंज कर सकते हैं, 40,000 बच्चों ने एग्जाम सेंटर चेंज किया, उसमें से 26,000 पास हो गए और कह रहे साहब कुछ हुआ ही नहीं था। अभी भी जो एनटीए की टीम गई पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने, उसने कहा कि पेपर तो आउट हुआ ही नहीं। विश्व गुरु हैं साहब, हम एक पेपर ढंग से करा नहीं सकते, पर विश्व गुरु हैं, मेलोडी बांटते घूम रहे हैं पूरे विश्व के अंदर। सेना की मदद लेंगे साहब, अब निकम्मे लोग बैठे हुए हैं। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं, एनटीए जो है वो एक एनजीओ है, एक एनजीओ 2017 में बनी, 18 में काम शुरू हुआ, 18 में पेपर लीक, 21 में लीक, 24 में लीक, 25 में लीक, 26 में लीक, और उसके बाद कह रहे हैं साहब इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति होनी चाहिए हिंदू मुसलमान पे, गाय पे, गऊ पे, गंगा पे, इन पे राजनीति होनी चाहिए, बच्चों के भविष्य पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। आरएसएस का कोई मतलब नहीं एजुकेशन का, पूरी की पूरी जो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जो कमान है वो आरएसएस और बीजेपी के तमाम भ्रष्ट लोगों ने कब्जा कर लिया है। वही एनटीए का चेयरमैन 2024 में था और वही एनटीए का चेयरमैन आज भी बैठा हुआ है, किसकी परमिशन से बैठा हुआ है वो, धर्मेंद्र प्रधान एक शब्द नहीं बोलता है, वही 2024 में मंत्री था, वही आज मंत्री है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन पहले लताड़ लगाई इनको कि 7 मेंबर की कमेटी हमने बना कर दी थी, आपने एक भी रिकमेंडेशन उसकी क्यों नहीं मांगी? आज राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि फंस के खड़े हो गए। अरे माफिया पूरे ग्रह भाजपा के और आरएसएस के लोग हैं, तमाम लोग हैं, इसलिए जांच नहीं होती है। 48 लोग अरेस्ट हुए थे 2024 में, 48 लोग अरेस्ट हुए थे, यही सीबीआई का डायरेक्टर था जो आज सीबीआई का डायरेक्टर है, जिसको 2 बार एक्सटेंशन मिल चुकी है।
0: ठीक है,
8: 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं हुई इनसे। एक मिनट रुक जाइए भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आज एक काम होता है, नीट का पेपर हुआ नहीं, उसके बाद सीबीएसई का हो गया, फिर वो यूजी वाला हो गया, फिर तीसरा हो गया, फिर एसएससी का हो गया। कारण क्या है कि एजुकेशन सिस्टम को इन्होंने पूरी तरह से, जो इनएफिशिएंट लोग हैं, नॉन कैपेबल लोग हैं, केवल आरएसएस और बीजेपी की बैकिंग होनी चाहिए, अंधभक्त होने चाहिए, और कोई सवाल उठाए तो उसको पाकिस्तानी कह दो, उसको देशद्रोही कह दो, उसको जॉर्ज सोरस का एजेंट कह दो, उसको डीप स्टेट कह दो। अरे तुमसे वेबसाइट हैक हो रही है, पेमेंट के मॉडल नहीं खुल रहे हैं, सीबीएसई जैसी संस्थान का भट्टा बैठा दिया, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों को याद होगा यूपीएससी में एक चेयरमैन आए थे मनोज जोशी, याद है आप लोगों को, एक साल पहले 15 दिन में रिजाइन देकर भाग गए। एसएससी हो यूपीएससी हो सबका पूरा इन्होंने पूरी तरह से बेड़ा गर्क कर दिया। धर्मेंद्र प्रधान को क्यों नहीं हटाते? एनटीए के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? किसी के ऊपर भी बुलडोजर चल जाता है, एनटीए की बिल्डिंग के ऊपर आज तक बुलडोजर क्यों नहीं चला? एनटीए एक मिनट अंतिम बात कहना चाहूंगा, इन्होंने एनटीए के चेयरमैन को डीजी को 2024 में वहां पर बंधक बनाया था
9: जवाब
8: केवल जवाबदेही तय करने के लिए, या आज तक कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं।
9: अब मैं जवाब,
8: ये एनएसयूआई के उस समय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ये आज कितने बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं,
0: कुछ उनके लिए भी छोड़ दीजिए, वो भी
8: मैं फिर कहूंगा कि आज जो मुद्दा है वो पूरी तरह से शिक्षा को जिस तरह से पहले भगवाकरण किया और आज भाजपा और आरएसएस के इन कैपेबल लोगों को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया।
9: मेरे से दुगना समय बोला, ये राजनीति करना चाहते, मैं राजनीतिकरण नहीं करने दूंगा पर सत्य असत्य रखूंगा। 2006 में एम्स का पेपर लीक होता है, कांग्रेस की सरकार होती है, कोई एक्शन नहीं लेता, किसी को जिम्मेदार नहीं करती। 2007 के अंदर आईसीएआई का पेपर लीक होता है, कांग्रेस की सरकार किसी पर एक्शन नहीं लेती, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराती। क्लैट का पेपर 2009 के अंदर लीक होता है, कांग्रेस की सरकार होती है, किसी पर जिम्मेदारी नहीं ठहराती है। एआई ट्रिपल ई का पेपर 2011 के अंदर लीक होता है, कांग्रेस के लोग पाए जाते हैं, बाइजक बरी हो जाते हैं। एसएससी का पेपर 2013 के अंदर लीक होता है, एक भी व्यक्ति नहीं जाता है। 70 सालों तक कांग्रेस की सरकार थी, पेपर लीक के ऊपर आप सब स्टूडेंट्स हैं। पहली बार देश में पेपर लीक पे डेजिग्नेटेड कानून कब बना? मोदी सरकार के अंदर पहली बार डेजिग्नेटेड कानून बना जिसके तहत अगर कोई पेपर लीक करता है तो उसको 5 साल तक की सजा हो सकती है और 5 करोड़ तक 1 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना हो सकता है, जिसके कानून का नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट। क्यों ना इन्होंने 70 सालों तक जाके एक भी बार कानून बनाया पेपर लीक पे? क्योंकि उससे पैसा कमाते थे और इनके खुद के नेता इसके अंदर पकड़े जाते थे। ये इनका राजस्थान का चीफ है, ये जेल के अंदर बैठा था जब राजस्थान के अंदर पेपर लीक हुआ था। अब ये यूपीएससी की बात करते हैं, यूपीएससी के ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में अनिल यादव, गूगल करिए, यूपीएससी के चेयरमैन को हाईकोर्ट ने हटाया। अब इन्होंने बात करी इस्तीफा की, आप सभी पढ़े लिखे युवा है, गूगल करिए, 2 बार ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया। आलोक शर्मा जैसे लोग गए थे कि भाई इस्तीफा ले लो, एनटीए को बंद कर दो, क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला? एनटीए बना सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन, राधाकृष्ण कमेटी की रिकमेंडेशन के हिसाब से। 2010 पे कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, ऑल इंडिया आईटी की प्रेस एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें बोला था एनटीए बनाओ। 2013 में इनके पास एचआरडी मिनिस्ट्री था, इन्होंने बोला एनटीए बनाओ, एनटीए हमने बनाया क्योंकि हर कमेटी ने बोला। मैं मानता हूं गलत हुआ है, पर अगर ये सोचे इसके नाम पे सत्ता पे आ जाएंगे, आप लोगों को सड़क पर बैठा देंगे, राजनीति चमकाएंगे, ये हम होने नहीं देंगे, जिम्मेदारी हमारी है। झूठे लोग ये कुछ नहीं करते, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और झूठ आपसे बोल रहे
0: हैं। लेकिन आप मान रहे हैं कि एनटीए का जो लाइफ है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि आपको कोई ना कोई फैसला तो लेना होगा। आप एनटीए के साथ अगर वही लोग चेयरमैन वही लोग चलाएंगे तो कहां पर पहुंचेंगे हम? बार बार हर साल हो रहा है, प्रदीप जी इनको तो बाहर कर दिया जनता ने, आप सरकार है साहब।
8: अंजना जी,
0: छोटा सा जवाब प्रदीप जी, दो लाइन का, एक बार इस पर अकाउंट।
9: ये मामला सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में जुलाई 27 को सुप्रीम कोर्ट जैसा आदेश देगा वैसा हम करेंगे।
0: ठीक है,
8: देखिए मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो 2024 में भी आदेश दिया था, किसी आदेश को नहीं माना।
9: कौन सा नहीं माना?
8: 2007 लोगों की जो कमेटी थी उसकी जो रिकमेंडेशन थी।
9: गलत कह रहे हैं,
8: अरे सुनो ना,
9: गलत सुनो भाई, मैं आपको गलत नहीं बोलता,
8: मैं आपके बीच में नहीं बोला भंडारी जी, मैं आपके बीच में,
9: आप मेरे को झूठ नहीं कोट
8: कर सकते। कहूंगा मैं अभी भी, मैं 2026 में भी सुप्रीम कोर्ट में पेटिशनर हूँ,
9: दोनों झूठ आप बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मैंने रिकमेंडेशन नहीं मानी, 101 राधाकृष्ण कमेटी की रिकमेंडेशन थी, 101 मैंने मांगी, ये झूठ बोल रहे हैं।
8: सुन तो लीजिए,
9: झूठ मत बोलिए आप।
8: मैडम झूठ बोलिए, कोर्ट रूम में था और सुप्रीम कोर्ट ने खूब लताड़ लगाई और तमाम अखबारों में फ्रंट पेज पे छपी, लेकिन कांग्रेस को तो कुछ भी कह लीजिए आप, क्योंकि आपकी सत्ता चल रही है। दुर्भाग्य यह है कि व्यापम घोटाला याद होगा आप लोगों को, 62 लोग मरे थे।
9: आप बीट अराउंड द बुश कर रहे हैं, आप बताइए, मैंने सुप्रीम कोर्ट की कौन सी रिकमेंडेशन नहीं मांगी?
8: अरे भाई
9: आप गलत मत बात करिए ना सर,
8: लोगों की रिकमेंडेशन थी
9: उसमें, मैंने मानी है। राधाकृष्ण कमेटी 2024 के सुप्रीम कोर्ट के बाद नहीं बनी थी, जिसको 101 रिकमेंडेशन मानी थी, आप बताइए गलत।
0: अच्छा प्रदीप जी, हो गया,
8: पहली रिकमेंडेशन थी कि आप अगर चुनाव के लिए सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा सकते हैं तो एग्जाम के लिए क्यों नहीं लगाते? एग्जाम के लिए इन्होंने पिछली बार नहीं लगाई, इनके सवाल का पहला उत्तर आ गया। दुर्भाग्य यह है कि 2014 में हमारी सरकार चली गई, एनटीए बना 2017 में, तमाम एनटीए में जो लोग आए वो आरएसएस से जुड़े हुए लोग आए, वो आए जो छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े कांड करके आए थे और आज भी चेयरमैन वही हैं।
10: सब झूठ
8: और तमाम अखबारों में छपा हुआ है
10: सब झूठ।
8: कौन है वो जोशी, प्रदीप जोशी आज तक क्यों बना हुआ है
10: सब झूठ।
8: लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो बोलना है
10: कर रहे हैं।
8: इन्होंने कहा कि यूपीएससी के चेयरमैन को हाईकोर्ट ने हटा दिया। भाई हाईकोर्ट की क्या पावर होती है कि
10: हाईकोर्ट ने हटाया, चेक कर लीजिए।
8: फिर कहूंगा
10: उत्तर प्रदेश के अंदर अनिल यादव को समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनाया था, हाईकोर्ट ने उसको तड़ीपार घोषित करा था, वो हटा था। आप मुझे बताइए ना मैं कौन सी कोर्ट में कर रहा हूं।
0: ना प्रदीप जी मैं जवाब दूंगी जल्दी से पूरा कीजिए। जब सवाल भी
8: पकड़ी जाती है तो चिल्लाने लगते हैं
10: आप, कुछ भी नहीं पकड़ पा रहे हैं आप, बात ही नहीं कर रहे।
8: सारी पोल खोल के रख दिया,
10: आप खुद ही पोल खोल रहे हैं। पोल खोलेंगे किसी की भाई? ऊपर से नीचे तक पोल खोले।
8: मैं चुप हो जाता हूँ
0: प्रदीप जी।
8: कुछ नहीं हुआ बच्चों, आप लोग मौज लो।
10: नहीं बच्चों हुआ है, पर इनकी राजनीति में मत आओ। आप मुझसे सवाल पूछो, ये अपनी सत्ता के नाम पे आना चाहते हैं आपके ऊपर।
0: प्रदीप जी हाँ,
11: इतना गंभीर विषय है।
0: दो लाइन में फिनिश कीजिए सर, इन दोनों के पास चलेंगे।
8: कुछ नहीं हुआ है।
0: प्रदीप जी
8: आज भी धर्मेंद्र प्रधान को बचाना चाहती है, बीजेपी आज भी एनटीए के लोगों को बचाना चाहती है, यहीं पर दिखाई दे रहा है। कारण क्या है कि वो सारे लोग भाजपा के लोगों को फायदा पहुंचाते हैं, भाजपा के बच्चों को एडमिशन होते हैं, एग्जाम सेंटर भाजपा के स्कूलों में पूरी तरह से
10: 2024 में जो व्यक्ति एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहा था वो ट्रांसफर हुआ है।
8: ट्रांसफर और सस्पेंशन का डिफरेंस नहीं पता है।
12: पहली बात विद्यार्थियों के साथ स्टूडेंट्स का जो कंसर्न
0: भी बजा रहे थे सर, ऐसे मत कीजिए।
10: अब यही बात पर भी गलत बात, यही कांग्रेसी है।
0: आपकी बात पर सबसे पहले ताली बजी।
10: घमंड है
8: अंजना जी,
10: इतना ज्यादा बच्चों से नफरत है।
8: अंजना जी झूठ पर चाली नहीं बजनी चाहिए। इस विषय पर अगर मैं गलत कहता हूं तो मेरे पे भी ताली नहीं बजनी।
0: ठीक है चलिए। अब प्रताप सिंह जी वो कह रहे हैं भगवा करण हो गया है, बीजेपी आरएसएस के लोगों ने ले लिया और इसी वजह से इस तरह की लीक सारे
12: पहले
0: साल हो।
12: पहले तो मैं मूल मुद्दे पे आता हूं कि ये जो पूरी सीबीएसई की, नीट की या सीयूटी में जो भी समस्या आ रही है दुर्भाग्यपूर्ण है, अक्षम्य है और इसको किसी भी रूप में स्टूडेंट कम्युनिटी स्वीकार नहीं करती है। और इस पर जो राजनीति हो रही है उस पर तो मैं अपनी बात बाद में रखूंगा, लेकिन इन सभी घटनाओं ने एक चीज हम लोगों के मन में लाया है, एक चीज हम लोग के संज्ञान में आई है कि एनटीए की कार्यप्रणाली में जो पूरी सिस्टम है परीक्षा कराने का, इसमें कहीं ना कहीं एक बड़े ही ओवरहॉलिंग की आवश्यकता है। इसको लेकर एबीवीपी पहले ही दिन से हम लोग इसको लेकर बात कर रहे हैं। हमने सरकार से मांग की जब पेपर लीक हुआ कि इसकी केंद्रीय एजेंसी सीबीआई से जांच कराई जाए। सीबीआई जांच चल रही है, जो भी दोषी होगा किसी भी स्तर का होगा, कोई भी अधिकारी होगा, कोई भी व्यक्ति होगा, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और नजीर पेश की जाए कि भविष्य में ऐसी चीज ना हो, क्योंकि लाखों विद्यार्थियों का मामला है। जहां तक शिक्षा के भगवाकरण की बात की जा रही है तो आज शिक्षा का भगवाकरण नहीं हो रहा है, शिक्षा का भारतीयकरण हो रहा है। आज त्रिभाषा नीति से, भारत आधारित शिक्षा नीति से, देश में भारत आधारित शिक्षा नीति 2020 में आई, त्रिभाषा नीति, भारत के विद्यार्थी भारतीय भाषा भी सीख सके अब आ रही है। तो ये शिक्षा का भारतीयकरण हो रहा है। जिनको उससे दिक्कत है उसको अलग अलग चीजों का नामकरण कर रहे हैं, वो समझने में फेर है इनका।
13: बीजेपी के प्रवक्ताओं को मुबारक हो, एक ऐसी शिक्षा नीति, हर साल नीट का पेपर होता है उसके बाद रिजल्ट से बड़ा डर ये लगता है कि तमाम बच्चे सुसाइड ना कर लें। कल के दिन एक बच्चे के सुसाइड हुआ, सुसाइड नहीं वो हत्या करी गई। 2024 के अंदर मैंने खुले तौर पर देवेंद्र प्रधान जी के घर के बाहर गया, एनटीए के डायरेक्टर से मिलने गया कि इस पेपर में धांधली है, अभी अपने ऊपर लगाम लगा लो वरना 25-26 और मुश्किल में खड़ा हो जाएगा। तो धर्मेंद्र प्रधान जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बच्चों की बजाय एनटीए का बचाव करते नजर आते थे। अंजना जी मैं एक आपका समय ज्यादा लूंगा, एक मिनट फालतू लूंगा, एक आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा। भंडारी जी को मैंने अभी एक मिनट के लिए इंडिया टुडे का मालिक बना दिया और ये डायरेक्टर है सिर्फ एक मिनट के लिए, लेकिन और यहाँ पे तमाम ये सारे लोग हैं वो इंडिया टुडे के एम्प्लॉय हैं, ये पूरी बिल्डिंग है। अब सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स होंगे जिन्होंने पैसा दिया वो सब लायबल भंडारी जी के ऊपर हो गए कि इतने बड़े 500,000 लोगों के एम्प्लॉय, इंडिया टुडे की इतनी पुरानी क्रेडिबिलिटी। मैं भी पहली बार वरना मैं शो में आना पसंद नहीं करता, मैं आया मुझे लगता था शायद बच्चों को न्याय मिलेगा, बच्चों की बात होंगी। तो ये एक मिनट के लिए डायरेक्टर बने अभी इंडिया टुडे के, और सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी, सारे स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी, सब जिम्मेदारी इनकी जो धर्मेंद्र प्रधान के कंधों पर देश के प्रधानमंत्री जी ने रखी थी। वो कोई भी एग्जाम हो, नीट हो, सीबीएसई हो, सीबीएसई की सच्चाई ये है कल के दिन भी उनके पोर्टल पर ग्लिच आ रहे थे, वो नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट खोल के देख लो, बच्चे स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं अभी भी। मुझे कल रात को 3-3 बजे तक बच्चों के मैसेज आए कि भैया 3-3 घंटे तक हम ट्राई कर रहे हैं, अभी तक भी रिवेल्यूशन फॉर्म ढंग से भरने में ये वेबसाइट कामयाब नहीं हो रही है।
14: इस बैच का क्या होगा प्रदीप जी?
13: एक मिनट प्रदीप,
14: ठीक है, पूरी जल्दी
13: में एक बार पूरी बात कंप्लीट करता हूं। तो इंडिया टुडे का दफ्तर आ गया, इस दफ्तर में बार बार चोरी होती है, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सबका फोन चोरी हो जाता है, आपका फोन भी चोरी कर लिया जाता है, लेकिन ये चोरी बार बार होती है। तो इसके लिए मैं मानता हूं दो चीजें होंगी, या तो जो इन्होंने सुरक्षा मुहैया कराई गई है दफ्तर की वो लोग चोरी कर रहे हैं, अब इनका फर्ज बनता है अगर ये चोर नहीं है तो तुरंत सुरक्षा अधिकारियों को भगाएंगे या कोई और बड़ी लगाम लगाएंगे, लेकिन ये क्या करते हैं, ये सुरक्षा अधिकारियों को डिफेंड करते हैं कि एनटीए में कोई धांधली नहीं है, सिस्टम में कोई धांधली नहीं है। एक मिनट भंडारी, उसके बाद बच्चों की बात करने की बजाय, बच्चों से माफी मांगने की बजाय, धर्मेंद्र प्रधान जी बच्चों से माफी मांगने की बजाय एनटीए का डिफेंड कर रहे हैं, आज भी एनटीए को यहाँ बैठ के खड़े होकर
14: ठीक है जल्दी से इस पर
13: एक मिनट धर्मेंद्र प्रधान जी या फिर भंडारी जी चोरी में शामिल है,
15: मैं इसी का जवाब दे रहा हूँ,
14: उनका सीधा आरोप,
15: इन्होंने बोला चोरी हो जाती है,
14: को डिफेंड क्यों कर रहे हैं,
15: एनटीए की बात ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला है, आप चलिए दोनों वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कब बोला, सुप्रीम कोर्ट ने 21 जून के पहले कब बोला कि एनटीए को डिस्बैंड कर दो,
13: इसका मतलब ये धर्मेंद्र प्रधान जी चोरी में शामिल
15: हैं, मेरे बीच में बोलेंगे तो आलोक शर्मा को बोलने नहीं दूंगा, आप चोर मतलब आपको लगता है सभी चोर हैं, एक सेकंड लॉजिकल रहिए, आप चोर हैं आपको लगता है सभी चोर हैं, चलिए इन्होंने बोला चोरी होती, मैं बताऊं क्या करूंगा, मैं एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी अपॉइंट करूंगा जो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी देखेगी कि भाई इस दफ्तर के अंदर कौन रिपीटेडली चोरी कर रहा है, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी सीबीआई की ऑफर करिए, बीच में मत बोलिए अंजना जी, मैं कह रहा हूं मैं बोलने नहीं दूंगा इनको, आप मत बोलिए, आलोक शर्मा को बोलने नहीं दूंगा, आलोक शर्मा डायरेक्ट छोड़ के चले जाएंगे, मत करिए, आपको मैंने सुना, आपको मैंने सुना, आलोक शर्मा डायरेक्ट छोड़ के चले जाएंगे, इतना इंटरप्ट करूंगा
14: वरुण जी, बात बात
15: नहीं करूंगा, वरुण आलोक शर्मा को डायरेक्ट छोड़ के चले जाएंगे, मुझे बोलने दो,
14: जल्दी से एक लाइन में बताइए, इन्होंने
15: बोला, मैं बता रहा हूं इन्हीं का आर्गुमेंट, इन्होंने बोला कि चोरी होती है, मैं एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी अपॉइंट करूंगा, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी सीबीआई की अपॉइंट करी, सीबीआई जिसको बोलेगा उसको मैं गिरफ्तार करूंगा, अभी तक सीबीआई ने 3 लोगों को गिरफ्तार, अभी करा गिरफ्तार, जाके हर प्रोफेसर जिसने पेपर लीक किया गिरफ्तार करूंगा, मैंने सुप्रीम कोर्ट को जाके बोला, अच्छा कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर चोरी होती है तो क्या राहुल गांधी जिम्मेदार होता है, कांग्रेस पार्टी में हर दिन भ्रष्टाचार होता है, राहुल गांधी जिम्मेदार होता है, वो तो इटली में मनाने चले जाते हैं हॉलीडे, मेलोडी भी नहीं खाता, खबर ड्रा राहुल गांधी, इसी लॉजिक को आगे ले जाते हैं, आप कांग्रेस पार्टी में चोरी होती है तो क्या राहुल गांधी चोर है, कांग्रेस पार्टी में चोरी होती तो क्या राहुल चोर है,
8: अंजना जी मैं छोटा सा उत्तर देता
14: हूं, इसके बाद 8-10 सवाल
13: दीजिए,
8: देखिए दुर्भाग्य ये है कि बच्चों जैसे गंभीर विषय पे भी राहुल गांधी जी तो रोज सवाल उठा रहे हैं, किसी सवाल का जवाब ये देते नहीं है, इनको राहुल गांधी पे जाना है, इनको इधर जाना है, उनको उधर जाना है, एनटीए की तो बात ही नहीं है,
15: अरे भैया तो बात की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला है,
8: इन्होंने कहा इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, इन्होंने कहा इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो रही है, हमने कहा कि 2024 में भी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हुई थी और उसमें 48 लोग अरेस्ट हुए थे, नॉन स्टॉप बोलेंगे,
14: नॉन
8: स्टॉप बोलेंगे, क्योंकि इनको एनटीए को बचाना है,
15: 24 में ये गए,
8: अंजना जी एक मिनट, मैं एक बात कह दूं, इनके सवाल का जवाब, 2024 में इसी सीबीआई ने इंक्वायरी की, 48 लोग अरेस्ट हुए, उसका किंग पिन बताया गया मुखिया कोई, वो आज भी खुला
15: झूठ है, वो अरेस्ट हो चुका है, चलिए ये भी झूठ है, मुखिया अरेस्टेड है, अभी जेल के अंदर है,
8: बचाव कर रहे हैं,
15: दिग्विजय सिंह का गलत बोल रहे हैं, जो 2024 का किंग पिन है, अरे तुम्हारा भाई होगा यार, तुमको फोन करता होगा, तुम्हारे साथ बात करता होगा, तुम भ्रष्टाचारी कांग्रेसी, तुम्हें बता
8: जी, ऐसा लग रहा है इनका, करो मुखिया इनका फूफा है, ऐसा लग रहा है,
15: फूफा नहीं है भैया, मैंने जेल में डाला है, मुझे पता है,
8: बचाव बोलो,
15: बोलो फूफा हो तुम, आप सही के फूफा, तुम्हारे भ्रष्टाचारी के फूफा, अरे
8: भाई इनकी सच्चाई, गजब है
14: भाई, चलिए अब हम लोग का मनोरंजन तो हो गया ना,
16: बीजेपी और एबीपी आज दोनों संगठन ने सौभाग्य की सवाल करने का अवसर मिला। एक है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, एक है विश्व की सबसे बड़ी छात्र संगठन। मेरा सवाल है सर, हम लोग साधारण परिवार, गरीब परिवार से यहाँ बैठे युवा वर्ग, बहुत सारे बच्चे आते हैं अपने विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के लिए, लेकिन आप जैसे आप UGC कानून के लेकर आते हैं और आप घोषित कर देते हैं कि सवर्ण के बच्चे ही अपराधी हैं और कोई अपराधी नहीं है, और हम लोग कंपटीशन की तैयारी भी करते हैं तो कभी पेपर लीक होता है, कभी कुछ होता है, हमें जाने में भी खर्च होती है सर हमारी, और हमारे हर जगह खर्च होते हैं, जाने में, रहने में, खाने पीने, हर जगह में, हर बार आप लोग पेपर लीक करते हैं, हर बार होता है। NTA तो इसीलिए बना था ना कि पेपर लीक ना हो, फिर भी आपके यहाँ भ्रष्टाचारी हो रहा
17: है। सर, जब किसी के द्वारा किसी की सुसाइड हो जाती है, किसी के कहने से किसी को बुरा लगता है, वो सुसाइड कर लेता है, तो उसमें BNS की धारा 109 लगती है, लेकिन ये जो पेपर लीक होने की वजह से इतने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, इन पे ये कब लागू होगी, इन्हें कब सुसाइड का इन्हें मिलेगा, और कब ये लागू होगी, और कब इनको सजा होगी सर?
14: बिल्कुल, इन पर कौन सी धाराएं आप लगाएंगे?
18: राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में 5 सालों में 18 पेपर लीक हुए, चाहे वो रीट की घटना हो, चाहे राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की घटना हो। अभी NSY के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है विनोद जाखड़ जी 2015 में अपनी जगह किसी और को पेपर बैठाया था, जयपुर गांधीनगर थाने में यह मामला भी दर्ज है, वो उसके लिए जेल भी रहे थे। तो आप ये देख लीजिए कि पेपर लीक करने वालों को और अपनी जगह दूसरे एग्जाम में बैठाने वालों को ये कांग्रेस ही जवाब दे रही है ना।
13: उनको कोर्ट से फ्री कर दिया गया है और आपकी सरकार आप जाके
15: भ्रष्टाचारी को बचाना चालू हो गए।
19: मेरा सवाल आपसे है, बिहार में BJP की सरकार बनने के बाद, पहला मुख्यमंत्री बनने के बाद EDO का एग्जाम हुआ और 10 दिन के अंदर में कैंसिल हो गया सर। 2 दिन का एग्जाम था और उसमें बच्चे रोड स्टेशन पे रह रहा के एग्जाम दिए थे, वहीं पे BSSC का एग्जाम अगले 3 साल पहले फॉर्म भरा चुका है, आज तक एग्जाम का पता भी नहीं चला। सर, सूर्य कुमार यादव ने वर्ल्ड कप जिताया था लेकिन उनका इंडिविजुअल स्कोर बहुत खराब था, इसीलिए उन्हें कप्तानी से हटाया गया। सर, आपकी शिक्षा में अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन सर प्रधान जी तो अच्छा नहीं कर रहे।
20: सरकार चाहे कांग्रेस की बने या भाजपा की, पेपर लीक कांग्रेस के समय भी हुआ, पेपर लीक BJP के कार्यकाल में भी हुआ। जवाब आप लोग ये दीजिए कि वो जो बच्ची आकांक्षा नीट की वजह से एक्सपायर हो गई मध्य प्रदेश की, और भी लोगों ने, बच्चों ने जो सुसाइड किया, इनका जिम्मेदार कौन होगा? क्या उसकी जान वापस आ सकती है? सिस्टम में गड़बड़ी आप दोनों की थी और हरजाना उस बच्ची और बच्चे भुगत रहे हैं, मुझे इस सवाल का जवाब।
21: अभी जो दोष प्रत्यारोप किया जा रहा है उसको लेकर मैं आप दोनों के खिलाफ कुछ 2 लाइन बोलूंगा कि कुर्सी के भूख में सब भरमाते हैं, वादों के बोझ तले सच दबाते हैं, चाहे झंडा कोई भी हो पीछे से आप दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे नजर आते हैं। अभी जो CBSE में जो OSM का स्कैम जो भी आया है, आपने क्या किया कि उसके चेयरपर्सन और जो भी उसको ट्रांसफर कर दिया, तबादला कर दिया। सर, अगर हमें दस्त लगे ना तो अंडरगारमेंट्स चेंज करने से नहीं होता। अभी जरूरत है हमारे अकाउंटेबिलिटी के लिए, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को रेजिग्नेशन पूरे दायित्व के साथ देना चाहिए। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं भी एक राइट विंग का ही छात्र हूँ और ये बोलना एक स्टूडेंट के नाते मैं पॉलिटिकल नहीं बल्कि एक स्टूडेंट की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि एक साथ CUET नीट तमाम एग्जाम के पेपर लीक हो रहे हैं, ये छात्रों के साथ ये जवाब।
22: सर, मैं बहुत देर से सोच के बैठा था कि मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, बट जब आपने RSS का नाम लिया तो मेरा ना माइंड चेंज हो गया कि यहाँ भी आप राजनीति करेंगे। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, RSS के फुल फॉर्म के अलावा कुछ और बता सकते हैं RSS के बारे में? RSS का एक एक प्रचारक, एक एक स्वयं सेवक अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है, एक एक प्रचारक अपना घर बार, माँ बाप, बहन सबको छोड़ के आता है अपनी देश सेवा के लिए, और आप यहाँ पर भी आके राजनीति कर रहे हो। मैं चाहता था कि मैं प्रदीप जी से क्वेश्चन पूछूं, पर यहाँ पर भी आप आके राजनीति कर रहे हो। सर, ये आपकी राजनीति कब तक चलेगी?
14: एक छोटा डायरेक्ट सवाल है तो आप।
23: मैं RSS के बारे में कहा कि फुल फॉर्म के अलावा, RSS वो संगठन है जिसने आज तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। RSS वो संगठन है जो अंग्रेजों की मुखबरी करता था।
15: जो RSS वो संगठन है जिसने कांग्रेसी जो भ्रष्टाचारी जो ब्रिटिशर्स की मुखबरी करते थे, जिसको बनाने वाला ब्रिटिशर था, उसको एक्सपोज किया। RSS वो संगठन है जिसने प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या के अंदर बनाने के लिए 70 सालों तक संघर्ष करा। ये इनकी सच्चाई है, ये अर्बन नक्सली,
23: ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, एक्सपोज हो गए
15: नीचे तक। एक्सपोज,
14: सवाल सुनिए प्लीज।
15: RSS
14: मुझे पहले आलोक जी,
15: हाफिज सईद की गुलामी करने वाले लोग, हिंदू
14: आलोक जी
15: की सच्चाई है,
14: आलोक जी, इसीलिए मैंने कहा था सवाल सुन लीजिए बच्चों के बीच में। हल्ला नहीं, मुस्लिम लीग, मैं ये शो, नहीं नहीं नहीं एक सेकंड एक सेकंड, मैं ये शो हाईजैक नहीं होने दूंगी। हमारा इशू क्लियर है, हमारा बच्चा, हमारे बच्चों से हमारा इशू है, उसी पे रखिए शो को, प्लीज। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आ रही हूँ, रुकिए सर, दो बच्चे यहाँ खड़े। अब एक बार सबके सवाल होने दीजिए सर, प्लीज, बच्चों के।
1: सर, मैं यहाँ बड़ी उम्मीदें लेके आया था, मैं खुद छात्र हूँ, अभी जो हो रहा है वो देखिए आप। आप छात्रों के हित की बात करने आए थे, लेकिन आप में से कोई छात्रों के हित की बात नहीं कर रहा है, कोई आरएसएस, कोई
14: सवाल, बेटा,
1: सवाल सर मेरा प्रदीप सर से है। सर, आप इतने एग्जाम लीक्स हो रहे हैं, तो फिर आप कठोर स्टेप क्यों नहीं उठा रहे?
2: मैम, मेरा प्रश्न रूलिंग गवर्नमेंट से है। सर, हम में से जितने भी बच्चे अभी नीट का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसमें से बहुत ही कम ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने कांग्रेस का गवर्नमेंट अपने जन्म के बाद देखा होगा। बट सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सर, हम कैसे ट्रस्ट कर लें कि इन फ्यूचर कोई पेपर लीक नहीं होगा?
14: वैलिड क्वेश्चन।
3: मेरा सवाल रूलिंग पार्टी से है कि नीट जैसी परीक्षाएं बार बार लीक हो रही हैं, सरकार इसे रोकने में क्यों नाकाम है?
4: सर, मैं आप दोनों से ये पूछना चाहती हूँ कि जिस लड़की को मतलब एक आखिरी मौका मिलता है अपने आप को साबित करने के लिए, और उसमें भी इस तरह का काम हो, तो क्या करेगी वो लड़की? आप ये बताइए, फिर क्या होगा इस देश के भविष्य का?
14: अब बताइए सर, बोलिए, आप बार बार खड़े हो रहे थे, बोलिए।
24: देखो जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये पेपर की बात हो रही है, एग्जाम लीक की, तो गवर्नमेंट कर रही है ना उसके ऊपर एक्शन ले रही है गवर्नमेंट भी एकदम से। गवर्नमेंट
14: को क्या करते हैं सर?
24: आई एम गोल्डस्मिथ ज्वेलरी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उस विषय के ऊपर आए ना, उसके बारे में बात करें। अब किसी भी विषय को लेकर कोई मान लो आत्महत्या कर लेता है, या कोई जिंदगी में हमारे साथ भी तो बहुत मुश्किलें आई होंगी, तो ये बात थोड़ी है कि आप एक उसके लिए हमें दुख है जिस बच्चे ने भी करा, बच्चों ने तैयारी करी, उनको लगता है अभी सिद्ध तो नहीं हो गया ना, ये लीक हो गया है, सिद्ध तो नहीं हुआ ना, उसके लिए कोर्ट बात कर रही है, कोर्ट में चल रही है ना बात। तो ये लोग कह रहे हैं कि जी आरएसएस ने भगवाकरण कर दिया, ये कर दिया। आपने जो 70 साल तक मुस्लिमकरण किया था, आप जो मुसलमानों के समर्थन में जाते थे, आपने हमारे मंदिरों की कभी रक्षा नहीं करी।
14: एक साथ सर, बच्ची का भी सवाल लेने दीजिए, उसके बाद आप लोग लड़ते रहिए।
25: अंजना मैम, मेरा सवाल वरुण चौधरी जी से है कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार है और कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस की सरकार में HPSSSC का एग्जाम लीक होता है और पूरा का पूरा एग्जाम डिसॉल्व कर दिया जाता है, उसके लिए NSCY
13: के अंदर कोई एग्जाम लीक नहीं? आप बताइए कि लीक दिखाइए ना, कर्नाटक में ना, हिमाचल में ना, तेलंगाना में, तीनों सरकारों में एक भी पेपर,
25: तेलंगाना, हिमाचल, राजस्थान, तीनों जगह।
13: राजस्थान में जब हुआ था हमने सख्त कानून बनाया, और पूरे देश में यहाँ पढ़े लिखे
25: कानून बना देते हैं, आप कानून बना देते हैं।
26: हिमाचल में
2: मैं वरुण चौधरी जी से सवाल पूछना चाहूंगा, आप NSCY के स्टूडेंट,
14: एक सेकंड प्लीज सर,
2: आप स्टूडेंट हित के बारे में बात करते हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आपको 100 दिन के लिए भारत का शिक्षा मंत्री बना दिया जाए, तो आप भविष्य के स्टूडेंट के लिए आप क्या क्या?
13: अभी मैं इसका सवाल देना
2: सर, मैं भी आप दोनों पार्टी से पूछना चाहूंगा, अगर दोनों पार्टी से कि अगर आगे चल के कोई भी ऐसे पेपर लीक होता है, तो उसकी कोई जिम्मेदारी उठा सकता है, या अभी भी कोई मतलब कोई इस्तीफा दे सकता है?
27: मेरा बीजेपी सरकार के प्रवक्ता से सीधा सवाल है कि आप लोग IIT मद्रास के प्रोफेसर लगा रहे हैं CBSE की वेबसाइट के पीछे, पर उसके बाद भी आज तक भी CBSE की वेबसाइट पे ग्लिचेस आ रहे हैं, तो उसकी जवाबदेही कौन लेगा और प्रधान जी क्यों नहीं ले रहे हैं?
2: क्योंकि मेरा सवाल बीजेपी से ये है कि अगर हम आप नीट पेपर लीक के लिए दोबारा से जब पेपर लीक के क्वेश्चन पेपर की बात आती है, तो वहां पर न्यूज में आर्टिकल्स दिखाया जाता है कि जो इंडियन एयरफोर्स है वो पेपर डिप्लॉय करेगी, तो हमारे क्या सिस्टम इतना वीक होगा कि अब हमें आर्मी की मदद लेनी पड़ेगी?
26: मेरा सवाल यह है कि यूपी के एक मंत्री ओम प्रकाश राजभर मंच से ये कहते हैं कि आप केवल फॉर्म भरिए, हमारे विधायक बेदीराम से संपर्क करिए, ये सब परीक्षा पास करवा देंगे आपका, और उसको ये लोग मंत्री बनाए हैं बीजेपी सरकार में, इस पे क्या कहा जाए?
25: आप तब से ये बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लीजिए। मेरे को ये बताइए, 2021 के अंदर धर्मेंद्र प्रधान जी एजुकेशन मिनिस्टर बने, 2014 के अंदर भाजपा की सरकार बनी, क्या 21 से पहले, क्या 2014 से पहले ये सब नहीं होता था? लेकिन उसके लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन
0: क्वेश्चन, लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन प्लीज सर. क्या तो क्या उनके होने के बाद में भी पेपर लीक हो रहे हैं? इसमें मैं किसी गवर्नमेंट को जस्टिफाई नहीं कर रही हूं, लेकिन आप ये बताइए इस बात की क्या गारंटी है कि उनके इस्तीफा लेने से पेपर लीक होना बंद हो जाएंगे या किसी नए शिक्षा मंत्री के आने से पेपर लीक बंद हो
5: जाएगा? आज का युवा देखिए हर तरह के सवाल है.
0: अरे गुरु आप ही के पास आ रही हूँ बारी बारी से, बारी बारी से, अब बारी बारी से. ठीक है आलोक जी, आप पहले जितने सवाल आपसे थे उसका जवाब दीजिए.
23: देखिए जहां हमारी तीन जगह सरकार है, चाहे वो तेलंगाना हो, कर्नाटक हो और हिमाचल हो, हिमाचल में जिस पेपर का आउट होने की बच्ची ने बात की, हमारी सरकार आने से ढाई महीने पहले की बात है, उसमें डीजी सस्पेंड हुआ. हमने आकर डीजी को हटाया क्योंकि पुलिस की कहीं ना कहीं संलिप्तता जांच में कमजोर थी. इसके बाद बात आती है जो अभी पीछे की बच्ची ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों लिया जाए. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा आप, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा, आपसे सहमत हूं.
5: देने का ये तरीका नहीं,
23: बिल्कुल मैं सहमत हूं आपकी बात से.
5: इतनी शर्म की बात है
23: अगर नेपाल के,
5: इतनी शर्म की
23: अगर
5: बात
23: आप नेपाल के प्रधानमंत्री को अरेस्ट कर लेंगे,
5: ये देशद्रोही लोग हैं.
0: आप लोग इधर आइए, नीचे आइए, नीचे आइए, आराम से, आराम से. वो अपना पक्ष रखते हैं, आप बैठिए, बच्चों को बात करिए.
5: कांग्रेस अर्बन नक्सली है, इस देश के युवा को गाली देते हैं, इस
0: देश के युवाओं को सवाल को मैनिपुलेट मत कीजिए. मेरा सवाल है, मैं आपसे पहले इस्तीफा मांगूंगी, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि उनके देने से आगे कोई पेपर लीक नहीं होगा? क्या उनसे पहले कोई शिक्षा मंत्री नहीं था?
23: बात कही बेटा आपने, गारंटी. एक मिनट, एक मिनट,
0: अब इनसे मत भिड़िए ना, इनसे मत भिड़िए, जवाब दीजिए. ठीक है अब हो गया, अब गुस्सा नहीं बैठा.
23: छात्रों को अंजना जी
5: शर्म आनी चाहिए,
23: बहुत अच्छा सवाल है.
5: ये कांग्रेस की सोच है, इसका विरोध होना चाहिए.
23: मैं फिर कहूंगा
5: आप उनसे हजार सवाल पूछिए, हम कभी भी हमारे से सवाल पूछने वाले के साथ नहीं करेंगे.
23: गजब बात है भाई,
5: ऐसी कर रहे हैं. नहीं
23: अरे सवाल मुझसे उत्तर देने दो ना भाई, इतनी बौखलाहट क्यों है?
5: कैसे जा कर रहे
23: हैं? देखिए मैं समझता हूं बेटा, बिल्कुल आपने ये सारे भाजपा बैठा रखे हैं क्या आज तक वालों ने?
0: सर सबसे ज्यादा सवाल क्या बात कर रहे हैं आप?
23: मैम ये बिल्कुल सारे भाजपा लोग
5: बैठे हैं, ये कैसे चलेगा? तुम्हारे बाकी अरबन नक्सल है क्या?
23: मैं
5: ये नहीं चलेगा.
23: अब क्या सारे अरबन नक्सल
0: है?
5: सारे के सारे के लोग तो जो मुझसे सवाल ये जो अरबन नक्सली कांग्रेसी है, मेरे से पूछ रहे हो कांग्रेसी है? नहीं नहीं, ये स्टूडेंट को धमका नहीं सकते.
0: ऐसा नहीं है कि कोई
5: किसी को नहीं धमका रहा हूं, धमका सकते आप.
23: इन्होंने कहा कि गारंटी क्या है
5: आपके कांग्रेसी?
6: मुझे क्या लगता है थोड़ा छात्रों का पक्ष लेना चाहिए.
0: सारे बच्चों ने आज बीजेपी से सवाल पूछा, आप जबरदस्ती का लपक रहे हैं.
5: सवाल पूछेगा
0: सारे बच्चे इनसे पूछ रहे हैं.
5: स्टूडेंट को अर्बन नक्सली नहीं बोला, नहीं नहीं गलत है.
0: प्रदीप प्रदीप
5: जो इनसे विरोध करेगा उसको लेबल कर देंगे, ये इमरजेंसी वाले लोग है, ये हिटलर वाले लोग है. कैसी बात कर रहे हैं? नहीं माफी
23: ने कहा कि गारंटी क्या है?
5: माफी मांगे उस बालिका से.
23: अरे भाई
5: आपको माफी मांगनी चाहिए आलोक जी. नहीं नहीं चले
23: को बोल लेने देते हैं, ये डिबेट कर लें.
5: वापस से देखिए, वापस से जो ऑडियंस है उसका मजाक उड़ा रहे हैं.
0: आपसे आपसे सबसे ज्यादा प्रश्न है
5: तो मैं पूछ रहा हूँ ना,
0: एक बार आप उसका जवाब पर सर अब बच्ची से मत उलझिए ना. मैं भी चाह रहा हूँ बच्ची से मत उलझिए,
23: बच्ची से नहीं उलझ रहा हूँ.
0: ये देश का युवा है भाई, इन्होंने सबसे ज्यादा सवाल आज इनसे पूछे.
23: बच्ची ने कहा कि गारंटी क्या है?
0: हाँ
23: मोदी की गारंटी भूल गए आप लोग?
0: देखिए अब फिर पॉलिटिक्स
23: रोज मोदी की नहीं तो राजनीति क्या मेलोडी पे करें? बच्चों पे भी राजनीति
5: का मुझे तो मैं खाली पे मत करो.
23: मैं बिल्कुल राजनीति करूंगा क्योंकि मेरा विपक्ष में होने का मेरा अधिकार है कि अगर पेपर लीक होगा तो मैं सवाल उठाऊंगा और मैं जरूर उठाऊंगा. मैं भाजपाइयों से और संघियों से नहीं डरूंगा.
0: ठीक है आ रही हूं.
23: अब गारंटी की बात आती है,
0: दोनों लड़कियां
23: देखिए गारंटी की बात जहां तक है, इनके यहां पर प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, इनके यहां पर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, वो लीक नहीं होता.
0: लेकिन सवाल इनको बोलने दीजिए,
23: सुने ना एक मिनट,
0: वो इस्तीफा मांग रहे हैं, बच्चे भी बोल रहे हैं जवाब दीजिए. जवाबदेही तय करने के लिए बच्चे कह रहे हैं जवाब दीजिए आप.
5: इनका झूठ एक्सपोज करता हूं, आप सभी स्टूडेंट्स से आपको 100 सवाल मुझसे पूछना, मैं एक एक का जवाब दूंगा, पर देखिए कैसे झूठ बोलते हैं. उस बालिका ने पूछा हिमाचल का, कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में दिसंबर 11 को बनी थी, पेपर लीक दिसंबर 23 को हुआ था, फरवरी में जाके जिसने पेपर लीक किया था उस कमेटी को डिसॉल्व करते और ये कहते हैं कांग्रेस में हिमाचल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ. झूठे लोग हैं ये. राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा कांग्रेस में पेपर लीक हुआ
23: इसका.
5: ये राजनीति कर रहे हैं. अब मैं बच्चों के सवाल का जवाब दूंगा. नहीं आपकी राजनीति को छोड़ूंगा.
23: जो मेंस का एग्जाम था वो बीजेपी की सरकार में हुआ था.
0: जवाब यही कहते हैं
23: ठीक है, हमने कैंसिल किया था आकर.
5: अब मैं कर रहा हूं
23: दिसंबर में हमने आकर पेपर को कैंसिल किया.
5: आपके जवाबों का, आपके हर सवाल का मैं जवाब दूंगा, पर इनको राजनीति नहीं करने दूंगा. आप रहने दीजिए, आप बंद करिए. आप छोटे आप जूनियर कांग्रेस से शांत बैठिए. मेरी बात सुनिए,
7: सीबीएसई की वेबसाइट का जवाब
5: मैं बच्चों के सवाल का जवाब दूंगा, आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा. आप डिस्क्रेडिटेड लोगों. देखिए आपने मुझसे
15: से पूछा पहला सवाल,
13: आपकी
15: देखिए मैं जवाब देने के चाहते हैं आप, मेरा जवाब सुनिए। आप सभी ने कहा कि भाई एक्शन की बात करी, आप सभी स्टूडेंट से चलिए, अगर आपको लगता है कि ट्रस्ट डेफिसिट हमारे प्रति है, आप सभी एक काम करिए, मेरे पे मत विश्वास करिए। सुप्रीम कोर्ट में दो बार मामला गया, आलोक जी गए, सब लोग गए, सब पेटिशंस गए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा इन सभी पेटिशंस के ऊपर, रेजिग्नेशन नॉन रेजिग्नेशन सब पे, आप दिसंबर जून 21 के बाद में फैसला लिया जाएगा, अभी पूरा फ्रीडम करंट एडमिनिस्ट्रेशन को देना है क्योंकि सिर्फ 38 दिन का समय बचा हुआ है। 38 दिन के समय के अंदर पूरी प्रणाली के अंदर प्रायोरिटी एग्जाम कराना है। जुलाई 27 को सुप्रीम कोर्ट ये मामला सुन रहा है, ये सच्चाई है, आप देखिए। मैं इस पे पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, पर प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी है कि 21 जून को जितने भी स्टूडेंट्स हैं 23 लाख बिना लीक का वो एग्जामिनेशन हो।
0: अब एक सवाल मेरा भी है बच्चों के बिहाफ पे, जितने बच्चों से मैंने बात की है वो सब कह रहे हैं कि इस बार का क्या पोर्टल में अगर ग्लिच आ रहा है, अगर नहीं रिवैल्यूएशन हो पा रहा है, तो आप मैनुअल चेकिंग की तरफ क्यों नहीं जाते हैं? क्यों अड़े हुए हैं कि इसी पोर्टल के जरिए होगा जब वो पोर्टल बार बार क्रैश कर रहा है? इन बच्चों को एडमिशन लेना है भाई यूनिवर्सिटी में, इस बैच का क्या होगा?
15: अंजना जी, किसी भी व्यक्ति किसी भी बच्चे के एडमिशन लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये भी जो फीडबैक है ये भी कमेटी ऑफ IIT डायरेक्टर्स को पहुंचा दिया, उसे संज्ञान ले रहे
0: हैं। जवाब दीजिए और चलिए बच्चों के बिहाफ दोनों आगे, दोनों लड़के आए।
13: कौन सी क्लास में बच्चे हैं आपके, बताओ एक बार।
7: अंजना जी, हुआ क्या है?
0: हाँ।
7: कि जेई
15: मैंने 10 बार भी IIT पास किया आपके जैसे नहीं हूं कि कांग्रेस
0: प्रदीप जी ही वेटेड, प्रदीप जी ही वेटेड फॉर योर टर्न, लेट हिम कंप्लीट प्लीज।
7: समझिए बात, अंजना जी क्या हुआ है कि IIT जेई में एडमिशन के लिए 75% CBSE में मार्क्स होने चाहिए, वहां बच्चे के 95-98% मार्क्स आ रहे हैं जेई में, और यहां पर जो ऑन स्क्रीन जो मार्किंग हुई उसके अंदर 55% और 45% आ रहे हैं। उन बच्चों के हजारों बच्चे हैं जिनके जेई में एडमिशन नहीं हो पा रहे, पहली चीज। रिवैल्यूएशन करके जब वो तक जाएंगे, जिन लोगों ने फॉरेन यूनिवर्सिटीज में बाकी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लिए हुए हैं वो सारे उलझे हुए हैं, लेकिन इनको उस कंपनी को भी बचाना है, इनको NTA को भी बचाना है,
15: आपको बचाना और यहाँ पर चिल्लाना है आपने दिया है। अरे हमने इंक्वायरी ऑर्डर
7: किया है एक अधिकारी के ऊपर,
15: अभी तक निकलेगा यही निकलेगा।
7: अंजना जी, एक अधिकारी के ऊपर अभी तक कर रहे हैं,
15: आपको बच्चों के भविष्य से लेना देना नहीं है, आपको राहुल को बचाना है बस,
7: और ना ही
15: एक बच्चों रिलेटेड सवाल।
8: मैं, मेरा सवाल इन सभी लोगों से है कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? हम लोग यहाँ पे बच्चों के वेलफेयर के लिए आए हैं, उनके एजुकेशन के लिए आए हैं, पर जितने भी यहाँ पे चारों लोग आप लोग इकट्ठे हुए हैं, आप लोग आपस में ही मतलब इतनी आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट, हम लोग तो इस बारे में बात ही नहीं कर रहे ना। मेरी खुद की कजन है जो इस बार नीट एग्जाम में अपीयर हुई थी, मैं नाम रिवील नहीं करूंगी, उसकी मॉम को फीस मतलब जो नीट के एग्जाम के फॉर्म की फीस होती है वो मिनिमम एज अ मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास फैमिली जो कि उसे फिल भी नहीं कर सकती। मैं इतना जानना चाहती हूँ जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया जिनके पास फॉर्म फिल करने के पैसे तक भी नहीं थे, उनका अब आगे क्या होगा? और एक ऋतिक मिश्रा जो लखीमपुर यूपी से बिलोंग करते थे, जिन्होंने आघत परेशान होकर डिप्रेस स्ट्रेस में आकर अपनी जान दे दी, उस माँ के उन बच्चों का भविष्य क्या होगा?
9: मेरा सवाल रूलिंग गवर्नमेंट से है कि क्या हम नीट पे दोबारा भरोसा कर सकते इतना सब कुछ होने के बाद?
10: बिल्कुल, मतलब ये कि अगर पेपर लीक होते रहेंगे तो क्या देश के लिए अच्छे वेलफेयर के लिए क्या अनपढ़ लोग चलाएंगे उनको, या फिर जैसे कि नीट का पेपर लीक हुआ उसमें अच्छे डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है, अब ये लोग ही हैं बीजेपी जो भी है जो जिसकी भी सरकार ही बीमार हुई तो क्या विदेश के डॉक्टर्स को बुलाएंगे अपने इलाज के लिए? जब पेपर ही लीक होता रहेगा तो क्या करेंगे बच्चे फिर सोसाइटी?
11: मेरा सवाल रूलिंग पार्टी से, पेपर लीक होने से हजारों बच्चों के इमोशंस के साथ खेला जाता है, इस इमोशनल कॉस्ट को कौन देगा? रूलिंग पार्टी देंगी कैसे देंगी? और आने वाले जो हजारों बच्चे लाखों करोड़ों बच्चे एग्जाम देने वाले उनके लिए सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? आज की रूलिंग पार्टी जिम्मेदार है।
8: मेरा सवाल ये है कि जब बच्चों से ऑनेस्टी की उम्मीद की जाती है तो एजुकेशन अथॉरिटीज से की अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर की जाएगी?
0: जोर से ताली बजाइए इस पर। बच्चों की ऐसी चेकिंग करते हैं, कपड़े चप्पल सब कुछ देखते हैं, और एक टीचर आराम से आता है सारा क्वेश्चंस लिखता है उंगली से। ये आपको RSS के बच्चे लग रहे थे सर, इसीलिए मैं कहती हूँ
7: देखिए
0: मत कीजिए।
7: जो लोग ग्रुप के थे वो मैंने कहे,
0: अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने व्यू पॉइंट्स होते हैं ना। बच्चे जब बारी बारी से, अब तो कम से कम इज्जत कीजिए जो उस बच्चे ने कहा है। जब एग्जाम की चेकिंग होती है बच्चों के लिए एक एक चीज निकालते हैं, वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, एक एक चीज मतलब हर तरह के एग्जाम में करते हैं ना ये सब, नोज रिंग भी चेक करते हैं, अच्छा दुपट्टा भी सब कुछ। और जब बात टीचर की आती है
12: तो जब बात टीचर की आती है तो एक टीचर जिसके पास पेपर था वो बाकायदा अच्छे से सब कुछ क्वेश्चन पेपर को अपनी हैंडराइटिंग में नोट करता है, फिर एक कोचिंग सोसाइटी के आदमी को बेच देता है, फिर वो उसको आगे बेचता है और ऐसे एक पूरी चेन चलती है। मतलब ये शिकंजा खाली बच्चों की चेकिंग करते रहेंगे? ऑनेस्टी की उम्मीद सिर्फ बच्चों से है? अब आप सरकार हैं, 12 साल से आपकी सरकार है, आप जवाबदेह हैं, उन बच्चों का जवाब दीजिए।
15: बिल्कुल मैं जवाबदेह हूं और मेरी प्रायोरिटी है कि मैं 21 जून के जो एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें बिल्कुल भी 1% भी कोई दिक्कत नहीं हो, और मेरी पूरी की पूरी प्रायोरिटी है। इसके लिए अनप्रेसिडेंटेड मेजर्स जो है वो भी लिए गए, मैं कहां मना कर रहा हूं। आप मुझे बताइए, 100 टीचर्स एग्जाम बनाते हैं, उस 100 टीचर में से जैसे आपने कहा कि कुछ टीचर्स ने जाके ये पेपर किसी कोचिंग वाले व्यक्ति के साथ में मिलकर लीक कर दिया, कोई पॉलिटिकल व्यक्ति ने नहीं लीक किया, जिम्मेदारी मेरी जरूर है, पर एक ये बड़ा माफिया है जिसके अंदर अलग अलग प्रोफेशंस और जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एजुकेशन से जुड़े लोग हैं जो डिसेंट्रलाइज रूप से किसी सेंटर में, उन सब की यहां पे इंप्लॉयमेंट इन्वॉल्वमेंट है और एक क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है। तो ये

0: मजबूरी में किया।
1: राजस्थान में कुछ नहीं कर पाया।
2: अभी क्या है कि
0: एक चीज
2: आरोप प्रत्यारोप आगे पीछे जाने से बेहतर है कि हम बात करें कि अभी आने वाले समय में ये चीजें इंप्रूव हम कैसे कर सकते हैं। एनटीए एक टेस्टिंग एजेंसी, एक बॉडी है, वो कोई व्यक्ति नहीं है, कोई पार्टी नहीं, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ना। एनटीए जो है, एनटीए एक टेस्टिंग एजेंसी है। एनटीए एनटीए को शिक्षा मंत्रालय ने एग्जामिनेशन, सर प्लीज सर प्लीज सर सर, मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दीजिए, मेरी आपसे कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे बोलने दीजिए।
1: एनटीए की रजिस्ट्रेशन है 1860 के एनटीए हर व्यक्ति में कांग्रेसी झूठ बोलता है। खोलो एनजीओ है कि नहीं है, नहीं है डेजिग्नेटेड एनजीओ, झूठ बात
2: एक मिनट सर एक मिनट। एनटीए की ओवरऑल कैसे होगी,
0: रुक जा भाई,
2: भविष्य में ऐसी चीजें ना
0: होने जाने देंगे।
2: एनटीए को डिसेंट्रलाइज
0: जाने
2: दिया जाए, एनटीए के अंदर आउटसोर्सिंग कैसे बंद की जाए,
0: एनजीओ के रजिस्ट्रेशन
2: का राधा कृष्ण कमेटी की
0: झूठ बोलते हैं, सिफारिश
2: है कैसे
0: सोसाइटी और एनजीओ का फर्क होता है,
2: पर बात होनी चाहिए ना कि राहुल गांधी को लेकर कैसे बना लो।
3: पोर्टल चलाइए, पोर्टल चलाइए ताकि बच्चों का रिवैल्यूएशन हो और नीट का रीटेस्ट ठीक तरीके से कराइए। बस इसी की उम्मीद हमारी नजर आप पर बनी रहेगी। इसी के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।
4: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health Ka Sach in association with
5: Bharat Ki Apni Electric Sawari Sokudo.
6: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
7: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
8: Current advancement. ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
3: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
4: लायन डेट नट बाइट्स।
5: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
8: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
9: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
10: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTO को पता नहीं।
8: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
11: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
9: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
8: जहां खबर वहां खबरदार।
12: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
13: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 11 बिलियन व्यूज, 85 मिलियन यूनिक व्यूअर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ब्रांड, रीजनल और हाइपर लोकल रीच। हर शहर हर कस्बे तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल करें।

0: वक्त उसी बिल्डिंग के बाहर हूँ जहाँ पर ये आग लगी।
1: मैं आपको टॉप एंगल से एक तस्वीर दिखाता हूँ और ये तस्वीर जो पूरा मंजर है उसको बयान करने के लिए काफी है।
2: यहाँ पर दूसरा एग्जिट गेट नहीं है तो किस तरीके से सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया गया था,
3: ये तस्वीरें बताती है कि किस तरीके से लापरवाही जो है वो पूरे इस इलाके में जो है वो चल रही है।
1: 20 लोगों की जान चली गई। और देखिए जब तस्वीर दिखाई जाती है एक एक करके तो इस तरह से दिल्ली पुलिस की टीम आती है और कहती है कि आप यहां से नहीं दिखाएंगे।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: मम्मी पापा आपका मुझ पर भरोसा था कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएगी, पर दोबारा नीट देने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। पहले नीट के पेपर में मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे, पर दोबारा पेपर अच्छा जाए इसकी क्या गारंटी है। सॉरी मम्मी पापा, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का।
3: सोचिए ये शब्द किसका कलेजा नहीं चीर देंगे।
4: हम कर्ज ले लेके पढ़ा रहे थे, हम किसी से मांग मांग के उसकी फीस भर रहे थे।
5: कितने सारे सपने दिखा के चली गई थी उसके नाम की आगे का कर्ज।
3: मध्य प्रदेश की आकांक्षा की मौत सिस्टम पर वो करारा तमाचा है जिसकी गूंज सुनाई तो पड़ रही है, लेकिन सवाल वही है कि क्या कुछ दिनों के हंगामे के बाद पेपर लीक माफिया और शिक्षा तंत्र में बैठे धंधेबाजों पर फिर तो चुप्पी नहीं ओढ़ ली जाएगी। आज जो विपक्ष में है वे नीट पेपर लीक और सीबीएसई ओएसएम की गड़बड़ी पर सरकार से तीखे सवाल पूछ रहे हैं।
6: दुख है हमें, लेकिन कार्रवाई में कभी कमी नहीं रखा।
7: How many questions normally will someone apply for?
8: I guess अभी जो problem आ रही है, they can apply for all the questions.
7: So how many total questions?
8: 30-35 around questions होते हैं.
7: So huge amount of money.
8: Huge amount of money is involved.
3: विपक्ष को सवाल पूछने भी चाहिए, जवाबदेही तय होनी ही चाहिए, लेकिन शिक्षा तंत्र को फेल करने वालों का जाल बहुत गहरा है और बहुत पुराना है। 2002 से 2025 के बीच 100,000 से अधिक उम्मीदवारों वाली 45 लीक परीक्षाओं ने 3,86,00,000 छात्रों को प्रभावित किया। लीक के इन मामलों में 1,658 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 925 पर चार्जशीट दाखिल की गई, 2 मामलों में 18 लोग दोषी करार दिए गए, 43 आरोपी जेल में बंद हैं। आरोपों के मुताबिक पेपर लीक माफिया का कोचिंग माफिया के साथ सांठगांठ होता है। इस बार की नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में भी आरोपियों के तार कोचिंग सेंटर से जुड़े हैं, इसलिए शिक्षा तंत्र के ओवरहॉल की जरूरत है। छात्र तो अपना भविष्य बनाने की परीक्षा देते हैं, अब की बार सरकार को परीक्षा में पास होकर दिखाना है। आज तक ब्यूरो।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

0: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढौंडियाल। शाम के 7 बजने वाले हैं आज तक इस खास शो में। अगले आधे घंटे में दिन भर की तमाम बड़ी खबरें होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उससे पहले हेडलाइंस आपको दिखाते हैं। पश्चिम एशिया संकट के बीच में पीएम मोदी की बड़ी बैठक, आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ मंथन, देशवासियों का जीवन आसान बनाने और आर्थिक दर को बढ़ाने पर चर्चा। समाजवादी पार्टी पर मुख्यमंत्री योगी का बड़ा हमला, कहा 2017 से पहले गुंडों के आगे नतमस्तक थी सरकार, राम का नाम लेने पर चलती थी गोलियां, अखिलेश का पलटवार, यूपी में महाजंगल राज। गिरफ्तारी के डर से सामने नहीं आ रहे पटना में कोचिंग चलाने वाले फैजल खान, वकील ने कहा अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी देंगे, सिविल कोर्ट के बाहर इंतजार ही करती रही पुलिस। संभल में मुस्तफा कादरी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन, सरकारी जमीन पर निर्माण के बाद कार्रवाई, मौके पर पुलिस फोर्स की तैनाती। टीम इंडिया में 15 साल के सिक्सर किंग वैभव सूर्यवंशी की धमाकेदार एंट्री, आयरलैंड इंग्लैंड के दौरे पर मिली जगह, T20 फॉर्मेट में नए कप्तान बनाए गए श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव बाहर। तो शो की शुरुआत करते हैं फैसल खान उर्फ खान सर से, जिन पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।
1: पटना में दो कोचिंग संचालकों की लड़ाई अब फैसल खान यानी खान सर की गिरफ्तारी तक पहुंच चुकी है। फैसल खान के वकील ने साफ किया है कि वो सरेंडर नहीं करेंगे।
2: खबर है ऐसा कोई विचार ही नहीं है सरेंडर करने का। पुलिस तो किसी को अरेस्ट कर सकती है, नॉन अवेलेबल सेक्शन है तो किसी को अरेस्ट कर सकती है ना।
1: कल आर्म्स एक्ट के तहत पटना पुलिस ने फैजल खान के खिलाफ FIR दर्ज की थी। कोचिंग के गार्ड्स ने पूछताछ में कहा था कि फैजल खान ने उन्हें फायरिंग के लिए कहा था।
2: पुलिस कुछ भी लिख दे, अगर ऐसा होता तो खान सर भेज हुए थे ना, पुलिस को उसी समय अरेस्ट कर लेना था इनको। अगर ऐसा कोई रहता तो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट थाना में ले लेने से और FIR में लिख देने से कोई एविडेंस नहीं होता।
1: उधर फैजल खान की गिरफ्तारी की खबरों के बीच कल रात कोचिंग के बाहर भारी संख्या में छात्र मौजूद थे। तनाव को देखते हुए पुलिस का गश्त जारी रहा। PCR वैन में तैनात पुलिस छात्रों को समझाती नजर आई।
3: मौजूद है और सड़क के दूसरे किनारे एक लाइन से हजारों छात्र जो हैं वो यहाँ पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं खान सर के, ये कह सकते हैं कि समर्थन में ये जो छात्र हैं वो यहाँ पे खड़े हैं। तस्वीर देखिए, ये खान सर के कोचिंग के बाहर का नजारा है।
1: घटना के बाद फैजल खान के छात्रों को भड़काने का वीडियो वायरल हुआ था।
4: इसके ऊपर करने आया है
5: जबकि सबके सामने ये लेके जा रहा है, मुद्दे से भटकाया जा रहा है, आप इसकी गिरफ्तारी करिए, ये आदमी कौन है और कैसे आता है 20-25 लोगों को उठा के लेके चला जा रहा है, 20-25 लोगों को एक साथ कैसे।
1: वीडियो और मैसेज के बीच जारी तनाव को देखते हुए पटना पुलिस ने छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि दो कोचिंग संस्थानों की प्रतिस्पर्धा में किसी के बहकावे में आना ठीक नहीं है। सूत्रों के माने तो फैजल खान गिरफ्तारी के तलवार के बीच अग्रिम जमानत लेने की तैयारी कर रहे हैं। रोहित सिंह, पटना आज तक।
0: और इसी मामले से जुड़ी हुई एक हैरान करने वाली बड़ी खबर आपको देते हैं। फैजल खान के KGS कोचिंग सेंटर में फायर सेफ्टी का अनुपालन नहीं होने का मामला सामने आया है। जी हाँ, ये बड़ी खबर। बिहार अग्निशमन सेवा के DIG मनोज कुमार ने यह जानकारी दी है और उनके मुताबिक KGS के कोचिंग सेंटर में फायर सेफ्टी को लेकर कमियां मिली हैं, कमियां, और उनको इन कमियों को दूर करने का निर्देश दिया गया है। अगर KGS ने इन्हें दूर नहीं किया तो कोचिंग सेंटर को सील करने समेत अन्य तरह की कार्रवाई जिला अग्निशमन अधिकारी करेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि क्या फायर सेफ्टी के वहां पर कमियां थी, उन्हें दूर क्यों नहीं किया गया, क्या छात्रों के साथ यहां खिलवाड़ नहीं था। आज देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी नीट पेपर लीक के विरोध में उतर गई। यहां पर छात्रों की आत्महत्या से जुड़े हुए सवाल किए गए तो वहीं धर्मेंद्र प्रधान के लगातार इस्तीफे की मांग भी की गई।
6: हाथों में संविधान की कॉपी लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके आज सुबह अमेरिका से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से उन्होंने जंतर मंतर का रुख किया।
7: सोशल मीडिया पर व्यंग और मीम्स के तौर पर शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी अब दिल्ली के जंतर मंतर आ पहुंचा है। सुबह सुबह अभिजीत दीप के अमेरिका से सीधे आईजीआई एयरपोर्ट पे लैंड किया और उसके बाद जंतर मंतर पहुंचा। पहले भीड़ कम थी, ना मंच था, ना बैनर था, ना कोई ऑडियो सिस्टम, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया भीड़ की संख्या बढ़ती गई। स्टेज भी लगा, मंच भी लगा और हाथ में तिरंगा लिए युवा यहां पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
6: नीट पेपर लीक को लेकर हो रहे इस प्रदर्शन में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई। अभिजीत दीपक्के के साथ सोनम वांगचुक भी मंच पर नजर आए। अभिजीत ने धर्मेंद्र को इस्तीफे के लिए 5 बजे तक का अल्टीमेटम दिया।
4: मैं धर्मेंद्र प्रधान जी जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनसे पूछना चाहता हूँ, 5 बच्चों ने सुसाइड कर लिए फिर भी आपने रिजाइन नहीं किया है, आपको शर्म नहीं आती? और कितने बच्चों का सुसाइड करने का वेट करेंगे आप? जब तक रिजाइन नहीं करोगे तब तक हमारा मूवमेंट जारी रहेगा। इसके बाद हम ये मूवमेंट को देश भर में लेकर जाएंगे और ये मूवमेंट तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते।
6: अभिजीत ने अपने इस आंदोलन को सफल बताया तो वहीं साफ किया कि सोशल मीडिया से शुरू हुआ ये आंदोलन अब देश भर में नजर आने वाला है।
4: 15 दिन पहले जब कांग्रेस जनता पार्टी का पेज स्टार्ट हुआ था तब लोगों ने कहा था ये तो एक सोशल मीडिया का ट्रेंड है, ये तो एक सोशल मीडिया पर ही लिमिटेड रहकर रह जाएगा, लेकिन आज हमने देख लिया कि ये कोई सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं है, ये एक आंदोलन है जो जिसकी आज शुरुआत हो चुकी।
6: 5 घंटे तक जंतर मंतर में प्रदर्शन के बाद प्रदर्शनकारी लौट गए, जहां उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे ना देने पर अगले शनिवार को एक बार फिर जंतर मंतर आने का ऐलान किया है। अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।
0: दिल्ली के जंतर मंतर में एक ओर जहां जेन जी की सरकार से नाराजगी दिखाने की उन्होंने कोशिश की तो वहीं दिल्ली में कुछ ही किलोमीटर दूरी पर सरकार के समर्थन में भी युवाओं को एकजुट किया गया।
6: दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में यूथ फॉर विकसित भारत सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े 6,000 से ज्यादा युवा शामिल हुए। वहीं मैथिली ठाकुर, फिल्म स्टार विक्रांत मेस्सी, बोट फाउंडर अमन गुप्ता और गुरिंदर वीर सिंह ने सीएम रेखा गुप्ता और खेल मंत्री मनसुख मांडविया के साथ मंच साझा किया।
8: आज मैं माय भारत यूथ कन्वेंशन में मेरे साथ के कितने सारे लोग हैं। एक बार जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
6: एक और जहां विपक्ष युवाओं की नाराजगी और जेन जी आंदोलन की लगातार बात कर रहा है तो वहीं सरकार ने मंच से ये संदेश देने की कोशिश की कि देश के युवाओं को सरकार पर पूरा भरोसा है।
9: माय भारत, मोदी जी ने देश के युवाओं को अपनी आकांक्षा, अपनी अपेक्षा, अपनी वॉलंटियर क्षमता, अपना आइडियाज उस साझा करने के लिए बनाया हुआ प्लेटफॉर्म है।
10: देश का युवा जो विजनरी है, जिसमें साहस है, जो क्रिएटिव है, वो देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करे, अपना भविष्य भी निर्माण करे और देश का भी निर्माण करे, उसके लिए आज ये इवेंट था।
6: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में जोर देने के लिए यूथ फॉर विकसित भारत अभियान को सरकार युवाओं के लिए एक बड़ा कदम बता रही है जिसके जरिए युवाओं का भरोसा जीतने की कोशिश की जा रही है। सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
0: अब खबर पश्चिम बंगाल से, जहां पर ममता बनर्जी के सामने टीएमसी को बचाने का संकट है और इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। भारत के पूर्व कप्तान क्रिकेटर सौरभ गांगुली ने ममता बनर्जी के लिए यूसुफ पठान से लोकसभा सीट को छोड़ने की बात से अब इनकार कर दिया है। उन्होंने उन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स को भी खारिज कर दिया है। दावा किया गया था जिसमें कि उन्होंने पठान तक ऐसा कोई संदेश पहुंचाया था। ऐसा दावा किया जा रहा था कि ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान से इस्तीफा देने के लिए संदेश भेजा है, जहां वो खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं ताकि वो केंद्र की सियासत में एंट्री ले। और आज जारी बयान में सौरभ गांगुली ने यह साफ कर दिया है कि ममता बनर्जी ने उनसे कभी भी यूसुफ पठान को सीट या फिर किसी अन्य मामले में कोई भी संदेश पहुंचाने के लिए कहा हो, उन्होंने नहीं कहा। अब इस बीच में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी खुद दिल्ली पहुंचे हैं। टीएमसी के सांसदों के पार्टी छोड़ने के अटकलों के बीच में टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी दिल्ली के दौरे पर हैं और सूत्रों के मुताबिक टीएमसी के कई सांसद बागी गुट के संपर्क में हैं। वो पार्टी को छोड़ने और बागी गुट में शामिल होने का ऐलान कर सकते हैं। अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी 8 जून को दिल्ली में होने वाली गठबंधन इंडिया की बैठक में शामिल होंगे। बात अब उत्तर प्रदेश की। यूपी में भी 2027 के लिए हर पार्टी ने कमर कस ली है। योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ हमले जारी रखे हैं, वहीं अखिलेश यादव भी लगातार सरकार को घेरने की कोशिशें कर रहे हैं।
11: तब राम का नाम लेने पर ही प्रतिबंध था, डंडे बरसते थे, गोलियां चलती थी, अयोध्या में भगवान राम का भक्त अयोध्या में नहीं जा सकता था, किस प्रकार की अराजकता थी। अब तो अयोध्या में राम भक्त के अलावा कोई रामद्रोही घुस ही नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। आज तो अयोध्या चमक रही है।
12: 2027 के सियासी समर में बीजेपी हिंदुत्व और राम मंदिर के मुद्दे पर सवार है, जहां अखिलेश यादव पर सीएम योगी आदित्यनाथ के हमले जारी हैं।
11: 2017 के पहले इन दंगाइयों को, इन पेशेवर गुंडों को प्रश्रय देते थे, इनके सामने नतमस्तक होते थे। प्रदेश में कर्फ्यू रहता था।
12: योगी विकास से लेकर डबल इंजन तक की खूबियां गिना रहे हैं, तो वहीं पिछली सरकारों की खामियां भी बता रहे हैं।
11: 2015-16 में इस गोंडा में भी दुर्गा पूजा के समय दंगा करने का प्रयास हुआ था, यहां भी दंगे हुए थे। मां दुर्गा की मूर्ति को विसर्जन नहीं करने दिया जाता था, रामलीलाओं के आयोजन में अड़चने डाली जाती थी। पर्व और त्योहार प्रारंभ होने के पहले, उत्सव प्रारंभ होने के पहले उपद्रव शुरू हो जाते थे। उत्सव के रंग में किसी ने भंग करने का काम किया तो फिर वर्तमान तो जाएगा ही जाएगा, भविष्य भी स्वाहा हो जाएगा।
12: उधर अखिलेश को योगी सरकार में जंगल राज नजर आ रहा है। उधर गाजीपुर में कमलेश बिंद के एनकाउंटर पर विपक्ष और सरकार के सहयोगियों के सुर एक जैसे नजर आ रहे हैं। किसी को अपने वोट बैंक की टेंशन सता रही है तो कोई वोट बैंक में सेध मारने की तैयारी में है।
13: इतना बड़ा तो दुर्दांत अपराधी नहीं है कि जिससे आप एनकाउंटर, अब मुख्य आरोपी उसको बनाया भी नहीं गया, मुख्य आरोपी कोई और है, मुख्य आरोपी को तो पकड़ने दूर है, वो छुएंगे नहीं। आज जो साधारण है, जो वोट अभी गाजीपुर हारे हैं, अब गाजीपुर में बिंदुओं की संख्या बहुत अधिक है, जौनपुर में बिंदुओं की संख्या अधिक है, प्रधानमंत्री के चारों तरफ के हम सारी सीटें हार गए हैं।
14: बहुत ही जो घटना हुई है एनकाउंटर की, तो आखिर जब पुलिस पकड़ सकती थी मुजरिम को तो एनकाउंटर क्यों करा गया? तो सवाल तो ये अपने आप में पूरी कानून व्यवस्था में प्रश्न चिन्ह उठाने का काम है। भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं चाहते हैं कि शासन और जो प्रशासन है, जो नियम है, जो कानून है, उससे चले।
12: बहरहाल यूपी में चुनावी पिच पूरी तरह से तैयार है, जहां हर पार्टी अपने हिसाब से बैटिंग कर रही है। आज तक ब्यूरो।
0: तो यूपी में योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन जारी है, जिसकी गूंज संभल में सुनाई दी, जहां सरकारी जमीन पर बनी मुस्तफा कादरी मस्जिद के खिलाफ एक्शन लिया गया।
15: संभल के नखासा थाना इलाके के कसेरुआ गांव में स्थित मुस्तफा कादरी मस्जिद को ध्वस्त करने की कार्रवाई इस वक्त शुरू हो चुकी है। और आप मेरे पीछे की तस्वीरों में आप जो देख सकते हैं कि किस तरीके से बुलडोजर एक्शन के जरिए जो कि सरकारी जमीन पर बनी हुई मस्जिद है, उसको यहां पर ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई की जा रही है। दो दो बुलडोजर इस पूरी मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए फिलहाल यहां पर जो लगाए गए हैं, पूरा पुलिस फोर्स गांव में तैनात किया गया है। और ये देखा जाए तो ये 120 वर्ग मीटर जगह में बनी हुई ये पूरी मस्जिद थी, जिसको हटाने के लिए जनवरी महीने में जो है लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर ये पूरी कार्रवाई शुरू की गई थी और उसके बाद इस मस्जिद के वक्फ बोर्ड में भी रजिस्टर्ड होने का मामला सामने आया था, जिसके बाद इस मस्जिद कमेटी से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ FIR कराई गई। लेकिन आज अब इस पूरे मस्जिद पर धारा 67 के तहत जो कार्रवाई यहाँ पर जो की जा रही है, और आप यहाँ जो देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से जो पूरा बुलडोजर है वो इस पूरे मस्जिद के स्ट्रक्चर को ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई कर रहा है। और एहतियातन अगर जो देखा जाए तो देखिए छतों पर आपको जो पुलिसकर्मी आपको जो तैनात नजर आएंगे यहाँ, अगर आपको जो देखा जाए तो देखिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो फिलहाल आपको जो है ये वो पुलिसकर्मियों की आपको जो है लगातार छतों पर जो तैनाती दिखाई देगी। जो है सामने देखिए तस्वीरों में देखेंगे तो देखिए तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह आपको यहाँ इस पूरे इलाके में लगातार इस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए दिखाई देंगे। और इसी तरह से देखिए आसपास का जो पूरा इलाका है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया। सामने आप देखेंगे तो देखिए बुलडोजर के ठीक बराबर में देखिए भारी संख्या में आपको पुलिस फोर्स जो है यहाँ पर जो तैनात जो नजर आएगा, जो कि आपको तस्वीरों में नजर आएगा। और इसी तरह से जो पूरे गांव का अलग अलग इलाके हैं वहां पर इस तरीके से पूरे पुलिस फोर्स को तैनात करके पूरे गाँव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर विशेष तौर पर निगरानी की जा रही है जिससे कि कोई भड़काऊ पोस्ट जो है वो न डाली जाए सोशल मीडिया पर।
0: अब खबर बिहार की। बिहार में राबड़ी देवी के बंगले को लेकर सियासत अब सुरक्षा तक पहुंच गई है। सुरक्षा में कटौती के बाद लालू परिवार ने मौजूद सुरक्षा लेने से भी इनकार कर दिया है।
12: आवास के बाहर पसरा सन्नाटा और कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं। एक बार तो ये यकीन करना भी मुश्किल है कि ये पटना में पूर्व सीएम राबड़ी देवी का बंगला है। एक दिन पहले Y+ सिक्योरिटी हटाए जाने के बाद अब लालू राबड़ी ने नाराजगी जताते हुए पूरी सुरक्षा वापस कर दी है।
16: राबड़ी देवी और लालू परिवार को जो सुरक्षा दी जाती है उसको लेकर जो है ये ताजा विवाद जो है वो शुरू हो गया है। और कल से हम देख रहे हैं जब सरकार का एक नया फरमान आया और लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को जो Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई थी उस सुरक्षा को सरकार ने वापस लिया और केवल बिहार पुलिस की सुरक्षा जो स्पेशल पुलिस होती है उसकी सुरक्षा प्रदान की। उसके बाद से ही लालू परिवार राबड़ी देवी जो है वो इसको लेकर काफी बिफर गए। और उसके बाद कल देर रात से हम देख रहे हैं कि 10 सर्कुलर रोड आवास जो कि राबड़ी देवी और उनका परिवार यहाँ पिछले 20 सालों से रह रहा है यहाँ कल रात से ही एक भी सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं है।
12: इस बीच तेजस्वी यादव ने इसका विरोध करते हुए अपनी सुरक्षा लौटा दी, जिसे लेकर RJD अब सरकार पर लगातार हमले कर रही है। सुरक्षा कवच में कटौती के बाद दिखावे की सुरक्षा रखने का कोई औचित्य नहीं है। सात खून के आरोपी रहे मुख्यमंत्री की सरकार के द्वारा लालू जी एवं राबड़ी देवी जी की सुरक्षा में कटौती का फैसला लालू जी राबड़ी देवी जी एवं उनके परिवार को नुकसान शारीरिक क्षति पहुंचाने की नीयत से ही लिया गया है। अगर लालू जी एवं उनके परिवार का सुरक्षा कवच है और अगर लालू जी राबड़ी देवी जी और परिवार के किसी भी सदस्य को एक खरोच भी आई तो अंजाम क्या होगा इसका अंदाजा शायद बिगड़ैल सम्राट चौधरी और उनकी सरकार को नहीं है।
17: सबको वापस कर दिया, सबको बाहर निकाल दिया, क्योंकि कल ही राज्य की सरकार ने अपने आका के निर्देश पर आदरणीय लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी सहित पूरे लालू परिवार की सुरक्षा में व्यापक और घोर कटौती कर दी। शासन अपमानित करना चाहती है लालू प्रसाद जी और उनके परिवार को, उनके परिजनों को।
18: ये सुरक्षा उनको क्यों दिया गया था? कभी मुख्यमंत्री रहे, कभी केंद्रीय मंत्री रहे, जब ये संवैधानिक व्यवस्था, ये नहीं है कि हथुआ मामा का बेटा है तो सब दिन वही रहेगा। जनता जिसको चुन करके देती है सत्ता में और जो कानून कहता है वो सुरक्षा मिलता।
12: समीक्षा में तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं किया गया था, लेकिन लालू और राबड़ी की सुरक्षा घटाए जाने के विरोध में अब तेजस्वी यादव ने ये बड़ा फैसला लिया है। वहीं लालू राबड़ी की Z+ सिक्योरिटी वापस ली गई थी, लेकिन नई सुरक्षा व्यवस्था के तहत दोनों नेताओं के लिए बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की सुरक्षा का इंतजाम किया गया था, जिसके तहत 2 से 8 जवान सुरक्षा में तैनात रहने का निर्देश था। इसके साथ बुलेट प्रूफ कार, जिला बल से एस्कॉर्ट की नियुक्ति का निर्देश था।
16: ये बिहार पुलिस की जो सुरक्षा, जो नई व्यवस्था उनको प्रदान की गई थी, उस सुरक्षा को भी यहाँ लेने से देखिए लालू परिवार ने जो है वो मना कर दिया है। ये देख सकते हैं यहाँ बिहार पुलिस के जो विशेष दस्ता है वो जो नई सुरक्षा व्यवस्था के तहत इनको यहाँ पर भेजा गया है, इन तमाम लोगों को भी जो है 10 सर्कुलर रोड आवास में जाने नहीं दिया गया है, इनको बाहर कर दिया गया है परिवार के द्वारा। और जाहिर सी बात है ये तमाम जो बिहार पुलिस के यहाँ पर कर्मी हैं वो लोग बाहर ही खड़े हैं, राबड़ी देवी के आवास के बाहर ही इसी तरीके से खड़े हैं। अब इन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है कि करना है तो क्या करना है।
12: राबड़ी देवी के बंगले को लेकर सियासत चल ही रही थी, जिस पर अब सुरक्षा को लेकर विवाद की एंट्री हो चुकी है। रोहित सिंह, पटना आज तक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में जाने माने अर्थशास्त्री और नीति विशेषज्ञ शामिल हुए। उन्होंने पश्चिम एशिया में जारी टेंशन समेत दुनिया भर में बढ़ती अनिश्चितताओं के बीच में भारत की आर्थिक रफ्तार बनाए रखने की स्ट्रैटेजी पर चर्चा की। परिषद ने दुनिया में बदलती आर्थिक स्थिति पर भी मंथन किया। इसमें एनर्जी मार्केट, इसमें महंगाई का दबाव, सप्लाई चेन में रुकावट और व्यापार के फ्लो पर भी खास ध्यान दिया गया। बैठक में भारत की मैक्रो इकोनॉमिक स्थिरता पर जियोपॉलिटिक्स के संभावित इंपैक्ट का विश्लेषण भी किया गया। वहीं घरेलू आर्थिक गतिविधियों को सुरक्षित रखने के लिए खास उपायों की जरूरत पर जोर दिया गया। और अब बात करते हैं दुनिया की, जहां पर खाड़ी युद्ध में तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर से अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की कोशिशों के बीच धमाके की गूंज युद्ध विराम की उम्मीदों को तोड़ रही है।

0: पश्चिम एशिया से आई इन तस्वीरों ने फिर से दुनिया को पसोपेश में डाल दिया है। इस मंजर ने डरा दिया है कि खाड़ी में फिर से महायुद्ध 2.0 की लपटें सुलगने लगी हैं। इस माहौल ने बता दिया है कि किसी भी वक्त अमेरिका और ईरान में फिर से भीषण जंग छिड़ने वाली है। दहशत इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि ईरान ने कुवैत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया है। कुवैत में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। कुवैत का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान से आ रहे ड्रोन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहा है। ईरान ने बहरीन पर भी मिसाइल दागी है। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को रोकने के लिए बहरीन का भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। हम आपको बता दें कि बहरीन में अमेरिकी सेंट्रल कमांड का मुख्यालय भी है। अपने सहयोगी देशों पर ईरान के हमले से अमेरिका बौखला चुका है। पलटवार में अमेरिका ने भी ईरान के कई ठिकानों पर धावा बोल दिया। ईरान के सर्विलांस रडार सेंटर पर अमेरिका ने हमला किया है। ईरान के रडार सेंटर पर हमले का वीडियो भी अमेरिका ने जारी कर दिया। अमेरिका का कहना है कि पहले ईरान ने हमला किया था, जिसके जवाब में उसके रडार सर्विलांस टावर को उड़ा दिया गया। अमेरिकी सेना ने समुद्री हमलों से बचाव के लिए गोरुक और केशम द्वीप पर स्थित ईरानी तटीय निगरानी रडार को ध्वस्त किया। अमेरिका ने दावा किया कि 6 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया, जबकि 7वीं मिसाइल टारगेट तक पहुंची ही नहीं। मतलब साफ है कि जो सीज फायर फिलहाल अस्थाई है, वो किसी भी वक्त धराशायी हो सकता है, क्योंकि ईरान और अमेरिका में झड़प शुरू हो चुकी है। यह चिंगारी किसी भी वक्त भीषण युद्ध का शक्ल ले सकती है। आज तक ब्यूरो।
1: भारतीय क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान के साथ इकलौते टेस्ट के पहले दिन रनों की खूब दावत उड़ाई। न्यू चंडीगढ़ में खेले गए पहली बार खेले गए इस टेस्ट में भारत की ओर से कैप्टन शुभमन गिल, केएल राहुल ने शतक लगाया तो साई सुदर्शन और ऋषभ पंत ने अर्धशतक बनाया। टीम इंडिया ने पहले दिन के खेल में 3 विकेट पर 368 रनों का स्कोर बनाया। शुभमन गिल 103 रन बनाकर नाबाद रहे तो राहुल ने 100 रन, सुदर्शन ने 81 तो पंत ने नाबाद 50 रन बनाए। भारत ने टॉस जीता और बैटिंग करना चुना। मानव सुथार ने इस मुकाबले में टेस्ट डेब्यू किया है। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने पहले विकेट के लिए 41 रनों के साथ की। आईपीएल की शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए सुदर्शन ने 67 गेंदों में हाफ सेंचुरी की। फिर शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने मिलकर भारत को मजबूत बनाए रखा और इन दोनों ने चौथे विकेट के लिए 121 रनों की अटूट साझेदारी की और टीम इंडिया का को जो 400 के करीब पहुंचा दिया है। इस दौरान कप्तान शुभमन गिल ने 11वां टेस्ट शतक पूरा किया जो कि 138 गेंदों में आया। वही आज इंग्लैंड और आयरलैंड के दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान भी किया गया, जिसमें वैभव सूर्यवंशी अब ब्लू जर्सी में दिखाई देंगे और इस पर हमारा खास शो आप देखिए 7:30 PM विक्रांत गुप्ता के साथ। बहरहाल मुझे फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहेंगे आज।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस। इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर 1 कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay locked in to the NBA playoffs with ESPN Radio. Get around-the-clock sports talk covering every matchup, every storyline, and every big moment as games unfold. And throughout the playoffs, catch select live games bringing you courtside for some of the biggest showdowns. From nonstop analysis to can't-miss action, ESPN Radio is your home to follow the NBA playoffs. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
5: ओह नो, बहुत बोर लग रहा है।
6: Take a date, not bites.
7: No added sugar, preservative ke bina. Dates, badam, pista, kaju aur shahad se taiyar kiya gaya. Lion Dates Nut Bites.
6: Lion Date Nut Bites.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: in association with
1: Cool Stylish Fans. Enhance home decor with beautiful fans.
2: Punjab National Bank. Bharose ka prateek.
3: समर कूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े समर कूल कूलर लाइफ बनाए वंडरफुल
0: हिंड बड़े आराम से विमल बोलो जुबां केसरी
4: शारदा यूनिवर्सिटी द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी वेयर आर यू
5: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर ये है खबरें सात तक देखते रहिए आज तक
6: शेयर बाजार जहां कुछ लोग सीखते रह जाते हैं और कुछ इतिहास लिख जाते हैं आखिर बड़ा पैसा बनता कैसे है कौन सी सोच कौन सी रणनीति और कैसा नजरिया किसी को बनाता है बाजार का असली खिलाड़ी इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आ रही है बिजतक की नई पॉडकास्ट सीरीज मनी मेकर्स यहाँ मुलाकात होगी बाजार के उन दिग्गजों से उन मार्केट लेजेंड से जिन्होंने सिर्फ मार्केट को देखा नहीं बल्कि बड़े उतार चढ़ाव दिए हैं मौके पहचाने हैं और दौलत बनाई है जानेंगे उनकी जर्नी बड़े फैसले निवेश की सीख और बड़ा पैसा बनाने की सोच मनी मेकर्स बाजार के बड़े नाम बड़ी सीख सिर्फ बिस्तक पर

नाम वैभव सूर्यवंशी, काम छक्के बरसाना, पहचान तूफान लाना, अरमान अब देश को जिताना। आईपीएल की इन तस्वीरों को जिसने देखा देखता ही रह गया, खुद वैभव के साथियों ने देखा, दुनिया भर के दिग्गजों ने देखा और विरोधी गेंदबाजों के पास तो देखते रहने की मजबूरी के अलावा कोई चारा ही नहीं था। न उम्र की सीमा, न दुनिया के किसी गेंदबाज का खौफ। वैभव का बल्ला जब बरसता है तो फिर उसके कोई मायने नहीं होते कि सामने पैट कमिंस जैसा गेंदबाज है, जसप्रीत बुमराह है या फिर कोई और। और ये तूफान आईपीएल के सीजन में जब आया तो मैच दर मैच उनका बल्ला रिकॉर्ड्स की इबारत लिखता चला गया। इस सीजन में तो हाल ये था कि जब उनकी पारी खत्म होती तो कईयों के सपने टूट चुके होते थे और कई गेंदबाजों के तो आईपीएल करियर के आंकड़े बिगड़ चुके होते थे। उनके बल्ले ने इतना हल्ला मचाया कि आखिरकार सिलेक्टर्स को उन्हें सीनियर टीम इंडिया का हिस्सा बनाना ही पड़ा। वैभव 15 साल की उम्र में टीम इंडिया का हिस्सा बनने वाले सबसे युवा भारतीय हैं। उन्होंने आईपीएल में सबसे तेज 1000 रन बनाए। आईपीएल में उन्होंने एक सीजन में क्रिस गेल के 59 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़कर 72 छक्के जमाए हैं। 14 साल की उम्र में आईपीएल में शतक जमाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज हैं। वो अंडर 19 वर्ल्ड कप चैंपियन है। आईपीएल के 23 मैचों में वो 96 छक्के जमा चुके हैं। वैभव का असली इम्तिहान अब होगा, लेकिन उनके लिए आपदा नहीं अवसर है, क्योंकि खौफ का भूत वो बचपन में ही भगा चुके हैं। दुनिया भर के गेंदबाजों को वो आईपीएल में निपटा चुके हैं। इतना ही नहीं, दुनिया की कई पिचों पर खेलने का उनका अनुभव धीरे धीरे उनकी बल्लेबाजी को और मैच्योर बना रहा है। नए हिंदुस्तान के नए तेवरों वाली टीम को ऐसा ही तो हीरो चाहिए है। आज तक हीरो

0: बहुत चुल मच रहा है कसम से, आज घर जाकर देखिए पूरे कपड़ा उतार के खुजाएंगे।
1: क्योंकि मैं आपकी खुजली को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, आपका जो दर्द है सही है, तकलीफ सही है, जो आप इतने दिनों से अपने छोटे से दिल में लेके इतना बड़ा पहाड़ घूम रहे हो,
0: अधूरा प्यार ही
1: तुम्हें दुनिया के सिम यार ठीक है मत दोहराओ
2: बिजुरी आई गए।
1: हाँ थोड़ा और थोड़ा राइट, ओ थोड़ा राइट, हाँ हाँ हाँ
2: यह अब ही नसिया पाया भैया
1: अरे थोड़ा सा और ऊपर,
2: अरे लेफ्ट बोल रहा
1: हूँ, हाँ यही खुजा जोर से।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक, आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ मंथन, देशवासियों का जीवन आसान बनाने और आर्थिक दर को बढ़ाने पर चर्चा। समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी का बड़ा हमला, कहा 2017 से पहले गुंडों के आगे नतमस्तक थी सरकार, राम का नाम लेने पर चलती थी गोलियां। अखिलेश का पलटवार, यूपी में महाजंगल राज। दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी संगठन को लेकर लंबी चर्चा। गिरफ्तारी के डर से सामने नहीं आ रहे पटना में कोचिंग चलाने वाले फैजल खान, वकील ने कहा अदालत में देंगे अग्रिम जमानत की अर्जी, सिविल कोर्ट के बाहर इंतजार करती रही पुलिस। टीम इंडिया में 15 साल के सिक्सर किंग वैभव सूर्यवंशी की धमाकेदार एंट्री, आयरलैंड इंग्लैंड दौरे में मिली जगह, T20 फॉर्मेट में नए कप्तान बनाए गए श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव बाहर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: बहुत खुशी है और बच्चा बचपन से ही बहुत मेहनत किया, आज उसका उसको फल के रूप में ये चीज मिला है।

0: नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आज भारतीय क्रिकेट ने एक सूर्य उदय देखा और एक सूर्य अस्त भी देखा। एक तरफ वैभव सूर्यवंशी को पहली बार भारत की टीम में चुना गया, दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव जिन्होंने 2.5 महीने पहले भारत को वर्ल्ड कप जिताया था, उनकी टीम से छुट्टी कर दी गई है और T20 में भारत का एक नया कप्तान घोषित कर दिया गया है। यानी कि एक तरफ वैभव सूर्यवंशी आज पहली बार भारत की टीम में चुने गए हैं आयरलैंड और इंग्लैंड के T20 मैचों के लिए और सितंबर में होने वाली एशियन गेम्स के लिए। उसी टीम का कप्तान श्रेयस अय्यर को बनाया गया है सूर्य कुमार यादव, जैसे मैंने कहा। अब वो आपको अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलते नहीं दिखेंगे। आखिरी मैच उन्होंने कप्तान के तौर पर भारत को वर्ल्ड कप जिताया था। तिलक वर्मा को वाइस कैप्टन बनाया गया है और टीम में कई और चीजें हैं। साथ ही साथ आज एक टेस्ट मैच का भी आगाज हुआ। ये टेस्ट मैच खेला जा रहा है मुल्लापुर में, जहां भारत के 2 बल्लेबाज 100 बना चुके हैं और भारत अफगानिस्तान के साथ बड़ी मजबूत स्थिति में बैठा है। लेकिन आज हम शायद इसे तारीकी मोमेंट मान रहे हैं, इसे तारीकी दिन मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज वैभव सूर्यवंशी, जिनकी उम्र मात्र 15 साल 2.5 महीने है, उनको भारत की टीम में चुना गया है। मेरे साथ सुनील गावस्कर हैं। और सनी भाई, 15 दिन पहले आपने कहा था कि आयरलैंड और इंग्लैंड जाने वाली टीम में वैभव सूर्यवंशी को चुना जाएगा। वो चुन लिए गए हैं, यानी कि अब जैसे ही वो पहला मैच खेलेंगे, वो यंगेस्ट इंडियन एवर टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट हो जाएंगे। सचिन खेले थे 16.5 साल की उम्र में और ऐसा लगता है कि वैभव तो ये 15 साल 3 महीने के अंदर अंदर खेल लेंगे।
1: जी बिल्कुल, देखिए उनका परफॉर्मेंस भी क्या था। 72 सिक्सर्स मारी थी उन्होंने, 700 के ऊपर रन बनाए थे, 2 शतक लगाए थे और 2 बार 90s में आउट हुए थे। तो ऐसे परफॉर्मेंस के बाद उनको टीम में कैसे ना लिया जा सकता था। उनको उनकी तो मुझे लगता है कि पहले जो डिस्कशन होता है, जहां पे सर्टेनिटीज का नाम लिया जाता है, वहां पे उनका सर्टेनिटी में नाम लिया गया होगा। उसके बाद में कभी कभी जो 11वें 12वें 13वें 14वें जगह के लिए कुछ जो बातचीत चलती है सिलेक्टर्स के बीच में, शायद वो हो गई होगी। पर वो तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सर्टन थे। और इस परफॉर्मेंस के बाद में उनको इग्नोर अगर किया जाता था तो बड़ी हलचल मच जाती थी कि क्यों ऐसा किया, उनको टीम में नहीं चुना गया। तो ये जो सिलेक्शन कमेटी ने किया है, ये बहुत ही अच्छा।
0: आखिरी मरतबा अगर आप देखें 1987-88-89, ये वो दौर था जहां सचिन तेंदुलकर 14-15-16 साल की उम्र में मुंबई क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट टीम का दरवाजा खटखटा रहे थे। वो दरवाजा उन्होंने तोड़ा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में राज किया। लेकिन सवाल यह है कि वैभव सूर्यवंशी को चुन तो लिया गया है, अब वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में क्या उस तरह की आग लगा पाएंगे जो उन्होंने IPL में दिखाई है।
2: नाम वैभव सूर्यवंशी, काम छक्के बरसाना, पहचान तूफान लाना, अरमान अब देश को जिताना। IPL की इन तस्वीरों को जिसने देखा देखता ही रह गया। खुद वैभव के साथियों ने, दुनिया भर के दिग्गजों ने और विरोधी गेंदबाजों के पास तो देखते रहने की मजबूरी के अलावा कोई चारा ही नहीं था। ना उम्र की सीमा, ना दुनिया के किसी गेंदबाज का खौफ। वैभव का बल्ला जब बरसता है तो फिर इसके कोई मायने नहीं होते कि सामने पैट कमिंस जैसा गेंदबाज है, जसप्रीत बुमराह है या फिर कोई और। और ये तूफान IPL के इस सीजन में जब आया तो मैच दर मैच उनका बल्ला रिकॉर्ड्स की इबारत लिखता चला गया। इस सीजन में तो हाल ये था कि जब उनकी पारी खत्म होती थी तो कईयों के सपने टूट चुके होते थे और कई गेंदबाजों के तो IPL करियर के आंकड़े बिगड़ चुके होते थे। उनके बल्ले ने इतना हल्ला मचाया कि आखिरकार सेलेक्टर्स को उन्हें सीनियर टीम इंडिया का हिस्सा बनाना ही पड़ा।
3: भारतीय होने का गौरव प्राप्त है जिसने IPL में सेंचुरी बनाई।
4: आई थिंक हिज परफॉर्मेंस इज लाइक आई सेड बिफोर, ही इज ऑलमोस्ट यू नो फोर्स्ड अस टू पिक हिम विद हाउ वेल ही इज प्लेड। आई नो हिज एज एंड हाउ यंग ही इज एंड हाउ early in his career. But like I said, two IPLs in a row, of course, we know what he was doing at under 19 levels, and that's probably perhaps a step down to what the IPL is or slightly more senior cricket is. But we can all see what kind of talent he has, and we're hopeful that if and when he gets an opportunity to actually play for the country, he shows this same sort of ability that he's shown. There obviously will be tougher challenges when you play for your country.
2: वैभव 15 साल की उम्र में टीम इंडिया का हिस्सा बनने वाले सबसे युवा भारतीय हैं। उन्होंने आईपीएल में सबसे तेज 1000 रन बनाए हैं। आईपीएल में उन्होंने एक सीजन में क्रिस गेल के 59 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़कर 72 छक्के जमाए हैं। 14 साल की उम्र में आईपीएल में शतक जमाने वाले वो सबसे युवा बल्लेबाज हैं। वो अंडर 19 वर्ल्ड कप चैंपियन हैं। आईपीएल के 23 मैच में वो 96 छक्के जमा चुके हैं। वैभव का असली इम्तिहान अब होने वाला है, लेकिन उनके लिए आपदा नहीं, ये अवसर है, क्योंकि खौफ का भूत वो बचपन में ही भगा चुके हैं। दुनिया भर के गेंदबाजों को वो आईपीएल में निपटा चुके हैं। इतना ही नहीं, दुनिया की कई पिचों पर खेलने का उनका अनुभव धीरे धीरे उनकी बल्लेबाजी को और मैच्योर बना रहा है। नए हिंदुस्तान के नए तेवरों वाली इस टीम को अपने खजाने में ऐसा ही हीरा चाहिए। आज तक ब्यूरो।
0: सर भाई, उम्मीद तो रहती है, और आज की तारीख में आईपीएल ने क्या किया है कि छोटे छोटे गांव से कस्बों से लड़के आते हैं, आईपीएल खेलते हैं, और अचानक से हम सबको पता चलता है कि इस लड़के में कितना दम है। मैं देख रहा था इंग्लैंड में ऑलरेडी जो है वहां के खिलाड़ी, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि यार अगर ये वैभव सूर्यवंशी आ गए इस सीरीज में, ये बड़े बड़ों की यानी कि उनकी टीम की, इंग्लैंड की टीम की पोल ना खोल दे। मतलब आप उस तरह के दबाव की बात कर रहे हैं एक 15 साल के बच्चे पे।
1: जी देखिए, जिस तरह से उन्होंने इस देखिए पिछले साल जब उन्होंने शतक लगाया था तो सबको ये शंका थी कि क्या वो सेकंड सीजन सिंड्रोम जिसे कहते हैं, जहां पे पहले सीजन में आपके बारे में जानकारी बहुत कम होती है, पर पहले सीजन के बाद में जो कोचेज होते हैं, कप्तान होते हैं, डेटा एनालिस्ट होते हैं, वो सब आपका अभ्यास करते हैं और उसके बाद में वो आपके लिए प्लानिंग करते हैं, तो दूसरे सीजन में बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जो वापस वो पहले सीजन का फॉर्म को वापस नहीं कर सकते। पर ये बच्चे ने तो कमाल ही कर दी, पिछले सीजन से भी और ज्यादा छक्के मारे। और मतलब गेंदबाज कौन थे? जसप्रीत बुमराह, पैट्रिक कमिंस, अब देखिए बड़े बड़े नाम थे, ट्रेंट बोल्ट, उनको तो उन्होंने इतने लंबे छक्के मारे। तो इसे पता चलता है कि इसमें कोई खास खास टैलेंट है, खास एबिलिटी। जसप्रीत बुमराह, पैट्रिक कमिंस, अब देखिए बड़े बड़े नाम थे, ट्रेंट बोल्ट, उनको तो उन्होंने इतने लंबे छक्के मारे। तो इसे पता चलता है कि इसमें कोई खास खास टैलेंट है, खास एबिलिटी है, खास टेम्परामेंट है, और इसी की वजह से 15 की उम्र में इनको टीम में चुना गया है। नेशनल टीम में आना आप सब लोग जानते हैं नहीं बनता आसान, बिल्कुल आसान है नहीं, पर इस बच्चे ने दूसरे साल में अपने दूसरे फुल सीजन में इंडियन टीम का की सिलेक्शन का दरवाजा तोड़ के अपने आप को अनाउंस कर दिया है। और देखिए इंग्लैंड में भी अब हलचल मचा देगा वो।
0: सर भाई, टीम में आ गए हैं, ये पहला पड़ाव है कि आप टीम में आ गए हैं, और ये क्योंकि सचिन तेंदुलकर जब पहली बार खेले थे वर्सेस वैभव सूर्यवंशी, ऑलरेडी तकरीबन आप मान लीजिए 1.25 साल का तो है गैप, यानी कि वो यंगेस्ट इंडियन तो बन जाएंगे, बट क्या आप उनको आयरलैंड के ये 2 मैचों में या फिर इंग्लैंड के 5 मैचों में सलामी बल्लेबाज के तौर पर मैच खेलते हुए देखते हैं? दूसरी बात इसी में, आपके जो फर्स्ट चॉइस ओपनिंग पेयर है वो क्या है?
1: देखिए फर्स्ट चॉइस ओपनिंग पेयर तो संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा है
0: जी,
1: पर मैं ये चाहूंगा कि आयरलैंड की जो 2 मैचेस है वहां पे एक मैच वो वैभव अभिषेक के साथ ओपन करे और एक मैच सैमसन के साथ ओपन करे। उससे हमें पता चलेगा कि क्या वो किस तरह से वो इंग्लैंड के पिचेस पे, स्कॉटलैंड के पिचेस, आयरलैंड के पिचेस पर किस तरह से अपनी बल्लेबाजी को एडजस्ट करते हैं, और उसके बाद में वो फॉर्म देखकर उनको फिर उसके बाद में जो 5 मैचेस है इंग्लैंड में, तो वहां पे उनको चुना जा सकता है, उस हिसाब से उनको चुना जा सकता है। संजू सैमसन ने मिडिल ऑर्डर में भी बल्लेबाजी की है, तो संजू सैमसन मिडिल ऑर्डर में भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो ये भी हो सकता है कि अभिषेक और वैभव सूर्यवंशी दोनों ओपन करेंगे, शायद संजू सैमसन नीचे के नंबर में बैटिंग कर सकते हैं।
0: अब सवाल ये आ जाता है कि कल ही भारत की ए टीम श्रीलंका पहुंची है, वहां पर वैभव सूर्यवंशी का जो इस्तकबाल है, जो फेलिसिटेशन है, वहां की प्रधानमंत्री ने की है। खैर, वैभव सूर्यवंशी से वक्त वक्त जो हमारी बात होती रही है, मतलब कहते हैं ना वक्त वक्त, मतलब वो 10 साल के थे, वो 13 साल के थे, तो उन्होंने हमेशा बात की है सचिन तेंदुलकर की कि रोल मॉडल तो जनाब वही है।
5: वैभव सूर्यवंशी का इंडिया टीम में सिलेक्शन हो गया है, कितनी खुशी है आपको?
6: बहुत,
5: काफी मेहनत की,
6: बहुत बहुत खुशी है। और बच्चा बचपन से ही बहुत मेहनत किया, आज उसका उसको फल के रूप में ये चीज़ मिला है। इसी का, इसी को लक्ष्य मान के वो भी चल रहा था, हम लोग भी पीछे पीछे थे। आज पूरा बिहार, पूरे देश के लोगों का आशीर्वाद, आप सभी का आशीर्वाद, जितने देख रहे हैं सबका आशीर्वाद उसको लगा है। और उसका जो है सो
5: काफी फॉलोअर है उसका।
6: जी जी, एकदम एकदम एकदम।
5: दो दिन के लिए आया था तो पूरा
6: अस्त व्यस्त हो गए थे हम लोग सर, बहुत दिक्कत हो गया था, बहुत भीड़ हो गया था। सबसे हम मैंने ये हमारे प्यारे हैं, ई नहीं मिल पाए, सोचिए कि ऐसा
5: काफी तैयारी की
6: हुए, ये हमारे प्यारे हैं, ई नहीं मिल पाए, सोचिए कि ऐसा
5: काफी तैयारी की
6: हुए, हमको मालूम है, सब मालूम था।
5: बहुत क्या अच्छा। चाहेंगे
6: खुश है, बहुत खुश है पूरा हमारा, सब खुश है हमारा पूरा इलाके, ये हमारे प्यारे हैं, ई नहीं मिल पाए, सोचिए कि ऐसा
5: काफी तैयारी की हुए,
6: हमको मालूम है, सब मालूम था।
5: बहुत क्या अच्छा। चाहेंगे
6: खुश है, बहुत खुश है पूरा हमारा, सब खुश है हमारा पूरा इलाका, समाज, हमारा राज्य खुश है, देश खुश है उसके लिए।

0: वैभव सूर्यवंशी के लिए ऐतिहासिक दिन है, शायद श्रेयस अय्यर के लिए भी ऐतिहासिक दिन है, लेकिन सूर्य कुमार यादव का आज जो है सूर्यास्त हुआ। अभी अभी वो जो आपकी मुंबई लीग है उसमें उन्होंने मुबारकबाद दी है श्रेयस अय्यर को और कहा है कि बड़ी खुशी की बात है कि तीनों कप्तान जो है T20 के इंडिया के वो मुंबई से आए। लेकिन पहला सवाल श्रेयस अय्यर की एलिवेशन पर, कुछ लोग कहते हैं अरे बाहर से आए, इंडिया से नहीं खेल रहे थे, अचानक से आपने कप्तान कैसे बना दिया, आप भी इनको ही बनाते क्या इंडिया का T20 कप्तान?
1: जी, अगर सूर्या को अगर नहीं लेना था टीम में तो दूसरा कोई चॉइस ही नहीं था, क्योंकि जिस तरह से श्रेयस अय्यर ने पिछले 3-4 सालों में जो IPL फ्रेंचाइजीज की लीडरशिप की कप्तानी की है और उसके साथ साथ जिस तरह से उन्होंने इतने सारे रन भी बनाए, तो उसमें दो राय नहीं थी कि अगर सूर्य कुमार यादव को टीम में चुना नहीं जाना था तो फिर उनकी जगह कप्तानी लेने के लिए श्रेयस अय्यर पूरी तरह से।
0: सर भाई, मुझे लगता है आपका जो सिग्नल है वो शायद कट गया है, क्योंकि अगला सवाल मेरा ये है, क्या सूर्य के साथ गलत हुआ या आप लॉजिकल एंड इसे मानते हैं?
1: आप ये भी कह सकते हैं, क्योंकि 2 साल अभी बाकी है 2028 के वर्ल्ड कप के लिए और 2028 की ओलंपिक्स के लिए, तो शायद क्योंकि इनका IPL का ये जो परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था, शायद उनको ये इंग्लैंड का जो 5 मैच की सीरीज थी वहां पे उनको एक मौका दिया जा सकता था और उसके बाद में शायद आप अलग सोच सकते थे। पर शायद सिलेक्शन कमिटी ने यह सोचा कि अगर चेंज करना है, बदलाव करना है तो अभी शुरुआत करें, और इसी की वजह से ये इन्होंने शुरुआत की। क्योंकि हमें ये याद रखना चाहिए कि सूर्य कुमार यादव की उम्र 35 या 36 साल की है, तो 2 साल के बाद में वो 38 के होंगे, तो उस वक्त मतलब 2028 में अगर आपको ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना है, आपको वापस T20 वर्ल्ड कप रिटेन करना है, तो उसके ऐसा कप्तान चाहिए जो थोड़ा सा युवा भी है और जिसके पास कप्तानी का और इंटरनेशनल कप्तानी का और थोड़ा अनुभव भी हो। वैसे मतलब अब जो श्रेयस अय्यर कप्तानी करेंगे उनको वो अनुभव मिलेगा।
0: सनी भाई, लेकिन जिंदगी है ना, वो कहते हैं कहीं खुशी कहीं गम, कभी खुशी कभी गम, कहीं खुशी कहीं गम। आज देखिए वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर क्या जश्न मनाया जा रहा है, आप आज देखिए श्रेयस अय्यर के घर में क्या जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन अगर आप सूर्य कुमार यादव है, 2.5 महीने पहले आपके हाथ में वर्ल्ड कप था, आप कप्तान थे, वहां पर आप टीम से निकल गए। टेस्ट मैच भी हुआ है जी आज मोहाली में, जहां से सनी भाई जुड़े हैं, मुल्लापुर से एक्चुअली। जून के महीने में चंडीगढ़ में टेस्ट मैच, 43 डिग्री टेम्परेचर, और भारत पहले दिन का खेल खत्म होने तक 2 बल्लेबाज तो 100 बना चुके हैं। शुभमन गिल कप्तान, KL राहुल, साई सुदर्शन 81 पे आउट हो गए और ऋषभ पंत 50 रन पे खेल रहे हैं। अब देखना यह है कि दूसरे दिन इंडिया के रनों के पहाड़ में इजाफा कितना होता है। लेकिन आज का दिन याद रखिएगा, विश्व क्रिकेट याद रखेगी, 6 जून 2026, जब 15 साल 3 महीने के वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में चुना गया। और इसी पर चर्चा होगी हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर। मैं चाहता हूं कि आप भी आए, इसे एक लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन की तरह ट्रीट किया जाए, आप भी आए, आप भी अपनी राय दें, क्या कर सकते हैं वो, क्या उम्मीद आप उनसे रखते हैं। YouTube पर जाकर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना है। आज तक पर इसके बाद स्पेशल शो।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
4: और वो शेर हमारी तरफ आ रहा है, थोड़ा सा पीछे की तरफ हट रहे हैं इस समय। वाकई आप ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर बंदूकें तभी हो और आपके सामने शेर आ जाए, दोनों में फर्क।
5: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
6: Jack, come home. It's supper time.
5: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
7: Hey, Jack, could you play that one song with the words?
5: Jack FM, playing what we want.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: जब उसके खिलाफ आज तक का कोई आपराधिक मुकदमा न्यायालय ने कभी सजा नहीं दी, न तो कभी चोरी में, न तो डकैती में, न तो इस तरीके के, फिर एक 302 का 307 का मुकदमा उसके ऊपर है और किसी ने अपहरण का मुकदमा लिखा रखा है, जैसे एसपी ने कहा। तो इतना बड़ा तो दुर्दांत अपराधी नहीं है कि जिससे आप इनकाउंटर, अब मुख्य आरोपी उसको बनाया भी नहीं गया, मुख्य आरोपी कोई और है, मुख्य आरोपी को तो पकड़ने दूर हैं, वो छुएंगे नहीं। आज जो साधारण है, जो वोट अभी गाजीपुर हारे हैं, अब गाजीपुर में बिंदुओं की संख्या बहुत अधिक है, जौनपुर में बिंदुओं की संख्या अधिक है, प्रधानमंत्री के चारों तरफ के हम सारी सीटें हार गए हैं। ये अधिकारी क्या कर रहे हैं, ये फिर इसके मतलब इनका एलआईयू क्या कर रहा था, कैसे समाज के लोगों ने आंदोलन किया, बताए क्यों नहीं फोर्स लगाए इन लोगों ने, खाली जब आंदोलन हो गया तो कहेंगे आप रासुका लगा देंगे, ये तो डिटेक्टरशिप हो गई।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
0: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
1: Akaje, the number one Korean skincare brand, now in India.
2: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh, yeah. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
3: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed. Whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest, you can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
5: में बैठे हुए लोग 2017 के पहले इन दंगाइयों को, इन पेशेवर गुंडों को प्रश्रय देते थे, इनके सामने नतमस्तक होते थे। प्रदेश में कर्फ्यू रहता था, महीनों महीनों कर्फ्यू।
6: सियासी तलवारें बयान से निकल चुकी हैं, तंज तेज हो गया है। 2027 की तरफ बढ़ती यूपी की राजनीति में शब्द अब शस्त्र बन चुके हैं। सीएम योगी 2017 की याद दिला रहे हैं।
5: 16 में इस गोंडा में भी दुर्गा पूजा के समय दंगा करने का प्रयास हुआ था, यहां भी दंगे हुए थे। मां दुर्गा की मूर्ति को विसर्जन नहीं करने दिया जाता था।
6: वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव योगी सरकार को महाजंगल राज का चेहरा बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर अखिलेश ने लिखा, असफल मुख्यमंत्री काल में महाजंगल राज, अवैध खनन, कब्जा, हत्या, डकैती, बलात्कार। ये दो विचारों की भिड़ंत है, दो विमर्शों का युद्ध है, दो वोट बैंकों की व्यूह रचना है। योगी कहते हैं कि पहले माफिया प्रदेश को तबाह कर रहे थे। चुनावी इतिहास गवाह है कि उत्तर प्रदेश में मुद्दों के साथ माहौल जीतता है, तथ्य के साथ धारणा भी जीतती है। उसी को पुख्ता करने के लिए सीएम योगी लगातार अखिलेश राज की याद दिला रहे हैं। सीएम योगी ने एक बार फिर टोटी वाले तंज को तराशा है, अखिलेश की दुखती सियासी रग पर हाथ रख दिया है।
7: हमने हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया, पता लगा कोई टोंटी चोरी कर रहा है, कोई अन्य प्रकार से उसको नुकसान कर रहा है, खुला है तो खुला हुआ है।
6: टोंटी सुनने में छोटा शब्द है, लेकिन ये यूपी की सियासत में समाजवादी पार्टी को कांटे की तरह चुभता है। दरअसल 9 साल पहले टोंटी का विवाद यूपी में उठा था। हुआ कुछ यूं कि साल 2017 में अखिलेश यादव की सरकार गई और योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की शपथ ली। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री का बंगला छोड़कर गए तो नए सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए उस बंगले में कुछ सुधार कराने का काम शुरू हुआ। सियासी शोर हुआ कि लखनऊ में अखिलेश बंगला छोड़कर गए तो सीएम आवास में लगी टोटी भी अपने साथ लेकर चले गए, जो आज तक सियासत के ब्लैक होल में घूम रही है। अखिलेश भी इस पर कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, सीएम यानी करप्ट माउथ। विज्ञान कहता है कि किशोरावस्था में किया गया वनस्पति का अत्यधिक सेवन व्यक्ति के बोलने और समझने की क्षमता को प्रभावित करता है।
0: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
0: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
1: Acoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

पश्चिम एशिया संकट के बीच पीएम मोदी की बड़ी बैठक, आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ मंथन, देशवासियों का जीवन आसान बनाने और आर्थिक दर को बढ़ाने पर चर्चा। समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी का हमला, कहा 2017 से पहले गुंडों के आगे नतमस्तक थी सरकार, राम का नाम लेने पर चलती थी गोलियां, अखिलेश का पलटवार, यूपी में कहा महाजंगल राज। दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी गठबंधन को लेकर लंबी चर्चा। गिरफ्तारी के डर से सामने नहीं आ रहे पटना में कोचिंग चलाने वाले फैसल खान, वकील ने कहा अदालत में देंगे अग्रिम जमानत की अर्जी, सिविल कोर्ट के बाहर इंतजार करती रही पुलिस। टीम इंडिया में 15 साल के सिक्स किंग वैभव सूर्यवंशी की धमाकेदार एंट्री, आयरलैंड इंग्लैंड दौरे में मिली जगह, T20 फॉर्मेट में नए कैप्टन बनाए गए श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव बाहर।

0: God. और वो शेर हमारी तरफ आ रहा है।
1: लपाछिले भी पड़ से
0: हम थोड़ा सा पीछे की तरफ हट रहे हैं इस समय। वाकई आप ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर बंदूकें तनी हो और आपके सामने शेर आ जाए, दोनों में फर्क है। हम जंगल के राजा के साम्राज्य में इस समय खड़े हैं।
2: उसका एक टेरिटरी एरिया होता है, वो उसका राजा होता है।
3: ना ज्यादा लायन ताकतवर रहेगा उतनी उसकी टेरिटरी बड़ी रहेगी।
1: तो रॉयल एनिमल है, वो राजा की तरह ही रहते।
0: आज रास्ता रोक रोक कर ही शेर अपने दर्शन खुद हमें दे रहे हैं। दुनिया में इससे अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय क्या हो सकता है। हम जंगल के राजा के साम्राज्य में इस समय खड़े हैं। एक पूरा परिवार यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। सोचिए कि एक ऐसी दहाड़ जो 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है, अगर अपनी पर आ जाएं तो एक समय में 50 किलो मास्क की खुराक इनकी हो सकती है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसके सामने ये अगर डट जाए तो वो एक पल को भी टिक जाए। ये जंगल के राजा की कहानी है और आज हम दुनिया की सबसे अद्भुत कहानी आपको सुनाने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप चलिए हमारे साथ इस अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय सफर पर।
4: जिसकी मौजूदगी भर से जंगल की हवा बदल जाती है, जिसकी आहट सुनाई नहीं देती लेकिन एहसास पूरे जंगल को हो जाता है, जिसकी महक भर से चीतलों के झुंड चौकन्ने हो जाते हैं, और जिसकी एक दहाड़ कई कई किलोमीटर दूर तक जंगल का कानून सुना देती है। हम उसी अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय गीर के सबसे खूंखार बंबर शेर की तलाश में निकल पड़े।

जब भी जैसे हमारे कैमरे पर आप देखते हैं कि हमने आपको टाइगर्स दिखाया, चीता दिखाया, आज हम शेर देखने के लिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है कि आप पहुंचे वहां पर आपने देख लिया। कई कई अटेम्प्ट समय लगते हैं, कई कई घंटे, कई बार कुछ कुछ दिन भी लग जाते हैं। लेकिन गिर, क्योंकि यहाँ पर यहाँ के जो ट्रैकर्स हैं, यहाँ के जो आम लोग हैं, वो इस जंगल का एक हिस्सा है एक तरह से, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आती है। हम देखते हैं कि कितना समय हमें लगता है शेर की ऐसे ही एक प्राइड को देखने में। वैसे गिर में और भी बहुत कुछ है, चलिए हमारे साथ।

0: ये देखिए हिरन नदी है यहाँ पे, और यहाँ के जो क्रोकोडाइल्स हैं ना, यहाँ के जो मगरमच्छ हैं वो बहुत बड़े, और देखिए यहाँ पर सामने, मोहसिन कैमरा उधर करके दिखाओ, ये देखिए कितनी कितना बड़ा, ये अभी सुस्ता रहा है बाहर, गर्मी में अपने आप को ठंडा रखने का इनका तरीका होता है कि अपनी पूरे जबड़े को खोलकर ये बैठते हैं। गीर के जंगल में सूरज की तपिश कम होना शुरू हो चुकी थी। यही वो घड़ी है जब जंगल का असली खेल शुरू होता है। दिन भर झाड़ियों की छांव में आराम करने वाले शिकारी अब अपने इलाकों से बाहर निकलने लगते हैं। कोई टाइम होता है क्या कि इस टाइम में आते ही हैं या दोपहर?
1: सब जो एनिमल है ना उसका अलग अलग हैबिटेट है, और अलग अलग उनका स्वभाव है। जैसे नीचा से है, लायन वगैरह है, तो ज्यादातर जैसे कि लस स्पॉटेड कैट है, जो जिंदी कैट, जो मांसाहारी हो ज्यादातर रात को।
0: अच्छा।
1: पानी का तो क्या है, और अलग अलग उनका स्वभाव है। जैसे नीचा से है, लायन वगैरह है, तो ज्यादातर जैसे कि लस स्पॉटेड कैट है, जो जिंदी कैट, जो मांसाहारी हो ज्यादातर रात को।
0: अच्छा।
1: पानी का तो क्या है कि वो खाना खाने के बाद अर्ली मॉर्निंग या शाम
2: को, मॉर्निंग इवनिंग।
3: हम भी निकल पड़े गिर के सबसे ताकतवर अल्फा मेल बब्बर शेर को देखने।

0: अभी हम लोग किस तरफ जा रहे हैं?
1: अभी हम ये रूट 6 नंबर का रूट है, उसमें जा रहे हैं।
2: गिर के जंगलों में शेरों की संख्या जितनी समृद्ध हो चुकी है, हम केवल शेर आपको दिखाएंगे नहीं, शेरों से आपको वाकिफ कराएंगे। और इतना करीब से जब उसकी निगाह हमारी निगाहों से टकराए, शरीर में सिहरन दौड़ जाए, तलाश में हमारे साथ चले जंगल की चप्पे चप्पे से वाकिफ बहुत से खास लोग।
3: मेरा नाम मनोज त्रिवेदी, मुझे वैसे मोंटी के नाम से जानते हैं यहाँ पे। मैं लास्ट 25 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। जो भी वीवीआईपी आते अक्सर मैं उसके साथ रहा हूँ।
4: मेरा नाम सोनल शिलू है, मैं यहाँ पे फॉरेस्टर हूँ और अभी वन्य प्राणी अवलोकन में मैं काम कर रही हूँ। 2011 से मैं यहाँ गिर में काम कर रही हूँ।
5: मेरा नाम घनश्याम बारिया है, मैं 2018 से यहाँ वाइल्ड लाइफ डिवीजन में ड्यूटी ज्वाइन किया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और तब से मैं तकरीबन 9-9.5 साल से यहीं हूँ।
6: मेरा नाम विजय शेख है और मैं वाइल्ड लाइफ डिवीजन शासन गिर में फॉरेस्ट गार्ड तरीके अभी मेरी फर्ज है और मैं यहाँ 9 साल से वन विभाग में काम कर रहा हूँ।
7: मेरा नाम बावलिया हरीश है और मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ड्राइवर का जॉब कर रहा हूँ।
2: ये सफर केवल एक जानवर को देखने की नहीं बल्कि उस जंगल को समझने की है जहाँ हर झाड़ी की ओट से एक अनजाना रहस्य झांकता है और हर आवाज किसी शिकारी की मौजूदगी का संकेत देती है। गिर कोई घना अंधेरा जंगल नहीं, यहाँ दूर दूर तक फैले सूखे पेड़ हैं, बबूल की कांटेदार झाड़ियाँ हैं, घास के मैदान हैं।
8: ये सारे जो पेड़ है वो ग्रीन दिखे क्या? सारे पेड़ उस टाइप के पेड़ सारे आपको ग्रीन दिखे।
9: हाँ,
8: तो हमारे पास भी एनिमल्स है ना, ये अरबी वर्ल्ड में ब्राउजिंग भी करते हैं और ग्रेजिंग भी करते हैं, दोनों टाइप करते हैं। मतलब जैसे हरी घास है नीचे से ग्रेजिंग करेंगे और अगर पेड़ में नई पत्ती आई है तो ब्राउजिंग भी करेंगे।
9: अच्छा,
2: यही खुलापन गिर को खास बनाता है। यहाँ शेरों को अपने शिकार पर नजर रखने में आसानी होती है और सफारी पर निकले लोगों को जंगल के राजा की एक झलक मिलने की उम्मीद।
3: आप लायन सेंचुरी में जा रहे हैं, लायन सेंचुरी में जाने से मतलब लायन हमारा रॉयल एनिमल्स है सर। टाइगर और लेपर्ड वो थोड़ा साई एनिमल्स है, वो अगर किसी के प्रेजेंट है तो छुपने की कोशिश करेंगे, लेकिन लायन अगर किसी के प्रेजेंट है तो खुद को अपने प्रेजेंट करेंगे कि मैं यहाँ पे हूँ, आप देख लो जरा, थोड़ा ऐसे हो जाएगा। मतलब तो लायन एकदम रॉयल है सर,
9: तो मतलब छुप कर निकलेगा नहीं, वो सामने आराम से रहेगा,
3: आराम से रहेगा, आराम से जाएगा, इसीलिए तो उसको किंग कहा गया। टाइगर को किंग नहीं, लेपर्ड को किंग नहीं सर, लायन को सिर्फ किंग कहा, तो उसमें किंग वाले वैकेंट वो है सर, उसके गुण है उसमें किंग वाले।
2: हमारी गाड़ी धीरे धीरे जंगल के कच्चे रास्तों पर आगे बढ़ने लगी, लेकिन गिर केवल शेरों का जंगल नहीं है। रास्ते में हिरणों के झुंड मिले, उनके साथ मिले लंगूर। जंगल की भाषा में ये केवल पड़ोसी नहीं, एक दूसरे के चौकीदार हैं। एक खतरा देखता है, दूसरा खतरे की खबर पूरे जंगल में फैला देता है। उनको साथ देख कर हमारे मन में यही सवाल आया, ये रिश्ता क्या कहलाता है?
3: बंदर भी है उसके साथ में, कंपनी रहती है उन लोगों
9: मतलब कंपनी क्यों रहती है? आसपास रहते हैं जनरली,
3: जैसे ये नई लिप्स खा रहा है देखिए आप, तो उसमें से नीचे गिरेगी तो नीचे डियर खाएंगे।
9: अच्छा, बंदर खा रहे हैं उसमें से जो गिरेगा वो हिरन नीचे खा लेंगे, उनको कम मेहनत में पेट भर खाना,
3: और ऊपर बैठे बैठे सीसीटीवी वाला काम भी वो करेंगे
9: तो उसको ऊपर का काम बंदर,
3: मतलब व्यू बड़ा रहेगा ना।

0: ये आप अच्छे से बैठे हैं रहनी तक।
1: हाँ देखा,
2: आगे हमारी नजर एक शाख पे बैठे उल्लू पर पड़ी।
0: इसके जो पंख है ना,
1: हाँ।
0: अभी देखिए वो मूवमेंट दे रहा।
1: हाँ हाँ
0: इसके पंख की आवाज नहीं आएगी। नाइट में मूवमेंट करनी होती है, नाइट में एकदम साइलेंट फॉरेस्ट होता है, एकदम साइलेंट।
1: अच्छा,
0: तो थोड़ी सी भी आवाज, हल्की भी सी आवाज उसके पंख की नहीं आएगी। बाकी के जो एनिमल बर्ड्स होते हैं,
1: हाँ।
0: वो जैसे पंख फैलाएंगे, हाँ। तो उसकी आवाज आएगी,
1: फड़फड़ाने की आवाज,
0: फड़फड़ाने की आवाज
1: नहीं आती,
0: इसकी नहीं आएगी।
2: लेकिन हम अंजामे गुलिस्ता जाने बिना आगे बढ़ गए। हमारी गाड़ी ने दोबारा स्पीड पकड़ ली।
1: यहाँ पे कौन कौन से डियर हैं?
0: हमारे पास चोसिंगा है, चिकारा है, बॉर्डर टेरिटरी में ब्लैक बक दिखते हैं, हिरन है, नीलगाय है, साबर है और स्पॉटेड डियर है।
2: इस बीच जंगल में हमको शेर के नाखूनों के निशान दिखने लगे, जो इस बात की गवाही दे रहे थे वो कहीं आसपास ही।
0: ये नीचे नीचे देखो, बहुत सारे
1: नाखून का निशान है।
0: तो ऐसे मार्क करेगा वो,
1: तो ऐसा मार्क क्यों करता है?
0: टेरिटरी के लिए,
1: टेरिटरी के लिए,
0: टेरिटरी एनिमल्स है ना, तो टेरिटरी के लिए ऐसा मार्क करता है।
1: उसकी बताओ, एक एक नाखून का निशान कितना बड़ा है,
0: तो सैनिटाइज भी हो जाएगा।
1: अच्छा, उनके अपने नाखून सैनिटाइज हो जाएंगे,
0: सैनिटाइज हो जाएंगे, उसके नाखून भी सैनिटाइज हो जाएंगे। ऐसे यूरिन स्प्रे करेगा, फिर अपने बाल लगाएगा पेड़ के साथ, फिर पीछे वाले पैरों से वहाँ थोड़ा खुदाई जैसा करेगा, फिर रोर करेगा। तो ये सारे टेरिटरी मार्किंग के उसके वो है, तो ऐसे मार्क करता है वो टेरिटरी।

गिर के इन जंगलों में जो हिरण की आबादी है अलग अलग प्रजातियों के, वो अपने आप में इतनी पर्याप्त है कि शेरों को शिकार के लिए जूझना नहीं पड़ता है किसी भी मौसम में। भरपेट अच्छा पौष्टिक खाना उन्हें यहीं इन घने जंगलों में मिल जाता है।

0: बारिश के बाद घास आएगी, मतलब और ग्रीन लुक आएगा,
1: एकदम ग्रीन चादर जैसा हो जाएगा पूरा। ये पीकॉक की डेंजर कॉल, उसको कुछ मतलब ऐसा लगा तो इस टाइप की डेंजर कॉल देके वो उड़ते हैं।
0: के जंगलों को जो ये कहा जाता है ना कि यहाँ पर शेरों के कॉन्जर्वेशन की, इन लोग को जो बचाया गया है, जो उनकी आबादी बढ़ी है, उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है यहाँ पर जो फॉरेस्ट के लिए काम करने वाले जो लोग हैं, आप सब लोग हैं, क्या वजह है, क्या मतलब, क्या अलग किस तरीके से काम करते हैं?
2: सबसे पहले तो यहाँ के जो स्टाफ है ना, वो गिर को ना अपनी माँ की तरह देखते हैं, तो अपनी देवी जैसे वन देवी मानते हैं। तो वो सब ऐसे नहीं लग रहे हैं कि हम यहाँ काम कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि गिर हमारी माँ है, तो माँ के लिए तो बच्चे सब कुछ करेंगे, तो हम तो सिर्फ अपना फर्ज, जो बच्चों का जो फर्ज है वो अदा कर रहे है, तो उनके लिए काम कर रहे है, उनको उसने हमको जो दिया है वो उसने हमने दिया है। रखिए श्वेता सिंह, ये तो है हमारे गिर के किंग, ये अपने रुबाब में ही रहेंगे, आप तैयार रखिए अपने कैमरे की टीम।
0: वाह क्या बात है, ये जंगल शायरी।
3: गिर एशियाई शेरों का आखिरी प्राकृतिक घर है। यहाँ 1500 वर्ग किलोमीटर के जंगल में करीब 900 एशियाई शेर रहते हैं। ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर हमारी गाड़ी दोबारा दौड़ रही है, तभी अचानक गाइड का इशारा हुआ, गाड़ी रुक गई। सामने झाड़ियों के बीच कोई हलचल सी थी,
1: थोड़ा सा ही होता है।
0: क्या बोल रहे?
1: फीमेल आ रहे, लाइनस आ रही है, लाइनस आ रही है,
0: लाइनस आ रही
1: है। ओके हां हो रही
0: है। किधर?
1: डिफरेंस है तो यूटिलाइज नहीं है, नजर तो चला लास्ट में
0: उधर लाइनस
1: ना ना डिफरेंस है, चेहरा
0: आ रही है।
1: आप ये जो पेड़ है ना, ये
0: जी जी जी,
1: इसके बिल्कुल पीछे से यहाँ से देखिए एकदम लास्ट में, अभी आ
2: रही है ये यहाँ पे।
0: अच्छा हाँ हाँ, दिखी दिखी दिखी, दिख रही है इधर इसकी सीध में बिल्कुल,
1: टेल भी दिख रही है उसकी। हाँ हाँ,
3: झाड़ियों की ओट में एक शेरनी बहुत खामोशी से हमारी तरफ देख रही थी, इतनी शांत कि अगर हमारे साथ गाइड न होते तो हमें पता भी न चलता।
0: एक शेरनी आ रही है इस तरफ, हालांकि अभी शायद गाड़ियों के मूवमेंट को देखकर वो वहीं पर बैठ गई है।
3: जंगल का यही नियम है, जो दिख जाए वो शिकारी नहीं होता, असल शिकारी वो होता है जो दिखाई नहीं देता। लेकिन रोमांच अभी तो शुरू हुआ है, अचानक खबर मिली कि पास में एक प्राइड मौजूद है।
0: ये लोग यहाँ पर खड़े हैं, इसका मतलब है कि कुछ है यहाँ पर, शायद शेर।
3: प्राइड यानी शेरों का झुंड। एक प्राइड में एक या दो शेर होते हैं जो अक्सर भाई होते हैं, साथ में होती हैं 9 से 10 शेरनियां और उनके कई शावक।
2: वो देखिए वहाँ पे सो रहा है।
0: कहाँ? ओह अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा।
3: कुछ सेकंड्स बाद हमने जो देखा उसे देखकर यही कहा जा सकता है, अद्भुत, अविश्वसनीय और कल्पनीय।
0: एक दो तीन चार पाँच छ
1: नौ नौ दस
0: सात आठ,
2: चार फीमेल है,
0: नौ, दस कब्स है ना, ये जो छोटे छोटे सो रहे हैं इधर, तो जिन जिन कब्स को देखने के लिए, जिन हाँ थोड़ा सा आगे ले लीजिए, जिन शावकों को देखने के लिए हम पूरे जंगल में भटक रहे थे, वो यहाँ पर इस बरगद की छाँव में सो रहे हैं। गर्मी में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप शेड ढूंढ पाएँ इन जीवों के लिए, और शेड आप ढूंढ पाएँ और पानी का स्रोत, तो यहाँ पर पानी भी है और यहाँ पर शेड भी है और पूरा परिवार आराम से।
3: तीन शेरनिया और उनके साथ सात शावक, कोई खेल रहा था, कोई माँ के शरीर से लिपटा था, कोई उत्सुकता से हमारी तरफ देख रहा था।
0: कितने बच्चे हैं इसके?
2: ये सात बच्चे हैं।
0: सात बच्चे
1: फीडिंग करने के लिए।
0: अच्छा,
1: फीडिंग के लिए मूवमेंट कर रहा है।
0: ओ कितना प्यारा है
1: बच्चा, फीडिंग करना, मदर को नहीं करवाना इसलिए खड़ी हो गई।
0: अच्छा, कितना बड़ा होगा ये? तीन महीने। पूरी दुनिया में सिर्फ यहाँ पे गिर में आपको ये जो मेजेस्टिक एशियाटिक लायंस हैं वो मिलते हैं। ये जो बब्बर शेर है वो केवल और केवल गिर में पूरी पृथ्वी पर यहीं पर मिलते हैं। और ये जो आपको शेरनियाँ दिख रही हैं उनके साथ सात शावकों का होना एक बहुत शुभ संकेत है कि किस तरीके से कोशिशों के साथ ये पूरी आबादी बढ़ रही है, पनप रही है। वरना तो एक समय ऐसा भी आया था जब केवल 20 एशियाटिक लायंस बचे थे धरती पर, लेकिन उस समय जो जूनागढ़ के नवाब थे उनकी तरफ से कोशिशें शुरू हुई और धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हुए वर्तमान के गुजरात में ये कोशिशें इस स्तर पर हैं कि आज लगभग 900 के आसपास का आंकड़ा बताया जाता है एशियाटिक लायंस का।
3: जंगल का सबसे खूंखार शिकारी और उसके बीच बचपन की सबसे अविश्वसनीय तस्वीरें। लेकिन बब्बर शेर को अपने सामने चलकर आते हुए देखने की ख्वाहिश भी पूरी नहीं हुई थी अभी। इस बीच शाम ढलने लगी और हमें रिजर्व एरिया से बाहर की तरफ जाना पड़ा, पर हमने तय किया अगले दिन दोबारा सुबह सुबह अल्फा मेल बब्बर शेर को देखने पहुंचेंगे। खूंखार शेर को देखने के लिए, उन्हें समझने के लिए हमने बात की उन शेर दिलों से जिनकी जिम्मेदारी गिर के जंगलों में शेर का ख्याल रखने की है।
4: मेरा नाम है मोहम्मद दोई, मैं करीब 25-30 साल से इसमें काम कर रहा हूँ।
5: मेरा नाम सागर मांजरिया है, मैं पिछले 17 साल से वाइल्ड लाइफ डिवीजन में रेस्क्यू ट्रैकर के पोस्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ।
6: मारू नाम सुरेश बेशेखवा, हूँ 2007 से काम करूँ छू। हम
0: जंगल में जिप्सी से उतरना अलाउड नहीं होता है। हम जंगल में नहीं, जो रिजर्व एरिया है उसके बाहर बैठे हैं, लेकिन मैं जिन लोगों के साथ बैठी हूँ ये इकलौते लोग हैं जो जंगल में उन शेरों के बीच भी पैदल जाते हैं। यहाँ पर अगर मैं उनको सामान्य शब्दों में उनका परिचय करूँ तो ये ट्रैकर्स हैं और ये धड़कन है इस जंगल की। आप लगातार 25 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, आप लोग पैदल जाते हैं जंगल के अंदर?
4: हाँ, 25-30 साल हो गए।
0: क्या होता है, कैसे सुबह कितने बजे आप लोग, और एक लाठी रहती है सिर्फ पास में?
4: हाँ, लाठी रहती है हमारी पास। सुबह हम 5:30 बजे निकलते हैं ना, 5:30 बजे तो अंदर एंट्री हो जाते जंगल में, तो पहले अंधेरा होता है, टॉर्च से हम देख लेते हैं रास्ते पे कि पगमार कहाँ पे कहाँ नहीं है। उसके बाद हमारा जो इलाका है ना वहाँ थोड़ी देर बैठते हैं तो कोई रोरिंग सुनते हैं हम, अलार्म कॉल, कोई लाइन रोरिंग किया, उसके बाद कोई सांबर चीतल है ना वो बोलते रोड से अंदर की साइड में, तो थोड़ा उजाला होने देते, उसके बाद अंदर जाते। बाकी तो हम क्या है, रास्ते पे जो हम पगमार देखते हैं ना तो पता चल जाता है कि लाइन ही गया है कि लेपोट गया है। उसके बाद हम अंदर जाते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं अगर लाइन मिल गया 5 मिल गया, 2 मिल गया, जो भी मिले तो उसका पूरा बॉडी देख लेते दोनों साइड में, सिर पे कोई पैर पे तो कोई भी चोट तो नहीं है ना, क्योंकि मैम रात को ही क्या बच्चे वाले का ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि रात में झगड़ा होता है, अगर दूसरा मेल आ गया तो उसको बच्चे को मार दिया जाओ।
0: आप लोग पर नहीं अटैक करता है?
5: लायन मैम क्या है, बहुत रॉयल एनिमल है, कभी भी ऐसा हो सकता है कि हम एकदम नजदीक चले जाते हैं बिना पता है, नहीं उसको पता है नहीं हमको पता, फिर भी इतना रॉयल है कि वो एक बार ऐसी आवाज निकालेगा, वो बताएगा कि भाई मैं यहाँ बैठा हूँ आप दूर रहो, और फिर एक दो बार फिर वो चार तो ऐसे डायरेक्ट करेगा ही नहीं है, वो एक दो बार घुर्राएगा आपको हॉर्न करेगा फिर मतलब चला जाएगा, फिर ये आप उसको लगेगा कि मैं ज्यादा परेशान हो रहा हूँ, वो ज्यादा आदमी ऐसे नजदीक आ रहा है तो वो जगह छोड़कर दूसरी जगह, इतना रॉयल एनिमल है तो उसका वजह से वो अटैक नहीं करता है।
0: तो आपका सब एक्सपीरियंस अच्छा रहा है?
6: हाँ, अच्छा
0: रहा। लाइन के साथ
6: हाँ। भी बच्चे वाली होती है तो उसका वो थोड़ा वो ख्याल रखना पड़ता है कि कहाँ पर है और हम जा रहे हैं, बच्चे वाली है वो भी वो नहीं करेगी, ऐसे रहता है सब।
0: कोई कोई इंसिडेंट याद आता है आप में से किसी को भी कि मतलब आपको अचानक सामने आ गया शेर, और मतलब ऐसा कुछ
4: अचानक क्या है जो गिर में के स्टाफ के जो ट्रैकर है सब वो समझते भाई, जो हमें लाइन के पीछे चलना है तो कैसे चलना है, शिकार के मुंह में लाइन चलता है तो हमें पीछे कैसे चलना है,
0: कैसे मतलब
4: कि भाई पता है पैर हमारा ऊपर पड़ता है ना, पैर के ऊपर पत्ते के ऊपर उसका भी आवाज़ नहीं आना चाहिए, वो शिकार के मुंह में होता है ना लाइन तो ऐसे होता है, तो उसको डिस्टर्ब होगा ना तो घुराएगा एक दो बार, क्योंकि उसको बातों पसंद नहीं है,
0: क्यों उसका शिकार भी तो सुन लेगा वो।
4: हाँ,
0: तो उसका सरप्राइज खत्म,
4: इसीलिए थोड़ा गुस्से में होता है।
0: अच्छा,
4: हम तो समझ जाते कि भले ठीक है तो पसंद नहीं है तो नहीं जाने दो, हम छुप छुप के चलते।
0: अच्छा,
4: वो जैसे छुप के चलता है तो हमें पेड़ पे छुप जाते, जैसे झाड़ा आता है उसमें छुप जाते हैं,
0: हाँ?
4: भाई क्या कर रहा है वो, छुप के ट्राई कर रहा है शिकार के मुंह में, तो करने दो।
3: अगली सुबह जंगल का मिजाज बदला हुआ था, हवा में ठंडक थी, सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छन कर जमीन पर गिर रही थी, और हम एक बार फिर अपनी गाड़ी पर सवार इस उम्मीद में कि आज राजा से आमना सामना होगा। सुबह की शुरुआत भी शानदार हुई, सबसे पहले कुछ शेरनियां अपने बच्चों के साथ दिखाई पड़ी, शावक खेलते हुए माए चौकन्नी।
0: सुबह सुबह का समय है और ये तीन शेरनियां अपने बच्चों के साथ आगे की तरफ बढ़ रही हैं। रात का समय जो होता है वो समय होता है जब शेर सबसे अधिक शिकार करते हैं, और ख़ासकर गर्मी के समय में दिन में मूवमेंट कम, लेकिन सुबह सुबह जब इस तरीके से जितने बजे हम आए हैं इस समय जब आप आते हैं तो ये बहुत ही रेयर बहुत ही दुर्लभ तस्वीर आप देख पाते हैं। आप देखिए वो हालांकि वो शेरनी भी हमें घूर कर हमारी तरफ देख रही है इस समय, यही कारण होता है कि आप थोड़ा धीरे बोलते हैं, आप कोई आवाज़ नहीं करते हैं ताकि उनकी जो दिनचर्या है उसमें किसी वो हालांकि वो शेरनी भी हमें घूर कर हमारी तरफ देख रही है इस समय, यही कारण होता है कि आप थोड़ा धीरे बोलते हैं, आप कोई आवाज़ नहीं करते हैं ताकि उनकी जो दिनचर्या है उसमें किसी तरह का कोई व्यवधान न हो।
1: पेड़ पे मार्किंग करेगी मैम, वो जो पेड़ है ना पलस वाला, मैंने
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ देखिए वहाँ उसने स्मेल ली, अब अभी भी स्मेल ले रही है, देखिए आप मैंने कल बताया था ना, तो स्मेल ले रही है अभी जो नाखून से, हाँ अभी नाखून से किया है, अब नाखून लगा रही है वहाँ।
0: तो जो शेरनी है वो देखिए वो पेड़ पे अपनी मार्किंग, पेड़ पर मार्किंग कर रही है, हल्का सा उसका आप रोर सुन सकते हैं, और जो हमें बता रहे हैं उसके अनुसार वो अपने ग्रुप को एक साथ एक जगह इकट्ठा, अपनी जो पूरी प्राइड है उसको एक साथ रखने की ये कोशिश है। जो शेर और शेरनियाँ होते हैं उनको आदत होती है इन गाड़ियों की, लोगों की, वो दूर चली जाती हैं, लेकिन आप उस नन्हे से शावक को देखिए, वो पूरी क्यूरियोसिटी में हमारी तरफ देख रहा है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। वो डरता नहीं है, वो किसी चीज़ से डर नहीं रहा है, उसको केवल ये जानना है कि ये कौन है। वो पास में बैठा है, कुछ सालों बाद हो सकता है उसको भी ये बात समझ में आ जाए और वो ध्यान देना बंद कर दे, लेकिन अभी उसके लिए हम लोग उतनी ही बड़ी क्यूरियोसिटी, उतने ही बड़े कौतूहल का विषय हैं जितना कि वो हमारे लिए है।
3: जब हम शेरनियों को देखने लगे तभी जंगल में एक आवाज गूंजी, गहरी भारी 8 किलोमीटर तक सुनाई देने वाली दहाड़।
0: इस डायरेक्शन से एक रोर की आवाज आ रही है।
1: ये मेल लाइन रोर कर रहा है, मेल लाइन की रोर है,
0: मेल लाइन का रोर है।
3: ये जंगल के राजा का साफ ऐलान था कि मैं पास ही। शेरनियां भी बेहद सतर्क थी और कुछ बेचैन सी दिख रही।
0: जंगल की आवाजें सुन के सब पूरी तरह से सतर्क है।
3: हम भी इस पशुपेश में फंसे थे कि जिसकी दहाड़ है वो इन्हीं के झुंड का है या कोई बाहरी।
0: कोई दूसरा लायन अगर इनकी टेरिटरी में घुस जाता है तो सबसे बड़ी समस्या एक ऐसी शेरनी के लिए बड़ी होती है जिसके बच्चे छोटे हैं, कि अगर बाहर से कोई लायन आता है तो वो उन बच्चों को निशाना बनाता है, उन सभी बच्चों को ख़त्म करता है, न केवल जो मेन लायन है उस प्राइड का।
3: गाड़ी में बैठे हम सब सतर्क, कैमरे तैयार, हम सब उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। इस बीच जंगल खामोश हो गया और अचानक पेड़ों के बीच में हमें वो दिखाई दिया जिसकी तलाश में हम आए थे, एक रोबीला बब्बर शेर ठीक हमारे सामने। जमीन पर, पेड़ों पर, अपने इलाके पर अपनी पहचान छोड़ते हुए उसकी चाल में ऐसा रौब था कि आसपास के सारे लोग रास्ता छोड़ दें, सारे जीव इधर से उधर हो जाएं।
1: हाल से तमाई हाल એટલે પાછી લેવી પડશે
7: મુંડે
1: પાગડી જાલ છે એ
7: માતા ત્રણ બચ્ચા પાંચ એન ટેન
1: એક મિનિટ
0: મુંડે ઉસકો નીકળને તો
1: તું પાછા જવા દે જવા દે જવા દે।
0: दिन में 20 घंटा सोता है एक शेर, तो इसीलिए ये भी मार्किंग कर रहा है। दिन में 24 घंटे में से 20 घंटे शेर जो है वो आराम कर सकता है, सो सकता है, और इसीलिए ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अपने आप में अद्भुत हैं। ऐसी तस्वीरें या फिर अगर आंखों के सामने जैसे हम देख पा रहे हैं बहुत ही किस्मत वालों को नसीब होती है। जो हमें एक्सप्लेन किया था कि एक शेर मार्किंग क्यों करता है, एक तो अपनी टेरिटरी की बात हो जाती है, दूसरी चीज़ है कि उसके जो पंजे हैं वो शिकार के बाद एक तरीके से उन्हें सैनिटाइज करने का तरीका हो जाता है, और वो शेर हमारी तरफ आ रहा है।
1: ऊपर ऊपर ऊपर ऊपर तो जावा दे जावा दे जावा दे जावा दे जावा दे
0: सब पीछे की तरफ हट रहे हैं इस समय, क्योंकि जब जंगल का राजा चलता है तो आपको उसको रास्ता देना होता है।
1: ये देखिए ये अभी हेयर वाला मार्किंग,
0: ये हेयर वाली मार्किंग कर रहा है, मतलब ये पंजों के साथ मार्किंग होती है, दूसरी बाल के साथ मार्किंग होती है। वाकई आप ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर बंदूकें तनी हो और आपके सामने शेर आ,
1: यूरिन स्प्रे कर रहा है, यूरिन स्प्रे।
0: तो तीन तरीके से मार्किंग होती है, उसने तीनों तरीके से किया है। वो बता रहा है कि ये जंगल मेरा है, ये क्षेत्र मेरा है। उसने अपनी नाखूनों के साथ मार्किंग की है, यूरिन स्प्रे के साथ मार्किंग की है, और वो आगे बढ़ता है। दो ही चीज़, या तो आप अपनी जगह में रहिए, आप अगर वो आपके रास्ते पर आ रहा है जहाँ पर आप हैं तो आप पीछे हटकर उसे रास्ता देते जाते हैं,
1: फिर से मार्क दे रहा है, मार्किंग करते करते जाएगा ताकि और कोई मेल आएगा ना
0: हाँ।
1: तो मार्किंग वो उसकी मार्किंग।
0: ये हमारी जो कैमरा टीम है उसके बगल से बिल्कुल गुजरते हुए और ये बिल्कुल बगल में, ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है। तो ये पूरे पूरे एरिया को, पूरी टेरिटरी को मार्क करेगा। अभी ये अपने प्राइड के पास जा रहा है जहाँ पर तीन शेरनियों को हमने देखा था, तीन शेरनियाँ और शावक जो हैं वो अपनी प्राइड के पास इस समय जा रहा है। और वही कॉल जो दूर से आता जा रहा था, जब हमारे कानों को नहीं भी एहसास हो रहा था, तब वो उसकी कॉल को वो शेरनियाँ सुन पा रही थी और अपनी पूरी प्राइड को एक साथ एक जगह पर रोक रही थी। अब यहाँ पर ये जो शेर है इस समय, हालांकि उसकी जो मूवमेंट है उससे वो सतर्क चारों तरफ देख रहा है।

0: इलाके में मार्किंग दे रहा है, पूरे सब पेड़ पे दे रहा है अभी तो।
1: ये हमारी जो कैमरा टीम मेरे पीछे है, वो उन लोग को थोड़ा पीछे होना पड़ रहा है, क्योंकि जंगल के राजा ये तय कर रहे हैं कि उनको कहाँ जाना है, तो आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं, आप रास्ता दे सकते हैं, वरना अगर वो रास्ता बनाने पे आए, इतने करीब से इतनी पास से मैंने कभी जंगल के राजा को नहीं देखा है, उसके एरिया में, उसके क्षेत्र में।
2: एक व्यस्त नर एशियाई शेर का वजन आमतौर पर 160 से 190 किलोग्राम तक होता है, जबकि कुछ बड़े नर 200 किलोग्राम से अधिक भी हो सकते हैं। इसकी नाक से पूंछ तक कुल लंबाई लगभग 9 से 10 फीट तक होती है और कंधों तक ऊंचाई करीब 4 फीट होती है। एशियाई शेर के जबड़ों की बाइट फोर्स लगभग 650 PSI मानी जाती है, जो उसे नील गाय, सांभर और जंगली सुअर जैसे बड़े शिकार को पकड़ने और मारने में सक्षम बनाती है। इसकी सबसे बड़ी पहचान पेट के नीचे लटकती मोटी खाल और उसके झबरीले बाल होते हैं। हमारे सामने जो था वो केवल एक जीव नहीं था, ये गीर का बादशाह था।
3: शेर की एक अपनी पहचान है, वो लॉयल एनिमल है, उससे हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एकदम हमारे बगल में से निकला, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो उसने हमारी तरफ देखा ही नहीं, वो अपने अपने काम में वो मस्त रहता है। और उसका एक टेरिटरी एरिया होता है, वो उसका राजा होता है, उसकी ताकत उसके एक अदा ही अलग है।
4: कभी कभी ऐसा लगता है मगर हमला नहीं करेगा सर, क्योंकि रॉयल एनिमल है, वो राजा की तरह ही रहता है सर, वो एक तरह का राजा ही है, वो पूरा अपना गिर का राजा है पूरा सर।
2: हमें अपना रास्ता छोड़ने को मजबूर करके बब्बर शेर हमारी आंखों से ओझल हो गया। पर रोमांच का सिलसिला यही नहीं रुका, कुछ आगे बढ़े तो सड़क के बीचों बीच एक शेरनी बैठी हुई आराम से बिना किसी चिंता के। हो भी क्यों ना, ये पूरा इलाका उसी का था, हम तो बस मेहमान थे। गाड़ी रुक गई, कुछ मिनट तक वो हमें देखती रही और हम उसे।
1: आज रास्ता रोक रोक कर ही शेर अपने दर्शन खुद हमें दे रहे हैं। अब ये एक लाइनस जो रास्ते में यहाँ पर है,
0: अब ये लाइनस खड़ी हो गई, देखिए
1: अब ये लाइनस आगे जा रही है, ये क्योंकि
0: इसके ये भी रोड।

0: ये किस तरह का रूर है?
1: उसका ग्रुप कहीं दूर है तो उसका मैसेज दे रहे
0: हैं। अच्छा,
2: आई थिंक
0: एक तरीके से आपस में कम्युनिकेट करने का भी तरीका होता है, क्योंकि ये अकेले यहाँ पर है, पर जो लायन है वो एक साथ रहते हैं, पैक एनिमल्स होते हैं, वो टाइगर की तरह से अकेले अकेले नहीं घूमते, अकेले अकेले शिकार नहीं करते। तो मुमकिन है कि अपने जो अपने जो अपना जो बाकी साथी हैं उनको एक संदेश भी इस तरह के रोर के साथ हो।
2: ये जो सारे मार्किंग है ना, उसके फुटप्रिंट्स भी दिखते हैं आपको उसमें, और तब पता चल जाता है यहाँ फुटप्रिंट्स है, यहाँ है, वहाँ।
0: आपकी किस्मत नहीं होती है तो आप केवल वो मार्किंग्स देखते हैं, लेकिन किस्मत होती है तो शेरनी के उठने के बाद वो मार्किंग।
3: दिन का सबसे अकल्पनीय दृश्य अभी बाकी था, हमारी किस्मत हमारे साथ थी। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पानी के स्रोत के पास पहुंचे और हमारे सामने फिर था एक पूरा परिवार।
0: इससे प्यारी तस्वीर आपको क्या मिलेगी कि पूरा जो प्राइड है यहाँ पर पानी पी रहा है। वैसे तो देखिए सौराष्ट्र का इलाका है, सौराष्ट्र के इलाके में पानी एक समस्या इंसानी बस्तियों के लिए भी रहती है, लेकिन जो वन कर्मी है वो पूरी ये व्यवस्था करते हैं कि जंगली जीव जंतुओं को किसी भी तरीके से पानी की कमी कभी ना हो।
4: मानसून में तकरीबन बारिश अच्छी होती है तो हर जगह पानी मिल जाता है, मगर जैसे जैसे समर आता है, जब गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है तो नेचुरल जो पानी होता है तो तकरीबन ज़्यादातर सूख जाते हैं। तो हमारे डिपार्टमेंट ने यहाँ आर्टिफिशियल वाटर पॉइंट बनाए हैं जो हर 400 या 500 मीटर के बीच में बनाए हुए हैं। तो वहाँ हमने पवन सके विंड फार्म से और टैंकर से और सोलर पैनल से ऑटोमेटिक ऐसी व्यवस्था की है कि वहाँ पानी मिल सकता है।
0: ये फैमिली टाइम है, एक ऐसा दुनिया का एकमात्र जीव जिसके साथ हर पॉजिटिव चीज़ को जोड़ा जाता है, मतलब शेर दिल से लेकर सिंह की दहाड़ तक हर एक चीज़ आपको प्रेरणा देती है।
3: शेरनिया, शावर और पानी पीने का सिलसिला, किसी ने सर उठाकर इधर देखा, कोई पानी में अपना चेहरा झुकाए रहा। जंगल का ये दृश्य जितना अशांत था उतना ही दुर्लभ था।
0: यहाँ क्यों आ रही है?
2: नहीं, बीच से चली जाएगी।
0: अच्छा,
2: बीच आवाज़ आवाज़ पाँची आवाज़ आवाज़ आवाज़ आवाज़ आवाज़।
0: अच्छा, उसको जाने का रास्ता चाहिए, इसीलिए हम वो जाने का रास्ता उसके लिए छोड़ रहे हैं।
3: हमारे जंगल का सफर खत्म हो रहा था, हमने कई अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय तस्वीरें देखी थी। गुर्राती शेरनी, तहाड़ता शेर, सड़क पर बैठी रानी, सात शावकों वाला परिवार, मोर, चीतल, सांबर, बंदरों से भरा जंगल। चेहरे पर इत्मीनान, दिल में खुशी लिए हम बाहर की तरफ निकल रहे थे, पर किस्मत एक बार फिर मेहरबान हो गई। हम कुछ ही दूर बढ़े कि हमारे कैमरा पर्सन मोहसिन और हितेश को एक अद्भुत दृश्य नजर आया। हमारे सामने थी एक शेरनी पेड़ की छाव में सुस्ताती हुई और साथ में एक विशाल काय बब्बर शेर। हमारी मौजूदगी से पूरी तरीके से बेपरवाह।
0: एक इधर लेटा है, एक इधर लेटा है। नहीं नहीं, ये लाइनस है, ये लाइनस है, ये इधर शेरनी उधर शेर, दोनों सुस्ता रहे हैं। बढ़िया पेड़ में की छाया मिला हुआ है दोनों को। एक्चुअली सही बोल रहे थे आप, रॉयल है वो भी उठा। देखो एक बात सिंपल है, आप चाहे तेंदुआ देख लें, चीता देख लें, बाघ देख लें, लेकिन जो शेर होता है ना वो शेर ही होता है। अगर आपकी तरफ देख ले तो आपको लगता है खून जम जाए आपका।
3: शायद ये वही शेर था जो हमको पहले मिला था, या फिर शायद इस प्राइड का दूसरा शेर हो। हमारी फॉरेस्ट टीम ने हमें बताया कि ये शेरनी गर्भवती है।
5: ये जो दो लायन है ना, ये अभी इस एरिया में बहुत ताकतवर है और इनके दो प्राइड है। एक जो लायनस है उसके छोटे छोटे अभी बच्चे हैं, ये अभी प्रेग्नेंट है, अभी बच्चे देगी मॉनसून में।
3: साथ में लेटा शेर कभी हमारी आंखों में आंखें डालकर देखता, कभी करवट ले लेता। ऐसा लगा जैसे राजा अपने महल में आराम फरमा।

0: डिटेक्ट करते हैं और जीपीएस की हेल्प से उसको मॉनिटर करते हैं।
1: मतलब क्या इसमें प्राइवेट भी व्हीकल्स होते हैं?
0: यस, ऑल प्राइवेट व्हीकल्स। अब क्योंकि ये प्राइवेट व्हीकल है, इसमें प्राइवेट ड्राइवर जा रहा है, तो वो उसको जो डेजिग्नेटेड रूट दिया है उससे डाइवर्ट ना हो, वाइल्ड लाइफ के एरिया में स्पीड ना बढ़ाए, तो वो सब मॉनिटर करने के लिए हमने एक डैशबोर्ड बनाया है। इस डैशबोर्ड पे जितने भी हमारे व्हीकल हम लोगों ने फॉरेस्ट के अंदर अलाउ किए हैं उन सबके अंदर एक जीपीएस यूनिट इंस्टॉल्ड है। ये भी बताएगा कि कितने रनिंग स्टेटस में है, कितने आइडियल है, कितने स्टॉप्ड है। जैसे ही वो जंगल के अंदर जाएंगे तो उसका जीपीएस का रीडिंग स्टार्ट हो जाता है। अगर कोई जंगल में जाके ओवर स्पीडिंग करता है तो हमारा यूनिट हमें अलार्म देता है कि दिस पर्टिकुलर व्हीकल हैज इंक्रीज द स्पीड, तो हम यहां से उनको पेनलाइज भी कर सकते हैं, उनको रेगुलेट कर सकते हैं। तो एक तरीके से हम जंगल के अंदर भी पूरी नजर रखते हैं कि हमारे लाइन को कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए टूरिज्म एक्टिविटीज से।
1: एक चीज मैं देख रही हूँ, ये एक फोटो जिसमें एक कॉलर दिख रहा है लाइनस को।
0: जी, तो इसके बारे में हम आपको अपने हाईटेक यूनिट का जो रिसर्च यूनिट है उसके बारे में बताएंगे कि कैसे हम लोग लाइन कंजर्वेशन एफर्ट्स के अंदर रेडियो कॉलरिंग को यूज करके लाइन के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं।
2: ये स्पेसिफिक है, ये जो है लायन का कॉलर है,
1: इसीलिए बड़ा है सबसे।
2: हाँ, जी। ये बड़ा है और हाँ। ये देखेंगे ये लेपर्ड का।
1: अच्छा,
2: इसी तरीके
1: लेपर्ड्स कितने हैं सर यहाँ?
0: लेपर्ड्स का नंबर हमारे यहाँ पे 600 प्लस है।
1: अच्छा,
0: और हम लोग कुछ कुछ एरिया के अंदर नॉट ओनली सौराष्ट्र रीजन, साउथ गुजरात में भी अलग अलग जगह पे रेडियो कॉलरिंग के इनिशिएटिव।
1: लेपर्ड्स एंड लायंस में किसी तरह का कोई वो नहीं है?
0: लेपर्ड एंड लायन को एग्जिस्ट करते हैं और दोनों अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि अगर ग्राउंड की टेरिटरी को लायन रूल कर रहा है तो लेपर्ड पेड़ के ऊपर जाकर रूल करता है।
2: जी। और ये जो डिवाइस है ये सैटेलाइट है, तो इनके हिसाब से हमें इनकी लोकेशंस मिलती रहती है।
1: अच्छा,
2: तो जब भी ग्राउंड स्टाफ है उनको लोकेशंस चाहिए होता है तो यहाँ से हम उनको हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये उनको लोकेशंस ढूंढने के लिए डिवाइस है।
1: अच्छा,
2: तो ये उनके एंटेना है और उसके साथ साथ ये उनके रिसीवर्स है और ये बाकी की जो बर्ड स्पीसीज है उनके टैग्स है और ये जो है छोटा सा ये रस्टी स्पॉटेड के लिए है।
3: सच गिर केवल शेरों को देखने की जगह नहीं है, ये उस दुनिया की झलक है जहाँ इंसान तो बस मेहमान है, असली मालिक तो जंगल के वो जीव हैं जिनकी मौजूदगी से हर सफर अद्भुत, अविश्वसनीय और कल्पनीय बन जाता है।
4: बब्बर, शेर जब सुस्ताता है तो आपको देखकर बड़ा सुकून सा लगता है, लेकिन जब यही अपने शिकार वाले मूड में आ जाए तो फिर सामने किसी की क्या बिसात। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन, हितेश कुमार इस बब्बर शेर और मोहम्मद अनस जुबैर के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
2: Some mysteries lie beneath the ocean. Others beyond the stars. Explore Earth's wildest places on Earth Day 365. Uncover nature's greatest mysteries and experience breathtaking IMAX theater documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel, LG channels, Amazon Fire, and more.
3: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
4: कूल फैंस के स्टाइलिश डिजाइन से घर की शान बढ़ाएं.
5: कूल फैंस जो दे आधी बिजली में ज्यादा हवा कम आवाज की है.
4: कूल फैंस स्मार्ट भी स्टाइलिश भी.
6: आगे आगे
7: अरे उधर
6: उधर
7: करेक्ट करेक्ट
8: मिल गया. आपके पास दो ऑप्शंस हैं. या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए. E3 प्रोडक्ट्स ये रिश्ता लंबा चल.
6: आगे आगे
7: अरे उधर
6: उधर करेक्ट करेक्ट
8: मिल गया. आपके पास दो ऑप्शंस हैं. या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए. E3 प्रोडक्ट्स ये रिश्ता लंबा चलेगा.

0: Kesri Devahar.
1: Vimal, बोलो जुबान केसरी.
2: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता.
3: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स.
4: लायन डेट नट बाइट्स.
5: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना. गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत. गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो.
6: आगे आगे
7: करेक्ट करेक्ट
8: मिल गया. आपके पास दो ऑप्शंस हैं. या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए. E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
9: केंट से पानी होता है 100% प्योर.
10: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है.
9: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी.
11: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश.
12: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है. 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं.
13: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं.
11: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर.
14: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ.
12: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ. हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा.
11: जहां खबर वहां खबरदार.
15: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
16: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
2: एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया

0: Big color, bigger savings. Sherwin-Williams Super Sale is here. Get 40% off paints and stains June 5th through the 11th with prices starting at $30.89. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
1: Back to the songs that never left. Jukebox Oldies is your favorite jukebox for 70s and 80s favorites that still feel young. From Madonna to George Michael to Hall & Oates and Eurythmics, the hits live on. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Jukebox Oldies to start listening now.
2: आगे आगे
3: अरे उधर
2: उधर किधर
3: करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: मम्मी पापा, आपका मुझ पर भरोसा था कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएगी, पर दोबारा नीट देने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। पहले नीट के पेपर में मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे, पर दोबारा पेपर अच्छा जाए इसकी क्या गारंटी है। सॉरी मम्मी पापा, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का।
6: सोचिए ये शब्द किसका कलेजा नहीं चीर देंगे।
7: हम कर्ज ले लेके पढ़ा रहे थे, हम किसी से मांग मांग के उसकी फीस भर रहे थे।
8: इतने सारे सपने दिखा के चलेंगे, उसके नाम की आगे डॉक्टर।
6: मध्य प्रदेश की आकांक्षा की मौत सिस्टम पर वो करारा तमाचा है जिसकी गूंज सुनाई तो पड़ रही है, लेकिन सवाल वही है कि क्या कुछ दिनों के हंगामे के बाद पेपर लीक माफिया और शिक्षा तंत्र में बैठे धंधेबाजों पर फिर तो चुप्पी नहीं ओढ़ ली जाएगी। आज जो विपक्ष में है वे नीट पेपर लीक और CBSE OSM की गड़बड़ी पर सरकार से तीखे सवाल पूछ रहे हैं।
9: दुख है हमें, लेकिन कार्रवाई में कभी कमी नहीं रखा।
10: How many questions normally will someone apply for?
11: I guess अभी जो problem आ रही है, they can apply for all the questions.
10: So how many total questions?
11: 30-35 around questions होते हैं.
10: So huge amount of money.
11: Huge amount of money is involved.
6: विपक्ष को सवाल पूछने भी चाहिए, जवाबदेही तय होनी ही चाहिए, लेकिन शिक्षा तंत्र को फेल करने वालों का जाल बहुत गहरा है और बहुत पुराना है। 2002 से 2025 के बीच 1,00,000 से अधिक उम्मीदवारों वाली 45 लीक परीक्षाओं ने 3,86,00,000 छात्रों को प्रभावित किया। लीक के इन मामलों में 1,658 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 925 पर चार्जशीट दाखिल की गई, 2 मामलों में 18 लोग दोषी करार दिए गए, 43 आरोपी जेल में बंद हैं। आरोपों के मुताबिक पेपर लीक माफिया का कोचिंग माफिया के साथ सांठगांठ होता है। इस बार की नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में भी आरोपियों के तार कोचिंग सेंटर से जुड़े हैं, इसलिए शिक्षा तंत्र के ओवरहॉल की जरूरत है। छात्र तो अपना भविष्य बनाने की परीक्षा देते हैं, अब की बार सरकार को परीक्षा में पास होकर दिखाना है। आज तक ब्यूरो।
12: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
14: In association with
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: बाजीगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ मौजूद जनता का तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बहस बाजीगर में। आज देश की राजनीति की बात होगी, क्योंकि अक्सर ये चर्चा होती है कि क्या किसी भी लोकतंत्र में एक पार्टी का दबदबा होना लोकतंत्र की सेहत पर कैसा असर डालता है। और इसीलिए कहा जाता है कि एक मजबूत विपक्ष भी देश में उतना ही जरूरी है। लेकिन आज क्या स्थिति है क्षेत्रीय दलों की? कभी जिन ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री पद के चेहरों में गिना जाने लगा था, आज उन्हें अपनी पार्टी टीएमसी का वजूद बचाने का संघर्ष करना पड़ रहा है। 80 में से 60 विधायकों का ब्लॉक ममता से अलग खड़ा हो गया है और ऋतव्रत बनर्जी को बंगाल विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया है। वो कह रहे हैं कि आपका भतीजा हम स्वीकारेंगे नहीं। वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी आप अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को अलग कीजिए और आप आइए हमारी नेता हैं, आप हमको एडवाइस कीजिए। अब ममता बनर्जी को चुनना है भतीजा या विधायकों के साथ जाकर अपनी पार्टी को बचाना है। वहीं तमिलनाडु चलिए, जहां टीवी के सत्ता में आई विजय की पार्टी, लेकिन वहां एडीएमके डीएमके की जो सियासी जमीन है वो दरक गई है। विधानसभा में 47 सीट जीत कर आई एडीएमके की आज स्थिति क्या है जानते हैं? उनमें से 24 विधायकों ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ जाकर थलपति विजय का समर्थन कर दिया है। तो AIADMK जिसके साथ बीजेपी चुनाव तमिलनाडु में लड़ी थी वो दो फाड़ हो चुकी है, आधी चली गई है सत्ता में शामिल होने के लिए विजय के साथ। महाराष्ट्र में बाला साहब वाली शिवसेना दो फाड़ हो गई है। उद्धव ठाकरे के खिलाफ एकनाथ शिंदे अब बीजेपी के जूनियर पार्टनर है। अजित पवार शरद पवार की एनसीपी को विभाजित कर एनडीए के साथ अपनी राह चुन चुके हैं। बिहार में नीतीश कुमार का युग भी समाप्त हो गया है। केवल कुछ ही राज्यों में क्षेत्रीय दलों के नेता मजबूत बने हुए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव चैलेंज कर रहे हैं, झारखंड में हेमंत सोरेन हैं, वो मजबूत चुनौती दे रहे हैं। इसीलिए आज बहस बाजीगर का मोशन है कि क्या क्षेत्रीय दलों का वजूद खतरे में है। लेकिन आज की बहस बाजीगर में हम मंच पर तमाम गेस्ट को बुलाऊं, उससे पहले आपको कुछ नियम बता दूं। सबसे पहले तालियों के साथ इस हिस्से का स्वागत जो ये मानता है खतरे में नहीं है वजूद, यही मानते हैं ना आप लोग, तो जोर से ताली बजाइए अपने लिए। तो ये वो हिस्सा है जो मानता है कि भाई क्षेत्रीय दलों का वजूद कभी खतरे में नहीं है, आज इसकी बारी है, कल किसी और की बारी होगी। और ये सफेद गमछा वाले लोग, आप लोग क्या मानते हैं? खतरे में भी है, खतरे में भी नहीं है। समय बड़ा बलवान है, आप लोग को मोक्ष मिल चुका है, आप लोग ज्ञान की प्राप्ति कर चुके हैं, वही अगर सबको हो जाए तो पूरी दुनिया में शांति मच जाए और कई सारे उछलने वाले लोग भी शांत पड़ जाएं। और ये वो हिस्सा है जो मानता है कि आज क्षेत्रीय दलों का वजूद खतरे में है, यही मानते हैं ना। तो तालियों के साथ आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत। लेकिन इससे पहले कि हम तीनों जजेस को बुलाएं और 6 पार्टिसिपेंट्स को बुलाएं, आइए आपको दिखाते हैं अपनी ये छोटी सी रिपोर्ट।
1: आज की बहस का मकसद और आधार बना है क्षेत्रीय छत्रपों की सिकोड़ती सियासत और हाशिए पर पहुंचा वजूद। भारतीय राजनीति का एक दौर था जब दिल्ली की सत्ता का रथ राज्य स्तर के दल अपने दम पर खींचते थे या फिर दिल्ली की नाक में दम करके रखते थे। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है और ये छत्रप अपना वजूद बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कभी प्रधानमंत्री पद की रेस में शामिल ममता बनर्जी आज अपनों के ही विद्रोह से घिरी हैं। वो आज अपनी विरासत और भतीजे के राजनीतिक भविष्य के बीच फंसी हुई हैं। महाराष्ट्र में बाला साहेब की विरासत और शरद पवार का पावर गेम दोनों को अपनों ने ही तोड़ दिया। दक्षिण की बात करें तो तमिलनाडु में विजय की टीवीके की एंट्री ने डीएमके और एडीएमके जैसे दिग्गजों की जमीन हिला दी है, जहां पाला बदलने का खेल खुलेआम जारी है। बिहार में आरजेडी भी हाशिए पर है, नीतीश सत्ता के साथ ही चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और झारखंड में हेमंत सोरेन जैसे कुछ नाम अब भी अपनी जमीन बचाए हुए हैं। लेकिन ज्यादातर क्षेत्रीय दल वजूद बचाने के लिए जूझ रहे हैं, इसीलिए आज हम पूछेंगे कि क्या क्षेत्रीय दलों का वजूद खतरे में है।
0: तालियों के साथ स्वागत कीजिए राशिद किदवई। वरिष्ठ पत्रकार हैं जो आज हमारे साथ जज बनकर आ रहे हैं और तीन ताल के ताऊ कमलेश जी हमारे साथ जज के तौर पर जुड़ रहे हैं। विनोद अग्निहोत्री जी, तीन वरिष्ठ पत्रकार जो इस देश की राजनीति को लंबे समय से देख रहे हैं, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है। आइए विनोद जी, और अब बुलाते हैं पहले दो वक्ताओं को। तालियों के साथ स्वागत कीजिए प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के वारसा चर्चा में शामिल हो रहे हैं, और हमारे साथ शामिल हो रहे हैं दीपक झा जी। तालियों के साथ स्वागत कीजिए प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के वारसा चर्चा में शामिल हो रहे हैं, और हमारे साथ शामिल हो रहे दीपक झा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा, प्रेम शुक्ला जी का तो लेखनी से बहुत पहले से रिश्ता रहा है, लेकिन फिटनेस एक्सपर्ट हैं, योगा गुरु हैं दीपक झा जी, बहुत बहुत स्वागत है। अब देखते हैं क्षेत्रीय दलों के फिटनेस पर आज आप क्या कहते हैं। अपनी अपनी टीम के लिए मोर्चा संभाल लीजिए, अगले दो पार्टिसिपेंट्स को बुलाते हैं। मलुक नागर जी, पूर्व सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता जनरल सेक्रेटरी आरएलडी के, तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ जुड़ रहे प्रोफेसर विजय राठी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। राठी जी आज पहली बार आ रहे हैं बहसबाजी करने, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए आज मामला थोड़ा सा सर गड़बड़ हो गया है, लाल गमछा तो आपका है, आपकी पार्टी लाल टोपी पहनती है, बट ये लाल वाले आपके विरोध में आज गमछा लेके बैठे हैं, ये नीले गमछे वाले आपका साथ देंगे, ठीक है? तो ये लोग आपके साथ आज खड़े हैं। और फिर आखिरी के दो पार्टिसिपेंट्स को बुलाते हैं। आ गए भाई तिवारी जी, आ गए हैं मृत्युंजय तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और खास अंदाज में हमेशा पहुंचते हैं डिबेट में। तालियों के साथ स्वागत कीजिए अरविंद वाजपेयी, राष्ट्रीय प्रवक्ता आरएलएम के, जो एनडीए के साथी, और इस तरफ वो प्रेम शुक्ला जी की टीम में जाएंगे और तिवारी जी उधर झाजी की टीम में पहुंच जाएंगे। अब एक बार नियम आपको बता दें, छह वक्ताओं को बारी बारी से, ये डिबेट है, इसमें एक दूसरे पर चिल्लाने की जरूरत नहीं। यहां पर प्रेम शुक्ला जी डेढ़ मिनट बोलेंगे, डेढ़ मिनट का टाइम इनको मिलेगा, डेढ़ मिनट में सशक्त तरीके से अपनी बात बोलिए, उसके बाद से एक मिनट का रिबटल टाइम भी मिलेगा। और तीनों हिस्से से, नीले गमछे, सफेद और लाल से, हम एक एक सवाल भी आपके लिए लेंगे, और तीनों जजेस ये बताएंगे कि आज सबसे अच्छा किसने इस विषय पर बोला, क्योंकि हम ये मानते हैं लोकतंत्र की ताकत एक मजबूत विपक्ष से आती है। और अगर टीएमसी से लेकर एआईएडीएमके, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की जो पार्टी है, उन सब में अगर हम फूट देख रहे हैं, तो एक बड़ा चैलेंज आज क्षेत्रीय दलों के सामने दिख रहा है। सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत कीजिए प्रेम शुक्ला और दीपक झा। क्या क्षेत्रीय दलों का वजूद खतरे में है, इस विषय पर बोलने का आपका, शुक्ला जी, डेढ़ मिनट का समय शुरू होता है अब।
2: क्षेत्रीय दलों का विस्तार भी हुआ है, और क्षेत्रीय दल जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ है, जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, उन क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व न केवल बचा है बल्कि उनका विस्तार हुआ है। जैसे अभी जो चुनाव हुए पांच राज्यों के, उसमें भी पुदुचेरी में भी जो है ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस जो है वो सत्ता में आई, तो जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का साथी है वो सत्ता में आता है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम सत्ता में आता है, महाराष्ट्र में सत्ता में जो है एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी सत्ता में आती है, बिहार में जो है वो सत्ता में जनता दल यूनाइटेड बैठता, और जनता दल यूनाइटेड बैठता ही नहीं है, उसके विधायकों की संख्या दोगुनी होती है। जो इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथी, जहां जहां पर भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ क्षेत्रीय दल आए उनका विस्तार हुआ, और जो कांग्रेस के साथ चले गए उनका विनाश हुआ है। अभी देखिए कम्युनिस्ट पार्टी पूरी तरह से समाप्त हो गए, तृणमूल कांग्रेस पार्टी अभी देख रहे हैं किस दुर्गति को प्राप्त हुई है। इसी तरह से शरद पवार जी जो है वो सांसद बनने के लिए उनको चिरौरी करनी पड़ी जनपद के सामने बाकायदा। उद्धव ठाकरे की दशा हर कोई देख रहा है कि कहां बाला साहब ठाकरे थे और कहां उद्धव ठाकरे आकर गिरे हुए हैं। तो जो कांग्रेस के साथ जा रहा है, डीएमके का अभी अभी उसके पीठ में छुरा घोंपने का आरोप कांग्रेस पर डीएमके ने लगाया है, तो द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम से लेकर शिवसेना उद्धव ठाकरे तक जो जो कांग्रेस के साथ गया उसका विनाश हुआ।
0: जबरदस्त, ओपनिंग बैट्समैन ने इधर से अच्छी पारी खेली है। अब झाजी आपकी बारी है, डेढ़ मिनट तक आपको इस पर बोलना, हालांकि कांग्रेस इसमें शामिल नहीं है, क्षेत्रीय दलों की बात हो रही है। आपने सेंचुरी तो बना ही ली लगभग सांसदों की पिछली बार,
2: हार की भी,
0: डेढ़ मिनट का समय आपको मिलेगा, और झाजी इस विषय पर बोलने का कि क्या क्षेत्रीय दलों का वजूद खतरे में है, आपका समय शुरू होता है अब।
3: देखिए वजूद तो इस देश में सबका खतरे में है, विद्यार्थियों का भी खतरे में है कि नीट का पेपर लीक हो जाता है, किसानों का भी वजूद खतरे में है, कि महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है, युवाओं का भी वजूद खतरे में है, तो देश का भी वजूद खतरे में है। लेकिन आज क्षेत्रीय दलों को वजूद की बात कर रहे हैं, जिनके कंधों पर देश की राजनीति का, देश के वजूद को बचाने की जिम्मेदारी है, उनका वजूद खतरे में क्या डाल दिया है मोदी सरकार ने? तो मैं कहूंगा हाँ, बिल्कुल डाल दिया है। क्योंकि भाई साहब ने कहा कि शिंदे को देख लो, फलाने को देख लो, राज ठाकरे को देख लो, पवार जी का नाम लिया इन्होंने बहुत अदबी के साथ, बेअदबी के साथ। मैं कहता हूं जो इनके साथ हैं वो बड़े अच्छे, जो विपक्ष में बैठे हैं वो देशद्रोही गद्दार। बात है कि भाजपा ने आज राजनीति को क्या बना दिया है, आज भाजपा ने कॉर्पोरेट बना दिया नौकरी की तरह। आपका मन करता है आप नौकरी करिए, नहीं तो कल कंपनी बदल लीजिए। भाजपा कहती है आप जिस पार्टी में हैं मन नहीं लग रहा है, मेरे पास आ जाइए, मैं आपको अच्छा पैकेज दूंगा। विधायक बनना है आ जाओ, एमएलए बनना है आ जाओ, एमएलसी बनना है आ जाओ, राज्यसभा जाना है आ जाओ, मंत्री बनना है आ जाओ, लेकिन हमारे साथ खड़े रहो, महंगाई की बात मत करना, बेरोजगारी की बात मत करना, छात्रों के भविष्य की बात मत करना। अगर ये सब आप बात नहीं करोगे तो आप हमारे साथ सुरक्षित हो, आपकी पार्टी सुरक्षित है। लेकिन अगर आप सवाल करोगे तो ना आपका दल सुरक्षित रहेगा, ना आपका नेता सुरक्षित रहेगा। इसका उदाहरण है शरद पवार की पार्टी, रामविलास पासवान की पार्टी, ममता बनर्जी की तृणमूल खतरे में आ गई है। तो सारे के सारे दल आज जो विपक्ष के साथ खड़े हैं वो टूट की कगार पे इसलिए हैं क्योंकि भाजपा ने कॉर्पोरेट बना दिया
0: है। दोनों तरफ से धुआंधार बल्लेबाजी हुई है। कोई प्रश्न? कमलेश जी, विनोद जी,
4: दीपक जी, क्षेत्रीय दलों ने ही जो जो कांग्रेस के साथ जो क्षेत्रीय दल आए वो कांग्रेस की जमीन पर ही खड़े हुए
3: जी।
4: तो अगर क्षेत्रीय दलों का वजूद खतरे में है तो कांग्रेस को तो फायदा होना चाहिए, आप क्यों उनका पैरवी कर रहे हैं?
3: देखिए सर, हम सनातनी हैं और वेदों से हमारा शुरुआत होता है। वेदों की बात करता हूं, ऋग्वेद में कहा गया है संग गच्छध्वम सम वदध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संज्ञाना न उपासते। हम साथ चले, हम साथ आगे बढ़े, हमारी पूजा पद्धति नहीं है।
0: मामला तो चला गया उधर, भारत माता की जय वो बुलवा रहे
2: नहीं। अब देखिए कैसा सुधार, कितना जबरदस्त है। जो पहले बाइबल को कोट करते थे, कुरान को कोट करते, आजकल वेदों को कोट कर रहे हैं। यही आपने पहले से शुरू किया होता तो आज ये कहते ना, सुख में सुमरन सब करे, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमरन करे दुख काहे को होए।
0: छोटा सा
3: देखिए, भगवान राम तो इन्होंने लाए हैं, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। हम तो अनादि मानते हैं, आदि और अनादि दोनों हैं ईश्वर हमारे लिए, लेकिन इनके लिए तो ये सृष्टि करता है राम के भी। तो बात है कि हम उस राम को मानते हैं, हम उस सृष्टि को मानते हैं, हम उस भारत माता को मानते हैं जो सबके लिए सार्वभौमिक है। इनके लिए सिर्फ एक आदमी है सार्वभौमिक, और कल 15 लाख करोड़ का घोटाला हो गया है, इस पे भी ये चुपचाप चले जाएंगे, बच्चों के साथ लूटेंगे, शेयर होल्डर्स को लूटेंगे, सबको लूटेंगे। लेकिन कब तक चलेंगे राम के नाम पे, ये बता दीजिए।
2: चलिए, राम इनके लिए काल्पनिक था, राम कम से कम जो है वास्तविक हो गए। सुधार बहुत जबरदस्त है, इसके लिए तो तालियां बजनी चाहिए सुधार के लिए।
5: दीपक, आप एक राष्ट्रीय पार्टी के बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी, लेकिन देश में ऐसी 253 सीटें हैं लोकसभा की और 7 राज्य हैं जहां आपका जो वोटिंग परसेंटेज है, मतलब जनाधार है, वो सिंगल डिजिट में 6% 5%, जैसे बंगाल है, दिल्ली है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, इस तमाम बिहार है और पूर्वोत्तर के कई राज्य हैं। तो यहाँ पर इसमें आप कैसे, आप 254 सीटें तो बिना आप क्षेत्रीय दलों के आप कभी पनप ही नहीं सकते, अपने बूते में सरकार नहीं बना सकते हैं आप।
3: देखिए सर, हम भी चाहते हैं कि हमारी 272 सीटें आए, हम भी चाहते हैं कि सरकार हमारी अकेले पार्टी की बने, लेकिन अगर इस देश में विपक्ष के साथ या क्षेत्रीय दल हैं तो क्या इस देश के वो लोग नहीं है? क्या हम उनको पाकिस्तानी बोले? अगर वो चुनाव लड़ना चाहते तो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, और लोकतांत्रिक अधिकार में अगर वो जीतते हमको हराते और हमारे साथ आते हैं तो स्वागत है उनका भी। लेकिन जो आपने बात कही, लोकतंत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय दलों का होना अति आवश्यक है। लोकतंत्र में सवाल जवाब बना रहे, लोकतंत्र में तानाशाही ना आए, क्षेत्रीय दलों का होना अति आवश्यक है।
0: तो?
3: भारत की विविधता ही है क्षेत्रीय दलों के साथ।
6: इस बात से मैं अग्री करता हूं कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं होती हैं, उसको राष्ट्रीय पार्टियां एड्रेस नहीं कर सकती वैसे जैसे क्षेत्रीय दल कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसे मुद्दे होते हैं जो बहुत लोकल होते हैं। उसमें दो राज्यों के बीच में फंस जाती है राष्ट्रीय पार्टियां कि बेलगाम में किधर जाऊं, मैं महाराष्ट्र की तरफ जाऊं कि कर्नाटका की तरफ जाऊं, आप बोल नहीं सकते। ये जरूरी है, पर आपने अपने सारे दुश्मनों से हाथ मिला लिया है। जिन्होंने आपको तमिलनाडु से 60 के दशक में निकाल फेंका, फिर वापस नहीं आ पाए। आपको क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस को जहां से भी उखाड़ के फेंका है, फिर कांग्रेस उनकी जूनियर ही बन गई है।
7: बंगाली देखिए।
6: हाँ, और उस स्थिति में चूंकि अब भाजपा भी आपको उखाड़ फेंकने के चक्कर में रहती है यहाँ वहाँ, और खुल के कहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, तो क्या आप दोनों का भी गठबंधन एक दिन
7: बंगाल में ये भिड़ भी गए ममता बनर्जी के साथ, कहाँ लड़ेगी कांग्रेस? तो उसका क्या फायदा है? मतलब आप भी उनको कोस ही रहे थे, कह रहे थे कि वो बीजेपी से भी ज्यादा कम्युनल हो गई है।
8: राजनीति व्यक्तिगत संबंधों की या व्यक्तिगत वार्तालाप की नहीं होती है। राजनीति जो होती है क्षेत्रीय मुद्दों की होती है, राष्ट्रीय मुद्दों की होती है। भारत की बात जब होगी तो राष्ट्रीय मुद्दों की बात होगी। तो क्षेत्रीय दल पाकिस्तान से युद्ध लड़ना है तो फिर राष्ट्रीय दल के साथ खड़े होते हैं, लेकिन गांव में सीवर जाएगा, पानी जाएगा, गल्ला जाएगा, वो वहां पे हमें उनके मुद्दों के साथ जाना है। तो आरोप और प्रत्यारोप स्वतंत्र लोकतंत्र में एक सम्मान है, आप इसको गहने की तरफ समझिए, ना कि अपमान समझिए मोदी जी की तरह। मोदी जी के ऊपर आप एक लाइन लिख दीजिए, कल से आपका चैनल बंद। मोदी जी से एक सवाल पूछ लीजिए, आपके घर ईडी आ जाएगी। क्या हुआ वो अग्रवाल जी का कौन है वेदांता वाले?
2: आज तक ने पूछा नहीं सवाल अंजना जी,
8: मैं अंजना
2: मोदी जी सवाल नहीं पूछती। अरे सुनिए, आज तक बंद हुआ।
8: अरे सुनिए
2: गजब है भाई।
8: अरे सुनिए
2: साफ साफ सफेद
8: सुनिए तो सही।
7: अच्छा ये जजेस के साथ आज क्या हो गया? आप लोग सिर्फ कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं?
8: बीच में नहीं, बीच में नहीं।
7: मेरा कहने का मतलब है सिर्फ कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं आप लोग? ताऊ
6: नहीं, उनसे तो पूछना
7: है। इनसे क्यों नहीं पूछ रहे हैं?
6: जो कांग्रेस के साथ विभिन्न मतों वाले दल हैं, उनसे ज्यादा भिन्न मतों वाले दल तो उनके साथ हैं। दोनों जो है आइडियोलॉजी नहीं देखते, जो भी साथ आ रहा है आप मिला रहे हैं, तो अंतर क्या रह गया है?
9: और प्रेम शुक्ला
6: जी, ये भाजपा नई कांग्रेस है
8: सर, एक कॉर्पोरेट है, मैंने कहा ना एक कॉर्पोरेट सिस्टम हो गया है।
9: प्रेम शुक्ला जी ये भी कल आप बताएं कि एक मुख्यमंत्री के नाम पे आप चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं और उसको मुख्यमंत्री को आप राज्यसभा भेज देते हैं, एक मुख्यमंत्री के बाद में चुनाव लड़ते हैं आप महाराष्ट्र में, वो उप मुख्यमंत्री हो जाता है, ये कौन सी कला है?
2: नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ विधायक दल बाद में तय करता है मुख्यमंत्री को, जो नियम है संवैधानिक व्यवस्था ये है कि विधायक दल तय करेगा मुख्यमंत्री कौन होगा।
9: विधायक दल तो करता है,
2: लेकिन विधायक दल तय कर लेता है,
9: क्षेत्रीय दल जो है अपना वो क्लेम खत्म कर देते हैं। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री
2: को विश्वास की तरह सोचिए ना आप, नीतीश कुमार जी को कितना विश्वास है कि वो मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री पद का दायित्व जो है वो सम्राट चौधरी को सौंपने में स्वयं का गौरव महसूस करते हैं। यही तो देखिए, इसी को कहते हैं गठबंधन धर्म का निर्वाह कैसे सर्वोत्तम ढंग से हो।
7: अरे भाई ये हुनर है, आप सीखिए। आपका ये हाल है कि डीएमके वाले आपके बगल में बैठना नहीं चाह रहे हैं अब?
8: देखिए त्याग इनके इतने
2: स्वयं का गौरव महसूस करते हैं। यही तो देखिए, इसी को कहते हैं गठबंधन धर्म का निर्वाह कैसे सर्वोत्तम ढंग से हो।
7: अरे भाई ये हुनर है, आप सीखिए। आपका ये हाल है कि डीएमके वाले आपके बगल में बैठना नहीं चाह रहे हैं अब?
8: देखिए त्याग इनके इतने महान त्याग है, कर्ण भी इतना बड़ा त्याग नहीं होगा।
7: अंजना
8: जी 10 सेकंड में बोलूंगा, मैंने सवाल की पत्रकारिता, मैंने आपको बधाई देना चाहता हूं कि आज शिक्षा व्यवस्था के ऊपर आपने सवाल उठाया, आपके ऊपर बहुत लोग उंगली उठा रहे हैं। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले कोचिंग सेंटर को आपने लपेटा है, उनके ऊपर सवाल उठा है, तो आप बधाई की पात्र है, स्वागत की पात्र है और मैं आपके साथ खड़ा हूँ। दूसरी बात मैं कहूंगा, लेकिन सरकार क्या कर रही है, 90,000 स्कूल बंद कर दिए, उसका जिम्मेदार कौन है? आखिर स्कूल बंद करोगे तो कोचिंग संस्थान आएंगे, इस तरीके से लूट खसोट करने वाले लोग आएंगे, तो आपने स्कूल ना बंद करिए। प्रेम शुक्ला जी,
2: कहां से आंकड़ा ले आता है? मेरी समझ में 90,000 स्कूल बंद, आंकड़ा कहां से आया?
8: पिछले 10 सालों में भारत सरकार की वेबसाइट पे देख लीजिए, शिक्षा वेबसाइट पे देख लीजिए,
2: कोई इस तरह से नहीं है।
8: 3,000
2: की संख्या बढ़ी है।
6: शिक्षा पर बहस अंजना जी कर चुकी है, आपने उनका धन्यवाद ज्ञापन भी कर दिया है। आज हम क्षेत्रीय दलों के वजूद पर ही टिके रहे तो अच्छा है।
8: नहीं बस वो मैं इसलिए गया क्योंकि मैंने कहा कि पत्रकार अगर सवाल कर ले, तो मैंने कहा कि अंजना जी ने आप देश का ज्वलंत मुद्दा उठाया छात्रों का भविष्य के लिए, इसलिए उसको बधाई देना चाह रहा था।
7: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, बहुत धन्यवाद। अगले दो कंटेस्टेंट्स आइए, तो मलुक नागर जी और प्रोफेसर विजय राठी अब इस विषय पर बोलेंगे। डेढ़ डेढ़ मिनट का समय आप दोनों को मिलेगा। मलुक नागर जी, आपका डेढ़ मिनट का इस विषय पर बोलने का समय शुरू होता है अब।
10: देखिए अभी हमारे साथी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल के गए हैं, अंजना जी आपने उनसे पूछा कि क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व क्या खतरे में है, उन्होंने कहा सभी खतरे में है। एडमिट फैक्ट है कि उन्होंने बात स्वीकार कर ली, और जहां तक एनडीए की बात है, मोदी जी के नेतृत्व में सारे छोटे दलों ने तरक्की करी है, पूरे देश में एक भी दल ऐसा नहीं है जिसने तरक्की ना करी हो, और जब प्रदेशों के चुनाव होते हैं एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां एनडीए में भाजपा और क्षेत्रीय दलों के साथ लड़ाई होती हो, और अंजना जी एक भी प्रदेश इस पूरे देश में ऐसा नहीं है जो पहले यूपीए और पिछले कुछ दिनों में सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन, उसकी जितनी भी साथी पार्टियां हैं सब आपस में लड़ती हैं, टकरती हैं, टूटती हैं, भिड़ती हैं, चूर चूर होती हैं, खत्म होती हैं। और एक उदाहरण सबसे बढ़िया, इस देश की बढ़िया दलित नेता मायावती जी कांग्रेस को सपोर्ट कर रही थी, राजस्थान में 6 विधायक थे, बगैर शर्त के उन्हें तोड़ के ले गए, डांका डाल के ले गए। उत्तराखंड में सपोर्ट करती थी, उनके 3 विधायक छीन के ले गए, 7 विधायक उनके मध्य प्रदेश में थे उन्हें छीन के ले गए। इनकी सोच ये रहती है, ये सारी पार्टियां हम में से निकली हैं, क्षेत्रीय दलों को ये लोग खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए खुद ही खत्म हो गए हैं और खुद ही क्षेत्रीय दल बन रहे हैं, सुधरे नहीं तो इनसे भी ज्यादा इनका नुकसान भुगतना पड़ेगा। जो
0: समय समाप्त हुआ, मिडिल ऑर्डर ने भी अच्छी बल्लेबाजी की है। चलिए अब आपकी बारी है, आप लाल गमछा पहने तो उम्मीद है कि इधर वाले भी और इधर वाले भी दोनों ताली बजाएंगे आपके लिए। आपका 1.5 मिनट का समय इस पर बोलने का प्रोफेसर साहब, शुरू होता है।
11: दोनों ही हम लोगों के अपने हैं। देखिए मैं एक चीज बता दूं आपसे, भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करेंगे लेकिन अगर इतिहास को आप उठाएं, इतिहास गवाह है कि राष्ट्रीय पार्टी हमेशा जब बढ़ती है वो क्षेत्रीय पार्टी के कंधे पे चढ़ के बढ़ती है। राष्ट्रीय पार्टी का बढ़ना ही तब उस समय की राष्ट्रीय पार्टी का बढ़ना ही तब होता है जब क्षेत्रीय पार्टी का कमजोर होना होता, और राष्ट्रीय पार्टी हमेशा कोशिश करती है कि क्षेत्रीय पार्टी को कमजोर करें। अगर आप इतिहास उठाइए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक तरीके से गठबंधन की शुरुआत की, लेकिन उस समय की भारतीय जनता पार्टी और आज देखिए, आप उत्तर से शुरू कीजिए, उत्तर से पश्चिम, पूर्व, दक्षिण कहीं चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी पार्टी को निगलने का काम किया। शिवसेना का क्या हाल है? शिवसेना के 2 फाड़ कर दिए। बीजू जनता दल का क्या हाल है? नवीन पटनायक जी कहां हैं? इनके साथ थे। उसके बाद महाराष्ट्र में आए शरद पवार जी की पार्टी के क्या हाल हैं? और अभी अगर मैं पश्चिम की बात करूं, राष्ट्रीय लोकदल जिसका वोट बैंक इंटैक्ट, देखिए मेनली किसानों के नेता थे हम सबके, हमारे पूर्वज थे, लेकिन मेनली जाट प्लस मुस्लिम, अब क्या किया अपने साथ मिला लिया, अगर वापस आएंगे तो मुस्लिम नहीं मिलने वाला, और दूसरा जाट कुछ मिलेंगे, कुछ नहीं बचा, मजबूरी है, रहना पड़ेगा। आज का सबसे लास्ट वाला जो है वो यही है कि राष्ट्रीय लोकदल भी एक तरीके से खत्म होने की कगार पे है। और उदाहरण देखिए, उड़ीसा देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, कश्मीर देख लीजिए, पीडीपी कहां है आज? कहीं नहीं है। जितने उदाहरण हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के, बिहार देख लीजिए, रामविलास पासवान जी की पार्टी का क्या हुआ, कहां है आज वो? अगर अलग घटेंगे तो खत्म है, और किसी राज्य में जाइए।
0: समय समाप्त हुआ, जबरदस्त, बहुत अच्छा, मिडिल ऑर्डर ने दोनों तरफ से बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की।
11: भारतीय जनता पार्टी के जो
0: कुछ कुछ सवाल, हाँ, बिल्कुल प्रश्न मिलेंगे इनका, तो क्या है दोनों तरफ खुश रहते हैं, कभी उधर चले जाते हैं फिर जो सत्ता में आए थे इधर आ जाते हैं।
4: ये राठी जी से मेरा सवाल है कि समाजवादी पार्टी क्या प्रवक्ता है, और ये सही है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जो ज्यादातर वोट बैंक जो लिया वो कांग्रेस का एक बड़ा हिस्सा लिया उन्होंने, तो आप कांग्रेस से गठबंधन भी करते हैं और आपको कांग्रेस से डर भी लगता है, तो क्या राष्ट्रीय पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियों के लिए खतरा है?
11: नहीं देखिए, राष्ट्रीय पार्टियां खतरे की बात नहीं है, बात यह है जब दोस्ती होती है तो ईमानदारी से होनी चाहिए। दोस्ती में अगर आप कुछ ऐसी चीजें शुरू करेंगे तोड़फोड़ की, तो उस चीजों पर हम लोग हमेशा सावधान रहते हैं। दूसरी बात मैं बता दूं, एक सवाल यह भी रहता है इसी के साथ में कि हमें तो खतरा किसी पार्टी से नहीं है, और इसलिए नहीं है क्योंकि जो हमारी पार्टी का वोट बैंक है वो इंटैक्ट है, और वो पॉलिटिकली कनेक्टेड नहीं है, दे आर कनेक्टेड इमोशनली एज वेल। अखिलेश यादव जी एक विचारधारा है, जो भी व्यक्ति उनसे मिलता है या जाता है वो पॉलिटिकली कनेक्टेड नहीं होता। ऐसा नहीं है 90% की सब लोगों को विधायक एमएलसी बनना, सब लोग नहीं मांगते। और राजनीति में जो भैया के नाम से मशहूर है कि भैया मिल जाए एक बार और दिख जाए या बात कर ले, वो अखिलेश यादव जी हैं। और उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि जो लोकल स्तर पे है, आप गांव में जाइए, गांव के प्रधान से मिलिए, बीडीसी से मिलिए, लोगों से मिलिए, वो आज भी समाजवादी में है, बहुत सारे लोग जोर लगा रहे हैं उस पर। पश्चिम में भी आप आ जाइए, वो कहते हैं हमें पसंद ही नहीं है दूसरी पार्टी, हमें जाना ही नहीं है, समाजवादी सरकार में हो या नहीं है हमें तो रहना ही नहीं के साथ है, हमें इनसे कुछ चाहिए भी नहीं। तो आने वाले टाइम में भविष्य में कोई सी पार्टी टूट जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी जिंदगी में ना टूटेगी और ना इसके कार्यकर्ता नेताओं के ये लोग अपने पास ला सकते हैं।
0: आप या
9: मैं पूछ रहा था, आपके क्षेत्रीय दलों का क्यों अस्तित्व क्यों ना खत्म हो जाए? क्योंकि आप लोगों के पास में कोई विजन नहीं रहती, एक तो विचारधारा नहीं रहती, दूसरी बात विदेश मतलब पॉलिसी का मामला हो, वित्तीय मामले हो, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, भाषा की बात हो, इन सब में क्षेत्रीय दल सिर्फ अपनी क्षेत्रीय सोच रहती है, उनकी राष्ट्रीय सोच ही नहीं होती।
10: जहां तक हमारी बात है, चौधरी चरण सिंह केवल एक ही देश में नेता हुआ जिसे किसानों का देवता, किसानों का मसीहा कहते हैं, और माननीय मुलायम सिंह जी ने उनका आशीर्वाद लेके शुरुआत करी। तो जो आरएलडी की बात है, जो सपा के साथी कह रहे हैं खत्म होने की, छोड़ दो, भूल जाओ, चौधरी जयंत जी के रूप में चौधरी चरण सिंह का अवतार आ गया है। और विदेश पॉलिसी पे जिस तरह चौधरी जयंत जी अंग्रेजी में बोलते हैं, विदेशों में जाके जिस तरह चौधरी जयंत जी भाषण करते हैं, विदेश नीति किसान नीति का संगम ऐसा कोई नहीं है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश और अब तो राजस्थान में भी हमारे एमएलए हैं, बिल्कुल कांग्रेस और समाजवादी चौकन्ने हो जाओ। मोदी जी के नेतृत्व, मोदी जी चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, झंडा गाड़ देंगे पूरे देश में और यूपी सपा और कांग्रेस को पूरी तरह उखाड़ देंगे।
11: अच्छा, हमारे जाटों से अलग
7: नेताजी के सामने मार्क्स तो इन्होंने अच्छे बना लिए, ज्यादा बड़ाई उन्हीं की कर ली।
11: दो सेकंड,
7: एक बार एक सवाल हो जाए उस पर आप जवाब दे दीजिए।
6: सवाल नहीं है, अब ये दिख रहा है कि चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, हमको देश में घुल मिल के रहना चाहिए, राजनीतिक पार्टियों को भी मिल के रहना चाहिए, घुलना नहीं चाहिए। जो भी घुलते हैं ना वो थोड़े से कमजोर हो जाते हैं, ये सत्य है। और इसको स्वीकार नागर साहब करें ना करें, बशीर बद्र साहब, अभी उनका इंतकाल हो गया पिछले हफ्ते, उन्होंने कहा था कि बड़े लोगों से मिलना तो हमेशा फासला रखना, जो दरिया समंदर में मिला तो दरिया नहीं रहता।
7: क्या बात है,
10: उनकी बात से ऐसा लगता है कि यूपी में सपा घुलेगी या कांग्रेस घुलेगी ये तो वक्त बताएगा। क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस है यूपी में या सपा है ये तो वक्त बताएगा, पर तो दोनों का धुआं उड़ने वाला।
7: दो
11: सेकंड में एक सवाल मैं भी पूछ लूं। अगर किसी तरीके से राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी से अलग हो जाए तो बस मुझे ये बताइए, कुछ अगर हमसे थोड़े से दूर जाके उनसे अलग कौन वोट देगा आपको, एक बार बताइए सबको। अगर बीजेपी से अलग हो जाए,
10: शायद पता नहीं है, इस देश में 80% लोग किसान हैं और किसानों से जुड़े हुए हैं, किसानी से जुड़े हुए हैं। और चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों के लिए जो किया है, मुलायम सिंह जी ने उनका आशीर्वाद लेकर के समाजवादी शुरुआत करी है, तो चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा जैन
11: तो किसान कानूनों की भी
10: मोदी जी के नेतृत्व में साथ आकर के जिस तरह काम कर रहे हैं,
11: किसान कानूनों की भी सपोर्ट कर रहे थे आप लोग, कह रहे थे किसान कानूनों पे जो किसान बैठे वो भी नहीं बैठने चाहिए,
10: इसका सुपड़ा साहब पूरे देश से।
11: अच्छा, आप बोल रहे थे किसान नहीं बैठने चाहिए थे किसान कानूनों पे, अब तो आप सरकार की तारीफ कर रहे हैं, उस समय कह रहे थे किसान ठीक बैठे, तो पहले आप सही थे कि अब आप सही हैं?
10: हमारे साथी प्रोफेसर हैं, ये थोड़ा उम्र में भी कच्चे हैं, इनको समझ नहीं आती है राजनीति दो तरीके से होती है। जब सरकार के साथ होते हैं तो अंदर बैठ के किसानों के हितों की रक्षा करी जाती है, और जब विपक्ष में होते हैं तो सड़क पर टकर के जूझ के भिड़ के ठोक के जब राजनीति की जाती
11: है। आपसे बोल रहा हूं मैं, बस दो सेकंड आपसे मेरा सवाल नहीं है, आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग फैसला करिए।
10: 4 सेकंड
11: इन्होंने कहा कि जब कांग्रेस से बचो और विपक्ष में
7: जाएगी,
10: 4 सेकंड
7: पर
10: कांग्रेस से बचो, कांग्रेस छटक जाएगी तुम्हें, कांग्रेस तुम्हारे पीछे लगी हुई है यूपी में।
4: नागर जी, अब ये तो कवाली होती रहेगी,
7: कवाली चलेगी।
4: एक मेरा सवाल है, गंभीर सवाल है, चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा थे, अजीत सिंह जी उनके बेटे थे, जयंत चौधरी उनके वारिस हैं, और किसान 80% है देश में, लेकिन आपकी जो पार्टी है वो क्षेत्रीय से भी रहकर जिले की पार्टी क्यों बन के रह गई, दो जिलों की?
10: देखिए, अगर राजस्थान में हमारा विधायक है और हमारे आज की तारीख में 11 विधायक हैं और 3 MP हैं, और उसे आप जिले की पार्टी कह रहे हो, तो मैं आपकी बात को काट तो सकता नहीं, पर आपकी बात से सहमत नहीं हूं।
7: ओफो, आज तो अलग ही फॉर्म में है। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर मलुक नागर, जाइए बैठिए, आइए। बहुत अच्छा बोला प्रोफेसर साहब ने भी, दोनों के लिए जबरदस्त तालियां। अब आ रहे हैं तिवारी जी और वाजपेयी जी, आइए।
4: लेकिन अंजना जी, जो नए खिलाड़ी आते हैं आपके यहाँ, पिछले उसमें भी थे, वो कुछ नई खोज कुछ ज्यादा
7: नई खोज ज्यादा लाते हैं मलुक जी, लेकिन पुराने खिलाड़ी हैं। मलुक जी बहुत पुराने खिलाड़ी हैं भाई, संसद में एकदम कूद गए थे जब ऐसी स्थिति आई तो। अरविंद वाजपेयी जी, इस विषय पर बोलने का, क्योंकि अरविंद जी आप भी पहले चिराग जी के साथ थे, अब यहाँ पर हैं, तो आपने तो सारा दुख देखा ही हुआ है, तो आप बोलिए भाई, 1.5 मिनट आपका समय, 90 सेकंड का शुरू हो रहा है वाजपेयी जी। आप
12: देखिए, डेमोक्रेसी में राजनीति करना या राजनीतिक पार्टी बनाने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, और आज की डेट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास 2800 पार्टियां रजिस्टर्ड है पूरे देश में, और उसमें से 8 या 9 या 10 पार्टियां नेशनल पार्टियां जो रिकॉग्नाइज भी हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे? क्षेत्रीय दल खत्म होंगे, राष्ट्रीय दल खत्म होंगे, ये जनता डिसाइड करेगी। जनता जनार्दन बैठी हुई है। अगर क्षेत्रीय दल की पॉलिसी अच्छी है, ये भी गलत कहना होगा कि क्षेत्रीय दल का विजन क्षेत्र तक है। नहीं, बड़े बड़े नेता हुए, मुलायम सिंह का नाम है, रामविलास पासवान का नाम है, जॉर्ज फर्नांडिस का नाम है, बहुत से नाम है। तो विजन तो सब पार्टियों का होता है, लेकिन किस पार्टी की क्या कंडक्ट रहा है और जनता के लिए उसका क्या विजन है, जनता के लिए जब वो सत्ता में आते हैं तब वो पार्टियां क्या काम करती हैं, ये देखने की बात होती है। और उसी के हिसाब से क्षेत्रीय पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियों को वोट मिला करता है। अब सवाल ये दूसरा है कि आज की क्या स्थिति है। देखिए, एक स्थिति तो तय है कि कांग्रेस का 88 में जब वीपी सिंह निकल के आए बाहर, तो वीपी सिंह के आने के बाद क्षेत्रीय दल की एंट्री शुरू होती है और कांग्रेस का वोट लग के क्षेत्रीय दल बने, चाहे वो लालू यादव हैं, चाहे मुलायम सिंह यादव हैं, चाहे बीजू पटनायक हैं, चाहे और जितने भी दल हैं, वो सब उसके बाद बने। और कितने सर्वाइव कर रहे हैं, सभी पार्टियां सर्वाइव कर रही हैं। लेकिन अब दूसरा विषय है कि गठबंधन किसके साथ है, एनडीए के साथ है या कांग्रेस के साथ?
0: समय समाप्त।
12: तो कांग्रेस का जहां तक सवाल है,
0: जल्दी जल्दी एक लाइन,
12: कांग्रेस का जहां तक सवाल है, उनके साथ जो पार्टियां हैं, कांग्रेस उनका वोट वापस लेना चाहती है, ये सबसे बड़ी विडंबना है।
0: ठीक है,
12: तो उनके
0: ठीक है, टाइम खत्म हुआ। इनको भी दोनों तरफ का अनुभव है। चलिए, अब आरजेडी की तरफ से तिलकधारी मृत्युंजय तिवारी अब बोलेंगे 90 सेकंड के लिए, बोलिए।
13: देखिए, क्षेत्रीय दलों की अपनी अहमियत है और क्षेत्रीय दलों की अहमियत को कोई नकार नहीं सकता है, ये भी सच्चाई है। ये ठीक है कि समय के साथ साथ गठबंधन बदलते रहते हैं। जो बहुत लोग अभी एनडीए के साथ हैं, वो कभी हमारे साथ भी इंडिया गठबंधन में थे, चाहे जेडीयू हो, चाहे चिराग पासवान जी की पार्टी हो। तो इस तरह से जो परिस्थितियां देश में उत्पन्न होती है, तो जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी ताकत को अगर कोई नज़रअंदाज करता है तो फिर उसे मुंह की खानी पड़ती है। अगर बिहार में बीजेपी को हैसियत नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन अकेले बीजेपी चुनाव वहां नहीं लड़ सकती है, छोटे छोटे कई दल आज जिस पार्टी में वाजपेयी, तो फिर उसे मुंह की खानी पड़ती है। अगर बिहार में बीजेपी को हैसियत नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन अकेले बीजेपी चुनाव वहां नहीं लड़ सकती है, छोटे छोटे कई दल आज जिस पार्टी में वाजपेयी जी हैं, चाहे छोटे छोटे दलों को मिलाकर वो लड़ाई लड़ते हैं। आज भी राष्ट्रीय जनता दल को सीट भले हमें कम मिला हो, लेकिन 1,90,00,000 वोट बिहार में तेजस्वी जी को मिला है। तो हमारी ये ताकत है हर जगह पर। तो क्षेत्रीय दल को अगर कोई नजरअंदाज करता है तो समय और परिस्थितियों के अनुसार उनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए लालू जी लगातार इस बात को लेकर के कहते रहे हैं कि सबको मिलकर के संयुक्त मोर्चा बना हो, चाहे इंडिया गठबंधन बना हो, बिहार से ही बना, मिलकर लड़ेंगे तो भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। ये हमारे वोट के बिखराव का फायदा इनको मिलता है।
0: तो तिवारी जी खुद ही मान रहे हैं कि हमारा जो बिखराव है वो भाजपा को फायदा पहुंचाता है। सवाल ताओ आपसे शुरू करते हैं इस बार।
5: मैं पूछूं तिवारी जी, ये बताइए, ये क्षेत्रीय दल का पूरा ये परिवारवाद के इर्द गिर्द होती है, तो क्या परिवारवाद क्षेत्रीय दलों का सबसे बड़ा अभिशाप है?
13: अब तो परिवारवाद पर हमारे धुर विरोधी जो बीजेपी है उनको तो कम से कम बोलने का नैतिक बल नहीं होना चाहिए। बिहार में आपने देख लिया, लंबी फहरिस्त है ये सरकार जो बनी है अभी, उसमें जो आदरणीय नीतीश कुमार जी बोलते थे परिवारवाद पर, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते थे, सारे लोग कौन है? बीजेपी का लंबा लिस्ट है। कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। हम क्षेत्रीय दल हैं, लेकिन हम राष्ट्रीय दल कांग्रेस के साथ आज लोकतंत्र को, संविधान को, देश को बचाने के लिए साथ में है, और हम हाथ और गले मिलाकर नहीं, दिल मिलाकर लड़ रहे हैं। लेकिन जो हमारे विरोधी हमारे ऊपर एक उंगली दिखाते हैं, तो उनके ऊपर भी चार उंगली उठ रही है परिवारवाद पर, भ्रष्टाचार पर। अब किस मुंह से वो परिवारवाद पर ज्ञान देंगे?
0: ताओ
6: नहीं, परिवारवाद पर किदवई साहब तो भाजपा के नहीं है, यहाँ जज बन
13: भाजपा के, हम इनको नहीं बोल
6: सरकार है,
13: ये तो न्यायमूर्ति है।
6: भाजपा वाले पूछ नहीं रहे, पर देखिए वो जो परिवारवाद होता है ना, वो होता है राजा का बेटा राजा बने, तो सिपाही का बेटा सिपाही बने, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, तो वो परिवारवाद नहीं कहलाता। मालिक के सत्ता का हस्तांतरण अगर उनके बच्चों में होता है तभी परिवारवाद होता है, बाकी तो फिर जर्नलिस्ट के बेटे जर्नलिस्ट बन जाए तो परिवारवाद नहीं।
14: बाकी जो भी पार्टियां हैं बिहार में आज सरकार में हैं एनडीए में, आप एक एक कर सब के बारे में आप जानते भी।
4: तिवारी जी, जी ताऊ के बात को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। दो तरह का परिवारवाद है, एक है रिटेल एक होलसेल। तो रिटेल वाला तो बहुत दिखाई पड़ता है फुटकर कि उनके बेटे एमएलए के बेटे एमएलए बन गए, एमपी बेटे एमपी। एक होलसेल की जो राजा का बेटा राजा बने, पार्टी पूरी जो है परिवार के कब्जे में रहे।
14: आप होलसेल रिटेल की बात कर रहे हैं, वहां तो एनडीए में सीएनएफ है, आप होलसेल रिटेल में कहां जा रहे हैं। आप हमारे ऊपर जो चार्ज कर रहे हैं हमारी पार्टी के ऊपर, तो जनता से चुनकर आए तेजस्वी जी, जनता से चुनकर आई मीसा भारती जी, जनता से चुनकर आई तेज प्रताप जी, जनता से चुनकर आई राबड़ी देवी जी। वहां बताइए तो सदस्य भी नहीं थे, सीधे शपथ ले लिया। ये कौन सा परिवारवाद का परिभाषा आप होलसेल रिटेल की बात, सीएनएफ है। तो इसलिए ये अब बोलने का दोहरा मापदंड नहीं चल सकता है।
7: चलिए तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहले दोनों गेस्ट यहाँ पर आ जाए, मैं एक एक सवाल भी तीनों हिस्से से लेती हूँ। आइए,
15: हम तो यही कहेंगे समय का पहिया है, चलता रहता है। आज आपका है, कल उनका होगा, परसों किनका होगा, ये तो मुझे भी नहीं पता है। इसलिए
7: शायरी के मूड में सफेद गमछे के साथ एकदम मोक्ष प्राप्त कर चुके हो।
15: हाँ, हम तो मोक्षी हैं, नहीं न्यूट्रल ही हैं, सभी अच्छे हैं, सभी आगे बढ़े,
7: सब अच्छे हैं, सब आगे।
15: हाँ सभी हम भी आगे बढ़े।
7: सवाल तो था ही ना, लाल हिस्से से कौन बोलेगा? नहीं, बच्चों को मौका दीजिए, आप आइए बच्चे, आइए आइए आगे।
16: सर, जो आप बार बार ये पार्टी बदल रहे हैं, तो आप अपने सिद्धांत के लिए बदल रहे हैं या फिर राजनीति के लिए बदल रहे हैं?
7: किससे पूछ रही हैं आप? ये दोनों अब तो रीजनल पार्टी वाले चले गए, ठीक है, वो अगले राउंड में रिबटल राउंड में आप लोग जवाब दीजिएगा। अब एक इस हिस्से से, नीले हिस्से से कौन बोलेगा?
17: ये हमारे देश में है कि जो अलोकतांत्रिक पार्टी सिस्टम है, मतलब कि एक आदमी ही पार्टी बनाता है, वो इसका सब कुछ है, वो देश का लोकतंत्र चला रहा है, क्या ये ठीक बात है? कम से कम पार्टी के अंदर भी तो चुनाव होने चाहिए। क्षेत्रीय पार्टी कैसे बनती है? वो तो मतलब एक एक इंसान के उस पर है कि उसका एक पार्टी से नहीं दिल भरा तो उसने अपनी पार्टी बना ली और बाद में वही पार्टी का होलसेल रहता है, चेंज नहीं होती वो पार्टी।
7: रीजनल पार्टीज तो ऐसे ही हैं ज्यादातर, अगर आप देखिए तो उनमें एक परिवार का पार्टी जो है ना, वो पार्टी उनकी हो जाती है, परिवार लिमिटेड नहीं। धीरे से तिवारी जी मुस्कुरा भी रहे हैं, क्या बोले? अब हम लोग उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब तिवारी जी भी अध्यक्ष बनेंगे अपनी पार्टी। आपका एक मिनट का रिबटल टाइम शुरू होता है, शुक्ला जी। अब
2: देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो है क्षेत्रीय दलों के विस्तार को बढ़ाने का काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी जितने साथी रहे उनका विकास हुआ। बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस की साथी थी, बहुजन समाज पार्टी समाप्त। टीएमसी साथी थी, टीएमसी विखंडन के दौर पर। कम्युनिस्ट पार्टी उनके बहुत साथी थे, 2004 की सरकार उनके कारण थी, कम्युनिस्ट पार्टी पूरी तरह से साफ। डीएमके इनके साथी थे, डीएमके का बंटाधार, शरद पवार की पार्टी का बंटाधार, उद्धव ठाकरे की पार्टी का बंटाधार। और जो समाजवादी पार्टी है, ये समाजवादी पार्टी तो भाई 2009 तक, भाई 2006 में श्रीमती सोनिया गांधी ने क्यों त्यागपत्र दिया था? क्योंकि मुलायम सिंह यादव के यहां से जो है हमले हो रहे थे, और डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस, विश्वनाथ चतुर्वेदी कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्ता और हैदरगढ़ से कांग्रेस का प्रत्याशी आदरणीय राजनाथ सिंह जी के खिलाफ, उसने जो है बेहिसाबी संपत्ति का मामला दर्ज कराया और सीबीआई के डंडा चलवाए। ये साथी हैं, गजब के भाई हैं।
7: समय समाप्त हुआ, जबरदस्त। अब आप मोर्चा संभालिए, रिबटल राउंड में आपका एक मिनट का समय शुरू होता है।
18: देखिए अंजना जी, यहाँ पे भाजपा प्रवक्ता, सॉरी, इनसे पहले जो नागर जी और वाजपेयी जी थे, उन्होंने कांग्रेस को बहुत बार प्यार से बुलाया कि कांग्रेस है कांग्रेस। मैं इनको एक बात बोलना चाहता हूँ, युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। तो रण से भागे हैं या प्रण से प्रण को तोड़ा है, सत्ता की खातिर एक बता देंगे। बात आज ये है कि कांग्रेस वर्सेस और बीजेपी का नहीं है, बात आज है कि राष्ट्रीय दलों के साथ क्षेत्रीय दलों का संवाद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो मैं कहता हूं ये लोकतंत्र है, जितना ज्यादा विकल्प रहेगा उतना ज्यादा अच्छे रहेंगे। कल को अगर ये ऑप्शन दिया जाए, देश में दो ही चैनल होने चाहिए, सारे पत्रकारों की काम धंधा चौपट कर दो, तो क्या कहां जाएगा देश?
8: सारे पत्रकार, सारे चैनल, सारे मीडिया, सब कुछ होना चाहिए इस देश में। जितने ज्यादा दल होंगे उतने ज्यादा आपके लिए ऑप्शंस होंगे। बात है कि भाजपा का एकाधिकार करना चाहती है, सत्ता के केंद्र में रहना चाहती है, किसानों के ऊपर कब्जा चाहती है, व्यापारियों के ऊपर कब्जा चाहती है, छात्रों के ऊपर कब्जा चाहती है। तो जो कब्जा करने की मानसिकता है उसका एक ही जवाब है कि सारे क्षेत्रीय दलों को अपने लिए लड़ना होगा, खड़े होना होगा।
7: दोनों ने धमाकेदार तरीके से जवाब दिया। आप दोनों जाइए, अगले दोनों कंटेस्टेंट्स को बुलाते हैं। आइए नागर जी, आइए, पिच तैयार है, फिर से आइए। प्रोफेसर साहब आप इधर आइए। अब रिबटल राउंड में कुछ सवाल अगर आपका है स्पेसिफिक इनसे, विनोद जी आप पूछ नहीं पाते, पूछिए राशिद जी।
9: प्रोफेसर राठी साहब, ये बताएंगे आप, ये जो कॉकरोच जनता दल है, ये राष्ट्रीय जनता पार्टी जो है, ये राष्ट्रीय है या क्षेत्रीय है?
7: अभी क्या बताएं उसके, मतलब अभी तो सबको समझ नहीं
9: आ रहा है।
7: एक, एक, एक, एक, एक, एक साथ रिबटल राउंड में 60 सेकंड्स आपका शुरू होता है। अब
10: देखिए, जो हमारे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल करके गए हैं आरएलडी के बारे में और हमारे बारे में, तो इससे ये तो बिल्कुल क्लियर कट हो गया कि वो भी मानते हैं कि हम मजबूत स्थिति में हैं और हम आने वाले समय में मजबूत रहेंगे और हमें कोई खतरा नहीं है कांग्रेस की बात से, जिस तरह उन्होंने पलटवार हम पे करा। जहां तक बात कांग्रेस की है, ये खुद कन्फ्यूजन, 3 साल तक अध्यक्ष नहीं रहा इनका, वहां पे हमारे साथ पार्लियामेंट में एलओपी राष्ट्र की पत्नी बोलता था महामहिम राष्ट्रपति को, और जिस दिन खड़गे साहब बने सनातन धर्म के खिलाफ बोले, इनके नेता क्या क्या बयान देते हैं, इनमें ग्रुप G23 बने, इनमें कोई प्रियंका गांधी जी को नेता कहते हैं, कुछ राहुल गांधी जी को नेता कहते हैं। जिस भी प्रदेश में लड़ाई होती है ये क्षेत्रीय दल से लड़ते हैं, एनडीए से लड़ते ही नहीं है, और यही कारण है 8.5% में सुकड़ के रह गए हैं और इनका बिल्कुल कोई भी अब साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। ये जो कह रहे थे छोड़ के, अरे नीतीश जी छोड़ के चले गए, आपके बस का ही नहीं है, आज भी सो कॉल्ड इंडिया बिखर रहा है, टूट रहा है, जुड़ रहा है, तुम्हें रह के करें क्या?
7: चलिए आपका समय शुरू होता है 1 मिनट का। अब
11: देखिए, ऐसा है कि सीधा सीधा क्लियर कट अगर बोले कि राष्ट्रीय पार्टी बढ़िया है, रीजनल पार्टी, इसका कोई जवाब नहीं है। राजनीतिक विज्ञान में हम लोग पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी की भी अच्छाइयां हैं और उसकी भी कमियां हैं, और रीजनल पार्टी की भी अच्छाइयां और उसकी कमियां हैं। हमें देखना है होता है कि कौन सी पार्टी अच्छा काम कर रही। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आज जिन मुद्दों को लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं, और जो अभी कॉकरोच पार्टी की जिसकी बात कर रहे थे, ये एक सेंटिमेंट से, ये इमोशन से उन लोगों के बीच में, अभी मैं देख रहा था परसों फिर एक लड़की ने आत्महत्या कर ली है लेटर लिख के कि मैं दोबारा से नीट का एग्जाम नहीं दे सकती। इस पर चर्चा ही नहीं है देश में। देश में चर्चा किस चीज पे है? चर्चा उस चीज पे है जो पढ़ाई से बिल्कुल अलग है। बीजेपी के कोई नेता आप देख लो, मैं ये नहीं कह रहा कौन अच्छा है कौन बुरा है, लेकिन ये तो सच बात है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पढ़ाई की बात ही नहीं करते, कोई थ्योरी की बात ही नहीं करते, ना फिजिक्स की बात है, ना केमिस्ट्री की बात है, ना बायोलॉजी की बात है, ना इकोनॉमिक्स की बात है, ना ज्योग्राफी की बात है, कोई बात ही नहीं है। बात सिर्फ हिंदू मुसलमान हो रही है, इसी से जीविका चलती है क्या? मैं तो देखता हूँ घर में जब भी हम लोग जाते हैं लोगों के, वो पढ़ाई की नौकरी की बात करते हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, लेकिन वास्तविकता है नौकरी और पढ़ाई, और उस पे समाजवादी पार्टी ने काम किया है और हम लोग करेंगे, इसलिए रीजनल पार्टी यूपी में बढ़िया।
7: बहुत धन्यवाद। आखिरी दो पार्टिसिपेंट जल्दी से आ जाइए, तिवारी जी और वाजपेयी जी। वाजपेयी जी, आपका रिबटल राउंड में 1 मिनट का समय इस विषय पर बोलने का, और जितने सवाल बच्चों के भी आए हैं उन्होंने भी पार्टी को लेकर पूछा है, कई चीजों पर कहा है, और इनके भी सवाल है, उन सब पर जवाब देने का आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है।
12: देखिए, मेरा जो मैंने पहले कहा उसी बात पे स्टैंड करता हूँ कि सवाल क्षेत्रीय पार्टियों के सर्वाइवल का नहीं है, सवाल इस बात का है कि गठबंधन कौन सा सर्वाइव कर रहा है, गठबंधन कौन सा देश की जनता की सेवा कर रहा है, या किसके गठबंधन में पार्टियां ज्यादा सेफ है। तो ये बड़ा साफ है कि कांग्रेस अपने गठबंधन को ना बचा पा रही है, ना चला पा रही है, और आपस में ही लड़े जा रहे हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि कांग्रेस की अपनी समस्या है, कांग्रेस का वोट रीजनल पार्टियां ले गई थी 88 में, उसको वापस लेने की इनकी जो मुश्किल है और जो इनकी इच्छा है उसकी वजह से इनका गठबंधन सरवाइव नहीं कर पा रहा है। इसीलिए इनकी गठबंधन में कभी कोई मीटिंग नहीं होती, कभी कोई पार्टी की बात नहीं होती, कभी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं होता, कभी सीट एडजस्टमेंट नहीं होती। और दूसरी तरफ हमारा गठबंधन एनडीए का है, हम लोगों ने सर्वमान्य नेता माना है मोदी जी को, कहीं किसी तरह का कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई। जो गठबंधन की पार्टियां हैं आपस में सीट एडजस्टमेंट करती हैं, चुनाव लड़ती हैं, जीत के आती हैं, तो हम लोगों का भविष्य सर्वथा सुरक्षित है, ये मान के चलना।
7: समय समाप्त हुआ, बहुत अच्छा। चलिए आपका 60 सेकंड का समय शुरू होता है।
14: देखिए, गठबंधन आज समय का मांग है, और हमारा गठबंधन जो है वो देश हित में लड़ रहा है, लेकिन बीजेपी का तो गठबंधन असली चुनाव आयोग से है,
13: अब क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने की मंशा बीजेपी पाल कर रखी हुई है और हर एक क्षेत्रीय दल के नेता इस बात की आशंका से जूझ रहे हैं कि आज न कल बीजेपी उन्हें खा लेगी। चाहे बहुत सारे उदाहरण हैं, बीजेपी नहीं चाहती है कि क्षेत्रीय दल का अस्तित्व बचे, लेकिन जनता सब देख रही है। आज समय जब परिवर्तन होगा, समय जब बदलेगा, तो जिस तरह से जनता का जनसैलाब आएगा तो फिर पता चल जाएगा बीजेपी को भी। आज बिहार में ही देख लीजिए, छोटे छोटे दलों को लेकर के बीजेपी गठबंधन कर रही है। और एक समय था 2020 के चुनाव में जेडीयू को 41 पर ला दिया, खड़ा कर दिया, किस तरह से किया बीजेपी ने। तो बीजेपी अपने ही सहयोगियों को नहीं रहने देगी अस्तित्व में, यह तय है।
7: समय समाप्त हुआ, बहुत अच्छा। अच्छा, अब आप लोग दोनों यहीं खड़े रहिए। आप में से कोई ऐसा है जो गमछा बदलना चाहता है? अगर आपके पास ये मौका है, अगर आपको गमछा बदलना है, तो आप लाल या सफेद ले सकते हैं। और आप सफेद वालों के लिए भी ऑप्शन है, लाल वालों के लिए भी ऑप्शन है। इधर वाले बुला रहे हैं आपको, आप सफेद लेना चाहते हैं? ठीक है, लीजिए सफेद गमछा, लीजिए। इधर है सर, आइए सर, गमछा लीजिए। और भी जितनों को लेना है, घबराइए मत, आप लोग ले सकते हैं। इधर से, उधर से, बीच से, सफेद वाले गमछा लीजिए। सब शांति प्रिय हो रहे हैं भाई, सफेद की तरफ ज्यादा लोग जा रहे हैं। कितने लोगों ने सफेद गमछा लिया? ये लीजिए, ये सफेद वाले जा रहे हैं उधर लाल गमछा लेने। इतने गुस्से में काहे ले रहे हैं? चलिए, तो कितने लोगों ने बदल कर लाल गमछा लिया है? दो लोग। आपने भी मैम बदल कर लिया? हाथ उठा दीजिए, हाथ उठा दीजिए जिन्होंने बदल कर लाल गमछा लिया है। अच्छा, आपने भी? तीन लोग। और कितने लोगों ने सफेद गमछा ले लिया है? भाई ये मेरे शो में पहली बार हो रहा है कि सफेद गमछे वाले ज्यादा लोग आ जाए हैं, जिन्होंने पॉलिटिक्स देखकर कहा कि हो गया यार।
9: अंजना, क्षेत्रीय दलों का असर है,
7: हो गया।
4: अंजना जी,
9: ये क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय दलों की कामयाबी
4: आशंका है, कहीं कह नहीं सकते जीत जाए इस बार।
7: हाँ,
13: क्षेत्रीय दलों की कामयाबी
7: इतना तो नहीं होगा, इतना तो नहीं होगा, लेकिन अभी भी काफी संख्या में लाल और नीले गमछे वाले हैं। तो आप तीन दोनों अपनी जगह पर जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने बहुत अच्छा बोला। और अब मौका है जब हमारे तमाम दर्शक जो घर पर भी इस शो को देख रहे हैं, आप भी टेलीविजन स्क्रीन पर आपको जो QR कोड दिख रहा है उसको स्कैन करके आप अपना वोट डाल सकते हैं। और इस बीच जितनी ऑडियंस यहां पर है, आप भी फटाफट आपके सामने जो QR कोड है उसको स्कैन कीजिए। क्या क्षेत्रीय दलों का वजूद खतरे में है? अगर आप मानते हैं हाँ, तो आप टीम प्रेम शुक्ला के लिए वोट करेंगे, अगर आप हाँ पर क्लिक करते हैं। अगर आप मानते हैं नहीं, तो आप टीम दीपक झा के लिए वोट करेंगे नहीं पर। और कह नहीं सकते वालों को तो सफेद पंछी बनके कह नहीं सकते पर वोट डाल ही देना चाहिए।

0: चुनाव है जहां डेडिकेटेड लोग फेंसिटर हो गए।
1: हम सही बात कही आपने, पहली बार ऐसा हुआ है।
0: हाँ, कि लोग जो है व्हाइट वाले को बदलना था, व्हाइट यहाँ पे लोगों ने ले लिया।
1: हाँ।
0: तो एक तरह से कहिए कि डिबेट जो है वो असफल रहा है ना, चुनाव में, चुनाव में सारे नेता हारे।
2: एजेंसीज का दबाव भी तो नहीं था।
0: खैर, अगर देखिए चुनाव का जो निर्णय है वो शुक्ला जी के पक्ष में गया, पर मामला दीपक झा जी के पक्ष में गया, क्योंकि कम लोग मानते हैं कि खतरे में नहीं है।
1: हाँ।
0: है खतरे में, वो ज्यादा लोग मान रहे हैं।
1: हाँ। पर आज का बहसबाजी कर कुछ इसीलिए हमें
0: बाजीगर चुनने में जो है तकलीफ नहीं हुई। आज जो है हमारे जिन्होंने डेब्यू किया यहाँ पे, प्रोफेसर विजय राठी।
1: वाह, प्रोफेसर राठी बहुत अच्छा विषय पर रहे, बहुत अच्छा बोले, बहुत बहुत बधाई आपको। इसी के साथ बहस बाजीगर में आज के लिए इतना ही, अगले शनिवार आपसे फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए आज का।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
2: कूल फैंस के स्टाइलिश डिजाइन से घर की शान बढ़ाएं।
3: कूल फैंस जो दे आधी बिजली में ज्यादा हवा कम आवाज की है।
2: कूल फैंस स्मार्ट भी स्टाइलिश भी।
4: मैं करता हूँ ना,
5: मैं करूँगा।
6: ओए कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है?
4: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
6: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टे, डाइनिंग एंड मच मोर।
4: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB दोनों ही चैंपियन हैं।
6: PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड, PNB मेरा अपना बैंक।
7: ये थर्ड नहीं 13 डिग्री का केस है।
8: माल मैंने चुराया, शौचालय के पीछे पीपल के नीचे दबाया।
7: हवालात की हवा अच्छे अच्छों को सुधार देती है शुक्ला।
9: समर कूल कूलर,
7: हवा अच्छी है ठंडक सच्ची है। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: In association with
3: cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
4: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
5: Samakool cooler, hawa aisi chhode, puri family ko thandak se jode. Samakool cooler, life banaye wonderful.
2: Hint, bade aaram se. Vimal, bolo zubaan kesri.
6: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
7: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
8: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
7: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
2: थर्ड नहीं 13 डिग्री का केस है।
3: माल मैंने चुराया, शौचालय के पीछे पीपल के नीचे दबाया।
2: हवालात की हवा अच्छे अच्छों को सुधार देती है शुक्ला।
4: समर कूल कूलर,
2: हवा अच्छी है ठंडक सच्ची है। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: In association with
3: cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
4: Punjab National.
2: In association with
3: cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
4: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
5: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
2: हिंट, बड़े आराम से। विमल बोलो जुबां केसरी।
3: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?
6: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
7: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
6: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
8: जब उसके खिलाफ आज तक का कोई आपराधिक मुकदमा न्यायालय ने कभी सजा नहीं दी, न तो कभी चोरी में, न तो डकैती में, न तो इस तरीके के। फिर एक 302 का 307 का मुकदमा उसके ऊपर है और किसी ने का अपहरण का मुकदमा लिखा रखा है, जैसे SP ने कहा। तो इतना बड़ा तो दुर्दांत अपराधी नहीं है कि जिससे आप इनकाउंटर। अब मुख्य आरोपी उसको बनाया भी नहीं गया, मुख्य आरोपी कोई और है। मुख्य आरोपी को तो पकड़ने दूर है, वो छुएंगे नहीं। आज जो साधारण है, जो वोट अभी गाजीपुर हारे हैं, अब गाजीपुर में बिंदुओं की संख्या बहुत अधिक है, जौनपुर में बिंदुओं की संख्या अधिक है, प्रधानमंत्री के चारों तरफ के हम सारी सीटें हार गए हैं। ये अधिकारी क्या कर रहे हैं? ये फिर इसके मतलब इनका LIU क्या कर रहा था? कैसे समाज के लोगों ने आंदोलन किया, बताया क्यों नहीं? क्यों नहीं फोर्स लगाया इन लोगों ने? खाली जब आंदोलन हो गया तो कहेंगे आप राष्ट्र का लगा देंगे। ये तो डिटेक्टरशिप हो गई।
9: बहुत चुल मच रहा है कसम से। आज घर जाकर दहिया पूरे कपड़ा उतार के खुजाएंगे।
10: क्योंकि मैं आपकी खुजली को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा। आपका जो दर्द है सही है, तकलीफ सही है, जो आप इतने दिनों से अपने छोटे से दिल में लेके इतना बड़ा पहाड़ घूम रहे हो।
9: अधूरा प्यार ही
10: तो मैं दुनिया के सिम यार ठीक है मत दोहराओ।
11: बिजुरी आई गए।
10: हाँ थोड़ा और थोड़ा राइट। ओ थोड़ा राइट।
11: यह अब ही नसिया पाया भैया।
9: अरे थोड़ा सा और ऊपर।
11: अरे लेफ्ट बोल रहा हूँ।
9: हाँ यही खुजा जोर से।

परिषद के साथ मंथन, देशवासियों का जीवन आसान बनाने और आर्थिक दर को बढ़ाने पर चर्चा। समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उन पर हमला, कहा कि 2017 से पहले गुंडों के आगे नतमस्तक थी सरकार, राम का नाम लेने पर चलती थी गोलियां, अखिलेश का पलटवार, यूपी में महाजंगल राज। त्रिपुरा बॉर्डर सुरक्षा पर गृहमंत्री अमित शाह की समीक्षा बैठक, आर्थिक लेन देन और प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री पर पैनी नजर का निर्देश, कहा सीमा सुरक्षा सिर्फ बीएसएफ ने, पूरे प्रशासन की जिम्मेदारी। बंगाल सरकार ने मदरसों का शुरू किया सर्वेक्षण, 5 जुलाई तक मांगे रिपोर्ट, नियमों के तहत संचालन और जरूरी दस्तावेजों की जांच होगी। भारत की टी20 टीम में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की धमाकेदार एंट्री, आयरलैंड इंग्लैंड दौरे में मिली जगह, कप्तान बनाए गए श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव बाहर।

इस वक्त जब आप अपने घरों में बैठे हैं तब पृथ्वी के दो बड़े हिस्सों में बारूद से आसमान काला होता जा रहा है। सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि क्या दुनिया इतिहास के सबसे खतरनाक मुहाने पर खड़ी है और क्या हम एक साथ दो महाविनाशक युद्ध के गवाह बनने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा वॉर बुलेटिन। आज वॉर रूम ब्रेकिंग्स में हम आपको सीधे ले चलेंगे उन मोर्चों पर जहां फैसले अब डिप्लोमेसी की मेज पर नहीं बल्कि मिसाइलों के धमाकों से हो रहे हैं। खाड़ी के समुंदर में अमेरिका और ईरान के बीच शहबाद का नया खेल शुरू हो चुका है और दूसरी तरफ पुतिन के एक आदेश ने यूक्रेन को दहला दिया है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, यूक्रेन के ड्रोन अब मॉस्को की दहलीज लांग रहे हैं। वहीं इजराइल एक साथ कई मोर्चों पर चक्रव्यूह रच रहा है। शुरुआत करते हैं आज की पहली ब्रेकिंग न्यूज से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पश्चिमी एशिया से आ रही है। लेबनन में सीज फायर की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। इसराइल और हिजबुल्ला के बीच लड़ाई अब भी जारी है। अमेरिका की मध्यस्थता में समझौता जो तैयार हुआ उस पर भी अभी सवाल है। हिजबुल्ला ने सीज फायर की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि ईरान से शांति समझौते पर चल रही बातचीत के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई की तारीफ की है। उन्होंने इच्छा जताई है कि वो खामनेई से मुलाकात करना चाहते हैं, यानी कि वेस्ट एशिया में नया समीकरण बन रहा है।

0: कई दौर की बातचीत हो चुकी है, कई हमले और जवाबी हमले भी हो चुके हैं, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच संभावित डील पर अब तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई। वेस्ट एशिया में सीज फायर अब भी जारी है, लेकिन तनाव भी बना हुआ है। एक तरफ अमेरिका खाड़ी क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए हुए है, तो दूसरी तरफ ईरान भी लगातार सख्त रुख दिखा रहा है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने नई चर्चा छेड़ दी। ट्रंप ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई से मुलाकात को लेकर सकारात्मक संकेत दिए और उनकी कार्यशैली की तारीफ भी की।
1: I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be okay with it.
0: दिलचस्प बात यह है कि 28 फरवरी के हमले के बाद से ही मुज्तबा खामेनेई सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं, लेकिन ईरान की राजनीति और सुरक्षा से जुड़े फैसलों में उनकी भूमिका को लेकर लगातार चर्चाएं होती रही हैं। हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी संकेत दिए कि ईरान के शीर्ष नेतृत्व की गतिविधियों पर अमेरिका करीबी नजर बनाए हुए है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्रंप और मोजताबा खामेनेई की मुलाकात की कोई जमीनी तैयारी हो रही है, या फिर ये सिर्फ कूटनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है। फिलहाल डील पर सस्पेंस बरकरार है।
2: I think there are indications out there that he is increasingly engaging at some level, although all of his communications have been in writing and through intermediaries. The way to think about it is the following. You have the supreme leader, and understand that at the end of the day, the supreme leader in their system is, there really is no analogy to it in our system or anybody else's system. It is a theological office.
0: ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने ट्रंप के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और उनके इस बयान ने दोनों देशों के बीच जारी कूटनीतिक बातचीत पर नए सवाल खड़े कर दिए। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है हॉर्मुज से। ये दावा किया जा रहा है कि ईरानी बंदरगाहों पर लगी रोक के बाद से अमेरिका 129 जहाजों की आवाजाही रोक चुका है। ईरानी तेल से जुड़े प्रतिबंध भी अब तक हटाए नहीं गए हैं, यानी युद्ध विराम के बावजूद आर्थिक मोर्चे पर दबाव जारी है। इस तनाव का सबसे खतरनाक केंद्र बना हुआ है खाड़ी का पानी, वो समुन्दर जो दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक रास्ता है। वहां अब पानी कम बारूद ज्यादा नजर आ रहा है। एक तरफ बातचीत की मेज सजाने की कोशिश है, दूसरी तरफ समुन्दर में जंगी जहाजों की तैनाती है। दोनों ही तरफ से लगातार एक दूसरे के हितों को निशाना बनाना आम होता जा रहा है। सीज फायर अभी है, लेकिन पहले और दूसरे धमाकों के बीच, या कह लें हमले और जवाब के दरमियान, एक तरफ ईरान की मिसाइलें तैनात हैं, दूसरी तरफ अमेरिका की उंगली ट्रिगर पर है। क्या ये महज कूटनीति का दबाव है या फिर एक बहुत बड़े टकराव की आहट? सवाल है कि मिसाइल, ड्रोन और कूटनीति के बीच क्या है असली तस्वीर? क्या बातचीत सफल होगी या बढ़ेगा टकराव?

वेस्ट एशिया इस वक्त एक ऐसे दौराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ शांति की धुंधली सी उम्मीद है तो दूसरी तरफ एक भयानक युद्ध का मुहाना।

0: 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद से अमेरिका और ईरान दोनों ने संकेत दिए हैं कि वो ऑल आउट वॉर यानी पूर्ण युद्ध नहीं चाहते, लेकिन दोनों ही तरफ से हमले जारी हैं। और इस बीच ट्रंप ने नई चेतावनी दे दी है।
1: It is. It's a different part of the world. You know, I'd say in that part of the world, ceasefires when you're shooting in a more moderate manner.
0: अमेरिका ने ईरान से जुड़े ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए, तो जवाब में ईरान ने भी मिसाइलों और ड्रोनों से अमेरिकी ठिकानों और खाड़ी में उसके सहयोगियों को निशाना बनाया।

0: कुवैत के मुख्य एयरपोर्ट पर हुए एक ईरानी हमले में एक शख्स की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए। लेकिन इन खूनी झड़पों के बीच भी पर्दे के पीछे कूटनीति की सांसें चल रही हैं।
1: ईरान अपनी जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं ज्योग्राफिकली, कि उसको मालूम है कि उसके ऊपर बूट्स ऑफ ग्राउंड अमेरिका को रखना बहुत बहुत कठिन है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है ईरान को कि उसका उसको लग रहा है कि उसका पलड़ा भारी है, इसके बावजूद कि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है ईरान का। और अमेरिका का मानना है कि क्योंकि ईरान जो है सिर्फ तेल के ऊपर निर्भर है और वो सारा का सारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ही घेराबंदी कर दी जाए तो ईरान आज नहीं तो कल तो कहीं ना कहीं कैपिचुलेट करेगा, कहीं ना कहीं उसको घुटने टेकने पड़ेंगे। तो वो भी डिले कर रहा है, वो भी डिले कर रहा है। तो छोटी छोटी छोटी बातों के ऊपर जो डील है, जिसको डील कहने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, वो डील नहीं हो पा रहा है। बातचीत तो हो रही है, दोनों चाहते हैं कि लड़ाई ना हो, पर कब खत्म हो उसके ऊपर शायद किसी का नहीं है।
0: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये मोर्चा खोला था तब उनका और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का आकलन था कि उनकी हवाई ताकत ईरान के इस्लामी शासन को घुटनों पर ला देगी, लेकिन ये आकलन गलत साबित हुआ। दशकों से प्रतिबंध झेल रहे ईरान का प्रतिरोध कम नहीं हुआ।
2: जो एक मिथ बनाया हुआ था, एक उन्होंने जो बनाई हुई थी ऐसी कि छवि, वो इस बारी वो खराब हो गई अमेरिका की, क्योंकि उन सबका नुकसान हुआ और उनको ये पता लग गया कि अमेरिका हमें बाद में बचाएगा, इसराइल को पहले बचाएगा, और अगर हमें बचाएगा भी तो पूरी तरह से हमें सुरक्षित नहीं कर सकता, क्योंकि ईरान उनका नेबर है, बिल्कुल साथ में है, और किसी भी टाइम मिजाइल मारता और 2 मिनट लगते हैं वहां मिजाइल पहुंचने में, और कोई फूल प्रूफ सिक्योरिटी, आयरन डोम, पैट्रियोटिक मिसाइल्स कुछ नहीं काम करता। उस टाइम आपने कुवैत में अभी देखा, क्योंकि ड्रोन भी साथ में आते हैं। तो इसलिए अमेरिकन जो है उनके ऊपर थोड़ा विश्वास इन कंट्रीज को उठ गया है, और आप आते टाइम पे देखोगे सब गल्फ कंट्रीज अपने मुआहदे ईरान से भी करेंगे और बाकी भी अपना अलायंस बनाएंगे, जैसे यूएई के साथ इंडिया का है, सऊदी के साथ पाकिस्तान का है, ताकि कुछ एक रीजनल अलायंस बना के अपनी सुरक्षा को निर्धारित करें।
0: एक तरफ अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने ट्रंप के युद्ध अधिकारों को सीमित करने वाला वॉर पावर्स रेजोल्यूशन पास कर दिया।
3: The concurrent resolution is adopted.
0: अपनी ही रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों के पाला बदलने से ट्रंप को बड़ा राजनीतिक झटका लगा। ट्रंप ने अब साफ किया है कि जब तक किसी अमेरिकी सैनिक की जान नहीं जाती, वे ईरान पर दोबारा ऑल आउट वॉर शुरू नहीं करेंगे।

0: ट्रंप के लिए मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। उनके सबसे करीबी सहयोगी और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू शुरू से ही इस युद्ध विराम के खिलाफ रहे। वही खाड़ी के अमीर अरब देश इस तनातनी से सबसे ज्यादा परेशान है। उनकी पूरी आर्थिक रणनीति इस बात पर टिकी है कि ये क्षेत्र व्यापार के लिए सुरक्षित रहे, लेकिन युद्ध के शुरुआत से ही इस पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। अरब देशों में ईरान को लेकर लगातार मतभेद भी साफ दिख रहे हैं।
1: ईरान को लगता है ये खाड़ी के देश जो है वो अमेरिका की तरफ उनका झुकाव है, और अमेरिका ने ही उनको एक तरीके से जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर कहते हैं, तो वो बार बार इस बात को संदेश देना चाहता है अपने ही मजहबी लोगों को, ये आप जो अमेरिका के ऊपर निर्भर करते हैं वो आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकते, आप जो आपके पड़ोसी हैं ईरान उनके साथ आप अच्छे संबंध रखेंगे तो सबका फायदा होगा। यही कारण है कि आज की तारीख में इतना सब कुछ होने के बाद ईरान ने दो बार में नहीं सोचा खाड़ी के देशों के ऊपर हमला करने का, कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि इसका फायदा जो है वो अमेरिका उठाने की कोशिश कर रहा है।
0: सवाल है कि ऐसी सूरत में आगे क्या? जानकारों के मुताबिक ईरान सीज फायर का फायदा उठाकर अपनी ताकत बढ़ा रहा है। वो हॉर्मुज स्ट्रेट तभी खोलेगा जब उसे प्रतिबंधों में राहत मिले। वहीं अमेरिका और इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसके प्रॉक्सी नेटवर्क पर सख्त रुख बनाए हुए हैं। खाड़ी में हलचल बढ़ रही है, लेकिन अगर ईरान अमेरिका की शर्तों को नहीं माना तो फिर आगे क्या होगा? क्या सुपर पावर अमेरिका केवल प्रतिबंधों के भरोसे रहेगा या बात आर्थिक दबाव से आगे बढ़कर सैन्य कार्रवाई तक पहुंचेगी? वॉशिंगटन के बंद कमरों में ईरान को घेरने की जो रणनीति बनी है वो तेहरान पर अब तक का सबसे बड़ा दबाव बना रही है। आखिर क्या है अमेरिका के पास वो विकल्प जो खाड़ी का नक्शा बदल सकते हैं?

0: अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध विराम यानी सीज फायर चल रहा है वो किसी भी वक्त टूट सकता है। दोनों देश बारूद के ढेर पर बैठे हैं, बस एक चिंगारी की देर। दरअसल अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला दावा किया है। अखबार का कहना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ चल रहे सीज फायर को कभी भी खत्म कर सकते हैं। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से खबर है कि ट्रंप ने अपने करीबियों से साफ कह दिया है कि अगर तेहरान ने किसी भी अमेरिकी सैनिक को नुकसान पहुंचाया तो वो इस युद्ध विराम को तुरंत खत्म कर देंगे।
1: अमेरिकन सैनिकों का नुकसान हो तो नेचुरली अगर हमला तो उन्होंने कोई कसर तो छोड़ी नहीं पहले हमला करने में, और अगर अभी भी हमला करना है तो मतलब यह है कि सीज फायर को तोड़ देंगे। पर नुकसान उनका कहने का यही मकसद है कि हमारे ऊपर आप मत करिए पहले, क्योंकि अभी आपने देखा जो कुवैत में हुआ जब इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल मारी कुवैत में, तो जो एयरपोर्ट था वहां 60-70 लोग और जख्मी हुए हैं, एक इंडियन है उस किल्ड भी हुआ है, और उसके बाद काफी नुकसान हुआ है। वो एक ईरान का सिंबॉलिक मैसेज था गल्फ कंट्रीज को कि अमेरिका के ऊपर डिपेंड मत करो आप, हमारा जब जी चाहेगा आपको आने वाले टाइम में हम तभी एकदम से डिसरप्ट कर सकते हैं, आपकी जो अर्थव्यवस्था है उसको खराब कर सकते हैं।
0: दोनों देशों के बीच ग्राउंड पर छोटी मोटी झड़पें तो हो रही हैं, लेकिन बड़े हवाई हमले फिलहाल रुके हुए हैं। ट्रंप खुद भी तुरंत एक नया युद्ध नहीं चाहते, इसीलिए वो पिछले कुछ हफ्तों से इन झड़पों को बर्दाश्त भी कर रहे हैं, लेकिन लगातार हो रहे इन हमलों ने ट्रंप पर दबाव बहुत बढ़ा दिया है। अब तो इस सीज फायर के टिकने पर ही सवाल खड़े हो गए हैं।
1: अमेरिका और इसराइल दोनों इस टाइम युद्ध से निकलना चाहते हैं। इसराइल को अपना जो ऑब्जेक्टिव है ग्रेटर इसराइल या एक्सपेंशन लेबनान में, ताकि जो हिजबुल्ला के रॉकेट शॉकेट हैं वो उनके नॉर्दर्न इसराइल तक ना पहुंचे, इसलिए उन्होंने एक सेफ जोन अपना लिटानी रिवर तक उन्होंने बना लिया है और वो उसको छोड़ना नहीं चाहते। वहां चलती है हिजबुल्ला की, अगर हिजबुल्ला उसके साथ नहीं है तो वो सीज फायर या जो भी मुआयदा हुआ है, जो भी उनका एग्रीमेंट हुआ है, वो फेल हो जाएगा, और वही हुआ, अगले दिन ही उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो ये बड़ी पेचीदा सी बात बन गई है, मुझे कोई इतनी जल्दी इसका मेजर सोल्यूशन निकलते नहीं नजर आ रहा। सिर्फ यही लग रहा है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा कि 2 महीने आप सीज फायर और बढ़ा दो, उसमें बातचीत करते हैं। फिलहाल अमेरिका का जो मेजर इंटरेस्ट है और पूरी दुनिया का है कि जो गल्फ है उसको खोल दो और चाहे शिपिंग आनी जानी शुरू हो जाए।
0: वैसे डोनाल्ड ट्रंप का मिजाज तो आप जानते ही हैं, उनके लिए सीज फायर की परिभाषा भी थोड़ी अलग है।
2: It is. It's a different part of the world. You know, I'd say in that part of the world, ceasefire is when you're shooting in a more moderate manner.
0: अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता हो पाएगा? बातचीत चल रही है, लेकिन इस डील के बीच डोनाल्ड ट्रंप की 3 शर्तें ऐसी हैं जिन पर पेंच बुरी तरह फंस गया है। पहली शर्त है हॉर्मुज को तुरंत खोला जाए, जिससे दुनिया भर में तेल का व्यापार पहले की तरह नॉर्मल हो। दूसरी शर्त, ईरान को अपना एनरिच यूरेनियम देना होगा। और तीसरी शर्त है ईरान के पूरे परमाणु कार्यक्रम पर लंबे समय के लिए पाबंदी लगाई जाए। अब जाहिर सी बात है ईरान इन शर्तों को आसानी से तो मानने से रहा, ईरान का कड़ा रुख सामने आया। उसने साफ कह दिया है कि वो अपनी मिसाइल और न्यूक्लियर ताकत को किसी भी कीमत पर कम नहीं करेगा। उल्टा ईरान ने अपनी शर्तें रख दी। ईरान चाहता है कि लेबनान में पूरी तरह से युद्ध विराम हो। ईरान पर लगे सारे आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएं और विदेशों में जो उसकी संपत्ति फ्रीज है वो उसे वापस मिले।
3: 3 मुद्दे अगर मैं कहूँ, अमेरिका चाहता है न्यूक्लियर, एक कि जो न्यूक्लियर हथियार बनाने की काबिलियत या ईरान ना बनाए, और लाभ बनाने की उसके काबिलियत होनी चाहिए, और जो आज की तारीख में उसके पास इंग्लिश यूरेनियम है जिसके तादाद तकरीबन 440 किलो और 60% से ज्यादा उसका एनरिचमेंट है, उसको वो यूएसए को सौंपे या फिर आईएईए को सौंपे। और तीसरी बात जो बार बार आती है स्टेट ऑफ होर्मूज को लेकर के, स्टेट ऑफ होर्मूज अमेरिका चाहता है कि इस पर कोई भी टोल वसूली ना हो। आज यहाँ ईरान है, ईरान को लगता है कि न्यूक्लियर को लेकर के वो उसकी उसका हक है, इट्स द राइट एंड सॉवरेन राइट ऑफ ईरान, वो क्या करना चाहता है उसकी मर्जी है। स्टेट ऑफ होर्मूज को लेकर के ईरान चाहता है कि उसको वेपनाइज किया जाए। और तीसरी बड़ी बात जो ईरान चाहता है कि उसके जो फ्रोजन एसेट्स हैं जिसके तकरीबन $25 अरब है वो रिलीज किया जाए, तभी वो स्टेट ऑफ होर्मूज को खुला छोड़े। 100 दिन होने को आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हालत बाकी बहुत ही नाजुक, और इसको पूरे विश्व भर में अब एक तरीके से देखिए किल्लत और परेशानी शुरू हो चुकी है।
0: देखा जाए तो ट्रंप जिस तेवर के साथ बात करते हैं वो दुनिया को चौंकाता भी है और थोड़ा डराता भी। जून 2025 की वो भीषण 12 दिनों की जंग कौन भूल सकता है, या फिर वो द्वार जब अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध शुरू होते ही सुप्रीम लीडर समेत पूरी ईरानी सुप्रीम काउंसिल को नेस्तनाबूद कर दिया गया था। ट्रंप के फैसलों ने हमेशा दुनिया के होश उड़ाए हैं। डिप्लोमेसी अपनी जगह है और धमकियां अपनी जगह। अब सवाल ये है कि अगर बातचीत फेल हो गई और ईरान टस से मस नहीं हुआ तो फिर ट्रंप क्या करेंगे? अगर ईरान पीछे नहीं हटा तो डोनाल्ड ट्रंप के पास प्लान बी के तौर पर 3 बेहद विनाशकारी विकल्प तैयार है। ये ट्रंप के तर्कश के वो 3 तीर हैं जो ईरान को पूरी तरह संकट में डाल सकते हैं। विकल्प नंबर 1, पूर्ण सैन्य हमला। ये ट्रंप का सबसे बड़ा और आखिरी हथियार है। अगर राजनयिक प्रयास और सौदेबाजी पूरी तरह फेल हो जाती है तो ट्रंप अमेरिकी कमांडरों को ईरान के परमाणु संयंत्रों और सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर बमबारी का सीधा आदेश दे सकते हैं। इसके लिए अमेरिकी सेना को पहले ही हाई अलर्ट पर रखा जा चुका है। विकल्प नंबर 2, आर्थिक प्रतिबंधों को चरम पर पहुंचाना। अगर ट्रंप सीधे मिलिट्री एक्शन से बचना चाहेंगे तो वो मैक्सिमम प्रेशर की नीति को इस हद तक ले जाएंगे जिसकी कल्पना भी ईरान ने नहीं की होगी। ईरान के तेल निर्यात को पूरी तरह ठप कर दिया जाएगा जिससे ईरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक रूप से पूरी तरह अपंग हो जाएगा। विकल्प नंबर 3, क्षेत्रीय गठबंधनों से ईरान की घेराबंदी। अमेरिका अकेले नहीं लड़ेगा, वो खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन और अपने सबसे भरोसेमंद साथी इजराइल के साथ मिलकर ईरान को चारों तरफ से घेरेगा। रणनीति साफ है, ईरान के पूरे प्रॉक्सी नेटवर्क को जड़ से नेस्तनाबूद कर दिया जाए। यानी तस्वीर बिल्कुल साफ है, ट्रंप ने अपनी लक्ष्मण रेखा खींच दी है और अब गेंद ईरान के पाले में है। या तो ईरान शर्तों को मान ले या फिर अमेरिकी सेना के उस भीषण प्रहार को झेलने के लिए तैयार रहे जो पूरे वेस्ट एशिया का भूगोल बदल सकता है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी.
2: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
3: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
4: Today's jazz brings the movement forward. Modern voices, contemporary sound, and players shaping what jazz sounds like now. From Herbie Hancock to Pat Metheny, Esperanza Spalding, and more. Feel the jazzy energy with Deep Roots. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's Jazz to start listening now. Sokudo.
5: बहुत टायर्ड हो गई.
6: Take a date, not bites.
7: No added sugar, preservative के बिना. Dates, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया Lion Dates Nut Bites.
6: Lion Date Nut Bites.
8: आगे आगे.
9: अरे उधर
8: उधर क्या?
9: Correct correct.
10: मिल गया. आपके पास दो ऑप्शंस हैं. या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए. E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
11: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं.
12: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील TMT से बना.
13: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड.
14: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
15: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना. कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत. कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो.
16: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश.
17: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस्ट पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है. 135 सवाल उसी गेस्ट पेपर से हूबहू मिलते हैं.
18: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, NTO को पता नहीं.
16: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर.
19: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ.
17: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ. हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा.
16: जहां खबर वहां खबरदार.
0: इन एसोसिएशन विद
9: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
10: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील.
2: मैं इस वक्त उसी बिल्डिंग के बाहर हूँ जहाँ पर ये आग लगी.
3: मैं आपको टॉप एंगल से एक तस्वीर दिखाता हूँ और ये तस्वीर जो पूरा मंजर है उसको बयान करने के लिए काफी है.
8: यहाँ पर दूसरा एग्जिट गेट नहीं है तो किस तरीके से सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया गया था.
7: ये तस्वीरें बताती है कि किस तरीके से लापरवाही जो है वो पूरे इस इलाके में जो है वो चल रही है.
3: 20 लोगों की जान चली गई. और देखिए जब तस्वीर दिखाई जाती है एक एक करके तो इस तरह से दिल्ली पुलिस की टीम आती है और कहती है कि आप यहाँ से नहीं दिखाएंगे.
5: अब वहां नहीं होने देंगे जो 2017 के पहले होता था. 17 के पहले मुझे याद है मुझे 2015-16 में इस गोंडा में भी दुर्गा पूजा के समय दंगा करने का प्रयास हुआ था. यहां भी दंगे हुए थे. मां दुर्गा की मूर्ति को विसर्जन नहीं करने दिया जाता था. रामलीलाओं के आयोजन में अड़चने डाली जाती थी. पर्व और त्योहार प्रारंभ होने के पहले, उत्सव प्रारंभ होने के पहले उपद्रव शुरू हो जाते थे. बेटी सुरक्षित नहीं, व्यापारी सुरक्षित नहीं और सत्ता में बैठे हुए लोग 2017 के पहले इन दंगाइयों को इन पेशेवर गुंडों को प्रश्रय देते थे, इनके सामने नतमस्तक होते थे। प्रदेश में कर्फ्यू रहता था, महीनों महीनों कर्फ्यू। असुरक्षा के वातावरण में न निवेश होता है, न विकास होता है।
20: Now I'll go back to the war.
21: अब मैं युद्ध के प्रश्न पर वापस आती हूँ। ईरान अमेरिका युद्ध, हॉर्मुज जल अडमरु मध्य पर नाकाबंदी वाकई चिंता का विषय है। रूस इसे किस नजरिए से देख रहा है? वैश्विक स्तर पर इसके प्रभाव के बारे में आपका क्या आकलन है, इस तथ्य के अलावा कि हाँ, रूस को शायद थोड़ा फायदा हुआ है? ईरान पर नाकाबंदी और हमले का आपका क्या आकलन है? क्या आप इसे उकसाया हुआ मानेंगे या बिना उकसावे के?
22: Я не вижу никаких провокаций со стороны Ирана.
23: हाँ, मुझे ईरान की ओर से कोई उकसावा नजर नहीं आता।
22: Договорились, приняли соответствующее соглашение.
23: मेरा मानना है कि किसी बिंदु पर हम सहमत हुए थे, हमने सहमति जताई थी।
22: Под контролем МАГАТЭ. Но, к сожалению, ситуация развивалась потом по другому сценарию, по другим.
23: ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर IAEA में सब कुछ नियंत्रण में था, लेकिन फिर स्थिति पूरी तरह बदल गई।
22: Удар по Ирану, потери в том числе.
23: और इसी के चलते ये त्रासदी हुई जो हम आज देख रहे हैं।

0: अगली ब्रेकिंग न्यूज लेबनन और इसराइल से आ रही है। लेबनन के राष्ट्रपति ने गंभीर आरोप लगाया है। आरोप ये कि इस पूरे क्षेत्रीय तनाव में ईरान लेबनन को लगातार बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल कर रहा है और इसराइल और हिजबुल्ला के बीच जो सीमावर्ती इलाकों में झड़प है वो भी जारी है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सीज फायर टिक पाएगा या हालात फिर से बड़े संघर्ष की तरफ बढ़ेंगे। बात केवल अमेरिका और ईरान की नहीं है, ईरान समर्थित जितने भी प्रॉक्सी संगठन हैं, वो इस वक्त इसराइल के निशाने पर हैं। गाजा में सीज फायर की खबरें आती जरूर है लेकिन शांति पूरी तरह से कायम नहीं हो पाई है। इसराइल इस वक्त सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं लड़ रहा, गाजा में हमास, लेबनन में हिजबुल्ला और यमन में हूती। बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ऐसी नई क्षेत्रीय रणनीति तैयार की है जिसने हिजबुल्ला को बेचैन कर दिया है। इसराइल चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा है लेकिन उसका प्रहार पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक है। लेबनान में सीज फायर और अमेरिकी दखल के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि अब आगे क्या। गाजा से लेकर लेबनान बॉर्डर तक टॉप रॉकेट के धमाके थोड़े कम हुए हैं लेकिन इजराइल का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, समझौता अपनी जगह लेकिन इजराइल की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। इसका सबूत रहा हिजबुल्लाह का राफी मिलो पर किया गया हमला। आईडीएफ ने खुलासा किया है कि दक्षिणी लेबनान के दौरे पर गए इजरायली नॉर्थन कमांड के चीफ मेजर जनरल राफी मिलो की गाड़ी पर हिजबुल्लाह के एक आत्मघाती ड्रोन ने सीधा हमला किया। इस हमले ने सीज फायर की खोखली हकीकत को दुनिया के सामने ला दिया है। एक तरफ सीज फायर के लिए लितानी नदी के दक्षिण से हिजबुल्लाह को हटाने और नो गो जोन बनाने की बात हो रही है तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की अपनी शर्तें हैं। हिजबुल्लाह के राजनीतिक परिषद के डिप्टी हेड महमूद कमाती ने साफ धमकी दी है कि अगर इजराइल ने बेरूत पर दोबारा हमले किए तो तेल अवीव और हाइफा जैसे इजराइल के बड़े शहर उनके रॉकेटों के निशाने पर होंगे। उधर यमन के हूती विद्रोहियों ने भी कह दिया है कि जब तक इजरायली सेना लेबनान से पूरी तरह बाहर नहीं जाती उनके सैनिक रोज मारे जाएंगे।
1: इस वक्त पलड़ा भारी है इजरायली का और अमेरिकन का। अगर ये तीनों मिल जाए, हमस, हूती और हिजबुल्ला, तो ये चारों तरफ से इजरायल के ऊपर हमला कर सकते हैं और उनका सूत्रधार जो IRGC है ईरान की, वो उनकी मदद भी करते हैं, आइडियोलॉजिकली मदद भी करते हैं, फाइनेंशियल हेल्प भी करते हैं और साथ में उनको ब्लूप्रिंट भी देते हैं बहुत सारे ड्रोन्स को बनाने के लिए या मिसाइल्स को बनाने के लिए। तो उसके लिए एक बहुत ही चुनौती बन जाएगी और सैचुरेशन अटैक अगर होते हैं तो इसराइल में काफी नुकसान होने का अंदेशा है। और इंडिविजुअली इस वक्त इसराइल के पास एक ही सिंगल ऑब्जेक्टिव है और वो बहुत क्लियर है, वो है उन्होंने इस वक्त हिजबुल्लाह को खत्म करना है। हमस को वो नियरली खत्म कर चुके हैं, हूती की बारी अगली है।
0: लेकिन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इन धमकियों के आगे झुकने वाले नहीं हैं। नेतन्याहू का विजन और उनका प्लान अब बिल्कुल साफ है। मोसाद के नए चीफ के तौर पर रोमन गोफमैन की ताजपोशी करते हुए नेतन्याहू ने ईरान की रेजीम और उसके पूरे नेटवर्क को सीधा और सख्त संदेश दे दिया।
2: The Mossad will continue to be at the spearhead of our struggle against Iran's aggression. In continuation of the consistent policy we have been leading for years, we will not allow the Iranian regime to turn back the clock. We will not let them acquire nuclear weapons. We will not let them threaten our existence. This reign of terror, whose end is to vanish from the world, and we will help it reach that destination. This regime will not return to threaten us with nuclear bombs and thousands of deadly ballistic missiles. This is my directive and this is your mission. This is your mission, Roman, and that of all the thousands who are here today.
0: नेतन्याहू जानते हैं कि हमास और हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन हासिल है, इसीलिए इजराइल ने अपनी सैन्य तैयारी और तेज कर दी।
1: सदर लेबनान में इजराइल के लिए डेफिनेटली सफलता है क्योंकि उन्होंने एक बड़ा ही प्लान तरीके के साथ इसराइल के ऊपर अटैक किया है और उन्होंने वहां पे तीन जोन्स बनाई हैं। सबसे पहले 15 किलोमीटर की जोन जो है इसराइली बॉर्डर के नॉर्थ में, वो उन्होंने बोला है ये एक किस्म की मिलिटराइज्ड जोन होगी या बफर जोन होगी ताकि जो नॉर्दर्न इसराइल के लोग हैं जो इस वक्त घरों को छोड़कर वहां से डिस्प्लेस हो चुके हैं उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये मिलिटराइज जोन है, यहाँ पे कोई भी सिविलियन या कोई भी हिजबुल्ला जो लेबनन के हैं वो यहाँ पे नहीं आ सकेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट उन्होंने येलो लाइन बनाई है लिटानी रिवर के ऊपर, तो लिटानी रिवर के ईस्ट और साउथ के अंदर ये सारी की सारी हिजबुल्ला का गढ़ माना जाता है। परंतु फिर भी जो बढ़त है वो इस वक्त इजरायली डिफेंस फोर्सेस के पास ही है।
3: लेकिन नेतन्याहू के सामने भी चुनौतियां हैं। उत्तरी इसराइल के लोग लगातार ड्रोन और रॉकेट हमलों से परेशान हैं। सर्वे बताते हैं कि वहां कई लोग सरकार की लेबनान नीति से नाराज हैं। आम राय यही है कि हिजबुल्लाह के खतरे का स्थायी समाधान सिर्फ उसे कमजोर या खत्म करने से ही होगा।
1: सबसे बड़ी बात यह है कि जो नॉर्दर्न इसराइल के लोग हैं जो ऑलरेडी डिस्प्लेस हो रखे हैं, और डिस्प्लेस क्यों है क्योंकि लेबनन की तरफ से उनके ऊपर लगातार इंकर्शन होती हैं, टेररिस्ट अटैक होते हैं। अब क्योंकि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने जो 15 किलोमीटर की बफर जोन बना ली है और उनके बहुत सारे जो कैंपेन्स हैं वो सफल होते जा रहे हैं इन सदर्न लेबनन, तो ये लोग चाहते हैं कि इसको अभी यहाँ छोड़ा ना जाए, ये एक डिसाइसिव विक्ट्री आई जाए करी जाए। तो अब ये लोग चाहते हैं कि एक मौका है सीज फायर होने से पहले पहले ये जो हिजबुल्लाह का वजूद है वो सदर लेबनान से पूरी तरह मिट जाए और ये जो इलाके हैं नॉर्दर्न इसराइल के ये उनकी पहुंच से बाहर हो जाएं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इजरायली सेना जो है आगे बढ़े और उसकी पूरी सपोर्ट कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनको हर हालत में सक्सेस मिले और वो सीज फायर जो है जिसकी बात अमेरिका आजकल कर रहा है, इसराइल को बोल रहे हैं सीज फायर करने के लिए, वो उसकी बात ना माने।
3: साफ है कि इजराइल के सामने दोहरी चुनौती है। अंदरूनी तौर पर जनता का दबाव है कि वो हिजबुल्लाह और हमास को पूरी तरह मटिया मेट करें, और बाहरी तौर पर अमेरिका का दबाव है कि सीज फायर को लागू किया जाए। लेकिन मोसाद के नए चीफ के आते ही इजराइल ने जो तेवर दिखाए हैं उससे एक बात तो तय है, चाहे गाजा हो या लेबनान, जब तक इजराइल की सुरक्षा 100% पक्की नहीं हो जाती तब तक वेस्ट एशिया में ईरान चैन से नहीं रह सकता। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, ये रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी है। युद्ध में एक बड़ा मोड़ आता हुआ दिख रहा है। जेलेंस्की ने पुतिन को शांति वार्ता का प्रस्ताव भेजा है। रूस ने साफ संकेत दे दिए हैं कि समझौता करो, जंग अभी खत्म हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर जेलेंस्की पुतिन से सीधे मुलाकात करें तो ये अच्छा होगा। लेकिन एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, रूस के साथ बढ़ते तनाव और सैन्य टकराव के खतरे के बीच अमेरिका जर्मनी को टोमाहॉक मिसाइलों देने का सौदा रद्द कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो नेटो की रणनीति और जर्मनी की सुरक्षा दोनों पर बड़े सवाल खड़े हो जाएंगे। पश्चिम एशिया की इस सुलगती आग के बीच अब रुख करते हैं उस दूसरे मोर्चे का, जहां पिछले कई सालों से बारूद बरस रहा है लेकिन अब वहां पुतिन ने गियर बदल दिया। यूक्रेन की राजधानी कीव एक बार फिर दहल उठी है। आसमान से बरसती मौत ने यूक्रेन के पावर ग्रिड्स और सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है। क्या रूस इस युद्ध को किसी अंतिम और सबसे खतरनाक चरण में ले जा चुका है?

0: रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अब एक नए और बेहद खतरनाक चरण में पहुंच चुका है। यूक्रेन की राजधानी कीव के आसमान से बरसती मौत और चारों तरफ जलती इमारतें इस बात की गवाही दे रही हैं कि मॉस्को ने अपनी रणनीति बदल दी है। आखिर पुतिन ने अचानक इतने ताबड़तोड़ हमले क्यों किए? क्या यूक्रेन किसी बड़े पलटवार की तैयारी में है, या फिर आने वाले दिनों में रूस और भी आक्रामक होने वाला है, या ये हमले यूक्रेन की हमलावर नीति का खेल बदल देंगे? ये यूक्रेन की राजधानी कीव की तस्वीरें हैं जो रूसी हमले से हुई तबाही का मंजर बयान कर रही है। आसमान मिसाइलों की रोशनी और धुएं से पटा हुआ था और जमीन धमाकों से दहल रही थी। रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। कीव, खारकीव और निप्रो जैसे कई बड़े शहरों पर 60 से ज्यादा विनाशकारी मिसाइलों और सैकड़ों ड्रोनों से एक साथ धावा बोला गया। बमों की इस बरसात से हवाई हमला किया है। कीव, खारकीव और निप्रो जैसे कई बड़े शहरों पर 60 से ज्यादा विनाशकारी मिसाइलों और सैकड़ों ड्रोनों से एक साथ धावा बोला गया। बमों की इस बरसात से कई बहुमंजिला इमारतें आग की लपटों में घिर गईं। धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन मिसाइलों को हवा में रोकने की कोशिश जरूर की, लेकिन हमले की रफ्तार और तादाद इतनी ज्यादा थी कि कीव का सुरक्षा कवच नाकाम साबित हुआ।
1: मैं समझता हूँ ये एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश है, क्योंकि देखिए 4-5 साल अगर आपको निकल जाए लड़ाई लड़ते हुए सुपर पावर होने के बावजूद, तो अफेक्ट तो आपको भी करता है, आपकी पॉपुलेशन को भी करता है। तो रूस भी चाहता है कि किसी तरह युद्ध ये टले, लेकिन बात यह है कि किस टर्म्स के ऊपर में टलेगा वो एक बड़ी बात है। लेकिन चूंकि ज़्यादातर यूक्रेन की 25-26% टेरिटरी उन रशिया के कब्जे में है, जो वॉर से पहले जो नहीं थी उनके पास, तो उससे नेचुरली है कि रशिया के पास में इस वक्त एक तरह से इस कुछ परसेंटेज का जो कहूँगा मैं बैलेंस उनकी तरफ फेवर में है ज़्यादा। तो कोशिश तो दोनों साइड की है कि किसी तरह से ऐसी डील हो जाए जिसमें दोनों का फेस सेविंग हो जाए, लेकिन ऐसा आप जानते हैं कि इस तरह के युद्ध में जब दोनों लोग इस तरह की पोजीशन वर्टिकल ले रखी है तो इतना आसान नहीं होता है युद्ध विराम कराना भी।
0: रूस ने इस बार सिर्फ रिहायशी इलाकों को ही नहीं बल्कि यूक्रेन के सामरिक ठिकानों को भी निशाना बनाया। सोशल मीडिया पर वायरल इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे यूक्रेन के एक बड़े एयरबेस को रूसी बैलिस्टिक मिसाइल ने मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक यहां बने फ्यूल स्टोरेज और गोला बारूद के गोदाम पूरी तरह तबाह हो गए हैं, जिससे यूक्रेन की सेना को बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि एयरक्राफ्ट्स को कितना नुकसान पहुंचा है इसकी पुष्टि होना अब भी बाकी है।
1: जहां तक ये युद्ध है तो लगभग 4 साल में हमने देखा है कि ऑलमोस्ट हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक हुआ है, इंक्लूडिंग एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले दोनों साइड ने किया है, यूक्रेन ने रशिया के ऊपर किया है, रशिया ने भी यूक्रेन के ऊपर किया है, और यहाँ तक कि जो ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके ऊपर तक अटैक हुए हैं कई बार, और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी उसका काफ़ी विरोध किया है कि और यूक्रेन को भी कहा है कि इसके ऊपर अटैक ना करें किसी तरह से, क्योंकि उस पर रशियंस का कब्जा है भी। तो डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर को या शहर में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर या मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब एक फेयर गेम के रूप में हो रहा है। जहाँ तक लगता है कि दोनों साइड में अभी ये एक कोशिश है कि किसी तरह से इस युद्ध को रोका जा सके, आगे वो सीज फायर पूरी होगी या एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट बनेगा या क्या होगा ये देखना पड़ेगा।
0: कीव का पोडिल्स्काई इलाका इस हमले का सबसे बड़ा गवाह बना, जहां एक 9 मंजिला इमारत जमीन दोज हो गई। स्थानीय प्रशासन के अनुसार रूस ने यहां डबल टैप तकनीक का इस्तेमाल किया, यानी एक जगह हमला करने के कुछ देर बाद ठीक उसी जगह दोबारा हमला किया गया। निप्रो शहर में भी ऐसा ही हुआ, जहां मलबे से लोगों को निकालते वक्त हुए दूसरे हमले में एक बचाव कर्मी की जान चली गई। इन हमलों में कम 11 लोगों की मौत हुई है और 100 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रिहायशी इमारतें, इंडस्ट्रियल प्लांट्स और पावर स्टेशंस तबाह हो गए हैं। कई शहरों में बिजली पूरी तरह गुल हो गई है। रूस इन हमलों की तैयारी पिछले कई दिनों से कर रहा था, जिसकी चेतावनी खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने 2 पहले ही दी थी।
2: Шановні українці, українки, сьогодні кілька важливих речей. Перше, ми маємо інформацію від розвідки щодо підготовки Росією нового масованого удару. Будь ласка, зважайте на повітряні тривоги, бережіть життя. Наші служби оперативні, підготовлені, повітряні сили та інші захисники неба працюватимуть 24/7, як і завжди. Тематика ППО, необхідність і надалі допомагати Україні захистом неба – це ключовий пріоритет наш. Вдячний кожному партнеру, всім лідерам, всім державам, які готові допомагати, хто повністю виконує домовленості. Програма «Пьорл» має працювати, це стосується…
0: 4 से ज्यादा समय से चल रहे इस युद्ध में यूक्रेन अब विनाश की कगार पर है। उसके अपने हथियार खत्म हो रहे हैं और वह पूरी तरह से मित्र देशों की मदद पर निर्भर है। यही वजह है कि यूक्रेन अब पश्चिमी देशों से और ज्यादा आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम्स की गुहार लगा रहा है। रूस के इन ताबड़तोड़ हमलों ने साफ कर दिया है कि वह इस युद्ध को किसी भी कीमत पर अगले चरण में ले जाना चाहते हैं। यूक्रेन की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी हवाई सुरक्षा साबित हो रही है। अब देखना यह होगा कि अमेरिका और यूरोपीय देश उसकी इस अपील पर क्या कदम उठाते हैं और युद्ध का ये नया चरण दुनिया को किस मोड़ पर लेकर जाता है। पुतिन के इस हमले के पीछे की एक बड़ी वजह यूक्रेन की हिमाकत भी है। दरअसल अब यूक्रेन केवल डिफेंसिव मोड में नहीं है बल्कि जवाब भी दे रहा है। जेलेंस्की की सेना के ड्रोन अब रूस की सीमा लांघकर अंदर तक पहुंच रहे हैं। रूस के ऑयल टर्मिनल, पुतिन के सैन्य अड्डे, उनके रणनीतिक ठिकाने, ये सब यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन की जद में है। युद्ध का तरीका बदल रहा है। जो जंग कभी यूक्रेन की धरती पर शुरू हुई थी वो अब रूस के शहरों तक पहुंच चुकी है।

रूस और यूक्रेन के बीच का घमासान अब सिर्फ सरहदों या मोर्चों तक सीमित नहीं रहा, ये एक दूसरे को आर्थिक और मानसिक रूप से तोड़ने के दौर में पहुंच चुका है। कीव

0: बहुत ही नाजुक स्थिति से पूरी पूरा विश्व गुजर रहा है। एक तो कोविड हुआ और कोविड के तुरंत बाद जिस प्रकार से यूक्रेन और रूस के बीच में शुरू हो गया, फिर इसराइल और ईरान और इसराइल हमास लेबनन वहां पे हुदी यूएसए ने मिलकर के इसराइल के साथ ईरान को के साथ लड़ाई की। तो ये सबको देखते हुए बहुत ही नाजुक स्थिति से पूरा विश्व गुजर रहा है। इसका असर एनर्जी सिक्योरिटी पे पड़ रहा है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से विश्व का 20% तेल गुजरता है और विश्व में तकरीबन एक दिन में 100 बिलियन बैरल पर डे इस्तेमाल होता है। तेल की जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं, $100 पर बैरल। तो अगर यही रेट रहे तो जो भी पैसा जिस देश ने बचाया होगा वो इसी में जाएगा, तो उनके बाकी जो तरक्की है वो नहीं हो पा रही है, तो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आ रहा है।
1: तकनीकी तौर पर रिफाइनरी में लगी इन आगों को भले ही बुझा लिया गया हो, लेकिन इस तरह के तबाह हुए कि इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा खड़ा करने में महीनों का वक्त और करोड़ों की रकम लगती। ये हमला साफ दिखाता है कि युद्ध अब दोनों देशों के आम नागरिकों की जिंदगी और उनकी अर्थव्यवस्था को कितनी गहराई से जख्मी कर रहा है। इसी बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन को खुले पत्र के जरिए बातचीत का प्रस्ताव दिया, लेकिन रूस ने इसे खारिज कर दिया। ऐसे में शांति की उम्मीदें फिलहाल धुंधली नजर आ रही हैं।
2: मुझे लगता है कि उनकी दिलचस्पी बातचीत में नहीं है, लिहाजा हमें इस पत्र और उसके लिखने वाले को संबोधित नहीं करना चाहिए।
3: а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения.
2: इसीलिए मैं हमारे लड़ाकों और सीमा पर तैनात हमारे सैनिकों को संबोधित कर रहा हूं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, साथियों सैनिकों और नाविकों, एडमिरलों, जनरलों, अधिकारियों, देश की निगाहें आप पर टिकी हैं, देश को आप पर गर्व है और आप ही पर सबकी आशाएं टिकी हैं।
3: вся страна смотрит на вас. Вся страна
2: भाइयों अपने काम में पूरी मुस्तैदी से लगे रहिए।
1: वॉर रूम से आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
2: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay locked in to the NBA playoffs with ESPN Radio. Get around-the-clock sports talk covering every matchup, every storyline, and every big moment as games unfold. And throughout the playoffs, catch select live games bringing you courtside for some of the biggest showdowns. From nonstop analysis to can't-miss action, ESPN Radio is your home to follow the NBA playoffs. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
3: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
4: Mummy, Papa, आपका मुझ पर भरोसा था कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएगी, पर दोबारा नीट देने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। पहले नीट के पेपर में मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे, पर दोबारा पेपर अच्छा जाए इसकी क्या गारंटी है। सॉरी मम्मी पापा, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का।
5: सोचिए ये शब्द किसका कलेजा नहीं चीर देंगे।
6: हम कर्ज ले लेके पढ़ा रहे थे, हम किसी से मांग मांग के उसकी फीस भर रहे थे।
7: इतने सारे सपने दिखा के चलेंगे, उसके नाम की आगे का कर देंगे।
5: मध्य प्रदेश की आकांक्षा की मौत सिस्टम पर वो करारा तमाचा है जिसकी गूंज सुनाई तो पड़ रही है, लेकिन सवाल वही है कि क्या कुछ दिनों के हंगामे के बाद पेपर लीक माफिया और शिक्षा तंत्र में बैठे धंधेबाजों पर फिर तो चुप्पी नहीं ओढ़ ली जाएगी। आज जो विपक्ष में है वे नीट पेपर लीक और सीबीएसई को एसएम की गड़बड़ी पर सरकार से तीखे सवाल पूछ रहे हैं।

0: खैर में, लेकिन कार्रवाई में कभी कमी नहीं रखा।
1: How many questions normally will someone apply for?
2: I guess अभी जो problem आ रही है, they can apply for all the questions.
1: So how many total questions?
2: 30-35 around questions होते हैं.
1: So huge amount of money.
2: Huge amount of money is involved.
3: विपक्ष को सवाल पूछने भी चाहिए, जवाबदेही तय होनी ही चाहिए, लेकिन शिक्षा तंत्र को फेल करने वालों का जाल बहुत गहरा है और बहुत पुराना है। 2002 से 2025 के बीच 1,00,000 से अधिक उम्मीदवारों वाली 45 लीक परीक्षाओं ने 3,86,00,000 छात्रों को प्रभावित किया। लीक के इन मामलों में 1,658 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 925 पर चार्जशीट दाखिल की गई, 2 मामलों में 18 लोग दोषी करार दिए गए, 43 आरोपी जेल में बंद हैं। आरोपों के मुताबिक पेपर लीक माफिया का कोचिंग माफिया के साथ सांठगांठ होता है। इस बार की नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में भी आरोपियों के तार कोचिंग सेंटर से जुड़े हैं। इसलिए शिक्षा तंत्र के ओवरहॉल की जरूरत है। छात्र तो अपना भविष्य बनाने की परीक्षा देते हैं, अब की बार सरकार को परीक्षा में पास होकर दिखाना है। आज तक ब्यूरो।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
6: इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: Turn It Up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
1: बंगाल से आती बगावत की इस आवाज को बड़े गौर से सुना जा रहा है। दिल्ली टकटकी लगाए बंगाल की ओर देख रही है। तृणमूल कांग्रेस की आपदा में उसे अवसर नजर आ रहा है। कैसे, ये समझ लीजिए। 17 अप्रैल को लोकसभा में 131वां संविधान संशोधन बिल गिर गया। ये बिल महिला आरक्षण कानून में संशोधन के लिए लाया गया था। एनडीए बिल के पक्ष में 2/3 वोट हासिल करने में नाकाम रहा। बिल के पक्ष में 298 वोट मिले जबकि इसके विरोध में 230। मोदी सरकार को उपस्थित 528 सांसदों में से 352 सांसदों का समर्थन चाहिए था। लेकिन ये तब की बात थी। विपक्ष एकजुट था। संख्या बल में सरकार पर भारी पड़ा था। विपक्षी एकता के सामने सरकार को हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि पीएम मोदी ने तब कहा था कि आज हम हारे जरूर हैं, लेकिन इरादा नहीं टाला है।
2: कल हमारे पास संख्या बल नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए। हमारा आत्मबल अजय है। हमारा प्रयास रुकेगा नहीं, हमारा प्रयास थमेगा नहीं। हमारे पास आगे भी और मौके आएंगे।
1: जिस मौके की बात पीएम मोदी कर रहे थे वो बहुत जल्दी आ गया। अप्रैल में महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका। तब सरकार ने परिसीमन विधेयक 2026 भी वापस ले लिया था। लेकिन एक महीने के भीतर राजनीतिक हालात तेजी से बदल गए। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस बुरी तरह परास्त हो गई। तृणमूल कांग्रेस में बगावत शुरू हो गई। ममता कमजोर पड़ गई। उधर तमिलनाडु में डीएमके को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस नतीजे का असर इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर पड़ा। कांग्रेस ने विजय की पार्टी टीडीके से हाथ मिला लिया, सरकार में शामिल हो गई। नाराज डीएमके ने इंडिया गठबंधन से दूरी बना ली। यहां तक कि संसद में बैठने के लिए अलग जगह आवंटित करवा ली और 8 जून को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में ये कहकर शामिल होने से इनकार कर दिया कि कांग्रेस मौजूद रहेगी तो वो दूर ही रहेगी। तो बंगाल और तमिलनाडु के घटनाक्रम ने मोदी सरकार को नया हौसला दिया है। खबर है कि मोदी सरकार मॉनसून सत्र में परिसीमन विधेयक को दोबारा पेश कर सकती है। सरकार परिसीमन पर आम सहमति बनाने के लिए डीएमके और टीएमसी जैसी क्षेत्रीय पार्टियों से बात करने पर विचार कर रही है। सूत्रों ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के कई सांसद परिसीमन के पक्ष में हैं और उन्होंने सरकार के दृष्टिकोण पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। डीएमके ने भी कोई कड़ा रुख नहीं अपनाया है। वो सरकार की तरफ से तैयार किए जा रहे विधेयक के नए मसौदे का इंतजार कर रहे हैं। अगर 22 सांसदों वाली डीएमके बिल को समर्थन देने के लिए राजी हो जाती है और टीएमसी सांसदों का एक धड़ा भी साथ आ जाता है तो सरकार के लिए संख्या बल जुटाना आसान हो सकता है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: In association with
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

परिषद के साथ मंथन, देशवासियों का जीवन आसान बनाने और आर्थिक दर को बढ़ाने पर चर्चा। समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उन पर हमला, कहा कि 2017 से पहले गुंडों के आगे नतमस्तक थी सरकार, राम का नाम लेने पर चलती थी गोलियां, अखिलेश का पलटवार, यूपी में महाजंगल राज। त्रिपुरा बॉर्डर सुरक्षा पर गृहमंत्री अमित शाह की समीक्षा बैठक, आर्थिक लेन देन और प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री पर पैनी नजर का निर्देश, कहा सीमा सुरक्षा सिर्फ बीएसएफ ने, पूरे प्रशासन की जिम्मेदारी। बंगाल सरकार ने मदरसों का शुरू किया सर्वेक्षण, 5 जुलाई तक मांगे रिपोर्ट, नियमों के तहत संचालन और जरूरी दस्तावेजों की जांच होगी। भारत की टी20 टीम में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की धमाकेदार एंट्री, आयरलैंड इंग्लैंड दौरे में मिली जगह, कप्तान बनाया गया श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव बाहर।

0: नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम और आप देख रहे हैं कहानी 2.0। नरेंद्र मोदी सरकार को 12 साल पूरे हो चुके हैं। इन 12 वर्षों में देश ने कई बड़े फैसले देखे, कई राजनीतिक पड़ाव देखे और नेतृत्व की एक ऐसी शैली देखी जिसने भारतीय राजनीति पर गहरी छाप छोड़ी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कहानी सिर्फ चुनावी जीत और सरकारी उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। इस कहानी में उनका संघर्ष है, उनकी सोच है, उनका विजन है और उन लोगों के अनुभव है जिन्होंने उन्हें करीब से देखा और उनके साथ काम किया। आज कहानी में मोदी सरकार के नेतृत्व की इनसाइड स्टोरी।
1: मैं 24 फरवरी 2002 को जीवन में पहली बार एमएलए बना। 27 फरवरी पहली बार मैं असेंबली में गया। जीवन में पहली बार विधानसभा गृह में गया। सीएम बना तो मुझे आश्चर्य था, मैं सीएम कैसे बन गया। दायित्व आया है तो मैं निभा रहा हूं, उसे अच्छे ढंग से करना ही मेरा मकसद रहता है।
2: माँ अड़ोस पड़ोस के घर में बर्तन साफ करती थी, पानी भरती थी, हमें बढ़ा के।
1: मैं उस राज्य से आता हूं जहां मैंने माताओं बहनों को सर पे घड़ा लेकर के दो दो तीन तीन किलोमीटर पानी के लिए जाते देखा है।
3: मैंने पूरे देश में कहा था 26 जनवरी को ठीक सुबह 11 बजे श्रीनगर के लाल चौक में आऊंगा और श्रीनगर के लाल चौक में 11 बजे फैसला होगा किसने अपनी मां का दूध किया।
0: बारह साल पहले शुरू हुआ एक राजनीतिक सफर आज भी देश की राजनीति के केंद्र में है। लेकिन किसी भी नेता को सिर्फ चुनावी जीत, भाषण या फैसलों से नहीं समझा जा सकता। उसकी असली पहचान उन लोगों के अनुभव में छिपी होती है जो उसके साथ काम करते हैं।
1: अगर आप अच्छे निर्णय और सही समय पर निर्णय करते हैं तो कितना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, इसका एक उदाहरण
4: हैट्रिक है। अगर आज चर्चा करनी है और आज का कोई हीरो है तो मेरे 6 करोड़ गुजराती।
5: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे जैसे एक सामान्य परिवार से आए हुए एक कार्यकर्ता को बहुत बड़े कार्य के लिए दायित्व दिया है।
6: आज से लेकर के वहां तक की यात्रा है और बहनों, मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूँ।
7: देश के 21 से ज्यादा प्रदेशों में बीजेपी एनडीए की सरकारें हैं।
8: भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
9: श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी।
10: मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि

0: एक नेता को देश उनके भाषणों से पहचानता है और एक प्रधानमंत्री को उनके फैसलों से।
1: कल 370 देश की एकता में रुकावट बना पड़ा था, दीवार बना पड़ा था। देश की एकता हमारी प्राथमिकता थी, जो कि हमारी संविधान की भावना थी, और इसलिए धारा 370 को हमने जमीन पर उतार दिया।
2: मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के नर्क से मुक्ति दिलाने का बीड़ा भी हमारी सरकार ने उठाया।
3: जीएसटी लाकर हमने वन नेशन वन टैक्स का संकल्प साकार किया। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी।
0: लेकिन किसी शख्स की असली पहचान उन लोगों से होती है जो उनके साथ काम करते हैं, जो उसे करीब से देखते हैं, जो उनकी कार्य शैली के गवाह होते हैं।
4: मुझे ये लगा कि मोदी जी ये चाहते हैं कि तिरंगा केवल श्रीनगर के लाल चौक पर नहीं, देश की जनता के मन में लहराना चाहिए, हर युवा के दिल में लहराना चाहिए। तो जोड़ो सबको। उसके जो आइडियाज देखे तो मैंने पहचाना कि ये तो अलग ही पर्सनालिटी है और अलग ढंग से काम करते हैं।
5: संघ के माध्यम से देश का युवा क्या कर सकता है, वो उन्होंने बहुत अच्छे सटीक तरीके से बहुत कम समय में समझाया था।
0: साल बदले, चुनाव बदले, राजनीतिक समीकरण बदले, लेकिन एक तस्वीर बार बार दोहराई गई, राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में नरेंद्र मोदी का शपथ लेना।
6: मैं नरेंद्र दामोदर दास ईश्वर की शपथ लेता।
0: 3 बार चुनाव को, 3 बार जनादेश और 3 बार देश की बागडोर संभालने का रिकॉर्ड। लेकिन सवाल है कि आखिर वो कौन सी बात है जो नरेंद्र मोदी को बाकी नेताओं से अलग बनाती है। वडनगर की गलियों से निकलकर दिल्ली के सत्ता शिखर पर पहुंचने वाले नरेंद्र मोदी की कहानी सिर्फ राजनीति की कहानी नहीं है, ये अनुशासन, समर्पण और लगातार खुद को चुनौती देने की कहानी भी है। आज कहानी में देखिए आखिर कौन से अनुभव थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को गढ़ा, हिमाचल की यात्रा ने उनकी सोच को कैसे बदला, संघ के जीवन ने कौन से संस्कार दिए और कौन से ऐसे निर्णायक मोड़ थे जिन्होंने आगे चलकर उनके राजनीतिक सफर की नींव रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछले 12 सालों से देश देख रहा है, उनकी रैलियों में शामिल होता है, उनके फैसलों पर विचार करता है, उनके भाषणों को सुनता है और उनकी राजनीति पर नजर रखता है। लेकिन हर बड़े फैसले के पीछे कुछ ऐसे पल भी होते हैं जो कैमरों से दूर रह जाते हैं।
5: गांव के लिए, व्यक्ति के लिए और क्षेत्र के लिए डेवलपमेंट के काम ढूंढे, और आज ट्राइबल क्षेत्र गुजरात का सभी ट्राइबल क्षेत्रों में सबसे डेवलप क्षेत्र है।
7: मेरा बचपन बीता है लेकिन वो जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है जी, और शायद वही मेरा एक प्रकार से सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। मुसीबत यूनिवर्सिटी है मेरे लिए जो मुझे सिखाती है।
0: 10 जून 2026 भारतीय राजनीति के इतिहास में एक और तारीख दर्ज होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे, एक ऐसा पड़ाव जो अब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम था। कुछ ऐसी कहानियां जो सिर्फ इतिहास नहीं बनाती बल्कि उस व्यक्ति को भी गढ़ती हैं जो इतिहास लिख रहा होता है। आज कहानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे ही अनसुने किस्से जिन्होंने उनके नेतृत्व, सोच और व्यक्तित्व को आकार दिया।
8: वडनगर की गलियों से निकलकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर हर किसी ने देखा, लेकिन उस सफर के पीछे अनुभव, संघर्ष और सोच को कम ही लोग जानते हैं। बचपन में तालाब के किनारे बिताए दिन, हिमालय की यात्रा, संघ का जीवन और फिर राजनीति के शिखर तक पहुंचने की कहानी में नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को आकार दिया है।
9: नहीं मिटने दूंगा।
10: नरेंद्र दामोदर दास मोदी
11: माँ का दूध पिया है जो लाल चौक में आके
12: हमारे राम आ गए हैं।

0: किसी भी नेता की कहानी सिर्फ उसके पद से नहीं बनती, उसकी असली कहानी उन रास्तों में छिपी होती है जिन पर चलकर वो वहां तक पहुंचता है। नरेंद्र मोदी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 1950 में जन्म और उसके बाद शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने भारतीय राजनीति के स्थापित समीकरणों को बदल कर रख दिया। नरेंद्र मोदी का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। सपने बड़े थे लेकिन साधन सीमित थे। संघर्ष था, जिज्ञासा थी और कुछ अलग करने की बेचैनी भी।
1: गली गली में गूंजे नारा मां गुजरात।
0: गुजरात के मेहसाणा जिले का छोटा सा कस्बा है वडनगर और यहीं से शुरू हुई नरेंद्र मोदी की कहानी। रेलवे स्टेशन पर पिता दामोदरदास मोदी की छोटी सी चाय की दुकान थी। परिवार बड़ा था और आर्थिक संसाधन सीमित थे। ऐसे में छोटी उम्र से ही नरेंद्र मोदी पिता का हाथ बटाने लगे।
2: अरे नरेंद्र बेटा, ये सब अभी बराबर है, पहले बाकड़ा साफ करो, लोगों को बैठना है। और सुन, काम जरा जल्दी जल्दी करा है।
3: अरे तुम्हारा बेटा नरेंद्र बहुत अच्छा लड़का है,
2: आज्ञाकारी पुत्र है, देखना बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करेगा ये।
4: बाबूजी केतली में चाय निकाल दो, ट्रेन आने वाली है।
2: आ बस बेटा ये निकाल दी है, ये ले जाओ। और सुन, ज्यादा तेज नहीं भागना, नहीं तो दोनों गिर जाओगे, चाय भी और तुम भी। हैं?
0: कहा जाता है कि यही वो जगह है जहां उन्होंने लोगों को पढ़ना सीखा।
5: जिंदगी का रास्ता बड़ा कठिन होता है। जहां तक रेलवे स्टेशन की बात है, वो मेरी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी की कहानी है, मेरी जिंदगी के संघर्ष का वो एक स्वर्णिम पृष्ठ है जिसने मुझे जीना सिखाया, जूझना सिखाया और जिंदगी अपने लिए नहीं औरों के लिए भी हो सकती है, ये रेल की पटरियों पर दौड़ती हुई और उससे निकलती हुई आवाज से मैंने बचपन से सीखा समझा।
0: नरेंद्र मोदी के बचपन का एक और दिलचस्प अध्याय है वडनगर की लाइब्रेरी। जब दूसरे बच्चे खेल के मैदान में ज्यादा वक्त बिताते थे तब नरेंद्र मोदी घंटों किताबों के बीच दिखाई देते थे। इतिहास, संस्कृति, समाज और अध्यात्म से जुड़ी किताबें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आकर्षित करती थीं। खास तौर पर स्वामी विवेकानंद के विचारों ने उनके मन पर गहरी छाप छोड़ी। विवेकानंद के लेखन ने उनमें आत्मविश्वास, राष्ट्रभाव और सेवा के संस्कार को मजबूत किया।
6: मुझ पर जो प्रभाव पैदा हुआ वो स्वामी विवेकानंद जी का हुआ। मैं छोटी आयु में मेरे गांव के अंदर भी एक अच्छी लाइब्रेरी थी, गायकवाड़ जी ने बनाई हुई थी, कोई भी मुझे मिलना चाहता था, खोजना चाहता था तो मैं ज़्यादातर लाइब्रेरी में मिलता था। और लाइब्रेरी के जो व्यवस्थापक थे वो भी मुझे बहुत नाराज रहते थे क्योंकि 5 बजे को बंद करने का समय है तो 5 बजे के 1 मिनट के बाद मैं बाहर निकलता था तो वो उनको अगर 2 मिनट पहले ही बंद करना होता तो कर नहीं पाते थे। उसी के नाते मुझे अभी भी याद रखते हैं, वो अभी तो बहुत वयोवृद्ध हो गए लेकिन अभी भी वो याद रखते हैं। और विवेकानंद जी को मैं बहुत पढ़ता रहता था।
0: हर बच्चे की तरह नरेंद्र मोदी के भी कुछ सपने थे। उनमें से एक था सेना की वर्दी पहनना। नरेंद्र मोदी सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहते थे। जामनगर के सैनिक स्कूल में दाखिले की इच्छा भी थी लेकिन आर्थिक हालात ने रास्ता रोक लिया था, उनका सपना अधूरा रह गया। लेकिन देश सेवा का विचार मन से कभी नहीं गया।
5: ये आपकी बात सही है। बचपन में मेरा एक स्वभाव था, किताबें पढ़ना, लाइब्रेरी चला जाता था तो बड़े बड़े लोगों के जीवन पढ़ना ये शौक रहता था। कभी फौज वाले यूनिफॉर्म में निकलते थे तो मुझे बड़ा देखता था, कभी बच्चे की तरह खड़े होकर के सैल्यूट कर देता था, मन करता था खुद में भी। इतने में 1962 का वॉर हो गया, तो हमारे यहाँ से दूर एक मेहसाना स्टेशन है मेरे गांव से, तो वहाँ स्टेशन पे सब लोग जो फौज के लोग ट्रेनों में जाते थे उनका बड़ा सत्कार करते थे, चाय वगैरह, तो मैं भी चला जाता था, तो जाकर के मैं भी वो, तो मुझे बड़ा मजा आता था। तो मन पे हो गया कि हाँ ये देश के लिए जीने मरने वाला रास्ता है, तो कभी उस दिशा में सोचता फिर चला गया।
0: फिर जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने दिशा ही बदल दी। करीब 17 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी घर छोड़कर निकल पड़े, मंजिल थी हिमालय। कई महीनों तक आश्रमों और आध्यात्मिक स्थलों में पीएम मोदी ने समय बिताया, साधु संतों के बीच रहे, आत्मचिंतन किया, अनुशासन और तपस्या को करीब से समझा। ये यात्रा केवल स्थानों की यात्रा नहीं थी बल्कि स्वयं को समझने की यात्रा भी थी। यहीं से उनके भीतर जीवन को बड़े उद्देश्य के साथ देखने का दृष्टिकोण और मजबूत हुआ। हिमालय ने प्रधानमंत्री मोदी को एक और सीख दी, समाज से दूर नहीं बल्कि समाज के बीच रहकर बदलाव लाया जा सकता है। इसी सोच के साथ नरेंद्र मोदी वापस लौटे और अहमदाबाद पहुंचे। यहीं से उनका जुड़ाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ और मजबूत हुआ। प्रचारक के रूप में उन्होंने खुद को पूरी तरह संगठन के काम में समर्पित कर दिया। सुबह से रात तक कार्यकर्ताओं के बीच रहना, यात्राएं करना और संगठन को मजबूत करना ही जीवन का हिस्सा बन गया।
5: 4:30-5 बजे उठना, पूरा दफ्तर में झाड़ू लगाना, पोता करना, फिर सबके लिए चाय बनाना और 5:20 को सबको उठाना। फिर हमारे यहाँ एक आरएसएस में प्रातः स्मरण होता है, तो प्रातः स्मरण होता था, सभी महापुरुषों का स्मरण करते हैं, फिर सबको चाय परोसता था, उसके बाद शाखा चला जाता था, फिर आकर के सबके लिए नाश्ता बनाता था, तो पोहे वगैरह बनाना मुझे बहुत अच्छा आता है।
7: अच्छा।
5: सबको मैं खिलाता था और फिर कोई 10 बजे स्नान करता था।
0: फिर आया साल 1975, देश में आपातकाल लागू हुआ। विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर इंदिरा गांधी की ओर से जबरदस्त कार्रवाई शुरू हुई। उस दौर में नरेंद्र मोदी संगठन के काम में सक्रिय थे। पीएम मोदी को बचने के लिए कई बार पहचान छिपानी पड़ी, भेष बदलने पड़े, भूमिगत रहकर काम करना पड़ा। ये दौर उनके लिए संघर्ष, जोखिम और संगठन कौशल की बड़ी पाठशाला साबित हुआ।
8: गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, तब वो हमारे घर पे सरदार जी बन के रहे थे, हमारे पुराने घर पे मधुगुंज में हम लोग रहते थे, वहां पे रहते थे। एक बार क्या हुआ कि वो सरदार जी के वेश में बाहर निकल रहे थे और सामने से पुलिस वाला आया, तो पुलिस वाले ने उनको पूछा कि भाई यहाँ पे नरेंद्र भाई कहाँ पे रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि भाई मेरे को तो नहीं पता है, आप अंदर जाके पूछ सकते हैं कि भाई कहाँ रहते हैं।
0: 1980 और 1990 के दशक तक आते आते नरेंद्र मोदी की पहचान एक कुशल संगठन कार्यकर्ता के रूप में बनने लगी। भारतीय जनता पार्टी में उनकी जिम्मेदारियां बढ़ती चली गई। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा हो या मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा, बड़े आयोजनों के प्रबंधन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। पार्टी के भीतर उन्हें एक ऐसे कार्यकर्ता के रूप में देखा जाने लगा जो चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी हो उसे व्यवस्थित ढंग से पूरा कर सकता है।
9: 2002 गुजरात में चुनाव था, मेरी जिंदगी का वो सबसे बड़ा कसौटी थी। वैसे मैं मेरे जीवन में करीब करीब चुनाव जीतने का अवसर मुझे बहुत मिला है, लड़ा तब भी और लड़ाया तब भी, तो मेरे जीवन में न टीवी देखा, रिजल्ट आ रहे थे, कुछ नहीं। 11-12 बजे मेरे घर के नीचे सीएम बंगलों के बाहर ढोल की आवाज आने लगी और मैंने लोगों को कहा भाई 12 बजे तक मुझे कुछ जानकारी मत देना। फिर हमारे ऑपरेटर ने चिट्ठी भेजी कि साहब आप 2/3 बहुमत से आप आगे चल रहे हैं वगैरह, तो मैं नहीं मानता हूं कि कुछ मेरे भीतर कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन उसको ओवर पावर करने वाला मेरे पास कोई थॉट था। तो मेरे लिए वो रेस्टलेसनेस कहो एंग्जाइटी कहो अलग हो गया।
0: गुजरात भूकंप की त्रासदी से उबरने की कोशिश कर रहा था, उसी समय पार्टी नेतृत्व ने नरेंद्र मोदी को राज्य की जिम्मेदारी सौंपी थी। पहली बार नरेंद्र मोदी प्रशासनिक नेतृत्व की भूमिका में आए थे। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने खुद को एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश की जो फैसले लेने में तेजी और काम में निरंतरता पर जोर देता है।

0: इसके बाद गुजरात की राजनीति में उनकी पकड़ लगातार मजबूत होती गई। विकास, प्रशासन और राजनीतिक नेतृत्व के मुद्दों पर उनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बनने लगी।
1: श्री नरेंद्र मोदी विल बी अवर प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट फॉर द कमिंग लोकसभा इलेक्शन।
0: साल 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। इसके बाद शुरू हुआ देशव्यापी अभियान भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित चुनाव अभियानों में शामिल हो गया।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपनी माँ हीराबेन को अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा बताते रहे हैं। मोदी ने कई बार याद किया है, जब भी वो घर से किसी काम के लिए निकलते थे, उनकी माँ चुपचाप हाथ में कुछ रुपये रख दिया करती थी। रकम भले छोटी होती थी, लेकिन उसमें माँ का स्नेह, आशीर्वाद और विश्वास छिपा होता था।
1: प्यार से पैसे पकड़ाती हैं, आप उन पैसों का क्या करते हैं?
2: एक तो मेरी माँ ने मुझे जो हमेशा क्या देती है, ज्यादा से ज्यादा शायद एक बार 11 रुपया दिया था। ज्यादा से ज्यादा
3: तो नारियल और मिश्री मिली थी,
2: ज्यादा ज्यादा। लेकिन एक बार उसने मुझे 5,000 रुपया दिया।
1: अच्छा,
2: 5,000 रुपया, तो मैं सरप्राइज था जी। और क्या था, तो जिस दिन चीन के राष्ट्रपति आए थे, वो उन्होंने मेरे जन्मदिन की तारीख तय की थी खुद ने, मेरा भी ध्यान नहीं था। और उस समय अहमदाबाद में चीन के राष्ट्रपति आए थे, तो सुबह मैं जन्मदिन था तो माँ को मिलने गया, तो उसने मुझे 5,000 रुपये दिए। मैं कहा माँ क्या बात है।
0: वडनगर की गलियों से शुरू हुई ये यात्रा आसान नहीं थी। चाय की दुकान, लाइब्रेरी, सैनिक स्कूल का अधूरा सपना, हिमालय की तपस्या, संघ का अनुशासन, आपातकाल का संघर्ष और संगठन की लंबी साधना, हर पड़ाव ने नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व में एक नई परत जोड़ी। और शायद यही वजह है कि जब इतिहास ने उन्हें अवसर दिया, तो दशकों के अनुभव, संघर्ष और तैयारी के साथ देश के सामने खड़े थे।
4: वक्त एक ब्रेक का उजला है। ब्रेक के बाद खुलेंगे सत्ता के गलियारों के कुछ ऐसे किस्से, जिन्हें साझा करेंगे वो लोग जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ सबसे करीब से काम किया है।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: परिषद के साथ मंथन, देशवासियों का जीवन आसान बनाने और आर्थिक दर को बढ़ाने पर चर्चा। समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उन पर हमला, कहा कि 2017 से पहले गुंडों के आगे नतमस्तक थी सरकार, राम का नाम लेने पर चलती थी गोलियां, अखिलेश का पलटवार, यूपी में महाजंगल राज। त्रिपुरा बॉर्डर सुरक्षा पर गृहमंत्री अमित शाह की समीक्षा बैठक, आर्थिक लेन देन और प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री पर पैनी नजर का निर्देश, कहा सीमा सुरक्षा सिर्फ बीएसएफ ने, पूरे प्रशासन की जिम्मेदारी। बंगाल सरकार ने मदरसों का शुरू किया सर्वेक्षण, 5 जुलाई तक मांगे रिपोर्ट, नियमों के तहत संचालन और जरूरी दस्तावेजों की जांच होगी। भारत की टी20 टीम में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की धमाकेदार एंट्री, आयरलैंड इंग्लैंड दौरे में मिली जगह, कप्तान बनाया गया श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव बाहर।
1: दो हजार 2014 में नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तब देश ने उनका राजनीतिक सफर देखा और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश ने चुनावी मंच पर देखा, संसद में सुना और बड़े फैसलों के जरिए महसूस भी किया। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी कार्यशैली कैसी रही, फैसले लेने का उनका तरीका क्या है, इसका जवाब उन लोगों के पास है जिन्होंने पिछले 12 वर्षों में उनके साथ सबसे करीब से काम किया है।
2: ये मानता हूं कि जिस ढंग से मोदी जी का जीवन है वो जैन जी को भी आत्मविश्वास से भरेगा।
3: क्या रिटायर होने के बाद क्या करोगे? पहला काम मैं नींद कैसे बढ़ाऊं इस पर सोचूंगा।
4: मैं छोटी बैग में मेरी जिंदगी थी और मैं ट्रैवलिंग करता रहता
5: जी, आपने बताया झूले
4: और तो मैं देखता था कि एक तो मैं कपड़े खुद धोता था, सीएम बना तब तक मैं कपड़े खुद धोया।
2: उनके साथ काम करते करते मैंने जो अनुभव किया है, जो सीखा है, जो प्रेरणा प्राप्त की है, वो हर एक के लिए उपयोगी है।
6: हर भारतीय को लग रहा था कि विजय उसकी अपनी है।
7: सत्ता के गलियारों में दिखाई देने वाली तस्वीर अक्सर अधूरी होती है। मंच पर भाषण देने वाला नेता, चुनाव जीतने वाला रणनीतिकार या दुनिया के बड़े नेताओं के साथ बैठा प्रधानमंत्री तो सबको दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे छिपी कहानियां कभी सामने आती हैं। कभी एक साधारण सी कलम किसी व्यक्ति के विश्वास का प्रतीक बन जाती है, कभी किसी वैज्ञानिक की सफलता को अपनी जिम्मेदारी बताकर उसका हौसला बढ़ाना पड़ता है। और कभी 140 करोड़ लोगों के जीवन पर असर डालने वाले फैसले दिन रात जागकर लेने पड़ते हैं। राजनीति में जीत के लिए रणनीति, मेहनत और जन समर्थन की जरूरत होती है, लेकिन कई बार कुछ चीजें भावनाओं और विश्वास का भी हिस्सा बन जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिंदगी में ऐसी एक खास कहानी जुड़ी है एक कलम से। साल 2002 में जब नरेंद्र मोदी ने राजकोट से अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ा तब नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर इसी कलम से किए गए थे। इसके बाद ये कलम उनके राजनीतिक सफर का एक अहम हिस्सा बन गई।
3: 2002 का चुनाव लड़ रहा था, पहली बार मैं, मुझे चुनाव लड़ना था, पहली बार नामांकन भरना था और राजकोट से मैं उम्मीदवार हो रहा था। तो वहां दो संत मौजूद थे, मैं जब वहां गया तो उन्होंने मुझे एक डिब्बा दिया, मैंने खोला तो अंदर एक पेन थी। उन्होंने कहा कि प्रमुख स्वामी ने भेजा है, आप जब नामांकन में हस्ताक्षर करेंगे तो इस पेन से करना। अब वहां से लेकर मैं काशी चुनाव के लिए गया, एक भी चुनाव ऐसा नहीं है जब मैं नामांकन करने गया और उसके लिए मुझे हस्ताक्षर करने के लिए पेन पूज्य प्रमुख स्वामी जी के व्यक्ति आकर के खड़े न हुआ। और जब काशी गया तब तो मेरे लिए सरप्राइज था उस पेन का जो कलर था वो बीजेपी के झंडे के कलर का था, ढंकन उसका जो था वो ग्रीन कलर का था और नीचे का हिस्सा ऑरेंज कलर का था।
7: साल 2016 पूरी हमले के बाद पूरा देश आक्रोश में था। सरहद पार बैठे आतंकियों को जवाब कैसे दिया जाएगा, ये सवाल हर किसी के मन में था। और फिर आई वो रात जब भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा पार कर आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। ऑपरेशन बेहद गोपनीय था। दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपडेट ले रहे थे, लेकिन ये ऑपरेशन आसान नहीं था। प्रधानमंत्री खुद बताते हैं कि जब तक हर सैनिक सुरक्षित भारत वापस नहीं लौट आया, धड़कनें शांत नहीं हुई।
3: मैं लाइव कांटेक्ट में था चीजें का, लेकिन सुबह जानकारी आना बंद हो गया। सूर्योदय होते तक मैं फिर बेचैन होने लगा। मेरे मन में होता था कि क्या हुआ भाई, घंटे भर से कुछ खबर नहीं आ रही है। पढ़ना तो लगातार आ रही थी, निकले हैं पहली टुकड़ी है, दूसरी टुकड़ी है, ऐसा है वगैरह। लेकिन सूर्योदय होने के बाद भी मुझे खबर नहीं आने लगी, तो मैं थोड़ा बेचैन होने लगा। अब मैं भी नहीं चाहता कि मैं अपनी तरफ से उधर कम्युनिकेट करूं, कहीं और तकलीफ हो जाए। तो काफ़ी यानी करीब करीब सूर्योदय के भी एक घंटे के बाद वो समय मेरे लिए बहुत कठिन था, बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं जिंदा लौटने की खबर सुनने के लिए मैं बड़ा रहा था। वहाँ कितना नुकसान हुआ वो बात का विषय है, लेकिन मेरा जवान जिंदा लौटे मेरी पहली प्राथमिकता थी। फिर एक खबर आई करीब घंटे भर के बाद सूर्योदय कि अब वापिस हमारी सीमा में पहुंचे नहीं है, लेकिन हमारी दो तीन टुकड़ियां सेफ जोन में आ गई है। लेकिन चलने ते निकलते और कहीं रेंगते हुए निकलते तो समय लगेगा, लेकिन अब हमारा सेफ जोन है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। मैंने कहा फिर भी आखिरी व्यक्ति के पहुंचने तक मुझे खबर चाहिए।
7: भारत के लोकतंत्र में साल 2022 एक ऐतिहासिक पल लेकर आया।
8: मैं द्रौपदी मुर्मू
9: ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि
8: ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि
9: मैं श्रद्धा पूर्वक
7: देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति मिली। लेकिन इस फैसले के पीछे सिर्फ राजनीतिक गणित नहीं, एक संवेदनशील सोच भी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि राष्ट्रपति बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू उनसे अक्सर देश के आदिवासी समाज, खासकर उन बेहद पिछड़े जनजातीय समूहों की समस्याओं की चर्चा करती थी, जिन तक विकास की रोशनी पूरी तरह नहीं पहुंच पाई थी। यानी राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने वाली ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि देश के करोड़ों वंचित लोगों की आवाज को सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुँचाने की कहानी भी है।
3: हमारे राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी वो समाज के उस तबके से आती हैं, तो मैं जब भी उनसे मिलता था तो बहुत इमोशनल हो जाती थी। आदिवासी समाज में भी अति पिछड़े जो लोग हैं उन तक कुछ पहुंचा नहीं है, और छोटे छोटे समूह है, बिखरे हुए हैं। उन्होंने मुझे कई बार कहा कुछ करना है, मैंने उनसे कहा कि आप मुझे गाइड कीजिए। तो उनके मार्गदर्शन में मैंने एक स्कीम बनाई, पीएम जनमन योजना। अब ये लोग ज्यादा से ज्यादा 25 लाख लोग हैं, और वो भी 250 जगह पे हैं। पॉलिटिशियन के लिए काम का नहीं है, क्योंकि उसे वोट मिलना नहीं है, जीत हार होनी नहीं है, लेकिन जीवन के लिए बहुत बड़ा है। द्रौपदी जी उस समाज को जानती थी, उन्होंने मुझे आग्रह किया और मैंने पीएम। और आज जब मैं सुनता हूं कि साहब वहां पहले ये नहीं था अब ये हो गया, वो नहीं था हो गया, तो मेरे मन को एक बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है।
7: सितंबर 2019 पूरा देश चंद्रयान 2 की लैंडिंग का इंतजार कर रहा था। करोड़ों भारतीयों की निगाहें टीवी स्क्रीन पर थी, लेकिन आखिरी क्षणों में मिशन अपने लक्ष्य से चूक गया।
10: ये जो आप ग्राफ अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये विक्रम डिसेंट ट्रेजेक्ट्री है, कैसे किस तरह से जो वर्टिकल एल्टीट्यूड था, जो ऊंचाई थी वो, और आंकड़े नीचे प्राप्त हुए उसके बारे में।
7: इसरो मुख्यालय में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वो पल बेहद करीब से देखा। रात गहराती गई लेकिन प्रधानमंत्री को नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह उन्होंने फिर वैज्ञानिकों से मुलाकात की। उसी रात बोया गया आत्मविश्वास का बीज, आगे चलकर चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता का आधार बना।
11: People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath.
12: लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है।
3: चंद्रयान लॉन्चिंग में हम लास्ट सेकंड बिखर गए। सारे वहां बैठे हुए लोग परेशान थे। प्रधानमंत्री को कहने की हिम्मत नहीं थी किसी की, लेकिन मैं टेक्नोलॉजी को जितनी समझता हूं, मैं देख पाता था कि हाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, नहीं चल रहा है। आखिरकार एक जो सीनियर मोस्ट थे उन्होंने आके मुझे कहा साहब, अगर चिंता मत कीजिए, सभी को मैं नमस्ते नमस्ते किया। मैं रात को 2 बजे कार्यक्रम था, वो मैं वहां गेस्ट हाउस में गया लेकिन मैं सो नहीं पाया। मैंने फिर से करीब आधे पौने घंटे के बाद सबको बुलाया। मैंने कहा देखिए अगर ये लोग थक ना गए हो तो मैं सुबह 7 बजे इनको मिलना चाहता हूँ जाने से पहले, क्योंकि देश को बहुत बड़ा सेटबैक था। लेकिन मैं सेटबैक से रोने धोने करके जिंदगी गुजारने वालों में नहीं था। मैंने कहा मैं सुबह गया और सभी साइंटिस्टों को मैंने कहा अगर कोई फेलियर है तो जिम्मेवारी मेरी है, आपने प्रयास किया, आप निराश मत होइए। और मैंने उनका जितना भी आत्मविश्वास जगा सकता हूं मैंने जगाया और चंद्रयान 3 सफल हुआ।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को लेकर अक्सर चर्चा होती है। लोग हैरान होते हैं कि आखिर इतनी व्यस्त दिनचर्या के बीच वो खुद को कैसे सक्रिय रखते हैं। प्रधानमंत्री का दिन अक्सर सुबह बहुत जल्दी शुरू होता है और देर रात तक बैठकों, फाइलों, यात्राओं और कार्यक्रमों का सिलसिला चलता रहता है। विदेश दौरे हो या चुनावी अभियान, उनकी कार्यक्षमता को लेकर अक्सर चर्चा होती रही है।
13: मतलब 7 घंटे तो सोना एक अमूमन एक शरीर को चाहिए चाहिए। आप 3.5 घंटे ही सोते हो।
4: ये बात आपकी सही है। मेरे जो जितने मेरे साथी हैं, मेरे जानने वाले लोग हैं, या हमारे जो अब सरकार में आया हूँ तो डॉक्टर भी रहते हैं, उन सब का मेरे से एक ही आग्रह रहता है कि मेरी नींद में बढ़ाऊं। राष्ट्रपति ओबामा जब मुझे मिले तो वो भी सबसे पहले मेरे से इसी के में उलझ गए। बोले मोदी जी क्यों ऐसा करते हैं? हम दोनों अच्छे दोस्त हैं
13: जी,
4: तू तारी करके बुलाते हैं एक दूसरे को, तो तू ऐसा क्यों करता है जी? तुझे आज पता नहीं है ये तेरा नशा है काम का, तुम करते रहोगे लेकिन तुम अपना नुकसान कर रहे हो। और वो जब भी मिलते हैं कि तुम मेरी बात मानते हो नहीं मानते हो, नींद बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई। अब पता नहीं मेरा एक बॉडी साइकिल ऐसा हो गया है।
13: मतलब आपको नींद आती नहीं है 3.5-4 घंटे के बाद?
4: नहीं, नींद जो है मेरी इतने कम समय में पूरी हो जाती है।
13: स्ट्रेस की वजह से तो आप उठ नहीं जाते हो कि अब मुझे काम?
4: नहीं, मैं इतना नॉर्मली देखा है आपने कि कोई भी व्यक्ति उठता है तो हाथ पैर इधर उधर करता है, आंखें ऐसे ऐसे करता है, मेरा कुछ नहीं। आंख खुलती है, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड मेरा पैर जमीन पे होता है, मैं उठ जाता हूँ। उठता मैंने बिस्तर पे उठता हूँ, ऐसा नहीं बिस्तर से भी बाहर होता हूँ। अब ये हो सकता है वो मेरी जो 18-22 साल के कालखंड में जिस जिंदगी को मैं जी रहा था उसमें से शायद ये डेवलप हुआ है। अब वो मेरे शरीर का वो हिस्सा बन गया है।

0: साल 2020 पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी। भारत जैसे 140 करोड़ आबादी वाले देश के सामने चुनौती और भी बड़ी थी। दिन रात बैठकों का दौर चलता था, राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद, डॉक्टरों से चर्चा और विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर फैसले लिए जा रहे थे। कोरोना संकट सिर्फ स्वास्थ्य की चुनौती नहीं था, बल्कि नेतृत्व की भी परीक्षा थी। और इसी दौर ने संकट प्रबंधन में मोदी सरकार की कार्यशैली को दुनिया के सामने रखा। पीएम मोदी हर उस शख्स का हालचाल ले रहे थे जिनको वो करीब से जानते थे।
1: मैं मुख्यमंत्री था, कोविड में ही मुख्यमंत्री बना, और मैं तो ऐसा मुख्यमंत्री था जिसका मंत्रिमंडल ही नहीं था, क्योंकि तब तक कोविड पैर पसार चुका था, दूसरे को शपथ दिलाने का मौका ही नहीं मिला, मैं अकेला था। और एक के बाद एक मेरे काम करने वाले अधिकारी सारे के सारे कोविड के कारण अस्पतालों में भर्ती हो रहे थे। मेरी पीएस हेल्थ भर्ती हुई, उसके बाद फिर मेरे कमिश्नर हेल्थ एडमिट हो गया अस्पताल में, फिर मेरे सीएस को ही हो गया। तो उस समय फिर कहां विचार विमर्श करें, तो एक ही सहारा मुझे दिखता था, प्रधानमंत्री जी। तब मोदी जी प्रधानमंत्री जी थे, आपको पता ही है, तो सीधे उनसे बात करते थे। मुझे कोविड हुआ तो तत्काल फोन आया उनका, मुझे भी इन्फेक्शन हो गया काम करते करते, ये ध्यान रखना, प्राणायाम करना,
2: अच्छा
1: हाँ, परिवार के बाकी लोगों को इन्फेक्शन ना हो जाए इसकी चिंता करना। अब ये बिल्कुल अलग तरह की चीजें। और केवल
0: एक कलम से शुरू हुआ सफर, संकट की रातों में लिए गए फैसले, वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाने वाले शब्द और लगातार काम करते रहने का अनुशासन, इन तमाम कहानियों में सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की झलक दिखाई देती है जो अपने फैसलों, अपने विश्वास और अपने काम करने के तरीके से अलग पहचान बनाता है।
3: बारह साल का ये सफर सिर्फ सरकार चलाने की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी कार्यशैली की कहानी है जिसमें अनुशासन है, तैयारी है, निरंतरता है और परिणाम पर लगातार फोकस है। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री के साथ काम करने वाले उनके सहयोगी उन्हें सिर्फ एक राजनीतिक नेता के तौर पर नहीं देखते बल्कि एक ऐसे कार्य संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में देखते हैं जिसने सरकार चलाने के तौर तरीकों को नई पहचान देने की कोशिश की।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक यात्रा पर हजारों भाषण हुए, सैकड़ों किताबें लिखी गई और अनगिनत विश्लेषण किए गए। लेकिन सत्ता के शिखर तक पहुंचने वाले इस नेता की कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जो सुर्खियों से दूर रही। कुछ किस्से संघर्ष के हैं, कुछ फैसले के, कुछ भावनाओं के और कुछ उस सोच के जिसने नरेंद्र मोदी को एक अलग पहचान दी। ये कहानी उस दौर की है जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। साल 2005 में अमेरिका ने उन्हें वीजा देने से इनकार कर दिया था। उस वक्त इस फैसले ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी चर्चा बटोरी, लेकिन सालों बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना को याद करते हुए कहा कि उन्हें इसका दुख व्यक्तिगत तौर पर नहीं बल्कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रतिनिधि के तौर पर हुआ था।
1: एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट का और अमेरिकन सरकार ने मुझे वीजा देने से मना कर दिया था। व्यक्ति के जीवन में तो मेरे लिए कोई अमेरिका जाना नहीं जाना कोई बड़ी चीज थी, मैं पहले भी जा चुका था, बहुत मेरे थे। लेकिन एक इलेक्टेड गवर्नमेंट और एक स्टेट का अपमान, एक देश का अपमान मैं फील करता था और मुझे मन में कसक थी कि क्या हो रहा है। जस्ट कुछ लोगों ने झूठ चला दिया इसलिए ये निर्णय होंगे, दुनिया में ऐसे चलती है दुनिया, मेरे मन में एक भाव था। लेकिन उस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने कहा कि आज अमेरिकन गवर्नमेंट ने मेरा वीजा रद्द किया है, जो कहना था मैंने कहा। लेकिन मैंने एक बात कही, मुझे कुछ सवाल पूछा गया, मैंने कहा देखिए मैं अब ऐसा हिंदुस्तान देखता हूं कि दुनिया वीजा के लिए लाइन में खड़ी रहेगी। ये 2005 का मेरा स्टेटमेंट है।
0: वक्त बदला, परिस्थितियां बदली और दुनिया की राजनीति भी बदली। वही नरेंद्र मोदी बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने और वैश्विक मंच पर एक प्रमुख नेता के तौर पर उभरे।

0: पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक ऐसा ही प्रसंग सामने आया जब निर्दोष लोगों की मौत की खबरों ने पूरे देश को झकझोर दिया।
1: मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है।
0: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बताते हैं कि इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद व्यथित थे। आतंकी हमला सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा नहीं था, बल्कि उन परिवारों के दर्द का सवाल भी था जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया था।
2: जब वो आए तो बिल्कुल शांत स्थिर, एकदम ऐसा लगा नहीं कि उद्वेलित हैं, आए बैठे, और आज तक मुझको उनकी बोलते हुए वो आंखें और वो चेहरा वैसा का वैसा याद है। बिना किसी उद्वेग के, गुस्से के उन्होंने कहा कि इस बार का ऑपरेशन अलग होगा, सर्जिकल स्ट्राइक से अलग होगा, एयर स्ट्राइक से अलग होगा। आतंकवादी और उनके मुखिया आकाश, शब्द एग्जैक्ट में वो नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन भावना यही थी कि जहां भी होंगे हम ढूंढेंगे और उनको सबक सिखाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन एक बार, मैं भी इतने साल मुख्यमंत्री रहा हूं, कई बार ऐसी घटनाएं व्यथित कर देती थी, गुस्से में ला देती थी, लेकिन कोई चेहरे पर भाव नहीं थे।
0: ये कहानी बताती है कि बड़े फैसलों के पीछे कई बार गहरी संवेदनाएं और मानवीय भावनाएं भी होती है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक साधना थी। प्रधानमंत्री बताते हैं कि उन्होंने 11 दिनों का विशेष अनुष्ठान किया था, जमीन पर सोए थे, खान पान में अनुशासन रखा और उन स्थलों की यात्रा की जिनका संबंध भगवान राम की परंपरा से जुड़ा है।
3: मैं इसको एक प्रधानमंत्री के रूप में इस कार्यक्रम को नहीं लेता हूं, एक राम भक्त के रूप में करना चाहता हूं। मुझे क्या करें, उसमें से मुझे सुझाव आया, तो सुझाव तो बहुत, लेकिन मैंने फिर कुछ अध्ययन भी किया और मैंने मनोमन तय किया कि मैं 11 दिन का अनुष्ठान करूंगा। और मैं जमीन पे सोता था, नारियल के पानी पर रहता था, और तय किया मैं प्रभु राम जहां जहां गए थे उसमें जहां भी मैं जा सकता हूं जाने का प्रयास करूंगा।
0: मोदी कहते हैं कि उनके लिए प्राण प्रतिष्ठा कोई इवेंट नहीं थी बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव था, एक ऐसा अनुभव जिसमें आस्था, अनुशासन और आत्मसमर्पण तीनों शामिल थे। नई तकनीक और डिजिटल क्रांति की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी हिंदी में हस्ताक्षर करते हैं, ये बात हर किसी को हैरान करती है। दरअसल युवाओं के साथ एक संवाद के दौरान इसके पीछे की कहानी सुनाई थी। उनका मानना है कि भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं बल्कि पहचान और आत्म गौरव का प्रतीक भी है।
3: मैं मातृभाषा को सेलिब्रेट कर रहा हूं, उसका महात्म्य बढ़ा रहा हूं। मुझे ये अभी ये गेमिंग वाले सब बच्चों के साथ बैठा था तो उनमें से किसी ने पूछा कि हमारे लिए कोई संदेश, तो ऐसे मैंने कहा एक काम करो, अब जब भी आप हस्ताक्षर कहीं करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, अपनी मातृभाषा में सिग्नेचर करो, इतना तो गर्व करो। अब मैं तो विविधता को लाने की कोशिश कर रहा हूं।
0: प्रधानमंत्री के मुताबिक अपनी भाषा में किया गया एक साधारण हस्ताक्षर भी व्यक्ति को उसकी जड़ों से जोड़ता है। ये कहानियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस पक्ष को सामने लाती हैं जो अक्सर राजनीतिक बहसों में नजर नहीं आता। ये सिर्फ एक नेता की कहानियां नहीं है बल्कि उन अनुभवों की दास्तान है जिन्होंने उनके फैसलों, सोच और नेतृत्व शैली को आकार दिया।
4: फिलहाल कहानी मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
6: It's Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
7: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
6: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
1: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
2: What you got for me, Jack?
1: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
3: बहुत चुल मच रहा है कसम से, आज घर जाकर दहिया पूरा कपड़ा उतार के पुजाएंगे।
4: क्योंकि मैं आपकी खुजली को अंडरएस्टिमेट नहीं कर रहा, आपका जो दर्द है वो सही है, तकलीफ सही है, जो आप इतने दिनों से अपने छोटे से दिल में लेके इतना बड़ा पहाड़ घूम रहे हो,
3: अधूरा प्यार ही
4: तुम्हें दुनिया की सिम यार ठीक है मत दुराओ
5: बिजुरी आई गए
4: हाँ थोड़ा राइट ओ थोड़ा राइट
5: यह अब ही नसिया पाया भैया
4: अरे थोड़ा सा और ऊपर
5: अरे लेफ्ट बोल रहा हूँ
4: हाँ यही यही यही खुजा जोर से

संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक, आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ मंथन, देशवासियों का जीवन आसान बनाने और आर्थिक दर्द को बढ़ाने पर चर्चा। समाजवादी पार्टी पर मुख्यमंत्री योगी का बड़ा हमला, कहा 2017 से पहले गुंडों के आगे नतमस्तक थी सरकार, राम का नाम लेने पर चलती थी गोलियां, अखिलेश का पलटवार, यूपी में महाजंगल राज। बंगाल सरकार ने मदरसों का शुरू किया सर्वेक्षण, 5 जुलाई तक मांगे रिपोर्ट, नियमों के तहत संचालन और जरूरी दस्तावेजों की होगी जांच।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

यूपी के गोंडा में समाजवादी पार्टी पर बरसे मुख्यमंत्री योगी, कहा 2017 से पहले यहां दुर्गा पूजा के वक्त दंगा हुआ था। सीएम योगी ने सपा की सरकार में राम मंदिर का मुद्दा उठाया, बोले कि राम के नाम पर यहां प्रतिबंध था, चलती थी गोलियां, भगवान राम का भक्त अयोध्या नहीं जा सकता। गठबंधन इंडिया की बैठक से पहले सीपीएम ने बीजेपी के साथ डील के आरोप पर कांग्रेस से मंगाई सफाई, और 8 जून को कांग्रेस ने बैठक बुलाई है, डीएमके ने मीटिंग में जाने से इनकार किया है। झारखंड में राज्यसभा सीट को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया, जेएमएम ने पूर्व मंत्री बैद्यनाथ राम को अपना कैंडिडेट बनाया। वैश्विक संकट के बीच में भारत की नई आर्थिक रणनीति, पीएम मोदी ने ईएसी की एक अहम बैठक बुलाई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस हुआ। पटना में लालू यादव और राबड़ी देवी की जेड प्लस सिक्योरिटी हटाए गए, आरजेडी कार्यकर्ता बंगले की रखवाली कर रहे हैं, कांग्रेस ने बताया बदली की राजनीति। पटना कोचिंग सेंटर फायरिंग मामले में फैजल खान और खान के वकील का दावा, फैजल खान तो सरेंडर नहीं करेंगे, सोमवार को अग्रिम जमानत पर अर्जी लगाएंगे। पटना में केजीएस कोचिंग में फायर सेफ्टी की कमियां मिली है, केजीएस को कमियां दूर करने के निर्देश दिए गए। बंगाल में मदरसों का सर्वे शुरू करने का निर्देश है, 5 जुलाई तक जिला स्तर पर मांगे गए रिपोर्ट, नियमों के तहत संचालन और जरूरी दस्तावेजों की जांच। पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली ने ममता के लिए जो है यूसुफ पठान की लोकसभा सीट छोड़ने का संदेश पहुंचाने की बात से किया इनकार, गांगुली ने कहा कि ममता बैनर्जी ने कभी ऐसा नहीं कहा। कांग्रेस जनता पार्टी का दिल्ली के जंतर मंतर पर 5 घंटे तक चला प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके पर बीजेपी अध्यक्ष का निशाना, कहा कि विदेश में बैठे कुछ लोग सोचते हैं कि वो भारत के युवाओं को दिशा दे सकते। अखिलेश यादव से लेकर केजरीवाल तक ने कांग्रेस जनता पार्टी के बहाने सरकार को घेरा, कहा कि युवाओं में भारी गुस्सा, आवाज सुननी होगी। 30 जुलाई को जंतर मंतर पर कांग्रेस का बड़ा विरोध प्रदर्शन, वंचित वर्गों के लिए उठाएगी मुद्दे। रीनीट पेपर लीक की खबरें पूरी तरह से फर्जी, एनटीए ने सख्त चेतावनी जारी की। दिल्ली में अमित शाह से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा। त्रिपुरा में गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा की समीक्षा की, कहा कि बीएसएफ और प्रशासन मिलकर सुरक्षा ग्रिड बनाएंगे, सीमा क्षेत्र में आर्थिक लेनदेन की निगरानी होगी। भोजपुरी गायक और बीजेपी नेता पवन सिंह ने सम्राट चौधरी से की मुलाकात, पवन सिंह ने कहा कि सम्राट चौधरी से बिहार के विकास और कलाकारों को लेकर बात। बिहार के साहिबगंज से बीजेपी विधायक राजू सिंह गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी, दिल्ली के राउस रेवेन्यू कोर्ट 9 जून को सजा पर बहस। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने आईएसआई और अंडरवर्ल्ड से जुड़े 4 आतंकियों की 4 दिन पुलिस कस्टडी बढ़ी है, 7 दिनों की हिरासत खत्म होने के बाद कोर्ट का आदेश। बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रशासन का एक्शन, 13 नर्सिंग होम और अस्पताल सील, फायर सेफ्टी और भवन निर्माण के नियमों में गड़बड़ी मिली। संभल में सरकारी जमीन पर बने मुस्तफा कादरी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन, 7 लोगों के खिलाफ FIR। इंदौर में जर्जर मकानों पर निगम का बुलडोजर चला, 100 साल से ज्यादा पुराने मकान जमींदोज किए गए। नवी मुंबई एयरपोर्ट पर छत्रपति शिवाजी महाराज की 12 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण, बोले सीएम देवेंद्र फडणवीस, नई पीढ़ी को सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराना मकसद। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में माय भारत युवा सम्मेलन का शुभारंभ और 6,000 से ज्यादा युवाओं ने शिरकत की। ओडिशा के बोलांगीर में आंधी तूफान के चलते एक बाइक पर पेड़ गिरने से एक शख्स की मौत, 2 घायल। 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब में जोरदार बर्फबारी, कड़ाके की ठंड, चारों तरफ बर्फ की चादर। दक्षिण के कई राज्यों में बारिश, हैदराबाद में झमाझम बरसात से मौसम सुहाना। कर्नाटक में भी कई शहरों में मूसलाधार बारिश, धारवाड़ में भारी बरसात के बाद जल जमाव से दिक्कत। केरला में मानसूनी बारिश तेज, कन्नूर में गाड़ियों की आवाजाही में दिक्कत है। टीम इंडिया की T20 टीम में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की एंट्री, आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे में जगह, एशियन गेम्स के लिए भी चुने गए। T20 फॉर्मेट में कप्तान बनाए गए श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव टीम से बाहर। न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच के पहले दिन खेल खत्म, भारत का स्कोर 3 विकेट पर 367, 103 रन बनाकर नाबाद हैं कैप्टन गिल, और KL राहुल ने भी चढ़ा शतक। 50 रन के साथ नॉट आउट है ऋषभ पंत, साई सुदर्शन ने खेले 81 रनों की पारी। भारत ने जीता अंडर 18 एशिया कप मेंस हॉकी का खिताब, फाइनल में जापान को 4-1 से हराया। अंडर 18 एशिया कप वुमेन्स हॉकी में भारत को ब्रॉन्ज मेडल और कोरिया को 3-0 से मात दी, जापान में मुकाबला होना था। हॉकी में टीम इंडिया की शानदार कामयाबी पर पीएम मोदी ने दी बधाई, अमित शाह ने शुभकामनाएं। रूस की मीरा एंड्रीवा ने जीता फ्रेंच ओपन टेनिस का खिताब, फाइनल में पोलैंड की माजा को उन्होंने सीधे सेट्स में हरा दिया।
आज फ्रेंच ओपन में पुरुष वर्ग में खिताबी भिड़ंत इटली के कुबोली में जर्मनी के ज्वेरेब में का मुकाबला है। सूर्या हत्याकांड के बाद से अवैध मदरसों पर बड़ी कार्रवाई, गाजियाबाद के इंदिरापुरम और लूनी में दो मदरसे सील किए गए। देहरादून में परीक्षा में नकल को रोकने पर बवाल, शिक्षक के साथ पुलिसकर्मी ने मारपीट कर दी, घटना का सीसीटीवी वायरल। गर्भवती प्रेमिका की हत्या के आरोपी का सीतापुर पुलिस ने किया हाफ एनकाउंटर, लखनऊ में गर्भवती छात्रा की लाश मिली थी। यूपी के चंदौली में साइकिल सवार की गोली मारकर हत्या से सनसनी हमलावर की तलाश जारी। हरियाणवी स्टेज डांसर डिंपल चौधरी के साथ यूपी के हाथरस में बदसलूकी, डिंपल चौधरी ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी 3 जून को कार्यक्रम। हरिद्वार में स्नान के दौरान बुजुर्ग महिला तेज बहाव में बह गई, लगभग 1 किलोमीटर के बाद रेस्क्यू। ग्वालियर के जनकगंज थाना इलाके में पड़ोसियों में विवाद, घटना सीसीटीवी में कैद, पत्थरबाजी भी हुई। अलीगढ़ में बदमाशों ने सरेराम महिला के पैर में गोली मार दी, वारदात के बाद आरोपी फरार, महिला अस्पताल में भर्ती। गुजरात के वापी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से गिरते हुए यात्री का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल ने बचा। महाराष्ट्र के अकोला में बेटी ने ही मां की हत्या कर दी, 3 घंटे में पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। पंजाब के अमृतसर में एनआरआई की हत्या, भाभी भाई और भतीजे समेत 4 आरोपी गिरफ्तार, 2 प्रॉपर्टी डीलर भी फरार। गुरुग्राम में क्रेडिट कार्ड के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 5 गिरफ्तार, दिल्ली के एक फ्लैट से ये फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे। केरल के वायनाड में एक स्कूल में एक टॉर्चर छात्र बीमार, उल्टी बुखार के बाद 30 बच्चे अस्पताल में एडमिट। एमपी के रतलाम में वाटर पार्क में ओट में अवैध स्पा का खुलासा हुआ है, 3 विदेशी युवती स्थानीय युवक से पूछताछ जारी है। मंडी के पालमपुर में छात्र की संदिग्ध मौत, कमरे में इंजेक्शन और नशीली दवाएं मिली। मथुरा वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए आए श्रद्धालु की मौत, अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद गई जान, एमपी का रहने वाला था। इंदौर के विदुर नगर कैफे हत्याकांड का खुलासा हुआ है, पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिहार के रोहतास में प्रेम प्रसंग में 6 बच्चों की मां की पीट पीट कर हत्या, शादीशुदा प्रेमी पर हत्या का आरोप लगा। कानपुर में प्रेमिका की हत्या करने वाले अस्पताल संचालक ने मांगी माफी, गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने निकाला 3 हत्यारों का जुलूस। पंजाब के नवाज शहर में 16 साल की लड़की का बेरहमी से कत्ल, मृतक के मां ने आशिक पर आरोप लगाया। एम्स भुवनेश्वर में डॉक्टर्स का कमाल, 47 साल की एक महिला के हाथ से अलग किया 7 किलोग्राम का बड़ा ट्यूमर। डल झील में पर्यटकों की बढ़ती आमद से शिकारा सवारी की मांग बढ़ गई, स्थानीय नाव चालकों के कारोबार को नई रफ्तार। नैनीताल के नन्हे जादूगर की प्रतिभा के मुरीद हुए देश के जाने माने उद्योगपति आनंद महिंद्रा, मासूम बच्चे की मदद करने की इच्छा जताई। जमशेदपुर में जिला प्रशासन ने आम महोत्सव का किया आयोजन, 30 प्रकार के आमों की प्रदर्शनी लगी। पूर्वा एक्सप्रेस से 95 कछुओं की तस्करी नाकाम हुई है, बंगाल के रानीगंज स्टेशन पर यूपी का एक तस्कर गिरफ्तार। अमेरिका और ईरान में भीषण जंग, ईरान ने कुवैत और बहरीन पर 7 बैलिस्टिक मिसाइलों से किया हमला। कतर और बहरीन ने ईरानी मिसाइल हमले की कड़ी निंदा की, बहरीन विदेश मंत्रालय ने संप्रभुता का खुला उल्लंघन और खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बताया खतरा। आईआरजीसी के मेजर जनरल मोहसिन रेजाई की धमकी, कहा कि युद्ध जारी रहा तो और नौसैनिक नाकेबंदी नहीं हटाई गई तो इस युद्ध को हिंद महासागर, लाल सागर और भूमध्य सागर तक फैला देंगे। ईरान ने संवर्धित यूरेनियम को किसी दूसरे देश भेजने के दावे को किया खारिज, ईरानी मीडिया का दावा। दक्षिणी लेबनान पर इसराइली हवाई हमला जारी, इसकी चपेट में एक सैन्य वाहन आया, लेबनान के 2 सैन्य अधिकारी और 1 सैनिक की मौत। गाजा सीज फायर पर नए दौर की बातचीत हुई है, हमास का प्रतिनिधिमंडल काहिरा पहुंचा। रूस के क्रास्नोडार इलाके में यूक्रेनी ड्रोन हमला, तेल डिपो में भीषण आग। यूक्रेन की यूरोपीय संघ में शामिल होने की राह आसान, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया सही दिशा में कदम, हंगरी ने समझौते के बाद यूक्रेन के सदस्यता वार्ता का किया समर्थन, 15 जून को लग्जमबर्ग में बैठक में यूक्रेन की सदस्यता पर होती है हो सकती है बातचीत। पोप लियो शनिवार को अगले 1 हफ्ते के लिए आधिकारिक दौरे पर स्पेन पहुंचे। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति जैक्स शिराक की पत्नी बर्नाडेट का 93 साल की उम्र में निधन हो गया।

0: यूपी में भी 2027 के लिए हर पार्टी ने कमर कस ली है। योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं तो अखिलेश यादव भी लगातार सरकार को घेर रहे हैं।
1: तब राम का नाम लेने पर ही प्रतिबंध था, डंडे बरसते थे, गोलियां चलती थी। अयोध्या में भगवान राम का भक्त अयोध्या में नहीं जा सकता था। किस प्रकार की अराजकता थी। अब तो अयोध्या में राम भक्त के अलावा कोई रामद्रोही घुस ही नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। आज तो अयोध्या चमक रही है।
2: 2027 के सियासी समर में बीजेपी हिंदुत्व और राम मंदिर के मुद्दे पर सवार है, जहां अखिलेश यादव पर सीएम योगी आदित्यनाथ के हमले जारी हैं।
1: 2017 के पहले इन दंगाइयों को, इन पेशेवर गुंडों को प्रश्रय देते थे, इनके सामने नतमस्तक होते थे। प्रदेश में कर्फ्यू रहता था।
2: योगी विकास से लेकर डबल इंजन तक की खूबियां गिना रहे हैं तो वहीं पिछली सरकारों की खामियां भी बता रहे हैं।
1: 2015-16 में इस गोंडा में भी दुर्गा पूजा के समय दंगा करने का प्रयास हुआ था, यहां भी दंगे हुए थे। मां दुर्गा की मूर्ति को विसर्जन नहीं करने दिया जाता था, रामलीलाओं के आयोजन में अड़चने डाली जाती थी। पर्व और त्योहार प्रारंभ होने के पहले, उत्सव प्रारंभ होने के पहले उपद्रव शुरू हो जाते थे। उत्सव के रंग में किसी ने भंग करने का काम किया तो फिर वर्तमान तो जाएगा ही जाएगा, भविष्य भी स्वाहा हो जाएगा।
2: उधर अखिलेश को योगी सरकार में जंगल राज नजर आ रहा है। उधर गाजीपुर में कमलेश बिंद के एनकाउंटर पर विपक्ष और सरकार के सहयोगियों के सुर एक जैसे नजर आ रहे हैं। किसी को अपने वोट बैंक की टेंशन सता रही है तो कोई वोट बैंक में सेध मारने की तैयारी में है।
3: इतना बड़ा तो दुर्दांत अपराधी नहीं है कि जिससे आप एनकाउंटर, अब मुख्य आरोपी उसको बनाया भी नहीं गया, मुख्य आरोपी कोई और है। मुख्य आरोपी को तो पकड़ने दूर है, वो छुएंगे नहीं। आज जो साधारण है, जो वोट अभी गाजीपुर हारे हैं, अब गाजीपुर में बिंदुओं की संख्या बहुत अधिक है, जौनपुर में बिंदुओं की संख्या अधिक है, प्रधानमंत्री के चारों तरफ के हम सारी सीटें हार गए हैं।
4: बहुत ही जो घटना हुई है एनकाउंटर की, तो आखिर जब पुलिस पकड़ सकती थी मुजरिम को तो एनकाउंटर क्यों करा गया, सवाल तो ये है। ये अपने आप में पूरी कानून व्यवस्था में प्रश्न चिन्ह उठाने का काम है। भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं चाहते हैं कि प्रशासन और जो प्रशासन है, जो नियम है, जो कानून है, उससे चले।
2: बहरहाल यूपी में चुनावी बीच पूरी तरह से तैयार है, जहां हर पार्टी अपने हिसाब से बैटिंग कर रही है। आज तक ब्यूरो।
0: दिल्ली के जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी नीट पेपर लीक के विरोध में उतरी और छात्रों की आत्महत्या को लेकर सवाल खड़े किए तो वहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की।
5: हाथों में संविधान की कॉपी लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके आज सुबह अमेरिका से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से उन्होंने जंतर मंतर का रुख किया।
6: सोशल मीडिया पर व्यंग और मीम्स के तौर पर शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी अब दिल्ली के जंतर मंतर आ पहुंचा है। सुबह सुबह अभिजीत दीप के अमेरिका से सीधे आज यहां एयरपोर्ट पे लैंड किया और उसके बाद जंतर मंतर पहुंचा। पहले भीड़ कम थी, ना मंच था, ना बैनर था, ना कोई ऑडियो सिस्टम, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया भीड़ की संख्या बढ़ती गई, स्टेज भी लगा, मंच भी लगा और हाथ में तिरंगा लिए युवा यहां पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
5: नीट पेपर लीक को लेकर हो रहे इस प्रदर्शन में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई। अभिजीत दीपके के साथ सोनम वांगचुक भी मंच पर नजर आए। अभिजीत ने धर्मेंद्र को इस्तीफे के लिए 5 बजे तक का अल्टीमेटम दिया।
7: मैं धर्मेंद्र प्रधान जी, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनसे पूछना चाहता हूँ, 5 बच्चों ने सुसाइड कर लिए फिर भी आपने रिजाइन नहीं किया है, आपको शर्म नहीं आती? और कितने बच्चों का सुसाइड करने का वेट करेंगे आप जब तक रिजाइन नहीं करोगे तब तक हमारा मूवमेंट जारी रहेगा। इसके बाद हम ये मूवमेंट को देश भर में लेकर जाएंगे और ये मूवमेंट तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते।
5: अभिजीत ने अपने इस आंदोलन को सफल बताया तो वहीं साफ किया कि सोशल मीडिया से शुरू हुआ ये आंदोलन अब देश भर में नजर आने वाला है।
7: 15 दिन पहले जब कांग्रेस जनता पार्टी का पेज स्टार्ट हुआ था तब लोगों ने कहा था ये तो एक सोशल मीडिया का ट्रेंड है, ये तो एक सोशल मीडिया पर ही लिमिटेड रहकर रह जाएगा। लेकिन आज हमने देख लिया कि ये कोई सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं है, ये एक आंदोलन है जो जिसकी आज शुरुआत हो चुकी।
5: 5 घंटे तक जंतर मंतर में प्रदर्शन के बाद प्रदर्शनकारी लौट गए जहां उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे ना देने पर अगले शनिवार को एक बार फिर जंतर मंतर आने का ऐलान किया है। अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।
0: दिल्ली के जंतर मंतर में एक और जेनजी की सरकार से नाराजगी दिखाई दी गई तो दूसरी तरफ दिल्ली के ही कुछ किलोमीटर की दूरी पर सरकार के समर्थन में युवाओं को एकजुट किया गया।
5: दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में यूथ फॉर विकसित भारत सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े 6,000 से ज्यादा युवा शामिल हुए। वहीं मैथिली ठाकुर, फिल्म स्टार विक्रांत मेस्सी, बोट फाउंडर अमन गुप्ता और गुरिंदर वीर सिंह ने सीएम रेखा गुप्ता और खेल मंत्री मनसुख मांडविया के साथ मंच साझा किया।
8: आज मैं माय भारत यूथ कन्वेंशन में मेरे साथ ही कितने सारे लोग हैं, एक बार जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
5: एक और जहां विपक्ष युवाओं की नाराजगी और जेन जी आंदोलन की लगातार बात कर रहा है तो वहीं सरकार ने मंच से ये संदेश देने की कोशिश की कि देश के युवाओं को सरकार पर पूरा भरोसा है।
9: दोस्तों माय भारत, मोदी जी ने देश के युवाओं को अपनी आकांक्षा, अपनी अपेक्षा, अपनी वॉलंटियर क्षमता, अपना आइडियाज उस साझा करने के लिए बनाया हुआ प्लेटफॉर्म है।
10: देश का युवा जो विजनरी है, जिसमें साहस है, जो क्रिएटिव है, वो देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करे, अपना भविष्य भी निर्माण करे और देश का भी निर्माण करे, उसके लिए आज ये इवेंट था।
5: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में जोर देने के लिए यूथ फॉर विकसित भारत अभियान को सरकार युवाओं के लिए एक बड़ा कदम बता रही है जिसके जरिए युवाओं का भरोसा जीतने की कोशिश की जा रही है। सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
0: अब बात करते हैं फैजल खान और खान सर की, जिस पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।
11: पटना में दो कोचिंग संचालकों की लड़ाई अब फैजल खान यानी खान सर की गिरफ्तारी तक पहुंच चुकी है। फैजल खान के वकील ने साफ किया है कि वो सरेंडर नहीं करेंगे।
12: खबर है ऐसा कोई विचार ही नहीं है सरेंडर करने का। पुलिस तो किसी को अरेस्ट कर सकती है, नॉन अवेलेबल सेक्शन है तो किसी को अरेस्ट कर सकती है ना।
11: कल आर्म्स एक्ट के तहत पटना पुलिस ने फैजल खान के खिलाफ FIR दर्ज की थी। कोचिंग के गार्ड्स ने पूछताछ में कहा था कि फैजल खान ने उन्हें फायरिंग के लिए कहा था।
12: पुलिस कुछ भी लिख दे, अगर ऐसा होता तो खान सर भेज हुए थे ना, पुलिस को उसी समय अरेस्ट कर लेना था इनको। अगर ऐसा कोई रहता तो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट थाना में ले लेने से और FIR में लिख देने से कोई इविडेंस नहीं होता।
11: उधर फैजल खान की गिरफ्तारी की खबरों के बीच कल रात कोचिंग के बाहर भारी संख्या में छात्र मौजूद थे। तनाव को देखते हुए पुलिस का गश्त जारी रहा। PCR वैन में तैनात पुलिस छात्रों को समझाती नजर आई।
13: मौजूद है और सड़क के दूसरे किनारे एक लाइन से हजारों छात्र जो हैं वो यहां पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं खान सर के, ये कह सकते हैं कि समर्थन में ये जो छात्र हैं वो यहां पे खड़े हैं। तस्वीर देखिए, ये खान सर के कोचिंग के बाहर का नजारा है।
11: घटना के बाद फैजल खान के छात्रों को भड़काने का वीडियो वायरल हुआ था।
14: इसके ऊपर करने आया है
15: हमारा गाड़ी अभी तक नहीं की, जबकि सबके सामने ये लेके जा रहा है।
14: मुद्दे से भटकाया जा रहा है, आप इसकी गिरफ्तारी करिए, ये आदमी कौन है और कैसे आता है 20-25 लोगों को उठा के लेके चला जाता है, 20-25 लोगों को एक साथ कैसे।
11: वीडियो और मैसेज के बीच जारी तनाव को देखते हुए पटना पुलिस ने छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि दो कोचिंग संस्थानों की प्रतिस्पर्धा में किसी के बहकावे में आना ठीक नहीं है। सूत्रों के माने तो फैजल खान गिरफ्तारी के तलवार के बीच अग्रिम जमानत लेने की तैयारी कर रहे हैं। रोहित सिंह, पटना आज तक।
0: बिहार में राबड़ी के बंगले को लेकर जारी सियासत अब सुरक्षा तक पहुंच गई है। सुरक्षा में कटौती के बाद लालू परिवार ने मौजूद सुरक्षा को भी लेने से इनकार कर दिया है।
2: आवास के बाहर पसरा सन्नाटा और कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं। एक बार तो ये यकीन करना भी मुश्किल है कि ये पटना में पूर्व सीएम राबड़ी देवी का बंगला है। एक दिन पहले वाई प्लस सिक्योरिटी हटाए जाने के बाद अब लालू राबड़ी ने नाराजगी जताते हुए पूरी सुरक्षा वापस कर दी है।
16: राबड़ी देवी और लालू परिवार को जो सुरक्षा दी जाती है उसको लेकर जो है ये ताजा विवाद जो है वो शुरू हो गया है। और कल से हम देख रहे हैं जब सरकार का एक नया फरमान आया और लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को जो जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई थी उस सुरक्षा को सरकार ने वापस लिया और केवल बिहार पुलिस की सुरक्षा जो स्पेशल पुलिस होती है उसकी सुरक्षा प्रदान की। उसके बाद से ही लालू परिवार राबड़ी देवी जो है वो इसको लेकर काफी बिफर गए और उसके बाद कल देर रात से हम देख रहे हैं कि 10 सर्कुलर रोड आवास जो कि राबड़ी देवी और उनका परिवार यहाँ पिछले 20 सालों से रह रहा है यहाँ कल रात से ही एक भी सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं है।
2: इस बीच तेजस्वी यादव ने इसका विरोध करते हुए अपनी सुरक्षा लौटा दी, जिसे लेकर आरजेडी अब सरकार पर लगातार हमले कर रही है। सुरक्षा कवच में कटौती के बाद दिखावे की सुरक्षा रखने का कोई औचित्य नहीं है। सात खून के आरोपी रहे मुख्यमंत्री की सरकार के द्वारा लालू जी एवं राबड़ी देवी जी की सुरक्षा में कटौती का फैसला लालू जी राबड़ी देवी जी एवं उनके परिवार को नुकसान शारीरिक क्षति पहुंचाने की नीयत से ही लिया गया है। अगर लालू जी एवं उनके परिवार का सुरक्षा कवच है और अगर लालू जी राबड़ी देवी जी और परिवार के किसी भी सदस्य को एक खरोच भी आई तो अंजाम क्या होगा इसका अंदाजा शायद बिगड़ैल सम्राट चौधरी और उनकी सरकार को नहीं है।
17: सबको वापस कर दिया, सबको बाहर निकाल दिया, क्योंकि कल ही राज्य की सरकार ने अपने आका के निर्देश पर आदरणीय लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी सहित पूरे लालू परिवार की सुरक्षा में व्यापक और घोर कटौती कर दी। शासन अपमानित करना चाहती है लालू प्रसाद जी और उनके परिवार को, उनके परिजनों को।
18: ये सुरक्षा उनको क्यों दिया गया था? कभी मुख्यमंत्री रहे, कभी केंद्रीय मंत्री रहे, जब ये संवैधानिक व्यवस्था, ये नहीं है कि हथुआ मामा का बेटा है तो सब दिन वही रहेगा। जनता जिसको चुन करके देती है सत्ता में और जो कानून कहता है वो सुरक्षा मिलता।
2: समीक्षा में तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं किया गया था, लेकिन लालू और राबड़ी की सुरक्षा घटाए जाने के विरोध में अब तेजस्वी यादव ने ये बड़ा फैसला लिया है। वहीं लालू राबड़ी की जेड प्लस सिक्योरिटी वापस ली गई थी, लेकिन नई सुरक्षा व्यवस्था के तहत दोनों नेताओं के लिए बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की सुरक्षा का इंतजाम किया गया था, जिसके तहत 2 से 8 जवान सुरक्षा में तैनात रहने का निर्देश था। इसके साथ बुलेट प्रूफ कार, जिला बल से स्क्वाड की नियुक्ति का निर्देश था।
16: ये बिहार पुलिस की जो सुरक्षा, जो नई व्यवस्था उनको प्रदान की गई थी, उस सुरक्षा को भी यहाँ लेने से देखिए लालू परिवार ने जो है वो मना कर दिया है। ये देख सकते हैं यहाँ बिहार पुलिस के जो विशेष दस्ता है वो जो नई सुरक्षा व्यवस्था के तहत इनको यहाँ पर भेजा गया है, इन तमाम लोगों को भी जो है 10 सर्कुलर रोड आवास में जाने नहीं दिया गया है, इनको बाहर कर दिया गया है परिवार के द्वारा। और जाहिर सी बात है ये तमाम जो बिहार पुलिस के यहाँ पर कर्मी हैं वो लोग बाहर ही खड़े हैं, राबड़ी देवी के आवास के बाहर ही इसी तरीके से खड़े हैं। अब इन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है कि करना है तो क्या करना है।
2: राबड़ी देवी के बंगले को लेकर सियासत चल ही रही थी, जिस पर अब सुरक्षा को लेकर विवाद की एंट्री हो चुकी है। रोहित सिंह, पटना आज तक।
0: आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने वाले वैभव सूर्यवंशी की टीम इंडिया में एंट्री हो गई। धुआंधार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड, इंग्लैंड और एशियन गेम्स की T20 इंटरनेशनल टीम में शामिल कर लिया गया है।
19: नाम वैभव सूर्यवंशी, काम छक्के बरसाना, पहचान तूफान लाना, अरमान अब देश को जिताना। आईपीएल की इन तस्वीरों को जिसने देखा देखता ही रह गया। खुद वैभव के साथियों ने, दुनिया भर के दिग्गजों ने और विरोधी गेंदबाजों के पास तो देखते रहने की मजबूरी के अलावा कोई चारा ही नहीं था। ना उम्र की सीमा, ना दुनिया के किसी गेंदबाज का खौफ। वैभव का बल्ला जब बरसता है तो फिर इसके कोई मायने नहीं होते कि सामने पैट कमिंस जैसा गेंदबाज है, जसप्रीत बुमराह है या फिर कोई और। और ये तूफान आईपीएल के इस सीजन में जब आया तो मैच दर मैच उनका बल्ला रिकॉर्ड्स की इबारत लिखता चला गया। इस सीजन में तो हाल ये था कि जब उनकी पारी खत्म होती थी तो कईयों के सपने टूट चुके होते थे और कई गेंदबाजों के तो आईपीएल करियर के आंकड़े बिगड़ चुके होते थे। उनके बल्ले ने इतना हल्ला मचाया कि आखिरकार सेलेक्टर्स को उन्हें सीनियर टीम इंडिया का हिस्सा बनाना ही पड़ा। वैभव 15 साल की उम्र में टीम इंडिया का हिस्सा बनने वाले सबसे युवा भारतीय हैं। उन्होंने आईपीएल में सबसे तेज 1000 रन बनाए हैं। आईपीएल में उन्होंने एक सीजन में क्रिस गेल के 59 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़कर 72 छक्के जमाए हैं। 14 साल की उम्र में आईपीएल में शतक जमाने वाले वो सबसे युवा बल्लेबाज हैं। वो अंडर-19 वर्ल्ड कप चैंपियन है। आईपीएल के 23 मैच में वो 96 छक्के जमा चुके हैं। वैभव का असली इम्तिहान अब होने वाला है, लेकिन उनके लिए आपदा नहीं ये अवसर है, क्योंकि खौफ का भूत वो बचपन में ही भगा चुके हैं। दुनिया भर के गेंदबाजों को वो आईपीएल में निपटा चुके हैं। इतना ही नहीं, दुनिया की कई पिचों पर खेलने का उनका अनुभव धीरे धीरे उनकी बल्लेबाजी को और मैच्योर बना रहा है। नए हिंदुस्तान के नए तेवरों वाली इस टीम को अपने खजाने में ऐसा ही हीरा चाहिए। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात दुनिया की करते जहां खाड़ी युद्ध में तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत की कोशिशों के बीच धमाके की गूंज ने युद्ध विराम की उम्मीदों को तोड़ा है।

0: पश्चिम एशिया से आई इन तस्वीरों ने फिर से दुनिया को पसोपेश में डाल दिया है। इस मंजर ने डरा दिया है कि खाड़ी में फिर से महायुद्ध 2.0 की लपटें सुलगने लगी हैं। इस माहौल ने बता दिया है कि किसी भी वक्त अमेरिका और ईरान में फिर से भीषण जंग छिड़ने वाली है। दहशत इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि ईरान ने कुवैत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया है। कुवैत में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। कुवैत का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान से आ रहे ड्रोन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहा है। ईरान ने बहरीन पर भी मिसाइल दागी है। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को रोकने के लिए बहरीन का भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। हम आपको बता दें कि बहरीन में अमेरिकी सेंट्रल कमांड का मुख्यालय भी है। अपने सहयोगी देशों पर ईरान के हमले से अमेरिका बौखला चुका है। पलटवार में अमेरिका ने भी ईरान के कई ठिकानों पर धावा बोल दिया। ईरान के सर्विलांस रडार सेंटर पर अमेरिका ने हमला किया है। ईरान के रडार सेंटर पर हमले का वीडियो भी अमेरिका ने जारी कर दिया। अमेरिका का कहना है कि पहले ईरान ने हमला किया था, जिसके जवाब में उसके रडार सर्विलांस टावर को उड़ा दिया गया। अमेरिकी सेना ने समुद्री हमलों से बचाव के लिए गोरुक और केशम द्वीप पर स्थित ईरानी तटीय निगरानी रडार को ध्वस्त किया। अमेरिका ने दावा किया कि 6 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया, जबकि 7वीं मिसाइल टारगेट तक पहुंची ही नहीं। मतलब साफ है कि जो सीज फायर फिलहाल अस्थाई है, वो किसी भी वक्त धराशायी हो सकता है, क्योंकि ईरान और अमेरिका में झड़प शुरू हो चुकी है। यह चिंगारी किसी भी वक्त भीषण युद्ध का शक्ल ले सकती है। आज तक ब्यूरो।
1: अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक, आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ मंथन, देशवासियों का जीवन आसान बनाने और आर्थिक दर्द को बढ़ाने पर चर्चा। समाजवादी पार्टी पर मुख्यमंत्री योगी का बड़ा हमला, कहा 2017 से पहले गुंडों के आगे नतमस्तक थी सरकार, राम का नाम लेने पर चलती थी गोलियां, अखिलेश का पलटवार, यूपी में महाजंगल राज। बंगाल सरकार ने मदरसों का शुरू किया सर्वेक्षण, 5 जुलाई तक मांगे रिपोर्ट, नियमों के तहत संचालन और जरूरी दस्तावेजों की होगी जांच।

0: यूपी में भी 2027 के लिए हर पार्टी ने कमर कस ली है। योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं तो अखिलेश यादव भी लगातार सरकार को घेर रहे हैं।
1: अब राम का नाम लेने पर ही प्रतिबंध था, डंडे बरसते थे, गोलियां चलती थी, अयोध्या में भगवान राम का भक्त अयोध्या में नहीं जा सकता था, किस प्रकार की अराजकता थी। अब तो अयोध्या में राम भक्त के अलावा कोई रामद्रोही घुस ही नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। आज तो अयोध्या चमक रही है।
2: 2027 के सियासी समर में बीजेपी हिंदुत्व और राम मंदिर के मुद्दे पर सवार है, जहां अखिलेश यादव पर सीएम योगी आदित्यनाथ के हमले जारी हैं।
1: 2017 के पहले इन दंगाइयों को, इन पेशेवर गुंडों को प्रश्रय देते थे, इनके सामने नतमस्तक होते थे, प्रदेश में कर्फ्यू रहता था।
2: योगी विकास से लेकर डबल इंजन तक की खूबियां गिना रहे हैं तो वहीं पिछली सरकारों की खामियां भी बता रहे हैं।
1: 2015-16 में इस गोंडा में भी दुर्गा पूजा के समय दंगा करने का प्रयास हुआ था, यहां भी दंगे हुए थे। मां दुर्गा की मूर्ति को विसर्जन नहीं करने दिया जाता था, रामलीलाओं के आयोजन में अड़चने डाली जाती थी, पर्व और त्योहार प्रारंभ होने के पहले, उत्सव प्रारंभ होने के पहले उपद्रव शुरू हो जाते थे। उत्सव के रंग में किसी ने भंग करने का काम किया तो फिर वर्तमान तो जाएगा ही जाएगा, भविष्य भी स्वाहा हो जाएगा।
2: उधर अखिलेश को योगी सरकार में जंगल राज नजर आ रहा है। उधर गाजीपुर में कमलेश बिंद के एनकाउंटर पर विपक्ष और सरकार के सहयोगियों के सुर एक जैसे नजर आ रहे हैं। किसी को अपने वोट बैंक की टेंशन सता रही है तो कोई वोट बैंक में सेध मारने की तैयारी में है।
3: इतना बड़ा तो दुर्दांत अपराधी नहीं है कि जिससे आप एनकाउंटर, अब मुख्य आरोपी उसको बनाया भी नहीं गया, मुख्य आरोपी कोई और है, मुख्य आरोपी को तो पकड़ने दूर है, उसको छुएंगे नहीं। आज जो साधारण है, जो वोट अभी गाजीपुर हारे हैं, अब गाजीपुर में बिंदुओं की संख्या बहुत अधिक है, जौनपुर में बिंदुओं की संख्या अधिक है, प्रधानमंत्री के चारों तरफ के हम सारी सीटें हार गए हैं।
4: बहुत ही जो घटना हुई है एनकाउंटर की, तो आखिर जब पुलिस पकड़ सकती थी मुजरिम को तो एनकाउंटर क्यों करा गया, तो ये अपने आप में पूरी कानून व्यवस्था में प्रश्न चिन्ह उठाने का काम है। भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं चाहते हैं कि जो शासन और जो प्रशासन है, जो नियम है, जो कानून है, उससे चले।
2: बहरहाल यूपी में चुनावी पिच पूरी तरह से तैयार है, जहां हर पार्टी अपने हिसाब से बैटिंग कर रही है। आज तक ब्यूरो।
0: दिल्ली के जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी नीट पेपर लीक के विरोध में उतरी और छात्रों की आत्महत्या को लेकर सवाल खड़े किए, तो वहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की।
5: हाथों में संविधान की कॉपी लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपक आज सुबह अमेरिका से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से उन्होंने जंतर मंतर का रुख किया।
6: सोशल मीडिया पर व्यंग और मीम्स के तौर पर शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी अब दिल्ली के जंतर मंतर आ पहुंचा है। सुबह सुबह अभिजीत दीप के अमेरिका से सीधे आज आई एयरपोर्ट पे लैंड किया और उसके बाद जंतर मंतर पहुंचा। पहले भीड़ कम थी, ना मंच था, ना बैनर था, ना कोई ऑडियो सिस्टम, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया भीड़ की संख्या बढ़ती गई, स्टेज भी लगा, मंच भी लगा और हाथ में तिरंगा लिए युवा यहां पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
5: नीट पेपर लीक को लेकर हो रहे इस प्रदर्शन में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई। अभिजीत दीपक के साथ सोनम वांगचुक भी मंच पर नजर आए। अभिजीत ने धर्मेंद्र को इस्तीफे के लिए 5 बजे तक का अल्टीमेटम दिया।
7: मैं धर्मेंद्र प्रधान जी, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ, 5 बच्चों ने सुसाइड कर लिए फिर भी आपने रिजाइन नहीं किया है, आपको शर्म नहीं आती? और कितने बच्चों का सुसाइड करने का वेट करेंगे आप जब तक रिजाइन नहीं करोगे तब तक हमारा मूवमेंट जारी रहेगा। इसके बाद हम ये मूवमेंट को देश भर में लेकर जाएंगे और ये मूवमेंट तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते।
5: अभिजीत ने अपने इस आंदोलन को सफल बताया तो वहीं साफ किया कि सोशल मीडिया से शुरू हुआ ये आंदोलन अब देश भर में नजर आने वाला है।
7: 15 दिन पहले जब कांग्रेस जनता पार्टी का पेज स्टार्ट हुआ था तब लोगों ने कहा था ये तो एक सोशल मीडिया का ट्रेंड है, ये तो एक सोशल मीडिया पर ही लिमिटेड रहकर रह जाएगा। लेकिन आज हमने देख लिया कि ये कोई सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं है, ये एक आंदोलन है जो जिसकी आज शुरुआत हो चुकी।
5: 5 घंटे तक जंतर मंतर में प्रदर्शन के बाद प्रदर्शनकारी लौट गए जहां उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे ना देने पर अगले शनिवार को एक बार फिर जंतर मंतर आने का ऐलान किया है। अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।
0: दिल्ली के जंतर मंतर में एक और जेनजी की सरकार से नाराजगी दिखाई दी गई तो दूसरी तरफ दिल्ली के ही कुछ किलोमीटर की दूरी पर सरकार के समर्थन में युवाओं को एकजुट किया गया।
5: दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में यूथ फॉर विकसित भारत सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े 6,000 से ज्यादा युवा शामिल हुए। वहीं मैथिली ठाकुर, फिल्म स्टार विक्रांत मेस्सी, बोट फाउंडर अमन गुप्ता और गुरिंदर वीर सिंह ने सीएम रेखा गुप्ता और खेल मंत्री मनसुख मांडविया के साथ मंच साझा किया।
8: आज मैं माय भारत यूथ कन्वेंशन में मेरे साथी के कितने सारे लोग हैं। जोर से बोलो कि भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
5: एक और जहां विपक्ष युवाओं की नाराजगी और जेन जी आंदोलन की लगातार बात कर रहा है तो वहीं सरकार ने मंच से ये संदेश देने की कोशिश की कि देश के युवाओं को सरकार पर पूरा भरोसा है।
9: दोस्तों, माय भारत मोदी जी ने देश के युवाओं को अपनी आकांक्षा, अपनी अपेक्षा, अपनी ओलंपियस क्षमता, अपना आइडियाज उस साझा करने के लिए बनाया हुआ प्लेटफॉर्म है।
10: देश का युवा जो विजनरी है, जिसमें साहस है, जो क्रिएटिव है, वो देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करे, अपना भविष्य भी निर्माण करे और देश का भी निर्माण करे, उसके लिए आज ये इवेंट था।
5: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में जोर देने के लिए यूथ फॉर विकसित भारत अभियान को सरकार युवाओं के लिए एक बड़ा कदम बता रही है जिसके जरिए युवाओं का भरोसा जीतने की कोशिश की जा रही है। सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
0: अब बात यूपी के देवरिया की, जहां पर बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। कई क्षेत्रों में बिजली गुल है। अब बिजली कटी तो आधी रात को बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी पावर हाउस पहुंच गए और बिजली विभाग के अधिकारियों को हड़काया। विधायक ने कहा कि हमारे क्षेत्र की जनता अगर बिजली कटौती की वजह से सो नहीं पा रही है तो बिजली अधिकारी को हम चैन से सोने नहीं देंगे, बिजली अफसरों के घरों की भी लाइट काटेंगे। अब इस दौरान बिजली कटौती की शिकायत के लिए पावर हाउस के सरकारी नंबर पर लगातार लोग फोन कर रहे थे। कई फोन कॉल तो खुद विधायक ने उठाया।
11: कहां से बोल रहे हैं? चिड़ियाठाला से ना लाइट, कब से लाइट नहीं है, कितने बजे से? ठीक है, मैं शलभ मणि त्रिपाठी बोल रहा हूँ, विधायक देवरिया। ठीक है, बिजली घर पे ही बैठे हैं, इन लोगों की लाइट काटने आए हैं। आप लोगों की लाइट नहीं है तो आज हमने तय किया है कि बिजली के अधिकारियों की सबकी लाइट काट देंगे। ठीक है ना, देखिए सर, 10-11 बजे से लाइट नहीं है। आप लोगों पर रिपोर्टिंग ही नहीं भाई, कहाँ कहाँ लाइट नहीं है। आप लोग इतने नॉन सीरियस हो चुके हैं कि आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। 10 बजे से लाइट नहीं है इनके मोहल्ले में, गोरखपुर और के पास।
0: अब बात करते हैं फैजल खान और खान सर की, जिस पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।
12: पटना में दो कोचिंग संचालकों की लड़ाई अब फैजल खान यानी खान सर की गिरफ्तारी तक पहुँच चुकी है। फैजल खान के वकील ने साफ किया है कि वो सरेंडर नहीं करेंगे।
13: खबर है ऐसा कोई विचार ही नहीं है सरकार का। पुलिस तो किसी को अरेस्ट कर सकती है, ननबेलाबुद सत्तन है तो किसी को अरेस्ट कर सकती है ना।
12: कल आर्म्स एक्ट के तहत पटना पुलिस ने फैजल खान के खिलाफ FIR दर्ज की थी। कोचिंग के गार्ड्स ने पूछताछ में कहा था कि फैजल खान ने उन्हें फायरिंग के लिए कहा था।
13: के लिए पुलिस कुछ भी लेते थे, अगर ऐसा होता तो खान साहब भेज हुए थे ना, पुलिस को उसी समय अरेस्ट कर लेना था इनको। अगर ऐसा कोई रहता तो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट थाना में ले लेने से और FIR में लिख देने से कोई एविडेंस नहीं होता।
12: उधर फैजल खान की गिरफ्तारी की खबरों के बीच कल रात कोचिंग के बाहर भारी संख्या में छात्र मौजूद थे। तनाव को देखते हुए पुलिस का गश्त जारी रहा। PCR वैन में तैनात पुलिस छात्रों को समझाती नजर आई।
14: मौजूद हैं और सड़क के दूसरे किनारे एक लाइन से हजारों छात्र जो हैं वो यहां पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं खान सर के, ये कह सकते हैं कि समर्थन में ये जो छात्र हैं वो यहां पे खड़े हैं। तस्वीर देखिए, ये खान सर के कोचिंग के बाहर का नजारा है।
12: घटना के बाद फैजल खान के छात्रों को भड़काने का वीडियो वायरल हुआ था।
15: किसके ऊपर करने आया है
16: हमारा गाड़ी अभी तक नहीं की, जबकि सबके सामने ये लेके जा रहा है, मुद्दे से भटकाया जा रहा है। आप इसकी गिरफ्तारी करिए, ये आदमी कौन है और कैसे आता है 20-25 लोगों को उठा के लेके चला जा रहा है, 20-25 लोगों को एक साथ कैसे।
12: वीडियो और मैसेज के बीच जारी तनाव को देखते हुए पटना पुलिस ने छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि दो कोचिंग संस्थानों की प्रतिस्पर्धा में किसी के बहकावे में आना ठीक नहीं है। सूत्रों के माने तो फैजल खान गिरफ्तारी के तलवार के बीच अग्रिम जमानत लेने की तैयारी कर रहे हैं। रोहित सिंह, पटना आज तक।
0: बिहार में राबड़ी के बंगले को लेकर जारी सियासत अब सुरक्षा तक पहुंच गई है। सुरक्षा में कटौती के बाद लालू परिवार ने मौजूद सुरक्षा को भी लेने से इनकार कर दिया है।
2: आवास के बाहर पसरा सन्नाटा और कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं। एक बार तो ये यकीन करना भी मुश्किल है कि ये पटना में पूर्व CM राबड़ी देवी का बंगला है। एक दिन पहले Y+ सिक्योरिटी हटाए जाने के बाद अब लालू राबड़ी ने नाराजगी जताते हुए पूरी सुरक्षा वापस कर दी है।
17: राबड़ी देवी और लालू परिवार को जो सुरक्षा दी जाती है उसको लेकर जो है ये ताजा विवाद जो है वो शुरू हो गया है। और कल से हम देख रहे हैं जब सरकार का एक नया फरमान आया और लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को जो Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई थी उस सुरक्षा को सरकार ने वापस लिया और केवल बिहार पुलिस की सुरक्षा, जो स्पेशल पुलिस होती है, उसकी सुरक्षा प्रदान की। उसके बाद से ही लालू परिवार, राबड़ी देवी जो है वो इसको लेकर काफी बिफर गए। और उसके बाद कल देर रात से हम देख रहे हैं कि 10 सर्कुलर रोड आवास, जो कि राबड़ी देवी और उनका परिवार यहाँ पिछले 20 सालों से रह रहा है, यहाँ कल रात से ही एक भी सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं है।
2: इस बीच तेजस्वी यादव ने इसका विरोध करते हुए अपनी सुरक्षा लौटा दी, जिसे लेकर RJD अब सरकार पर लगातार हमले कर रही है। सुरक्षा कवच में कटौती के बाद दिखावे की सुरक्षा रखने का कोई औचित्य नहीं है। सात खून के आरोपी रहे मुख्यमंत्री की सरकार के द्वारा लालू जी एवं राबड़ी देवी जी की सुरक्षा में कटौती का फैसला लालू जी, राबड़ी देवी जी एवं उनके परिवार को नुकसान, शारीरिक क्षति पहुंचाने की नीयत से ही लिया गया है। अगर लालू जी एवं उनके परिवार का सुरक्षा कवच है और अगर लालू जी, राबड़ी देवी जी और परिवार के किसी भी सदस्य को एक खरोच भी आई तो अंजाम क्या होगा, इसका अंदाजा शायद बिगड़ैल सम्राट चौधरी और उनकी सरकार को नहीं है।
18: सबको वापस कर दिया, सबको बाहर निकाल दिया, क्योंकि कल ही राज्य की सरकार ने अपने आका के निर्देश पर आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी सहित पूरे लालू परिवार की सुरक्षा में व्यापक और घोर कटौती कर दी। शासन अपमानित करना चाहती है लालू प्रसाद जी और उनके परिवार को, उनके परिजनों को।
19: ये सुरक्षा उनको क्यों दिया गया था? कभी मुख्यमंत्री रहे, कभी केंद्रीय मंत्री रहे, जब ये संवैधानिक व्यवस्था, ये नहीं है कि हथुआ मामा का बेटा है तो सब दिन वही रहेगा। जनता जिसको चुन करके देती है सत्ता में और जो कानून कहता है वो सुरक्षा मिलता।
2: समीक्षा में तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं किया गया था, लेकिन लालू और राबड़ी की सुरक्षा घटाए जाने के विरोध में अब तेजस्वी यादव ने ये बड़ा फैसला लिया है। वहीं लालू राबड़ी की जेड प्लस सिक्योरिटी वापस ली गई थी, लेकिन नई सुरक्षा व्यवस्था के तहत दोनों नेताओं के लिए बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की सुरक्षा का इंतजाम किया गया था, जिसके तहत 2 से 8 जवान सुरक्षा में तैनात रहने का निर्देश था। इसके साथ बुलेट प्रूफ कार जिला बल से एस्कॉर्ट की नियुक्ति का निर्देश था।
17: ये बिहार पुलिस की जो सुरक्षा जो नई व्यवस्था उनको प्रदान की गई थी, उस सुरक्षा को भी यहाँ लेने से देखिए लालू परिवार ने जो है वो मना कर दिया है। ये देख सकते हैं यहाँ बिहार पुलिस के जो विशेष दस्ता है वो जो नई सुरक्षा व्यवस्था के तहत इनको यहाँ पर भेजा गया है, इन तमाम लोगों को भी जो है 10 सर्कुलर रोड आवास में जाने नहीं दिया गया है, इनको बाहर कर दिया गया है परिवार के द्वारा। और जाहिर सी बात है ये तमाम जो बिहार पुलिस के यहाँ पर कर्मी हैं वो लोग बाहर ही खड़े हैं, राबड़ी देवी के आवास के बाहर ही इसी तरीके से खड़े हैं। अब इन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है कि करना है तो क्या करना है।
2: राबड़ी देवी के बंगले को लेकर सियासत चल ही रही थी, जिस पर अब सुरक्षा को लेकर विवाद की एंट्री हो चुकी है। रोहित सिंह, पटना आज तक।
0: यूपी में योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन में जारी है, जिसकी गूंज अब संभल में सुनाई दी, जहां सरकारी जमीन पर बनी मुस्तफा कादरी मस्जिद के खिलाफ एक्शन लिया गया और इस अवैध मस्जिद को बुलडोजर से ढहा दिया गया।
15: संभल के नखासा थाना इलाके के कसेरुआ गांव में स्थित मुस्तफा कादरी मस्जिद को ध्वस्त करने की कार्रवाई इस वक्त शुरू हो चुकी है। और आप मेरे पीछे की तस्वीरों में आप जो देख सकते हैं कि किस तरीके से बुलडोजर एक्शन के जरिए जो कि सरकारी जमीन पर बनी हुई मस्जिद है उसको यहां पर ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई की जा रही है। 2-2 बुलडोजर इस पूरी मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए फिलहाल यहाँ पर जो है लगाए गए हैं। पूरा पुलिस फोर्स गाँव में तैनात किया गया है। और ये देखा जाए तो ये 120 वर्ग मीटर जगह में बनी हुई ये पूरी मस्जिद थी, जिसको हटाने के लिए जनवरी महीने में जो है लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर यह पूरी कार्रवाई शुरू की गई थी। और उसके बाद इस मस्जिद के वक्फ बोर्ड में भी रजिस्टर्ड होने का मामला सामने आया था, जिसके बाद इस मस्जिद कमेटी से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ FIR कराई गई। लेकिन आज अब इस पूरे मस्जिद पर धारा 67 के तहत जो कार्रवाई यहां पर जो की जा रही है, और आप यहां जो देख सकते हैं देखिए किस तरीके से जो पूरा बुलडोजर है वो इस पूरे मस्जिद के स्ट्रक्चर को ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई कर रहा है। और एहतियातन अगर जो देखा जाए तो देखिए छतों पर आपको जो पुलिसकर्मी आपको जो तैनात नजर आएंगे, यहां अगर आपको जो देखा जाए तो देखिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो फिलहाल आपको जो है ये वो पुलिसकर्मियों की आपको जो है लगातार छतों पे जो तैनाती दिखाई देगी। जो है सामने देखिए तस्वीरों में देखेंगे तो देखिए तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह आपको यहाँ इस पूरे इलाके में लगातार इस पूरी स्थिति पे नजर बनाए हुए दिखाई देंगे। और इसी तरह से देखिए आसपास का जो पूरा इलाका है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया। सामने आप देखेंगे तो देखिए बुलडोजर के ठीक बराबर में देखिए भारी संख्या में आपको पुलिस फोर्स जो है यहाँ पर जो है तैनात जो नजर आएगा, जो कि आपको तस्वीरों में नजर आएगा। और इसी तरह से जो पूरे गांव का अलग अलग इलाके हैं वहां पर इस तरीके से पूरे पुलिस फोर्स को तैनात करके पूरे गाँव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर विशेष तौर पर निगरानी की जा रही है, जिससे कि कोई भड़काऊ पोस्ट जो है वो ना डाली जाए सोशल मीडिया पर। वहीं इसी के साथ जो आसपास के इलाके हैं, आसपास के जो गांव हैं, वहां से भी इस पूरे गांव की तरफ आने वाले रास्तों पर पुलिस को फोर्स को जो तैनात किया गया है। और
0: बक्सर का इटाढ़ी गुमटी पुल क्षतिग्रस्त हो गया, मात्र 4 दिन हुए थे पुल के उद्घाटन को और अब पुल बंद कर दिया गया है। 26 करोड़ 40 लाख की लागत से बने हुए रोड ओवरब्रिज के ऊपरी परत धंस गए। लगभग 11 साल के इंतजार के बाद आम जनता के लिए कुछ ही दिन पहले उद्घाटन किया गया। लोगों ने राहत की सांस ली, कुछ सहूलियत होगी सोचा, लेकिन चौथे दिन ही पुल के पिलर नंबर 5

0: कैसे, क्योंकि ये जो पुल है करीब 4 दिन पहले इसको खोला गया था चलने के लिए, लेकिन 4 दिनों में ये पुल टूट गया, यानी कि कहिए कि ध्वस्त हो गया और इसको बंद कर दिया गया है। ये दरअसल बक्सर के इटाढ़ी गुमटी पर बना 26 करोड़ 40 लाख का वो नया पुल है जिसको लेकर कई बार आंदोलन हुआ, कई बार लोग धरने पर बैठे, उसके बाद ये पुल मिला तो ऐसे हालात में मिला कि 4 दिन बाद ये इस परिस्थिति में आ गया कि लोग अब घेर कर देख रहे हैं कि भाई ये क्या हुआ है। ये एक दर्दनाक घटना तो नहीं कही जा सकती है, शर्मनाक घटना कही जा सकती है, और शर्मनाक घटना के कौन कौन विलेन है ये तो तय जनता को करना है। ऐसे में जनता सामने खड़ी है, हम उससे भी जानने का प्रयास करेंगे कि भाई ये जो घटना घटी है आपको आश्चर्यचकित तो नहीं करती होगी ना?
1: ना ना, ये तो मतलब वही होना था जो हुआ है, इससे पहले भी हुआ है कई बार, ये तो देखने वाली चीज है, ये तो सामने है जो प्रत्यक्ष में आपको दिख रहा है।
2: बस वही है जो देख रहे हैं, टूट गया है पुल
0: 4 दिन पहले।
2: हाँ, 4 दिन पहले बना था, आज टूट गया, फिर ट्रक चढ़ी है, वो तो अच्छी बात है, किसी का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है।
0: सर आपको लगता है कि मतलब ये पुल लगता था कि चलेगा नहीं, ये तो समझ में आ रहा होगा, तो इतना जल्दी फंसेगा ये तो विश्वास नहीं होगा?
3: ये विश्वास नहीं था इतना जल्दी फंस जाएगा।
0: देखिए लोगों को लगातार सूचनाएं टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ये बहुत मिलती रहेगी है कि पुल फंस रहा है और पुल फंसेगा भी, लेकिन 4 दिनों में अगर पुल फंसने लगे तो बिहार की उस सरकार को क्या कहेंगे जो कई परिवर्तन के बाद इस समय भी डबल इंजन की सरकार चल रही है, विकास के कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे विकास का क्या मतलब है 4 दिन तक टिके नहीं। बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे।
4: आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने वाले वैभव सूर्यवंशी की टीम इंडिया में एंट्री हो गई। धुआंधार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड, इंग्लैंड और एशियन गेम्स की T20 इंटरनेशनल टीम में शामिल कर लिया गया है।
5: नाम वैभव सूर्यवंशी, काम छक्के बरसाना, पहचान तूफान लाना, अरमान अब देश को जिताना। आईपीएल की इन तस्वीरों को जिसने देखा देखता ही रह गया, खुद वैभव के साथियों ने, दुनिया भर के दिग्गजों ने, और विरोधी गेंदबाजों के पास तो देखते रहने की मजबूरी के अलावा कोई चारा ही नहीं था। ना उम्र की सीमा, ना दुनिया के किसी गेंदबाज का खौफ, वैभव का बल्ला जब बरसता है तो फिर इसके कोई मायने नहीं होते कि सामने पैट कमिंस जैसा गेंदबाज है, जसप्रीत बुमराह है या फिर कोई और। और ये तूफान आईपीएल के इस सीजन में जब आया तो मैच दर मैच उनका बल्ला रिकॉर्ड्स की इबारत लिखता चला गया। इस सीजन में तो हाल ये था कि जब उनकी पारी खत्म होती थी तो कईयों के सपने टूट चुके होते थे और कई गेंदबाजों के तो आईपीएल करियर के आंकड़े बिगड़ चुके होते थे। उनके बल्ले ने इतना हल्ला मचाया कि आखिरकार सेलेक्टर्स को उन्हें सीनियर टीम इंडिया का हिस्सा बनाना ही पड़ा। वैभव 15 साल की उम्र में टीम इंडिया का हिस्सा बनने वाले सबसे युवा भारतीय हैं। उन्होंने आईपीएल में सबसे तेज 1000 रन बनाए हैं। आईपीएल में उन्होंने एक सीजन में क्रिस गेल के 59 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़कर 72 छक्के जमाए हैं। 14 साल की उम्र में आईपीएल में शतक जमाने वाले वो सबसे युवा बल्लेबाज हैं। वो अंडर 19 वर्ल्ड कप चैंपियन है। आईपीएल के 23 मैच में वो 96 छक्के जमा चुके हैं। वैभव का असली इम्तिहान अब होने वाला है, लेकिन उनके लिए आपदा नहीं ये अवसर है, क्योंकि खौफ का भूत वो बचपन में ही भगा चुके हैं। दुनिया भर के गेंदबाजों को वो आईपीएल में निपटा चुके हैं। इतना ही नहीं, दुनिया की कई पिचों पर खेलने का उनका अनुभव धीरे धीरे उनकी बल्लेबाजी को और मैच्योर बना रहा है। नए हिंदुस्तान के नए तेवरों वाली इस टीम को अपने खजाने में ऐसा ही हीरा चाहिए। आज तक ब्यूरो।
4: अब बात दुनिया की करते जहां खाड़ी युद्ध में तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत की कोशिशों के बीच धमाके की गूंज ने युद्ध विराम की उम्मीदों को तोड़ा है।

0: इस मंजर ने डरा दिया है कि खाड़ी में फिर से महायुद्ध 2.0 की लपटें सुलगने लगी हैं। इस माहौल ने बता दिया है कि किसी भी वक्त अमेरिका और ईरान में फिर से भीषण जंग छिड़ने वाली है। दहशत इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि ईरान ने कुवैत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया है। कुवैत में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। कुवैत का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान से आ रहे ड्रोन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहा है। ईरान ने बहरीन पर भी मिसाइल दागी है। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को रोकने के लिए बहरीन का भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। हम आपको बता दें कि बहरीन में अमेरिकी सेंट्रल कमांड का मुख्यालय भी है। अपने सहयोगी देशों पर ईरान के हमले से अमेरिका बौखला चुका है। पलटवार में अमेरिका ने भी ईरान के कई ठिकानों पर धावा बोल दिया। ईरान के सर्विलांस रडार सेंटर पर अमेरिका ने हमला किया है। ईरान के रडार सेंटर पर हमले का वीडियो भी अमेरिका ने जारी कर दिया। अमेरिका का कहना है कि पहले ईरान ने हमला किया था, जिसके जवाब में उसके रडार सर्विलांस टावर को उड़ा दिया गया। अमेरिकी सेना ने समुद्री हमलों से बचाव के लिए गोरुक और केशम द्वीप पर स्थित ईरानी तटीय निगरानी रडार को ध्वस्त किया। अमेरिका ने दावा किया कि 6 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया, जबकि 7वीं मिसाइल टारगेट तक पहुंची ही नहीं। मतलब साफ है कि जो सीज फायर फिलहाल अस्थाई है, वो किसी भी वक्त धराशायी हो सकता है, क्योंकि ईरान और अमेरिका में झड़प शुरू हो चुकी है। ये चिंगारी किसी भी वक्त भीषण युद्ध का शक्ल ले सकती है। आज तक ब्यूरो।
1: और अब आपको लेकर चलते हैं युद्ध के उस मोर्चे की ओर जहां पिछले 4.5 साल से रूस और यूक्रेन में जंग छिड़ी है। अब बड़ी खबर यह है कि रूसी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया कि शांति वार्ता के लिए युद्ध रोकने की जरूरत नहीं। पुतिन का यह बयान तब आया है जब जेलेंस्की ने खुला पत्र लिखकर रूसी राष्ट्रपति से मिलने की इच्छा जाहिर की।

0: रूस ने यूक्रेनी शहर जैपोरेजिया पर भीषण अटैक किया, वो भी तब जब शांति वार्ता की कोशिशें चल रही हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है कि शांति वार्ता के लिए सीज फायर की कोई जरूरत नहीं है, मतलब बातचीत करने के लिए जंग रोकने की जरूरत नहीं। रूस के ताजा हमलों में जैपोरेजिया के रिहायशी इलाकों को बड़ा नुकसान हुआ, जिसमें एक शख्स की मौत हुई है, 16 घायल हैं, वाहनों और नागरिक बुनियादी ढांचों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इस बीच पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में पत्रकारों को संबोधित करते हुए साफ कर दिया कि बातचीत के लिए सीज फायर की जरूरत ही नहीं है।
1: नए населенные пункты ставятся под контроль российских вооруженных сил. Но за последнее время, повторяю, почти 2500 квадратных километров.
0: इससे पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति को खुला पत्र लिखा है और सीधे वार्ता का प्रस्ताव रखा है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी और रूसी नेताओं के बीच बैठक की पहल को सराहा है और इसे अच्छी पहल बताया।
2: I don't know. I'm glad that they're maybe talking about meeting. I think we had a lot to do with it. I know exactly what you're doing. But I think it would be great if they met. They should get it done.
0: आर पार की जंग और शांति वार्ता की कोशिशों के बीच दोनों देशों की तरफ से अच्छी पहल हुई है। रूस यूक्रेन ने एक दूसरे के 185 कैदियों की अदला बदली की है, जिसे शांति की शुरुआत के लिए पहला बड़ा कदम बताया जा सकता है। हालांकि कैदियों की अदला बदली पहले भी हो चुकी है, लेकिन 4 साल से भी ज्यादा समय से जारी जंग अभी तक थमी नहीं। आज तक ब्यूरो।
3: अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक, आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ मंथन, देशवासियों का जीवन आसान बनाने और आर्थिक दर्द को बढ़ाने पर चर्चा। समाजवादी पार्टी पर मुख्यमंत्री योगी का बड़ा हमला, कहा 2017 से पहले गुंडों के आगे नतमस्तक थी सरकार, राम का नाम लेने पर चलती थी गोलियां, अखिलेश का पलटवार, यूपी में महाजंगल राज। बंगाल सरकार ने मदरसों का शुरू किया सर्वेक्षण, 5 जुलाई तक मांगे रिपोर्ट, नियमों के तहत संचालन और जरूरी दस्तावेजों की होगी जांच।

0: यूपी में भी 2027 के लिए हर पार्टी ने कमर कस ली है। योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, तो अखिलेश यादव भी लगातार सरकार को घेर रहे हैं।
1: अब राम का नाम लेने पर ही प्रतिबंध था, डंडे बरसते थे, गोलियां चलती थी। अयोध्या में भगवान राम का भक्त अयोध्या में नहीं जा सकता था। किस प्रकार की अराजकता थी। अब तो अयोध्या में राम भक्त के अलावा कोई रामद्रोही घुस ही नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। आज तो अयोध्या चमक रही है।
2: 2027 के सियासी समर में बीजेपी हिंदुत्व और राम मंदिर के मुद्दे पर सवार है, जहां अखिलेश यादव पर सीएम योगी आदित्यनाथ के हमले जारी हैं।
1: 2017 के पहले इन दंगाइयों को, इन पेशेवर गुंडों को प्रश्रय देते थे, इनके सामने नतमस्तक होते थे। प्रदेश में कर्फ्यू रहता था।
2: योगी विकास से लेकर डबल इंजन तक की खूबियां गिना रहे हैं, तो वहीं पिछली सरकारों की खामियां भी बता रहे हैं।
1: 2015-16 में इस गोंडा में भी दुर्गा पूजा के समय दंगा करने का प्रयास हुआ था, यहां भी दंगे हुए थे। मां दुर्गा की मूर्ति को विसर्जन नहीं करने दिया जाता था, रामलीलाओं के आयोजन में अड़चने डाली जाती थी। पर्व और त्योहार प्रारंभ होने के पहले, उत्सव प्रारंभ होने के पहले उपद्रव शुरू हो जाते थे। उत्सव के रंग में किसी ने भंग करने का काम किया तो फिर वर्तमान तो जाएगा ही जाएगा, भविष्य भी स्वाहा हो जाएगा।
2: उधर अखिलेश को योगी सरकार में जंगल राज नजर आ रहा है। उधर गाजीपुर में कमलेश बिंद के एनकाउंटर पर विपक्ष और सरकार के सहयोगियों के सुर एक जैसे नजर आ रहे हैं। किसी को अपने वोट बैंक की टेंशन सता रही है, तो कोई वोट बैंक में सेध मारने की तैयारी में है।
3: इतना बड़ा तो दुर्दांत अपराधी नहीं है कि जिससे आप एनकाउंटर, अब मुख्य आरोपी उसको बनाया भी नहीं गया, मुख्य आरोपी कोई और है। मुख्य आरोपी को तो पकड़ने दूर है, वो छुएंगे नहीं। आज जो साधारण है, जो वोट अभी गाजीपुर हारे हैं, अब गाजीपुर में बिंदुओं की संख्या बहुत अधिक है, जौनपुर में बिंदुओं की संख्या अधिक है, प्रधानमंत्री के चारों तरफ के हम सारी सीटें हार गए हैं।
4: बहुत ही जो घटना हुई है एनकाउंटर की, तो आखिर जब पुलिस पकड़ सकती थी मुजरिम को, तो एनकाउंटर क्यों करा गया? ये अपने आप में पूरी कानून व्यवस्था में प्रश्न चिन्ह उठाने का काम है। भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं चाहते हैं कि शासन और जो प्रशासन है, जो नियम है, जो कानून है, उससे चले।
2: बहरहाल यूपी में चुनावी पिच पूरी तरह से तैयार है, जहां हर पार्टी अपने हिसाब से बैटिंग कर रही है। आज तक ब्यूरो।
0: दिल्ली के जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी नीट पेपर लीक के विरोध में उतरी और छात्रों की आत्महत्या को लेकर सवाल खड़े किए, तो वहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की।
5: हाथों में संविधान की कॉपी लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपक के आज सुबह अमेरिका से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से उन्होंने जंतर मंतर का रुख किया।
6: सोशल मीडिया पर व्यंग और मीम्स के तौर पर शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी अब दिल्ली के जंतर मंतर आ पहुंचा है। सुबह सुबह अभिजीत दीप के अमेरिका से सीधे आईजीआई एयरपोर्ट पे लैंड किया और उसके बाद जंतर मंतर पहुंचा। पहले भीड़ कम थी, ना मंच था, ना बैनर था, ना कोई ऑडियो सिस्टम, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया, भीड़ की संख्या बढ़ती गई, स्टेज भी लगा, मंच भी लगा और हाथ में तिरंगा लिए युवा यहां पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
5: नीट पेपर लीक को लेकर हो रहे इस प्रदर्शन में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई। अभिजीत दीपक के साथ सोनम वांगचुक भी मंच पर नजर आए। अभिजीत ने धर्मेंद्र को इस्तीफे के लिए 5 बजे तक का अल्टीमेटम दिया।
7: मैं धर्मेंद्र प्रधान जी, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनसे पूछना चाहता हूँ, 5 बच्चों ने सुसाइड कर लिए, फिर भी आपने रिजाइन नहीं किया है, आपको शर्म नहीं आती? और कितने बच्चों के पास सुसाइड करने का वेट करेंगे आप जब तक रिजाइन नहीं करोगे, तब तक हमारा मूवमेंट जारी रहेगा। इसके बाद हम ये मूवमेंट को देश भर में लेकर जाएंगे और ये मूवमेंट तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते।
5: अभिजीत ने अपने इस आंदोलन को सफल बताया तो वहीं साफ किया कि सोशल मीडिया से शुरू हुआ ये आंदोलन अब देश भर में नजर आने वाला है।
7: 15 दिन पहले जब कांग्रेस जनता पार्टी का पेज स्टार्ट हुआ था तब लोगों ने कहा था ये तो एक सोशल मीडिया का ट्रेंड है, ये तो एक सोशल मीडिया पर ही लिमिटेड रहकर रह जाएगा। लेकिन आज हमने देख लिया कि ये कोई सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं है, ये एक आंदोलन है जो जिसकी आज शुरुआत हो चुकी।
5: 5 घंटे तक जंतर मंतर में प्रदर्शन के बाद प्रदर्शनकारी लौट गए जहां उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे न देने पर अगले शनिवार को एक बार फिर जंतर मंतर आने का ऐलान किया है। अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।
0: दिल्ली के जंतर मंतर में एक और जेंजी की सरकार से नाराजगी दिखाई दी गई तो दूसरी तरफ दिल्ली के ही कुछ किलोमीटर की दूरी पर सरकार के समर्थन में युवाओं को एकजुट किया गया।
5: दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में यूथ फॉर विकसित भारत सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े 6,000 से ज्यादा युवा शामिल हुए। वहीं मैथिली ठाकुर, फिल्म स्टार विक्रांत मेस्सी, बोट फाउंडर अमन गुप्ता और गुरिंदर वीर सिंह ने सीएम रेखा गुप्ता और खेल मंत्री मनसुख मांडविया के साथ मंच साझा किया।
8: आज मैं भारत यूथ कन्वेंशन में मेरे साथ ही कितने सारे लोग हैं।
5: एक और जहां विपक्ष युवाओं की नाराजगी और जेन जी आंदोलन की लगातार बात कर रहा है तो वहीं सरकार ने मंच से ये संदेश देने की कोशिश की कि देश के युवाओं को सरकार पर पूरा भरोसा है।
9: माय भारत, मोदी जी ने देश के युवाओं को अपनी आकांक्षा, अपनी अपेक्षा, अपनी वॉलंटियर क्षमता, अपना आइडियाज साझा करने के लिए बनाया हुआ प्लेटफॉर्म है।
10: देश का युवा जो विजनरी है, जिसमें साहस है, जो क्रिएटिव है, वो देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करे, अपना भविष्य भी निर्माण करे और देश का भी निर्माण करे, उसके लिए आज ये इवेंट था।
5: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में जोर देने के लिए यूथ फॉर विकसित भारत अभियान को सरकार युवाओं के लिए एक बड़ा कदम बता रही है जिसके जरिए युवाओं का भरोसा जीतने की कोशिश की जा रही है। सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
0: अब बात यूपी के देवरिया के जहां पर बिजली कटौती से लोग परेशान है, कई क्षेत्रों में बिजली गुल है। अब बिजली कटी तो आधी रात को बीजेपी विधायक शलभमणि त्रिपाठी पावर हाउस पहुंच गए और बिजली विभाग के अधिकारियों को हड़काया। विधायक ने कहा कि हमारे क्षेत्र की जनता अगर बिजली कटौती की वजह से सो नहीं पा रही है तो बिजली अधिकारी को हम चैन से सोने नहीं देंगे, बिजली अफसरों के घरों की भी लाइट काटेंगे। अब इस दौरान बिजली कटौती की शिकायत के लिए पावर हाउस के सरकारी नंबर पर लगातार लोग फोन कर रहे थे, कई फोन कॉल तो खुद विधायक ने उठाए।
11: हमने तय किया कि बिजली के अधिकारियों की चिड़िया से कब से लाइट नहीं है, कितने बजे से? ठीक है, मैं शलभमणि त्रिपाठी बोल रहा हूँ, विधायक देवरिया। ठीक है, बिजली घर पे ही बैठे हैं, इन लोगों की लाइट काटने आए हैं। आप लोगों की लाइट नहीं है तो आज हमने तय किया कि बिजली के अधिकारियों की सबकी लाइट काट देंगे। ठीक है ना, देखिए सर, 10-11 बजे से लाइट नहीं है। आप लोगों पर रिपोर्टिंग ही नहीं भाई, कहाँ कहाँ लाइट नहीं है। आप लोग इतने नॉन सीरियस हो चुके हैं कि आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। 10 बजे से लाइट नहीं है इनके मोहल्ले में, गोरखपुर और के पास।
0: अब बात करते हैं फैसल खान और खान सर की, जिस पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।
12: पटना में दो कोचिंग संचालकों की लड़ाई अब फैसल खान यानी खान सर की गिरफ्तारी तक पहुँच चुकी है। फैजल खान के वकील ने साफ किया है कि वो सरेंडर नहीं करेंगे।
13: खबर है ऐसा कोई विचार ही नहीं है सरेंडर करना, पुलिस तो किसी को अरेस्ट कर सकती है, नॉन अवेलेबल सेक्शन है तो किसी को अरेस्ट कर सकती है ना।
12: कल आर्म्स एक्ट के तहत पटना पुलिस ने फैजल खान के खिलाफ FIR दर्ज की थी। कोचिंग के गार्ड्स ने पूछताछ में कहा था कि फैजल खान ने उन्हें फायरिंग के लिए कहा था।
13: के लिए पुलिस कुछ भी लिख दे, अगर ऐसा होता तो खान सर भेज हुए थे ना, पुलिस को उसी समय अरेस्ट कर लेना था इनको। अगर ऐसा कोई रहता तो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट थाना में ले लेने से और FIR में लिख देने से कोई इविडेंस नहीं होता।
12: उधर फैजल खान की गिरफ्तारी की खबरों के बीच कल रात कोचिंग के बाहर भारी संख्या में छात्र मौजूद थे। तनाव को देखते हुए पुलिस का गश्त जारी रहा। PCR वैन में तैनात पुलिस छात्रों को समझाती नजर आई।
14: मौजूद है और सड़क के दूसरे किनारे एक लाइन से हजारों छात्र जो हैं वो यहाँ पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं खान सर के, ये कह सकते हैं कि समर्थन में ये जो छात्र हैं वो यहाँ पे खड़े हैं। तस्वीर देखिए, ये खान सर के कोचिंग के बाहर का नजारा है।
12: घटना के बाद फैजल खान के छात्रों को भड़काने का वीडियो वायरल हुआ था।
15: इसके ऊपर करने आया है
16: हमारा गाड़ी अभी तक नहीं की है, जबकि सबके सामने ये लेके जा रहा है, मुद्दे से भटकाया जा रहा है। आप इसकी गिरफ्तारी करिए, ये आदमी कौन है और कैसे आता है 20-25 लोगों को उठा के लेके चला जा रहा है, 20-25 लोगों को एक साथ कैसे।
12: वीडियो और मैसेज के बीच जारी तनाव को देखते हुए पटना पुलिस ने छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि दो कोचिंग संस्थानों की प्रतिस्पर्धा में किसी के बहकावे में आना ठीक नहीं है। सूत्रों के माने तो फैजल खान गिरफ्तारी के तलवार के बीच अग्रिम जमानत लेने की तैयारी कर रहे हैं। रोहित सिंह, पटना आज तक।
0: बिहार में राबड़ी के बंगले को लेकर जारी सियासत अब सुरक्षा तक पहुंच गई है। सुरक्षा में कटौती के बाद लालू परिवार ने मौजूद सुरक्षा को भी लेने से इनकार कर दिया है।
2: आवास के बाहर पसरा सन्नाटा और कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं। एक बार तो ये यकीन करना भी मुश्किल है कि ये पटना में पूर्व CM राबड़ी देवी का बंगला है। एक दिन पहले Y+ सिक्योरिटी हटाए जाने के बाद अब लालू राबड़ी ने नाराजगी जताते हुए पूरी सुरक्षा वापस कर दी है।
17: राबड़ी देवी और लालू परिवार को जो सुरक्षा दी जाती है उसको लेकर जो है ये ताजा विवाद जो है वो शुरू हो गया है। और कल से हम देख रहे हैं जब सरकार का एक नया फरमान आया और लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को जो Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई थी उस सुरक्षा को सरकार ने वापस लिया और केवल बिहार पुलिस की सुरक्षा, जो स्पेशल पुलिस होती है, उसकी सुरक्षा प्रदान की। उसके बाद से ही लालू परिवार, राबड़ी देवी जो है वो इसको लेकर काफी बिफर गए। और उसके बाद कल देर रात से हम देख रहे हैं कि 10 सर्कुलर रोड आवास, जो कि राबड़ी देवी और उनका परिवार यहाँ पिछले 20 सालों से रह रहा है, यहाँ कल रात से ही एक भी सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं है।
2: इस बीच तेजस्वी यादव ने इसका विरोध करते हुए अपनी सुरक्षा लौटा दी, जिसे लेकर RJD अब सरकार पर लगातार हमले कर रही है। सुरक्षा कवच में कटौती के बाद दिखावे की सुरक्षा रखने का कोई औचित्य नहीं है। 7 खून के आरोपी रहे मुख्यमंत्री की सरकार के द्वारा लालू जी एवं राबड़ी देवी जी की सुरक्षा में कटौती का फैसला लालू जी, राबड़ी देवी जी एवं उनके परिवार को नुकसान, शारीरिक क्षति पहुंचाने की नीयत से ही लिया गया है। अगर लालू जी एवं उनके परिवार का सुरक्षा कवच है और अगर लालू जी, राबड़ी देवी जी और परिवार के किसी भी सदस्य को एक खरोच भी आई तो अंजाम क्या होगा, इसका अंदाजा शायद बिगड़ैल सम्राट चौधरी और उनकी सरकार को नहीं है।
18: सबको वापस कर दिया, सबको बाहर निकाल दिया, क्योंकि कल ही राज्य की सरकार ने अपने आका के निर्देश पर आदरणीय लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी सहित पूरे लालू परिवार की सुरक्षा में व्यापक और घोर कटौती कर दी। शासन अपमानित करना चाहती है लालू प्रसाद जी और उनके परिवार को, उनके परिजनों को।
19: ये सुरक्षा उनको क्यों दिया गया था? कभी मुख्यमंत्री रहे, कभी केंद्रीय मंत्री रहे, जब ये संवैधानिक व्यवस्था, ये नहीं है कि हथुआ मामा का बेटा है तो सब दिन वही रहेगा। जनता जिसको चुन करके देती है सत्ता में और जो कानून कहता है वो सुरक्षा मिलता।
2: समीक्षा में तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं किया गया था, लेकिन लालू और राबड़ी की सुरक्षा घटाए जाने के विरोध में अब तेजस्वी यादव ने ये बड़ा फैसला लिया है। वहीं लालू राबड़ी की जेड प्लस सिक्योरिटी वापस ली गई थी, लेकिन नई सुरक्षा व्यवस्था के तहत दोनों नेताओं के लिए बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की सुरक्षा का इंतजाम किया गया था, जिसके तहत 2 से 8 जवान सुरक्षा में तैनात रहने का निर्देश था। इसके साथ बुलेट प्रूफ कार जिला बल से स्क्वाड की नियुक्ति का निर्देश था।
17: ये बिहार पुलिस की जो सुरक्षा, जो नई व्यवस्था उनको प्रदान की गई थी, उस सुरक्षा को भी यहाँ लेने से देखिए लालू परिवार ने जो है वो मना कर दिया है। ये देख सकते हैं यहाँ बिहार पुलिस के जो विशेष दस्ता है वो जो नई सुरक्षा व्यवस्था के तहत इनको यहाँ पर भेजा गया है, इन तमाम लोगों को भी जो है 10 सर्कुलर रोड आवास में जाने नहीं दिया गया है, इनको बाहर कर दिया गया है परिवार के द्वारा। और जाहिर सी बात है ये तमाम जो बिहार पुलिस के यहाँ पर कर्मी हैं वो लोग बाहर ही खड़े हैं, राबड़ी देवी के आवास के बाहर ही इसी तरीके से खड़े हैं। अब इन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है कि करना है तो क्या करना है।
2: राबड़ी देवी के बंगले को लेकर सियासत चल ही रही थी, जिस पर अब सुरक्षा को लेकर विवाद की एंट्री हो चुकी है। रोहित सिंह, पटना आज तक।
0: यूपी में योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन भी जारी है, जिसकी गूंज अब संभल में सुनाई दी, जहां सरकारी जमीन पर बनी मुस्तफा कादरी मस्जिद के खिलाफ एक्शन लिया गया और इस अवैध मस्जिद को बुलडोजर से ढहा दिया गया।
15: संभल के नखासा थाना इलाके के कसेरुआ गांव में स्थित मुस्तफ़ा कादरी मस्जिद को ध्वस्त करने की कार्रवाई इस वक्त शुरू हो चुकी है। और आप मेरे पीछे की तस्वीरों में आप जो देख सकते हैं कि किस तरीके से बुलडोजर एक्शन के जरिए जो कि सरकारी ज़मीन पर बनी हुई मस्जिद है उसको यहां पर ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई की जा रही है। दो दो बुलडोजर इस पूरी मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए फिलहाल यहां पर जो लगाए गए हैं, पूरा पुलिस फोर्स गाँव में तैनात किया गया है। और ये देखा जाए तो ये 120 वर्ग मीटर जगह में बनी हुई ये पूरी मस्जिद थी, जिसको हटाने के लिए जनवरी महीने में जो है लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर ये पूरी कार्रवाई शुरू की गई थी। और उसके बाद इस मस्जिद के वक्फ बोर्ड में भी रजिस्टर्ड होने का मामला सामने आया था, जिसके बाद इस मस्जिद कमेटी से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ FIR कराई गई। लेकिन आज अब इस पूरे मस्जिद पर धारा 67 के तहत जो कार्रवाई यहां पर जो की जा रही है, और आप यहां जो देख सकते हैं देखिए किस तरीके से जो पूरा बुलडोजर है वो इस पूरे मस्जिद के स्ट्रक्चर को ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई कर रहा है। और एहतियातन अगर जो देखा जाए तो देखिए छतों पर आपको जो पुलिसकर्मी आपको जो तैनात नजर आएंगे, यहां अगर आपको जो देखा जाए तो देखिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो फिलहाल आपको जो है ये वो पुलिसकर्मियों की आपको जो है लगातार छतों पे जो तैनाती दिखाई देगी। जो है सामने देखिए तस्वीरों में देखेंगे तो देखिए तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह आपको यहाँ इस पूरे इलाके में लगातार इस पूरी स्थिति पे नजर बनाए हुए दिखाई देंगे। और इसी तरह से देखिए आसपास का जो पूरा इलाका है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया। सामने आप देखेंगे तो देखिए बुलडोजर के ठीक बराबर में देखिए भारी संख्या में आपको पुलिस फोर्स जो है यहाँ पर जो तैनात जो नजर आएगा, जो कि आपको तस्वीरों में नजर आएगा। और इसी तरह से जो पूरे गांव का अलग अलग इलाके हैं वहां पर इस तरीके से पूरे पुलिस फोर्स को तैनात करके पूरे गाँव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर विशेष तौर पर निगरानी की जा रही है, जिससे कि कोई भड़काऊ पोस्ट जो है वो न डाली जाए सोशल मीडिया पर। वहीं इसी के साथ जो आसपास के इलाके हैं, आसपास के जो गांव हैं, वहां से भी इस पूरे गांव की तरफ आने वाले रास्तों पर पुलिस को फोर्स को जो तैनात किया गया है। और
0: बक्सर का इटाढ़ी गुमटी पुल क्षतिग्रस्त हो गया, मात्र 4 दिन हुए थे पुल के उद्घाटन को और अब पुल बंद कर दिया गया है। 26 करोड़ 40 लाख की लागत से बने हुए रोड ओवर ब्रिज के ऊपरी परत धंस गए। लगभग 11 साल के इंतजार के बाद आम जनता के लिए कुछ ही दिन पहले उद्घाटन किया गया। लोगों ने राहत की सांस ली, कुछ सहूलियत होगी सोचा, लेकिन चौथे दिन ही पुल के पिलर नंबर 5 के ऊपरी परत ही धंस गई।
20: आप सोच सकते हैं कि जिस चीज को 11 साल से इंतजार कर रहे हैं और इंतजार के बाद अगर मिलता है तो 4 दिनों में ध्वस्त हो जाता है, तो सोचिए नहीं, ये देखिए कैसे, क्योंकि ये जो पुल है करीब 4 दिन पहले इसको खोला गया था चलने के लिए, लेकिन 4 दिनों में ये पुल टूट गया, यानी कि कहिए कि ध्वस्त हो गया और इसको बंद कर दिया गया है। ये दरअसल बक्सर के इटाढ़ी गुमटी पर बना 26 करोड़ 40 लाख का वो नया पुल है जिसको लेकर कई बार आंदोलन हुआ, कई बार लोग धरने पर बैठे, उसके बाद ये पुल मिला तो ऐसे हालात में मिला कि 4 दिन बाद ये इस परिस्थिति में आ गया कि लोग अब घेर कर देख रहे हैं कि भाई ये क्या हुआ है। ये एक दर्दनाक घटना तो नहीं कही जा सकती है, शर्मनाक घटना कही जा सकती है। और शर्मनाक घटना के कौन कौन विलेन है ये तो तय जनता को करना है। ऐसे में जनता सामने खड़ी है, हम उससे भी जानने का प्रयास करेंगे कि भाई ये जो घटना घटी है आपको आश्चर्यचकित तो नहीं करती होगी ना?
21: ना ना, ये तो मतलब वही होना था जो हुआ है, इसे पहले भी हुआ है कई बार, ये तो देखने वाली चीज है, ये तो सामने है जो प्रत्यक्ष में आपको दिख रहा है।
1: बस वही है जो देख रहे हैं, टूट गया है पुल।
3: चार दिन पहले
1: हाँ, चार दिन पहले बना था, आज टूट गया, फिर ट्रक चढ़ी है। वो तो अच्छी बात है, किसी का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है।
3: सर आपको लगता है कि मतलब ये पुल लगता था कि चलेगा नहीं, ये तो समझ में आ रहा होगा, तो इतना जल्दी फंसेगा ये तो विश्वास नहीं होगा?
22: ये विश्वास नहीं था इतना जल्दी फंस जाएगा।
3: देखिए लोगों को लगातार सूचनाएं टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ये मिलती रहेगी है कि पुल फंस रहा है और पुल फंसेगा भी, लेकिन चार दिनों में अगर पुल फंसने लगे तो बिहार की उस सरकार को क्या कहेंगे जो कई परिवर्तन के बाद इस समय भी डबल इंजन की सरकार चल रही है, विकास के कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे विकास का क्या मतलब है चार दिन तक टिके नहीं। बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे।
0: आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने वाले वैभव सूर्यवंशी की टीम इंडिया में एंट्री हो गई। धुआंधार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड, इंग्लैंड और एशियन गेम्स की T20 इंटरनेशनल टीम में शामिल कर लिया गया है।
23: नाम वैभव सूर्यवंशी, काम छक्के बरसाना, पहचान तूफान लाना, अरमान अब देश को जिताना। आईपीएल की इन तस्वीरों को जिसने देखा देखता ही रह गया, खुद वैभव के साथियों ने, दुनिया भर के दिग्गजों ने और विरोधी गेंदबाजों के पास तो देखते रहने की मजबूरी के अलावा कोई चारा ही नहीं था। ना उम्र की सीमा, ना दुनिया के किसी गेंदबाज का खौफ, वैभव का बल्ला जब बरसता है तो फिर इसके कोई मायने नहीं होते कि सामने पैट कमिंस जैसा गेंदबाज है, जसप्रीत बुमराह है या फिर कोई और। और ये तूफान आईपीएल के इस सीजन में जब आया तो मैच दर मैच उनका बल्ला रिकॉर्ड्स की इबारत लिखता चला गया। इस सीजन में तो हाल ये था कि जब उनकी पारी खत्म होती थी तो कईयों के सपने टूट चुके होते थे और कई गेंदबाजों के तो आईपीएल करियर के आंकड़े बिगड़ चुके होते थे। उनके बल्ले ने इतना हल्ला मचाया कि आखिरकार सेलेक्टर्स को उन्हें सीनियर टीम इंडिया का हिस्सा बनाना ही पड़ा। वैभव 15 साल की उम्र में टीम इंडिया का हिस्सा बनने वाले सबसे युवा भारतीय हैं। उन्होंने आईपीएल में सबसे तेज 1000 रन बनाए हैं। आईपीएल में उन्होंने एक सीजन में क्रिस गेल के 59 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़कर 72 छक्के जमाए हैं। 14 साल की उम्र में आईपीएल में शतक जमाने वाले वो सबसे युवा बल्लेबाज हैं। वो अंडर 19 वर्ल्ड कप चैंपियन है। आईपीएल के 23 मैच में वो 96 छक्के जमा चुके हैं। वैभव का असली इम्तिहान अब होने वाला है, लेकिन उनके लिए आपदा नहीं ये अवसर है, क्योंकि खौफ का भूत वो बचपन में ही भगा चुके हैं। दुनिया भर के गेंदबाजों को वो आईपीएल में निपटा चुके हैं। इतना ही नहीं, दुनिया की कई पिचों पर खेलने का उनका अनुभव धीरे धीरे उनकी बल्लेबाजी को और मैच्योर बना रहा है। नए हिंदुस्तान के नए तेवरों वाली इस टीम को अपने खजाने में ऐसा ही हीरा चाहिए। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात दुनिया की करते, जहां खाड़ी युद्ध में तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत की कोशिशों के बीच धमाके की गूंज ने युद्ध विराम की उम्मीदों को तोड़ा है।

0: पश्चिम एशिया से आई इन तस्वीरों ने फिर से दुनिया को पसोपेश में डाल दिया है। इस मंजर ने डरा दिया है कि खाड़ी में फिर से महायुद्ध 2.0 की लपटें सुलगने लगी हैं। इस माहौल ने बता दिया है कि किसी भी वक्त अमेरिका और ईरान में फिर से भीषण जंग छिड़ने वाली है। दहशत इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि ईरान ने कुवैत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया है। कुवैत में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। कुवैत का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान से आ रहे ड्रोन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहा है। ईरान ने बहरीन पर भी मिसाइल दागी है। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को रोकने के लिए बहरीन का भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। हम आपको बता दें कि बहरीन में अमेरिकी सेंट्रल कमांड का मुख्यालय भी है। अपने सहयोगी देशों पर ईरान के हमले से अमेरिका बौखला चुका है। पलटवार में अमेरिका ने भी ईरान के कई ठिकानों पर धावा बोल दिया। ईरान के सर्विलांस रडार सेंटर पर अमेरिका ने हमला किया है। ईरान के रडार सेंटर पर हमले का वीडियो भी अमेरिका ने जारी कर दिया। अमेरिका का कहना है कि पहले ईरान ने हमला किया था, जिसके जवाब में उसके रडार सर्विलांस टावर को उड़ा दिया गया। अमेरिकी सेना ने समुद्री हमलों से बचाव के लिए गोरुक और केशम द्वीप पर स्थित ईरानी तटीय निगरानी रडार को ध्वस्त किया। अमेरिका ने दावा किया कि 6 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया, जबकि 7वीं मिसाइल टारगेट तक पहुंची ही नहीं। मतलब साफ है कि जो सीज फायर फिलहाल अस्थाई है, वो किसी भी वक्त धराशायी हो सकता है, क्योंकि ईरान और अमेरिका में झड़प शुरू हो चुकी है। यह चिंगारी किसी भी वक्त भीषण युद्ध का शक्ल ले सकती है। आज तक ब्यूरो।
1: और अब आपको लेकर चलते हैं युद्ध के उस मोर्चे की ओर जहां पिछले 4.5 साल से रूस और यूक्रेन में जंग छिड़ी है। अब बड़ी खबर यह है कि रूसी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि शांति वार्ता के लिए युद्ध रोकने की जरूरत नहीं। पुतिन का यह बयान तब आया है जब जेलेंस्की ने खुला पत्र लेकर रूसी राष्ट्रपति से मिलने की इच्छा जाहिर की।

0: रूस ने यूक्रेनी शहर जैपोरेजिया पर भीषण अटैक किया, वो भी तब जब शांति वार्ता की कोशिशें चल रही हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है कि शांति वार्ता के लिए सीज फायर की कोई जरूरत नहीं है, मतलब बातचीत करने के लिए जंग रोकने की जरूरत नहीं। रूस के ताजा हमलों में जैपोरेजिया के रिहायशी इलाकों को बड़ा नुकसान हुआ, जिसमें एक शख्स की मौत हुई है, 16 घायल हैं, वाहनों और नागरिक बुनियादी ढांचों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इस बीच पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में पत्रकारों को संबोधित करते हुए साफ कर दिया कि बातचीत के लिए सीज फायर की जरूरत ही नहीं है।
1: नए населенные пункты ставятся под контроль российских вооруженных сил. Ну, за последнее время, я повторяю, почти 2500 квадратных километров.
0: इससे पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति को खुला पत्र लिखा है और सीधे वार्ता का प्रस्ताव रखा है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी और रूसी नेताओं के बीच बैठक की पहल को सराहा है और इसे अच्छी पहल बताया।
2: I don't know. I'm glad that they're maybe talking about meeting. I think we had a lot to do with it. I know exactly what you're doing. But I think it would be great if they met. They should get it done.
0: आर पार की जंग और शांति वार्ता की कोशिशों के बीच दोनों देशों की तरफ से अच्छी पहल हुई है। रूस यूक्रेन ने एक दूसरे के 185 कैदियों की अदला बदली की है, जिसे शांति की शुरुआत के लिए पहला बड़ा कदम बताया जा सकता है। हालांकि कैदियों की अदला बदली पहले भी हो चुकी है, लेकिन 4 साल से भी ज्यादा समय से जारी जंग अभी तक थमी नहीं। आज तक ब्यूरो।
3: अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक, आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ मंथन, देशवासियों का जीवन आसान बनाने और आर्थिक दर्द को बढ़ाने पर चर्चा। समाजवादी पार्टी पर मुख्यमंत्री योगी का बड़ा हमला, कहा 2017 से पहले गुंडों के आगे नतमस्तक थी सरकार, राम का नाम लेने पर चलती थी गोलियां, अखिलेश का पलटवार, यूपी में महाजंगल राज। बंगाल सरकार ने मदरसों का शुरू किया सर्वेक्षण, 5 जुलाई तक मांगे रिपोर्ट, नियमों के तहत संचालन और जरूरी दस्तावेजों की होगी जांच।

0: यूपी में भी 2027 के लिए हर पार्टी ने कमर कस ली है। योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, तो अखिलेश यादव भी लगातार सरकार को घेर रहे हैं।
1: तब राम का नाम लेने पर ही प्रतिबंध था, डंडे बरसते थे, गोलियां चलती थी। अयोध्या में भगवान राम का भक्त अयोध्या में नहीं जा सकता था। किस प्रकार की अराजकता थी। अब तो अयोध्या में राम भक्त के अलावा कोई रामद्रोही घुस ही नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। आज तो अयोध्या चमक रही है।
2: 2027 के सियासी समर में बीजेपी हिंदुत्व और राम मंदिर के मुद्दे पर सवार है, जहां अखिलेश यादव पर सीएम योगी आदित्यनाथ के हमले जारी हैं।
1: 2017 के पहले इन दंगाइयों को, इन पेशेवर गुंडों को प्रश्रय देते थे, इनके सामने नतमस्तक होते थे। प्रदेश में कर्फ्यू रहता था।
2: योगी विकास से लेकर डबल इंजन तक की खूबियां गिना रहे हैं, तो वहीं पिछली सरकारों की खामियां भी बता रहे हैं।
1: 2015-16 में इस गोंडा में भी दुर्गा पूजा के समय दंगा करने का प्रयास हुआ था, यहां भी दंगे हुए थे। मां दुर्गा की मूर्ति को विसर्जन नहीं करने दिया जाता था, रामलीलाओं के आयोजन में अड़चने डाली जाती थी। पर्व और त्योहार प्रारंभ होने के पहले, उत्सव प्रारंभ होने के पहले उपद्रव शुरू हो जाते थे। उत्सव के रंग में किसी ने भंग करने का काम किया तो फिर वर्तमान तो जाएगा ही जाएगा, भविष्य भी स्वाहा हो जाएगा।
2: उधर अखिलेश को योगी सरकार में जंगल राज नजर आ रहा है। उधर गाजीपुर में कमलेश बिंद के एनकाउंटर पर विपक्ष और सरकार के सहयोगियों के सुर एक जैसे नजर आ रहे हैं। किसी को अपने वोट बैंक की टेंशन सता रही है, तो कोई वोट बैंक में सेध मारने की तैयारी में है।
3: इतना बड़ा तो दुर्दांत अपराधी नहीं है कि जिससे आप एनकाउंटर, अब मुख्य आरोपी उसको बनाया भी नहीं गया, मुख्य आरोपी कोई और है। मुख्य आरोपी को तो पकड़ने दूर है, उसको छुएंगे नहीं। आज जो साधारण है, जो वोट अभी गाजीपुर हारे हैं, अब गाजीपुर में बिंदुओं की संख्या बहुत अधिक है, जौनपुर में बिंदुओं की संख्या अधिक है, प्रधानमंत्री के चारों तरफ के हम सारी सीटें हार गए हैं।
4: बहुत ही जो घटना हुई है एनकाउंटर की, तो आखिर जब पुलिस पकड़ सकती थी मुजरिम को, तो एनकाउंटर क्यों करा गया? तो ये अपने आप में पूरी कानून व्यवस्था में प्रश्न चिन्ह उठाने का काम है। भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं चाहते हैं कि प्रशासन और जो प्रशासन है, जो नियम है, जो कानून है, उससे चले।
2: बहरहाल यूपी में चुनावी पिच पूरी तरह से तैयार है, जहां हर पार्टी अपने हिसाब से बैटिंग कर रही है। आज तक ब्यूरो।
0: दिल्ली के जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी नीट पेपर लीक के विरोध में उतरी और छात्रों की आत्महत्या को लेकर सवाल खड़े किए, तो वहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की।
5: हाथों में संविधान की कॉपी लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपक आज सुबह अमेरिका से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से उन्होंने जंतर मंतर का रुख किया।
6: सोशल मीडिया पर व्यंग और मीम्स के तौर पर शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी अब दिल्ली के जंतर मंतर आ पहुंचा है। सुबह सुबह अभिजीत दीप के अमेरिका से सीधे आज आईजीआई एयरपोर्ट पे लैंड किया और उसके बाद जंतर मंतर पहुंचा। पहले भीड़ कम थी, ना मंच था, ना बैनर था, ना कोई ऑडियो सिस्टम, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया, भीड़ की संख्या बढ़ती गई, स्टेज भी लगा, मंच भी लगा और हाथ में तिरंगा लिए युवा यहां पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
5: नीट पेपर लीक को लेकर हो रहे इस प्रदर्शन में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई। अभिजीत दीपक के साथ सोनम वांगचुक भी मंच पर नजर आए। अभिजीत ने धर्मेंद्र को इस्तीफे के लिए 5 बजे तक का अल्टीमेटम दिया।
7: मैं धर्मेंद्र प्रधान जी, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनसे पूछना चाहता हूँ, 5 बच्चों ने सुसाइड कर लिए, फिर भी आपने रिजाइन नहीं किया है, आपको शर्म नहीं आती? और कितने बच्चों का सुसाइड करने का वेट करेंगे आप? जब तक रिजाइन नहीं करोगे तब तक हमारा मूवमेंट जारी रहेगा। इसके बाद हम ये मूवमेंट को देश भर में लेकर जाएंगे। और ये मूवमेंट तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते।
5: अभिजीत ने अपने इस आंदोलन को सफल बताया तो वहीं साफ किया कि सोशल मीडिया से शुरू हुआ ये आंदोलन अब देश भर में नजर आने वाला है।
7: 15 दिन पहले जब कांग्रेस जनता पार्टी का पेज स्टार्ट हुआ था तब लोगों ने कहा था ये तो एक सोशल मीडिया का ट्रेंड है, ये तो एक सोशल मीडिया पर ही लिमिटेड रहकर रह जाएगा। लेकिन आज हमने देख लिया कि ये कोई सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं है, ये एक आंदोलन है जो जिसकी आज शुरुआत हो चुकी।
5: 5 घंटे तक जंतर मंतर में प्रदर्शन के बाद प्रदर्शनकारी लौट गए, जहां उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे ना देने पर अगले शनिवार को एक बार फिर जंतर मंतर आने का ऐलान किया है। अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।
0: दिल्ली के जंतर मंतर में एक और जेनजी की सरकार से नाराजगी दिखाई दी गई तो दूसरी तरफ दिल्ली के ही कुछ किलोमीटर की दूरी पर सरकार के समर्थन में युवाओं को एकजुट किया गया।
5: दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में यूथ फॉर विकसित भारत सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े 6,000 से ज्यादा युवा शामिल हुए। वहीं मैथिली ठाकुर, फिल्म स्टार विक्रांत मेस्सी, बोट फाउंडर अमन गुप्ता और गुरिंदर वीर सिंह ने सीएम रेखा गुप्ता और खेल मंत्री मनसुख मांडविया के साथ मंच साझा किया।
8: आज मैं माय भारत यूथ कन्वेंशन में मेरे साथी के कितने सारे लोग हैं। जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
5: एक और जहां विपक्ष युवाओं की नाराजगी और जेन जी आंदोलन की लगातार बात कर रहा है तो वहीं सरकार ने मंच से ये संदेश देने की कोशिश की कि देश के युवाओं को सरकार पर पूरा भरोसा है।
9: दोस्तों, माय भारत मोदी जी ने देश के युवाओं को अपनी आकांक्षा, अपनी अपेक्षा, अपनी ओलंपियर क्षमता, अपना आइडियाज उस साझा करने के लिए बनाया हुआ प्लेटफॉर्म है।
10: देश का युवा जो विजनरी है, जिसमें साहस है, जो क्रिएटिव है, वो देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करे, अपना भविष्य भी निर्माण करे और देश का भी निर्माण करे, उसके लिए आज ये इवेंट था।
5: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में जोर देने के लिए यूथ फॉर विकसित भारत अभियान को सरकार युवाओं के लिए एक बड़ा कदम बता रही है जिसके जरिए युवाओं का भरोसा जीतने की कोशिश की जा रही है। सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
0: अब बात यूपी के देवरिया की, जहां पर बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। कई क्षेत्रों में बिजली गुल है। अब बिजली कटी तो आधी रात को बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी पावर हाउस पहुंच गए और बिजली विभाग के अधिकारियों को हड़काया। विधायक ने कहा कि हमारे क्षेत्र की जनता अगर बिजली कटौती की वजह से सो नहीं पा रही है तो बिजली अधिकारी को हम चैन से सोने नहीं देंगे, बिजली अफसरों के घरों की भी लाइट काटेंगे। अब इस दौरान बिजली कटौती की शिकायत के लिए पावर हाउस के सरकारी नंबर पर लगातार लोग फोन कर रहे थे। कई फोन कॉल तो खुद विधायक ने उठाया।
11: कहां से बोल रहे हैं? चिड़ियाठाला से ना लाइट, कब से लाइट नहीं है, कितने बजे से? ठीक है, मैं शलभ मणि त्रिपाठी बोल रहा हूँ, विधायक देवरिया। ठीक है, बिजली घर पे ही बैठे हैं, इन लोगों की लाइट काटने आए हैं। आप लोगों की लाइट नहीं है तो आज हमने तय किया है कि बिजली के अधिकारियों की सबकी लाइट काट देंगे। ठीक है ना, देखिए सर, 10-11 बजे से लाइट नहीं है। आप लोगों पर रिपोर्टिंग ही नहीं भाई, कहाँ कहाँ लाइट नहीं है। आप लोग इतने नॉन सीरियस हो चुके हैं कि आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। 10 बजे से लाइट नहीं है इनके मोहल्ले में, गोरखपुर और के पास।
0: अब बात करते हैं फैसल खान और खान सर की, जिस पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।
12: पटना में दो कोचिंग संचालकों की लड़ाई अब फैसल खान यानी खान सर की गिरफ्तारी तक पहुँच चुकी है। फैजल खान के वकील ने साफ किया है कि वो सरेंडर नहीं करेंगे।
13: खबर है ऐसा कोई विचार ही नहीं है सरेंडर करने का, पुलिस तो किसी को अरेस्ट कर सकती है, नॉन अवेलेबल सत्संग है तो किसी को अरेस्ट कर सकती है ना।
12: कल आर्म्स एक्ट के तहत पटना पुलिस ने फैजल खान के खिलाफ FIR दर्ज की थी। कोचिंग के गार्ड्स ने पूछताछ में कहा था कि फैजल खान ने उन्हें फायरिंग के लिए कहा था।
13: के लिए पुलिस कुछ भी लेख दे, अगर ऐसा होता तो खान साहब भेज हुए थे ना, पुलिस को उसी समय अरेस्ट कर लेना था इनको। अगर ऐसा कोई रहता तो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट थाना में ले लेने से और FIR में लिख देने से कोई एविडेंस नहीं होता।
12: उधर फैजल खान की गिरफ्तारी की खबरों के बीच कल रात कोचिंग के बाहर भारी संख्या में छात्र मौजूद थे। तनाव को देखते हुए पुलिस का गश्त जारी रहा। PCR वैन में तैनात पुलिस छात्रों को समझाती नजर आई।
14: मौजूद हैं और सड़क के दूसरे किनारे एक लाइन से हजारों छात्र जो हैं वो यहां पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं खान सर के, ये कह सकते हैं कि समर्थन में ये जो छात्र हैं वो यहां पे खड़े हैं। तस्वीर देखिए, ये खान सर के कोचिंग के बाहर का नजारा है।
12: घटना के बाद फैजल खान के छात्रों को भड़काने का वीडियो वायरल हुआ था।
15: किसके ऊपर करने आया है
16: हमारा गाड़ी अभी तक नहीं की, जबकि सबके सामने ये लेके जा रहा है, मुद्दे से भटकाया जा रहा है। आप इसकी गिरफ्तारी करिए, ये आदमी कौन है और कैसे आता है 20-25 लोगों को उठा के लेके चला जाता है, 20-25 लोगों को एक साथ कैसे।
12: वीडियो और मैसेज के बीच जारी तनाव को देखते हुए पटना पुलिस ने छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि दो कोचिंग संस्थानों की प्रतिस्पर्धा में किसी के बहकावे में आना ठीक नहीं है। सूत्रों के माने तो फैजल खान गिरफ्तारी के तलवार के बीच अग्रिम जमानत लेने की तैयारी कर रहे हैं। रोहित सिंह, पटना आज तक।
0: बिहार में राबड़ी के बंगले को लेकर जारी सियासत अब सुरक्षा तक पहुंच गई है। सुरक्षा में कटौती के बाद लालू परिवार ने मौजूद सुरक्षा को भी लेने से इनकार कर दिया है।
2: आवास के बाहर पसरा सन्नाटा और कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं। एक बार तो ये यकीन करना भी मुश्किल है कि ये पटना में पूर्व CM राबड़ी देवी का बंगला है। एक दिन पहले Y+ सिक्योरिटी हटाए जाने के बाद अब लालू राबड़ी ने नाराजगी जताते हुए पूरी सुरक्षा वापस कर दी है।
17: राबड़ी देवी और लालू परिवार को जो सुरक्षा दी जाती है उसको लेकर जो है ये ताज़ा विवाद जो है वो शुरू हो गया है। और कल से हम देख रहे हैं जब सरकार का एक नया फरमान आया और लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को जो Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई थी उस सुरक्षा को सरकार ने वापस लिया और केवल बिहार पुलिस की सुरक्षा, जो स्पेशल पुलिस होती है, उसकी सुरक्षा प्रदान की। उसके बाद से ही लालू परिवार, राबड़ी देवी जो है वो इसको लेकर काफी बिफर गए। और उसके बाद कल देर रात से हम देख रहे हैं कि 10 सर्कुलर रोड आवास, जो कि राबड़ी देवी और उनका परिवार यहाँ पिछले 20 सालों से रह रहा है, यहाँ कल रात से ही एक भी सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं है।
2: इस बीच तेजस्वी यादव ने इसका विरोध करते हुए अपनी सुरक्षा लौटा दी, जिसे लेकर RJD अब सरकार पर लगातार हमले कर रही है। सुरक्षा कवच में कटौती के बाद दिखावे की सुरक्षा रखने का कोई औचित्य नहीं है। सात खून के आरोपी रहे मुख्यमंत्री की सरकार के द्वारा लालू जी एवं राबड़ी देवी जी की सुरक्षा में कटौती का फैसला लालू जी, राबड़ी देवी जी एवं उनके परिवार को नुकसान, शारीरिक क्षति पहुंचाने की नीयत से ही लिया गया है। अगर लालू जी एवं उनके परिवार का सुरक्षा कवच है और अगर लालू जी, राबड़ी देवी जी और परिवार के किसी भी सदस्य को एक खरोच भी आई तो अंजाम क्या होगा, इसका अंदाजा शायद बिगड़ैल सम्राट चौधरी और उनकी सरकार को नहीं है।
18: सबको वापस कर दिया, सबको बाहर निकाल दिया, क्योंकि कल ही राज्य की सरकार ने अपने आका के निर्देश पर आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी सहित पूरे लालू परिवार की सुरक्षा में व्यापक और घोर कटौती कर दी। शासन अपमानित करना चाहती है लालू प्रसाद जी और उनके परिवार को, उनके परिजनों को।
19: ये सुरक्षा उनको क्यों दिया गया था? कभी मुख्यमंत्री रहे, कभी केंद्रीय मंत्री रहे, जब ये संवैधानिक व्यवस्था, ये नहीं है कि हथुआ मामा का बेटा है तो सब दिन वही रहेगा। जनता जिसको चुन करके देती है सत्ता में और जो कानून कहता है वो सुरक्षा मिलता।
2: समीक्षा में तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं किया गया था, लेकिन लालू और राबड़ी की सुरक्षा घटाए जाने के विरोध में अब तेजस्वी यादव ने ये बड़ा फैसला लिया है। वहीं लालू राबड़ी की जेड प्लस सिक्योरिटी वापस ली गई थी, लेकिन नई सुरक्षा व्यवस्था के तहत दोनों नेताओं के लिए बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की सुरक्षा का इंतजाम किया गया था, जिसके तहत 2 से 8 जवान सुरक्षा में तैनात रहने का निर्देश था। इसके साथ बुलेट प्रूफ कार जिला बल से स्क्वाड की नियुक्ति का निर्देश था।
17: ये बिहार पुलिस की जो सुरक्षा, जो नई व्यवस्था उनको प्रदान की गई थी, उस सुरक्षा को भी यहाँ लेने से देखिए लालू परिवार ने जो है वो मना कर दिया है। ये देख सकते हैं यहाँ बिहार पुलिस के जो विशेष दस्ता है वो जो नई सुरक्षा व्यवस्था के तहत इनको यहाँ पर भेजा गया है। इन तमाम लोगों को भी जो है 10 सर्कुलर रोड आवास में जाने नहीं दिया गया है, इनको बाहर कर दिया गया है परिवार के द्वारा। और जाहिर सी बात है ये तमाम जो बिहार पुलिस के यहाँ पर कर्मी हैं वो लोग बाहर ही खड़े हैं, राबड़ी देवी के आवास के बाहर ही इसी तरीके से खड़े हैं। अब इन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है कि करना है तो क्या करना है।
2: राबड़ी देवी के बंगले को लेकर सियासत चल ही रही थी, जिस पर अब सुरक्षा को लेकर विवाद की एंट्री हो चुकी है। रोहित सिंह, पटना आज तक।
0: यूपी में योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन भी जारी है, जिसकी गूंज अब संभल में सुनाई दी, जहां सरकारी जमीन पर बनी मुस्तफा कादरी मस्जिद के खिलाफ एक्शन लिया गया और इस अवैध मस्जिद को बुलडोजर से ढहा दिया गया।
15: संभल के नखासा थाना इलाके के कसेरुआ गांव में स्थित मुस्तफ़ा कादरी मस्जिद को ध्वस्त करने की कार्रवाई इस वक्त शुरू हो चुकी है। और आप मेरे पीछे की तस्वीरों में आप जो देख सकते हैं कि किस तरीके से बुलडोजर एक्शन के जरिए जो कि सरकारी ज़मीन पर बनी हुई मस्जिद है उसको यहां पर ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई की जा रही है। दो दो बुलडोजर इस पूरी मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए फिलहाल यहां पर जो लगाए गए हैं। पूरा पुलिस फोर्स गांव में तैनात किया गया है। और ये देखा जाए तो ये 120 वर्ग मीटर जगह में बनी हुई ये पूरी मस्जिद थी, जिसको हटाने के लिए जनवरी महीने में जो है लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर यह पूरी कार्रवाई शुरू की गई थी। और उसके बाद इस मस्जिद के वक्फ बोर्ड में भी रजिस्टर्ड होने का मामला सामने आया था, जिसके बाद इस मस्जिद कमेटी से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ FIR कराई गई। लेकिन आज अब इस पूरे मस्जिद पर धारा 67 के तहत जो कार्रवाई यहां पर जो की जा रही है, और आप यहां जो देख सकते हैं देखिए किस तरीके से जो पूरा बुलडोजर है वो इस पूरे मस्जिद के स्ट्रक्चर को ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई कर रहा है। और एहतियातन अगर जो देखा जाए तो देखिए छतों पर आपको जो पुलिसकर्मी आपको जो तैनात नजर आएंगे, यहां अगर आपको जो देखा जाए तो देखिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो फिलहाल आपको जो है ये वो पुलिसकर्मियों की आपको जो है लगातार छतों पर जो तैनाती दिखाई देगी जो है सामने देखिए तस्वीरों में।

0: वहां पर इस तरीके से पूरे पुलिस फोर्स को तैनात करके पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर विशेष तौर पर निगरानी की जा रही है जिससे कि कोई भड़काऊ पोस्ट जो है वो ना डाली जाए सोशल मीडिया पर। वहीं इसी के साथ जो आसपास के इलाके हैं, आसपास के जो गांव हैं, वहां से भी इस पूरे गांव की तरफ आने वाले रास्तों पर पुलिस को फोर्स को जो तैनात किया गया है। और
1: बक्सर का इटाढ़ी गुमटी पुल क्षतिग्रस्त हो गया, मात्र 4 दिन हुए थे पुल के उद्घाटन को और अब पुल बंद कर दिया गया है। 26 करोड़ 40 लाख की लागत से बने हुए रोड ओवर ब्रिज की ऊपरी परत धंस गए। लगभग 11 साल के इंतजार के बाद आम जनता के लिए कुछ ही दिन पहले उद्घाटन किया गया। लोगों ने राहत की सांस ली, कुछ सहूलियत होगी सोचा, लेकिन चौथे दिन ही पुल के पिलर नंबर 5 के ऊपरी परत ही धंस गए।
2: आप सोच सकते हैं कि जिस चीज को 11 साल से इंतजार कर रहे हैं और इंतजार के बाद अगर मिलता है तो 4 दिनों में ध्वस्त हो जाता है, तो सोचिए नहीं, देखिए कैसे, क्योंकि ये जो पुल है करीब 4 दिन पहले इसको खोला गया था चलने के लिए, लेकिन 4 दिनों में ये पुल टूट गया, यानी कहिए कि ध्वस्त हो गया और इसको बंद कर दिया गया है। ये दरअसल बक्सर के इटाढ़ी गुमटी पर बना 26 करोड़ 40 लाख का वो नया पुल है जिसको लेकर कई बार आंदोलन हुआ, कई बार लोग धरने पर बैठे, उसके बाद ये पुल मिला तो ऐसे हालात में मिला कि 4 दिन बाद ये इस परिस्थिति में आ गया कि लोग अब घेर कर देख रहे हैं कि भाई ये क्या हुआ है। ये एक दर्दनाक घटना तो नहीं कही जा सकती है, शर्मनाक घटना कही जा सकती है, और शर्मनाक घटना के कौन कौन विलेन है ये तो तय जनता को करना है। ऐसे में जनता सामने खड़ी है, हम उससे भी जानने का प्रयास करेंगे कि भाई ये जो घटना घटी है आपको आश्चर्यचकित तो नहीं करती होगी ना?
3: ना ना, ये तो मतलब वही होना था जो हुआ है, इससे पहले भी हुआ है कई बार, ये तो देखने वाली चीज है, ये तो सामने है जो प्रत्यक्ष में आपको दिख रहा है,
4: बस वही है जो देख रहे हैं, टूट गया है पुल
2: 4 दिन पहले।
4: हाँ, 4 दिन पहले बना था, आज टूट गया, फिर ट्रक चढ़ी है, वो तो अच्छी बात है, किसी का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है।
2: सर, आपको लगता है कि मतलब ये पुल लगता था कि चलेगा नहीं, ये तो समझ में आ रहा होगा, तो इतना जल्दी भसेगा ये तो विश्वास नहीं होगा?
5: ये विश्वास नहीं था इतना जल्दी भस जाएगा।
2: देखिए, लोगों को लगातार सूचनाएं टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ये बहुत मिलती रहेगी है कि पुल भस रहा है और पुल भसेगा भी, लेकिन 4 दिनों में अगर पुल भसने लगे तो बिहार की उस सरकार को क्या कहेंगे जो कई परिवर्तन के बाद इस समय भी डबल इंजन की सरकार चल रही है, विकास के कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे विकास का क्या मतलब है जो 4 दिन तक टिके नहीं। बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे।
1: IPL में शानदार प्रदर्शन करने वाले वैभव सूर्यवंशी की टीम इंडिया में एंट्री हो गई। धुआंधार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड, इंग्लैंड और एशियन गेम्स की T20 इंटरनेशनल टीम में शामिल कर लिया गया है।
6: नाम वैभव सूर्यवंशी, काम छक्के बरसाना, पहचान तूफान लाना, अरमान अब देश को जिताना। IPL की इन तस्वीरों को जिसने देखा देखता ही रह गया, खुद वैभव के साथियों ने, दुनिया भर के दिग्गजों ने, और विरोधी गेंदबाजों के पास तो देखते रहने की मजबूरी के अलावा कोई चारा ही नहीं था। ना उम्र की सीमा, ना दुनिया के किसी गेंदबाज का खौफ, वैभव का बल्ला जब बरसता है तो फिर इसके कोई मायने नहीं होते कि सामने पैट कमिंस जैसा गेंदबाज है, जसप्रीत बुमराह है या फिर कोई और। और ये तूफान IPL के इस सीजन में जब आया तो मैच दर मैच उनका बल्ला रिकॉर्ड्स की इबारत लिखता चला गया। इस सीजन में तो हाल ये था कि जब उनकी पारी खत्म होती थी तो कईयों के सपने टूट चुके होते थे और कई गेंदबाजों के तो IPL करियर के आंकड़े बिगड़ चुके होते थे। उनके बल्ले ने इतना हल्ला मचाया कि आखिरकार सेलेक्टर्स को उन्हें सीनियर टीम इंडिया का हिस्सा बनाना ही पड़ा। वैभव 15 साल की उम्र में टीम इंडिया का हिस्सा बनने वाले सबसे युवा भारतीय हैं। उन्होंने IPL में सबसे तेज 1000 रन बनाए हैं। IPL में उन्होंने एक सीजन में क्रिस गेल के 59 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़कर 72 छक्के जमाए हैं। 14 साल की उम्र में IPL में शतक जमाने वाले वो सबसे युवा बल्लेबाज हैं। वो Under-19 वर्ल्ड कप चैंपियन है। IPL के 23 मैच में वो 96 छक्के जमा चुके हैं। वैभव का असली इम्तिहान अब होने वाला है, लेकिन उनके लिए

0: ये आपदा नहीं, ये अवसर है, क्योंकि खौफ का भूत वो बचपन में ही भगा चुके हैं। दुनिया भर के गेंदबाजों को वो आईपीएल में निपटा चुके हैं। इतना ही नहीं, दुनिया की कई पिचों पर खेलने का उनका अनुभव धीरे धीरे उनकी बल्लेबाजी को और मैच्योर बना रहा है। नए हिंदुस्तान के नए तेवरों वाली इस टीम को अपने खजाने में ऐसा ही हीरा चाहिए। आज तक ब्यूरो।
1: अब बात दुनिया की करते, जहां खाड़ी युद्ध में तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत की कोशिशों के बीच धमाके की गूंज ने युद्ध विराम की उम्मीदों को तोड़ा है।

0: पश्चिम एशिया से आई इन तस्वीरों ने फिर से दुनिया को पसोपेश में डाल दिया है। इस मंजर ने डरा दिया है कि खाड़ी में फिर से महायुद्ध 2.0 की लपटें सुलगने लगी हैं। इस माहौल ने बता दिया है कि किसी भी वक्त अमेरिका और ईरान में फिर से भीषण जंग छिड़ने वाली है। दहशत इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि ईरान ने कुवैत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया है। कुवैत में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। कुवैत का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान से आ रहे ड्रोन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहा है। ईरान ने बहरीन पर भी मिसाइल दागी है। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को रोकने के लिए बहरीन का भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। हम आपको बता दें कि बहरीन में अमेरिकी सेंट्रल कमांड का मुख्यालय भी है। अपने सहयोगी देशों पर ईरान के हमले से अमेरिका बौखला चुका है। पलटवार में अमेरिका ने भी ईरान के कई ठिकानों पर धावा बोल दिया। ईरान के सर्विलांस रडार सेंटर पर अमेरिका ने हमला किया है। ईरान के रडार सेंटर पर हमले का वीडियो भी अमेरिका ने जारी कर दिया। अमेरिका का कहना है कि पहले ईरान ने हमला किया था, जिसके जवाब में उसके रडार सर्विलांस टावर को उड़ा दिया गया। अमेरिकी सेना ने समुद्री हमलों से बचाव के लिए गोरुक और केशम द्वीप पर स्थित ईरानी तटीय निगरानी रडार को ध्वस्त किया। अमेरिका ने दावा किया कि 6 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया, जबकि 7वीं मिसाइल टारगेट तक पहुंची ही नहीं। मतलब साफ है कि जो सीज फायर फिलहाल अस्थाई है, वो किसी भी वक्त धराशायी हो सकता है, क्योंकि ईरान और अमेरिका में झड़प शुरू हो चुकी है। यह चिंगारी किसी भी वक्त भीषण युद्ध का शक्ल ले सकती है। आज तक ब्यूरो।
1: और अब आपको लेकर चलते हैं युद्ध के उस मोर्चे की ओर जहां पिछले 4.5 साल से रूस और यूक्रेन में जंग छिड़ी है। अब बड़ी खबर यह है कि रूसी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि शांति वार्ता के लिए युद्ध रोकने की जरूरत नहीं। पुतिन का यह बयान तब आया है जब जेलेंस्की ने खुला पत्र लेकर रूसी राष्ट्रपति से मिलने की इच्छा जाहिर की।

0: रूस ने यूक्रेनी शहर जैपोरेजिया पर भीषण अटैक किया, वो भी तब जब शांति वार्ता की कोशिशें चल रही हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है कि शांति वार्ता के लिए सीज फायर की कोई जरूरत नहीं है। मतलब बातचीत करने के लिए जंग रोकने की जरूरत नहीं। रूस के ताजा हमलों में जैपोरेजिया के रिहायशी इलाकों को बड़ा नुकसान हुआ, जिसमें एक शख्स की मौत हुई है, 16 घायल हैं, वाहनों और नागरिक बुनियादी ढांचों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इस बीच पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में पत्रकारों को संबोधित करते हुए साफ कर दिया कि बातचीत के लिए सीज फायर की जरूरत ही नहीं है।
1: Новые населенные пункты ставятся под контроль российских вооруженных сил. Ну, за последнее время, повторяю, почти 2500 квадратных километров.
0: इससे पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति को खुला पत्र लिखा है और सीधे वार्ता का प्रस्ताव रखा है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी और रूसी नेताओं के बीच बैठक की पहल को सराहा है और इसे अच्छी पहल बताया।
2: I don't know. I'm glad that they're maybe talking about meeting. I think we had a lot to do with it. I know exactly what you're doing. But I think it would be great if they met. They should get it done.
0: आर पार की जंग और शांति वार्ता की कोशिशों के बीच दोनों देशों की तरफ से अच्छी पहल हुई है। रूस यूक्रेन ने एक दूसरे के 185 कैदियों की अदला बदली की है, जिसे शांति की शुरुआत के लिए पहला बड़ा कदम बताया जा सकता है। हालांकि कैदियों की अदला बदली पहले भी हो चुकी है, लेकिन 4 साल से भी ज्यादा समय से जारी जंग अभी तक थमी नहीं। आज तक ब्यूरो।
3: अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक, आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ मंथन, देशवासियों का जीवन आसान बनाने और आर्थिक दर्द को बढ़ाने पर चर्चा। समाजवादी पार्टी पर मुख्यमंत्री योगी का बड़ा हमला, कहा 2017 से पहले गुंडों के आगे नतमस्तक थी सरकार, राम का नाम लेने पर चलती थी गोलियां, अखिलेश का पलटवार, यूपी में महाजंगल राज। बंगाल सरकार ने मदरसों का शुरू किया सर्वेक्षण, 5 जुलाई तक मांगे रिपोर्ट, नियमों के तहत संचालन और जरूरी दस्तावेजों की होगी जांच।

0: यूपी में भी 2027 के लिए हर पार्टी ने कमर कस ली है। योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं तो अखिलेश यादव भी लगातार सरकार को घेर रहे हैं।
1: अब राम का नाम लेने पर ही प्रतिबंध था, डंडे बरसते थे, गोलियां चलती थी, अयोध्या में भगवान राम का भक्त अयोध्या में नहीं जा सकता था, किस प्रकार की अराजकता थी। अब तो अयोध्या में राम भक्त के अलावा कोई रामद्रोही घुस ही नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। आज तो अयोध्या चमक रही है।
2: 2027 के सियासी समर में बीजेपी हिंदुत्व और राम मंदिर के मुद्दे पर सवार है, जहां अखिलेश यादव पर सीएम योगी आदित्यनाथ के हमले जारी हैं।
1: 2017 के पहले इन दंगाइयों को, इन पेशेवर गुंडों को प्रश्रय देते थे, इनके सामने नतमस्तक होते थे, प्रदेश में कर्फ्यू रहता था।
2: योगी विकास से लेकर डबल इंजन तक की खूबियां गिना रहे हैं तो वहीं पिछली सरकारों की खामियां भी बता रहे हैं।
1: 2015-16 में इस गोंडा में भी दुर्गा पूजा के समय दंगा करने का प्रयास हुआ था, यहां भी दंगे हुए थे। मां दुर्गा की मूर्ति को विसर्जन नहीं करने दिया जाता था, रामलीलाओं के आयोजन में अड़चने डाली जाती थी, पर्व और त्योहार प्रारंभ होने के पहले, उत्सव प्रारंभ होने के पहले उपद्रव शुरू हो जाते थे। उत्सव के रंग में किसी ने भंग करने का काम किया तो फिर वर्तमान तो जाएगा ही जाएगा, भविष्य भी स्वाहा हो जाएगा।
2: उधर अखिलेश को योगी सरकार में जंगल राज नजर आ रहा है। उधर गाजीपुर में कमलेश बिंद के एनकाउंटर पर विपक्ष और सरकार के सहयोगियों के सुर एक जैसे नजर आ रहे हैं। किसी को अपने वोट बैंक की टेंशन सता रही है तो कोई वोट बैंक में सेध मारने की तैयारी में है।
3: इतना बड़ा तो दुर्दांत अपराधी नहीं है कि जिससे आप एनकाउंटर, अब मुख्य आरोपी उसको बनाया भी नहीं गया, मुख्य आरोपी कोई और है, मुख्य आरोपी को तो पकड़ने दूर है, वो छुएंगे नहीं। आज जो साधारण है, जो वोट अभी गाजीपुर हारे हैं, अब गाजीपुर में बिंदुओं की संख्या बहुत अधिक है, जौनपुर में बिंदुओं की संख्या अधिक है, प्रधानमंत्री के चारों तरफ के हम सारी सीटें हार गए हैं।
4: बहुत ही जो घटना हुई है एनकाउंटर की, तो आखिर जब पुलिस पकड़ सकती थी मुजरिम को तो एनकाउंटर क्यों करा गया, इतना सवाल तो ये अपने आप में पूरी कानून व्यवस्था में प्रश्न चिन्ह उठाने का काम है। भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं चाहते हैं कि प्रशासन और जो प्रशासन है, जो नियम है, जो कानून है, उससे चले।
2: बहरहाल यूपी में चुनावी पिच पूरी तरह से तैयार है, जहां हर पार्टी अपने हिसाब से बैटिंग कर रही है। आज तक ब्यूरो।
0: दिल्ली के जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी नीट पेपर लीक के विरोध में उतरे और छात्रों की आत्महत्या को लेकर सवाल खड़े किए, तो वहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की।
5: हाथों में संविधान की कॉपी लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके आज सुबह अमेरिका से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से उन्होंने जंतर मंतर का रुख किया।
6: सोशल मीडिया पर व्यंग और मीम्स के तौर पर शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी अब दिल्ली के जंतर मंतर आ पहुंचा है। सुबह सुबह अभिजीत दीपके अमेरिका से सीधे आईजीआई एयरपोर्ट पे लैंड किया और उसके बाद जंतर मंतर पहुंचा। पहले भीड़ कम थी, ना मंच था, ना बैनर था, ना कोई ऑडियो सिस्टम, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया भीड़ की संख्या बढ़ती गई, स्टेज भी लगा, मंच भी लगा और हाथ में तिरंगा लिए युवा यहां पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
5: नीट पेपर लीक को लेकर हो रहे इस प्रदर्शन में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई। अभिजीत दीपके के साथ सोनम वांगचुक भी मंच पर नजर आए। अभिजीत ने धर्मेंद्र को इस्तीफे के लिए 5 बजे तक का अल्टीमेटम दिया।
7: मैं धर्मेंद्र प्रधान जी, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनसे पूछना चाहता हूँ, 5 बच्चों ने सुसाइड कर लिए फिर भी आपने रिजाइन नहीं किया है, आपको शर्म नहीं आती? और कितने बच्चों का सुसाइड करने का वेट करेंगे आप जब तक रिजाइन नहीं करोगे तब तक हमारा मूवमेंट जारी रहेगा। इसके बाद हम ये मूवमेंट को देश भर में लेकर जाएंगे और ये मूवमेंट तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते।
5: अभिजीत ने अपने इस आंदोलन को सफल बताया तो वहीं साफ किया कि सोशल मीडिया से शुरू हुआ ये आंदोलन अब देश भर में नजर आने वाला है।
7: 15 दिन पहले जब कांग्रेस जनता पार्टी का पेज स्टार्ट हुआ था तब लोगों ने कहा था ये तो एक सोशल मीडिया का ट्रेंड है, ये तो एक सोशल मीडिया पर ही लिमिटेड रहकर रह जाएगा। लेकिन आज हमने देख लिया कि ये कोई सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं है, ये एक आंदोलन है जो जिसकी आज शुरुआत हो चुकी।
5: 5 घंटे तक जंतर मंतर में प्रदर्शन के बाद प्रदर्शनकारी लौट गए जहां उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे ना देने पर अगले शनिवार को एक बार फिर जंतर मंतर आने का ऐलान किया है। अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।
0: दिल्ली के जंतर मंतर में एक और जेंजी की सरकार से नाराजगी दिखाई दी गई तो दूसरी तरफ दिल्ली के ही कुछ किलोमीटर की दूरी पर सरकार के समर्थन में युवाओं को एकजुट किया गया।
5: दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में यूथ फॉर विकसित भारत सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े 6,000 से ज्यादा युवा शामिल हुए। वहीं मैथिली ठाकुर, फिल्म स्टार विक्रांत मेस्सी, बोट फाउंडर अमन गुप्ता और गुरिंदर वीर सिंह ने सीएम रेखा गुप्ता और खेल मंत्री मनसुख मांडविया के साथ मंच साझा किया।
8: आज मैं माय भारत यूथ कन्वेंशन में मेरे साथ ही कितने सारे लोग हैं। जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
5: एक और जहां विपक्ष युवाओं की नाराजगी और जेन जी आंदोलन की लगातार बात कर रहा है तो वहीं सरकार ने मंच से ये संदेश देने की कोशिश की कि देश के युवाओं को सरकार पर पूरा भरोसा है।
9: माय भारत, मोदी जी ने देश के युवाओं को अपनी आकांक्षा, अपनी अपेक्षा, अपनी वॉलंटियर क्षमता, अपना आइडियाज उस साझा करने के लिए बनाया हुआ प्लेटफॉर्म है।
10: देश का युवा जो विजनरी है, जिसमें साहस है, जो क्रिएटिव है, वो देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करे, अपना भविष्य भी निर्माण करे और देश का भी निर्माण करे, उसके लिए आज ये इवेंट था।
5: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में जोर देने के लिए यूथ फॉर विकसित भारत अभियान को सरकार युवाओं के लिए एक बड़ा कदम बता रही है जिसके जरिए युवाओं का भरोसा जीतने की कोशिश की जा रही है। सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
0: अब बात यूपी के देवरिया के जहां पर बिजली कटौती से लोग परेशान हैं, कई क्षेत्रों में बिजली गुल है। अब बिजली कटी तो आधी रात को बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी पावर हाउस पहुंच गए और बिजली विभाग के अधिकारियों को हड़काया। विधायक ने कहा कि हमारे क्षेत्र की जनता अगर बिजली कटौती की वजह से सो नहीं पा रही है तो बिजली अधिकारी को हम चैन से सोने नहीं देंगे, बिजली अफसरों के घरों की भी लाइट काटेंगे। अब इस दौरान बिजली कटौती की शिकायत के लिए पावर हाउस के सरकारी नंबर पर लगातार लोग फोन कर रहे थे, कई फोन कॉल तो खुद विधायक ने
11: उठाया। कहाँ से बोल रहे हैं आप? श्री अठाला से ना? कब से लाइट नहीं है? कितने बजे से? ठीक है, मैं शलभ मणि त्रिपाठी बोल रहा हूँ, विधायक देवरिया। ठीक है, बिजली घर पे ही बैठे हैं, इन लोगों की लाइट काटने आए हैं। आप लोगों की लाइट नहीं है तो आज हमने तय किया कि बिजली के अधिकारियों की सबकी लाइट काट देंगे। ठीक है ना? देखिए सर, 10-11 बजे से लाइट नहीं है, आप लोगों पर रिपोर्टिंग ही नहीं भाई, कहाँ कहाँ लाइट नहीं है। आप लोग इतने नॉन सीरियस हो चुके हैं कि आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। 10 बजे से लाइट नहीं है इनके मोहल्ले में, गोरखपुर और के पास।
0: अब बात करते हैं फैसल खान उर्फ खान सर की, जिस पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।
12: पटना में दो कोचिंग संचालकों की लड़ाई अब फैजल खान यानी खान सर की गिरफ्तारी तक पहुंच चुकी है। फैजल खान के वकील ने साफ किया है कि वो सरेंडर नहीं करेंगे।
13: खबर है ऐसा कोई विचार ही नहीं है सर। पुलिस तो किसी को अरेस्ट कर सकती है, नॉन अवेलेबल सेक्शन है तो किसी को अरेस्ट कर सकती है ना।
12: कल आर्म्स एक्ट के तहत पटना पुलिस ने फैजल खान के खिलाफ FIR दर्ज की थी। कोचिंग के गार्ड्स ने पूछताछ में कहा था कि फैजल खान ने उन्हें फायरिंग के लिए कहा था।
13: के लिए पुलिस कुछ भी लिख दे, अगर ऐसा होता तो खान सर भेज हुए थे ना, पुलिस को उसी समय अरेस्ट कर लेना था इनको। अगर ऐसा कोई रहता तो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट थाना में ले लेने से और FIR में लिख देने से कोई एविडेंस नहीं होता।
12: उधर फैजल खान की गिरफ्तारी की खबरों के बीच कल रात कोचिंग के बाहर भारी संख्या में छात्र मौजूद थे। तनाव को देखते हुए पुलिस का गश्त जारी रहा। PCR वैन में तैनात पुलिस छात्रों को समझाती नजर आई।
14: मौजूद हैं और सड़क के दूसरे किनारे एक लाइन से हजारों छात्र जो हैं वो यहां पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं खान सर के, ये कह सकते हैं कि समर्थन में ये जो छात्र हैं वो यहां पे खड़े हैं। पे तस्वीर देखिए, ये खान सर के कोचिंग के बाहर का नजारा है।
12: घटना के बाद फैजल खान के छात्रों को भड़काने का वीडियो वायरल हुआ था।
15: किसके ऊपर करने आया है,
16: हमारा गाड़ी अभी तक नहीं की जबकि सबके सामने ये लेके जा रहा है, मुद्दे से भटकाया जा रहा है। आप इसकी गिरफ्तारी करिए, ये आदमी कौन है और कैसे आता है 20-25 लोगों को उठा के लेके चला जाता है, 20-25 लोगों को एक साथ कैसे।
12: वीडियो और मैसेज के बीच जारी तनाव को देखते हुए पटना पुलिस ने छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि दो कोचिंग संस्थानों की प्रतिस्पर्धा में किसी के बहकावे में आना ठीक नहीं है। सूत्रों के माने तो फैजल खान गिरफ्तारी के तलवार के बीच अग्रिम जमानत लेने की तैयारी कर रहे हैं। रोहित सिंह, पटना आज तक।
0: बिहार में राबड़ी के बंगले को लेकर जारी सियासत अब सुरक्षा तक पहुंच गई है। सुरक्षा में कटौती के बाद लालू परिवार ने मौजूद सुरक्षा को भी लेने से इनकार कर दिया है।
2: आवास के बाहर पसरा सन्नाटा और कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं। एक बार तो ये यकीन करना भी मुश्किल है कि ये पटना में पूर्व CM राबड़ी देवी का बंगला है। एक दिन पहले Y+ सिक्योरिटी हटाए जाने के बाद अब लालू राबड़ी ने नाराजगी जताते हुए पूरी सुरक्षा वापस कर दी है।
17: राबड़ी देवी और लालू परिवार को जो सुरक्षा दी जाती है उसको लेकर जो है ये ताज़ा विवाद जो है वो शुरू हो गया है। और कल से हम देख रहे हैं जब सरकार का एक नया फरमान आया और लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को जो Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई थी उस सुरक्षा को सरकार ने वापस लिया और केवल बिहार पुलिस की सुरक्षा, जो स्पेशल पुलिस होती है, उसकी सुरक्षा प्रदान की। उसके बाद से ही लालू परिवार, राबड़ी देवी जो है वो इसको लेकर काफी बिफर गए। और उसके बाद कल देर रात से हम देख रहे हैं कि 10 सर्कुलर रोड आवास, जो कि राबड़ी देवी और उनका परिवार यहाँ पिछले 20 सालों से रह रहा है, यहाँ कल रात से ही एक भी सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं है।
2: इस बीच तेजस्वी यादव ने इसका विरोध करते हुए अपनी सुरक्षा लौटा दी, जिसे लेकर RJD अब सरकार पर लगातार हमले कर रही है। सुरक्षा कवच में कटौती के बाद दिखावे की सुरक्षा रखने का कोई औचित्य नहीं है। सात खून के आरोपी रहे मुख्यमंत्री की सरकार के द्वारा लालू जी एवं राबड़ी देवी जी की सुरक्षा में कटौती का फैसला लालू जी, राबड़ी देवी जी एवं उनके परिवार को नुकसान, शारीरिक क्षति पहुंचाने की नीयत से ही लिया गया है। अगर लालू जी एवं उनके परिवार का सुरक्षा कवच है और अगर लालू जी, राबड़ी देवी जी और परिवार के किसी भी सदस्य को एक खरोच भी आई तो अंजाम क्या होगा, इसका अंदाजा शायद बिगड़ैल सम्राट चौधरी और उनकी सरकार को नहीं है।
18: सबको वापस कर दिया, सबको बाहर निकाल दिया, क्योंकि कल ही राज्य की सरकार ने अपने आका के निर्देश पर आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी सहित पूरे लालू परिवार की सुरक्षा में व्यापक और घोर कटौती कर दी। शासन अपमानित करना चाहती है लालू प्रसाद जी और उनके परिवार को, उनके परिजनों को।
19: ये सुरक्षा उनको क्यों दिया गया था, कभी मुख्यमंत्री रहे कभी केंद्रीय मंत्री रहे, जब ये संवैधानिक व्यवस्था, ये नहीं है कि हथुआ मामा का बेटा है तो सब दिन वही रहेगा। जनता जिसको चुन करके देती है सत्ता में और जो कानून कहता है वो सुरक्षा मिलता।
2: समीक्षा में तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं किया गया था, लेकिन लालू और राबड़ी की सुरक्षा घटाए जाने के विरोध में अब तेजस्वी यादव ने ये बड़ा फैसला लिया है। वहीं लालू राबड़ी की जेड प्लस सिक्योरिटी वापस ली गई थी, लेकिन नई सुरक्षा व्यवस्था के तहत दोनों नेताओं के लिए बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की सुरक्षा का इंतजाम किया गया था, जिसके तहत 2 से 8 जवान सुरक्षा में तैनात रहने का निर्देश था। इसके साथ बुलेट प्रूफ कार, जिला बल से एस्कॉर्ट की नियुक्ति का निर्देश था।
17: ये बिहार पुलिस की जो सुरक्षा, जो नई व्यवस्था उनको प्रदान की गई थी, उस सुरक्षा को भी यहाँ लेने से देखिए लालू परिवार ने जो है वो मना कर दिया है। ये देख सकते हैं यहाँ बिहार पुलिस के जो विशेष दस्ता है वो जो नई सुरक्षा व्यवस्था के तहत इनको यहाँ पर भेजा गया है। इन तमाम लोगों को भी जो है 10 सर्कुलर रोड आवास में जाने नहीं दिया गया है, इनको बाहर कर दिया गया है परिवार के द्वारा। और जाहिर सी बात है ये तमाम जो बिहार पुलिस के यहाँ पर कर्मी हैं वो लोग बाहर ही खड़े हैं, राबड़ी देवी के आवास के बाहर ही इसी तरीके से खड़े हैं। अब इन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है कि करना है तो क्या करना है।
2: राबड़ी देवी के बंगले को लेकर सियासत चल ही रही थी, जिस पर अब सुरक्षा को लेकर विवाद की एंट्री हो चुकी है। रोहित सिंह, पटना आज तक।
0: यूपी में योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन भी जारी है, जिसकी गूंज अब संभल में सुनाई दी, जहां सरकारी जमीन पर बनी मुस्तफा कादरी मस्जिद के खिलाफ एक्शन लिया गया और इस अवैध मस्जिद को बुलडोजर से ढहा दिया गया।
15: संभल के नखासा थाना इलाके के कसेरुआ गांव में स्थित मुस्तफ़ा कादरी मस्जिद को ध्वस्त करने की कार्रवाई इस वक्त शुरू हो चुकी है। और आप मेरे पीछे की तस्वीरों में आप जो देख सकते हैं कि किस तरीके से बुलडोजर एक्शन के जरिए जो कि सरकारी ज़मीन पर बनी हुई मस्जिद है उसको यहां पर ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई की जा रही है। दो दो बुलडोजर इस पूरी मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए फिलहाल यहां पर जो है लगाए गए हैं। पूरा पुलिस फोर्स गाँव में तैनात किया गया है। और ये देखा जाए तो ये 120 वर्ग मीटर जगह में बनी हुई ये पूरी मस्जिद थी, जिसको हटाने के लिए जनवरी महीने में जो है लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर यह पूरी कार्रवाई शुरू की गई थी। और उसके बाद इस मस्जिद के वक्फ बोर्ड में भी रजिस्टर्ड होने का मामला सामने आया था, जिसके बाद इस मस्जिद कमेटी से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ FIR कराई गई। लेकिन आज अब इस पूरे मस्जिद पर धारा 67 के तहत जो कार्रवाई यहां पर जो की जा रही है। और आप यहां जो देख सकते हैं देखिए किस तरीके से जो पूरा बुलडोजर है वो इस पूरे मस्जिद के स्ट्रक्चर को ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई कर रहा है। और एहतियातन अगर जो देखा जाए तो देखिए छतों पर आपको जो पुलिसकर्मी आपको जो तैनात नजर आएंगे। यहां अगर आपको जो देखा जाए तो देखिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो फिलहाल आपको जो है ये वो पुलिसकर्मियों की आपको जो है लगातार छतों पे जो तैनाती दिखाई देगी। जो है सामने देखिए तस्वीरों में देखेंगे तो देखिए तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह आपको यहाँ इस पूरे इलाके में लगातार इस पूरी स्थिति पे नजर बनाए हुए दिखाई देंगे। और इसी तरह से देखिए आसपास का जो पूरा इलाका है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया। सामने आप देखेंगे तो देखिए बुलडोजर के ठीक बराबर में देखिए भारी संख्या में आपको पुलिस फोर्स जो है यहाँ पर जो तैनात जो नजर आएगा, जो कि आपको तस्वीरों में नजर आएगा। और इसी तरह से जो पूरे गांव का अलग अलग इलाके हैं वहां पर इस तरीके से पूरे पुलिस फोर्स को तैनात करके पूरे गाँव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर विशेष तौर पर निगरानी की जा रही है, जिससे कि कोई भड़काऊ पोस्ट जो है वो न डाली जाए। सोशल मीडिया को जो तैनात किया गया है। और
0: बक्सर का इटाढ़ी गुमटी पुल क्षतिग्रस्त हो गया, मात्र 4 दिन हुए थे पुल के उद्घाटन को और अब पुल बंद कर दिया गया है। 26 करोड़ 40 लाख की लागत से बने हुए रोड ओवरब्रिज के ऊपरी परत धंस गए। लगभग 11 साल के इंतजार के बाद आम जनता के लिए कुछ ही दिन पहले उद्घाटन किया गया। लोगों ने राहत की सांस ली, कुछ सहूलियत होगी सोचा, लेकिन चौथे दिन ही पुल के पिलर नंबर 5 के ऊपरी परत ही धंस गए।
20: आप सोच सकते हैं कि जिस चीज को 11 साल से इंतजार कर रहे हैं और इंतजार के बाद अगर मिलता है तो 4 दिनों में ध्वस्त हो जाता है, तो सोचिए नहीं, देखिए कैसे, क्योंकि ये जो पुल है करीब 4 दिन पहले इसको खोला गया था चलने के लिए, लेकिन 4 दिनों में ये पुल टूट गया, यानी कहिए कि ध्वस्त हो गया और इसको बंद कर दिया गया है। ये दरअसल बक्सर के इटाढ़ी गुमटी पर बना 26 करोड़ 40 लाख का वो नया पुल है जिसको लेकर कई बार आंदोलन हुआ, कई बार लोग धरने पर बैठे, उसके बाद ये पुल मिला तो ऐसे हालात में मिला कि 4 दिन बाद ये इस परिस्थिति में आ गया कि लोग अब घेर कर देख रहे हैं कि भाई ये क्या हुआ है। ये एक दर्दनाक घटना तो नहीं कही जा सकती है, शर्मनाक घटना कही जा सकती है। और शर्मनाक घटना के कौन कौन विलेन है ये तो तय जनता को करना है। ऐसे में ये जनता सामने खड़ी है, हम उससे भी जानने का प्रयास करेंगे कि भाई ये जो घटना घटी है आपको आश्चर्यचकित तो नहीं करती होगी ना?
21: ना ना, ये तो मतलब वही होना था जो हुआ है, इससे पहले भी हुआ है कई बार,
1: ये तो देखने वाली चीज है, ये तो सामने है जो प्रत्यक्ष में आपको दिख रहा है,
21: बस वही है जो देख रहे हैं, टूट गया है पुल
22: चार दिन पहले।
21: हाँ, चार दिन पहले बना था, आज टूट गया, फिर ट्रक चढ़ी है, वो तो अच्छी बात है, किसी का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है।
20: सर, आपको लगता है कि मतलब ये पुल लगता था कि चलेगा नहीं, ये तो समझ में आ रहा होगा, तो इतना जल्दी फंसेगा ये तो विश्वास नहीं होगा?
23: ये विश्वास नहीं था इतना जल्दी फंस जाएगा।
20: देखिए, लोगों को लगातार सूचनाएं टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ये बहुत मिलती रहेगी है कि पुल फंस रहा है और पुल फंसेगा भी, लेकिन चार दिनों में अगर पुल फंसने लगे तो बिहार की उस सरकार को क्या कहेंगे जो कई परिवर्तन के बाद इस समय भी डबल इंजन की सरकार चल रही है, विकास के कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे विकास का क्या मतलब है जो चार दिन तक टिके नहीं। बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे।
0: आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने वाले वैभव सूर्यवंशी की टीम इंडिया में एंट्री हो गई। धमाधार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड, इंग्लैंड और एशियन गेम्स की T20 इंटरनेशनल टीम में शामिल कर लिया गया है।
24: नाम वैभव सूर्यवंशी, काम छक्के बरसाना, पहचान तूफान लाना, अरमान अब देश को जिताना। आईपीएल की इन तस्वीरों को जिसने देखा देखता ही रह गया, खुद वैभव के साथियों ने, दुनिया भर के दिग्गजों ने, और विरोधी गेंदबाजों के पास तो देखते रहने की मजबूरी के अलावा कोई चारा ही नहीं था। ना उम्र की सीमा, ना दुनिया के किसी गेंदबाज का खौफ, वैभव का बल्ला जब बरसता है तो फिर इसके कोई मायने नहीं होते कि सामने पैट कमिंस जैसा गेंदबाज है, जसप्रीत बुमराह है या फिर कोई और। और ये तूफान आईपीएल के इस सीजन में जब आया तो मैच दर मैच उनका बल्ला रिकॉर्ड्स की इबारत लिखता चला गया। इस सीजन में तो हाल ये था कि जब उनकी पारी खत्म होती थी तो कईयों के सपने टूट चुके होते थे और कई गेंदबाजों के तो आईपीएल करियर के आंकड़े बिगड़ चुके होते थे। उनके बल्ले ने इतना हल्ला मचाया कि आखिरकार सेलेक्टर्स को उन्हें सीनियर टीम इंडिया का हिस्सा बनाना ही पड़ा। वैभव 15 साल की उम्र में टीम इंडिया का हिस्सा बनने वाले सबसे युवा भारतीय हैं। उन्होंने आईपीएल में सबसे तेज 1000 रन बनाए हैं। आईपीएल में उन्होंने एक सीजन में क्रिस गेल के 59 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़कर 72 छक्के जमाए हैं। 14 साल की उम्र में आईपीएल में शतक जमाने वाले वो सबसे युवा बल्लेबाज हैं। वो अंडर-19 वर्ल्ड कप चैंपियन हैं। आईपीएल के 23 मैच में वो 96 छक्के जमा चुके हैं। वैभव का असली इम्तिहान अब होने वाला है, लेकिन उनके लिए आपदा नहीं, ये अवसर है, क्योंकि खौफ का भूत वो बचपन में ही भगा चुके हैं। दुनिया भर के गेंदबाजों को वो आईपीएल में निपटा चुके हैं। इतना ही नहीं, दुनिया की कई पिचों पर खेलने का उनका अनुभव धीरे धीरे उनकी बल्लेबाजी को और मैच्योर बना रहा है। नए हिंदुस्तान के नए तेवरों वाली इस टीम को अपने खजाने में ऐसा ही हीरा चाहिए। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात दुनिया की करते, जहां खाड़ी युद्ध में तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत की कोशिशों के बीच धमाके की गूंज ने युद्ध विराम की उम्मीदों को तोड़ा है।

0: पश्चिम एशिया से आई इन तस्वीरों ने फिर से दुनिया को पसोपेश में डाल दिया है। इस मंजर ने डरा दिया है कि खाड़ी में फिर से महायुद्ध 2.0 की लपटें सुलगने लगी हैं। इस माहौल ने बता दिया है कि किसी भी वक्त अमेरिका और ईरान में फिर से भीषण जंग छिड़ने वाली है। दहशत इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि ईरान ने कुवैत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया है। कुवैत में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। कुवैत का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान से आ रहे ड्रोन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहा है। ईरान ने बहरीन पर भी मिसाइल दागी है। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को रोकने के लिए बहरीन का भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। हम आपको बता दें कि बहरीन में अमेरिकी सेंट्रल कमांड का मुख्यालय भी है। अपने सहयोगी देशों पर ईरान के हमले से अमेरिका बौखला चुका है। पलटवार में अमेरिका ने भी ईरान के कई ठिकानों पर धावा बोल दिया। ईरान के सर्विलांस रडार सेंटर पर अमेरिका ने हमला किया है। ईरान के रडार सेंटर पर हमले का वीडियो भी अमेरिका ने जारी कर दिया। अमेरिका का कहना है कि पहले ईरान ने हमला किया था, जिसके जवाब में उसके रडार सर्विलांस टावर को उड़ा दिया गया। अमेरिकी सेना ने समुद्री हमलों से बचाव के लिए गोरुक और केशम द्वीप पर स्थित ईरानी तटीय निगरानी रडार को ध्वस्त किया। अमेरिका ने दावा किया कि 6 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया, जबकि 7वीं मिसाइल टारगेट तक पहुंची ही नहीं। मतलब साफ है कि जो सीज फायर फिलहाल अस्थाई है, वो किसी भी वक्त धराशायी हो सकता है, क्योंकि ईरान और अमेरिका में झड़प शुरू हो चुकी है। यह चिंगारी किसी भी वक्त भीषण युद्ध का शक्ल ले सकती है। आज तक ब्यूरो।
1: और अब आपको लेकर चलते हैं युद्ध के उस मोर्चे की ओर जहां पिछले 4.5 साल से रूस और यूक्रेन में जंग छिड़ी है। अब बड़ी खबर यह है कि रूसी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि शांति वार्ता के लिए युद्ध रोकने की जरूरत नहीं। पुतिन का यह बयान तब आया है जब जेलेंस्की ने खुला पत्र लेकर रूसी राष्ट्रपति से मिलने की इच्छा जाहिर की।

रूस ने यूक्रेनी शहर जैपोरेजिया पर भीषण अटैक किया, वो भी तब जब शांति वार्ता की कोशिशें चल रही हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है कि शांति वार्ता के लिए सीज फायर की कोई जरूरत नहीं है। मतलब बातचीत करने के लिए जंग रोकने की जरूरत नहीं,

0: के ताजा हमलों में जयपुरेजिया के रिहायशी इलाकों को बड़ा नुकसान हुआ, जिसमें एक शख्स की मौत हुई है, 16 घायल हैं। वाहनों और नागरिक बुनियादी ढांचों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इस बीच पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में पत्रकारों को संबोधित करते हुए साफ कर दिया कि बातचीत के लिए सीज फायर की जरूरत ही नहीं है।
1: Новые населенные пункты ставятся под контроль российских вооруженных сил. Ну, за последнее время, повторяю, почти 2500 квадратных километров.
0: इससे पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति को खुला पत्र लिखा है और सीधे वार्ता का प्रस्ताव रखा है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी और रूसी नेताओं के बीच बैठक की पहल को सराहा है और इसे अच्छी पहल बताया।
2: I don't know. I'm glad that they're maybe talking about meeting. I think we had a lot to do with it. I know exactly what you're doing. But I think it would be great if they met. They should get it done.
0: आर पार की जंग और शांति वार्ता की कोशिशों के बीच दोनों देशों की तरफ से अच्छी पहल हुई है। रूस यूक्रेन ने एक दूसरे के 185 कैदियों की अदला बदली की है, जिसे शांति की शुरुआत के लिए पहला बड़ा कदम बताया जा सकता है। हालांकि कैदियों की अदला बदली पहले भी हो चुकी है, लेकिन 4 साल से भी ज्यादा समय से जारी जंग अभी तक थमी नहीं। आज तक ब्यूरो।
3: अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक, आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ मंथन, देशवासियों का जीवन आसान बनाने और आर्थिक दर्द को बढ़ाने पर चर्चा। समाजवादी पार्टी पर मुख्यमंत्री योगी का बड़ा हमला, कहा 2017 से पहले गुंडों के आगे नतमस्तक थी सरकार, राम का नाम लेने पर चलती थी गोलियां, अखिलेश का पलटवार, यूपी में महाजंगल राज। बंगाल सरकार ने मदरसों का शुरू किया सर्वेक्षण, 5 जुलाई तक मांगे रिपोर्ट, नियमों के तहत संचालन और जरूरी दस्तावेजों की होगी जांच।

0: यूपी में भी 2027 के लिए हर पार्टी ने कमर कस ली है। योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, तो अखिलेश यादव भी लगातार सरकार को घेर रहे हैं।
1: अब राम का नाम लेने पर ही प्रतिबंध था, डंडे बरसते थे, गोलियां चलती थी। अयोध्या में भगवान राम का भक्त अयोध्या में नहीं जा सकता था। किस प्रकार की अराजकता थी। अब तो अयोध्या में राम भक्त के अलावा कोई रामद्रोही घुस ही नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। आज तो अयोध्या चमक रही है।
2: 2027 के सियासी समर में बीजेपी हिंदुत्व और राम मंदिर के मुद्दे पर सवार है, जहां अखिलेश यादव पर सीएम योगी आदित्यनाथ के हमले जारी हैं।
1: 2017 के पहले इन दंगाइयों को, इन पेशेवर गुंडों को प्रश्रय देते थे, इनके सामने नतमस्तक होते थे। प्रदेश में कर्फ्यू रहता था।
2: योगी विकास से लेकर डबल इंजन तक की खूबियां गिना रहे हैं, तो वहीं पिछली सरकारों की खामियां भी बता रहे हैं।
1: 2015-16 में इस गोंडा में भी दुर्गा पूजा के समय दंगा

0: करने का प्रयास हुआ था। यहां भी दंगे हुए थे, मां दुर्गा की मूर्ति को विसर्जन नहीं करने दिया जाता था, रामलीलाओं के आयोजन में अड़चने डाली जाती थी, पर्व और त्यौहार प्रारंभ होने के पहले, उत्सव प्रारंभ होने के पहले उपद्रव शुरू हो जाते थे। उत्सव के रंग में किसी ने भंग करने का काम किया तो फिर वर्तमान तो जाएगा ही जाएगा, भविष्य भी स्वाहा हो जाएगा।
1: उधर अखिलेश को योगी सरकार में जंगल राज नजर आ रहा है। उधर गाजीपुर में कमलेश बिंद के एनकाउंटर पर विपक्ष और सरकार के सहयोगियों के सुर एक जैसे नजर आ रहे हैं। किसी को अपने वोट बैंक की टेंशन सता रही है तो कोई वोट बैंक में सेध मारने की तैयारी में है।
2: तो इतना बड़ा तो दुर्दांत अपराधी नहीं है कि जिससे आप एनकाउंटर, अब मुख्य आरोपी उसको बनाया भी नहीं गया, मुख्य आरोपी कोई और है, मुख्य आरोपी को तो पकड़ने दूर है, उसको छुएंगे नहीं। आज जो साधारण है, जो वोट अभी गाजीपुर हारे हैं, अब गाजीपुर में बिंदुओं की संख्या बहुत अधिक है, जौनपुर में बिंदुओं की संख्या अधिक है, प्रधानमंत्री के चारों तरफ के हम सारी सीटें हार गए हैं।
3: बहुत ही जो घटना हुई है एनकाउंटर की, तो आखिर जब पुलिस पकड़ सकती थी मुजरिम को तो एनकाउंटर क्यों करा गया? तो सवाल तो ये, ये अपने आप में पूरी कानून व्यवस्था में प्रश्न चिन्ह उठाने का काम है। भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं चाहते हैं कि जो शासन और जो प्रशासन है, जो नियम है, जो कानून है, उससे चले।
1: बहरहाल यूपी में चुनावी पिच पूरी तरह से तैयार है, जहां हर पार्टी अपने हिसाब से बैटिंग कर रही है। आज तक ब्यूरो।
4: दिल्ली के जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी नीट पेपर लीक के विरोध में उतरे और छात्रों की आत्महत्या को लेकर सवाल खड़े किए, तो वहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की।
5: हाथों में संविधान की कॉपी लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके आज सुबह अमेरिका से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से उन्होंने जंतर मंतर का रुख किया।
6: सोशल मीडिया पर व्यंग और मीम्स के तौर पर शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी अब दिल्ली के जंतर मंतर आ पहुंचा है। सुबह सुबह अभिजीत दीप के अमेरिका से सीधे आईजीआई एयरपोर्ट पे लैंड किया और उसके बाद जंतर मंतर पहुंचा। पहले भीड़ कम थी, ना मंच था, ना बैनर था, ना कोई ऑडियो सिस्टम, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया भीड़ की संख्या बढ़ती गई, स्टेज भी लगा, मंच भी लगा और हाथ में तिरंगा लिए युवा यहां पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
5: नीट पेपर लीक को लेकर हो रहे इस प्रदर्शन में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई। अभिजीत दीपके के साथ सोनम वांगचुक भी मंच पर नजर आए। अभिजीत ने धर्मेंद्र को इस्तीफे के लिए 5 बजे तक का अल्टीमेटम दिया।
7: मैं धर्मेंद्र प्रधान जी, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ, 5 बच्चों ने सुसाइड कर लिए, फिर भी आपने रिजाइन नहीं किया है, आपको शर्म नहीं आती? और कितने बच्चों का सुसाइड करने का वेट करेंगे आप? जब तक रिजाइन नहीं करोगे तब तक हमारा मूवमेंट जारी रहेगा। इसके बाद हम ये मूवमेंट को देश भर में लेकर जाएंगे और ये मूवमेंट तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते।
5: अभिजीत ने अपने इस आंदोलन को सफल बताया तो वहीं साफ किया कि सोशल मीडिया से शुरू हुआ ये आंदोलन अब देश भर में नजर आने वाला है।
7: 15 दिन पहले जब कांग्रेस जनता पार्टी का पेज स्टार्ट हुआ था, तब लोगों ने कहा था ये तो एक सोशल मीडिया का ट्रेंड है, ये तो एक सोशल मीडिया पर ही लिमिटेड रहकर रह जाएगा। लेकिन आज हमने देख लिया कि ये कोई सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं है, ये एक आंदोलन है जो जिसकी आज शुरुआत हो चुकी।
5: 5 घंटे तक जंतर मंतर में प्रदर्शन के बाद प्रदर्शनकारी लौट गए, जहां उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे ना देने पर अगले शनिवार को एक बार फिर जंतर मंतर आने का ऐलान किया है। अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।
4: दिल्ली के जंतर मंतर में एक और जेंजी की सरकार से नाराजगी दिखाई दी गई, तो दूसरी तरफ दिल्ली के ही कुछ किलोमीटर की दूरी पर सरकार के समर्थन में युवाओं को एकजुट किया गया।

0: दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में यूथ फॉर विकसित भारत सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े 6000 से ज्यादा युवा शामिल हुए। वहीं मैथिली ठाकुर, फिल्म स्टार विक्रांत मेस्सी, बोट फाउंडर अमन गुप्ता और गुरिंदर वीर सिंह ने सीएम रेखा गुप्ता और खेल मंत्री मनसुख मांडविया के साथ मंच साझा किया।
1: आज मैं मुंबई भारत यूथ कन्वेंशन में मेरे साथ देखिए कितने सारे लोग हैं। एक बार जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
0: एक और जहां विपक्ष युवाओं की नाराजगी और जेन जी आंदोलन की लगातार बात कर रहा है, तो वहीं सरकार ने मंच से ये संदेश देने की कोशिश की कि देश के युवाओं को सरकार पर पूरा भरोसा है।
2: भाई भारत, मोदी जी ने देश के युवाओं को अपनी आकांक्षा, अपनी अपेक्षा, अपनी वॉलंटियर क्षमता, अपना आइडियाज को साझा करने के लिए बनाया हुआ प्लेटफॉर्म है।
3: देश का युवा जो विजनरी है, जिसमें साहस है, जो क्रिएटिव है, वो देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करे, अपना भविष्य भी निर्माण करे और देश का भी निर्माण करे, उसके लिए आज ये इवेंट था।
0: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में जोर देने के लिए यूथ फॉर विकसित भारत अभियान को सरकार युवाओं के लिए एक बड़ा कदम बता रही है, जिसके जरिए युवाओं का भरोसा जीतने की कोशिश की जा रही है। सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक।
4: अब बात यूपी के देवरिया के, जहां पर बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। कई क्षेत्रों में बिजली गुल है। अब बिजली कटी तो आधी रात को बीजेपी विधायक शलभमणि त्रिपाठी पावर हाउस पहुंच गए और बिजली विभाग के अधिकारियों को हड़काया। विधायक ने कहा कि हमारे क्षेत्र की जनता अगर बिजली कटौती की वजह से सो नहीं पा रही है तो बिजली अधिकारी को हम चैन से सोने नहीं देंगे, बिजली अफसरों के घरों की भी लाइट काटेंगे। अब इस दौरान बिजली कटौती की शिकायत के लिए पावर हाउस के सरकारी नंबर पर लगातार लोग फोन कर रहे थे। कई फोन कॉल तो खुद विधायक ने उठाए।
5: हमने तय किया कि बिजली के अधिकारियों की अठाला से लाइट कब से लाइट नहीं है, कितने बजे से? ठीक है, मैं शलभमणि त्रिपाठी बोल रहा हूँ, विधायक देवरिया। ठीक है, बिजली घर पे ही बैठे हैं, इन लोगों की लाइट काटने आए हैं। आप लोगों की लाइट नहीं है तो आज हमने तय किया कि बिजली के अधिकारियों की सबकी लाइट काट देंगे। ठीक है ना, देखिए सर, 10-11 बजे से लाइट नहीं है। आप लोगों पर रिपोर्टिंग ही नहीं भाई, कहाँ कहाँ लाइट नहीं है। आप लोग इतने नॉन सीरियस हो चुके हैं कि आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। 10 बजे से लाइट नहीं है इनके मोहल्ले में, गोरखपुर और के पास।
4: अब बात करते हैं फैसल खान और खान सर की, जिस पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।
6: पटना में दो कोचिंग संचालकों की लड़ाई अब फैसल खान यानी खान सर की गिरफ्तारी तक पहुँच चुकी है। फैजल खान के वकील ने साफ किया है कि वो सरेंडर नहीं करेंगे।
7: खबर है ऐसा कोई विचार ही नहीं है सरेंडर करने का। पुलिस तो किसी को अरेस्ट कर सकती है, ननबेलापुर सेक्शन है तो किसी को अरेस्ट कर सकती है ना।
6: कल आर्म्स एक्ट के तहत पटना पुलिस ने फैजल खान के खिलाफ FIR दर्ज की थी। कोचिंग के गार्ड्स ने पूछताछ में कहा था कि फैजल खान ने उन्हें फायरिंग के लिए कहा था।
7: पुलिस कुछ भी लिख दे, अगर ऐसा होता तो खान सर भेज हुए थे ना, पुलिस को उसी समय अरेस्ट कर लेना था इनको। अगर ऐसा कोई रहता तो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट थाना में ले लेने से और FIR में लिख देने से कोई एविडेंस नहीं होता।
6: उधर फैजल खान की गिरफ्तारी की खबरों के बीच कल रात कोचिंग के बाहर भारी संख्या में छात्र मौजूद थे। तनाव को देखते हुए पुलिस का गश्त जारी रहा। PCR वैन में तैनात पुलिस छात्रों को समझाती नजर आई।
8: मौजूद हैं और सड़क के दूसरे किनारे एक लाइन से हजारों छात्र जो हैं वो यहाँ पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं खान सर के, ये कह सकते हैं कि समर्थन में ये जो छात्र हैं वो यहाँ पे खड़े हैं। तस्वीर देखिए, ये खान सर के कोचिंग के बाहर का नजारा है।
6: घटना के बाद फैजल खान के छात्रों को भड़काने का वीडियो वायरल हुआ था।
9: इसके ऊपर करने आया है
10: जबकि सबके सामने ये लेके जा रहा है, मुद्दे से भटकाया जा रहा है। आप इसकी गिरफ्तारी करिए, ये आदमी कौन है।

0: जैसे आता है 20-25 लोगों को उठा के लेके चला जाता, 20-25 लोगों को एक साथ कैसे।
1: वीडियो और मैसेज के बीच जारी तनाव को देखते हुए पटना पुलिस ने छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि दो कोचिंग संस्थानों की प्रतिस्पर्धा में किसी के बहकावे में आना ठीक नहीं है। सूत्रों के माने तो फैजल खान गिरफ्तारी के तलवार के बीच अग्रिम जमानत लेने की तैयारी कर रहे हैं। रोहित सिंह, पटना आज तक।
2: यूपी में योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन भी जारी है, जिसकी गूंज अब संभल में सुनाई दी, जहां सरकारी जमीन पर बनी मुस्तफा कादरी मस्जिद के खिलाफ एक्शन लिया गया और इस अवैध मस्जिद को बुलडोजर से ढहा दिया गया।
3: संभल के नखासा थाना इलाके के कसेरुआ गांव में स्थित मुस्तफा कादरी मस्जिद को ध्वस्त करने की कार्रवाई इस वक्त शुरू हो चुकी है और आप मेरे पीछे की तस्वीरों में आप जो देख सकते हैं कि किस तरीके से बुलडोजर एक्शन के जरिए जो कि सरकारी जमीन पर बनी हुई मस्जिद है उसको यहां पर ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई की जा रही है। दो दो बुलडोजर इस पूरी मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए फिलहाल यहाँ पर जो लगाए गए हैं। पूरा पुलिस फोर्स गाँव में तैनात किया गया है और ये देखा जाए तो ये 120 वर्ग मीटर जगह में बनी हुई ये पूरी मस्जिद थी, जिसको हटाने के लिए जनवरी महीने में जो है लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर ये पूरी कार्रवाई शुरू की गई थी और उसके बाद इस मस्जिद के वक्फ बोर्ड में भी रजिस्टर्ड होने का मामला सामने आया था, जिसके बाद इस मस्जिद कमेटी से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ FIR कराई गई। लेकिन आज अब इस पूरे मस्जिद पर धारा 67 के तहत जो कार्रवाई यहां पर जो की जा रही है और आप यहां जो देख सकते हैं देखिए किस तरीके से जो पूरा बुलडोजर है वो इस पूरे मस्जिद के स्ट्रक्चर को ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई कर रहा है। और एहतियातन अगर जो देखा जाए तो देखिए छतों पर आपको जो पुलिसकर्मी आपको जो तैनात नजर आएंगे, यहां अगर आपको जो देखा जाए तो देखिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो फिलहाल आपको जो है ये वो पुलिस कर्मियों की आपको जो है लगातार छतों पे जो तैनाती दिखाई देगी। जो है सामने देखिए तस्वीरों में देखेंगे तो देखिए तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह आपको यहाँ इस पूरे इलाके में लगातार इस पूरी स्थिति पे नजर बनाए हुए दिखाई देंगे और इसी तरह से देखिए आसपास का जो पूरा इलाका है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया। सामने आप देखेंगे तो देखिए बुलडोजर के ठीक बराबर में देखिए भारी संख्या में आपको पुलिस फोर्स जो है यहाँ पर जो तैनात जो नजर आएगा, जो कि आपको तस्वीरों में नजर आएगा। और इसी तरह से जो पूरे गांव का अलग अलग इलाके हैं वहां पर इस तरीके से पूरे पुलिस फोर्स को तैनात करके पूरे गाँव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर विशेष तौर पर निगरानी की जा रही है, जिससे कि कोई भड़काऊ पोस्ट जो है वो न डाली जाए सोशल मीडिया पर। वहीं इसी के साथ जो आसपास के इलाके हैं, आसपास के जो गांव हैं, वहां से भी इस पूरे गांव की तरफ आने वाले रास्तों पर पुलिस को फोर्स को जो तैनात किया गया है। और
2: बक्सर का इटाढ़ी गुमटी पुल क्षतिग्रस्त हो गया, मात्र 4 दिन हुए थे पुल के उद्घाटन को और अब पुल बंद कर दिया गया है। 26 करोड़ 40 लाख की लागत से बने हुए रोड ओवरब्रिज के ऊपरी परत धंस गए। लगभग 11 साल के इंतजार के बाद आम जनता के लिए कुछ ही दिन पहले उद्घाटन किया गया। लोगों ने राहत की सांस ली, कुछ सहूलियत होगी सोचा, लेकिन चौथे दिन ही पुल के पिलर नंबर 5 के ऊपरी परत ही धंस गई।
4: आप सोच सकते हैं कि जिस चीज को 11 साल से इंतजार कर रहे हैं और इंतजार के बाद अगर मिलता है तो 4 दिनों में ध्वस्त हो जाता है, तो सोचिए नहीं, ये देखिए कैसे, क्योंकि ये जो पुल है करीब 4 दिन पहले इसको खोला गया था चलने के लिए, लेकिन 4 दिनों में ये पुल टूट गया, यानी कि कहिए कि ध्वस्त हो गया और इसको बंद कर दिया गया है। ये दरअसल बक्सर के इटाढ़ी गुमटी पर बना 26 करोड़ 40 लाख का वो नया पुल है जिसको लेकर कई बार आंदोलन हुआ, कई बार लोग धरने पर बैठे, उसके बाद ये पुल मिला तो ऐसे हालात में मिला कि 4 दिन बाद ये इस परिस्थिति में आ गया कि लोग अब घेर कर देख रहे हैं कि भाई ये क्या हुआ है। ये एक दर्दनाक घटना तो नहीं कही जा सकती है, शर्मनाक घटना कही जा सकती है, और शर्मनाक घटना के कौन कौन विलेन है ये तो तय जनता को करना है। ऐसे में जनता सामने खड़ी है, हम उससे भी जानने का प्रयास करेंगे कि भाई ये जो घटना घटी है आपको आश्चर्यचकित तो नहीं करती होगी ना?
5: ना ना, ये तो मतलब वही होना था जो हुआ है, इससे पहले भी हुआ है कई बार, ये तो देखने वाली चीज है, ये तो सामने है जो प्रत्यक्ष में आपको दिख रहा है।
6: बस वही है जो देख रहे हैं, टूट गया है पुल
4: 4 दिन पहले।
6: हाँ, 4 दिन पहले बना था, आज टूट गया, फिर ट्रक चढ़ी है, वो तो अच्छी बात है कि किसी का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है।
4: सर, आपको लगता है कि मतलब ये पुल लगता था कि चलेगा नहीं, ये तो समझ में आ रहा होगा, तो इतना जल्दी फंसेगा ये तो विश्वास नहीं होगा?
7: ये विश्वास नहीं था इतना जल्दी फंस जाएगा।
4: देखिए, लोगों को लगातार सूचनाएं टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ये बहुत मिलती रहेगी है कि पुल फंस रहा है और पुल फंसेगा भी, लेकिन 4 दिनों में अगर पुल फंसने लगे तो बिहार की उस सरकार को क्या कहेंगे जो कई परिवर्तन के बाद इस समय भी डबल इंजन की सरकार चल रही है, विकास के कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे विकास का क्या मतलब है जो 4 दिन तक टिके नहीं। बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे।
2: आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने वाले वैभव सूर्यवंशी की टीम इंडिया में एंट्री हो गई। धुआंधार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड, इंग्लैंड और एशियन गेम्स की T20 इंटरनेशनल टीम में शामिल कर लिया गया है।
8: नाम वैभव सूर्यवंशी, काम छक्के बरसाना, पहचान तूफान

0: को जिताने। आईपीएल की इन तस्वीरों को जिसने देखा देखता ही रह गया। खुद वैभव के साथियों ने, दुनिया भर के दिग्गजों ने और विरोधी गेंदबाजों के पास तो देखते रहने की मजबूरी के अलावा कोई चारा ही नहीं था। ना उम्र की सीमा, ना दुनिया के किसी गेंदबाज का खौफ। वैभव का बल्ला जब बरसता है तो फिर इसके कोई मायने नहीं होते कि सामने पैट कमिंस जैसा गेंदबाज है, जसप्रीत बुमराह है या फिर कोई और। और ये तूफान आईपीएल के इस सीजन में जब आया तो मैच दर मैच उनका बल्ला रिकॉर्ड्स की इबारत लिखता चला गया। इस सीजन में तो हाल ये था कि जब उनकी पारी खत्म होती थी तो कईयों के सपने टूट चुके होते थे और कई गेंदबाजों के तो आईपीएल करियर के आंकड़े बिगड़ चुके होते थे। उनके बल्ले ने इतना हल्ला मचाया कि आखिरकार सेलेक्टर्स को उन्हें सीनियर टीम इंडिया का हिस्सा बनाना ही पड़ा। वैभव 15 साल की उम्र में टीम इंडिया का हिस्सा बनने वाले सबसे युवा भारतीय हैं। उन्होंने आईपीएल में सबसे तेज 1000 रन बनाए हैं। आईपीएल में उन्होंने एक सीजन में क्रिस गेल के 59 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़कर 72 छक्के जमाए हैं। 14 साल की उम्र में आईपीएल में शतक जमाने वाले वो सबसे युवा बल्लेबाज हैं। वो अंडर 19 वर्ल्ड कप चैंपियन है। आईपीएल के 23 मैच में वो 96 छक्के जमा चुके हैं। वैभव का असली इम्तिहान अब होने वाला है, लेकिन उनके लिए आपदा नहीं, ये अवसर है, क्योंकि खौफ का भूत वो बचपन में ही भगा चुके हैं। दुनिया भर के गेंदबाजों को वो आईपीएल में निपटा चुके हैं। इतना ही नहीं, दुनिया की कई पिचों पर खेलने का उनका अनुभव धीरे धीरे उनकी बल्लेबाजी को और मैच्योर बना रहा है। नए हिंदुस्तान के नए तेवरों वाली इस टीम को अपने खजाने में ऐसा ही हीरा चाहिए। आज तक ब्यूरो।
1: अब बात दुनिया की करते जहां खाड़ी युद्ध में तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत की कोशिशों के बीच धमाके की गूंज ने युद्ध विराम की उम्मीदों को तोड़ा है।

0: पश्चिम एशिया से आई इन तस्वीरों ने फिर से दुनिया को पसोपेश में डाल दिया है। इस मंजर ने डरा दिया है कि खाड़ी में फिर से महायुद्ध 2.0 की लपटें सुलगने लगी हैं। इस माहौल ने बता दिया है कि किसी भी वक्त अमेरिका और ईरान में फिर से भीषण जंग छिड़ने वाली है। दहशत इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि ईरान ने कुवैत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया है। कुवैत में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। कुवैत का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान से आ रहे ड्रोन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहा है। ईरान ने बहरीन पर भी मिसाइल दागी है। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को रोकने के लिए बहरीन का भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। हम आपको बता दें कि बहरीन में अमेरिकी सेंट्रल कमांड का मुख्यालय भी है। अपने सहयोगी देशों पर ईरान के हमले से अमेरिका बौखला चुका है। पलटवार में अमेरिका ने भी ईरान के कई ठिकानों पर धावा बोल दिया। ईरान के सर्विलांस रडार सेंटर पर अमेरिका ने हमला किया है। ईरान के रडार सेंटर पर हमले का वीडियो भी अमेरिका ने जारी कर दिया। अमेरिका का कहना है कि पहले ईरान ने हमला किया था, जिसके जवाब में उसके रडार सर्विलांस टावर को उड़ा दिया गया। अमेरिकी सेना ने समुद्री हमलों से बचाव के लिए गोरुक और केशम द्वीप पर स्थित ईरानी तटीय निगरानी रडार को ध्वस्त किया। अमेरिका ने दावा किया कि 6 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया, जबकि 7वीं मिसाइल टारगेट तक पहुंची ही नहीं। मतलब साफ है कि जो सीज फायर फिलहाल अस्थाई है, वो किसी भी वक्त धराशायी हो सकता है, क्योंकि ईरान और अमेरिका में झड़प शुरू हो चुकी है। ये चिंगारी किसी भी वक्त भीषण युद्ध का शक्ल ले सकती है। आज तक ब्यूरो।
1: और अब आपको लेकर चलते हैं युद्ध के उस मोर्चे की ओर, जहां पिछले 4.5 साल से रूस और यूक्रेन में जंग

अब बड़ी खबर यह है कि रूसी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि शांति वार्ता के लिए युद्ध रोकने की जरूरत नहीं। पुतिन का यह बयान तब आया है जब जेलेंस्की ने खुला पत्र लिखकर रूसी राष्ट्रपति से मिलने की इच्छा जाहिर की।

0: रूस ने यूक्रेनी शहर जैपोरेजिया पर भीषण अटैक किया, वो भी तब जब शांति वार्ता की कोशिशें चल रही हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है कि शांति वार्ता के लिए सीज फायर की कोई जरूरत नहीं है, मतलब बातचीत करने के लिए जंग रोकने की जरूरत नहीं। रूस के ताजा हमलों में जैपोरेजिया के रिहायशी इलाकों को बड़ा नुकसान हुआ, जिसमें एक शख्स की मौत हुई है, 16 घायल हैं, वाहनों और नागरिक बुनियादी ढांचों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इस बीच पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में पत्रकारों को संबोधित करते हुए साफ कर दिया कि बातचीत के लिए सीज फायर की जरूरत ही नहीं है।
1: Новые населенные пункты ставятся под контроль российских вооруженных сил. Но за последнее время, повторяю, почти 2500 квадратных километров.
0: इससे पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति को खुला पत्र लिखा है और सीधे वार्ता का प्रस्ताव रखा है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी और रूसी नेताओं के बीच बैठक की पहल को सराहा है और इसे अच्छी पहल बताया।
2: I don't know. I'm glad that they're maybe talking about meeting. I think we had a lot to do with it. I know exactly what you're doing. But I think it would be great if they met. They should get it done.
0: आर-पार की जंग और शांति वार्ता की कोशिशों के बीच दोनों देशों की तरफ से अच्छी पहल हुई है। रूस यूक्रेन ने एक दूसरे के 185 कैदियों की अदला बदली की है, जिसे शांति की शुरुआत के लिए पहला बड़ा कदम बताया जा सकता है। हालांकि कैदियों की अदला बदली पहले भी हो चुकी है, लेकिन 4 साल से भी ज्यादा समय से जारी जंग अभी तक थमी नहीं। आज तक ब्यूरो।
3: अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक, आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ मंथन, देशवासियों का जीवन आसान बनाने और आर्थिक दर्द को बढ़ाने पर चर्चा। समाजवादी पार्टी पर मुख्यमंत्री योगी का बड़ा हमला, कहा 2017 से पहले गुंडों के आगे नतमस्तक थी सरकार, राम का नाम लेने पर चलती थी गोलियां, अखिलेश का पलटवार, यूपी में महाजंगल राज। बंगाल सरकार ने मदरसों का शुरू किया सर्वेक्षण, 5 जुलाई तक मांगे रिपोर्ट, नियमों के तहत संचालन और जरूरी दस्तावेजों की होगी जांच। नीट री एग्जाम के प्रश्न पत्र लीक होने के दावों को एनटीए ने किया खारिज, कार्रवाई की भी चेतावनी, महानिदेशक ने कहा क्वेश्चन पेपर लाने के लिए एयरफोर्स का इस्तेमाल।

0: यूपी में भी 2027 के लिए हर पार्टी ने कमर कस ली है। योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, तो अखिलेश यादव भी लगातार सरकार को घेर रहे हैं।
1: अब राम का नाम लेने पर ही प्रतिबंध था, डंडे बरसते थे, गोलियां चलती थी। अयोध्या में भगवान राम का भक्त अयोध्या में नहीं जा सकता था। किस प्रकार की अराजकता थी। अब तो अयोध्या में राम भक्त के अलावा कोई रामद्रोही घुस ही नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। आज तो अयोध्या चमक रही है।
2: 2027 के सियासी समर में बीजेपी हिंदुत्व और राम मंदिर के मुद्दे पर सवार है, जहां अखिलेश यादव पर सीएम योगी आदित्यनाथ के हमले जारी हैं।
1: 2017 के पहले इन दंगाइयों को, इन पेशेवर गुंडों को प्रश्रय देते थे, इनके सामने नतमस्तक होते थे। प्रदेश में कर्फ्यू रहता था।
2: योगी विकास से लेकर डबल इंजन तक की खूबियां गिना रहे हैं, तो वहीं पिछली सरकारों की खामियां भी बता रहे हैं।
1: 2015-16 में इस गोंडा में भी दुर्गा पूजा के समय दंगा करने का प्रयास हुआ था, यहां भी दंगे हुए थे। मां दुर्गा की मूर्ति को विसर्जन नहीं करने दिया जाता था, रामलीलाओं के आयोजन में अड़चने डाली जाती थी। पर्व और त्योहार प्रारंभ होने के पहले, उत्सव प्रारंभ होने के पहले उपद्रव शुरू हो जाते थे। उत्सव के रंग में किसी ने भंग करने का काम किया तो फिर वर्तमान तो जाएगा ही जाएगा, भविष्य भी स्वाहा हो जाएगा।
2: उधर अखिलेश को योगी सरकार में जंगल राज नजर आ रहा है। उधर गाजीपुर में कमलेश बिंद के एनकाउंटर पर विपक्ष और सरकार के सहयोगियों के सुर एक जैसे नजर आ रहे हैं। किसी को अपने वोट बैंक की टेंशन सता रही है, तो कोई वोट बैंक में सेध मारने की तैयारी में है।
3: इतना बड़ा तो दुर्दांत अपराधी नहीं है कि जिससे आप एनकाउंटर, अब मुख्य आरोपी उसको बनाया भी नहीं गया, मुख्य आरोपी कोई और है। मुख्य आरोपी को तो पकड़ने दूर है, वो कुछ छुएंगे नहीं। आज जो साधारण है, जो वोट अभी गाजीपुर हारे हैं, अब गाजीपुर में बिंदुओं की संख्या बहुत अधिक है, जौनपुर में बिंदुओं की संख्या अधिक है, प्रधानमंत्री के चारों तरफ के हम सारी सीटें हार गए हैं।
4: बहुत ही जो घटना हुई है एनकाउंटर की, तो आखिर जब पुलिस पकड़ सकती थी मुजरिम को, तो एनकाउंटर क्यों करा गया? ये अपने आप में पूरी कानून व्यवस्था में प्रश्न चिन्ह उठाने का काम है। भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं चाहते हैं कि शासन और जो प्रशासन है, जो नियम है, जो कानून है, उससे चले।
2: बहरहाल यूपी में चुनावी पिच पूरी तरह से तैयार है, जहां हर पार्टी अपने हिसाब से बैटिंग कर रही है। आज तक ब्यूरो।
0: दिल्ली के जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी नीट पेपर लीक के विरोध में उतरी और छात्रों की आत्महत्या को लेकर सवाल खड़े किए, तो वहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की।
5: हाथों में संविधान की कॉपी लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपक के आज सुबह अमेरिका से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से उन्होंने जंतर मंतर का रुख किया।
6: सोशल मीडिया पर व्यंग और मीम्स के तौर पर शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी अब दिल्ली के जंतर मंतर आ पहुंचा है। सुबह सुबह अभिजीत दीप के अमेरिका से सीधे आईजीआई एयरपोर्ट पे लैंड किया और उसके बाद जंतर मंतर पहुंचा। पहले भीड़ कम थी, ना मंच था, ना बैनर था, ना कोई ऑडियो सिस्टम, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया, भीड़ की संख्या बढ़ती गई, स्टेज भी लगा, मंच भी लगा और हाथ में तिरंगा लिए युवा यहां पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
5: नीट पेपर लीक को लेकर हो रहे इस प्रदर्शन में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई। अभिजीत दीपक के साथ सोनम वांगचुक भी मंच पर नजर आए। अभिजीत ने धर्मेंद्र को इस्तीफे के लिए 5 बजे तक का अल्टीमेटम दिया।
7: मैं धर्मेंद्र प्रधान जी, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ, 5 बच्चों ने सुसाइड कर लिए, फिर भी आपने रिजाइन नहीं किया है, आपको शर्म नहीं आती? और कितने बच्चों का सुसाइड करना का वेट करेंगे आप जब तक रिजाइन नहीं करोगे, तब तक हमारा मूवमेंट जारी रहेगा। इसके बाद हम ये मूवमेंट को देश भर में लेकर जाएंगे और ये मूवमेंट तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते।
5: अभिजीत ने अपने इस आंदोलन को सफल बताया तो वहीं साफ किया कि सोशल मीडिया से शुरू हुआ ये आंदोलन अब देश भर में नजर आने वाला है।
7: 15 दिन पहले जब कांग्रेस जनता पार्टी का पेज स्टार्ट हुआ था तब लोगों ने कहा था ये तो एक सोशल मीडिया का ट्रेंड है, ये तो एक सोशल मीडिया पर ही लिमिटेड रहकर रह जाएगा। लेकिन आज हमने देख लिया कि ये कोई सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं है, ये एक आंदोलन है जो जिसकी आज शुरुआत हो चुकी।
5: 5 घंटे तक जंतर मंतर में प्रदर्शन के बाद प्रदर्शनकारी लौट गए जहां उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे ना देने पर अगले शनिवार को एक बार फिर जंतर मंतर आने का ऐलान किया है। अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।
0: दिल्ली के जंतर मंतर में एक और जेंजी की सरकार से नाराजगी दिखाई दी गई तो दूसरी तरफ दिल्ली के ही कुछ किलोमीटर की दूरी पर सरकार के समर्थन में युवाओं को एकजुट किया गया।
5: दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में यूथ फॉर विकसित भारत सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े 6,000 से ज्यादा युवा शामिल हुए। वहीं मैथिली ठाकुर, फिल्म स्टार विक्रांत मेस्सी, बोट फाउंडर अमन गुप्ता और गुरिंदर वीर सिंह ने सीएम रेखा गुप्ता और खेल मंत्री मनसुख मांडविया के साथ मंच साझा किया।
8: आज मैं माय भारत यूथ कन्वेंशन में मेरे साथ देखिए कितने सारे लोग हैं। एक बार जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
5: एक और जहां विपक्ष युवाओं की नाराजगी और जेन जी आंदोलन की लगातार बात कर रहा है तो वहीं सरकार ने मंच से ये संदेश देने की कोशिश की कि देश के युवाओं को सरकार पर पूरा भरोसा है।
9: माय भारत, मोदी जी ने देश के युवाओं को अपनी आकांक्षा, अपनी अपेक्षा, अपनी वॉलंटियर क्षमता, अपना आइडियाज उस साझा करने के लिए बनाया हुआ प्लेटफॉर्म है।
10: देश का युवा जो विजनरी है, जिसमें साहस है, जो क्रिएटिव है, वो देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करे, अपना भविष्य भी निर्माण करे और देश का भी निर्माण करे, उसके लिए आज ये इवेंट था।
5: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में जोर देने के लिए यूथ फॉर विकसित भारत अभियान को सरकार युवाओं के लिए एक बड़ा कदम बता रही है जिसके जरिए युवाओं का भरोसा जीतने की कोशिश की जा रही है। सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
0: अब बात यूपी के देवरिया के जहां पर बिजली कटौती से लोग परेशान हैं, कई क्षेत्रों में बिजली गुल है। अब बिजली कटी तो आधी रात को बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी पावर हाउस पहुंच गए और बिजली विभाग के अधिकारियों को हड़काया। विधायक ने कहा कि हमारे क्षेत्र की जनता अगर बिजली कटौती की वजह से सो नहीं पा रही है तो बिजली अधिकारी को हम चैन से सोने नहीं देंगे, बिजली अफसरों के घरों की भी लाइट काटेंगे। अब इस दौरान बिजली कटौती की शिकायत के लिए पावर हाउस के सरकारी नंबर पर लगातार लोग फोन कर रहे थे, कई फोन कॉल तो खुद विधायक ने
11: उठाया। कहाँ से बोल रहे हैं आप? चिड़िया ठाला से ना? कब से लाइट नहीं है? कितने बजे से? ठीक है, मैं शलभ मणि त्रिपाठी बोल रहा हूँ, विधायक देवरिया। ठीक है, बिजली घर पे ही बैठे हैं, इन लोगों की लाइट काटने आए हैं। आप लोगों की लाइट नहीं है तो आज हमने तय किया कि बिजली के अधिकारियों की सबकी लाइट काट देंगे। ठीक है ना? देखिए सर, 10-11 बजे से लाइट नहीं है, आप लोगों पर रिपोर्टिंग ही नहीं भाई, कहाँ कहाँ लाइट नहीं है। आप लोग इतने नॉन सीरियस हो चुके हैं कि आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। 10 बजे से लाइट नहीं है इनके मोहल्ले में, गोरखपुर और के पास। आप लोग इतने नॉन सीरियस हो चुके हैं कि आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। 10 बजे से लाइट नहीं है इनके मोहल्ले में, गोरखपुर और के पास।
0: अब बात करते हैं फैसल खान और खान सर की, जिस पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।
12: पटना में दो कोचिंग संचालकों की लड़ाई अब फैसल खान यानी खान सर की गिरफ्तारी तक पहुंच चुकी है। फैजल खान के वकील ने साफ किया है कि वो सरेंडर नहीं करेंगे।
13: खबर है ऐसा कोई विचार ही नहीं है सरेंडर करने का। पुलिस तो किसी को अरेस्ट कर सकती है, नॉनवेलेबल सेक्शन है तो किसी को अरेस्ट कर सकती है ना।
12: कल आर्म्स एक्ट के तहत पटना पुलिस ने फैजल खान के खिलाफ FIR दर्ज की थी। कोचिंग के गार्ड्स ने पूछताछ में कहा था कि फैजल खान ने उन्हें फायरिंग के लिए कहा था।
13: के लिए पुलिस कुछ भी लेख दे, अगर ऐसा होता तो खान सर भेज हुए थे ना, पुलिस को उसी समय अरेस्ट कर लेना था इनको। अगर ऐसा कोई रहता तो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट थाना में ले लेने से और FIR में लिख देने से कोई एविडेंस नहीं होता।
12: उधर फैजल खान की गिरफ्तारी की खबरों के बीच कल रात कोचिंग के बाहर भारी संख्या में छात्र मौजूद थे। तनाव को देखते हुए पुलिस का गश्त जारी रहा। PCR वैन में तैनात पुलिस छात्रों को समझाती नजर आई।
14: मौजूद हैं और सड़क के दूसरे किनारे एक लाइन से हजारों छात्र जो हैं वो यहां पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं खान सर के। ये कह सकते हैं कि समर्थन में ये जो छात्र हैं वो यहां पे खड़े हैं। तो तस्वीर देखिए, ये खान सर के कोचिंग के बाहर का नजारा है।
12: घटना के बाद फैजल खान के छात्रों को भड़काने का वीडियो वायरल हुआ था।
15: किसके ऊपर करने आया है
16: हमारा गाड़ी अभी तक नहीं की, जबकि सबके सामने ये लेके जा रहा है, मुद्दे से भटकाया जा रहा है। आप इसकी गिरफ्तारी करिए, ये आदमी कौन है और कैसे आता है 20-25 लोगों को उठा के लेके चला जाता है, 20-25 लोगों को एक साथ कैसे।
12: वीडियो और मैसेज के बीच जारी तनाव को देखते हुए पटना पुलिस ने छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि दो कोचिंग संस्थानों की प्रतिस्पर्धा में किसी के बहकावे में आना ठीक नहीं है। सूत्रों के माने तो फैजल खान गिरफ्तारी के तलवार के बीच अग्रिम जमानत लेने की तैयारी कर रहे हैं। रोहित सिंह, पटना आज तक।
0: बिहार में राबड़ी के बंगले को लेकर जारी सियासत अब सुरक्षा तक पहुंच गई है। सुरक्षा में कटौती के बाद लालू परिवार ने मौजूद सुरक्षा को भी लेने से इनकार कर दिया है।
2: आवास के बाहर पसरा सन्नाटा और कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं। एक बार तो ये यकीन करना भी मुश्किल है कि ये पटना में पूर्व CM राबड़ी देवी का बंगला है। एक दिन पहले Y+ सिक्योरिटी हटाए जाने के बाद अब लालू राबड़ी ने नाराजगी जताते हुए पूरी सुरक्षा वापस कर दी है।
17: राबड़ी देवी और लालू परिवार को जो सुरक्षा दी जाती है उसको लेकर जो है ये ताज़ा विवाद जो है वो शुरू हो गया है। और कल से हम देख रहे हैं जब सरकार का एक नया फरमान आया और लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को जो Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई थी उस सुरक्षा को सरकार ने वापस लिया और केवल बिहार पुलिस की सुरक्षा, जो स्पेशल पुलिस होती है, उसकी सुरक्षा प्रदान की। उसके बाद से ही लालू परिवार, राबड़ी देवी जो है वो इसको लेकर काफी बिफर गए। और उसके बाद कल देर रात से हम देख रहे हैं कि 10 सर्कुलर रोड आवास, जो कि राबड़ी देवी और उनका परिवार यहाँ पिछले 20 सालों से रह रहा है, यहाँ कल रात से ही एक भी सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं है।
2: इस बीच तेजस्वी यादव ने इसका विरोध करते हुए अपनी सुरक्षा लौटा दी, जिसे लेकर RJD अब सरकार पर लगातार हमले कर रही है। सुरक्षा कवच में कटौती के बाद दिखावे की सुरक्षा रखने का कोई औचित्य नहीं है। सात खून के आरोपी रहे मुख्यमंत्री की सरकार के द्वारा लालू जी एवं राबड़ी देवी जी की सुरक्षा में कटौती का फैसला लालू जी, राबड़ी देवी जी एवं उनके परिवार को नुकसान, शारीरिक क्षति पहुंचाने की नीयत से ही लिया गया है। अगर लालू जी एवं उनके परिवार का सुरक्षा कवच है और अगर लालू जी, राबड़ी देवी जी और परिवार के किसी भी सदस्य को एक खरोच भी आई तो अंजाम क्या होगा, इसका अंदाजा शायद बिगड़ैल सम्राट चौधरी और उनकी सरकार को नहीं है।
18: सबको वापस कर दिया, सबको बाहर निकाल दिया, क्योंकि कल ही राज्य की सरकार ने अपने आका के निर्देश पर आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी सहित पूरे लालू परिवार की सुरक्षा में व्यापक और घोर कटौती कर दी। शासन अपमानित करना चाहती है लालू प्रसाद जी और उनके परिवार को, उनके परिजनों को।
19: ये सुरक्षा उनको क्यों दिया गया था? कभी मुख्यमंत्री रहे, कभी केंद्रीय मंत्री रहे, जब ये संवैधानिक व्यवस्था, ये नहीं है कि हथुआ मामा का बेटा है तो सब दिन वही रहेगा। जनता जिसको चुन करके देती है सत्ता में और जो कानून कहता है वो सुरक्षा मिलता।
2: समीक्षा में तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं किया गया था, लेकिन लालू और राबड़ी की सुरक्षा घटाए जाने के विरोध में अब तेजस्वी यादव ने ये बड़ा फैसला लिया है। वहीं लालू राबड़ी की जेड प्लस सिक्योरिटी वापस ली गई थी, लेकिन नई सुरक्षा व्यवस्था के तहत दोनों नेताओं के लिए बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की सुरक्षा का इंतजाम किया गया था, जिसके तहत 2 से 8 जवान सुरक्षा में तैनात रहने का निर्देश था। इसके साथ बुलेट प्रूफ कार्ड, जिला बल से एस्क्वाड की नियुक्ति का निर्देश था।
17: ये बिहार पुलिस की जो सुरक्षा, जो नई व्यवस्था उनको प्रदान की गई थी, उस सुरक्षा को भी यहाँ लेने से देखिए लालू परिवार ने जो है वो मना कर दिया है। ये देख सकते हैं यहाँ बिहार पुलिस के जो विशेष दस्ता है वो जो नई सुरक्षा व्यवस्था के तहत इनको यहाँ पर भेजा गया है। इन तमाम लोगों को भी जो है 10 सर्कुलर रोड आवास में जाने नहीं दिया गया है, इनको बाहर कर दिया गया है परिवार के द्वारा। और जाहिर सी बात है ये तमाम जो बिहार पुलिस के यहाँ पर कर्मी हैं वो लोग बाहर ही खड़े हैं, राबड़ी देवी के आवास के बाहर ही इसी तरीके से खड़े हैं। अब इन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है कि करना है तो क्या करना है।
2: राबड़ी देवी के बंगले को लेकर सियासत चल ही रही थी, जिस पर अब सुरक्षा को लेकर विवाद की एंट्री हो चुकी है। रोहित सिंह, पटना आज तक।
0: यूपी में योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन भी जारी है, जिसकी गूंज अब संभल में सुनाई दी, जहां सरकारी जमीन पर बनी मुस्तफा कादरी मस्जिद के खिलाफ एक्शन लिया गया और इस समय मस्जिद को बुलडोजर से ढहा दिया गया।
15: संभल के नखासा थाना इलाके के कसेरुआ गांव में स्थित मुस्तफा कादरी मस्जिद को ध्वस्त करने की कार्रवाई इस वक्त शुरू हो चुकी है। और आप मेरे पीछे की तस्वीरों में आप जो देख सकते हैं कि किस तरीके से बुलडोजर एक्शन के जरिए जो कि सरकारी जमीन पर बनी हुई मस्जिद है उसको यहां पर ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई की जा रही है। 2-2 बुलडोजर इस पूरी मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए फिलहाल यहाँ पर जो लगाए गए हैं, पूरा पुलिस फोर्स गाँव में तैनात किया गया है। और ये देखा जाए तो ये 120 वर्ग मीटर जगह में बनी हुई ये पूरी मस्जिद थी, जिसको हटाने के लिए जनवरी महीने में जो है लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर यह पूरी कार्रवाई शुरू की गई थी। और उसके बाद इस मस्जिद के वक्फ बोर्ड में भी रजिस्टर्ड होने का मामला सामने आया था, जिसके बाद इस मस्जिद कमेटी से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ FIR कराई गई। लेकिन आज अब इस पूरे मस्जिद पर धारा 67 के तहत जो कार्रवाई यहां पर जो की जा रही है, और आप यहां जो देख सकते देखिए किस तरीके से जो पूरा बुलडोजर है वो इस पूरे मस्जिद के स्ट्रक्चर को ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई कर रहा है। और एहतियातन अगर जो देखा जाए तो देखिए छतों पर आपको जो पुलिसकर्मी आपको जो तैनात नजर आएंगे, यहां अगर आपको जो देखा जाए तो देखिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो फिलहाल आपको जो है ये वो पुलिसकर्मियों की आपको जो है लगातार छतों पर जो तैनाती दिखाई देगी। जो है सामने देखिए तस्वीरों में देखेंगे तो देखिए तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह आपको यहाँ इस पूरे इलाके में लगातार इस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए दिखाई देंगे। और इसी तरह से देखिए आसपास का जो पूरा इलाका है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया। सामने आप देखेंगे तो देखिए बुलडोजर के ठीक बराबर में देखिए भारी संख्या में आपको पुलिस फोर्स जो है यहाँ पर जो तैनात जो नजर आएगा, जो कि आपको तस्वीरों में नजर आएगा। और इसी तरह से जो पूरे गांव का अलग अलग इलाके हैं वहां पर इस तरीके से पूरे पुलिस फोर्स को तैनात करके पूरे गाँव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर विशेष तौर पर निगरानी की जा रही है, जिससे कि कोई भड़काऊ पोस्ट जो है वो न डाली जाए सोशल मीडिया पर। वहीं इसी के साथ जो आसपास के इलाके हैं, आसपास के जो गांव हैं, वहां से भी इस पूरे गांव की तरफ आने वाले रास्तों पर पुलिस को फोर्स को जो तैनात किया गया है। और
0: बक्सर का इटाढ़ी गुमटी पुल क्षतिग्रस्त हो गया, मात्र 4 दिन हुए थे पुल के उद्घाटन को और अब पुल बंद कर दिया गया है। 26 करोड़ 40 लाख की लागत से बने हुए रोड ओवर ब्रिज के ऊपरी परत धंस गए। लगभग 11 साल के इंतजार के बाद आम जनता के लिए कुछ ही दिन पहले उद्घाटन किया गया। लोगों ने राहत की सांस ली, कुछ सहूलियत होगी सोचा, लेकिन चौथे दिन ही पुल के पिलर नंबर 5 के ऊपरी परत ही धंस गई।
20: आप सोच सकते हैं कि जिस चीज को 11 साल से इंतजार कर रहे हैं और इंतजार के बाद अगर मिलता है तो 4 दिनों में ध्वस्त हो जाता है, तो सोचिए नहीं, ये देखिए कैसे, क्योंकि ये जो पुल है करीब 4 दिन पहले इसको खोला गया था चलने के लिए, लेकिन 4 दिनों में ये पुल टूट गया, यानी कि कहिए कि ध्वस्त हो गया और इसको बंद कर दिया गया है। ये दरअसल बक्सर के इटाढ़ी गुमटी पर बना 26 करोड़ 40 लाख का वो नया पुल है जिसको लेकर कई बार आंदोलन हुआ, कई बार लोग धरने पर बैठे, उसके बाद ये पुल मिला तो ऐसे हालात में मिला कि 4 दिन बाद ये इस परिस्थिति में आ गया कि लोग अब घेर कर देख रहे हैं कि भाई ये क्या हुआ है। ये एक दर्दनाक घटना तो नहीं कही जा सकती है, शर्मनाक घटना कही जा सकती है। और शर्मनाक घटना के कौन कौन विलेन है ये तो तय जनता को करना है। ऐसे में जनता सामने खड़ी है, हम उससे भी जानने का प्रयास करेंगे कि भाई ये जो घटना घटी है आपको आश्चर्यचकित तो नहीं करती होगी ना?
1: ना ना, ये तो मतलब वही होना था जो हुआ है, इससे पहले भी हुआ है कई बार। ये तो देखने वाली चीज है, ये तो सामने है जो प्रत्यक्ष में आपको दिख रहा है।
21: बस वही है जो देख रहे हैं, टूट गया है पुल
20: चार दिन पहले।
21: हाँ, चार दिन पहले बना था, आज टूट गया, फिर ट्रक चढ़ी है। वो तो अच्छी बात है कि किसी का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है।
20: सर, आपको लगता है कि मतलब ये पुल लगता था कि चलेगा नहीं, ये तो समझ में आ रहा होगा, तो इतना जल्दी फंसेगा ये तो विश्वास नहीं होगा?
22: ये विश्वास नहीं था इतना जल्दी फंस जाएगा।
20: देखिए, लोगों को लगातार सूचनाएं टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ये बहुत मिलती रहेगी है कि पुल फंस रहा है और पुल फंसेगा भी। लेकिन चार दिनों में अगर पुल फंसने लगे तो बिहार की उस सरकार को क्या कहेंगे जो कई परिवर्तन के बाद इस समय भी डबल इंजन की सरकार चल रही है, विकास के कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे विकास का क्या मतलब है जो चार दिन तक टिके नहीं। बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे।
0: आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने वाले वैभव सूर्यवंशी की टीम इंडिया में एंट्री हो गई। धुआंधार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड, इंग्लैंड और एशियन गेम्स की T20 इंटरनेशनल टीम में शामिल कर लिया गया है।
23: नाम वैभव सूर्यवंशी, काम छक्के बरसाना, पहचान तूफान लाना, अरमान अब देश को जिताना। आईपीएल की इन तस्वीरों को जिसने देखा देखता ही रह गया। खुद वैभव के साथियों ने, दुनिया भर के दिग्गजों ने और विरोधी गेंदबाजों के पास तो देखते रहने की मजबूरी के अलावा कोई चारा ही नहीं था। ना उम्र की सीमा, ना दुनिया के किसी गेंदबाज का खौफ। वैभव का बल्ला जब बरसता है तो फिर इसके कोई मायने नहीं होते कि सामने पैट कमिंस जैसा गेंदबाज है, जसप्रीत बुमराह है या फिर कोई और। और ये तूफान आईपीएल के इस सीजन में जब आया तो मैच दर मैच उनका बल्ला रिकॉर्ड्स की इबारत लिखता चला गया। इस सीजन में तो हाल ये था कि जब उनकी पारी खत्म होती थी तो कईयों के सपने टूट चुके होते थे और कई गेंदबाजों के तो आईपीएल करियर के आंकड़े बिगड़ चुके होते थे। उनके बल्ले ने इतना हल्ला मचाया कि आखिरकार सेलेक्टर्स को उन्हें सीनियर टीम इंडिया का हिस्सा बनाना ही पड़ा। वैभव 15 साल की उम्र में टीम इंडिया का हिस्सा बनने वाले सबसे युवा भारतीय हैं। उन्होंने आईपीएल में सबसे तेज 1000 रन बनाए हैं। आईपीएल में उन्होंने एक सीजन में क्रिस गेल के 59 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़कर 72 छक्के जमाए हैं। 14 साल की उम्र में आईपीएल में शतक जमाने वाले वो सबसे युवा बल्लेबाज हैं। वो अंडर-19 वर्ल्ड कप चैंपियन है। आईपीएल के 23 मैच में वो 96 छक्के जमा चुके हैं। वैभव का असली इम्तिहान अब होने वाला है, लेकिन उनके लिए आपदा नहीं, ये अवसर है, क्योंकि खौफ का भूत वो बचपन में ही भगा चुके हैं। दुनिया भर के गेंदबाजों को वो आईपीएल में निपटा चुके हैं। इतना ही नहीं, दुनिया की कई पिचों पर खेलने का उनका अनुभव धीरे धीरे उनकी बल्लेबाजी को और मैच्योर बना रहा है। नए हिंदुस्तान के नए तेवरों वाली इस टीम को अपने खजाने में ऐसा ही हीरा चाहिए। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात दुनिया की करते, जहां खाड़ी युद्ध में तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत की कोशिशों के बीच धमाके की गूंज ने युद्ध विराम की उम्मीदों को तोड़ा है।

0: पश्चिम एशिया से आई इन तस्वीरों ने फिर से दुनिया को पसोपेश में डाल दिया है। इस मंजर ने डरा दिया है कि खाड़ी में फिर से महायुद्ध 2.0 की लपटें सुलगने लगी हैं। इस माहौल ने बता दिया है कि किसी भी वक्त अमेरिका और ईरान में फिर से भीषण जंग छिड़ने वाली है। दहशत इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि ईरान ने कुवैत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया है। कुवैत में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। कुवैत का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान से आ रहे ड्रोन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहा है। ईरान ने बहरीन पर भी मिसाइल दागी है। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को रोकने के लिए बहरीन का भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। हम आपको बता दें कि बहरीन में अमेरिकी सेंट्रल कमांड का मुख्यालय भी है। अपने सहयोगी देशों पर ईरान के हमले से अमेरिका बौखला चुका है। पलटवार में अमेरिका ने भी ईरान के कई ठिकानों पर धावा बोल दिया। ईरान के सर्विलांस रडार सेंटर पर अमेरिका ने हमला किया है। ईरान के रडार सेंटर पर हमले का वीडियो भी अमेरिका ने जारी कर दिया। अमेरिका का कहना है कि पहले ईरान ने हमला किया था, जिसके जवाब में उसके रडार सर्विलांस टावर को उड़ा दिया गया। अमेरिकी सेना ने समुद्री हमलों से बचाव के लिए गोरुक और केशम द्वीप पर स्थित ईरानी तटीय निगरानी रडार को ध्वस्त किया। अमेरिका ने दावा किया कि 6 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया, जबकि 7वीं मिसाइल टारगेट तक पहुंची ही नहीं। मतलब साफ है कि जो सीज फायर फिलहाल अस्थाई है, वो किसी भी वक्त धराशायी हो सकता है, क्योंकि ईरान और अमेरिका में झड़प शुरू हो चुकी है। ये चिंगारी किसी भी वक्त भीषण युद्ध का शक्ल ले सकती है। आज तक ब्यूरो।
1: और अब आपको लेकर चलते हैं युद्ध के उस मोर्चे की ओर, जहां पिछले 4.5 साल से रूस और यूक्रेन में जंग छिड़ी है। अब बड़ी खबर यह है कि रूसी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि शांति वार्ता के लिए युद्ध रोकने की जरूरत नहीं। पुतिन का यह बयान तब आया है जब जेलेंस्की ने खुला पत्र लेकर रूसी राष्ट्रपति से मिलने की इच्छा जाहिर की।

0: रूस ने यूक्रेनी शहर जैपोरेजिया पर भीषण अटैक किया, वो भी तब जब शांति वार्ता की कोशिशें चल रही हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है कि शांति वार्ता के लिए सीज फायर की कोई जरूरत नहीं है, मतलब बातचीत करने के लिए जंग रोकने की जरूरत नहीं। रूस के ताजा हमलों में जैपोरेजिया के रिहायशी इलाकों को बड़ा नुकसान हुआ, जिसमें एक शख्स की मौत हुई है, 16 घायल हैं, वाहनों और नागरिक बुनियादी ढांचों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इस बीच पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में पत्रकारों को संबोधित करते हुए साफ कर दिया कि बातचीत के लिए सीज फायर की जरूरत ही नहीं है।
1: नए населенные пункты ставятся под контроль российских вооруженных сил. Ну, за последнее время, повторяю, почти 2500 квадратных километров.
0: इससे पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति को खुला पत्र लिखा है और सीधे वार्ता का प्रस्ताव रखा है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी और रूसी नेताओं के बीच बैठक की पहल को सराहा है और इसे अच्छी पहल बताया। रूस यूक्रेन ने एक दूसरे के 185 कैदियों की अदला बदली की है, जिसे शांति की शुरुआत के लिए पहला बड़ा कदम बताया जा सकता है। हालांकि कैदियों की अदला बदली पहले भी हो चुकी है, लेकिन 4 साल से भी ज्यादा समय से जारी जंग अभी तक थमी नहीं। आज तक ब्यूरो।
2: अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक, आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ मंथन, देशवासियों का जीवन आसान बनाने और आर्थिक दर्द को बढ़ाने पर चर्चा। समाजवादी पार्टी पर मुख्यमंत्री योगी का बड़ा हमला, कहा 2017 से पहले गुंडों के आगे नतमस्तक थी सरकार, राम का नाम लेने पर चलती थी गोलियां, अखिलेश का पलटवार, यूपी में महाजंगल राज। बंगाल सरकार ने मदरसों का शुरू किया सर्वेक्षण, 5 जुलाई तक मांगे रिपोर्ट, नियमों के तहत संचालन और जरूरी दस्तावेजों की होगी जांच।

0: यूपी में भी 2027 के लिए हर पार्टी ने कमर कस ली है। योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं तो अखिलेश यादव भी लगातार सरकार को घेर रहे हैं।
1: अब राम का नाम लेने पर ही प्रतिबंध था, डंडे बरसते थे, गोलियां चलती थी, अयोध्या में भगवान राम का भक्त अयोध्या में नहीं जा सकता था, किस प्रकार की अराजकता थी। अब तो अयोध्या में राम भक्त के अलावा कोई रामद्रोही घुस ही नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। आज तो अयोध्या चमक रही है।
2: 2027 के सियासी समर में बीजेपी हिंदुत्व और राम मंदिर के मुद्दे पर सवार है, जहां अखिलेश यादव पर सीएम योगी आदित्यनाथ के हमले जारी हैं।
1: 2017 के पहले इन दंगाइयों को, इन पेशेवर गुंडों को प्रश्रय देते थे, इनके सामने नतमस्तक होते थे। प्रदेश में कर्फ्यू रहता था।
2: योगी विकास से लेकर डबल इंजन तक की खूबियां गिना रहे हैं तो वहीं पिछली सरकारों की खामियां भी बता रहे हैं।
1: 2015-16 में इस गोंडा में भी दुर्गा पूजा के समय दंगा करने का प्रयास हुआ था, यहां भी दंगे हुए थे। मां दुर्गा की मूर्ति को विसर्जन नहीं करने दिया जाता था, रामलीलाओं के आयोजन में अड़चने डाली जाती थी। पर्व और त्योहार प्रारंभ होने के पहले, उत्सव प्रारंभ होने के पहले उपद्रव शुरू हो जाते थे। उत्सव के रंग में किसी ने भंग करने का काम किया तो फिर वर्तमान तो जाएगा ही जाएगा, भविष्य भी स्वाहा हो जाएगा।
2: उधर अखिलेश को योगी सरकार में जंगल राज नजर आ रहा है। उधर गाजीपुर में कमलेश बिंद के एनकाउंटर पर विपक्ष और सरकार के सहयोगियों के सुर एक जैसे नजर आ रहे हैं। किसी को अपने वोट बैंक की टेंशन सता रही है तो कोई वोट बैंक में सेध मारने की तैयारी में है।
3: इतना बड़ा तो दुर्दांत अपराधी नहीं है कि जिससे आप एनकाउंटर, अब मुख्य आरोपी उसको बनाए भी नहीं गया, मुख्य आरोपी कोई और है, मुख्य आरोपी को तो पकड़ने दूर है, वो छुएंगे नहीं। आज जो साधारण है, जो वोट अभी गाजीपुर हारे हैं, अब गाजीपुर में बिंदुओं की संख्या बहुत अधिक है, जौनपुर में बिंदुओं की संख्या अधिक है, प्रधानमंत्री के चारों तरफ के हम सारी सीटें हार गए हैं।
4: बहुत ही जो घटना हुई है एनकाउंटर की, तो आखिर जब पुलिस पकड़ सकती थी मुजरिम को तो एनकाउंटर क्यों करा गया? सवाल तो ये है, ये अपने आप में पूरी कानून व्यवस्था में प्रश्न चिन्ह उठाने का काम है। भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं चाहते हैं कि प्रशासन और जो प्रशासन है, जो नियम है, जो कानून है, उससे चले।
2: बहरहाल यूपी में चुनावी पिच अब पूरी तरह से तैयार है, जहां हर पार्टी अपने हिसाब से बैटिंग कर रही है। आज तक ब्यूरो।
0: दिल्ली के जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी नीट पेपर लीक के विरोध में उतरे और छात्रों की आत्महत्या को लेकर सवाल खड़े किए तो वहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की।
5: हाथों में संविधान की कॉपी लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपक के आज सुबह अमेरिका से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से उन्होंने जंतर मंतर का रुख किया।
6: सोशल मीडिया पर व्यंग और मीम्स के तौर पर शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी अब दिल्ली के जंतर मंतर आ पहुंचा है। सुबह सुबह अभिजीत दीप के अमेरिका से सीधे आईजीआई एयरपोर्ट पे लैंड किया और उसके बाद जंतर मंतर पहुंचा। पहले भीड़ कम थी, ना मंच था, ना बैनर था, ना कोई ऑडियो सिस्टम, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया भीड़ की संख्या बढ़ती गई, स्टेज भी लगा, मंच भी लगा और हाथ में तिरंगा लिए युवा यहां पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
5: नीट पेपर लीक को लेकर हो रहे इस प्रदर्शन में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई। अभिजीत दीपक के साथ सोनम वांगचुक भी मंच पर नजर आए। अभिजीत ने धर्मेंद्र को इस्तीफे के लिए 5 बजे तक का अल्टीमेटम दिया।
7: मैं धर्मेंद्र प्रधान जी, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ, 5 बच्चों ने सुसाइड कर लिए फिर भी आपने रिजाइन नहीं किया है, आपको शर्म नहीं आती? और कितने बच्चों को सुसाइड करने का वेट करेंगे आप जब तक रिजाइन नहीं करोगे तब तक हमारा मूवमेंट जारी रहेगा। इसके बाद हम ये मूवमेंट को देश भर में लेकर जाएंगे और ये मूवमेंट तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते।
5: अभिजीत ने अपने इस आंदोलन को सफल बताया तो वहीं साफ किया कि सोशल मीडिया से शुरू हुआ ये आंदोलन अब देश भर में नजर आने वाला है।
7: 15 दिन पहले जब कांग्रेस जनता पार्टी का पेज स्टार्ट हुआ था तब लोगों ने कहा था ये तो एक सोशल मीडिया का ट्रेंड है, ये तो एक सोशल मीडिया पर ही लिमिटेड रहकर रह जाएगा। लेकिन आज हमने देख लिया कि ये कोई सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं है, ये एक आंदोलन है जो जिसकी आज शुरुआत हो चुकी।
5: 5 घंटे तक जंतर मंतर में प्रदर्शन के बाद प्रदर्शनकारी लौट गए जहां उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे ना देने पर अगले शनिवार को एक बार फिर जंतर मंतर आने का ऐलान किया है। अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।
0: दिल्ली के जंतर मंतर में एक और जेनजी की सरकार से नाराजगी दिखाई दी गई तो दूसरी तरफ दिल्ली के ही कुछ किलोमीटर की दूरी पर सरकार के समर्थन में युवाओं को एकजुट किया गया।
5: दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में यूथ फॉर विकसित भारत सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े 6,000 से ज्यादा युवा शामिल हुए। वहीं मैथिली ठाकुर, फिल्म स्टार विक्रांत मेस्सी, बोट फाउंडर अमन गुप्ता और गुरिंदर वीर सिंह ने सीएम रेखा गुप्ता और खेल मंत्री मनसुख मांडविया के साथ मंच साझा किया।
8: आज मैं माय भारत यूथ कन्वेंशन में मेरे साथ देखिए कितने सारे लोग हैं। जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
5: एक और जहां विपक्ष युवाओं की नाराजगी और जेएनजी आंदोलन की लगातार बात कर रहा है तो वहीं सरकार ने मंच से ये संदेश देने की कोशिश की कि देश के युवाओं को सरकार पर पूरा भरोसा है।
9: दोस्तों माय भारत, मोदी जी ने देश के युवाओं को अपनी आकांक्षा, अपनी अपेक्षा, अपनी वॉलंटियर क्षमता, अपना आइडियाज को साझा करने के लिए बनाया हुआ प्लेटफॉर्म है।
10: देश का युवा जो विजनरी है, जिसमें साहस है, जो क्रिएटिव है, वो देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करे, अपना भविष्य भी निर्माण करे और देश का भी निर्माण करे, उसके लिए आज ये इवेंट था।
5: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में जोर देने के लिए यूथ फॉर विकसित भारत अभियान को सरकार युवाओं के लिए एक बड़ा कदम बता रही है जिसके जरिए युवाओं का भरोसा जीतने की कोशिश की जा रही है। सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
0: अब बात यूपी के देवरिया की जहां पर बिजली कटौती से लोग परेशान हैं, कई क्षेत्रों में बिजली गुल है। अब बिजली कटी तो आधी रात को बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी पावर हाउस पहुंच गए और बिजली विभाग के अधिकारियों को हड़काया। विधायक ने कहा कि हमारे क्षेत्र की जनता अगर बिजली कटौती की वजह से सो नहीं पा रही है तो बिजली अधिकारी को हम चैन से सोने नहीं देंगे, बिजली अफसरों के घरों की भी लाइट काटेंगे। अब इस दौरान बिजली कटौती की शिकायत के लिए पावर हाउस के सरकारी नंबर पर लगातार लोग फोन कर रहे थे। कई फोन कॉल तो खुद विधायक ने उठाए।
11: कहां से बोल रहे हैं? चिड़ियाठाला से ना? लाइट कब से लाइट नहीं है? कितने बजे से? ठीक है, मैं शलभ मणि त्रिपाठी बोल रहा हूँ, विधायक देवरिया। ठीक है, बिजली घर पे ही बैठे हैं, इन लोगों की लाइट काटने आए हैं। आप लोगों की लाइट नहीं है तो आज हमने तय किया कि बिजली के अधिकारियों की सबकी लाइट काट देंगे। ठीक है ना? देखिए सर, 10-11 बजे से लाइट नहीं है। आप लोगों पर रिपोर्टिंग ही नहीं भाई, कहाँ कहाँ लाइट नहीं है। आप लोग इतने नॉन सीरियस हो चुके हैं कि आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। 10 बजे से लाइट नहीं है इनके मोहल्ले में, गोरखपुर और के पास।
0: अब बात करते हैं फैसल खान और खान सर की, जिस पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।
12: पटना में दो कोचिंग संचालकों की लड़ाई अब फैसल खान यानी खान सर की गिरफ्तारी तक पहुँच चुकी है। फैजल खान के वकील ने साफ किया है कि वो सरेंडर नहीं करेंगे।
13: खबर है ऐसा कोई विचार ही नहीं है सर्वोच्च न्यायालय का। पुलिस तो किसी को अरेस्ट कर सकती है, नॉन अवेलेबल सत्ता है तो किसी को अरेस्ट कर सकती है ना।
12: कल आर्म्स एक्ट के तहत पटना पुलिस ने फैजल खान के खिलाफ FIR दर्ज की थी। कोचिंग के गार्ड्स ने पूछताछ में कहा था कि फैजल खान ने उन्हें फायरिंग के लिए कहा था।
13: के लिए पुलिस कुछ भी लिख दे, अगर ऐसा होता तो खान साहब भेज हुए थे ना, पुलिस को उसी समय अरेस्ट कर लेना था इनको। अगर ऐसा कोई रहता तो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट थाना में ले लेने से और FIR में लिख देने से कोई एविडेंस नहीं होता।
12: उधर फैजल खान की गिरफ्तारी की खबरों के बीच कल रात कोचिंग के बाहर भारी संख्या में छात्र मौजूद थे। तनाव को देखते हुए पुलिस का गश्त जारी रहा। PCR वैन में तैनात पुलिस छात्रों को समझाती नजर आई।
14: मौजूद है और सड़क के दूसरे किनारे एक लाइन से हजारों छात्र जो हैं वो यहां पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं खान सर के, ये कह सकते हैं कि समर्थन में ये जो छात्र हैं वो यहां पे खड़े हैं। तो ये तस्वीर देखिए, ये खान सर के कोचिंग के बाहर का नजारा है।
12: घटना के बाद फैजल खान के छात्रों को भड़काने का वीडियो वायरल हुआ था।
15: इसके ऊपर करने आया है हमारा
16: गाड़ी अभी तक नहीं की है, जबकि सबके सामने ये लेके जा रहा है, मुद्दे से भटकाया जा रहा है। आप इसकी गिरफ्तारी करिए, ये आदमी कौन है और कैसे आता है 20-25 लोगों को उठा के लेके चला जा रहा है, 20-25 लोगों को एक साथ कैसे।
12: वीडियो और मैसेज के बीच जारी तनाव को देखते हुए पटना पुलिस ने छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि दो कोचिंग संस्थानों की प्रतिस्पर्धा में किसी के बहकावे में आना ठीक नहीं है। सूत्रों के माने तो फैजल खान गिरफ्तारी के तलवार के बीच अग्रिम जमानत लेने की तैयारी कर रहे हैं। रोहित सिंह, पटना आज तक।
0: बिहार में राबड़ी के बंगले को लेकर जारी सियासत अब सुरक्षा तक पहुंच गई है। सुरक्षा में कटौती के बाद लालू परिवार ने मौजूद सुरक्षा को भी लेने से इनकार कर दिया है।
2: आवास के बाहर पसरा सन्नाटा और कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं। एक बार तो ये यकीन करना भी मुश्किल है कि ये पटना में पूर्व CM राबड़ी देवी का बंगला है। एक दिन पहले Y+ सिक्योरिटी हटाए जाने के बाद अब लालू राबड़ी ने नाराजगी जताते हुए पूरी सुरक्षा वापस कर दी है।
17: राबड़ी देवी और लालू परिवार को जो सुरक्षा दी जाती है उसको लेकर जो है ये ताजा विवाद जो है वो शुरू हो गया है। और कल से हम देख रहे हैं जब सरकार का एक नया फरमान आया और लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को जो Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई थी उस सुरक्षा को सरकार ने वापस लिया और केवल बिहार पुलिस की सुरक्षा, जो स्पेशल पुलिस होती है, उसकी सुरक्षा प्रदान की। उसके बाद से ही लालू परिवार, राबड़ी देवी जो है वो इसको लेकर काफी बिफर गए। और उसके बाद कल देर रात से हम देख रहे हैं कि 10 सर्कुलर रोड आवास, जो कि राबड़ी देवी और उनका परिवार यहाँ पिछले 20 सालों से रह रहा है, यहाँ कल रात से ही एक भी सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं है।
2: इस बीच तेजस्वी यादव ने इसका विरोध करते हुए अपनी सुरक्षा लौटा दी, जिसे लेकर RJD अब सरकार पर लगातार हमले कर रही है। सुरक्षा कवच में कटौती के बाद दिखावे की सुरक्षा रखने का कोई औचित्य नहीं है। सात खून के आरोपी रहे मुख्यमंत्री की सरकार के द्वारा लालू जी एवं राबड़ी देवी जी की सुरक्षा में कटौती का फैसला लालू जी, राबड़ी देवी जी एवं उनके परिवार को नुकसान, शारीरिक क्षति पहुंचाने की नीयत से ही लिया गया है। अगर लालू जी एवं उनके परिवार का सुरक्षा कवच है और अगर लालू जी, राबड़ी देवी जी और परिवार के किसी भी सदस्य को एक खरोच भी आई तो अंजाम क्या होगा, इसका अंदाजा शायद बिगड़ैल सम्राट चौधरी और उनकी सरकार को नहीं है।
18: सबको वापस कर दिया, सबको बाहर निकाल दिया, क्योंकि कल ही राज्य की सरकार ने अपने आका के निर्देश पर आदरणीय लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी सहित पूरे लालू परिवार की सुरक्षा में व्यापक और घोर कटौती कर दी। शासन अपमानित करना चाहती है लालू प्रसाद जी और उनके परिवार को, उनके परिजनों को।
19: ये सुरक्षा उनको क्यों दिया गया था? कभी मुख्यमंत्री रहे, कभी केंद्रीय मंत्री रहे, जब ये संवैधानिक व्यवस्था, ये नहीं है कि हथुआ मामा का बेटा है तो सब दिन वही रहेगा। जनता जिसको चुन करके देती है सत्ता में और जो कानून कहता है वो सुरक्षा मिलता।
2: समीक्षा में तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं किया गया था, लेकिन लालू और राबड़ी की सुरक्षा घटाए जाने के विरोध में अब तेजस्वी यादव ने ये बड़ा फैसला लिया है। वहीं लालू राबड़ी की जेट प्लस सिक्योरिटी वापस ली गई थी, लेकिन नई सुरक्षा व्यवस्था के तहत दोनों नेताओं के लिए बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की सुरक्षा का इंतजाम किया गया था, जिसके तहत 2 से 8 जवान सुरक्षा में तैनात रहने का निर्देश था। इसके साथ बुलेट प्रूफ कार जिला बल से स्क्वाड की नियुक्ति का निर्देश था।
17: ये बिहार पुलिस की जो सुरक्षा जो नई व्यवस्था उनको प्रदान की गई थी, उस सुरक्षा को भी यहाँ लेने से देखिए लालू परिवार ने जो है वो मना कर दिया है। ये देख सकते हैं यहाँ बिहार पुलिस के जो विशेष दस्ता है वो जो नई सुरक्षा व्यवस्था के तहत इनको यहाँ पर भेजा गया है, इन तमाम लोगों को भी जो है 10 सर्कुलर रोड आवास में जाने नहीं दिया गया है, इनको बाहर कर दिया गया है परिवार के द्वारा। और जाहिर सी बात है ये तमाम जो बिहार पुलिस के यहाँ पर कर्मी हैं वो लोग बाहर ही खड़े हैं, राबड़ी देवी के आवास के बाहर ही इसी तरीके से खड़े हैं। अब इन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है कि करना है तो क्या करना है।
2: राबड़ी देवी के बंगले को लेकर सियासत चल ही रही थी, जिस पर अब सुरक्षा को लेकर विवाद की एंट्री हो चुकी है। रोहित सिंह, पटना आज तक।
0: यूपी में योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन भी जारी है, जिसकी गूंज अब संभल में सुनाई दी, जहां सरकारी जमीन पर बनी मुस्तफा कादरी मस्जिद के खिलाफ एक्शन लिया गया और इस अवैध मस्जिद को बुलडोजर से ढहा दिया गया।
20: संभल के नखासा थाना इलाके के कसेरुआ गांव में स्थित मुस्तफा कादरी मस्जिद को ध्वस्त करने की कार्रवाई इस वक्त शुरू हो चुकी है। और आप मेरे पीछे की तस्वीरों में आप जो देख सकते हैं कि किस तरीके से बुलडोजर एक्शन के जरिए जो कि सरकारी जमीन पर बनी हुई मस्जिद है उसको यहां पर ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई की जा रही है। दो दो बुलडोजर इस पूरी मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए फिलहाल यहां पर जो है लगाए गए हैं। पूरा पुलिस फोर्स गाँव में तैनात किया गया है। और ये देखा जाए तो ये 120 वर्ग मीटर जगह में बनी हुई ये पूरी मस्जिद थी, जिसको हटाने के लिए जनवरी महीने में जो है लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर यह पूरी कार्रवाई शुरू की गई थी। और उसके बाद इस मस्जिद के वक्फ बोर्ड में भी रजिस्टर्ड होने का मामला सामने आया था, जिसके बाद इस मस्जिद कमेटी से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ FIR कराई गई। लेकिन आज अब इस पूरे मस्जिद पर धारा 67 के तहत जो कार्रवाई यहां पर जो की जा रही है, और आप यहां जो देख सकते हैं देखिए किस तरीके से जो पूरा बुलडोजर है वो इस पूरे मस्जिद के स्ट्रक्चर को ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई कर रहा है। और एहतियातन अगर जो देखा जाए तो देखिए छतों पर आपको जो पुलिसकर्मी आपको जो तैनात नजर आएंगे। यहां अगर आपको जो देखा जाए तो देखिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो फिलहाल आपको जो है ये वो पुलिसकर्मियों की आपको जो है लगातार छतों पर जो तैनाती दिखाई देगी। जो है सामने देखिए तस्वीरों में देखेंगे तो देखिए तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह आपको यहाँ इस पूरे इलाके में लगातार इस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए दिखाई देंगे। और इसी तरह से देखिए आसपास का जो पूरा इलाका है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया। सामने आप देखेंगे तो देखिए बुलडोजर के ठीक बराबर में देखिए भारी संख्या में आपको पुलिस फोर्स जो है यहाँ पर जो तैनात जो नजर आएगा, जो कि आपको तस्वीरों में नजर आएगा। और इसी तरह से जो पूरे गांव का अलग अलग इलाके हैं वहां पर इस तरीके से पूरे पुलिस फोर्स को तैनात करके पूरे गाँव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर विशेष तौर पर निगरानी की जा रही है, जिससे कि कोई भड़काऊ पोस्ट जो है वो ना डाली जाए सोशल मीडिया पर। वहीं इसी के साथ जो आसपास के इलाके हैं, आसपास के जो गांव हैं, वहां से भी इस पूरे गांव की तरफ आने वाले रास्तों पर पुलिस को फोर्स को जो तैनात किया गया है। और
0: बक्सर का इटाढ़ी गुमटी पुल क्षतिग्रस्त हो गया, मात्र 4 दिन हुए थे पुल के उद्घाटन को और अब पुल बंद कर दिया गया है। 26 करोड़ 40 लाख की लागत से बने हुए रोड ओवरब्रिज के ऊपरी परत धंस गए। लगभग 11 साल के इंतजार के बाद आम जनता के लिए कुछ ही दिन पहले उद्घाटन किया गया। लोगों ने राहत की सांस ली, कुछ सहूलियत होगी सोचा, लेकिन चौथे दिन ही पुल के पिलर नंबर 5 के ऊपरी परत ही धंस गई।
21: आप सोच सकते हैं कि जिस चीज को 11 साल से इंतजार कर रहे हैं और इंतजार के बाद अगर मिलता है तो 4 दिनों में ध्वस्त हो जाता है, तो सोचिए नहीं, देखिए कैसे, क्योंकि ये जो पुल है करीब 4 दिन पहले इसको खोला गया था चलने के लिए, लेकिन 4 दिनों में ये पुल टूट गया, यानी कहिए कि ध्वस्त हो गया और इसको बंद कर दिया गया है। ये दरअसल बक्सर के इटाढ़ी गुमटी पर बना 26 करोड़ 40 लाख का वो नया पुल है जिसको लेकर कई बार आंदोलन हुआ, कई बार लोग धरने पर बैठे, उसके बाद ये पुल मिला तो ऐसे हालात में मिला कि 4 दिन बाद ये इस परिस्थिति में आ गया कि लोग अब घेर कर देख रहे हैं कि भाई ये क्या हुआ है। ये एक दर्दनाक घटना तो नहीं कही जा सकती है, शर्मनाक घटना कही जा सकती है। और शर्मनाक घटना के कौन कौन विलेन है ये तो तय जनता को करना है। ऐसे में जनता सामने खड़ी है, हम उससे भी जानने का प्रयास करेंगे कि भाई ये जो घटना घटी है आपको

0: इससे पहले भी हुआ है कई बार, ये तो देखने वाली चीज है, ये तो सामने है जो प्रत्यक्ष में आपको दिख रहा है।
1: बस वही है जो देख रहे हैं, टूट गया है पुल
2: चार दिन पहले
1: बना था, आज टूट गया, फिर ट्रक चढ़ी है। वो तो अच्छी बात है, किसी का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है।
2: सर आपको लगता है कि मतलब ये पुल लगता था कि चलेगा नहीं, ये तो समझ में आ रहा होगा, तो इतना जल्दी फंसेगा ये तो विश्वास नहीं होगा?
3: ये विश्वास नहीं था इतना जल्दी फंस जाएगा।
2: देखिए लोगों को लगातार सूचनाएं टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ये बहुत मिलती रहेगी है कि पुल भस रहा है और पुल भसेगा भी, लेकिन चार दिनों में अगर पुल भसने लगे तो बिहार की उस सरकार को क्या कहेंगे जो कई परिवर्तन के बाद इस समय भी डबल इंजन की सरकार चल रही है, विकास के कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे विकास का क्या मतलब है जो चार दिन तक टिके नहीं। बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे।
4: आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने वाले वैभव सूर्यवंशी की टीम इंडिया में एंट्री हो गई। धुआंधार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड, इंग्लैंड और एशियन गेम्स की T20 इंटरनेशनल टीम में शामिल कर लिया गया है।
5: नाम वैभव सूर्यवंशी, काम छक्के बरसाना, पहचान तूफान लाना, अरमान अब देश को जिताने। आईपीएल की इन तस्वीरों को जिसने देखा देखता ही रह गया, खुद वैभव के साथियों ने, दुनिया भर के दिग्गजों ने और विरोधी गेंदबाजों के पास तो देखते रहने की मजबूरी के अलावा कोई चारा ही नहीं था। ना उम्र की सीमा, ना दुनिया के किसी गेंदबाज का खौफ, वैभव का बल्ला जब बरसता है तो फिर इसके कोई मायने नहीं होते कि सामने पैट कमिंस जैसा गेंदबाज है, जसप्रीत बुमराह है या फिर कोई और। और ये तूफान आईपीएल के इस सीजन में जब आया तो मैच दर मैच उनका बल्ला रिकॉर्ड्स की इबारत लिखता चला गया। इस सीजन में तो हाल ये था कि जब उनकी पारी खत्म होती थी तो कईयों के सपने टूट चुके होते थे और कई गेंदबाजों के तो आईपीएल करियर के आंकड़े बिगड़ चुके होते थे। उनके बल्ले ने इतना हल्ला मचाया कि आखिरकार सेलेक्टर्स को उन्हें सीनियर टीम इंडिया का हिस्सा बनाना ही पड़ा। वैभव 15 साल की उम्र में टीम इंडिया का हिस्सा बनने वाले सबसे युवा भारतीय हैं। उन्होंने आईपीएल में सबसे तेज 1000 रन बनाए हैं। आईपीएल में उन्होंने एक सीजन में क्रिस गेल के 59 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़कर 72 छक्के जमाए हैं। 14 साल की उम्र में आईपीएल में शतक जमाने वाले वो सबसे युवा बल्लेबाज हैं। वो अंडर-19 वर्ल्ड कप चैंपियन है। आईपीएल के 23 मैच में वो 96 छक्के जमा चुके हैं। वैभव का असली इम्तिहान अब होने वाला है, लेकिन उनके लिए आपदा नहीं ये अवसर है, क्योंकि खौफ का भूत वो बचपन में ही भगा चुके हैं। दुनिया भर के गेंदबाजों को वो आईपीएल में निपटा चुके हैं। इतना ही नहीं, दुनिया की कई पिचों पर खेलने का उनका अनुभव धीरे धीरे उनकी बल्लेबाजी को और मैच्योर बना रहा है। नए हिंदुस्तान के नए तेवरों वाली इस टीम को अपने खजाने में ऐसा ही हीरा चाहिए। आज तक ब्यूरो।
4: अब बात दुनिया की करते, जहां खाड़ी युद्ध में तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत की कोशिशों के बीच धमाके की गूंज ने युद्ध विराम की उम्मीदों को तोड़ा है।

पश्चिम एशिया से आई इन तस्वीरों ने फिर से दुनिया को पसोपेश में डाल दिया है। इस मंजर ने डरा दिया है कि खाड़ी में फिर से महायुद्ध 2.0 की लपटें सुलगने लगी हैं। इस माहौल ने बता दिया है कि किसी भी वक्त अमेरिका और ईरान में फिर से भीषण जंग छिड़ने वाली है। दहशत इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि ईरान ने कुवैत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया है। कुवैत में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। कुवैत का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान से आ रहे ड्रोन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहा है। ईरान ने बहरीन पर भी मिसाइल दागी है। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को रोकने के लिए बहरीन का भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। हम आपको बता दें

0: कि बहरीन में अमेरिकी सेंट्रल कमांड का मुख्यालय भी है। अपने सहयोगी देशों पर ईरान के हमले से अमेरिका बौखला चुका है। पलटवार में अमेरिका ने भी ईरान के कई ठिकानों पर धावा बोल दिया। ईरान के सर्विलांस रडार सेंटर पर अमेरिका ने हमला किया है। ईरान के रडार सेंटर पर हमले का वीडियो भी अमेरिका ने जारी कर दिया। अमेरिका का कहना है कि पहले ईरान ने हमला किया था, जिसके जवाब में उसके रडार सर्विलांस टावर को उड़ा दिया गया। अमेरिकी सेना ने समुद्री हमलों से बचाव के लिए गोरुक और केशम द्वीप पर स्थित ईरानी तटीय निगरानी रडार को ध्वस्त किया। अमेरिका ने दावा किया कि 6 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया, जबकि 7वीं मिसाइल टारगेट तक पहुंची ही नहीं। मतलब साफ है कि जो सीज फायर फिलहाल अस्थाई है, वो किसी भी वक्त धराशायी हो सकता है, क्योंकि ईरान और अमेरिका में झड़प शुरू हो चुकी है। यह चिंगारी किसी भी वक्त भीषण युद्ध का शक्ल ले सकती है। आज तक ब्यूरो।
1: और अब आपको लेकर चलते हैं युद्ध के उस मोर्चे की ओर, जहां पिछले 4.5 साल से रूस और यूक्रेन में जंग छिड़ी है। अब बड़ी खबर यह है कि रूसी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि शांति वार्ता के लिए युद्ध रोकने की जरूरत नहीं। पुतिन का यह बयान तब आया है जब जेलेंस्की ने खुला पत्र लेकर रूसी राष्ट्रपति से मिलने की इच्छा जाहिर की।

0: रूस ने यूक्रेनी शहर जैपोरेजिया पर भीषण अटैक किया, वो भी तब जब शांति वार्ता की कोशिशें चल रही हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है कि शांति वार्ता के लिए सीज फायर की कोई जरूरत नहीं है, मतलब बातचीत करने के लिए जंग रोकने की जरूरत नहीं। रूस के ताजा हमलों में जैपोरेजिया के रिहायशी इलाकों को बड़ा नुकसान हुआ, जिसमें एक शख्स की मौत हुई है, 16 घायल हैं, वाहनों और नागरिक बुनियादी ढांचों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इस बीच पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में पत्रकारों को संबोधित करते हुए साफ कर दिया कि बातचीत के लिए सीज फायर की जरूरत ही नहीं है।
1: नए населенные пункты ставятся под контроль российских вооруженных сил. Но за последнее время, повторяю, почти 2500 квадратных километров.
0: इससे पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति को खुला पत्र लिखा है और सीधे वार्ता का प्रस्ताव रखा है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी और रूसी नेताओं के बीच बैठक की पहल को सराहा है और इसे अच्छी पहल बताया।
2: I don't know. I'm glad that they're maybe talking about meeting. I think we had a lot to do with it. I know exactly what you're doing, but I think it would be great if they met. They should get it done.
0: आर पार की जंग और शांति वार्ता की कोशिशों के बीच दोनों देशों की तरफ से अच्छी पहल हुई है। रूस यूक्रेन ने एक दूसरे के 185 कैदियों की अदला बदली की है, जिसे शांति की शुरुआत के लिए पहला बड़ा कदम बताया जा सकता है। हालांकि कैदियों की अदला बदली पहले भी हो चुकी है, लेकिन 4 साल से भी ज्यादा समय से जारी जंग अभी तक थमी नहीं। आज तक ब्यूरो।
3: अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक, आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ मंथन, देशवासियों का जीवन आसान बनाने और आर्थिक दर्द को बढ़ाने पर चर्चा। समाजवादी पार्टी पर मुख्यमंत्री योगी का बड़ा हमला, कहा 2017 से पहले गुंडों के आगे नतमस्तक थी सरकार, राम का नाम लेने पर चलती थी गोलियां, अखिलेश का पलटवार, यूपी में महाजंगल राज। बंगाल सरकार ने मदरसों का शुरू किया सर्वेक्षण, 5 जुलाई तक मांगे रिपोर्ट, नियमों के तहत संचालन और जरूरी दस्तावेजों की होगी जांच।

0: यूपी में भी 2027 के लिए हर पार्टी ने कमर कस ली है। योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं तो अखिलेश यादव भी लगातार सरकार को घेर रहे हैं।
1: अब राम का नाम लेने पर ही प्रतिबंध था, डंडे बरसते थे, गोलियां चलती थी। अयोध्या में भगवान राम का भक्त अयोध्या में नहीं जा सकता था। किस प्रकार की अराजकता थी। अब तो अयोध्या में राम भक्त के अलावा कोई रामद्रोही घुस ही नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। आज तो अयोध्या चमक रही है।
2: 2027 के सियासी समर में बीजेपी हिंदुत्व और राम मंदिर के मुद्दे पर सवार है, जहां अखिलेश यादव पर सीएम योगी आदित्यनाथ के हमले जारी हैं।
1: 2017 के पहले इन दंगाइयों को, इन पेशेवर गुंडों को प्रश्रय देते थे, इनके सामने नतमस्तक होते थे। प्रदेश में कर्फ्यू रहता था।
2: योगी विकास से लेकर डबल इंजन तक की खूबियां गिना रहे हैं तो वहीं पिछली सरकारों की खामियां भी बता रहे हैं।
1: 2015-16 में इस गोंडा में भी दुर्गा पूजा के समय दंगा करने का प्रयास हुआ था, यहां भी दंगे हुए थे। मां दुर्गा की मूर्ति को विसर्जन नहीं करने दिया जाता था, रामलीलाओं के आयोजन में अड़चने डाली जाती थी। पर्व और त्योहार प्रारंभ होने के पहले, उत्सव प्रारंभ होने के पहले उपद्रव शुरू हो जाते थे। उत्सव के रंग में किसी ने भंग करने का काम किया तो फिर वर्तमान तो जाएगा ही जाएगा, भविष्य भी स्वाहा हो जाएगा।
2: उधर अखिलेश को योगी सरकार में जंगल राज नजर आ रहा है। उधर गाजीपुर में कमलेश बिंद के एनकाउंटर पर विपक्ष और सरकार के सहयोगियों के सुर एक जैसे नजर आ रहे हैं। किसी को अपने वोट बैंक की टेंशन सता रही है तो कोई वोट बैंक में सेध मारने की तैयारी में है।
3: इतना बड़ा तो दुर्दांत अपराधी नहीं है कि जिससे आप एनकाउंटर, अब मुख्य आरोपी उसको बनाया भी नहीं गया, मुख्य आरोपी कोई और है। मुख्य आरोपी को तो पकड़ने दूर है, उसको छुएंगे नहीं। आज जो साधारण है, जो वोट अभी गाजीपुर हारे हैं, अब गाजीपुर में बिंदुओं की संख्या बहुत अधिक है, जौनपुर में बिंदुओं की संख्या अधिक है, प्रधानमंत्री के चारों तरफ के हम सारी सीटें हार गए हैं।
4: बहुत ही जो घटना हुई है एनकाउंटर की, तो आखिर जब पुलिस पकड़ सकती थी मुजरिम को तो एनकाउंटर क्यों करा गया, सवाल तो ये है। ये अपने आप में पूरी कानून व्यवस्था में प्रश्न चिन्ह उठाने का काम है। भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं चाहते हैं कि प्रशासन और जो प्रशासन है, जो नियम है, जो कानून है, उससे चले।
2: बहरहाल यूपी में चुनावी पिच पूरी तरह से तैयार है, जहां हर पार्टी अपने हिसाब से बैटिंग कर रही है। आज तक ब्यूरो।
0: दिल्ली के जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी नीट पेपर लीक के विरोध में उतरी और छात्रों की आत्महत्या को लेकर सवाल खड़े किए तो वहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की।
5: हाथों में संविधान की कॉपी लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके आज सुबह अमेरिका से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से उन्होंने जंतर मंतर का रुख किया।
6: सोशल मीडिया पर व्यंग और मीम्स के तौर पर शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी अब दिल्ली के जंतर मंतर आ पहुंचा है। सुबह सुबह अभिजीत दीप के अमेरिका से सीधे आईजीआई एयरपोर्ट पे लैंड किया और उसके बाद जंतर मंतर पहुंचा। पहले भीड़ कम थी, ना मंच था, ना बैनर था, ना कोई ऑडियो सिस्टम, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया भीड़ की संख्या बढ़ती गई, स्टेज भी लगा, मंच भी लगा और हाथ में तिरंगा लिए युवा यहां पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
5: नीट पेपर लीक को लेकर हो रहे इस प्रदर्शन में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई। अभिजीत दीपके के साथ सोनम वांगचुक भी मंच पर नजर आए। अभिजीत ने धर्मेंद्र को इस्तीफे के लिए 5 बजे तक का अल्टीमेटम दिया।
7: मैं धर्मेंद्र प्रधान जी, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनसे पूछना चाहता हूँ, 5 बच्चों ने सुसाइड कर लिए फिर भी आपने रिजाइन नहीं किया है, आपको शर्म नहीं आती? और कितने बच्चों का सुसाइड करने का वेट करेंगे आप जब तक रिजाइन नहीं करोगे तब तक हमारा मूवमेंट जारी रहेगा। इसके बाद हम ये मूवमेंट को देश भर में लेकर जाएंगे और ये मूवमेंट तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते।
5: अभिजीत ने अपने इस आंदोलन को सफल बताया तो वहीं साफ किया कि सोशल मीडिया से शुरू हुआ ये आंदोलन अब देश भर में नजर आने वाला है।
7: 15 दिन पहले जब कांग्रेस जनता पार्टी का पेज स्टार्ट हुआ था तब लोगों ने कहा था ये तो एक सोशल मीडिया का ट्रेंड है, ये तो एक सोशल मीडिया पर ही लिमिटेड रहकर रह जाएगा। लेकिन आज हमने देख लिया कि ये कोई सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं है, ये एक आंदोलन है जो जिसकी आज शुरुआत हो चुकी।
5: 5 घंटे तक जंतर मंतर में प्रदर्शन के बाद प्रदर्शनकारी लौट गए जहां उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे ना देने पर अगले शनिवार को एक बार फिर जंतर मंतर आने का ऐलान किया है। अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।
0: दिल्ली के जंतर मंतर में एक और जेनजी की सरकार से नाराजगी दिखाई दी गई तो दूसरी तरफ दिल्ली के ही कुछ किलोमीटर की दूरी पर सरकार के समर्थन में युवाओं को एकजुट किया गया।
5: दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में यूथ फॉर विकसित भारत सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े 6,000 से ज्यादा युवा शामिल हुए। वहीं मैथिली ठाकुर, फिल्म स्टार विक्रांत मेस्सी, बोट फाउंडर अमन गुप्ता और गुरिंदर वीर सिंह ने सीएम रेखा गुप्ता और खेल मंत्री मनसुख मांडविया के साथ मंच साझा किया।
8: आज मैं माय भारत यूथ कन्वेंशन में मेरे साथ ही कितने सारे लोग हैं। एक बार जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
5: एक और जहां विपक्ष युवाओं की नाराजगी और जेन जी आंदोलन की लगातार बात कर रहा है तो वहीं सरकार ने मंच से ये संदेश देने की कोशिश की कि देश के युवाओं को सरकार पर पूरा भरोसा है।
9: दोस्तों माय भारत, मोदी जी ने देश के युवाओं को अपनी आकांक्षा, अपनी अपेक्षा, अपनी वॉलंटियर क्षमता, अपना आइडियाज उस साझा करने के लिए बनाया हुआ प्लेटफॉर्म है।
10: देश का युवा जो विजनरी है, जिसमें साहस है, जो क्रिएटिव है, वो देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करे, अपना भविष्य भी निर्माण करे और देश का भी निर्माण करे, उसके लिए आज ये इवेंट था।
5: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में जोर देने के लिए यूथ फॉर विकसित भारत अभियान को सरकार युवाओं के लिए एक बड़ा कदम बता रही है जिसके जरिए युवाओं का भरोसा जीतने की कोशिश की जा रही है। सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
0: अब बात यूपी के देवरिया के जहां पर बिजली कटौती से लोग परेशान हैं, कई क्षेत्रों में बिजली गुल है। अब बिजली कटी तो आधी रात को बीजेपी विधायक शलभमणि त्रिपाठी पावर हाउस पहुंच गए और बिजली विभाग के अधिकारियों को हड़काया। विधायक ने कहा कि हमारे क्षेत्र की जनता अगर बिजली कटौती की वजह से सो नहीं पा रही है तो बिजली अधिकारी को हम चैन से सोने नहीं देंगे, बिजली अफसरों के घरों की भी लाइट काटेंगे। अब इस दौरान बिजली कटौती की शिकायत के लिए पावर हाउस के सरकारी नंबर पर लगातार लोग फोन कर रहे थे, कई फोन कॉल तो खुद विधायक ने उठाए।
11: तो आज हमने तय किया कि बिजली के अधिकारियों की, कहां से बोल रहे हैं आप? श्री अठाला से ना? लाइट कब से लाइट नहीं है, कितने बजे से?
12: 11 बजे।
11: ठीक है, मैं शलभमणि त्रिपाठी बोल रहा हूँ, विधायक देवरिया। ठीक है, बिजली घर पे ही बैठे हैं, इन लोगों की लाइट काटने आए हैं। आप लोगों की लाइट नहीं है तो आज हमने तय किया कि बिजली के अधिकारियों की सबकी लाइट काट देंगे। ठीक है ना? देखिए सर, 10-11 बजे से लाइट नहीं है, आप लोगों पर रिपोर्टिंग ही नहीं भाई, कहाँ कहाँ लाइट नहीं है। आप लोग इतने नॉन सीरियस हो चुके हैं कि आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। 10 बजे से लाइट नहीं है इनके मोहल्ले में, गोरखपुर और के पास।
0: अब बात करते हैं फैसल खान और खान सर की, जिस पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।
13: पटना में दो कोचिंग संचालकों की लड़ाई अब फैजल खान यानी खान सर की गिरफ्तारी तक पहुंच चुकी है। फैजल खान के वकील ने साफ किया है कि वो सरेंडर नहीं करेंगे।
14: खबर है ऐसा कोई
12: विचार ही नहीं है सरेंडर करने का। पुलिस तो किसी को अरेस्ट कर सकती है, ननबेलाबुद सत्तन है तो किसी को अरेस्ट कर सकती है ना।
13: कल आर्म्स एक्ट के तहत पटना पुलिस ने फैजल खान के खिलाफ FIR दर्ज की थी। कोचिंग के गार्ड्स ने पूछताछ में कहा था कि फैजल खान ने उन्हें फायरिंग के लिए कहा था।
12: के लिए पुलिस कुछ भी लिख दे, अगर ऐसा होता तो खान साहब भेज हुए थे ना, पुलिस को उसी समय अरेस्ट कर लेना था इनको। अगर ऐसा कोई रहता तो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट थाना में ले लेने से और FIR में लिख देने से कोई एविडेंस नहीं होता।
13: उधर फैजल खान की गिरफ्तारी की खबरों के बीच कल रात कोचिंग के बाहर भारी संख्या में छात्र मौजूद थे। तनाव को देखते हुए पुलिस का गश्त जारी रहा। PCR वैन में तैनात पुलिस छात्रों को समझाती नजर आई।
14: मौजूद हैं और सड़क के दूसरे किनारे एक लाइन से हजारों छात्र जो हैं वो यहां पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं खान सर के, ये कह सकते हैं कि समर्थन में ये जो छात्र हैं वो यहां पे खड़े हैं। पे तस्वीर देखिए, ये खान सर के कोचिंग के बाहर का नजारा है।
13: घटना के बाद फैजल खान के छात्रों को भड़काने का वीडियो वायरल हुआ था।
15: किसके ऊपर करने आया है,
16: हमारा गाड़ी अभी तक नहीं की जबकि सबके सामने ये लेके जा रहा है, मुद्दे से भटकाया जा रहा है। आप इसकी गिरफ्तारी करिए, ये आदमी कौन है और कैसे आता है 20-25 लोगों को उठा के लेके चला जा रहा है, 20-25 लोगों को एक साथ कैसे।
13: वीडियो और मैसेज के बीच जारी तनाव को देखते हुए पटना पुलिस ने छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि दो कोचिंग संस्थानों की प्रतिस्पर्धा में किसी के बहकावे में आना ठीक नहीं है। सूत्रों के माने तो फैजल खान गिरफ्तारी के तलवार के बीच अग्रिम जमानत लेने की तैयारी कर रहे हैं। रोहित सिंह, पटना आज तक।
0: बिहार में राबड़ी के बंगले को लेकर जारी सियासत अब सुरक्षा तक पहुंच गई है। सुरक्षा में कटौती के बाद लालू परिवार ने मौजूद सुरक्षा को भी लेने से इनकार कर दिया है।
2: आवास के बाहर पसरा सन्नाटा और कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं। एक बार तो ये यकीन करना भी मुश्किल है कि ये पटना में पूर्व CM राबड़ी देवी का बंगला है। एक दिन पहले Y+ सिक्योरिटी हटाए जाने के बाद अब लालू राबड़ी ने नाराजगी जताते हुए पूरी सुरक्षा वापस कर दी है।
17: राबड़ी देवी और लालू परिवार को जो सुरक्षा दी जाती है उसको लेकर जो है ये ताज़ा विवाद जो है वो शुरू हो गया है। और कल से हम देख रहे हैं जब सरकार का एक नया फरमान आया और लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को जो Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई थी उस सुरक्षा को सरकार ने वापस लिया और केवल बिहार पुलिस की सुरक्षा, जो स्पेशल पुलिस होती है, उसकी सुरक्षा प्रदान की। उसके बाद से ही लालू परिवार, राबड़ी देवी जो है वो इसको लेकर काफी बिफर गए। और उसके बाद कल देर रात से हम देख रहे हैं कि 10 सर्कुलर रोड आवास, जो कि राबड़ी देवी और उनका परिवार यहाँ पिछले 20 सालों से रह रहा है, यहाँ कल रात से ही एक भी सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं है।
2: इस बीच तेजस्वी यादव ने इसका विरोध करते हुए अपनी सुरक्षा लौटा दी, जिसे लेकर RJD अब सरकार पर लगातार हमले कर रही है। सुरक्षा कवच में कटौती के बाद दिखावे की सुरक्षा रखने का कोई औचित्य नहीं है। सात खून के आरोपी रहे मुख्यमंत्री की सरकार के द्वारा लालू जी एवं राबड़ी देवी जी की सुरक्षा में कटौती का फैसला लालू जी, राबड़ी देवी जी एवं उनके परिवार को नुकसान, शारीरिक क्षति पहुंचाने की नीयत से ही लिया गया है। अगर लालू जी एवं उनके परिवार का सुरक्षा कवच है और अगर लालू जी, राबड़ी देवी जी और परिवार के किसी भी सदस्य को एक खरोच भी आई तो अंजाम क्या होगा, इसका अंदाजा शायद बिगड़ैल सम्राट चौधरी और उनकी सरकार को नहीं है।
18: सबको वापस कर दिया, सबको बाहर निकाल दिया, क्योंकि कल ही राज्य की सरकार ने अपने आका के निर्देश पर आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी सहित पूरे लालू परिवार की सुरक्षा में व्यापक और घोर कटौती कर दी। शासन अपमानित करना चाहती है लालू प्रसाद जी और उनके परिवार को, उनके परिजनों को।
19: ये सुरक्षा उनको क्यों दिया गया था? कभी मुख्यमंत्री रहे, कभी केंद्रीय मंत्री रहे, जब ये संवैधानिक व्यवस्था, ये नहीं है कि हथुआ मामा का बेटा है तो सब दिन वही रहेगा। जनता जिसको चुन करके देती है सत्ता में और जो कानून कहता है वो सुरक्षा मिलता।
2: समीक्षा में तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं किया गया था, लेकिन लालू और राबड़ी की सुरक्षा घटाए जाने के विरोध में अब तेजस्वी यादव ने ये बड़ा फैसला लिया है। वहीं लालू राबड़ी की जेड प्लस सिक्योरिटी वापस ली गई थी, लेकिन नई सुरक्षा व्यवस्था के तहत दोनों नेताओं के लिए बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की सुरक्षा का इंतजाम किया गया था, जिसके तहत 2 से 8 जवान सुरक्षा में तैनात रहने का निर्देश था। इसके साथ बुलेट प्रूफ कार जिला बल से स्क्वाड की नियुक्ति का निर्देश था।
17: ये बिहार पुलिस की जो सुरक्षा जो नई व्यवस्था उनको प्रदान की गई थी, उस सुरक्षा को भी यहाँ लेने से देखिए लालू परिवार ने जो है वो मना कर दिया है। ये देख सकते हैं यहाँ बिहार पुलिस के जो विशेष दस्ता है वो जो नई सुरक्षा व्यवस्था के तहत इनको यहाँ पर भेजा गया है। इन तमाम लोगों को भी जो है 10 सर्कुलर रोड आवास में जाने नहीं दिया गया है, इनको बाहर कर दिया गया है परिवार के द्वारा। और जाहिर सी बात है ये तमाम जो बिहार पुलिस के यहाँ पर कर्मी हैं वो लोग बाहर ही खड़े हैं, राबड़ी देवी के आवास के बाहर ही इसी तरीके से खड़े हैं। अब इन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है कि करना है तो क्या करना है।
2: राबड़ी देवी के बंगले को लेकर सियासत चल ही रही थी, जिस पर अब सुरक्षा को लेकर विवाद की एंट्री हो चुकी है। रोहित सिंह, पटना आज तक।
0: यूपी में योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन भी जारी है, जिसकी गूंज अब संभल में सुनाई दी, जहां सरकारी जमीन पर बनी मुस्तफा कादरी मस्जिद के खिलाफ एक्शन लिया गया और इस समय मस्जिद को बुलडोजर से ढहा दिया गया।
15: संभल के नखासा थाना इलाके के कसेरुआ गांव में स्थित मुस्तफा कादरी मस्जिद को ध्वस्त करने की कार्रवाई इस वक्त शुरू हो चुकी है। और आप मेरे पीछे की तस्वीरों में आप जो देख सकते हैं कि किस तरीके से बुलडोजर एक्शन के जरिए जो कि सरकारी जमीन पर बनी हुई मस्जिद है उसको यहां पर ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई की जा रही है। 2-2 बुलडोजर इस पूरी मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए फिलहाल यहाँ पर जो है लगाए गए हैं। पूरा पुलिस फोर्स गाँव में तैनात किया गया है। और ये देखा जाए तो ये 120 वर्ग मीटर जगह में बनी हुई ये पूरी मस्जिद थी, जिसको हटाने के लिए जनवरी महीने में जो है लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर यह पूरी कार्रवाई शुरू की गई थी। और उसके बाद इस मस्जिद के वक्फ बोर्ड में भी रजिस्टर्ड होने का मामला सामने आया था, जिसके बाद इस मस्जिद कमेटी से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ FIR कराई गई। लेकिन आज अब इस पूरे मस्जिद पर धारा 67 के तहत जो कार्रवाई यहां पर जो की जा रही है, और आप यहां जो देख सकते देखिए किस तरीके से जो पूरा बुलडोजर है वो इस पूरे मस्जिद के स्ट्रक्चर को ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई कर रहा है। और एहतियातन अगर जो देखा जाए तो देखिए छतों पर आपको जो पुलिसकर्मी आपको जो तैनात नजर आएंगे, यहां अगर आपको जो देखा जाए तो देखिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो फिलहाल आपको जो है ये वो पुलिसकर्मियों की आपको जो है लगातार छतों पर जो तैनाती दिखाई देगी। जो है सामने देखिए तस्वीरों में देखेंगे तो देखिए तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह आपको यहाँ इस पूरे इलाके में लगातार इस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए दिखाई देंगे। और इसी तरह से देखिए आसपास का जो पूरा इलाका है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया। सामने आप देखेंगे तो देखिए बुलडोजर के ठीक बराबर में देखिए भारी संख्या में आपको पुलिस फोर्स जो है यहाँ पर जो तैनात जो नजर आएगा, जो कि आपको तस्वीरों में नजर आएगा। और इसी तरह से जो पूरे गांव का अलग अलग इलाके हैं वहां पर इस तरीके से पूरे पुलिस फोर्स को तैनात करके पूरे गाँव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर विशेष तौर पर निगरानी की जा रही है, जिससे कि कोई भड़काऊ पोस्ट जो है वो ना डाली जाए सोशल मीडिया पर। वहीं इसी के साथ जो आसपास के इलाके हैं, आसपास के जो गांव हैं, वहां से भी इस पूरे गांव की तरफ आने वाले रास्तों पर पुलिस को फोर्स को जो तैनात किया गया है। और
0: बक्सर का इटाढ़ी गुमटी पुल क्षतिग्रस्त हो गया, मात्र 4 दिन हुए थे पुल के उद्घाटन को और अब पुल बंद कर दिया गया है। 26 करोड़ 40 लाख की लागत से बने हुए रोड ओवर ब्रिज के ऊपरी परत धंस गए। लगभग 11 साल के इंतजार के बाद आम जनता के लिए कुछ ही दिन पहले उद्घाटन किया गया। लोगों ने राहत की सांस ली, कुछ सहूलियत होगी सोचा, लेकिन 4th दिन ही पुल के पिलर नंबर 5 के ऊपरी परत ही धंस गई।
20: आप सोच सकते हैं कि जिस चीज को 11 साल से इंतजार कर रहे हैं और इंतजार के बाद अगर मिलता है तो 4 दिनों में ध्वस्त हो जाता है, तो सोचिए नहीं, ये देखिए कैसे, क्योंकि ये जो पुल है करीब 4 दिन पहले इसको खोला गया था चलने के लिए, लेकिन 4 दिनों में ये पुल टूट गया, यानी कि कहिए कि ध्वस्त हो गया और इसको बंद कर दिया गया है। ये दरअसल बक्सर के इटाढ़ी गुमटी पर बना 26 करोड़ 40 लाख का वो नया पुल है जिसको लेकर कई बार आंदोलन हुआ, कई बार लोग धरने पर बैठे, उसके बाद ये पुल मिला तो ऐसे हालात में मिला कि चार दिन बाद ये इस परिस्थिति में आ गया कि लोग अब घेर कर देख रहे हैं कि भाई ये क्या हुआ है। ये एक दर्दनाक घटना तो नहीं कही जा सकती है, शर्मनाक घटना कही जा सकती है। और शर्मनाक घटना के कौन कौन विलेन है ये तो तय जनता को करना है। ऐसे में जनता सामने खड़ी है, हम उससे भी जानने का प्रयास करेंगे कि भाई ये जो घटना घटी है आपको आश्चर्यचकित तो नहीं करती होगी ना?
1: ना ना, ये तो मतलब वही होना था जो हुआ है, इससे पहले भी हुआ है कई बार। ये तो देखने वाली चीज है, ये तो सामने है जो प्रत्यक्ष में आपको दिख रहा है,
21: बस वही है जो देख रहे हैं। टूट गया है पुल
20: चार दिन पहले।
21: हाँ, चार दिन पहले बना था, आज टूट गया, फिर ट्रक चढ़ी है। वो तो अच्छी बात है कि किसी का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है।
20: सर, आपको लगता है कि मतलब ये पुल लगता था कि चलेगा नहीं, ये तो समझ में आ रहा होगा, तो इतना जल्दी फंसेगा ये तो विश्वास नहीं होगा?
22: ये विश्वास नहीं था इतना जल्दी फंस जाएगा।
20: देखिए, लोगों को लगातार सूचनाएं टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ये बहुत मिलती रहेगी है कि पुल फंस रहा है और पुल फंसेगा भी, लेकिन चार दिनों में अगर पुल फंसने लगे तो बिहार की उस सरकार को क्या कहेंगे जो कई परिवर्तन के बाद इस समय भी डबल इंजन की सरकार चल रही है, विकास के कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे विकास का क्या मतलब है जो चार दिन तक टिके नहीं। बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे।
0: आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने वाले वैभव सूर्यवंशी की टीम इंडिया में एंट्री हो गई। धमाधार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड, इंग्लैंड और एशियन गेम्स की T20 इंटरनेशनल टीम में शामिल कर लिया गया है।
23: नाम वैभव सूर्यवंशी, काम छक्के बरसाना, पहचान तूफान लाना, अरमान अब देश को जिताना। आईपीएल की इन तस्वीरों को जिसने देखा देखता ही रह गया, खुद वैभव के साथियों ने, दुनिया भर के दिग्गजों ने, और विरोधी गेंदबाजों के पास तो देखते रहने की मजबूरी के अलावा कोई चारा ही नहीं था। ना उम्र की सीमा, ना दुनिया के किसी गेंदबाज का खौफ। वैभव का बल्ला जब बरसता है तो फिर इसके कोई मायने नहीं होते कि सामने पैट कमिंस जैसा गेंदबाज है, जसप्रीत बुमराह है या फिर कोई और। और ये तूफान आईपीएल के इस सीजन में जब आया तो मैच दर मैच उनका बल्ला रिकॉर्ड्स की इबारत लिखता चला गया। इस सीजन में तो हाल ये था कि जब उनकी पारी खत्म होती थी तो कईयों के सपने टूट चुके होते थे और कई गेंदबाजों के तो आईपीएल करियर के आंकड़े बिगड़ चुके होते थे। उनके बल्ले ने इतना हल्ला मचाया कि आखिरकार सेलेक्टर्स को उन्हें सीनियर टीम इंडिया का हिस्सा बनाना ही पड़ा। वैभव 15 साल की उम्र में टीम इंडिया का हिस्सा बनने वाले सबसे युवा भारतीय हैं। उन्होंने आईपीएल में सबसे तेज 1000 रन बनाए हैं। आईपीएल में उन्होंने एक सीजन में क्रिस गेल के 59 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़कर 72 छक्के जमाए हैं। 14 साल की उम्र में आईपीएल में शतक जमाने वाले वो सबसे युवा बल्लेबाज हैं। वो अंडर-19 वर्ल्ड कप चैंपियन है। आईपीएल के 23 मैच में वो 96 छक्के जमा चुके हैं। वैभव का असली इम्तिहान अब होने वाला है, लेकिन उनके लिए आपदा नहीं ये अवसर है, क्योंकि खौफ का भूत वो बचपन में ही भगा चुके हैं। दुनिया भर के गेंदबाजों को वो आईपीएल में निपटा चुके हैं। इतना ही नहीं, दुनिया की कई पिचों पर खेलने का उनका अनुभव धीरे धीरे उनकी बल्लेबाजी को और मैच्योर बना रहा है। नए हिंदुस्तान के नए तेवरों वाली इस टीम को अपने खजाने में ऐसा ही हीरा चाहिए। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात दुनिया की करते, जहां खाड़ी युद्ध में तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत की कोशिशों के बीच धमाके की गूंज ने युद्ध विराम की उम्मीदों को तोड़ा है।

0: पश्चिम एशिया से आई इन तस्वीरों ने फिर से दुनिया को पसोपेश में डाल दिया है। इस मंजर ने डरा दिया है कि खाड़ी में फिर से महायुद्ध 2.0 की लपटें सुलगने लगी हैं। इस माहौल ने बता दिया है कि किसी भी वक्त अमेरिका और ईरान में फिर से भीषण जंग छिड़ने वाली है। दहशत इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि ईरान ने कुवैत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया है। कुवैत में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। कुवैत का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान से आ रहे ड्रोन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहा है। ईरान ने बहरीन पर भी मिसाइल दागी है। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को रोकने के लिए बहरीन का भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। हम आपको बता दें कि बहरीन में अमेरिकी सेंट्रल कमांड का मुख्यालय भी है। अपने सहयोगी देशों पर ईरान के हमले से अमेरिका बौखला चुका है। पलटवार में अमेरिका ने भी ईरान के कई ठिकानों पर धावा बोल दिया। ईरान के सर्विलांस रडार सेंटर पर अमेरिका ने हमला किया है। ईरान के रडार सेंटर पर हमले का वीडियो भी अमेरिका ने जारी कर दिया। अमेरिका का कहना है कि पहले ईरान ने हमला किया था, जिसके जवाब में उसके रडार सर्विलांस टावर को उड़ा दिया गया। अमेरिकी सेना ने समुद्री हमलों से बचाव के लिए गोरुक और केशम द्वीप पर स्थित ईरानी तटीय निगरानी रडार को ध्वस्त किया। अमेरिका ने दावा किया कि 6 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया, जबकि 7वीं मिसाइल टारगेट तक पहुंची ही नहीं। मतलब साफ है कि जो सीज फायर फिलहाल अस्थाई है, वो किसी भी वक्त धराशायी हो सकता है, क्योंकि ईरान और अमेरिका में झड़प शुरू हो चुकी है। यह चिंगारी किसी भी वक्त भीषण युद्ध का शक्ल ले सकती है। आज तक ब्यूरो।
1: और अब आपको लेकर चलते हैं युद्ध के उस मोर्चे की ओर जहां पिछले 4.5 साल से रूस और यूक्रेन में जंग छिड़ी है। अब बड़ी खबर यह है कि रूसी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि शांति वार्ता के लिए युद्ध रोकने की जरूरत नहीं। पुतिन का यह बयान तब आया है जब जेलेंस्की ने खुला पत्र लेकर रूसी राष्ट्रपति से मिलने की इच्छा जाहिर की।

0: रूस ने यूक्रेनी शहर जैपोरेजिया पर भीषण अटैक किया, वो भी तब जब शांति वार्ता की कोशिशें चल रही हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है कि शांति वार्ता के लिए सीज फायर की कोई जरूरत नहीं है, मतलब बातचीत करने के लिए जंग रोकने की जरूरत नहीं। रूस के ताजा हमलों में जैपोरेजिया के रिहायशी इलाकों को बड़ा नुकसान हुआ, जिसमें एक शख्स की मौत हुई है, 16 घायल हैं, वाहनों और नागरिक बुनियादी ढांचों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इस बीच पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में पत्रकारों को संबोधित करते हुए साफ कर दिया कि बातचीत के लिए सीज फायर की जरूरत ही नहीं है।
1: Новые населенные пункты ставятся под контроль российских вооруженных сил. Ну, за последнее время, повторяю, почти 2500 квадратных километров.
0: इससे पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति को खुला पत्र लिखा है और सीधे वार्ता का प्रस्ताव रखा है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी और रूसी नेताओं के बीच बैठक की पहल को सराहा है और इसे अच्छी पहल बताया।
2: I don't know. I'm glad that they're maybe talking about meeting. I think we had a lot to do with it. I know exactly what you're doing. But I think it would be great if they met. They should get it done.
0: आर पार की जंग और शांति वार्ता की कोशिशों के बीच दोनों देशों की तरफ से अच्छी पहल हुई है। रूस यूक्रेन ने एक दूसरे के 185 कैदियों की अदला बदली की है, जिसे शांति की शुरुआत के लिए पहला बड़ा कदम बताया जा सकता है। हालांकि कैदियों की अदला बदली पहले भी हो चुकी है, लेकिन 4 साल से भी ज्यादा समय से जारी जंग अभी तक थमी नहीं। आज तक ब्यूरो।
3: अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक, आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ मंथन, देशवासियों का जीवन आसान बनाने और आर्थिक दर्द को बढ़ाने पर चर्चा। समाजवादी पार्टी पर मुख्यमंत्री योगी का बड़ा हमला, कहा 2017 से पहले गुंडों के आगे नतमस्तक थी सरकार, राम का नाम लेने पर चलती थी गोलियां, अखिलेश का पलटवार, यूपी में महाजंगल राज। बंगाल सरकार ने मदरसों का शुरू किया सर्वेक्षण, 5 जुलाई तक मांगे रिपोर्ट, नियमों के तहत संचालन और जरूरी दस्तावेजों की होगी जांच।

0: यूपी में भी 2027 के लिए हर पार्टी ने कमर कस ली है। योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, तो अखिलेश यादव भी लगातार सरकार को घेर रहे हैं।
1: अब राम का नाम लेने पर ही प्रतिबंध था, डंडे बरसते थे, गोलियां चलती थी। अयोध्या में भगवान राम का भक्त अयोध्या में नहीं जा सकता था। किस प्रकार की अराजकता थी। अब तो अयोध्या में राम भक्त के अलावा कोई रामद्रोही घुस ही नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। आज तो अयोध्या चमक रही है।
2: 2027 के सियासी समर में बीजेपी हिंदुत्व और राम मंदिर के मुद्दे पर सवार है, जहां अखिलेश यादव पर सीएम योगी आदित्यनाथ के हमले जारी हैं।
1: 2017 के पहले इन दंगाइयों को, इन पेशेवर गुंडों को प्रश्रय देते थे, इनके सामने नतमस्तक होते थे। प्रदेश में कर्फ्यू रहता था।
2: योगी विकास से लेकर डबल इंजन तक की खूबियां गिना रहे हैं, तो वहीं पिछली सरकारों की खामियां भी बता रहे हैं।
1: 2015-16 में इस गोंडा में भी दुर्गा पूजा के समय दंगा करने का प्रयास हुआ था, यहां भी दंगे हुए थे। मां दुर्गा की मूर्ति को विसर्जन नहीं करने दिया जाता था, रामलीलाओं के आयोजन में अड़चने डाली जाती थी। पर्व और त्योहार प्रारंभ होने के पहले, उत्सव प्रारंभ होने के पहले उपद्रव शुरू हो जाते थे। उत्सव के रंग में किसी ने भंग करने का काम किया तो फिर वर्तमान तो जाएगा ही जाएगा, भविष्य भी स्वाहा हो जाएगा।
2: उधर अखिलेश को योगी सरकार में जंगल राज नजर आ रहा है। उधर गाजीपुर में कमलेश बिंद के एनकाउंटर पर विपक्ष और सरकार के सहयोगियों के सुर एक जैसे नजर आ रहे हैं। किसी को अपने वोट बैंक की टेंशन सता रही है, तो कोई वोट बैंक में सेध मारने की तैयारी में है।
3: इतना बड़ा तो दुर्दांत अपराधी नहीं है कि जिससे आप एनकाउंटर, अब मुख्य आरोपी उसको बनाया भी नहीं गया, मुख्य आरोपी कोई और है। मुख्य आरोपी को तो पकड़ने दूर है, वो छुएंगे नहीं। आज जो साधारण है, जो वोट अभी गाजीपुर हारे हैं, अब गाजीपुर में बिंदुओं की संख्या बहुत अधिक है, जौनपुर में बिंदुओं की संख्या अधिक है, प्रधानमंत्री के चारों तरफ के हम सारी सीटें हार गए हैं।
4: ये बहुत ही जो घटना हुई है एनकाउंटर की, तो आखिर जब पुलिस पकड़ सकती थी मुजरिम को, तो एनकाउंटर क्यों करा गया? तो सवाल तो ये अपने आप में पूरी कानून व्यवस्था में प्रश्न चिन्ह उठाने का काम है। भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं चाहते हैं कि प्रशासन और जो प्रशासन है, जो नियम है, जो कानून है, उससे चले।
2: बहरहाल यूपी में चुनावी पिच पूरी तरह से तैयार है, जहां हर पार्टी अपने हिसाब से बैटिंग कर रही है। आज तक ब्यूरो।
0: दिल्ली के जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी नीट पेपर लीक के विरोध में उतरे और छात्रों की आत्महत्या को लेकर सवाल खड़े किए, तो वहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की।
5: हाथों में संविधान की कॉपी लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके आज सुबह अमेरिका से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से उन्होंने जंतर मंतर का रुख किया।
6: सोशल मीडिया पर व्यंग और मीम्स के तौर पर शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी अब दिल्ली के जंतर मंतर आ पहुंचा है। सुबह सुबह अभिजीत दीपके अमेरिका से सीधे आईजीआई एयरपोर्ट पर लैंड किया और उसके बाद जंतर मंतर पहुंचा। पहले भीड़ कम थी, ना मंच था, ना बैनर था, ना कोई ऑडियो सिस्टम, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया, भीड़ की संख्या बढ़ती गई, स्टेज भी लगा, मंच भी लगा और हाथ में तिरंगा लिए युवा यहां पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
5: नीट पेपर लीक को लेकर हो रहे इस प्रदर्शन में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई। अभिजीत दीपक्के के साथ सोनम वांगचुक भी मंच पर नजर आए। अभिजीत ने धर्मेंद्र को इस्तीफे के लिए 5 बजे तक का अल्टीमेटम दिया।
7: मैं धर्मेंद्र प्रधान जी, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनसे पूछना चाहता हूँ, 5 बच्चों ने सुसाइड कर लिए, फिर भी आपने रिजाइन नहीं किया है, आपको शर्म नहीं आती? और कितने बच्चों का सुसाइड करना का वेट करेंगे आप जब तक रिजाइन नहीं करोगे, तब तक हमारा मूवमेंट जारी रहेगा। इसके बाद हम ये मूवमेंट को देश भर में लेकर जाएंगे और ये मूवमेंट तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते।
5: अभिजीत ने अपने इस आंदोलन को सफल बताया तो वहीं साफ किया कि सोशल मीडिया से शुरू हुआ ये आंदोलन अब देश भर में नजर आने वाला है।
7: 15 दिन पहले जब कांग्रेस जनता पार्टी का पेज स्टार्ट हुआ था तब लोगों ने कहा था ये तो एक सोशल मीडिया का ट्रेंड है, ये तो एक सोशल मीडिया पर ही लिमिटेड रहकर रह जाएगा। लेकिन आज हमने देख लिया कि ये कोई सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं है, ये एक आंदोलन है जो जिसकी आज शुरुआत हो चुकी।
5: 5 घंटे तक जंतर मंतर में प्रदर्शन के बाद प्रदर्शनकारी लौट गए जहां उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे न देने पर अगले शनिवार को एक बार फिर जंतर मंतर आने का ऐलान किया है। अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।
0: अब बात करते हैं फैसल खान और खान सर की जिस पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।
8: पटना में 2 कोचिंग संचालकों की लड़ाई अब फैजल खान यानी खान सर की गिरफ्तारी तक पहुंच चुकी है। फैजल खान के वकील ने साफ किया है कि वो सरेंडर नहीं करेंगे।
9: खबर है ऐसा कोई विचार ही नहीं है सरेंडर का। पुलिस तो किसी को अरेस्ट कर सकती है, नॉन अवेलेबल सेक्शन है तो किसी को अरेस्ट कर सकती है ना।
8: कल आर्म्स एक्ट के तहत पटना पुलिस ने फैजल खान के खिलाफ FIR दर्ज की थी। कोचिंग के गार्ड्स ने पूछताछ में कहा था कि फैजल खान ने उन्हें फायरिंग के लिए कहा था।
9: के लिए पुलिस कुछ भी लिख दे, अगर ऐसा होता तो खान सर भेज हुए थे ना, पुलिस को उसी समय अरेस्ट कर लेना था इनको। अगर ऐसा कोई रहता तो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट थाना में ले लेने से और FIR में लिख देने से कोई एविडेंस नहीं होता।
8: उधर फैजल खान की गिरफ्तारी की खबरों के बीच कल रात कोचिंग के बाहर भारी संख्या में छात्र मौजूद थे। तनाव को देखते हुए पुलिस का गश्त जारी रहा। PCR वैन में तैनात पुलिस छात्रों को समझाती नजर आई।
10: मौजूद है और सड़क के दूसरे किनारे एक लाइन से हजारों छात्र जो हैं वो यहां पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं खान सर के, ये कह सकते हैं कि समर्थन में ये जो छात्र हैं वो यहां पे खड़े हैं। तस्वीर देखिए, ये खान सर के कोचिंग के बाहर का नजारा है।
8: घटना के बाद फैजल खान के छात्रों को भड़काने का वीडियो वायरल हुआ था।
11: इसके ऊपर करने आया है हमारा
12: गाड़ी अभी तक नहीं की है, जबकि सबके सामने ये लेके जा रहा है, मुद्दे से भटकाया जा रहा है। आप इसकी गिरफ्तारी करिए, ये आदमी कौन है और कैसे आता है 20-25 लोगों को उठा के लेके चला जा रहा है, 20-25 लोगों को एक साथ कैसे।
8: वीडियो और मैसेज के बीच जारी तनाव को देखते हुए पटना पुलिस ने छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी किया है जिसमें कहा गया है कि 2 कोचिंग संस्थानों की प्रतिस्पर्धा में किसी के बहकावे में आना ठीक नहीं है। सूत्रों के माने तो फैजल खान गिरफ्तारी के तलवार के बीच अग्रिम जमानत लेने की तैयारी कर रहे हैं। रोहित सिंह, पटना आज तक।
0: बिहार में राबड़ी के बंगले को लेकर जारी सियासत अब सुरक्षा तक पहुंच गए है। सुरक्षा में कटौती के बाद लालू परिवार ने मौजूद सुरक्षा को भी लेने से इनकार कर दिया है।
2: आवास के बाहर पसरा सन्नाटा और कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं। एक बार तो ये यकीन करना भी मुश्किल है कि ये पटना में पूर्व CM राबड़ी देवी का बंगला है। एक दिन पहले Y+ सिक्योरिटी हटाए जाने के बाद अब लालू राबड़ी ने नाराजगी जताते हुए पूरी सुरक्षा वापस कर दी है।
13: राबड़ी देवी और लालू परिवार को जो सुरक्षा दी जाती है उसको लेकर जो है ये ताजा विवाद जो है वो शुरू हो गया है। और कल से हम देख रहे हैं जब सरकार का एक नया फरमान आया और लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को जो Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई थी उस सुरक्षा को सरकार ने वापस लिया और केवल बिहार पुलिस की सुरक्षा जो स्पेशल पुलिस होती है उसकी सुरक्षा प्रदान की। उसके बाद से ही लालू परिवार राबड़ी देवी जो है वो इसको लेकर काफी बिफर गए और उसके बाद कल देर रात से हम देख रहे हैं कि 10 सर्कुलर रोड आवास जो कि राबड़ी देवी और उनका परिवार यहाँ पिछले 20 सालों से रह रहा है यहाँ कल रात से ही एक भी सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं है।
2: इस बीच तेजस्वी यादव ने इसका विरोध करते हुए अपनी सुरक्षा लौटा दी जिसे लेकर RJD अब सरकार पर लगातार हमले कर रही है। सुरक्षा कवच में कटौती के बाद दिखावे की सुरक्षा रखने का कोई औचित्य नहीं है। सात खून के आरोपी रहे मुख्यमंत्री की सरकार के द्वारा लालू जी एवं राबड़ी देवी जी की सुरक्षा में कटौती का फैसला लालू जी राबड़ी देवी जी एवं उनके परिवार को नुकसान शारीरिक क्षति पहुंचाने की नीयत से ही लिया गया है। अगर लालू जी एवं उनके परिवार का सुरक्षा कवच है और अगर लालू जी राबड़ी देवी जी और परिवार के किसी भी सदस्य को एक खरोच भी आई तो अंजाम क्या होगा, इसका अंदाजा शायद बिगड़ैल सम्राट चौधरी और उनकी सरकार को नहीं है।
14: सबको वापस कर दिया, सबको बाहर निकाल दिया, क्योंकि कल ही राज्य की सरकार ने अपने आका के निर्देश पर आदरणीय लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी सहित पूरे लालू परिवार की सुरक्षा में व्यापक और घोर कटौती कर दी। शासन अपमानित करना चाहती है लालू प्रसाद जी और उनके परिवार को, उनके परिजनों को।
15: ये सुरक्षा उनको क्यों दिया गया था? कभी मुख्यमंत्री रहे, कभी केंद्रीय मंत्री रहे, जब ये संवैधानिक व्यवस्था, ये नहीं है कि हथुआ मामा का बेटा है तो सब दिन वही रहेगा। जनता जिसको चुन करके देती है सत्ता में, और जो कानून कहता है वो सुरक्षा मिलता।
2: समीक्षा में तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं किया गया था, लेकिन लालू और राबड़ी की सुरक्षा घटाए जाने के विरोध में अब तेजस्वी यादव ने ये बड़ा फैसला लिया है। वहीं लालू राबड़ी की जेट प्लस सिक्योरिटी वापस ली गई थी, लेकिन नई सुरक्षा व्यवस्था के तहत दोनों नेताओं के लिए बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की सुरक्षा का इंतजाम किया गया था, जिसके तहत 2 से 8 जवान सुरक्षा में तैनात रहने का निर्देश था। इसके साथ बुलेट प्रूफ कार जिला बल से स्क्वाड की नियुक्ति का निर्देश था।
13: ये बिहार पुलिस की जो सुरक्षा, जो नई व्यवस्था उनको प्रदान की गई थी, उस सुरक्षा को भी यहाँ लेने से देखिए लालू परिवार ने जो है वो मना कर दिया है। ये देख सकते हैं यहाँ बिहार पुलिस के जो विशेष दस्ता है वो जो नई सुरक्षा व्यवस्था के तहत इनको यहाँ पर भेजा गया है, इन तमाम लोगों को भी जो है 10 सर्कुलर रोड आवास में जाने नहीं दिया गया है, इनको बाहर कर दिया गया है परिवार के द्वारा। और जाहिर सी बात है ये तमाम जो बिहार पुलिस के यहाँ पर कर्मी हैं वो लोग बाहर ही खड़े हैं, राबड़ी देवी के आवास के बाहर ही इसी तरीके से खड़े हैं। अब इन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है कि करना है तो क्या करना है।
2: राबड़ी देवी के बंगले को लेकर सियासत चल ही रही थी, जिस पर अब सुरक्षा को लेकर विवाद की एंट्री हो चुकी है। रोहित सिंह, पटना आज तक।
0: यूपी में योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन भी जारी है, जिसकी गूंज अब संभल में सुनाई दी, जहां सरकारी जमीन पर बनी मुस्तफा कादरी मस्जिद के खिलाफ एक्शन लिया गया और इस अवैध मस्जिद को बुलडोजर से ढहा दिया गया।
16: संभल के नखासा थाना इलाके के कसेरुआ गांव में स्थित मुस्तफा कादरी मस्जिद को ध्वस्त करने की कार्रवाई इस वक्त शुरू हो चुकी है, और आप मेरे पीछे की तस्वीरों में आप जो देख सकते हैं कि किस तरीके से बुलडोजर एक्शन के जरिए जो कि सरकारी जमीन पर बनी हुई मस्जिद है उसको यहां पर ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई की जा रही है। दो दो बुलडोजर इस पूरी मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए फिलहाल यहां पर जो है लगाए गए हैं। पूरा पुलिस फोर्स गांव में तैनात किया गया है, और ये देखा जाए तो ये 120 वर्ग मीटर जगह में बनी हुई ये पूरी मस्जिद थी, जिसको हटाने के लिए जनवरी महीने में जो है लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर यह पूरी कार्रवाई शुरू की गई थी, और उसके बाद इस मस्जिद के वक्फ बोर्ड में भी रजिस्टर्ड होने का मामला सामने आया था, जिसके बाद इस मस्जिद कमेटी से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ FIR कराई गई। लेकिन आज अब इस पूरे मस्जिद पर धारा 67 के तहत जो कार्रवाई यहां पर जो की जा रही है, और आप यहां जो देख सकते हैं देखिए किस तरीके से जो पूरा बुलडोजर है वो इस पूरे मस्जिद के स्ट्रक्चर को ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई कर रहा है। और एहतियातन अगर जो देखा जाए तो देखिए छतों पर आपको जो पुलिसकर्मी आपको जो तैनात नजर आएंगे, यहां अगर आपको जो देखा जाए तो देखिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो फिलहाल आपको जो है ये वो पुलिसकर्मियों की आपको जो है लगातार छतों पर जो तैनाती दिखाई देगी। जो है सामने देखिए तस्वीरों में देखेंगे तो देखिए तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह आपको यहाँ इस पूरे इलाके में लगातार इस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए दिखाई देंगे, और इसी तरह से देखिए आसपास का जो पूरा इलाका है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया। सामने आप देखेंगे तो देखिए बुलडोजर के ठीक बराबर में देखिए भारी संख्या में आपको पुलिस फोर्स जो है यहाँ पर जो तैनात जो नजर आएगा, जो कि आपको तस्वीरों में नजर आएगा। और इसी तरह से जो पूरे गांव का अलग अलग इलाके हैं वहां पर इस तरीके से पूरे पुलिस फोर्स को तैनात करके पूरे गाँव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर विशेष तौर पर निगरानी की जा रही है, जिससे कि कोई भड़काऊ पोस्ट जो है वो न डाली जाए सोशल मीडिया पर। वहीं इसी के साथ जो आसपास के इलाके हैं, आसपास के जो गांव हैं, वहां से भी इस पूरे गांव की तरफ आने वाले रास्तों पर पुलिस को फोर्स को जो तैनात किया गया है। और
0: बक्सर का इटाढ़ी गुमटी पुल क्षतिग्रस्त हो गया, मात्र 4 दिन हुए थे पुल के उद्घाटन को और अब पुल बंद कर दिया गया है। 26 करोड़ 40 लाख की लागत से बने हुए रोड ओवरब्रिज के ऊपरी परत धंस गए। लगभग 11 साल के इंतजार के बाद आम जनता के लिए कुछ ही दिन पहले उद्घाटन किया गया। लोगों ने राहत की सांस ली, कुछ सहूलियत होगी सोचा, लेकिन चौथे दिन ही पुल के पिलर नंबर 5 के ऊपरी परत ही धंस गए।
17: आप सोच सकते हैं कि जिस चीज को 11 साल से इंतजार कर रहे हैं और इंतजार के बाद अगर मिलता है तो 4 दिनों में ध्वस्त हो जाता है, तो सोचिए नहीं, देखिए कैसे, क्योंकि ये जो पुल है करीब 4 दिन पहले इसको खोला गया था चलने के लिए, लेकिन 4 दिनों में ये पुल टूट गया, यानी कहिए कि ध्वस्त हो गया और इसको बंद कर दिया गया है। ये दरअसल बक्सर के इटाढ़ी गुमटी पर बना 26 करोड़ 40 लाख का वो नया पुल है जिसको लेकर कई बार आंदोलन हुआ, कई बार लोग धरने पर बैठे, उसके बाद ये पुल मिला तो ऐसे हालात में मिला कि 4 दिन बाद ये इस परिस्थिति में आ गया कि लोग अब घेर कर देख रहे हैं कि भाई ये क्या हुआ है। ये एक दर्दनाक घटना तो नहीं कही जा सकती है, शर्मनाक घटना कही जा सकती है, और शर्मनाक घटना के कौन कौन विलेन है ये तो तय जनता को करना है। ऐसे में जनता सामने खड़ी है, हम उससे भी जानने का प्रयास करेंगे कि भाई ये जो घटना घटी है आपको आश्चर्यचकित तो नहीं करती होगी ना?
18: ना ना, ये तो मतलब वही होना था जो हुआ है, इससे पहले भी हुआ है कई बार, ये तो देखने वाली चीज है, ये तो सामने है जो प्रत्यक्ष में आपको दिख रहा है,
19: बस वही है जो देख रहे हैं, टूट गया है पुल
17: 4 दिन पहले।
19: हाँ, 4 दिन पहले बना था, आज टूट गया, फिर ट्रक चढ़ी है, वो तो अच्छी बात है, किसी का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है।
17: सर, आपको लगता है कि मतलब ये पुल लगता था कि चलेगा नहीं, ये तो समझ में आ रहा होगा, तो इतना जल्दी फंसेगा ये तो विश्वास नहीं होगा?
20: ये विश्वास नहीं था इतना जल्दी फंस जाएगा।
17: देखिए, लोगों को लगातार सूचनाएं टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ये बहुत मिलती रहेगी है कि पुल भस रहा है और पुल भसेगा भी, लेकिन 4 दिनों में अगर पुल भसने लगे तो बिहार की उस सरकार को क्या कहेंगे जो कई परिवर्तन के बाद इस समय भी डबल इंजन की सरकार चल रही है, विकास के कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे विकास का क्या मतलब है जो 4 दिन तक टिके नहीं। बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे।
0: आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने वाले वैभव सूर्यवंशी की टीम इंडिया में एंट्री हो गई। धुआंधार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड, इंग्लैंड और एशियन गेम्स की T20 इंटरनेशनल टीम में शामिल कर लिया गया है।
21: नाम वैभव सूर्यवंशी, काम छक्के बरसाना, पहचान तूफान लाना, अरमान अब देश को जिताना। आईपीएल की इन तस्वीरों को जिसने देखा देखता ही रह गया, खुद वैभव के साथियों ने, दुनिया भर के दिग्गजों ने, और विरोधी गेंदबाजों के पास तो देखते रहने की मजबूरी के अलावा कोई चारा ही नहीं था, ना उम्र की सीमा, ना दुनिया के किसी गेंदबाज का खौफ। वैभव का बल्ला जब बरसता है तो फिर इसके कोई मायने नहीं होते कि सामने पैट कमिंस जैसा गेंदबाज है, जसप्रीत बुमराह है या फिर कोई और। और ये तूफान आईपीएल के इस सीजन में जब आया तो मैच दर मैच उनका बल्ला रिकॉर्ड

0: भारतीय गेंदबाजों के तो आईपीएल करियर के आंकड़े बिगड़ चुके होते थे। उनके बल्ले ने इतना हल्ला मचाया कि आखिरकार सेलेक्टर्स को उन्हें सीनियर टीम इंडिया का हिस्सा बनाना ही पड़ा। वैभव 15 साल की उम्र में टीम इंडिया का हिस्सा बनने वाले सबसे युवा भारतीय हैं। उन्होंने आईपीएल में सबसे तेज 1000 रन बनाए हैं। आईपीएल में उन्होंने एक सीजन में क्रिस गेल के 59 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़कर 72 छक्के जमाए हैं। 14 साल की उम्र में आईपीएल में शतक जमाने वाले वो सबसे युवा बल्लेबाज हैं। वो अंडर 19 वर्ल्ड कप चैंपियन हैं। आईपीएल के 23 मैच में वो 96 छक्के जमा चुके हैं। वैभव का असली इम्तिहान अब होने वाला है, लेकिन उनके लिए आपदा नहीं, ये अवसर है, क्योंकि खौफ का भूत वो बचपन में ही भगा चुके हैं। दुनिया भर के गेंदबाजों को वो आईपीएल में निपटा चुके हैं। इतना ही नहीं, दुनिया की कई पिचों पर खेलने का उनका अनुभव धीरे धीरे उनकी बल्लेबाजी को और मैच्योर बना रहा है। नए हिंदुस्तान के नए तेवरों वाली इस टीम को अपने खजाने में ऐसा ही हीरा चाहिए। आज तक ब्यूरो।
1: अब बात दुनिया की करते, जहां खाड़ी युद्ध में तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत की कोशिशों के बीच धमाके की गूंज ने युद्ध विराम की उम्मीदों को तोड़ा है।

0: पश्चिम एशिया से आई इन तस्वीरों ने फिर से दुनिया को पसोपेश में डाल दिया है। इस मंजर ने डरा दिया है कि खाड़ी में फिर से महायुद्ध 2.0 की लपटें सुलगने लगी हैं। इस माहौल ने बता दिया है कि किसी भी वक्त अमेरिका और ईरान में फिर से भीषण जंग छिड़ने वाली है। दहशत इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि ईरान ने कुवैत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया है। कुवैत में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। कुवैत का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान से आ रहे ड्रोन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहा है। ईरान ने बहरीन पर भी मिसाइल दागी है। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को रोकने के लिए बहरीन का भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। हम आपको बता दें कि बहरीन में अमेरिकी सेंट्रल कमांड का मुख्यालय भी है। अपने सहयोगी देशों पर ईरान के हमले से अमेरिका बौखला चुका है। पलटवार में अमेरिका ने भी ईरान के कई ठिकानों पर धावा बोल दिया। ईरान के सर्विलांस रडार सेंटर पर अमेरिका ने हमला किया है। ईरान के रडार सेंटर पर हमले का वीडियो भी अमेरिका ने जारी कर दिया। अमेरिका का कहना है कि पहले ईरान ने हमला किया था, जिसके जवाब में उसके रडार सर्विलांस टावर को उड़ा दिया गया। अमेरिकी सेना ने समुद्री हमलों से बचाव के लिए गोरुक और केशम द्वीप पर स्थित ईरानी तटीय निगरानी रडार को ध्वस्त किया। अमेरिका ने दावा किया कि 6 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया, जबकि 7वीं मिसाइल टारगेट तक पहुंची ही नहीं। मतलब साफ है कि जो सीज फायर फिलहाल अस्थाई है, वो किसी भी वक्त धराशायी हो सकता है, क्योंकि ईरान और अमेरिका में झड़प शुरू हो चुकी है। यह चिंगारी किसी भी वक्त भीषण युद्ध का शक्ल ले सकती है। आज तक ब्यूरो।
1: और अब आपको लेकर चलते हैं युद्ध के उस मोर्चे की ओर, जहां पिछले 4.5 साल से रूस और यूक्रेन में जंग छिड़ी है। अब बड़ी खबर यह है कि रूसी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया कि शांति वार्ता के लिए युद्ध रोकने की जरूरत नहीं। पुतिन का यह बयान तब आया है जब जेलेंस्की ने खुला पत्र लेकर रूसी राष्ट्रपति से मिलने की इच्छा जाहिर की।

0: लोगों को बड़ा नुकसान हुआ, जिसमें एक शख्स की मौत हुई है, 16 घायल हैं। वाहनों और नागरिक बुनियादी ढांचों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इस बीच पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में पत्रकारों को संबोधित करते हुए साफ कर दिया कि बातचीत के लिए सीज फायर की जरूरत ही नहीं है।
1: Новые населенные пункты ставятся под контроль российских вооруженных сил. Но за последнее время, повторяю, почти 2500 квадратных километров.
0: इससे पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति को खुला पत्र लिखा है और सीधे वार्ता का प्रस्ताव रखा है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी और रूसी नेताओं के बीच बैठक की पहल को सराहा है और इसे अच्छी पहल बताया।
2: I don't know. I'm glad that they're maybe talking about meeting. I think we had a lot to do with it. I know exactly what you're doing. But I think it would be great if they met. They should get it done.
0: आर पार की जंग और शांति वार्ता की कोशिशों के बीच दोनों देशों की तरफ से अच्छी पहल हुई है। रूस यूक्रेन ने एक दूसरे के 185 कैदियों की अदला बदली की है, जिसे शांति की शुरुआत के लिए पहला बड़ा कदम बताया जा सकता है। हालांकि कैदियों की अदला बदली पहले भी हो चुकी है, लेकिन 4 साल से भी ज्यादा समय से जारी जंग अभी तक थमी नहीं। आज तक ब्यूरो।
3: अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

रूस ने यूक्रेनी शहर जैपोरेजिया पर भीषण अटैक किया, वो भी तब जब शांति वार्ता की कोशिशें चल रही हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है कि शांति वार्ता के लिए सीज फायर की कोई जरूरत नहीं है, मतलब बातचीत करने के लिए जंग रोकने की जरूरत नहीं। रूस के ताजा हमलों में जैपोरेजिया के रिहायशी इलाके

एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक, आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ मंथन, देशवासियों का जीवन आसान बनाने और आर्थिक दर्द को बढ़ाने पर चर्चा। समाजवादी पार्टी पर मुख्यमंत्री योगी का बड़ा हमला, कहा 2017 से पहले गुंडों के आगे नतमस्तक थी सरकार, राम का नाम लेने पर चलती थी गोलियां, अखिलेश का पलटवार, यूपी में महाजंगल राज। बंगाल सरकार ने मदरसों का शुरू किया सर्वेक्षण, 5 जुलाई तक मांगे रिपोर्ट, नियमों के तहत संचालन और जरूरी दस्तावेजों की होगी जांच। नीट री एग्जाम के प्रश्न पत्र लीक होने के दावों को एनटीए ने किया खारिज, कार्रवाई की भी चेतावनी, महानिदेशक ने कहा क्वेश्चन पेपर लाने के लिए एयरफोर्स का इस्तेमाल।

0: यूपी में भी 2027 के लिए हर पार्टी ने कमर कस ली है। योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं तो अखिलेश यादव भी लगातार सरकार को घेर रहे हैं।
1: अब राम का नाम लेने पर ही प्रतिबंध था, डंडे बरसते थे, गोलियां चलती थी। अयोध्या में भगवान राम का भक्त अयोध्या में नहीं जा सकता था। किस प्रकार की अराजकता थी। अब तो अयोध्या में राम भक्त के अलावा कोई रामद्रोही घुस ही नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। आज तो अयोध्या चमक रही है।
2: 2027 के सियासी समर में बीजेपी हिंदुत्व और राम मंदिर के मुद्दे पर सवार है, जहां अखिलेश यादव पर सीएम योगी आदित्यनाथ के हमले जारी हैं।
1: 2017 के पहले इन दंगाइयों को, इन पेशेवर गुंडों को प्रश्रय देते थे, इनके सामने नतमस्तक होते थे। प्रदेश में कर्फ्यू रहता था।
2: योगी विकास से लेकर डबल इंजन तक की खूबियां गिना रहे हैं तो वहीं पिछली सरकारों की खामियां भी बता रहे हैं।
1: 2015-16 में इस गोंडा में भी दुर्गा पूजा के समय दंगा करने का प्रयास हुआ था, यहां भी दंगे हुए थे। मां दुर्गा की मूर्ति को विसर्जन नहीं करने दिया जाता था, रामलीलाओं के आयोजन में अड़चनें डाली जाती थी। पर्व और त्योहार प्रारंभ होने के पहले, उत्सव प्रारंभ होने के पहले उपद्रव शुरू हो जाते थे। उत्सव के रंग में किसी ने भंग करने का काम किया तो फिर वर्तमान तो जाएगा ही जाएगा, भविष्य भी स्वाहा हो जाएगा।
2: उधर अखिलेश को योगी सरकार में जंगल राज नजर आ रहा है। उधर गाजीपुर में कमलेश बिंद के एनकाउंटर पर विपक्ष और सरकार के सहयोगियों के सुर एक जैसे नजर आ रहे हैं। किसी को अपने वोट बैंक की टेंशन सता रही है तो कोई वोट बैंक में सेध मारने की तैयारी में है।
3: इतना बड़ा तो दुर्दांत अपराधी नहीं है कि जिससे आप एनकाउंटर, अब मुख्य आरोपी उसको बनाया भी नहीं गया, मुख्य आरोपी कोई और है। मुख्य आरोपी को तो पकड़ने दूर है, वो छुएंगे नहीं। आज जो साधारण है, जो वोट अभी गाजीपुर हारे हैं, अब गाजीपुर में बिंदुओं की संख्या बहुत अधिक है, जौनपुर में बिंदुओं की संख्या अधिक है, प्रधानमंत्री के चारों तरफ के हम सारी सीटें हार गए हैं।
4: बहुत ही जो घटना हुई है एनकाउंटर की, तो आखिर जब पुलिस पकड़ सकती थी मुजरिम को तो एनकाउंटर क्यों करा गया? तो सवाल तो ये अपने आप में पूरी कानून व्यवस्था में प्रश्न चिन्ह उठाने का काम है। भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं चाहते हैं कि शासन और जो प्रशासन है, जो नियम है, जो कानून है, उससे चले।
2: बहरहाल यूपी में चुनावी पिच पूरी तरह से तैयार है, जहां हर पार्टी अपने हिसाब से बैटिंग कर रही है। आज तक ब्यूरो।
0: दिल्ली के जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी नीट पेपर लीक के विरोध में उतरे और छात्रों की आत्महत्या को लेकर सवाल खड़े किए तो वहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की।
5: हाथों में संविधान की कॉपी लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपक के आज सुबह अमेरिका से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से उन्होंने जंतर मंतर का रुख किया।
6: सोशल मीडिया पर व्यंग और मीम्स के तौर पर शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी अब दिल्ली के जंतर मंतर आ पहुंचा है। सुबह सुबह अभिजीत दीप के अमेरिका से सीधे आईजीआई एयरपोर्ट पे लैंड किया और उसके बाद जंतर मंतर पहुंचा। पहले भीड़ कम थी, न मंच था, न बैनर था, न कोई ऑडियो सिस्टम, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया भीड़ की संख्या बढ़ती गई, स्टेज भी लगा, मंच भी लगा और हाथ में तिरंगा लिए युवा यहां पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
5: नीट पेपर लीक को लेकर हो रहे इस प्रदर्शन में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई। अभिजीत दीपक्के के साथ सोनम वांगचुक भी मंच पर नजर आए। अभिजीत ने धर्मेंद्र को इस्तीफे के लिए 5 बजे तक का अल्टीमेटम दिया।
7: मैं धर्मेंद्र प्रधान जी, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ, 5 बच्चों ने सुसाइड कर लिए फिर भी आपने रिजाइन नहीं किया है, आपको शर्म नहीं आती? और कितने बच्चों का सुसाइड करने का वेट करेंगे आप? जब तक रिजाइन नहीं करोगे तब तक हमारा मूवमेंट जारी रहेगा। इसके बाद हम ये मूवमेंट को देश भर में लेकर जाएंगे और ये मूवमेंट तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते।
5: अभिजीत ने अपने इस आंदोलन को सफल बताया तो वहीं साफ किया कि सोशल मीडिया से शुरू हुआ ये आंदोलन अब देश भर में नजर आने वाला है।
7: 15 दिन पहले
0: दिल्ली के जंतर मंतर में एक और जेन जी की सरकार से नाराजगी दिखाई दी गई तो दूसरी तरफ दिल्ली के ही कुछ किलोमीटर की दूरी पर सरकार के समर्थन में युवाओं को एकजुट किया गया।
5: दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में यूथ फॉर विकसित भारत सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े 6,000 से ज्यादा युवा शामिल हुए। वहीं मैथिली ठाकुर, फिल्म स्टार विक्रांत मेस्सी, बोट फाउंडर अमन गुप्ता और गुरिंदर वीर सिंह ने सीएम रेखा गुप्ता और खेल मंत्री मनसुख मांडविया के साथ मंच साझा किया।
8: आज मैं माय भारत यूथ कन्वेंशन में मेरे साथ के कितने सारे लोग हैं।
5: एक और जहां विपक्ष युवाओं की नाराजगी और जेन जी आंदोलन की लगातार बात कर रहा है तो वहीं सरकार ने मंच से ये संदेश देने की कोशिश की कि देश के युवाओं को सरकार पर पूरा भरोसा है।
9: माय भारत मोदी जी ने देश के युवाओं को अपनी आकांक्षा, अपनी अपेक्षा, अपनी वॉलंटियर क्षमता, अपना आइडियाज साझा करने के लिए बनाया हुआ प्लेटफॉर्म है।
10: देश का युवा जो विजनरी है, जिसमें साहस है, जो क्रिएटिव है, वो देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करे, अपना भविष्य भी निर्माण करे और देश का भी निर्माण करे, उसके लिए आज ये इवेंट था।
5: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में जोर देने के लिए यूथ फॉर विकसित भारत अभियान को सरकार युवाओं के लिए एक बड़ा कदम बता रही है जिसके जरिए युवाओं का भरोसा जीतने की कोशिश की जा रही है। सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक।
0: अब बात यूपी के देवरिया की, जहां पर बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। कई क्षेत्रों में बिजली गुल है। अब बिजली कटी तो आधी रात को बीजेपी विधायक शलभमणि त्रिपाठी पावर हाउस पहुंच गए और बिजली विभाग के अधिकारियों को हड़काया। विधायक ने कहा कि हमारे क्षेत्र की जनता अगर बिजली कटौती की वजह से सो नहीं पा रही है तो बिजली अधिकारी को हम चैन से सोने नहीं देंगे, बिजली अफसरों के घरों की भी लाइट काटेंगे। अब इस दौरान बिजली कटौती की शिकायत के लिए पावर हाउस के सरकारी नंबर पर लगातार लोग फोन कर रहे थे। कई फोन कॉल तो खुद विधायक ने उठाया।
11: कहां से बोल रहे हैं? चिड़िया खाला से ना। कब से लाइट नहीं है? कितने बजे से? ठीक है, मैं शलभमणि त्रिपाठी बोल रहा हूँ, विधायक देवरिया। ठीक है, बिजली घर पे ही बैठे हैं, इन लोगों की लाइट काटने आए हैं। आप लोगों की लाइट नहीं है तो आज हमने तय किया कि बिजली के अधिकारियों की सबकी लाइट काट देंगे। ठीक है ना? देखिए सर, 10-11 बजे से लाइट नहीं है। आप लोगों पर रिपोर्टिंग ही नहीं भाई, कहाँ लाइट नहीं है। आप लोग इतने नॉन सीरियस हो चुके हैं कि आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। 10 बजे से लाइट नहीं है इनके मोहल्ले में, गोरखपुर और के पास।
0: अब बात करते हैं फैसल खान और खान सर की, जिस पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।
12: पटना में दो कोचिंग संचालकों की लड़ाई अब फैसल खान यानी खान सर की गिरफ्तारी तक पहुँच चुकी है। फैजल खान के वकील ने साफ किया है कि वो सरेंडर नहीं करेंगे।
13: खबर है ऐसा कोई विचार ही नहीं है सरेंडर करने का। पुलिस तो किसी को अरेस्ट कर सकती है, नॉन अवेलेबल सेक्शन है तो किसी को अरेस्ट कर सकती है ना।
12: कल आर्म्स एक्ट के तहत पटना पुलिस ने फैजल खान के खिलाफ FIR दर्ज की थी। कोचिंग के गार्ड्स ने पूछताछ में कहा था कि फैजल खान ने उन्हें फायरिंग के लिए कहा था।
13: के लिए पुलिस कुछ भी लिख दे, अगर ऐसा होता तो खान सर भेज हुए थे ना, पुलिस को उसी समय अरेस्ट कर लेना था इनको। अगर ऐसा कोई रहता तो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट थाना में ले लेने से और FIR में लिख देने से कोई एविडेंस नहीं होता।
12: उधर फैजल खान की गिरफ्तारी की खबरों के बीच कल रात कोचिंग के बाहर भारी संख्या में छात्र मौजूद थे। तनाव को देखते हुए पुलिस का गश्त जारी रहा। PCR वैन में तैनात पुलिस छात्रों को समझाती नजर आई।
14: मौजूद हैं और सड़क के दूसरे किनारे एक लाइन से हजारों छात्र जो हैं वो यहाँ पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं खान सर के, ये कह सकते हैं कि समर्थन में ये जो छात्र हैं वो यहाँ पे खड़े हैं। तस्वीर देखिए, ये खान सर के कोचिंग के बाहर का नजारा है।
12: घटना के बाद फैजल खान के छात्रों को भड़काने का वीडियो वायरल हुआ था।
15: इसके ऊपर करने आया है हमारे
16: गाड़ी अभी तक नहीं की है, जबकि सबके सामने ये लेके जा रहा है, मुद्दे से भटकाया जा रहा है। आप इसकी गिरफ्तारी करिए, ये आदमी कौन है और कैसे आता है 20-25 लोगों को उठा के लेके चला जा रहा है, 20-25 लोगों को एक साथ कैसे।
12: वीडियो और मैसेज के बीच जारी तनाव को देखते हुए पटना पुलिस ने छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि दो कोचिंग संस्थानों की प्रतिस्पर्धा में किसी के बहकावे में आना ठीक नहीं है। सूत्रों के माने तो फैजल खान गिरफ्तारी के तलवार के बीच अग्रिम जमानत लेने की तैयारी कर रहे हैं। रोहित सिंह, पटना आज तक।
0: बिहार में राबड़ी के बंगले को लेकर जारी सियासत अब सुरक्षा तक पहुंच गई है। सुरक्षा में कटौती के बाद लालू परिवार ने मौजूद सुरक्षा को भी लेने से इनकार कर दिया है।
2: आवास के बाहर पसरा सन्नाटा और कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं। एक बार तो ये यकीन करना भी मुश्किल है कि ये पटना में पूर्व सीएम राबड़ी देवी का बंगला है। एक दिन पहले वाई प्लस सिक्योरिटी हटाए जाने के बाद अब लालू राबड़ी ने नाराजगी जताते हुए पूरी सुरक्षा वापस कर दी है।
17: राबड़ी देवी और लालू परिवार को जो सुरक्षा दी जाती है उसको लेकर जो है ये ताजा विवाद जो है वो शुरू हो गया है। और कल से हम देख रहे हैं जब सरकार का एक नया फरमान आया और लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को जो जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई थी उस सुरक्षा को सरकार ने वापस लिया और केवल बिहार पुलिस की सुरक्षा जो स्पेशल पुलिस होती है उसकी सुरक्षा प्रदान की। उसके बाद से ही लालू परिवार राबड़ी देवी जो है वो इसको लेकर काफी बिफर गए और उसके बाद कल देर रात से हम देख रहे हैं कि 10 सर्कुलर रोड आवास जो कि राबड़ी देवी और उनका परिवार यहाँ पिछले 20 सालों से रह रहा है यहाँ कल रात से ही एक भी सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं है।
2: इस बीच तेजस्वी यादव ने इसका विरोध करते हुए अपनी सुरक्षा लौटा दी, जिसे लेकर आरजेडी अब सरकार पर लगातार हमले कर रही है। सुरक्षा कवच में कटौती के बाद दिखावे की सुरक्षा रखने का कोई औचित्य नहीं है। सात खून के आरोपी रहे मुख्यमंत्री की सरकार के द्वारा लालू जी एवं राबड़ी देवी जी की सुरक्षा में कटौती का फैसला लालू जी राबड़ी देवी जी एवं उनके परिवार को नुकसान शारीरिक क्षति पहुंचाने की नीयत से ही लिया गया है। अगर लालू जी एवं उनके परिवार का सुरक्षा कवच है और अगर लालू जी राबड़ी देवी जी और परिवार के किसी भी सदस्य को एक खरोच भी आई तो अंजाम क्या होगा इसका अंदाजा शायद बिगड़ैल सम्राट चौधरी और उनकी सरकार को नहीं है।
18: सबको वापस कर दिया, सबको बाहर निकाल दिया, क्योंकि कल ही राज्य की सरकार ने अपने आका के निर्देश पर आदरणीय लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी सहित पूरे लालू परिवार की सुरक्षा में व्यापक और घोर कटौती कर दी। शासन अपमानित करना चाहती है लालू प्रसाद जी और उनके परिवार को, उनके परिजनों को।
19: ये सुरक्षा उनको क्यों दिया गया था? कभी मुख्यमंत्री रहे, कभी केंद्रीय मंत्री रहे, जब ये संवैधानिक व्यवस्था, ये नहीं है कि हथुआ मामा का बेटा है तो सब दिन वही रहेगा। जनता जिसको चुन करके देती है सत्ता में और जो कानून कहता है वो सुरक्षा मिलता।
2: समीक्षा में तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं किया गया था, लेकिन लालू और राबड़ी की सुरक्षा घटाए जाने के विरोध में अब तेजस्वी यादव ने ये बड़ा फैसला लिया है। वहीं लालू राबड़ी की जेड प्लस सिक्योरिटी वापस ली गई थी, लेकिन नई सुरक्षा व्यवस्था के तहत दोनों नेताओं के लिए बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की सुरक्षा का इंतजाम किया गया था, जिसके तहत 2 से 8 जवान सुरक्षा में तैनात रहने का निर्देश था। इसके साथ बुलेट प्रूफ कार जिला बल से स्क्वाड की नियुक्ति का निर्देश था।
17: ये बिहार पुलिस की जो सुरक्षा, जो नई व्यवस्था उनको प्रदान की गई थी, उस सुरक्षा को भी यहाँ लेने से देखिए लालू परिवार ने जो है वो मना कर दिया है। ये देख सकते हैं यहाँ बिहार पुलिस के जो विशेष दस्ता है वो जो नई सुरक्षा व्यवस्था के तहत इनको यहाँ पर भेजा गया है। इन तमाम लोगों को भी जो है 10 सर्कुलर रोड आवास में जाने नहीं दिया गया है, इनको बाहर कर दिया गया है परिवार के द्वारा। और जाहिर सी बात है ये तमाम जो बिहार पुलिस के यहाँ पर कर्मी हैं वो लोग बाहर ही खड़े हैं, राबड़ी देवी के आवास के बाहर ही इसी तरीके से खड़े हैं। अब इन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है कि करना है तो क्या करना है।
2: राबड़ी देवी के बंगले को लेकर सियासत चल ही रही थी, जिस पर अब सुरक्षा को लेकर विवाद की एंट्री हो चुकी है। रोहित सिंह, पटना आज तक।
0: यूपी में योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन भी जारी है, जिसकी गूंज अब संभल में सुनाई दी, जहां सरकारी जमीन पर बने मुस्तफा कादरी मस्जिद के खिलाफ एक्शन लिया गया और इस अवैध मस्जिद को बुलडोजर से ढहा दिया गया।
20: संभल के नखासा थाना इलाके के कसेरुआ गांव में स्थित मुस्तफा कादरी मस्जिद को ध्वस्त करने की कार्रवाई इस वक्त शुरू हो चुकी है। और आप मेरे पीछे की तस्वीरों में आप जो देख सकते हैं कि किस तरीके से बुलडोजर एक्शन के जरिए जो कि सरकारी जमीन पर बनी हुई मस्जिद है उसको यहां पर ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई की जा रही है। दो दो बुलडोजर इस पूरी मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए फिलहाल यहाँ पर जो लगाए गए हैं, पूरा पुलिस फोर्स गाँव में तैनात किया गया है। और ये देखा जाए तो ये 120 वर्ग मीटर जगह में बनी हुई ये पूरी मस्जिद थी, जिसको हटाने के लिए जनवरी महीने में जो है लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर ये पूरी कार्रवाई शुरू की गई थी। और उसके बाद इस मस्जिद के वक्फ बोर्ड में भी रजिस्टर्ड होने का मामला सामने आया था, जिसके बाद इस मस्जिद कमेटी से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ FIR कराई गई। लेकिन आज अब इस पूरे मस्जिद पर धारा 67 के तहत जो कार्रवाई यहां पर जो की जा रही है, और आप यहां जो देख सकते हैं देखिए किस तरीके से जो पूरा बुलडोजर है वो इस पूरे मस्जिद के स्ट्रक्चर को ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई कर रहा है। और एहतियातन अगर जो देखा जाए तो देखिए छतों पर आपको जो पुलिसकर्मी आपको जो तैनात नजर आएंगे, यहां अगर आपको जो देखा जाए तो देखिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो फिलहाल आपको जो है ये वो पुलिस कर्मियों की आपको जो है लगातार छतों पे जो तैनाती दिखाई देगी। जो है सामने देखिए तस्वीरों में देखेंगे तो देखिए तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह आपको यहाँ इस पूरे इलाके में लगातार इस पूरी स्थिति पे नजर बनाए हुए दिखाई देंगे। और इसी तरह से देखिए आसपास का जो पूरा इलाका है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया। सामने आप देखेंगे तो देखिए बुलडोजर के ठीक बराबर में देखिए भारी संख्या में आपको पुलिस फोर्स जो है यहाँ पर जो तैनात जो नजर आएगा, जो कि आपको तस्वीरों में नजर आएगा। और इसी तरह से जो पूरे गांव का अलग अलग इलाके हैं वहां पर इस तरीके से पूरे पुलिस फोर्स को तैनात करके पूरे गाँव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर विशेष तौर पर निगरानी की जा रही है, जिससे कि कोई भड़काऊ पोस्ट जो है वो न डाली जाए सोशल मीडिया पर। वहीं इसी के साथ जो आसपास के इलाके हैं, आसपास के जो गांव हैं, वहां से भी इस पूरे गांव की तरफ आने वाले रास्तों पर पुलिस को फोर्स को जो तैनात किया गया है। और
0: बक्सर का इटाढ़ी गुमटी पुल क्षतिग्रस्त हो गया, मात्र 4 दिन हुए थे पुल के उद्घाटन को और अब पुल बंद कर दिया गया है। 26 करोड़ 40 लाख की लागत से बने हुए रोड ओवरब्रिज के ऊपरी परत धंस गए। लगभग 11 साल के इंतजार के बाद आम जनता के लिए कुछ ही दिन पहले उद्घाटन किया गया। लोगों ने राहत की सांस ली, कुछ सहूलियत होगी सोचा, लेकिन चौथे दिन ही पुल के पिलर नंबर 5 के ऊपरी परत ही धंस गई।
21: आप सोच सकते हैं कि जिस चीज को 11 साल से इंतजार कर रहे हैं और इंतजार के बाद अगर मिलता है तो 4 दिनों में ध्वस्त हो जाता है, तो सोचिए नहीं, ये देखिए कैसे, क्योंकि ये जो पुल है करीब 4 दिन पहले इसको खोला गया था चलने के लिए, लेकिन 4 दिनों में ये पुल टूट गया, यानी कि एक ध्वस्त हो गया और इसको बंद कर दिया गया है। ये दरअसल बक्सर के इटाढ़ी गुमटी पर बना 26 करोड़ 40 लाख का वो नया पुल है जिसको लेकर कई बार आंदोलन हुआ, कई बार लोग धरने पर बैठे, उसके बाद ये पुल मिला तो ऐसे हालात में मिला कि 4 दिन बाद ये इस परिस्थिति में आ गया कि लोग अब घेर कर देख रहे हैं कि भाई ये क्या हुआ है। ये एक दर्दनाक घटना तो नहीं कही जा सकती है, शर्मनाक घटना कही जा सकती है। और शर्मनाक घटना के कौन कौन विलेन है ये तो तय जनता को करना है। ऐसे में जनता सामने खड़ी है, हम उससे भी जानने का प्रयास करेंगे कि भाई ये जो घटना घटी है आपको आश्चर्यचकित तो नहीं करती होगी ना?
22: ना ना, ये तो मतलब वही होना था जो हुआ है, इससे पहले भी हुआ है कई बार, ये तो देखने वाली चीज है, ये तो सामने है जो प्रत्यक्ष में आपको दिख रहा है।
23: बस वही है जो देख रहे हैं, टूट गया है पुल
21: 4 दिन पहले।
23: हाँ, 4 दिन पहले बना था, आज टूट गया, फिर ट्रक चढ़ी है, वो तो अच्छी बात है, किसी का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है।
21: सर आपको लगता है कि मतलब ये पुल लगता था कि चलेगा नहीं, ये तो समझ में आ रहा होगा,
1: तो इतना जल्दी फंसेगा ये तो विश्वास नहीं होगा।
3: ये विश्वास नहीं था इतना जल्दी फंस जाएगा।
21: देखिए लोगों को लगातार सूचनाएं टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ये बहुत मिलती रहेगी है कि पुल भस रहा है और पुल भसेगा भी, लेकिन चार दिनों में अगर पुल भसने लगे तो बिहार की उस सरकार को क्या कहेंगे जो कई परिवर्तन के बाद इस समय भी डबल इंजन की सरकार चल रही है, विकास के कई दावे किए जा रहे हैं लेकिन ऐसे विकास का क्या मतलब है जो चार दिन तक टिके नहीं। बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे।
0: आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने वाले वैभव सूर्यवंशी की टीम इंडिया में एंट्री हो गई। धुआंधार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड, इंग्लैंड और एशियन गेम्स की T20 इंटरनेशनल टीम में शामिल कर लिया गया है।
4: नाम वैभव सूर्यवंशी, काम छक्के बरसाना, पहचान तूफान लाना, अरमान अब देश को जिताना। आईपीएल की इन तस्वीरों को जिसने देखा देखता ही रह गया। खुद वैभव के साथियों ने, दुनिया भर के दिग्गजों ने और विरोधी गेंदबाजों के पास तो देखते रहने की मजबूरी के अलावा कोई चारा ही नहीं था। ना उम्र की सीमा, ना दुनिया के किसी गेंदबाज का खौफ। वैभव का बल्ला जब बरसता है तो फिर इसके कोई मायने नहीं होते कि सामने पैट कमिंस जैसा गेंदबाज है, जसप्रीत बुमराह है या फिर कोई और। और ये तूफान आईपीएल के इस सीजन में जब आया तो मैच दर मैच उनका बल्ला रिकॉर्ड्स की इबारत लिखता चला गया। इस सीजन में तो हाल ये था कि जब उनकी पारी खत्म होती थी तो कईयों के सपने टूट चुके होते थे और कई गेंदबाजों के तो आईपीएल करियर के आंकड़े बिगड़ चुके होते थे। उनके बल्ले ने इतना हल्ला मचाया कि आखिरकार सेलेक्टर्स को उन्हें सीनियर टीम इंडिया का हिस्सा बनाना ही पड़ा। वैभव 15 साल की उम्र में टीम इंडिया का हिस्सा बनने वाले सबसे युवा भारतीय हैं। उन्होंने आईपीएल में सबसे तेज 1000 रन बनाए हैं। आईपीएल में उन्होंने एक सीजन में क्रिस गेल के 59 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़कर 72 छक्के जमाए हैं। 14 साल की उम्र में आईपीएल में शतक जमाने वाले वो सबसे युवा बल्लेबाज हैं। वो अंडर-19 वर्ल्ड कप चैंपियन है। आईपीएल के 23 मैच में वो 96 छक्के जमा चुके हैं। वैभव का असली इम्तिहान अब होने वाला है, लेकिन उनके लिए आपदा नहीं ये अवसर है, क्योंकि खौफ का भूत वो बचपन में ही भगा चुके हैं। दुनिया भर के गेंदबाजों को वो आईपीएल में निपटा चुके हैं। इतना ही नहीं, दुनिया की कई पिचों पर खेलने का उनका अनुभव धीरे धीरे उनकी बल्लेबाजी को और मैच्योर बना रहा है। नए हिंदुस्तान के नए तेवरों वाली इस टीम को अपने खजाने में ऐसा ही हीरा चाहिए। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात दुनिया की करते जहां खाड़ी युद्ध में तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत की कोशिशों के बीच धमाके की गूंज ने युद्ध विराम की उम्मीदों को तोड़ा है।

0: पश्चिम एशिया से आई इन तस्वीरों ने फिर से दुनिया को पसोपेश में डाल दिया है। इस मंजर ने डरा दिया है कि खाड़ी में फिर से महायुद्ध 2.0 की लपटें सुलगने लगी हैं। इस माहौल ने बता दिया है कि किसी भी वक्त अमेरिका और ईरान में फिर से भीषण जंग छिड़ने वाली है। दहशत इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि ईरान ने कुवैत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया है। कुवैत में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। कुवैत का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान से आ रहे ड्रोन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहा है। ईरान ने बहरीन पर भी मिसाइल दागी है। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को रोकने के लिए बहरीन का भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। हम आपको बता दें कि बहरीन में अमेरिकी सेंट्रल कमांड का मुख्यालय भी है। अपने सहयोगी देशों पर ईरान के हमले से अमेरिका बौखला चुका है। पलटवार में अमेरिका ने भी ईरान के कई ठिकानों पर धावा बोल दिया। ईरान के सर्विलांस रडार सेंटर पर अमेरिका ने हमला किया है। ईरान के रडार सेंटर पर हमले का वीडियो भी अमेरिका ने जारी कर दिया। अमेरिका का कहना है कि पहले ईरान ने हमला किया था, जिसके जवाब में उसके रडार सर्विलांस टावर को उड़ा दिया गया। अमेरिकी सेना ने समुद्री हमलों से बचाव के लिए गोरुक और केशम द्वीप पर स्थित ईरानी तटीय निगरानी रडार को ध्वस्त किया। अमेरिका ने दावा किया कि 6 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया, जबकि 7वीं मिसाइल टारगेट तक पहुंची ही नहीं। मतलब साफ है कि जो सीज फायर फिलहाल अस्थाई है, वो किसी भी वक्त धराशायी हो सकता है, क्योंकि ईरान और अमेरिका में झड़प शुरू हो चुकी है। यह चिंगारी किसी भी वक्त भीषण युद्ध का शक्ल ले सकती है। आज तक ब्यूरो।
1: और अब आपको लेकर चलते हैं युद्ध के उस मोर्चे की ओर, जहां पिछले 4.5 साल से रूस और यूक्रेन में जंग छिड़ी है। अब बड़ी खबर यह है कि रूसी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि शांति वार्ता के लिए युद्ध रोकने की जरूरत नहीं। पुतिन का यह बयान तब आया है जब जेलेंस्की ने खुला पत्र लेकर रूसी राष्ट्रपति से मिलने की इच्छा जाहिर की।

0: रूस ने यूक्रेनी शहर जैपोरेजिया पर भीषण अटैक किया, वो भी तब जब शांति वार्ता की कोशिशें चल रही हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है कि शांति वार्ता के लिए सीज फायर की कोई जरूरत नहीं है, मतलब बातचीत करने के लिए जंग रोकने की जरूरत नहीं। रूस के ताजा हमलों में जैपोरेजिया के रिहायशी इलाकों को बड़ा नुकसान हुआ, जिसमें एक शख्स की मौत हुई है, 16 घायल हैं, वाहनों और नागरिक बुनियादी ढांचों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इस बीच पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में पत्रकारों को संबोधित करते हुए साफ कर दिया कि बातचीत के लिए सीज फायर की जरूरत ही नहीं है।
1: नए населенные пункты ставятся под контроль российских вооруженных сил. Но за последнее время, повторяю, почти 2500 квадратных километров.
0: इससे पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति को खुला पत्र लिखा है और सीधे वार्ता का प्रस्ताव रखा है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी और रूसी नेताओं के बीच बैठक की पहल को सराहा है और इसे अच्छी पहल बताया।
2: I don't know. I'm glad that they're maybe talking about meeting. I think we had a lot to do with it. I know exactly what you're doing, but I think it would be great if they met. They should get it done.
0: आर पार की जंग और शांति वार्ता की कोशिशों के बीच दोनों देशों की तरफ से अच्छी पहल हुई है। रूस यूक्रेन ने एक दूसरे के 185 कैदियों की अदला बदली की है, जिसे शांति की शुरुआत के लिए पहला बड़ा कदम बताया जा सकता है। हालांकि कैदियों की अदला बदली पहले भी हो चुकी है, लेकिन 4 साल से भी ज्यादा समय से जारी जंग अभी तक थमी नहीं। आज तक ब्यूरो।
3: अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक, आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ मंथन, देशवासियों का जीवन आसान बनाने और आर्थिक दर्द को बढ़ाने पर चर्चा। समाजवादी पार्टी पर मुख्यमंत्री योगी का बड़ा हमला, कहा 2017 से पहले गुंडों के आगे नतमस्तक थी सरकार, राम का नाम लेने पर चलती थी गोलियां, अखिलेश का पलटवार, यूपी में महाजंगल राज। बंगाल सरकार ने मदरसों का शुरू किया सर्वेक्षण, 5 जुलाई तक मांगे रिपोर्ट, नियमों के तहत संचालन और जरूरी दस्तावेजों की होगी जांच।

0: यूपी में भी 2027 के लिए हर पार्टी ने कमर कस ली है। योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं तो अखिलेश यादव भी लगातार सरकार को घेर रहे हैं।
1: अब राम का नाम लेने पर ही प्रतिबंध था, डंडे बरसते थे, गोलियां चलती थी, अयोध्या में भगवान राम का भक्त अयोध्या में नहीं जा सकता था, किस प्रकार की अराजकता थी। अब तो अयोध्या में राम भक्त के अलावा कोई रामद्रोही घुस ही नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। आज तो अयोध्या चमक रही है।
2: 2027 के सियासी समर में बीजेपी हिंदुत्व और राम मंदिर के मुद्दे पर सवार है, जहां अखिलेश यादव पर सीएम योगी आदित्यनाथ के हमले जारी हैं।
1: 2017 के पहले इन दंगाइयों को, इन पेशेवर गुंडों को प्रश्रय देते थे, इनके सामने नतमस्तक होते थे।